0: 9229309।
1: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है, कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है, और इन्हीं श्रृंगार को सवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, एक से एक उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A, आशियाना आंगन प्लाजा, नियर मैकडॉनल्ड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉन्टेक्ट करें 01-4934-9322 या फिर 9034-9697-31 पर। ऐसे डिजाइंस जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्स ही आए।
2: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
1: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
0: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
2: जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी, आँखों का NABH मान्यता प्राप्त सुपर स्पेशलिटी आँखों का हॉस्पिटल आपके शहर भिवाड़ी में। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी आपको प्रदान करता है विश्व स्तरीय आँखों की देखभाल।

0: हमारे सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल में आपको मिलेगी अनुभवी डॉक्टरों आई सर्जनों की विशेषज्ञ टीम, पूर्णतः मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर MICS टॉपिकल फैको तकनीक से कैटरेक्ट मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेजर से ऑपरेशन बिना इंजेक्शन और टांके,
1: रेटिना आंख का पर्दा, ग्लूकोमा, काला मोतियाबिंद का उन्नत इलाज, बच्चों की आँखों का इलाज, हमारे पास सभी इंश्योरेंस और TPA पैनल उपलब्ध है। निःशुल्क कैशलेस इलाज का लाभ उठाएं।
0: आज ही हमें सेवा का मौका दें। जगदम्बा आई हॉस्पिटल, भगत सिंह कॉलोनी, अलवर बाईपास, हरीश बेकरी के पास, भिवाड़ी।
1: संपर्क करें 7424830174। आज ही अपनी आँखों का इलाज कराएं और पाएं एक उजला भविष्य। जगदम्बा आई हॉस्पिटल, भिवाड़ी।
2: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं कैशलेस सर्विस के लिए, कहां मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
3: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहां मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंट मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार एसी वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
2: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड नियर बाय, थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इन्फॉर्मेशन कॉल 9799278900।
4: न्यू गर्ग सुपर स्टोर, जहाँ मिलते हैं ग्रोसरीज, ड्राई फ्रूट्स, कॉस्मेटिक्स आइटम और सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स। बजट की दुकान, MRP की छुट्टी, आपका फायदा हमारा वादा। अब वक्त है MRP को कहें बाय बाय। कॉन्टेक्ट करें 7413099952 पर, अलवर बाईपास रोड नियर मार्बल मार्केट, भिवाड़ी।
5: राहुल, इंडस्ट्री प्लान तो बढ़िया है पर इस बार अपनी फैक्ट्री के इलेक्ट्रिकल्स पर एक्स्ट्रा फोकस रखना।
6: डोंट वरी सर, इंडस्ट्री का सारा इलेक्ट्रिकल्स खंडेलवाल एजेंसी से आएगा। ये NCR का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस है, जहां हमें पैनल, स्विच गियर, मोटर ड्राइव, इंडस्ट्रियल लाइटनिंग और वायर एंड केबल में 30 से ज्यादा मल्टीनेशनल ब्रांड ऑप्शंस मिल जाएंगे।
7: खंडेलवाल एजेंसीज, NCR का लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस इन भिवाड़ी।
8: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: मैं जयपुर जा रहा हूँ।
1: अच्छा, तो आते हुए जयपुर के मशहूर दूध लड्डू और प्याज कचौरी लेते आना।
0: अरे, दूध लड्डू और प्याज कचौरी के लिए जयपुर जाने का इंतजार क्यों करना, क्योंकि अब आपके शहर भिवाड़ी में अलवर बाईपास पर खुल चुका है कान्हा स्वीट्स।
1: जी हाँ, कान्हा स्वीट्स पर मिलते हैं स्वादिष्ट दूध लड्डू, प्याज कचौरी, समोसे किसी कलाकंद, रसमलाई, कुल्हड़ रबड़ी और सभी प्रकार की मिठाइयाँ।
0: बिल्कुल, हर मिठाई में स्वाद ऐसा कि एक बार खाएं तो दिल कहे एक और।
1: तो फिर आज मिठास हो जाए कान्हा स्वीट्स के साथ।
0: हाँ, परिवार हो या मेहमान, त्योहार हो या कोई खास खुशी, हर मौके की मिठास कान्हा स्वीट्स के साथ। पता नोट कर लीजिए,
1: शॉप नंबर AG F04, कैपिटल आर्केडिया, अलवर बाईपास इन फ्रंट ऑफ वेदांता फार्म, भिवाड़ी, राजस्थान।
2: मोहाली और गुड़गांव का डेंटल अनुभव अब भिवाड़ी में। आइए वी केयर डेंटल क्लिनिक इम्प्लांट सेंटर, जहां RCT, कैपिंग और डेंटल इम्प्लांट के एक्सपर्ट ट्रीटमेंट के साथ आपको मिलता है डॉक्टर रुकु सिंगला के 16 वर्षों के अनुभव और विशेषज्ञता का भरोसा। आर्मी और कॉर्पोरेट कर्मचारियों के लिए स्पेशल डिस्काउंट। पता, अपोजिट मैकडोनल्ड्स, JMK पेट क्लिनिक के पास, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉल करें 7814399374। वी केयर डेंटल, आपकी मुस्कान हमारा भरोसा।
1: क्या आपकी आँखों की रोशनी से जुड़ी कोई परेशानी है? क्या आप चश्मे से छुटकारा पाना चाहते हैं?
0: तो आइए आधुनिक सुविधाओं से युक्त मिश्री देवी आई हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी आई सेंटर।
1: पिछले 15 वर्षों से नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में भरोसेमंद सेवाएं, अब बहर रोड, नियम राणा और टपूकड़ा भिवाड़ी में।
0: यहाँ उपलब्ध है मोतियाबिंद, फेको, मल्टीफोकल एवं प्रीमियम लेंस, लेसिक लेजर, कॉर्निया, ग्लूकोमा और रेटिना उपचार एवं सर्जरी की आधुनिक सुविधाएं।
1: और अब दोनों आँखों का लेसिक लेजर उपचार आधुनिक तकनीक के साथ आपकी पहुंच में और उचित दरों पर।
0: बेहतर नेत्र उपचार, उचित खर्च और भरोसेमंद देखभाल के साथ चश्मे से आजादी की ओर बढ़ाइए अपना कदम। मिश्री देवी आई हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी आई सेंटर। संपर्क नंबर
1: 9783220043 या 01493294200। अब आपके शहर भिवाड़ी में साइकियाट्री एवं ऑर्थोपेडिक्स की नियमित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है ओजस हॉस्पिटल में।
0: मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितिका अग्रवाल द्वारा डिप्रेशन, नींद की समस्या, बेचैनी, घबराहट, मानसिक तनाव, स्किजोफ्रेनिया और OCD जैसी समस्याओं का उचित उपचार किया जाता है एवं काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध है।
1: वहीं हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेंद्र अग्रवाल द्वारा चोट, ट्रॉमा, फ्रैक्चर, घुटने एवं कमर का दर्द, लिगामेंट की चोट, गठिया और आर्थराइटिस जैसी हड्डी एवं जोड़ संबंधी समस्याओं का उपचार किया जाता है।
0: साथ ही सर्जरी, फिजियोथेरेपी और पेन मैनेजमेंट की सुविधा भी उपलब्ध है।
1: तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या को नजरअंदाज न करें, पहुंचिए ओजस हॉस्पिटल।
0: पता, नगीना गार्डन के पास, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी।
1: फोन करें 9521333591। ओजस हॉस्पिटल, बेहतर स्वास्थ्य की ओर एक कदम। अब आपके शहर धारूहेड़ा में ही मिल रही है आधुनिक और बेहतरीन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सुविधाएं। लोटस हॉस्पिटल, बेस्ट टैग सिटी, BPL फ्लैट के सामने धारूहेड़ा में, डॉक्टर अन्विका बंसल, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, 15 वर्ष से अधिक अनुभव के साथ, जो पहले से ही भिवाड़ी में अपनी सेवाएं दे रही थी, अब अपने नए लोटस हॉस्पिटल में OPD और इमरजेंसी सर्विस के लिए उपलब्ध हैं। इसके साथ ही यहां उपलब्ध है अनुभवी हड्डी रोग विशेषज्ञ। यहां घुटना बदलना, कुल्हा बदलना और रीढ़ से जुड़ी सभी बीमारी का इलाज होता है, और एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट और लैप्रोस्कोपिक जनरल सर्जन, जहां लेजर टेक्निक से बवासीर, भगंदर का इलाज लोटस हॉस्पिटल में मिलता है, तथा 24 घंटे आपातकालीन सुविधा, एडवांस्ड एक्सरे, लैबोरेटरी, फार्मेसी, अल्ट्रासाउंड सर्विस, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, AC प्राइवेट रूम की सुविधाएं उपलब्ध हैं। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आज ही विजिट करें लोटस हॉस्पिटल, बेस्ट टैग सिटी, BPL फ्लैट के सामने, धारूहेड़ा। संपर्क करें 01274415033।
3: भिवाड़ी का पहला ISO और NABH सर्टिफाइड श्री कृष्णा हॉस्पिटल, जिसमें मल्टी स्पेशलिस्ट OPD, 10 बेड का ICU, सबसे बड़ा मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 50 बेड का इंडोर, 24 आवर्स एम्बुलेंस, फार्मेसी और इमरजेंसी सेवाएं तथा लैब, डिजिटल एक्सरे जैसी सुविधाओं से लैस श्री कृष्णा हॉस्पिटल अधिकांश मल्टीनेशनल कंपनियों के मेडिकल कंसल्टेंसी एवं कैशलेस उपचार का एकमात्र सेंटर। श्री कृष्णा हॉस्पिटल, B14849 भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी, 8529113916, 7340013916। इस हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट और फिजिशियन की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
4: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
5: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
4: कान नाक गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
6: आपके हर खास समारोह को शानदार और यादगार बनाने के लिए आइए भाटोटिया टेंट हाउस एंड इवेंट ऑर्गेनाइजर।
7: सभी प्रकार के टेंट आइटम, शानदार डेकोरेशन और इंडोर आउटडोर कैटरिंग की बेहतरीन सुविधा, शादी, सगाई, जन्मदिन या किसी भी समारोह के लिए एक ही जगह पर पूरी व्यवस्था।
6: संपर्क करें हंस राज भाटोटिया, मोबाइल नंबर 9416347214।
7: और आपके खास समारोह के लिए शानदार राजविलास मैरिज एवं बैंक्वेट हॉल, शिवनगर पार्ट 2, पांचाल कॉलोनी, सीथल रोड, धारूहेड़ा, जिला रेवाड़ी, हरियाणा।
6: बाटोटिया टेंट हाउस और राजविलास मैरिज बैंक्वेट हॉल, आपके समारोह की पूरी तैयारी एक ही जगह। अरे यार, आज शाम पार्टी करें?
8: नहीं यार, आज डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाना था।
6: गुरुग्राम? इतनी दूर?
8: हाँ यार, वहीं तो बेस्ट हाइजीन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और पेनलेस ट्रीटमेंट मिलता है।
6: ये बात पहले सही थी, पर अब नहीं।
8: मतलब?
6: गुरुग्राम के ही एक्सपीरियंस्ड डेंटल एक्सपर्ट डॉक्टर जितिन टक्कर पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ मिलता है प्रीमियम सेटअप, एडवांस टेक्नोलॉजी, कंप्लीट हाइजीन और 100% पेनलेस डेंटल ट्रीटमेंट। और सबसे अच्छी बात, चार्जेस दिल्ली और गुरुग्राम से काफी कम।
8: तो फिर दूर जाने का टेंशन खत्म।
6: बिल्कुल, अब एक्सपीरियंस, भरोसा और क्वालिटी, सब कुछ घर के पास भिवाड़ी में। आइए 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, ए ब्लॉक, A140, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। आज ही संपर्क करें डॉक्टर जितिन टक्कर, 9871122135। 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, बेहतर चॉइसेस, बेहतर मुस्कान। अजी, सुनते हो, मेरा फोन टूट गया है।
8: अरे भाग्यवान, सुनो, घबराओ नहीं, खंडेलवाल मोबाइल भिवाड़ी लाया है 0% डाउन पेमेंट पर। मोबाइल फोन 9784960000। और सुनो, ओप्पो ने लॉन्च किया है अभी रेनो 15 सी कम दामों में, बजाज फाइनेंस के साथ 0% ब्याज, 10% कैश बैक के साथ, प्लस ट्रॉली बैग, 0 डाउन पेमेंट। और बैटरी से हो परेशान तो रियलमी ने लॉन्च किया है अपना एक नया मॉडल 10,000 mAh बैटरी के साथ। अभी जाइए खंडेलवाल मोबाइल पर ढेर सारे गिफ्ट के साथ, नीलम चौक। चिंता क्यों करते हो, बजाज फाइनेंस है ना अपने साथ। 9784960000 और 9828288666।
9: राहुल यार, मैंने नोएडा से जॉब स्विच कर दिया है, अब सोच रही हूँ भिवाड़ी में रेंटल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा।
10: चिंता की कोई बात नहीं, मेगा एयर कंडीशनर्स एंड इलेक्ट्रिक सर्विस है ना, ये पूरे दिल्ली NCR में अपनी रेंटल सर्विस दे रहे हैं। और इनके यहाँ टावर AC, विंडो AC, स्प्लिट AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड LED TV, सभी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं।
9: लेकिन इनकी सर्विस भिवाड़ी में तो बहुत महंगी होगी ना।
10: बिल्कुल भी नहीं, आपको ये सर्विस सेम रेट पर मिलने वाली है। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9899247102 पर या फिर विजिट करें www.maces.in पर।
11: ये क्या, अभी भी डीजल कार चला रहे हो? अब समय है स्मार्ट फ्यूल पर स्विच करने का, वो भी ज्यादा बचत के साथ।
12: पेश है विक्टोरिस SCNG। ये स्मार्ट है क्योंकि ये देता है 27.02 किलोमीटर पर KG का शानदार माइलेज, और इसका अंडरबॉडी CNG टैंक बूट स्पेस पर कोई समझौता नहीं करता। ज्यादा बचत भी, क्योंकि अपनी पुरानी डीजल कार के एक्सचेंज पर पाए 50,000 रूपए तक का फायदा। तो देर किस बात की, आज ही बुक करें, अपनी नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम पर जाएं। नियम व शर्तें लागू।
13: विजिट फॉर्च्यून कार्स भिवाड़ी।
14: मॉडर्न अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर भिवाड़ी पर अनुभवी रेडियोलॉजिस्ट व पैथोलॉजिस्ट द्वारा अत्याधुनिक मशीनों से MRI, 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 4D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इको कार्डियोग्राफी, डिजिटल एक्सरे, IVP, बैरियम, HSG, डिजिटल OPG, DMT, ECG, EEG, BFT, मैमोग्राफी व फुली एडवांस्ड कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब की सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध है।
15: नियर सरकारी हॉस्पिटल 135 भिवाड़ी, दूसरी ब्रांच मॉडर्न डायग्नोस्टिक एवं इमेजिंग सेंटर, नियर नगर पालिका ऑफिस, अपोजिट अम्बेडकर पार्क, धारूहेड़ा। कॉल करें टोल फ्री नंबर 1-800-123-4494 या 9983-04-0100 पर।
16: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: अब भिवाड़ी के सबसे बड़े NABH सर्टिफाइड SS हॉस्पिटल में स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे पाएं। यहां पाएं स्किन स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, नेफ्रोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी, ब्लड बैंक L और डायलिसिस, सभी बड़े TPA, कैशलेस RGHS, ECHS, ESIC, चिरंजीवी योजना की कैशलेस सुविधा, यहां 24 घंटे की इमरजेंसी सेवा और एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें OCF2 ऑपोजिट मॉडर्न पब्लिक स्कूल, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट 7230011191 और 9785013999।
1: टाटा की गाड़ी तो ले ली है, अब भिवाड़ी में सर्विस सेंटर ढूंढते रहो।
2: अरे ढूंढना क्यों है, टाटा ऑथराइज्ड AK ऑटोमोबाइल है ना, जो संजय मोटर्स की ही यूनिट है। 2017 से भिवाड़ी का भरोसा है, टाटा के सर्टिफाइड मैकेनिक्स हैं और वहाँ सर्विसिंग बहुत ही शॉर्ट टाइम में हो जाती है।
1: अच्छा, और उसमें क्या खर्चे ही खर्चे?
2: अरे नहीं नहीं, AK ऑटोमोबाइल्स पर कार सर्विसिंग, बॉडी शॉप और व्हील अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग के अलावा कैशलेस इंश्योरेंस और रिन्यूअल, AMC, ऑन रोड मेंटेनेंस और एक्सीडेंट वारंटी जैसी सारी फैसिलिटीज हैं, जो खर्चे बहुत ही कम कर देती हैं। मेन रोड पर फूलबाग थाने के पास ही है ये।
1: अरे वाह, तो वेट क्यों करना, 9462369786 पे कॉल करके अभी AK ऑटोमोबाइल पे सर्विस बुक करो जल्दी।
3: सोनम ये लो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट।
4: अरे इसमें क्या है?
3: वही जो तुम्हें बहुत टाइम से चाहिए था।
4: ये ब्रेसलेट तो मुझे बहुत टाइम से चाहिए था।
3: क्या आप इसे दिल्ली से लाए हो?
4: लेकिन आप दिल्ली कब गए?
3: अरे वो है ना भिवाड़ी में अपने शांति ज्वेलर्स, इनके पास है सोने चांदी हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन और यहां मिलती है हॉलमार्क ज्वेलरी।
4: इनका एड्रेस क्या है?
3: इनका एड्रेस है शॉप नंबर 5 गणपति मॉल भिवाड़ी। और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9812210987 पर।
5: एक बेहतर कल के लिए, बेहतर मजबूती के लिए, बेहतर बचत के लिए यूज करें SBF रैपिड 550D TMT।
6: मजबूत निर्माण सदा के लिए।
7: मुझे अपने बच्चों के लिए चाहिए एक ऐसा स्कूल जो ICSE से एफिलिएटेड हो।
8: भिवाड़ी में है एकमात्र ऐसा स्कूल SPS ग्लोबल स्कूल, जिसके बच्चों ने ICSE 10th की बोर्ड परीक्षाओं में 100% रिजल्ट के साथ साथ राज्य स्तर पर कराटे, स्केटिंग आदि प्रतियोगिताओं में भी अपने स्कूल का नाम रोशन किया है। यहां शिक्षा से बच्चों का बौद्धिक विकास और खेलकूद से शारीरिक विकास, डिसिप्लिन और समय समय पर सामाजिक व सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं होती रहती हैं, जो बच्चों के सर्वांगीण विकास में मदद करता है। यहां है बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, खेल का मैदान, ऐसी क्लासरूम, डिजिटल क्लासरूम, आधुनिक सुविधाओं से लैस लैब, बेस्ट टीचर की फैसिलिटी।
7: SPS ग्लोबल स्कूल नियर कैपिटल मॉल भिवाड़ी। आज ही विजिट करें या कॉल करें 9950888330।
9: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: मैं जयपुर जा रहा हूँ।
1: अच्छा, तो आते हुए जयपुर के मशहूर दूध लड्डू और प्याज कचौरी लेते आना।
0: अरे, दूध लड्डू और प्याज कचौरी के लिए जयपुर जाने का इंतजार क्यों करना, क्योंकि अब आपके शहर भिवाड़ी में अलवर बाईपास पर खुल चुका है कान्हा स्वीट्स।
1: जी हाँ, कान्हा स्वीट्स पर मिलते हैं स्वादिष्ट दूध लड्डू, प्याज कचौरी, समोसे किसी कलाकंद, रसमलाई, कुल्हड़ रबड़ी और सभी प्रकार की मिठाइयाँ।
0: बिल्कुल, हर मिठाई में स्वाद ऐसा कि एक बार खाएं तो दिल कहे एक और।
1: तो फिर आज मिठास हो जाए कान्हा स्वीट्स के साथ।
0: हाँ, परिवार हो या मेहमान, त्योहार हो या कोई खास खुशी, हर मौके की मिठास कान्हा स्वीट्स के साथ। पता नोट कर लीजिए,
1: शॉप नंबर AG F04, कैपिटल आर्केडिया, अलवर बाईपास इन फ्रंट ऑफ वेदांता फार्म, भिवाड़ी, राजस्थान।
2: मोहाली और गुड़गांव का डेंटल अनुभव अब भिवाड़ी में। आइए वी केयर डेंटल क्लिनिक इम्प्लांट सेंटर, जहां RCT, कैपिंग और डेंटल इम्प्लांट के एक्सपर्ट ट्रीटमेंट के साथ आपको मिलता है डॉक्टर रुकु सिंगला के 16 वर्षों के अनुभव और विशेषज्ञता का भरोसा। आर्मी और कॉर्पोरेट कर्मचारियों के लिए स्पेशल डिस्काउंट। पता, अपोजिट मैकडोनल्ड्स, JMK पेट क्लिनिक के पास, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉल करें 7814399374। वी केयर डेंटल, आपकी मुस्कान हमारा भरोसा।
1: क्या आपकी आँखों की रोशनी से जुड़ी कोई परेशानी है? क्या आप चश्मे से छुटकारा पाना चाहते हैं?
0: तो आइए आधुनिक सुविधाओं से युक्त मिश्री देवी आई हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी आई सेंटर।
1: पिछले 15 वर्षों से नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में भरोसेमंद सेवाएं, अब बहर रोड, नियम राणा और टपूकड़ा भिवाड़ी में।
0: यहाँ उपलब्ध है मोतियाबिंद, फेको, मल्टीफोकल एवं प्रीमियम लेंस, लेसिक लेजर, कॉर्निया, ग्लूकोमा और रेटिना उपचार एवं सर्जरी की आधुनिक सुविधाएं।
1: और अब दोनों आँखों का लेसिक लेजर उपचार आधुनिक तकनीक के साथ आपकी पहुंच में और उचित दरों पर।
0: बेहतर नेत्र उपचार, उचित खर्च और भरोसेमंद देखभाल के साथ चश्मे से आजादी की ओर बढ़ाइए अपना कदम। मिश्री देवी आई हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी आई सेंटर। संपर्क नंबर
1: 9783220043 या 01493294200। अब आपके शहर भिवाड़ी में साइकियाट्री एवं ऑर्थोपेडिक्स की नियमित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है ओजस हॉस्पिटल में।
0: मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितिका अग्रवाल द्वारा डिप्रेशन, नींद की समस्या, बेचैनी, घबराहट, मानसिक तनाव, स्किजोफ्रेनिया और OCD जैसी समस्याओं का उचित उपचार किया जाता है एवं काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध है।
1: वहीं हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेंद्र अग्रवाल द्वारा चोट, ट्रॉमा, फ्रैक्चर, घुटने एवं कमर का दर्द, लिगामेंट की चोट, गठिया और आर्थराइटिस जैसी हड्डी एवं जोड़ संबंधी समस्याओं का उपचार किया जाता है।
0: साथ ही सर्जरी, फिजियोथेरेपी और पेन मैनेजमेंट की सुविधा भी उपलब्ध है।
1: तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या को नजरअंदाज न करें, पहुंचिए ओजस हॉस्पिटल।
0: पता, नगीना गार्डन के पास, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी।
1: फोन करें 9521333591। ओजस हॉस्पिटल, बेहतर स्वास्थ्य की ओर एक कदम। अब आपके शहर धारूहेड़ा में ही मिल रही है आधुनिक और बेहतरीन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सुविधाएं। लोटस हॉस्पिटल, बेस्ट टैग सिटी, BPL फ्लैट के सामने धारूहेड़ा में, डॉक्टर अन्विका बंसल, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, 15 वर्ष से अधिक अनुभव के साथ, जो पहले से ही भिवाड़ी में अपनी सेवाएं दे रही थी, अब अपने नए लोटस हॉस्पिटल में OPD और इमरजेंसी सर्विस के लिए उपलब्ध हैं। इसके साथ ही यहाँ उपलब्ध है अनुभवी हड्डी रोग विशेषज्ञ। यहाँ घुटना बदलना, कुल्हा बदलना और रीढ़ से जुड़ी सभी बीमारी का इलाज होता है, और एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट और लैप्रोस्कोपिक जनरल सर्जन, जहाँ लेजर टेक्निक से बवासीर, भगंदर का इलाज लोटस हॉस्पिटल में मिलता है, तथा 24 घंटे आपातकालीन सुविधा, एडवांस्ड एक्सरे, लैबोरेटरी, फार्मेसी, अल्ट्रासाउंड सर्विस, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, AC प्राइवेट रूम की सुविधाएं उपलब्ध हैं। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आज ही विजिट करें लोटस हॉस्पिटल, बेस्ट टैग सिटी, BPL फ्लैट के सामने, धारूहेड़ा। संपर्क करें 01274415033।
3: भिवाड़ी का पहला ISO और NABH सर्टिफाइड श्री कृष्णा हॉस्पिटल, जिसमें मल्टी स्पेशलिस्ट OPD, 10 बेड का ICU, सबसे बड़ा मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 50 बेड का इंडोर, 24 आवर्स एम्बुलेंस, फार्मेसी और इमरजेंसी सेवाएं तथा लैब, डिजिटल एक्सरे जैसी सुविधाओं से लैस श्री कृष्णा हॉस्पिटल अधिकांश मल्टीनेशनल कंपनियों के मेडिकल कंसल्टेंसी एवं कैशलेस उपचार का एकमात्र सेंटर। श्री कृष्णा हॉस्पिटल, B14849 भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी, 8529113916, 7340013916। इस हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट और फिजिशियन की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
4: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
5: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
4: कान नाक गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
6: आपके हर खास समारोह को शानदार और यादगार बनाने के लिए आइए भाटोटिया टेंट हाउस एंड इवेंट ऑर्गेनाइजर।
7: सभी प्रकार के टेंट आइटम, शानदार डेकोरेशन और इंडोर आउटडोर कैटरिंग की बेहतरीन सुविधा, शादी, सगाई, जन्मदिन या किसी भी समारोह के लिए एक ही जगह पर पूरी व्यवस्था।
6: संपर्क करें हंस राज भाटोटिया, मोबाइल नंबर 9416347214।
7: और आपके खास समारोह के लिए शानदार राज विलास मैरिज एवं बैंक्वेट हॉल, शिवनगर पार्ट 2, पांचाल कॉलोनी, सीथल रोड, धारूहेड़ा, जिला रेवाड़ी, हरियाणा।
6: बाटोटिया टेंट हाउस और राज विलास मैरिज बैंक्वेट हॉल, आपके समारोह की पूरी तैयारी एक ही जगह।
8: अब भिलवाड़ी के शिवोहम हॉस्पिटल में पाएं एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं। यहां 25 बेड से लेस इंडोर, 6 बेड से लेस ICU, 2 बड़े ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजी लैब तथा अत्याधुनिक एक्सरे मशीनों के द्वारा एक्सरे सुविधा, तकनीकी मशीनों द्वारा जांच, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, एम्बुलेंस, सभी कैशलेस TPA सुविधाओं के साथ 14 साल से कम आयु की बच्चियों के लिए निशुल्क परामर्श, गायनेकोलॉजी, इनफर्टिलिटी, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नम्रता मेहता चतुर्वेदी व हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हेमंत चतुर्वेदी जैसे अनुभवी डॉक्टर से परामर्श सुविधा, जो कि पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में निरंतर अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। शिवोहम हॉस्पिटल, B4 भगत सिंह कॉलोनी, पुराने RTO ऑफिस के पास, भिवाड़ी। संपर्क 9799996778।
3: भिवाड़ी का पहला ISO और NABH सर्टिफाइड श्री कृष्णा हॉस्पिटल, जिसमें मल्टी स्पेशलिस्ट OPD, 10 बेड का ICU, सबसे बड़ा मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 50 बेड का इंडोर, 24 आवर्स एम्बुलेंस, फार्मेसी और इमरजेंसी सेवाएं तथा लैब, डिजिटल एक्सरे जैसी सुविधाओं से लैस श्री कृष्णा हॉस्पिटल अधिकांश मल्टीनेशनल कंपनियों के मेडिकल कंसल्टेंसी एवं कैशलेस उपचार का एकमात्र सेंटर। श्री कृष्णा हॉस्पिटल, B14849 भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी, 8529113916, 7340013916। इस हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट और फिजिशियन की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
6: क्या आपकी त्वचा, बाल या नाखून की समस्या बार बार परेशान कर रही है?
9: अब सही इलाज के लिए मिलिए डॉक्टर गौरव, एम्स से प्रशिक्षित त्वचा रोग विशेषज्ञ, SS हॉस्पिटल, भिवाड़ी में।
6: मुंहासे, पिगमेंटेशन, एलर्जी, हेयर फॉल से लेकर लेजर, केमिकल पील और बोटॉक्स जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध।
9: ECHS RGHS तथा NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल में सभी प्रमुख TPA मान्य।
6: SS हॉस्पिटल, भिवाड़ी, भरोसेमंद विशेषज्ञ से देखभाल। समय रोजाना शाम 4:30 से 6:30 तक, गुरुवार अवकाश।
10: पूजा, तुम्हारे फेस पर कितने पिंपल्स और धब्बे हो रहे हैं?
11: हाँ यार, और बाल भी हर दिन झड़ रहे हैं। कई बार दिल्ली गुरुग्राम में भी दिखा चुकी हूँ।
10: अरे पूजा, अब दिल्ली या गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपनी भिवाड़ी में है डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, जहाँ पर स्किन, हेयर एंड नेल्स की सभी बीमारियों का पूर्ण इलाज डॉक्टर सुचेता MD डर्मेटोलॉजी द्वारा किया जाता है, जो भिवाड़ी में अपनी सेवाएं दे रही है। इनके यहाँ लेजर हेयर रिमूवल, माइक्रो नीडलिंग, PRP, RF, अन्य सभी स्किन समस्याओं का समाधान विदेशी मशीनों व नई तकनीकों द्वारा किया जाता है। कॉल करें 6367551007। विजिट डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, A56 फर्स्ट फ्लोर, भगत सिंह कॉलोनी, बिहाइंड सुखम टावर, भिवाड़ी।
12: आपके सारे जरूरतों का बीमा एक ही जगह विधि एंटरप्राइजेज भिवाड़ी। स्वास्थ्य बीमा, वाहन बीमा, जीवन बीमा, फायर बीमा सब मिलेगा यहाँ। और हाँ, बीमा कराने पर खास ऑफर भी मिलेंगे। संपर्क करें चंद्रभान विधि एंटरप्राइजेज, रिको चौक भिवाड़ी, 9887066308।
13: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: आपनो देश आपनो रंग सब मिले आपनो बाजार के संग। जी हाँ, आपनो बाजार आपका कंप्लीट फैमिली स्टोर, जहाँ उत्तम क्वालिटी और वाजिब दामों के साथ आपको मिलता है किराना, ग्रोसरी आइटम, कॉस्मेटिक, हाउसकीपिंग, हाउसहोल्ड आइटम, गिफ्ट आइटम, क्रॉकरी, टॉयज एंड गेम्स। इन सभी आइटम के MRP दामों पर खास छूट। इतना ही नहीं, फ्री होम डिलीवरी की सुविधा भी है। इनके स्टोर अलवर बाईपास, थड़ा रोड, भिवाड़ी, कृष्ण मॉल, टपुकड़ा आशियाना विलेज सेंटर। संपर्क करें 9680870184 या फिर 7822091287।
1: अरे, प्लांट का तो सारा काम हो गया, अब LED लाइट कहाँ से खरीदें?
2: सर, क्या आपको नहीं पता है नेप LED लाइटिंग कंपनी इंडस्ट्रियल लाइटिंग जैसे फ्लड लाइट, हाईवे लाइट, स्ट्रीट लाइट आदि के साथ साथ सभी प्रकार की LED लाइट बनाती है, वो भी 2 साल की वारंटी के साथ। और इतना ही नहीं, वो इंडस्ट्रियल लाइटिंग कंसल्टेंट सर्विस भी फ्री देते हैं।
1: अरे वाह, इनसे संपर्क कैसे करें?
2: सर, इनका सेल्स ऑफिस एड्रेस JFF 22 कैपिटल हाई स्ट्रीट, फूलबाग चौक, भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए नेप LED लाइटिंग कंपनी से संपर्क करें 7988627064।
3: आपके हर खास समारोह को शानदार और यादगार बनाने के लिए आइए भाटोटिया टेंट हाउस एंड इवेंट ऑर्गेनाइजर।
4: सभी प्रकार के टेंट आइटम, शानदार डेकोरेशन और इंडोर आउटडोर कैटरिंग की बेहतरीन सुविधा, शादी, सगाई, जन्मदिन या किसी भी समारोह के लिए एक ही जगह पर पूरी व्यवस्था।
3: संपर्क करें हंस राज भाटोटिया, मोबाइल नंबर 9416347214।
4: और आपके खास समारोह के लिए शानदार राजविलास मैरिज एवं बैंक्वेट हॉल, शिवनगर पार्ट 2, पांचाल कॉलोनी, सीथल रोड, धारूहेड़ा, जिला रेवाड़ी, हरियाणा।
3: भाटोटिया टेंट हाउस और राजविलास मैरिज बैंक्वेट हॉल, आपके समारोह की पूरी तैयारी एक ही जगह। जब बात आपकी मुस्कान की हो तो समझौता क्यों, अब स्पेशलिस्ट डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं। आइए डेंटल एक्सपर्ट्स भिवाड़ी, भिवाड़ी का इकलौता डेंटल क्लिनिक, जहां पूरी टीम MDS स्पेशलिस्ट्स की है और जिन्हें 15 साल से अधिक का अनुभव है। डॉक्टर विनोद यादव, MDS ऑर्थोडोंटिस्ट, भिवाड़ी के एकमात्र ब्रेसेस स्पेशलिस्ट एंड इनविसलाइन प्रोवाइडर। इसके अलावा डेंटल इम्प्लांट्स और जटिल दांतों की समस्याओं का आधुनिक उपचार प्रदान करते हैं। साथ ही डॉक्टर ऋतु यादव, MDS एंडोडोंटिस्ट, रूट कैनाल, स्माइल डिजाइनिंग और फुल माउथ रिहेबिलिटेशन की विशेषज्ञ। डेंटल एक्सपर्ट्स, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट आशियाना आंगन, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 8824232823। डेंटल एक्सपर्ट्स, आपकी मुस्कान हमारी विशेषज्ञता।
4: भिवाड़ी वासियों, अब हर जरूरत की सर्विस सिर्फ एक ऐप पर। मैसन केयर लेकर आया है आपके लिए भरोसेमंद होम और प्रोफेशनल सर्विसेज।
3: बाथरूम डीप क्लीनिंग, किचन डीप क्लीनिंग, पूरे घर की सफाई, ऑफिस क्लीनिंग, जिम क्लीनिंग, कार क्लीनिंग, पानी की टंकी की सफाई, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ड्राइवर सर्विस, कैब बुकिंग और बहुत सारी अन्य सेवाएं, अब सब कुछ एक ही ऐप पर।
4: अभी मेस एन केयर ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे अपनी पसंद की सर्विस बुक करें।
3: मेस एन केयर, आपका घर हमारी जिम्मेदारी। बुकिंग के लिए अभी कॉल या व्हाट्सएप करें 8824106060।
5: फ्यूचर लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहें। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
6: गणेश स्टेशनर्स, बेटर देन द बेस्ट,
5: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा A to Z सामान। इसी के साथ यहां प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
6: गणेश स्टेशनर्स, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड, नियर हरी राम हॉस्पिटल, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।
7: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: मैं जयपुर जा रहा हूँ।
1: अच्छा, तो आते हुए जयपुर के मशहूर दूध लड्डू और प्याज कचौरी लेते आना।
0: अरे, दूध लड्डू और प्याज कचौरी के लिए जयपुर जाने का इंतजार क्यों करना? क्योंकि अब आपके शहर भिवाड़ी में अलवर बाईपास पर खुल चुका है कान्हा स्वीट्स।
1: जी हाँ, कान्हा स्वीट्स पर मिलते हैं स्वादिष्ट दूध लड्डू, प्याज कचौरी, समोसे किसी कलाकंद, रसमलाई, कुल्हड़ रबड़ी और सभी प्रकार की मिठाइयाँ।
0: बिल्कुल, हर मिठाई में स्वाद ऐसा कि एक बार खाएं तो दिल कहे एक और।
1: तो फिर आज मिठास हो जाए कान्हा स्वीट्स के साथ।
0: हाँ, परिवार हो या मेहमान, त्योहार हो या कोई खास खुशी, हर मौके की मिठास कान्हा स्वीट्स के साथ। पता नोट कर लीजिए,
1: शॉप नंबर A G F04, कैपिटल आर्केडिया, अलवर बाईपास इन फ्रंट ऑफ वेदांता फार्म, भिवाड़ी, राजस्थान।
2: मोहाली और गुड़गांव का डेंटल अनुभव अब भिवाड़ी में। आइए वी केयर डेंटल क्लिनिक इम्प्लांट सेंटर, जहां RCT, कैपिंग और डेंटल इम्प्लांट के एक्सपर्ट ट्रीटमेंट के साथ आपको मिलता है डॉक्टर रुकु सिंगला के 16 वर्षों के अनुभव और विशेषज्ञता का भरोसा। आर्मी और कॉर्पोरेट कर्मचारियों के लिए स्पेशल डिस्काउंट। पता, अपोजिट मैकडोनल्ड्स, JMK पेट क्लिनिक के पास, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉल करें 7814399374। वी केयर डेंटल, आपकी मुस्कान हमारा भरोसा।
1: क्या आपकी आँखों की रोशनी से जुड़ी कोई परेशानी है? क्या आप चश्मे से छुटकारा पाना चाहते हैं?
0: तो आइए आधुनिक सुविधाओं से युक्त मिश्री देवी आई हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी आई सेंटर।
1: पिछले 15 वर्षों से नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में भरोसेमंद सेवाएं, अब बाहर रोड, नियम राणा और टपुकड़ा भिवाड़ी में।
0: यहाँ उपलब्ध है मोतियाबिंद, फेको, मल्टीफोकल एवं प्रीमियम लेंस, लेसिक लेजर, कॉर्निया, ग्लूकोमा और रेटिना उपचार एवं सर्जरी की आधुनिक सुविधाएं।
1: और अब दोनों आँखों का लेसिक लेजर उपचार आधुनिक तकनीक के साथ आपकी पहुंच में और उचित दरों पर।
0: बेहतर नेत्र उपचार, उचित खर्च और भरोसेमंद देखभाल के साथ चश्मे से आजादी की ओर बढ़ाइए अपना कदम। मिश्री देवी आई हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी आई सेंटर। संपर्क नंबर
1: 9783220043 या 01493294200। अब आपके शहर भिवाड़ी में साइकियाट्री एवं ऑर्थोपेडिक्स की नियमित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है ओजस हॉस्पिटल में।
0: मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितिका अग्रवाल द्वारा डिप्रेशन, नींद की समस्या, बेचैनी, घबराहट, मानसिक तनाव, स्किजोफ्रेनिया और OCD जैसी समस्याओं का उचित उपचार किया जाता है एवं काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध है।
1: वहीं हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेंद्र अग्रवाल द्वारा चोट, ट्रॉमा, फ्रैक्चर, घुटने एवं कमर का दर्द, लिगामेंट की चोट, गठिया और आर्थराइटिस जैसी हड्डी एवं जोड़ संबंधी समस्याओं का उपचार किया जाता है।
0: साथ ही सर्जरी, फिजियोथेरेपी और पेन मैनेजमेंट की सुविधा भी उपलब्ध है।
1: तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या को नजरअंदाज न करें, पहुंचिए ओजस हॉस्पिटल।
0: पता, नगीना गार्डन के पास, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी।
1: फोन करें 9521333591। ओजस हॉस्पिटल, बेहतर स्वास्थ्य की ओर एक कदम। अब आपके शहर धारूहेड़ा में ही मिल रही है आधुनिक और बेहतरीन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सुविधाएं। लोटस हॉस्पिटल, बेस्ट टैक्स सिटी, BPL फ्लैट के सामने धारूहेड़ा में डॉक्टर अन्विका बंसल, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, 15 वर्ष से अधिक अनुभव के साथ, जो पहले से ही भिवाड़ी में अपनी सेवाएं दे रही थी, अब अपने नए लोटस हॉस्पिटल में OPD और इमरजेंसी सर्विस के लिए उपलब्ध है। इसके साथ ही यहाँ उपलब्ध है अनुभवी हड्डी रोग विशेषज्ञ। यहाँ घुटना बदलना, कुल्हा बदलना और रीढ़ से जुड़ी सभी बीमारी का इलाज होता है, और एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट और लैप्रोस्कोपिक जनरल सर्जन, जहां लेजर टेक्निक से बवासीर, भगंदर का इलाज लोटस हॉस्पिटल में मिलता है, तथा 24 घंटे आपातकालीन सुविधा, एडवांस्ड एक्सरे, लैबोरेटरी, फार्मेसी, अल्ट्रासाउंड सर्विस, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, AC प्राइवेट रूम की सुविधाएं उपलब्ध हैं। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आज ही विजिट करें लोटस हॉस्पिटल, बेस्ट टैक्स सिटी, BPL फ्लैट के सामने धारूहेड़ा। संपर्क करें 01274415033।
3: भिवाड़ी का पहला ISO और NABH सर्टिफाइड श्री कृष्णा हॉस्पिटल, जिसमें मल्टी स्पेशलिस्ट OPD, 10 बेड का ICU, सबसे बड़ा मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 50 बेड का इंडोर, 24 आवर्स एम्बुलेंस, फार्मेसी और इमरजेंसी सेवाएं तथा लैब, डिजिटल एक्सरे जैसी सुविधाओं से लैस श्री कृष्णा हॉस्पिटल अधिकांश मल्टीनेशनल कंपनियों के मेडिकल कंसल्टेंसी एवं कैशलेस उपचार का एकमात्र सेंटर। श्री कृष्णा हॉस्पिटल, B14849 भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी, 8529113916, 7340013916। इस हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट और फिजिशियन की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
4: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
5: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे, किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
4: कान नाक गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
6: आपके हर खास समारोह को शानदार और यादगार बनाने के लिए आइए भाटोटिया टेंट हाउस एंड इवेंट ऑर्गेनाइजर।
7: सभी प्रकार के टेंट आइटम, शानदार डेकोरेशन और इंडोर आउटडोर कैटरिंग की बेहतरीन सुविधा, शादी, सगाई, जन्मदिन या किसी भी समारोह के लिए एक ही जगह पर पूरी व्यवस्था।
6: संपर्क करें हंसराज भाटोटिया, मोबाइल नंबर 9416347214।
7: और आपके खास समारोह के लिए शानदार राजविलास मैरिज एवं बैंक्वेट हॉल, शिवनगर पार्ट 2, पांचाल कॉलोनी, सीथल रोड, धारूहेड़ा, जिला रेवाड़ी, हरियाणा।
6: बाटोटिया टेंट हाउस और राजविलास मैरिज बैंक्वेट हॉल, आपके समारोह की पूरी तैयारी एक ही जगह।
8: औद्योगिक क्षेत्र सारे खुद करौली, बंदापुर, खुशखेड़ा व चौपानकी में 16 औद्योगिक व 2 वेयर हाउस भूखंडों को ई नीलामी के माध्यम से बेचान किया जा रहा है। इन भूखंडों के लिए अमानत राशि दिनांक 9/10/2026 समय 6 बजे तक जमा कराकर बिड लगा सकते हैं। बिड लगाने की अंतिम तिथि 14/10/2026 समय 5 बजे तक है। इसके साथ ही औद्योगिक क्षेत्र सलारपुर व पथरेड़ी में 43 भूखंडों को प्रत्यक्ष आवंटन योजना के माध्यम से बेचान किया जा रहा है। इन भूखंडों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 12/10/2026 समय 6 बजे तक है। अंतिम जानकारी के लिए रिको की वेबसाइट www.riico.co.in यानी www.rico.co.in पर एवं रिको इकाई कार्यालय भिवाड़ी, द्वितीय रिको रेस्ट हाउस रोड, भिवाड़ी में संपर्क कर सकते हैं।
9: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: भिवाड़ी का भरोसा वर्षों से आपकी सेवा में। सिटी नर्सिंग होम सदर मार्केट भिवाड़ी, औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी का पहला नर्सिंग होम NABH द्वारा प्रमाणित।
1: यहाँ उपलब्ध है 2 आधुनिक ICU, अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, दूरबीन सर्जरी की सुविधा तथा अधिकांश मेडिक्लेम कंपनियों की कैशलेस सुविधा, डायबिटीज के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर कौशल, मनोरोग परामर्श हेतु डॉक्टर कनिष्का तथा मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर रूप सिंह की सेवाएं उपलब्ध, अनुभवी डॉक्टर, आधुनिक सुविधाएं और मरीजों की समर्पित देखभाल।
0: सिटी नर्सिंग होम सदर मार्केट भिवाड़ी, स्वास्थ्य का भरोसा आपके अपने शहर में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सिटी नर्सिंग होम भिवाड़ी।
2: अरे कहाँ जा रही हो?
3: मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए अंशुल ज्वेलर्स।
2: अच्छा, पर अंशुल ज्वेलर्स ही क्यों?
3: अंशुल ज्वेलर्स के पास है सोने, चांदी और हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन, वो भी BIS के 6 अंकों वाले हॉलमार्क HUID के साथ। और तो और, इनकी ज्वेलरी को हम भारत सरकार द्वारा चलाए गए BIS केयर ऐप के वेरीफाइड HUID फीचर से आभूषणों की शुद्धता का प्रमाण देख सकते हैं।
2: जी हाँ, खरे आभूषणों की प्रामाणिकता जिसके साथ बढ़ेगी आपकी सुंदरता। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर। हमारा पता शॉप नंबर 7 गणपति मॉल समतल मोड़ भिवाड़ी राजस्थान, या मेन बाजार नजदीक हनुमान मंदिर टावलू हरियाणा। संपर्क करें 9995336111 या फिर 9354898521 पर। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर।
4: कभी भी इमरजेंसी हो या सिर्फ एक छोटी सी चेकअप की जरूरत हो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा और भिवाड़ी में आपका अपना हॉस्पिटल है। 24 घंटे इमरजेंसी, AC प्राइवेट रूम्स, वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर, डिजिटल एक्सरे, क्लिनिकल लैब, TMT, ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी, फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी, स्किन प्रिक एंड ब्लड एलर्जी टेस्ट, एलर्जी का जड़ से इलाज। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं मेडिसिन, सर्जरी, ENT, हेड एंड नेक सर्जरी, ऑब्स एंड गाइनी, ऑर्थोपीडिक्स, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कैशलेस फैसिलिटी, सभी TPA के साथ। तो अब टेंशन मत लो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा, प्लॉट नंबर 5, सेक्टर 6 और भिवाड़ी।

0: B83 भगत सिंह कॉलोनी। बस एक कॉल या एक विजिट। नो है 8607274999।
1: भारत अल्ट्रासाउंड एवं डायग्नोस्टिक सेंटर पर अत्याधुनिक MRI, 32 स्लाइस 3D CT स्कैन, 5D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर डिजिटल एक्सरे DR, TMT, EEG व फुल्ली कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब प्रतिदिन उपलब्ध है।
2: भारत डायग्नोस्टिक्स द्वारा गत 20 वर्षों से MD रेडियोलॉजिस्ट PGI चंडीगढ़ में प्रशिक्षित अनुभवी डॉक्टर्स द्वारा सभी जांचें की जा रही हैं।
1: भारत डायग्नोस्टिक्स पर 5D अल्ट्रासाउंड मशीन द्वारा लेवल 1 एंड 2 फीटल अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इको कार्डियोग्राफी, लिवर फाइब्रो स्कैन व 3D CT स्कैन मशीन पर एंजियोग्राफी, यूरोग्राफी व एंटेरोग्राफी की जांच भी की जाती है। 1/57-58 राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, सेंट्रल मार्केट के पास, भिवाड़ी। कॉल 9351004500।
3: दूसरी ब्रांच A50 भगत सिंह कॉलोनी भिवाड़ी। कॉल 8058304500।
4: श्रीराम इंडस्ट्रीज आर्मर जैन भारत में मेक इन इंडिया पहल के तहत विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाले उत्पादों के निर्माण में एक भरोसेमंद नाम। यहाँ बनते हैं फायर रेटेड और नॉन फायर रेटेड डोर्स, मोटराइज्ड और मैनुअल गेट्स, जनरल पर्पस डोर्स, एक्सेस डोर्स, डॉक लेवलर, फायर हॉज कैबिनेट्स और आपकी जरूरत के मुताबिक कस्टमाइज्ड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस। BIS, CBRI और NABL सर्टिफाइड वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स उचित कीमत पर। आर्मर जैन आपको देता है वादा गुणवत्ता, सुरक्षा और विश्वास का। संपर्क करें 7014735108। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.armorzain.co .in। आर्मर जैन, जब बात हो गुणवत्ता और भरोसे की।
5: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: क्या कर रही है?
1: ऑनलाइन बुकिंग देख रही हूँ, जयपुर जाना है।
0: फिर से? अभी तो गई थी।
1: हाँ, फिर से जाना है।
0: तू अपनी गाड़ी क्यों नहीं ले लेती?
1: गाड़ी नॉट इन बजट।
0: अरे गांधी मोटर्स है ना।
1: गांधी मोटर्स?
0: हाँ गांधी मोटर्स। गांधी मोटर्स कार सेल और परचेज के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर हर तरह की गाड़ियाँ बहुत अच्छी कीमत पे मिलती हैं।
1: तो कब चले?
0: अरे इसमें सोचना कैसा, अभी चलना। गाड़ियों के सेल और परचेज के लिए आज ही संपर्क करें।
2: हमारा पता है शॉप नंबर S16 एवलॉन रॉयल प्लाजा अल्बर बाईपास रोड भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9785980000 या फिर 8740000144 पर।
3: भिवाड़ी में 27 वर्षों से सेवारत, भरोसेमंद 24 घंटे इलाज हेतु गोपीनाथ अस्पताल, ISO तथा NABH मान्यता एवं राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मल्टी स्पेशलिटी सेंट्रल AC OPD, 50 बेड की सुविधा से युक्त गोपीनाथ हॉस्पिटल, अत्याधुनिक 3 ऑपरेशन थिएटर, 7 बेड ICU, 2 जीवन रक्षक एम्बुलेंस, डिजिटल एक्सरे, ऑर्थोपेडिक सर्जन, फिजिशियन तथा लेडी डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा से युक्त गोपीनाथ अस्पताल। यहाँ नेफ्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, डायबिटोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट की नियमित OPD भी उपलब्ध है। लगभग सभी TPA कैशलेस सुविधा के साथ तथा भिवाड़ी की व आसपास की औद्योगिक इकाइयों के बीमा कंपनियां भी पैनल पर हैं। पता 226 इंडस्ट्रियल एरिया सदर बाजार के पीछे गोपीनाथ रोड भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 01493619563 एंड 9784333863।
4: क्या आप बिजली के बिल से परेशान हैं? क्या आप जानते हैं सोलर एनर्जी से आप बिजली के बिल से आजादी पा सकते हैं? जी हाँ, अपने घर, ऑफिस और फैक्ट्री की छत पर सोलर पैनल लगाएं और भारी बिजली के बिल से मुक्ति पाएं। सोलर एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको 30% तक रिटर्न देता है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9610255584। ग्रीन रूट्स रिन्यूएबल एनर्जी।
5: आपकी आंखें हैं अनमोल, आपकी आंखों को चाहिए बेहतर देखभाल, तो आइए गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स भिवाड़ी।
6: यहाँ मिलते हैं सभी ब्रांडेड कंपनियों के स्टाइलिश फ्रेम और हाई क्वालिटी लेंस। Ray-Ban, Vogue, टॉमी हिलफिगर, ओकेली, प्रदा, जीस, एसिलोर क्रिजाल, विजन आर एक्स और भी कई नेशनल व इंटरनेशनल ब्रांड्स।
5: साथ ही कॉन्टैक्ट लेंस, लो विजन क्लिनिक, मायोपिया क्लिनिक, विजन थेरेपी और आधुनिक मशीनों द्वारा कंप्यूटरीकृत आई एग्जामिनेशन, प्रशिक्षित ऑप्टोमेट्रिस्ट की पूरी टीम।
6: भिवाड़ी में सन 2006 से भरोसे का नाम गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स।
5: गणपति मॉल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास, समतल चौक भिवाड़ी और अशियाना आंगन के सामने BDI सोसाइटी के पास अलवर बाईपास रोड भिवाड़ी।
7: अपॉइंटमेंट या जानकारी के लिए अभी कॉल करें 9636061776 या 9928929309।
8: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है, कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है, और इन्हीं श्रृंगार को सवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, एक से एक उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A, आशियाना आंगन प्लाजा, नियर मैकडॉनल्ड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट करें 01493493222 या फिर 9034969731 पर। ऐसे डिजाइन्स जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्स ही आए।
9: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: मैं जयपुर जा रहा हूँ।
1: अच्छा, तो आते हुए जयपुर के मशहूर दूध लड्डू और प्याज कचौरी लेते आना।
0: अरे, दूध लड्डू और प्याज कचौरी के लिए जयपुर जाने का इंतजार क्यों करना, क्योंकि अब आपके शहर भिवाड़ी में अलवर बाईपास पर खुल चुका है कान्हा स्वीट्स।
1: जी हाँ, कान्हा स्वीट्स पर मिलते हैं स्वादिष्ट दूध लड्डू, प्याज कचौरी, समोसे किसी कलाकंद, रसमलाई, कुल्हड़ रबड़ी और सभी प्रकार की मिठाइयाँ।
0: बिल्कुल, हर मिठाई में स्वाद ऐसा कि एक बार खाएं तो दिल कहे एक और।
1: तो फिर आज मिठास हो जाए कान्हा स्वीट्स के साथ।
0: हाँ, परिवार हो या मेहमान, त्योहार हो या कोई खास खुशी, हर मौके की मिठास कान्हा स्वीट्स के साथ। पता नोट कर लीजिए,
1: शॉप नंबर AG F04, कैपिटल आर्केडिया, अलवर बाईपास इन फ्रंट ऑफ वेदांता फार्म, भिवाड़ी, राजस्थान।
2: मोहाली और गुड़गांव का डेंटल अनुभव अब भिवाड़ी में। आइए वी केयर डेंटल क्लिनिक इम्प्लांट सेंटर, जहां RCT, कैपिंग और डेंटल इम्प्लांट के एक्सपर्ट ट्रीटमेंट के साथ आपको मिलता है डॉक्टर रुकु सिंगला के 16 वर्षों के अनुभव और विशेषज्ञता का भरोसा। आर्मी और कॉर्पोरेट कर्मचारियों के लिए स्पेशल डिस्काउंट। पता, अपोजिट मैकडोनल्ड्स, JMK पेट क्लिनिक के पास, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉल करें 7814399374। वी केयर डेंटल, आपकी मुस्कान हमारा भरोसा।
1: क्या आपकी आँखों की रोशनी से जुड़ी कोई परेशानी है? क्या आप चश्मे से छुटकारा पाना चाहते हैं?
0: तो आइए आधुनिक सुविधाओं से युक्त मिश्री देवी आई हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी आई सेंटर।
1: पिछले 15 वर्षों से नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में भरोसेमंद सेवाएं, अब बाहर रोड, नियम राणा और टपुकड़ा भिवाड़ी में।
0: यहाँ उपलब्ध है मोतियाबिंद, फेको, मल्टीफोकल एवं प्रीमियम लेंस, लेसिक लेजर, कॉर्निया, ग्लूकोमा और रेटिना उपचार एवं सर्जरी की आधुनिक सुविधाएं।
1: और अब दोनों आँखों का लेसिक लेजर उपचार आधुनिक तकनीक के साथ आपकी पहुँच में और उचित दरों पर।
0: बेहतर नेत्र उपचार, उचित खर्च और भरोसेमंद देखभाल के साथ चश्मे से आजादी की ओर बढ़ाइए अपना कदम। मिश्री देवी आई हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी आई सेंटर। संपर्क नंबर
1: 9783220043 या 01493294200। अब आपके शहर भिवाड़ी में साइकियाट्री एवं ऑर्थोपेडिक्स की नियमित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है ओजस हॉस्पिटल में।
0: मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितिका अग्रवाल द्वारा डिप्रेशन, नींद की समस्या, बेचैनी, घबराहट, मानसिक तनाव, स्किजोफ्रेनिया और OCD जैसी समस्याओं का उचित उपचार किया जाता है एवं काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध है।
1: वहीं हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेंद्र अग्रवाल द्वारा चोट, ट्रॉमा, फ्रैक्चर, घुटने एवं कमर का दर्द, लिगामेंट की चोट, गठिया और आर्थराइटिस जैसी हड्डी एवं जोड़ संबंधी समस्याओं का उपचार किया जाता है।
0: साथ ही सर्जरी, फिजियोथेरेपी और पेन मैनेजमेंट की सुविधा भी उपलब्ध है।
1: तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या को नजरअंदाज न करें, पहुंचिए ओजस हॉस्पिटल।
0: पता, नगीना गार्डन के पास, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी।
1: फोन करें 9521333591। ओजस हॉस्पिटल, बेहतर स्वास्थ्य की ओर एक कदम। अब आपके शहर धारूहेड़ा में ही मिल रही है आधुनिक और बेहतरीन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सुविधाएं। लोटस हॉस्पिटल, बेस्ट टैक्स सिटी, BPL फ्लैट के सामने धारूहेड़ा में डॉक्टर अन्विका बंसल, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, 15 वर्ष से अधिक अनुभव के साथ, जो पहले से ही भिवाड़ी में अपनी सेवाएं दे रही थी, अब अपने नए लोटस हॉस्पिटल में OPD और इमरजेंसी सर्विस के लिए उपलब्ध हैं। इसके साथ ही यहां उपलब्ध है अनुभवी हड्डी रोग विशेषज्ञ। यहां घुटना बदलना, कुल्हा बदलना और रीढ़ से जुड़ी सभी बीमारी का इलाज होता है, और एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट और लैप्रोस्कोपिक जनरल सर्जन, जहां लेजर टेक्निक से बवासीर, भगंदर का इलाज लोटस हॉस्पिटल में मिलता है, तथा 24 घंटे आपातकालीन सुविधा, एडवांस्ड एक्सरे, लैबोरेटरी, फार्मेसी, अल्ट्रासाउंड सर्विस, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, AC प्राइवेट रूम की सुविधाएं उपलब्ध हैं। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आज ही विजिट करें लोटस हॉस्पिटल, बेस्ट सिटी, BPL फ्लैट के सामने धारूहेड़ा। संपर्क करें 01274415033।
3: भिवाड़ी का पहला ISO और NABH सर्टिफाइड श्री कृष्णा हॉस्पिटल, जिसमें मल्टी स्पेशलिस्ट OPD, 10 बेड का ICU, सबसे बड़ा मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 50 बेड का इंडोर, 24 आवर्स एम्बुलेंस, फार्मेसी और इमरजेंसी सेवाएं, तथा लैब, डिजिटल एक्सरे जैसी सुविधाओं से लैस श्री कृष्णा हॉस्पिटल अधिकांश मल्टीनेशनल कंपनियों कंपनियों के मेडिकल कंसल्टेंसी एवं कैशलेस उपचार का एकमात्र सेंटर श्री कृष्णा हॉस्पिटल B14849 भगत सिंह कॉलोनी भिवाड़ी 8529113916 7340013916। इस हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट गायनोकोलॉजिस्ट ENT स्पेशलिस्ट और फिजिशियन की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
4: विजय हॉस्पिटल डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
5: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
4: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
6: आपके हर खास समारोह को शानदार और यादगार बनाने के लिए आइए भाटोटिया टेंट हाउस एंड इवेंट ऑर्गेनाइजर।
7: सभी प्रकार के टेंट आइटम, शानदार डेकोरेशन और इंडोर आउटडोर कैटरिंग की बेहतरीन सुविधा, शादी सगाई जन्मदिन या किसी भी समारोह के लिए एक ही जगह पर पूरी व्यवस्था।
6: संपर्क करें हंसराज भाटोटिया, मोबाइल नंबर 9416347214।
7: और आपके खास समारोह के लिए शानदार राजविलास मैरिज एवं बैंक्वेट हॉल, शिवनगर पार्ट 2, पांचाल कॉलोनी, सीथल रोड, धारूहेड़ा, जिला रेवाड़ी, हरियाणा।
6: भाटोटिया टेंट हाउस और राजविलास मैरिज बैंक्वेट हॉल, आपके समारोह की पूरी तैयारी एक ही जगह।
4: विजय हॉस्पिटल डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
5: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
4: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
6: जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी आँखों का NABH मान्यता प्राप्त सुपर स्पेशलिटी आँखों का हॉस्पिटल आपके शहर भिवाड़ी में। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी आपको प्रदान करता है विश्व स्तरीय आँखों की देखभाल।
7: हमारे सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल में आपको मिलेगी अनुभवी डॉक्टरों, आई सर्जनों की विशेषज्ञ टीम, पूर्णतः मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर MICS टॉपिकल फैको तकनीक से कैटरेक्ट, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेजर से ऑपरेशन बिना इंजेक्शन और टांके,
6: रेटिना आंख का पर्दा, ग्लूकोमा, काला मोतियाबिंद का उन्नत इलाज, बच्चों की आंखों का इलाज, हमारे पास सभी इंश्योरेंस और TPA पैनल उपलब्ध हैं। निशुल्क कैशलेस इलाज का लाभ उठाएं।
7: आज ही हमें सेवा का मौका दें। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भगत सिंह कॉलोनी अलवर बाईपास हरीश बेकरी के पास भिवाड़ी।
6: संपर्क करें 7424830174। आज ही अपनी आँखों का इलाज कराएं और पाएं एक उज्जला भविष्य। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी।
8: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं कैशलेस सर्विस के लिए, कहां मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
9: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहां मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंड मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार एसी वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
10: एकता मोटर्स अलवर बाईपास रोड नियर बाय थड़ा मोड़ भिवाड़ी। फॉर इन्फॉर्मेशन कॉल 9799278900।
11: न्यू गर्ल्स सुपर स्टोर, जहाँ मिलते हैं ग्रोसरीज, ड्राई फ्रूट्स, कॉस्मेटिक्स आइटम और सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स। बजट की दुकान, MRP की छुट्टी, आपका फायदा हमारा वादा। अब वक्त है MRP को कहें बाय बाय। कॉन्टेक्ट करें 7413099952 पर अलवर बाईपास रोड नियर मार्बल मार्केट भिवाड़ी।
12: राहुल, इंडस्ट्री प्लान तो बढ़िया है पर इस बार अपनी फैक्ट्री के इलेक्ट्रिकल्स पर एक्स्ट्रा फोकस रखना।
13: डोंट वरी सर, इंडस्ट्री का सारा इलेक्ट्रिकल्स खंडेलवाल एजेंसी से आएगा। ये NCR का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस है, जहां हमें पैनल, स्विच गियर, मोटर ड्राइव, इंडस्ट्रियल लाइटनिंग और वायर एंड केबल में 30 से ज्यादा मल्टीनेशनल ब्रांड ऑप्शंस मिल जाएंगे।
14: खंडेलवाल एजेंसीज, NCR का लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस इन भिवाड़ी। आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: मैं जयपुर जा रहा हूँ।
1: अच्छा, तो आते हुए जयपुर के मशहूर दूध लड्डू और प्याज कचौरी लेते आना।
0: अरे, दूध लड्डू और प्याज कचौरी के लिए जयपुर जाने का इंतजार क्यों करना, क्योंकि अब आपके शहर भिवाड़ी में अलवर बाईपास पर खुल चुका है कान्हा स्वीट्स।
1: जी हाँ, कान्हा स्वीट्स पर मिलते हैं स्वादिष्ट दूध लड्डू, प्याज कचौरी, समोसे किसी कलाकंद, रसमलाई, कुल्हड़ रबड़ी और सभी प्रकार की मिठाइयाँ।
0: बिल्कुल, हर मिठाई में स्वाद ऐसा कि एक बार खाएं तो दिल कहे एक और।
1: तो फिर आज मिठास हो जाए कान्हा स्वीट्स के साथ।
0: हाँ, परिवार हो या मेहमान, त्योहार हो या कोई खास खुशी, हर मौके की मिठास कान्हा स्वीट्स के साथ। पता नोट कर लीजिए,
1: शॉप नंबर A GF04, कैपिटल आर्केडिया, अलवर बाईपास इन फ्रंट ऑफ वेदांता फार्म, भिवाड़ी, राजस्थान।
2: मोहाली और गुड़गांव का डेंटल अनुभव अब भिवाड़ी में। आइए वी केयर डेंटल क्लिनिक इम्प्लांट सेंटर, जहां RCT, कैपिंग और डेंटल इम्प्लांट के एक्सपर्ट ट्रीटमेंट के साथ आपको मिलता है डॉक्टर रुकु सिंगला के 16 वर्षों के अनुभव और विशेषज्ञता का भरोसा। आर्मी और कॉर्पोरेट कर्मचारियों के लिए स्पेशल डिस्काउंट। पता, अपोजिट मैकडोनल्ड्स, JMK पेट क्लिनिक के पास, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉल करें 7814399374। वी केयर डेंटल, आपकी मुस्कान हमारा भरोसा।
1: क्या आपकी आँखों की रोशनी से जुड़ी कोई परेशानी है? क्या आप चश्मे से छुटकारा पाना चाहते हैं?
0: तो आइए आधुनिक सुविधाओं से युक्त मिश्री देवी आई हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी आई सेंटर।
1: पिछले 15 वर्षों से नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में भरोसेमंद सेवाएं, अब बाहर रोड, नियम राणा और टपुकड़ा भिवाड़ी में।
0: यहाँ उपलब्ध हैं मोतियाबिंद, फेको, मल्टीफोकल एवं प्रीमियम लेंस, लेसिक लेजर, कॉर्निया, ग्लूकोमा और रेटिना उपचार एवं सर्जरी की आधुनिक सुविधाएं।
1: और अब दोनों आंखों का लेसिक लेजर उपचार आधुनिक तकनीक के साथ आपकी पहुंच में और उचित दरों पर।
0: बेहतर नेत्र उपचार, उचित खर्च और भरोसेमंद देखभाल के साथ चश्मे से आजादी की ओर बढ़ाइए अपना कदम। मिश्री देवी आई हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी आई सेंटर। संपर्क नंबर
1: 9783220043 या 01493294200। अब आपके शहर भिवाड़ी में साइकियाट्री एवं ऑर्थोपेडिक्स की नियमित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है ओजस हॉस्पिटल में।
0: मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितिका अग्रवाल द्वारा डिप्रेशन, नींद की समस्या, बेचैनी, घबराहट, मानसिक तनाव, स्किजोफ्रेनिया और OCD जैसी समस्याओं का उचित उपचार किया जाता है एवं काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध है।
1: वहीं हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेंद्र अग्रवाल द्वारा चोट, ट्रॉमा, फ्रैक्चर, घुटने एवं कमर का दर्द, लिगामेंट की चोट, गठिया और आर्थराइटिस जैसी हड्डी एवं जोड़ संबंधी समस्याओं का उपचार किया जाता है।
0: साथ ही सर्जरी, फिजियोथेरेपी और पेन मैनेजमेंट की सुविधा भी उपलब्ध है।
1: तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या को नजरअंदाज न करें, पहुंचिए ओजस हॉस्पिटल।
0: पता, नगीना गार्डन के पास, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी।
1: फोन करें 9521333591। ओजस हॉस्पिटल, बेहतर स्वास्थ्य की ओर एक कदम। अब आपके शहर धारूहेड़ा में ही मिल रही है आधुनिक और बेहतरीन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सुविधाएं। लोटस हॉस्पिटल, बेस्ट टैक्स सिटी, BPL फ्लैट के सामने धारूहेड़ा में डॉक्टर अन्विका बंसल, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, 15 वर्ष से अधिक अनुभव के साथ, जो पहले से ही भिवाड़ी में अपनी सेवाएं दे रही थी, अब अपने नए लोटस हॉस्पिटल में OPD और इमरजेंसी सर्विस के लिए उपलब्ध है। इसके साथ ही यहाँ उपलब्ध है अनुभवी हड्डी रोग विशेषज्ञ। यहाँ घुटना बदलना, कुल्हा बदलना और रीढ़ से जुड़ी सभी बीमारी का इलाज होता है, और एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट और लैप्रोस्कोपिक जनरल सर्जन, जहां लेजर टेक्निक से बवासीर, भगंदर का इलाज लोटस हॉस्पिटल में मिलता है, तथा 24 घंटे आपातकालीन सुविधा, एडवांस्ड एक्सरे, लैबोरेटरी, फार्मेसी, अल्ट्रासाउंड सर्विस, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, AC प्राइवेट रूम की सुविधाएं उपलब्ध हैं। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आज ही विजिट करें लोटस हॉस्पिटल, बेस्ट सिटी, BPL फ्लैट के सामने धारूहेड़ा। संपर्क करें 01274415033।
3: भिवाड़ी का पहला ISO और NABH सर्टिफाइड श्री कृष्णा हॉस्पिटल, जिसमें मल्टी स्पेशलिस्ट OPD, 10 बेड का ICU, सबसे बड़ा मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 50 बेड का इंडोर, 24 आवर्स एम्बुलेंस, फार्मेसी और इमरजेंसी सेवाएं तथा लैब, डिजिटल एक्सरे जैसी सुविधाओं से लैस श्री कृष्णा हॉस्पिटल अधिकांश मल्टीनेशनल कंपनियों के मेडिकल कंसल्टेंसी एवं कैशलेस उपचार का एकमात्र सेंटर। श्री कृष्णा हॉस्पिटल, B14849 भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी, 8529113916, 7340013916। इस हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट और फिजिशियन की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
4: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
5: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे, किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
4: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
6: आपके हर खास समारोह को शानदार और यादगार बनाने के लिए आइए भाटोटिया टेंट हाउस एंड इवेंट ऑर्गेनाइजर।
7: सभी प्रकार के टेंट आइटम, शानदार डेकोरेशन और इंडोर आउटडोर कैटरिंग की बेहतरीन सुविधा, शादी, सगाई, जन्मदिन या किसी भी समारोह के लिए एक ही जगह पर पूरी व्यवस्था।
6: संपर्क करें हंसराज भाटोटिया, मोबाइल नंबर 9416347214।
7: और आपके खास समारोह के लिए शानदार राजविलास मैरिज एवं बैंक्वेट हॉल, शिवनगर पार्ट 2, पांचाल कॉलोनी, सीथल रोड, धारूहेड़ा, जिला रेवाड़ी, हरियाणा।
6: भाटोटिया टेंट हाउस और राजविलास मैरिज बैंक्वेट हॉल, आपके समारोह की पूरी तैयारी एक ही जगह। अरे यार, आज शाम पार्टी करें?
8: नहीं यार, आज डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाना था।
6: गुरुग्राम? इतनी दूर?
8: हाँ यार, वहीं तो बेस्ट हाइजीन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और पेनलेस ट्रीटमेंट मिलता है।
6: ये बात पहले सही थी पर अब नहीं।
8: मतलब?
6: गुरुग्राम के ही एक्सपीरियंस्ड डेंटल एक्सपर्ट डॉक्टर जितिन टक्कर पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ मिलता है प्रीमियम सेटअप, एडवांस टेक्नोलॉजी, कंप्लीट हाइजीन और 100% पेनलेस डेंटल ट्रीटमेंट। और सबसे अच्छी बात, चार्जेस दिल्ली और गुरुग्राम से काफी कम।
8: तो फिर दूर जाने का टेंशन खत्म।
6: बिल्कुल, अब एक्सपीरियंस, भरोसा और क्वालिटी सब कुछ घर के पास भिवाड़ी में। आइए 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, ए ब्लॉक, A140 भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। आज ही संपर्क करें डॉक्टर जितिन टक्कर 9871122135। 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, बेहतर चॉइसेस, बेहतर मुस्कान। अजी सुनते हो, मेरा फोन टूट गया है।
8: अरे भाग्यवान, सुनो, घबराओ नहीं, खंडेलवाल मोबाइल भिवाड़ी लाया है 0% डाउन पेमेंट पर। मोबाइल फोन 9784960000। और सुनो, ओप्पो ने लॉन्च किया है अभी रेनो 15 सी कम दामों में बजाज फाइनेंस के साथ 0% ब्याज, 10% कैश बैक के साथ, प्लस ट्रॉली बैग, 0 डाउन पेमेंट। और बैटरी से हो परेशान तो रियलमी ने लॉन्च किया है अपना एक नया मॉडल 10,000 mAh बैटरी के साथ। अभी जाइए खंडेलवाल मोबाइल पर ढेर सारे गिफ्ट के साथ, नीलम चौक। चिंता क्यों करते हो, बजाज फाइनेंस है ना अपने साथ। 9784960000 और 9828288666।
9: राहुल यार, मैंने नोएडा से जॉब स्विच कर दिया है, अब सोच रही हूँ भिवाड़ी में रेंटल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा।
10: चिंता की कोई बात नहीं, मेगा एयर कंडीशनर्स एंड इलेक्ट्रिक सर्विस है ना, ये पूरे दिल्ली NCR में अपनी रेंटल सर्विस दे रहे हैं। और इनके यहाँ टावर AC, विंडो AC, स्प्लिट AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड LED TV सभी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं।
9: लेकिन इनकी सर्विस भिवाड़ी में तो बहुत महंगी होगी ना।
10: बिल्कुल भी नहीं, आपको ये सर्विस सेम रेट पर मिलने वाली है। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9899247102 पर या फिर विजिट करें www.maces.in पर।
11: ये क्या, अभी भी डीजल कार चला रहे हो? अब समय है स्मार्ट फ्यूल पर स्विच करने का, वो भी ज्यादा बचत के साथ।
12: पेश है विक्टोरिस SCNG। ये स्मार्ट है क्योंकि ये देता है 27.02 किलोमीटर पर KG का शानदार माइलेज, और इसका अंडरबॉडी CNG टैंक बूट स्पेस पर कोई समझौता नहीं करता। ज्यादा बचत भी, क्योंकि अपनी पुरानी डीजल कार के एक्सचेंज पर पाएं 50,000 रुपए तक का फायदा। तो देर किस बात की, आज ही बुक करें, अपनी नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम पर जाएं। नियम बशर्ते लागू।
13: विजय फॉर्चून कार्स भिवाड़ी।
14: मॉडर्न अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर भिवाड़ी पर अनुभवी रेडियोलॉजिस्ट व पैथोलॉजिस्ट द्वारा अत्याधुनिक मशीनों से MRI, 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 4D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इको कार्डियोग्राफी, डिजिटल एक्सरे, IVP, बैरियम, HSG, डिजिटल OPG, DMT, ECG, EEG, BFT, मैमोग्राफी व फुली एडवांस कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब की सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध है।
15: नियर सरकारी हॉस्पिटल 135 भिवाड़ी, दूसरी ब्रांच, मॉडर्न डायग्नोस्टिक एवं इमेजिंग सेंटर, नियर नगर पालिका ऑफिस, अपोजिट अम्बेडकर पार्क, धारूहेड़ा। कॉल करें टोल फ्री नंबर 1-800-123-4494 या 9983-04010 पर।
16: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: अब भिवाड़ी के सबसे बड़े NABH सर्टिफाइड SS हॉस्पिटल में स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे पाएं। यहां पाएं स्किन स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, नेफ्रोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी, ब्लड बैंक L और डायलिसिस, सभी बड़े TPA, कैशलेस RGHS, ECHS, ESIC, चिरंजीवी योजना की कैशलेस सुविधा, यहां 24 घंटे की इमरजेंसी सेवा और एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए पार्क करें OCF2 ऑपोजिट मॉडर्न पब्लिक स्कूल भगत सिंह कॉलोनी भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट 7230011191 और 9785013999।
1: टाटा की गाड़ी तो ले ली है, अब भिवाड़ी में सर्विस सेंटर ढूंढते रहो।
2: अरे ढूंढना क्यों है, टाटा ऑथराइज्ड AK ऑटोमोबाइल है ना, जो संजय मोटर्स की ही यूनिट है। 2017 से भिवाड़ी का भरोसा है, टाटा के सर्टिफाइड मैकेनिक्स हैं और वहाँ सर्विसिंग बहुत ही शॉर्ट टाइम में हो जाती है।
1: अच्छा, और उसमें क्या खर्चे ही खर्चे?
2: अरे नहीं नहीं, AK ऑटोमोबाइल्स पर कार सर्विसिंग, बॉडी शॉप और व्हील अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग के अलावा कैशलेस इंश्योरेंस और रिन्यूअल, AMC, ऑन रोड मेंटेनेंस और एक्सीडेंट वारंटी जैसी सारी फैसिलिटीज हैं, जो खर्चे बहुत ही कम कर देती हैं। मेन रोड पर फूलबाग थाने के पास ही है ये।
1: अरे वाह, तो वेट क्यों करना, 9462369786 पे कॉल करके अभी AK ऑटोमोबाइल पे सर्विस बुक करो जल्दी।
3: सोनम ये लो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट।
4: अरे इसमें क्या है?
3: वही जो तुम्हें बहुत टाइम से चाहिए था।
4: ये ब्रेसलेट तो मुझे बहुत टाइम से चाहिए था।
3: क्या आप इसे दिल्ली से लाए हो?
4: लेकिन आप दिल्ली कब गए?
3: अरे वो है ना भिवाड़ी में अपने शांति ज्वेलर्स, इनके पास है सोने चांदी हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन और यहाँ मिलती है हॉलमार्क ज्वेलरी।
4: इनका एड्रेस क्या है?
3: इनका एड्रेस है शॉप नंबर 5 गणपति मॉल भिवाड़ी। और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9812210987 पर।
5: एक बेहतर कल के लिए, बेहतर मजबूती के लिए, बेहतर बचत के लिए यूज करें SBF रैपिड 550D TMT। मजबूत निर्माण सदा के लिए।
6: मुझे अपने बच्चों के लिए चाहिए एक ऐसा स्कूल जो ICSE से अफिलेटेड हो।
7: भिवाड़ी में है एकमात्र ऐसा स्कूल SPS ग्लोबल स्कूल, जिसके बच्चों ने ICSE 10th की बोर्ड परीक्षाओं में 100% रिजल्ट के साथ साथ राज्य स्तर पर कराटे, स्केटिंग आदि प्रतियोगिताओं में भी अपने स्कूल का नाम रोशन किया है। यहाँ शिक्षा से बच्चों का बौद्धिक विकास और खेलकूद से शारीरिक विकास, डिसिप्लिन और समय समय पर सामाजिक व सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं होती रहती हैं, जो बच्चों के सर्वांगीण विकास में मदद करता है। यहाँ है बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, खेल का मैदान, AC क्लासरूम, डिजिटल क्लासरूम, आधुनिक सुविधाओं से लैस लैब, बेस्ट टीचर की फैसिलिटी।
6: SPS ग्लोबल स्कूल नियर कैपिटल मॉल भिवाड़ी। आज ही विजिट करें या कॉल करें 9950888330।
8: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: मैं जयपुर जा रहा हूँ।
1: अच्छा, तो आते हुए जयपुर के मशहूर दूध लड्डू और प्याज कचौरी लेते आना।
0: अरे, दूध लड्डू और प्याज कचौरी के लिए जयपुर जाने का इंतजार क्यों करना, क्योंकि अब आपके शहर भिवाड़ी में अलवर बाईपास पर खुल चुका है कान्हा स्वीट्स।
1: जी हाँ, कान्हा स्वीट्स पर मिलते हैं स्वादिष्ट दूध लड्डू, प्याज कचौरी, समोसे, किसी कलाकंद, रसमलाई, कुल्हड़ रबड़ी और सभी प्रकार की मिठाइयाँ।
0: बिल्कुल, हर मिठाई में स्वाद ऐसा कि एक बार खाएं तो दिल कहे एक और।
1: तो फिर आज मिठास हो जाए कान्हा स्वीट्स के साथ।
0: हाँ।

0: साथ।
1: क्या आपकी आंखों की रोशनी से जुड़ी कोई परेशानी है? क्या आप चश्मे से छुटकारा पाना चाहते हैं?
2: तो आइए आधुनिक सुविधाओं से युक्त मिश्री देवी आई हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिटी आई सेंटर।
1: पिछले 15 वर्षों से नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में भरोसेमंद सेवाएं, अब बहर रोड नियम राणा और टपुकड़ा भिवाड़ी में।
2: यहां उपलब्ध हैं मोतियाबिंद, फेको, मल्टीफोकल एवं प्रीमियम लेंस, लेसिक लेजर, कॉर्निया, ग्लूकोमा और रेटिना उपचार एवं सर्जरी की आधुनिक सुविधाएं।
1: और अब दोनों आँखों का लेसिक लेजर उपचार आधुनिक तकनीक के साथ आपकी पहुंच में और उचित दरों पर।
2: बेहतर नेत्र उपचार, उचित खर्च और भरोसेमंद देखभाल के साथ चश्मे से आजादी की ओर बढ़ाइए अपना कदम। मिश्री देवी आई हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिटी आई सेंटर। संपर्क नंबर
1: 9783220043 या 01493294200। अब आपके शहर भिवाड़ी में साइकियाट्री एवं ऑर्थोपेडिक्स की नियमित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है ओजस हॉस्पिटल में।
2: मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितिका अग्रवाल द्वारा डिप्रेशन, नींद की समस्या, बेचैनी, घबराहट, मानसिक तनाव, स्किजोफ्रेनिया और ओसीडी जैसी समस्याओं का उचित उपचार किया जाता है एवं काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध है।
1: वहीं हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेंद्र अग्रवाल द्वारा चोट, ट्रॉमा, फ्रैक्चर, घुटने एवं कमर का दर्द, लिगामेंट की चोट, गठिया और आर्थराइटिस जैसी हड्डी एवं जोड़ संबंधी समस्याओं का उपचार किया जाता है।
2: साथ ही सर्जरी, फिजियोथेरेपी और पेन मैनेजमेंट की सुविधा भी उपलब्ध है।
1: तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या को नजरअंदाज न करें, पहुंचिए ओजस हॉस्पिटल।
2: पता नगीना गार्डन के पास, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी।
1: फोन करें 9521333591। ओजस हॉस्पिटल, बेहतर स्वास्थ्य की ओर एक कदम। अब आपके शहर धारूहेड़ा में ही मिल रही है आधुनिक और बेहतरीन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सुविधाएं। लोटस हॉस्पिटल बेस्ट टैक सिटी बीपीएल फ्लैट के सामने धारूहेड़ा में डॉक्टर अन्विका बंसल, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, 15 वर्ष से अधिक अनुभव के साथ जो पहले से ही भिवाड़ी में अपनी सेवाएं दे रही थी, अब अपने नए लोटस हॉस्पिटल में ओपीडी और इमरजेंसी सर्विस के लिए उपलब्ध हैं। इसके साथ ही यहां उपलब्ध है अनुभवी हड्डी रोग विशेषज्ञ। यहां घुटना बदलना, कुल्हा बदलना और रीढ़ से जुड़ी सभी बीमारी का इलाज होता है और एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट और लैप्रोस्कोपिक जनरल सर्जन, जहां लेजर टेक्निक से बवासीर, भगंदर का इलाज लोटस हॉस्पिटल में मिलता है तथा 24 घंटे आपातकालीन सुविधा, एडवांस्ड एक्सरे, लैबोरेटरी, फार्मेसी, अल्ट्रासाउंड सर्विस, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, एसी प्राइवेट रूम की सुविधाएं उपलब्ध हैं। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आज ही विजिट करें लोटस हॉस्पिटल बेस्ट टैक सिटी बीपीएल फ्लैट के सामने धारूहेड़ा। संपर्क करें 01274415033।
3: भिवाड़ी का पहला ISO और NABH सर्टिफाइड श्री कृष्णा हॉस्पिटल, जिसमें मल्टी स्पेशलिस्ट ओपीडी, 10 बेड का ICU, सबसे बड़ा मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 50 बेड का इंडोर, 24 आवर्स एम्बुलेंस, फार्मेसी और इमरजेंसी सेवाएं तथा लैब, डिजिटल एक्सरे जैसी सुविधाओं से लैस श्री कृष्णा हॉस्पिटल अधिकांश मल्टीनेशनल कंपनियों के मेडिकल कंसल्टेंसी एवं कैशलेस उपचार का एकमात्र सेंटर। श्री कृष्णा हॉस्पिटल B14849 भगत सिंह कॉलोनी भिवाड़ी 8529113916734001391। इस हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट और फिजिशियन की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
4: विजय हॉस्पिटल डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
5: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
4: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
1: आपके हर खास समारोह को शानदार और यादगार बनाने के लिए आइए भाटोटिया टेंट हाउस एंड इवेंट ऑर्गेनाइजर।
2: सभी प्रकार के टेंट आइटम, शानदार डेकोरेशन और इंडोर आउटडोर कैटरिंग की बेहतरीन सुविधा, शादी, सगाई, जन्मदिन या किसी भी समारोह के लिए एक ही जगह पर पूरी व्यवस्था।
1: संपर्क करें हंसराज भाटोटिया, मोबाइल नंबर 9416347214।
2: और आपके खास समारोह के लिए

0: शानदार राजविलास मैरिज एवं बैंकवेट हॉल, शिवनगर पार्ट टू, पांचाल कॉलोनी, सीथल रोड, धारूहेड़ा, जिला रेवाड़ी, हरियाणा।
1: बाटोटिया टेंट हाउस और राजविलास मैरिज बैंकवेट हॉल, आपके समारोह की पूरी तैयारी एक ही जगह।
2: अब भिलवाड़ी के शिवोहम हॉस्पिटल में पाएं एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं। यहां 25 बेड से लेस इंडोर, 6 बेड से लेस आईसीयू, दो बड़े ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजी लैब तथा अत्याधुनिक एक्सरे मशीनों के द्वारा एक्सरे सुविधा, तकनीकी मशीनों द्वारा जांच, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, एम्बुलेंस, सभी कैशलेस टीपीए सुविधाओं के साथ 14 साल से कम आयु की बच्चियों के लिए निशुल्क परामर्श, गायनेकोलॉजी, इनफर्टिलिटी, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नम्रता मेहता चतुर्वेदी व हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हेमंत चतुर्वेदी जैसे अनुभवी डॉक्टर से परामर्श सुविधा, जो कि पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में निरंतर अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। शिवोहम हॉस्पिटल, B4 भगत सिंह कॉलोनी, पुराने RTO ऑफिस के पास, भिवाड़ी। संपर्क 9799996778।
3: भिवाड़ी का पहला ISO और NABH सर्टिफाइड श्री कृष्णा हॉस्पिटल, जिसमें मल्टी स्पेशलिस्ट OPD, 10 बेड का ICU, सबसे बड़ा मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 50 बेड का इंडोर, 24 आवर्स एम्बुलेंस, फार्मेसी और इमरजेंसी सेवाएं तथा लैब, डिजिटल एक्सरे जैसी सुविधाओं से लैस श्री कृष्णा हॉस्पिटल अधिकांश मल्टीनेशनल कंपनियों के मेडिकल कंसल्टेंसी एवं कैशलेस उपचार का एकमात्र सेंटर। श्री कृष्णा हॉस्पिटल, B14849 भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी, 8529113916, 7340013916। इस हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट और फिजिशियन की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं।
4: क्या आपकी त्वचा, बाल या नाखून की समस्या बार बार परेशान कर रही है?
5: अब सही इलाज के लिए मिलिए डॉक्टर गौरव, एम्स से प्रशिक्षित त्वचा रोग विशेषज्ञ, SS हॉस्पिटल, भिवाड़ी में।
4: मुंहासे, पिगमेंटेशन, एलर्जी, हेयर फॉल से लेकर लेजर, केमिकल पील और बोटॉक्स जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध।
5: ECHS, RGHS तथा NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल में सभी प्रमुख TPA मान्य।
4: SS हॉस्पिटल, भिवाड़ी, भरोसेमंद विशेषज्ञ से देखभाल। समय रोजाना शाम 4:30 से 6:30 तक, गुरुवार अवकाश।
6: पूजा, तुम्हारे फेस पर कितने पिंपल्स और धब्बे हो रहे हैं?
7: हाँ यार, और बाल भी हर दिन झड़ रहे हैं। कई बार दिल्ली गुरुग्राम में भी दिखा चुकी हूँ।
6: अरे पूजा, अब दिल्ली या गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपनी भिवाड़ी में है डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, जहाँ पर स्किन, हेयर एंड नेल्स की सभी बीमारियों का पूर्ण इलाज डॉक्टर सुचेता MD डर्मेटोलॉजी द्वारा किया जाता है, जो भिवाड़ी में अपनी सेवाएं दे रही है। इनके यहाँ लेजर हेयर रिमूवल, माइक्रो नीडलिंग, PRP, RF, अन्य सभी स्किन समस्याओं का समाधान विदेशी मशीनों व नई तकनीकों द्वारा किया जाता है। कॉल करें 6367551007। विजिट डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, A56 फर्स्ट फ्लोर, भगत सिंह कॉलोनी, बिहाइंड सुखम टावर, भिवाड़ी।
8: आपके सारे जरूरतों का बीमा एक ही जगह, विधि एंटरप्राइजेज भिवाड़ी। स्वास्थ्य बीमा, वाहन बीमा, जीवन बीमा, फायर बीमा, सब मिलेगा यहाँ। और हाँ, बीमा कराने पर खास ऑफर भी मिलेंगे। संपर्क करें चंद्रभान, विधि एंटरप्राइजेज, रिको चौक, भिवाड़ी, 9887066308।
9: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: मैं जयपुर जा रहा हूँ।
1: अच्छा, तो आते हुए जयपुर के मशहूर दूध लड्डू और प्याज कचौरी लेते आना।
0: अरे, दूध लड्डू और प्याज कचौरी के लिए जयपुर जाने का इंतजार क्यों करना? क्योंकि अब आपके शहर भिवाड़ी में अलवर बाईपास पर खुल चुका है कान्हा स्वीट्स।
1: जी हाँ, कान्हा स्वीट्स पर मिलते हैं स्वादिष्ट दूध लड्डू, प्याज कचौरी, समोसे किसी कलाकंद, रस मलाई, कुल्हड़ रबड़ी और सभी प्रकार की मिठाइयाँ।
0: बिल्कुल, हर मिठाई में स्वाद ऐसा कि एक बार खाएं तो दिल कहे एक और।
1: तो फिर आज मिठास हो जाए कान्हा स्वीट्स के साथ।
0: हाँ, परिवार हो या मेहमान, त्योहार हो या कोई खास खुशी, हर मौके की मिठास कान्हा स्वीट्स के साथ। पता नोट कर लीजिए,
1: शॉप नंबर AG F04, कैपिटल आर्केडिया, अलवर बाईपास इन फ्रंट ऑफ वेदांता फार्म, भिवाड़ी, राजस्थान।
2: मोहाली और गुड़गांव का डेंटल अनुभव अब भिवाड़ी में। आइए वी केयर डेंटल क्लिनिक इम्प्लांट सेंटर, जहां RCT, कैपिंग और डेंटल इम्प्लांट के एक्सपर्ट ट्रीटमेंट के साथ आपको मिलता है डॉक्टर रुकु सिंगला के 16 वर्षों के अनुभव और विशेषज्ञता का भरोसा। आर्मी और कॉर्पोरेट कर्मचारियों के लिए स्पेशल डिस्काउंट। पता, अपोजिट मैकडोनल्ड्स, JMK पेट क्लिनिक के पास, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉल करें 7814399374। वी केयर डेंटल, आपकी मुस्कान हमारा भरोसा।
1: क्या आपकी आँखों की रोशनी से जुड़ी कोई परेशानी है? क्या आप चश्मे से छुटकारा पाना चाहते हैं?
0: तो आइए आधुनिक सुविधाओं से युक्त मिश्री देवी आई हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी आई सेंटर।
1: पिछले 15 वर्षों से नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में भरोसेमंद सेवाएं, अब बहर रोड, नियम राणा और टपुकड़ा भिवाड़ी में।
0: यहाँ उपलब्ध है मोतियाबिंद, फेको, मल्टीफोकल एवं प्रीमियम लेंस, लेसिक लेजर, कॉर्निया, ग्लूकोमा और रेटिना उपचार एवं सर्जरी की आधुनिक सुविधाएं।
1: और अब दोनों आँखों का लेसिक लेजर उपचार आधुनिक तकनीक के साथ आपकी पहुंच में और उचित दरों पर।
0: बेहतर नेत्र उपचार, उचित खर्च और भरोसेमंद देखभाल के साथ चश्मे से आजादी की ओर बढ़ाइए अपना कदम। मिश्री देवी आई हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी आई सेंटर। संपर्क नंबर
1: 9783220043 या 01493294200। अब आपके शहर भिवाड़ी में साइकियाट्री एवं ऑर्थोपेडिक्स की नियमित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है ओजस हॉस्पिटल में।
0: मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितिका अग्रवाल द्वारा डिप्रेशन, नींद की समस्या, बेचैनी, घबराहट, मानसिक तनाव, स्किजोफ्रेनिया और OCD जैसी समस्याओं का उचित उपचार किया जाता है एवं काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध है।
1: वहीं हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेंद्र अग्रवाल द्वारा चोट, ट्रॉमा, फ्रैक्चर, घुटने एवं कमर का दर्द, लिगामेंट की चोट, गठिया और आर्थराइटिस जैसी हड्डी एवं जोड़ संबंधी समस्याओं का उपचार किया जाता है।
0: साथ ही सर्जरी, फिजियोथेरेपी और पेन मैनेजमेंट की सुविधा भी उपलब्ध है।
1: तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या को नजरअंदाज न करें, पहुंचिए ओजस हॉस्पिटल।
0: पता, नगीना गार्डन के पास, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी।
1: फोन करें 9521333591। ओजस हॉस्पिटल, बेहतर स्वास्थ्य की ओर एक कदम। अब आपके शहर धारूहेड़ा में ही मिल रही है आधुनिक और बेहतरीन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सुविधाएं। लोटस हॉस्पिटल, बेस्ट टैक सिटी, BPL फ्लैट के सामने धारूहेड़ा में, डॉक्टर अन्विका बंसल, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, 15 वर्ष से अधिक अनुभव के साथ, जो पहले से ही भिवाड़ी में अपनी सेवाएं दे रही थी, अब अपने नए लोटस हॉस्पिटल में OPD और इमरजेंसी सर्विस के लिए उपलब्ध हैं। इसके साथ ही यहाँ उपलब्ध है अनुभवी हड्डी रोग विशेषज्ञ। यहाँ घुटना बदलना, कुल्हा बदलना और रीढ़ से जुड़ी सभी बीमारी का इलाज होता है, और एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट और लैप्रोस्कोपिक जनरल सर्जन, जहाँ लेजर टेक्निक से बवासीर, भगंदर का इलाज लोटस हॉस्पिटल में मिलता है, तथा 24 घंटे आपातकालीन सुविधा, एडवांस्ड एक्सरे, लैबोरेटरी, फार्मेसी, अल्ट्रासाउंड सर्विस, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, AC प्राइवेट रूम की सुविधाएं उपलब्ध हैं। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आज ही विजिट करें लोटस हॉस्पिटल, बेस्ट टैक सिटी, BPL फ्लैट के सामने, धारूहेड़ा। संपर्क करें 01274415033।
3: भिवाड़ी का पहला ISO और NABH सर्टिफाइड श्री कृष्णा हॉस्पिटल, जिसमें मल्टी स्पेशलिस्ट OPD, 10 बेड का ICU, सबसे बड़ा मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 50 बेड का इंडोर, 24 आवर्स एम्बुलेंस, फार्मेसी और इमरजेंसी सेवाएं तथा लैब, डिजिटल एक्सरे जैसी सुविधाओं से लैस श्री कृष्णा हॉस्पिटल अधिकांश मल्टीनेशनल कंपनियों के मेडिकल कंसल्टेंसी एवं कैशलेस उपचार का एकमात्र सेंटर। श्री कृष्णा हॉस्पिटल, B14849 भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी, 8529113916, 7340013916। इस हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट और फिजिशियन की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
4: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
5: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
4: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
6: आपके हर खास समारोह को शानदार और यादगार बनाने के लिए आइए भाटोटिया टेंट हाउस एंड इवेंट ऑर्गेनाइजर।
7: सभी प्रकार के टेंट आइटम, शानदार डेकोरेशन और इंडोर आउटडोर कैटरिंग की बेहतरीन सुविधा, शादी, सगाई, जन्मदिन या किसी भी समारोह के लिए एक ही जगह पर पूरी व्यवस्था।
6: संपर्क करें हंसराज भाटोटिया, मोबाइल नंबर 9416347214।
7: और आपके खास समारोह के लिए शानदार राज विलास मैरिज एवं बैंक्वेट हॉल, शिवनगर पार्ट 2, पांचाल कॉलोनी, सीथल रोड, धारूहेड़ा, जिला रेवाड़ी, हरियाणा।
6: बाटोटिया टेंट हाउस और राज विलास मैरिज बैंक्वेट हॉल, आपके समारोह की पूरी तैयारी एक ही जगह।
8: आपनो देश, आपनो रंग, सब मिले आपनो बाजार के संग। जी हाँ, आपनो बाजार आपका कंप्लीट फैमिली स्टोर, जहाँ उत्तम क्वालिटी और वाजिब दामों के साथ आपको मिलता है किराना, ग्रोसरी आइटम, कॉस्मेटिक, हाउसकीपिंग, हाउसहोल्ड आइटम, गिफ्ट आइटम, क्रॉकरी, टॉयज एंड गेम्स। इन सभी आइटम के MRP दामों पर खास छूट। इतना ही नहीं, फ्री होम डिलीवरी की सुविधा भी है। इनके स्टोर अलवर बाईपास, थड़ा रोड, भिवाड़ी, कृष्ण मॉल, टपुकड़ा आशियाना विलेज सेंटर। संपर्क करें 9680870184 या फिर 7822091287।
9: अरे, प्लांट का तो सारा काम हो गया, अब LED लाइट कहाँ से खरीदें?
10: सर, क्या आपको नहीं पता है नेप LED लाइटिंग कंपनी इंडस्ट्रियल लाइटिंग जैसे फ्लड लाइट, हाईवे लाइट, स्ट्रीट लाइट आदि के साथ साथ सभी प्रकार की LED लाइट बनाती है, वो भी 2 साल की वारंटी के साथ। और इतना ही नहीं, वो इंडस्ट्रियल लाइटिंग कंसल्टेंट सर्विस भी फ्री देते हैं।
9: अरे वाह, इनसे संपर्क कैसे करें?
10: सर, इनका सेल्स ऑफिस एड्रेस JFF 22, कैपिटल हाई स्ट्रीट, फूलबाग चौक, भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए नेप LED लाइटिंग कंपनी से संपर्क करें 7988627064।
6: आपके हर खास समारोह को शानदार और यादगार बनाने के लिए आइए भाटोटिया टेंट हाउस एंड इवेंट ऑर्गेनाइजर।
7: सभी प्रकार के टेंट आइटम, शानदार डेकोरेशन और इंडोर आउटडोर कैटरिंग की बेहतरीन सुविधा, शादी, सगाई, जन्मदिन या किसी भी समारोह के लिए एक ही जगह पर पूरी व्यवस्था।
6: संपर्क करें हंसराज भाटोटिया, मोबाइल नंबर 9416347214।
7: और आपके खास समारोह के लिए शानदार राज विलास मैरिज एवं बैंक्वेट हॉल, शिवनगर पार्ट 2, पांचाल कॉलोनी, सीथल रोड, धारूहेड़ा, जिला रेवाड़ी, हरियाणा।
6: बाटोटिया टेंट हाउस और राज विलास मैरिज बैंक्वेट हॉल, आपके समारोह की पूरी तैयारी एक ही जगह। जब बात आपकी मुस्कान की हो तो समझौता क्यों, अब स्पेशलिस्ट डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं। आइए डेंटल एक्सपर्ट्स भिवाड़ी, भिवाड़ी का इकलौता डेंटल क्लिनिक, जहां पूरी टीम MDS स्पेशलिस्ट की है और जिन्हें 15 साल से अधिक का अनुभव है। डॉक्टर विनोद यादव, MDS ऑर्थोडोंटिस्ट, भिवाड़ी के एकमात्र ब्रेसेस स्पेशलिस्ट एंड इनविसलाइन प्रोवाइडर। इसके अलावा डेंटल इम्प्लांट्स और जटिल दांतों की समस्याओं का आधुनिक उपचार प्रदान करते हैं। साथ ही डॉक्टर ऋतु यादव, MDS एंडोडोंटिस्ट, रूट कैनाल, स्माइल डिजाइनिंग और फुल माउथ रिहैबिलिटेशन की विशेषज्ञ। डेंटल एक्सपर्ट्स, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट आशियाना आंगन, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 8824232823। डेंटल एक्सपर्ट्स, आपकी मुस्कान हमारी विशेषज्ञता।
7: भिवाड़ी वासियों, अब हर जरूरत की सर्विस सिर्फ एक ऐप पर। मैस एंड केयर लेकर आया है आपके लिए भरोसेमंद होम और प्रोफेशनल सर्विसेज।
6: बाथरूम डीप क्लीनिंग, किचन डीप क्लीनिंग, पूरे घर की सफाई, ऑफिस क्लीनिंग, जिम क्लीनिंग, कार क्लीनिंग, पानी की टंकी की सफाई, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ड्राइवर सर्विस, कैब बुकिंग और बहुत सारी अन्य सेवाएं। अब सब कुछ एक ही ऐप पर।
7: अभी मेस एंड केयर ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे अपनी पसंद की सर्विस बुक करें।
6: मेस एंड केयर, आपका घर हमारी जिम्मेदारी। बुकिंग के लिए अभी कॉल या व्हाट्सएप करें 8824106060।
11: फ्यूचर लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहें। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
12: गणेश स्टेशनर्स, बेटर देन द बेस्ट,
11: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा A to Z सामान। इसी के साथ यहां प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
12: गणेश स्टेशनर्स, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड, नियर हरी राम हॉस्पिटल, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।
13: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
1: हेलो जी प्यारी सी गुड वाली मॉर्निंग है और हाजिर है आपका दोस्त एंड होस्ट आरजे यश यानी कि आपका खुर्राफाती यश। और भाई साहब आपको तो पता है कि जब भी यश आता है तो अपने साथ में बहुत ही ढेर सारी मस्ती और मजाक वाली बातें लेकर के आता है। लेकिन साहब 8 बज चुका है, अब तो जाग जाओ यार, मुंह धुलो, एक कप चाय लो, बिस्किट लो और चाय के कप में डुप से डुबो करके खाते पीते हुए मेरी बातों को एंजॉय करो और भाई साहब साथ में प्यारे प्यारे से गानों को एंजॉय करो। लेकिन कुछ लोग होंगे जो भाई साहब मुंह धुल करके नहा धो करके अपने रण क्षेत्र की ओर निकल चुके होंगे, कुछ होंगे जो अपने कर्म भूमि की ओर निकल चुके होंगे यानी कि अपने अपने ऑफिस की ओर निकल चुके होंगे। और भाई साहब आप रास्ते में अगर हैं और कार में बैठ कर के मुझे सुन रहे हैं तो प्लीज प्लीज प्लीज ताऊ अरे सीट बेल्ट तो बांध लो यार। मतलब यार मैं कहता हूँ और आप लोग सीट बेल्ट तुरंत बांध लेते हैं, मतलब मैं कौन, ट्रैफिक पुलिस का हेड कांस्टेबल हूँ, मैं आपका चालान कर दूंगा? ऐसे कैसे यार, मेरे कहते ही आप लोग सीट बेल्ट बांध लेते हैं। लेकिन बहुत अच्छी बात है भाई साहब, सीट बेल्ट बांधना बहुत जरूरी है क्योंकि आपकी कार में अगर आपकी कोई रक्षा कर रहा है तो वो आपकी सीट बेल्ट ही होती है मेरे दोस्त। तो बस जिंदगी में खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और यूं यश को प्यार देते रहो और साथ में सुनते रहो अपने प्यारे से शहर भिवाड़ी का प्यारा सा रेडियो 90.8 FM 24। और हाँ, सुबह का वक्त है तो चाय की चुस्कियों के साथ चर्चा जाएगी चौराहो चौराहो तक। लीजिए लाइए अपने चेहरे पर स्माइल क्योंकि आप रेडियो पर हैं। लीजिए यहाँ पर एंजॉय करते इस प्यारे से गाने को। मैं शिव गया और यू आया।

फाइव एंड हाफ गर्लफ्रेंड्स के बाद ये रियलाइज किया कि ऊपर वाले ने एक ही तुम बनाया। पर तब तक तो मेरी यादों की नहीं सबकी सितारा बन चुकी थी।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
1: औद्योगिक क्षेत्र सारे खुद करौली बंदापुर खुशखेड़ा व चौपान की में 16 औद्योगिक व 2 वेयर हाउस भूखंडों को ई नीलामी के माध्यम से बेचैन किया जा रहा है। इन भूखंडों के लिए अमानत राशि दिनांक 9/10/2026 समय 6 बजे तक जमा कराकर बिड लगा सकते हैं। बिड लगाने की अंतिम तिथि 14/10/2026 समय 5 बजे तक है। इसके साथ ही औद्योगिक क्षेत्र सलारपुर व पथरेड़ी में 43 भूखंडों को प्रत्यक्ष आवंटन योजना के माध्यम से बेचैन किया जा रहा है। इन भूखंडों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 12/10/2026 समय 6 बजे तक है। अंतिम जानकारी के लिए रिको की वेबसाइट www.riico.co.in यानी www.rico.co.in पर एवं रिको इकाई कार्यालय भिवाड़ी द्वितीय रिको रेस्ट हाउस रोड भिवाड़ी में संपर्क कर सकते हैं।
0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
1: और लीजिए भाई साहब, एक बार फिर से प्यारी सी गुड वाली मॉर्निंग है, नमस्कार है, आदाब है और हाजिर है आपका दोस्त एंड होस्ट आरजी यश, यानी कि आपका खुर्राफाती यश। और भाई साहब, आपको तो पता है कि जब भी यश आता है तो अपने साथ में बहुत ही ढेर सारी मस्ती और मजाक वाली बातें लेकर के आता है। लेकिन भाई साहब, आपको ये भी पता है कि जब भी यश मैदान नंबर 2 पर आता है तो भाई साहब अपने साथ में लेकर के आता है
2: मौसम वाली बातें।
1: जी हाँ भाई साहब, मौसम वाली बातें भी इसलिए जरूरी है क्योंकि मौसम ने ली अंगड़ाई, अजा सुबह होने आई, फिलहाल तो आपसे है तन्हाई। तन्हाई क्यों होगी यार। चलिए भाई साहब, अब तन्हाई और जुदाई का तो हम नहीं बता सकते, लेकिन जान लेते हैं कि टेम्परेचर कितना है। तो भाई साहब, अगर सीधे शुरुआत की जाए सुबह 7 बजे से तो भाई साहब टेम्परेचर जा पहुंचेगा 24 डिग्री सेल्सियस पर, और अगर 8, 9, 10, 11, 12 बजे तक की बात की जाए तो भाई साहब टेम्परेचर 27-28 से बढ़कर के 31 डिग्री सेल्सियस और 31 से बढ़कर के 33 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचेगा। लेकिन भाई साहब, अगर वही बात की जाए 2 बजे के आसपास की तो 34 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर जा खड़ा होगा। लेकिन उसके बाद अगर शाम 4, 5, 6, 7 बजे की बात करें तो फिर से टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाएगा, यानी कि 32, 29, 28 तक रात को 8 बजे तक टेम्परेचर आ खड़ा होगा। मतलब भाई साहब, आप लोग समझ रहे हैं, मौसम ने पूरा प्लान बना लिया है कि जुखाम खांसी बुखार सारी चीजें कर ही मानेंगे भाई साहब। अरे भैया, सुबह के टाइम पर ठंडा, दोपहर के टाइम पर गर्म, फिर शाम के टाइम पर ठंडा, अरे ऐसे कौन करता है यार। या तो ठंडा ही कर लो या गर्म ही कर लो। अरे इतना मौसम परिवर्तन भाई साहब, बच्चे बीमार नहीं होंगे भाई साहब? आप बताओ, गले में दर्द नहीं होगा भाई साहब? अरे जुखाम खांसी सारी चीजें होंगी। तो बस भाई साहब, अब टेम्परेचर तो किसी की नहीं सुनेगा, मौसम किसी की नहीं सुनेगा, कुल मिलाकर के प्रकृति किसी की नहीं सुनेगी, क्योंकि हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि हम ज्ञानी बाबा तो है नहीं, हम तो यश बाबा है। चलिए यहाँ पर सुनवाएंगे आपको इस प्यारे से गाने को, लेकिन खान पान पर जरा ध्यान रखिएगा, बढ़िया बढ़िया सा खाना खाइए, बढ़िया बढ़िया सी चीजें पीजिए, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक की, ब्रेक के बाद लेकर के आऊंगा और भी ढेर सारी बातों को। फिलहाल एंजॉय कीजिएगा इस गाने को, और हाँ, आप चेहरे पर लाइए स्माइल, क्योंकि आप शहर के नंबर 1 रेडियो 90.8 FM 24 पर हैं।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
1: मैं जयपुर जा रहा हूँ।
2: अच्छा, तो आते हुए जयपुर के मशहूर दूध लड्डू और प्याज कचौरी लेते आना।
1: अरे, दूध लड्डू और प्याज कचौरी के लिए जयपुर जाने का इंतजार क्यों करना, क्योंकि अब आपके शहर भिवाड़ी में अलवर बाईपास पर खुल चुका है कान्हा स्वीट्स।
2: जी हाँ, कान्हा स्वीट्स पर मिलते हैं स्वादिष्ट दूध लड्डू, प्याज कचौरी, समोसे, किसी कलाकंद, रसमलाई, कुल्हड़, रबड़ी और सभी प्रकार की मिठाइयाँ।
1: बिल्कुल, हर मिठाई में स्वाद ऐसा कि एक बार खाएं तो दिल कहे एक और।
2: तो फिर आज मिठास हो जाए कान्हा स्वीट्स के साथ।
1: हाँ, परिवार हो या मेहमान, त्योहार हो या कोई खास खुशी, हर मौके की मिठास कान्हा स्वीट्स के साथ। पता नोट कर लीजिए,
2: शॉप नंबर AG F04, कैपिटल आर्केडिया, अलवर बाईपास इन फ्रंट ऑफ वेदांता फार्म, भिवाड़ी, राजस्थान।
3: मोहाली और गुड़गांव का डेंटल अनुभव अब भिवाड़ी में। आइए वी केयर डेंटल क्लिनिक इम्प्लांट सेंटर, जहां RCT, कैपिंग और डेंटल इम्प्लांट के एक्सपर्ट ट्रीटमेंट के साथ आपको मिलता है डॉक्टर रुकु सिंगला के 16 वर्षों के अनुभव और विशेषज्ञता का भरोसा। आर्मी और कॉर्पोरेट कर्मचारियों के लिए स्पेशल डिस्काउंट। पता, अपोजिट मैकडोनल्ड्स, JMK पेट क्लिनिक के पास, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉल करें 7814399374। वी केयर डेंटल, आपकी मुस्कान हमारा भरोसा।
2: क्या आपकी आँखों की रोशनी से जुड़ी कोई परेशानी है? क्या आप चश्मे से छुटकारा पाना चाहते हैं?
1: तो आइए आधुनिक सुविधाओं से युक्त मिश्री देवी आई हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी आई सेंटर।
2: पिछले 15 वर्षों से नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में भरोसेमंद सेवाएं, अब बाहर रोड, नियम राणा और टपुकड़ा भिवाड़ी में।
1: यहाँ उपलब्ध है मोतियाबिंद, फेको, मल्टीफोकल एवं प्रीमियम लेंस, लेसिक लेजर, कॉर्निया, ग्लूकोमा और रेटिना उपचार एवं सर्जरी की आधुनिक सुविधाएं।
2: और अब दोनों आँखों का लेसिक लेजर उपचार आधुनिक तकनीक के साथ आपकी पहुंच में और उचित दरों पर।
1: बेहतर नेत्र उपचार, उचित खर्च और भरोसेमंद देखभाल के साथ चश्मे से आजादी की ओर बढ़ाइए अपना कदम। मिश्री देवी आई हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी आई सेंटर। संपर्क नंबर
2: 9783220043 या 01493294200। अब आपके शहर भिवाड़ी में साइकियाट्री एवं ऑर्थोपेडिक्स की नियमित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है ओजस हॉस्पिटल में।
1: मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितिका अग्रवाल द्वारा डिप्रेशन, नींद की समस्या, बेचैनी, घबराहट, मानसिक तनाव, स्किजोफ्रेनिया और OCD जैसी समस्याओं का उचित उपचार किया जाता है एवं काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध है।
2: वहीं हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेंद्र अग्रवाल द्वारा चोट, ट्रॉमा, फ्रैक्चर, घुटने एवं कमर का दर्द, लिगामेंट की चोट, गठिया और आर्थराइटिस जैसी हड्डी एवं जोड़ संबंधी समस्याओं का उपचार किया जाता है।
1: साथ ही सर्जरी, फिजियोथेरेपी और पेन मैनेजमेंट की सुविधा भी उपलब्ध है।
2: तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या को नजरअंदाज न करें, पहुंचिए ओजस हॉस्पिटल।
1: पता, नगीना गार्डन के पास, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी।
2: फोन करें 9521333591। ओजस हॉस्पिटल, बेहतर स्वास्थ्य की ओर एक कदम। अब आपके शहर धारूहेड़ा में ही मिल रही है आधुनिक और बेहतरीन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सुविधाएं। लोटस हॉस्पिटल, बेस्ट टैक्स सिटी, BPL फ्लैट के सामने धारूहेड़ा में, डॉक्टर अन्विका बंसल, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, 15 वर्ष से अधिक अनुभव के साथ, जो पहले से ही भिवाड़ी में अपनी सेवाएं दे रही थी, अब अपने नए लोटस हॉस्पिटल में OPD और इमरजेंसी सर्विस के लिए उपलब्ध हैं। इसके साथ ही यहां उपलब्ध है अनुभवी हड्डी रोग विशेषज्ञ। यहां घुटना बदलना, कुल्हा बदलना और रीढ़ से जुड़ी सभी बीमारी का इलाज होता है, और एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट और लैप्रोस्कोपिक जनरल सर्जन, जहां लेजर टेक्निक से बवासीर, भगंदर का इलाज लोटस हॉस्पिटल में मिलता है, तथा 24 घंटे आपातकालीन सुविधा, एडवांस्ड एक्सरे, लैबोरेटरी, फार्मेसी, अल्ट्रासाउंड सर्विस, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, AC प्राइवेट रूम की सुविधाएं उपलब्ध हैं। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आज ही विजिट करें लोटस हॉस्पिटल, बेस्ट सिटी, BPL फ्लैट के सामने, धारूहेड़ा। संपर्क करें 01274415033। भिवाड़ी का पहला ISO और NABH सर्टिफाइड श्री कृष्णा हॉस्पिटल, जिसमें मल्टी स्पेशलिस्ट OPD, 10 बेड का ICU, सबसे बड़ा मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 50 बेड का इंडोर, 24 आवर्स एम्बुलेंस, फार्मेसी और इमरजेंसी सेवाएं तथा लैब, डिजिटल एक्सरे जैसी सुविधाओं से लैस श्री कृष्णा हॉस्पिटल अधिकांश मल्टीनेशनल कंपनियों के मेडिकल कंसल्टेंसी एवं कैशलेस उपचार का एकमात्र सेंटर। श्री कृष्णा हॉस्पिटल, B14849 भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी, 8529113916, 7340013916। इस हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट और फिजिशियन की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
4: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
5: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे, किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
4: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
6: आपके हर खास समारोह को शानदार और यादगार बनाने के लिए आइए भाटोटिया टेंट हाउस एंड इवेंट ऑर्गेनाइजर।
1: सभी प्रकार के टेंट आइटम, शानदार डेकोरेशन और इंडोर आउटडोर कैटरिंग की बेहतरीन सुविधा, शादी, सगाई, जन्मदिन या किसी भी समारोह के लिए एक ही जगह पर पूरी व्यवस्था।
6: संपर्क करें हंसराज भाटोटिया, मोबाइल नंबर 9416347214।
1: और आपके खास समारोह के लिए शानदार राजविलास मैरिज एवं बैंक्वेट हॉल, शिवनगर Part 2, पांचाल कॉलोनी, सीथल रोड, धारूहेड़ा, जिला रेवाड़ी, हरियाणा।
6: भाटोटिया टेंट हाउस और राजविलास मैरिज बैंक्वेट हॉल, आपके समारोह की पूरी तैयारी एक ही जगह। भिवाड़ी का भरोसा, वर्षों से आपकी सेवा में। सिटी नर्सिंग होम, सदर मार्केट, भिवाड़ी, औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी का पहला नर्सिंग होम NABH द्वारा प्रमाणित।
1: यहाँ उपलब्ध हैं 2 आधुनिक ICU, अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, दूरबीन सर्जरी की सुविधा तथा अधिकांश मेडिक्लेम कंपनियों की कैशलेस सुविधा, डायबिटीज के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर कौशल, मनोरोग परामर्श हेतु डॉक्टर कनिष्का तथा मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर रूप सिंह की सेवाएं उपलब्ध, अनुभवी डॉक्टर, आधुनिक सुविधाएं और मरीजों की समर्पित देखभाल।
6: सिटी नर्सिंग होम, सदर मार्केट, भिवाड़ी, स्वास्थ्य का भरोसा आपके अपने शहर में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सिटी नर्सिंग होम भिवाड़ी।
7: अरे कहाँ जा रही हो?
8: मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए अंशुल ज्वेलर्स।
7: अच्छा, पर अंशुल ज्वेलर्स से क्यों?
8: अंशुल ज्वेलर्स के पास है सोने, चांदी और हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन, वो भी BIS के 6 अंकों वाले हॉलमार्क HUID के साथ। और तो और, इनकी ज्वेलरी को हम भारत सरकार द्वारा चलाए गए BIS केयर ऐप के वेरीफाई HUID फीचर से आभूषणों की शुद्धता का प्रमाण देख सकते हैं।
7: जी हाँ, खरे आभूषणों की प्रामाणिकता जिसके साथ बढ़ेगी आपकी सुंदरता। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर। हमारा पता, शॉप नंबर 7, गणपति मॉल, समतल मोड, भिवाड़ी, राजस्थान, या मेन बाजार नजदीक हनुमान मंदिर, तावड़ू, हरियाणा। संपर्क करें 9992533611 या फिर 9354898521 पर। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर।
9: कभी भी इमरजेंसी हो या सिर्फ एक छोटी सी चेकअप की जरूरत हो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेड़ा और भिवाड़ी में आपका अपना हॉस्पिटल है। 24 घंटे इमरजेंसी, AC प्राइवेट रूम्स, वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर, डिजिटल एक्सरे, क्लिनिकल लैब, TMT, ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी, फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी, स्किन प्रिक एंड ब्लड एलर्जी टेस्ट, एलर्जी का जड़ से इलाज। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं मेडिसिन, सर्जरी, ENT, हेड एंड नेक सर्जरी, ऑब्स एंड गाइनी, ऑर्थोपेडिक्स, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कैशलेस फैसिलिटी, सभी TPA के साथ। तो अब टेंशन मत लो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेड़ा, प्लॉट नंबर 5, सेक्टर 6 और भिवाड़ी, B83, भगत सिंह कॉलोनी। बस एक कॉल या एक विजिट, नो है 8607274999।
10: भारत अल्ट्रासाउंड एवं डायग्नोस्टिक सेंटर पर अत्याधुनिक MRI, 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 5D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, डिजिटल एक्सरे, डीआर, टीएमटी, ईईजी व फुल्ली कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब प्रतिदिन उपलब्ध है।
11: भारत डायग्नोस्टिक्स द्वारा गत 20 वर्षों से एमडी रेडियोलॉजिस्ट पीजीआई चंडीगढ़ में प्रशिक्षित अनुभवी डॉक्टर्स द्वारा सभी जांचें की जा रही हैं।
10: भारत डायग्नोस्टिक्स पर 5D अल्ट्रासाउंड मशीन द्वारा लेवल 1 एंड 2 फीटल अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इको कार्डियोग्राफी, लिवर फाइब्रो स्कैन व 3D सीटी स्कैन मशीन पर एंजियोग्राफी, यूरोग्राफी व एंटेरोग्राफी की जांच भी की जाती है। 1/57/58 राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, सेंट्रल मार्केट के पास, भिवाड़ी। कॉल 9351004500।
5: दूसरी ब्रांच A50 भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉल 8058304500।
12: श्रीराम इंडस्ट्रीज आर्मर जैन, भारत में मेक इन इंडिया पहल के तहत विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाले उत्पादों के निर्माण में एक भरोसेमंद नाम। यहाँ बनते हैं फायर रेटेड और नॉन फायर रेटेड डोर्स, मोटराइज्ड और मैनुअल गेट्स, जनरल पर्पस डोर्स, एक्सेस डोर्स, डॉक लेवलर, फायर हॉज कैबिनेट्स और आपकी जरूरत के मुताबिक कस्टमाइज्ड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस। BIS, CBRI और NABL सर्टिफाइड वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स उचित कीमत पर। आर्मर जैन आपको देता है वादा, गुणवत्ता, सुरक्षा और विश्वास का। संपर्क करें 7014735108। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.armorzain.co.in। आर्मर जैन, जब बात हो गुणवत्ता और भरोसे की।
0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
13: और लीजिए भाई साहब, एक बार फिर से प्यारी से गुड वाली मॉर्निंग है, नमस्कार है, आदाब है और हाजिर है आपका दोस्त एंड होस्ट आरजे यश, यानी कि आपका खुर्राफत यश। और भाई साहब, आपको तो पता है कि जब भी यश आता है तो अपने साथ में बहुत ही ढेर सारी बातों को लेकर के आता है। लेकिन साहब, जब भी यश रेडियो पर होता है तो यश के पास एक बड़ी ही दूर से दौड़ते भागते उछलते कूदते फाते रिक्वेस्ट आ जाती है। लेकिन भाई साहब, आज तो फ्लाइट द्वारा मेरे पास बड़ी ही दूर से रिक्वेस्ट आई और बड़े ही प्यारे से गाने की रिक्वेस्ट आई है। मतलब यार, तलाश तो मुझे भी है, तलाश उनको भी है जिनकी तरफ से रिक्वेस्ट आई है, और तलाश तो सबको होती है। मतलब गाना कुछ ऐसा है कि

किरण जी, हाँ भाई साहब, सपनों की रानी की तलाश में भाई साहब ने कर दी है रिक्वेस्ट के अब हम रेडियो से बताएंगे, जहाँ भी हमारे सपनों की रानी होगी भाई साहब आ जाएगी। तो चले भाई साहब, आपको बता दें ये रिक्वेस्ट कहाँ से कैसी क्यों आई है। तो भैया ये रिक्वेस्ट बड़ी ही दूर से तो नहीं, अपने भिवाड़ी से, अपने भिवाड़ी शहर से ही है और शादाब भाई की तरफ से ये रिक्वेस्ट है। तो भैया शादाब भाई, आप अपने इस प्यारे से गाने को एंजॉय कीजिएगा और मेरे प्यारे से लाखों लिसनर्स, आप लोग भी अपने इस प्यारे से गाने को एंजॉय कीजिएगा। बस यश यू चाहेगा और यू आएगा, लेकिन यहाँ पर ले गए एक रिक्वेस्ट भरा म्यूजिकल ब्रेक।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
1: मैं जयपुर जा रहा हूँ।
2: अच्छा तो आते हुए जयपुर के मशहूर दूध लड्डू और प्याज कचौरी लेते आना।
1: अरे दूध लड्डू और प्याज कचौरी के लिए जयपुर जाने का इंतजार क्यों करना, क्योंकि अब आपके शहर भिवाड़ी में अलवर बाईपास पर खुल चुका है कान्हा स्वीट्स।
2: जी हाँ, कान्हा स्वीट्स पर मिलते हैं स्वादिष्ट दूध लड्डू, प्याज कचौरी, समोसे किसी कलाकंद, रसमलाई, कुल्हड़ रबड़ी और सभी प्रकार की मिठाइयाँ।
1: बिल्कुल, हर मिठाई में स्वाद ऐसा कि एक बार खाएं तो दिल कहे एक और।
2: तो फिर आज मिठास हो जाए कान्हा स्वीट्स के साथ।
1: हाँ, परिवार हो या मेहमान, त्योहार हो या कोई खास खुशी, हर मौके की मिठास कान्हा स्वीट्स के साथ। पता नोट कर लीजिए,
2: शॉप नंबर AG F04, कैपिटल आर्केडिया, अलवर बाईपास इन फ्रंट ऑफ वेदांता फार्म, भिवाड़ी, राजस्थान।
3: मोहाली और गुड़गांव का डेंटल अनुभव अब भिवाड़ी में। आइए वी केयर डेंटल क्लिनिक इम्प्लांट सेंटर, जहां RCT, कैपिंग और डेंटल इम्प्लांट के एक्सपर्ट ट्रीटमेंट के साथ आपको मिलता है डॉक्टर रुकु सिंगला के 16 वर्षों के अनुभव और विशेषज्ञता का भरोसा। आर्मी और कॉर्पोरेट कर्मचारियों के लिए स्पेशल डिस्काउंट। पता, अपोजिट मैकडोनल्ड्स, JMK पेट क्लिनिक के पास, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉल करें 7814399374। वी केयर डेंटल, आपकी मुस्कान हमारा भरोसा।
2: क्या आपकी आँखों की रोशनी से जुड़ी कोई परेशानी है? क्या आप चश्मे से छुटकारा पाना चाहते हैं?
1: तो आइए आधुनिक सुविधाओं से युक्त मिश्री देवी आई हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी आई सेंटर।
2: पिछले 15 वर्षों से नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में भरोसेमंद सेवाएं, अब बहर रोड, नियम राणा और टपुकड़ा भिवाड़ी में।
1: यहाँ उपलब्ध है मोतियाबिंद, फेको, मल्टीफोकल एवं प्रीमियम लेंस, लेसिक लेजर, कॉर्निया, ग्लूकोमा और रेटिना उपचार एवं सर्जरी की आधुनिक सुविधाएं।
2: और अब दोनों आँखों का लेसिक लेजर उपचार आधुनिक तकनीक के साथ आपकी पहुंच में और उचित दरों पर।
1: बेहतर नेत्र उपचार, उचित खर्च और भरोसेमंद देखभाल के साथ चश्मे से आजादी की ओर बढ़ाइए अपना कदम। मिश्री देवी आई हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी आई सेंटर। संपर्क नंबर
2: 9783220043 या 01493294200। अब आपके शहर भिवाड़ी में साइकियाट्री एवं ऑर्थोपेडिक्स की नियमित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है ओजस हॉस्पिटल में।
1: मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितिका अग्रवाल द्वारा डिप्रेशन, नींद की समस्या, बेचैनी, घबराहट, मानसिक तनाव, स्किजोफ्रेनिया और OCD जैसी समस्याओं का उचित उपचार किया जाता है एवं काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध है।
2: वहीं हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेंद्र अग्रवाल द्वारा चोट, ट्रॉमा, फ्रैक्चर, घुटने एवं कमर का दर्द, लिगामेंट की चोट, गठिया और आर्थराइटिस जैसी हड्डी एवं जोड़ संबंधी समस्याओं का उपचार किया जाता है।
1: साथ ही सर्जरी, फिजियोथेरेपी और पेन मैनेजमेंट की सुविधा भी उपलब्ध है।
2: तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या को नजरअंदाज न करें, पहुंचिए ओजस हॉस्पिटल।
1: पता, नगीना गार्डन के पास, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी।
2: फोन करें 9521333591। ओजस हॉस्पिटल, बेहतर स्वास्थ्य की ओर एक कदम। अब आपके शहर धारूहेड़ा में ही मिल रही है आधुनिक और बेहतरीन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सुविधाएं। लोटस हॉस्पिटल, बेस्ट टैग सिटी, BPL फ्लैट के सामने धारूहेड़ा में, डॉक्टर अन्विका बंसल, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, 15 वर्ष से अधिक अनुभव के साथ, जो पहले से ही भिवाड़ी में अपनी सेवाएं दे रही थी, अब अपने नए लोटस हॉस्पिटल में OPD और इमरजेंसी सर्विस के लिए उपलब्ध हैं। इसके साथ ही यहां उपलब्ध है अनुभवी हड्डी रोग विशेषज्ञ। यहां घुटना बदलना, कुल्हा बदलना और रीढ़ से जुड़ी सभी बीमारी का इलाज होता है, और एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट और लैप्रोस्कोपिक जनरल सर्जन, जहां लेजर टेक्निक से बवासीर, भगंदर का इलाज लोटस हॉस्पिटल में मिलता है, तथा 24 घंटे आपातकालीन सुविधा, एडवांस्ड एक्सरे, लैबोरेटरी, फार्मेसी, अल्ट्रासाउंड सर्विस, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, AC प्राइवेट रूम की सुविधाएं उपलब्ध हैं। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आज ही विजिट करें लोटस हॉस्पिटल, बेस्ट टैग सिटी, BPL फ्लैट के सामने, धारूहेड़ा। संपर्क करें 01274415033।
4: भिवाड़ी का पहला ISO और NABH सर्टिफाइड श्री कृष्णा हॉस्पिटल, जिसमें मल्टी

0: स्पेशलिस्ट ओपीडी, 10 बेड का आईसीयू, सबसे बड़ा मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 50 बेड का इंडोर, 24 आवर्स एम्बुलेंस, फार्मेसी और इमरजेंसी सेवाएं तथा लैब, डिजिटल एक्सरे जैसी सुविधाओं से लैस श्री कृष्णा हॉस्पिटल अधिकांश मल्टीनेशनल कंपनियों के मेडिकल कंसल्टेंसी एवं कैशलेस उपचार का एकमात्र सेंटर। श्री कृष्णा हॉस्पिटल, B14849 भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी, 8529113916, 7340013916। इस हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट और फिजिशियन की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं।
1: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
2: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
1: कान नाक गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
3: आपके हर खास समारोह को शानदार और यादगार बनाने के लिए आइए भाटोटिया टेंट हाउस एंड इवेंट ऑर्गेनाइजर।
4: सभी प्रकार के टेंट आइटम, शानदार डेकोरेशन और इंडोर आउटडोर कैटरिंग की बेहतरीन सुविधा, शादी, सगाई, जन्मदिन या किसी भी समारोह के लिए एक ही जगह पर पूरी व्यवस्था।
3: संपर्क करें हंसराज भाटोटिया, मोबाइल नंबर 9416347214।
4: और आपके खास समारोह के लिए शानदार राजविलास मैरिज एवं बैंक्वेट हॉल, शिवनगर पार्ट 2, पांचाल कॉलोनी, सीथल रोड, धारूहेड़ा, जिला रेवाड़ी, हरियाणा।
3: भाटोटिया टेंट हाउस और राजविलास मैरिज बैंक्वेट हॉल, आपके समारोह की पूरी तैयारी एक ही जगह।
5: क्या कर रही है?
6: ऑनलाइन बुकिंग देख रही हूँ, जयपुर जाना है।
5: फिर से? अभी तो गई थी।
6: हाँ, फिर से जाना है।
5: तू अपनी गाड़ी क्यों नहीं ले लेती?
6: गाड़ी नॉट इन बजट।
5: अरे, गांधी मोटर्स है ना?
6: गांधी मोटर्स?
5: हाँ, गांधी मोटर्स। गांधी मोटर्स कार सेल और परचेज के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर हर तरह की गाड़ियाँ बहुत अच्छी कीमत पे मिलती हैं।
6: तो कब चले?
5: अरे, इसमें सोचना कैसा, अभी चलना। गाड़ियों के सेल और परचेज के लिए आज ही संपर्क करें।
7: हमारा पता है शॉप नंबर S16 एवलॉन रॉयल प्लाजा, अल्बर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9785980000 या फिर 8740000144 पर।
8: भिवाड़ी में 27 वर्षों से सेवारत, भरोसेमंद 24 घंटे इलाज हेतु गोपीनाथ अस्पताल, ISO तथा NABH मान्यता एवं राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मल्टी स्पेशलिटी सेंट्रल AC OPD, 50 बेड की सुविधा से युक्त गोपीनाथ हॉस्पिटल, अत्याधुनिक 3 ऑपरेशन थिएटर, 7 बेड ICU, 2 जीवन रक्षक एम्बुलेंस, डिजिटल एक्सरे, ऑर्थोपेडिक सर्जन, फिजिशियन तथा लेडी डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा से युक्त गोपीनाथ अस्पताल। यहाँ नेफ्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, डायबिटोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट की नियमित OPD भी उपलब्ध है। लगभग सभी TPA कैशलेस सुविधा के साथ तथा भिवाड़ी की व आसपास की औद्योगिक इकाइयों के बीमा कंपनियां भी पैनल पर हैं। पता 226 इंडस्ट्रियल एरिया, सदर बाजार के पीछे, गोपीनाथ रोड, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 01493619563 एंड 9784333863।
9: क्या आप बिजली के बिल से परेशान हैं? क्या आप जानते हैं सोलर एनर्जी से आप बिजली के बिल से आजादी पा सकते हैं? जी हाँ, अपने घर, ऑफिस और फैक्ट्री की छत पर सोलर पैनल लगाएं और भारी बिजली के बिल से मुक्ति पाएं। सोलर एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको 30% तक रिटर्न देता है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9610255584। ग्रीन रूट्स रिन्यूएबल एनर्जी।
3: आपकी आंखें हैं अनमोल, आपकी आंखों को चाहिए बेहतर देखभाल, तो आइए गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स भिवाड़ी।
10: यहाँ मिलते हैं सभी ब्रांडेड कंपनियों के स्टाइलिश फ्रेम और हाई क्वालिटी लेंस। Ray-Ban, Vogue, Tommy Hilfiger, Oakley, Prada, Jeez, Essilor, Crizal, Vision RX और भी कई नेशनल व इंटरनेशनल ब्रांड्स।
3: साथ ही कॉन्टैक्ट लेंस, लो विजन क्लिनिक, मायोपिया क्लिनिक, विजन थेरेपी और आधुनिक मशीनों द्वारा कंप्यूटरीकृत आई एग्जामिनेशन, प्रशिक्षित ऑप्टोमेट्रिस्ट की पूरी टीम।
10: भिवाड़ी में सन 2006 से भरोसे का नाम गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स।
3: गणपति मॉल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास समतल चौक भिवाड़ी और अशियाना आंगन के सामने BDI सोसाइटी के पास अलवर बाईपास रोड भिवाड़ी।
4: अपॉइंटमेंट या जानकारी के लिए अभी कॉल करें 9636061776 या 9928929309।
11: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है, कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है, और इन्हीं श्रृंगार को सवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, एक से एक उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A, आशियाना आंगन प्लाजा नियर मैकडॉनल्ड, अलवर बाईपास रोड भिवाड़ी। कॉन्टेक्ट करें 01493493222 या फिर 9034969731 पर। ऐसे डिजाइन जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्स ही आए।
12: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 44, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
13: और लीची भाई से एक बार फिर से प्यारी सी गुड वाली मॉर्निंग है, नमस्कार है, आदाब है और हाजिर है आपका दोस्त एंड होस्ट RJ यश, यानी कि आपका रेडियो दोस्त यश। और भाई साहब आपको तो पता है कि जब भी यश आता है तो अपने साथ में बहुत ही ढेर सारी खबरों को लेकर के आता है, और अब वक्त है खबरों का, सिलसिला है खबरों का। तो लीजिए भाई साहब, सबसे पहले नंबर पर सबसे बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से चुनाव आयोग को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। जी हाँ दोस्तों, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और पहली खबर है देश की सबसे बड़ी अदालत से, यानी सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से फॉर्म 6 में बदलाव से जुड़े मामले में रिकॉर्ड मांगे हैं। फॉर्म 6 का इस्तेमाल मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए किया जाता है। अब इस मामले में कोर्ट के सामने चुनाव आयोग की ओर से संबंधित रिकॉर्ड रखे जाएंगे, यानी वोटर लिस्ट से जुड़े इस मामले पर अब सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई पर रहेगी। खबर नंबर 2, महिला अफसरों ने दिखाया दम। जी हाँ दोस्तों, अब बात देश की बेटियों के हौसले की। भारतीय वायुसेना की 25 से ज्यादा महिला अधिकारियों ने तरंग शक्ति सैन्य अभ्यास में हिस्सा लिया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित इस अभ्यास में महिला अधिकारियों की भागीदारी ने एक बार फिर दिखाया कि भारतीय महिलाएं देश की रक्षा के क्षेत्र में लगातार अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करा रही है। तो सलाम है उन बेटियों के जज्बे को जो आसमान से लेकर जमीन तक देश का नाम रोशन कर रही है। और अब खबर नंबर 3, भिवाड़ी में प्रदूषण पर बड़ी सख्ती। और दोस्तों अब खबर अपने भिवाड़ी से। NCR क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए प्रशासन ने एयर क्वालिटी सुधारने के लिए कदम तेज किए हैं। भिवाड़ी में 8 मैकेनिकल रोड स्वीपर फिलहाल काम कर रहे हैं, जबकि 7 और मशीनों के लिए वर्क ऑर्डर जारी किए गए हैं। सड़क की धूल कम करने और साफ सफाई व्यवस्था मजबूत करने पर भी जोर दिया जा रहा है। अब देखना होगा कि इन कदमों का भिवाड़ी की हवा और एयर क्वालिटी पर कितना असर पड़ता है। तो दोस्तों ये थी आज की 3 बड़ी खबरें। खबरों से जुड़े रहिए, जागरूक रहिए और सुनते रहिए आपका अपना 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन। खबर बही अंदाज अपना होगा। चलिए फिलहाल एंजॉय कीजिए यहाँ पर इस प्यारे से गाने को।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
1: मैं जयपुर जा रहा हूँ।
2: अच्छा, तो आते हुए जयपुर के मशहूर दूध लड्डू और प्याज कचौरी लेते आना।
1: अरे, दूध लड्डू और प्याज कचौरी के लिए जयपुर जाने का इंतजार क्यों करना, क्योंकि अब आपके शहर भिवाड़ी में अलवर बाईपास पर खुल चुका है कान्हा स्वीट्स।
2: जी हाँ, कान्हा स्वीट्स पर मिलते हैं स्वादिष्ट दूध लड्डू, प्याज कचौरी, समोसे, किसी कलाकंद, रसमलाई, कुल्हड़, रबड़ी और सभी प्रकार की मिठाइयाँ।
1: बिल्कुल, हर मिठाई में स्वाद ऐसा कि एक बार खाएं तो दिल कहे एक और।
2: तो फिर आज मिठास हो जाए कान्हा स्वीट्स के साथ।
1: हाँ, परिवार हो या मेहमान, त्योहार हो या कोई खास खुशी, हर मौके की मिठास कान्हा स्वीट्स के साथ। पता नोट कर लीजिए,
2: शॉप नंबर AG F04, कैपिटल आर्केडिया, अलवर बाईपास इन फ्रंट ऑफ वेदांता फार्म, भिवाड़ी, राजस्थान।
3: मोहाली और गुड़गांव का डेंटल अनुभव अब भिवाड़ी में। आइए वी केयर डेंटल क्लिनिक इम्प्लांट सेंटर, जहां RCT, कैपिंग और डेंटल इम्प्लांट के एक्सपर्ट ट्रीटमेंट के साथ आपको मिलता है डॉक्टर रुकु सिंगला के 16 वर्षों के अनुभव और विशेषज्ञता का भरोसा। आर्मी और कॉर्पोरेट कर्मचारियों के लिए स्पेशल डिस्काउंट। पता, अपोजिट मैकडोनल्ड्स, JMK पेट क्लिनिक के पास, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉल करें 7814399374। वी केयर डेंटल, आपकी मुस्कान हमारा भरोसा।
2: क्या आपकी आँखों की रोशनी से जुड़ी कोई परेशानी है? क्या आप चश्मे से छुटकारा पाना चाहते हैं?
1: तो आइए आधुनिक सुविधाओं से युक्त मिश्री देवी आई हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी आई सेंटर।
2: पिछले 15 वर्षों से नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में भरोसेमंद सेवाएं, अब बहर रोड, नियम राणा और टपूकड़ा भिवाड़ी में।
1: यहाँ उपलब्ध है मोतियाबिंद, फेको, मल्टीफोकल एवं प्रीमियम लेंस, लेसिक लेजर, कॉर्निया, ग्लूकोमा और रेटिना उपचार एवं सर्जरी की आधुनिक सुविधाएं।
2: और अब दोनों आँखों का लेसिक लेजर उपचार आधुनिक तकनीक के साथ आपकी पहुंच में और उचित दरों पर।
1: बेहतर नेत्र उपचार, उचित खर्च और भरोसेमंद देखभाल के साथ चश्मे से आजादी की ओर बढ़ाइए अपना कदम। मिश्री देवी आई हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी आई सेंटर। संपर्क नंबर
2: 9783220043 या 01493294200। अब आपके शहर भिवाड़ी में साइकियाट्री एवं ऑर्थोपेडिक्स की नियमित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है ओजस हॉस्पिटल में।
1: मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितिका अग्रवाल द्वारा डिप्रेशन, नींद की समस्या, बेचैनी, घबराहट, मानसिक तनाव, स्किजोफ्रेनिया और OCD जैसी समस्याओं का उचित उपचार किया जाता है एवं काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध है।
2: वहीं हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेंद्र अग्रवाल द्वारा चोट, ट्रॉमा, फ्रैक्चर, घुटने एवं कमर का दर्द, लिगामेंट की चोट, गठिया और आर्थराइटिस जैसी हड्डी एवं जोड़ संबंधी समस्याओं का उपचार किया जाता है।
1: साथ ही सर्जरी, फिजियोथेरेपी और पेन मैनेजमेंट की सुविधा भी उपलब्ध है।
2: तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या को नजरअंदाज न करें, पहुंचिए ओजस हॉस्पिटल।
1: पता, नगीना गार्डन के पास, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी।
2: फोन करें 9521333591। ओजस हॉस्पिटल, बेहतर स्वास्थ्य की ओर एक कदम। अब आपके शहर धारूहेड़ा में ही मिल रही है आधुनिक और बेहतरीन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सुविधाएं। लोटस हॉस्पिटल, बेस्ट टैग सिटी, BPL फ्लैट के सामने धारूहेड़ा में, डॉक्टर अन्विका बंसल, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, 15 वर्ष से अधिक अनुभव के साथ, जो पहले से ही भिवाड़ी में अपनी सेवाएं दे रही थी, अब अपने नए लोटस हॉस्पिटल में OPD और इमरजेंसी सर्विस के लिए उपलब्ध हैं। इसके साथ ही यहां उपलब्ध है अनुभवी हड्डी रोग विशेषज्ञ। यहां घुटना बदलना, कुल्हा बदलना और रीढ़ से जुड़ी सभी बीमारी का इलाज होता है, और एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट और लैप्रोस्कोपिक जनरल सर्जन, जहां लेजर टेक्निक से बवासीर, भगंदर का इलाज लोटस हॉस्पिटल में मिलता है, तथा 24 घंटे आपातकालीन सुविधा, एडवांस्ड एक्सरे, लैबोरेटरी, फार्मेसी, अल्ट्रासाउंड सर्विस, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, AC प्राइवेट रूम की सुविधाएं उपलब्ध हैं। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आज ही विजिट करें लोटस हॉस्पिटल बैस्टैग सिटी BPL फ्लैट के सामने धारूहेड़ा। संपर्क करें 01274415033।
4: भिवाड़ी का पहला ISO और NABH सर्टिफाइड श्री कृष्णा हॉस्पिटल, जिसमें मल्टी स्पेशलिस्ट OPD, 10 बेड का ICU, सबसे बड़ा मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 50 बेड का इंडोर, 24 आवर्स एम्बुलेंस, फार्मेसी और इमरजेंसी सेवाएं तथा लैब, डिजिटल एक्सरे जैसी सुविधाओं से लैस श्री कृष्णा हॉस्पिटल अधिकांश मल्टीनेशनल कंपनियों के मेडिकल कंसल्टेंसी एवं कैशलेस उपचार का एकमात्र सेंटर। श्री कृष्णा हॉस्पिटल, B14849 भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी, 8529113916 7340013916। इस हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट और फिजिशियन की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
5: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
6: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
5: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
2: आपके हर खास समारोह को शानदार और यादगार बनाने के लिए आइए भाटोटिया टेंट हाउस एंड इवेंट ऑर्गेनाइजर।
1: सभी प्रकार के टेंट आइटम, शानदार डेकोरेशन और इंडोर आउटडोर कैटरिंग की बेहतरीन सुविधा, शादी, सगाई, जन्मदिन या किसी भी समारोह के लिए एक ही जगह पर पूरी व्यवस्था।
2: संपर्क करें हंसराज भाटोटिया, मोबाइल नंबर 9416347214।
1: और आपके खास समारोह के लिए शानदार राजविलास मैरिज एवं बैंक्वेट हॉल, शिवनगर पार्ट 2, पांचाल कॉलोनी, सीथल रोड, धारूहेड़ा, जिला रेवाड़ी, हरियाणा।
2: बाटोटिया टेंट हाउस और राजविलास मैरिज बैंक्वेट हॉल, आपके समारोह की पूरी तैयारी एक ही जगह।
5: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
6: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए
5: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
2: जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी, आँखों का NABH मान्यता प्राप्त सुपर स्पेशलिटी आँखों का हॉस्पिटल आपके शहर भिवाड़ी में। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी आपको प्रदान करता है विश्व स्तरीय आँखों की देखभाल।
1: हमारे सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल में आपको मिलेगी अनुभवी डॉक्टरों, आई सर्जनों की विशेषज्ञ टीम, पूर्णतः मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर MICS टॉपिकल फैको तकनीक से कैटरेक्ट, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेजर से ऑपरेशन बिना इंजेक्शन और टांके,
2: रेटिना आंख का पर्दा, ग्लूकोमा, काला मोतियाबिंद का उन्नत इलाज, बच्चों की आंखों का इलाज, हमारे पास सभी इंश्योरेंस और TPA पैनल उपलब्ध हैं। निशुल्क कैशलेस इलाज का लाभ उठाएं।
1: आज ही हमें सेवा का मौका दें। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भगत सिंह कॉलोनी, अलवर बाईपास, हरीश बेकरी के पास, भिवाड़ी।
2: संपर्क करें 7424830174। आज ही अपनी आंखों का इलाज कराएं और पाएं एक उज्जला भविष्य। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी।
7: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं कैशलेस सर्विस के लिए, कहां मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
8: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहां मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंट मैकेनिक द्वारा कार सर्विस, कार एसी वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
7: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड नियर बाय, थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इन्फॉर्मेशन कॉल 9799278900।
9: न्यू गर्ग सुपर स्टोर, जहाँ मिलते हैं ग्रोसरीज, ड्राई फ्रूट्स, कॉस्मेटिक्स आइटम और सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स। बजट की दुकान, MRP की छुट्टी, आपका फायदा हमारा वादा। अब वक्त है MRP को कहें बाय बाय। कॉन्टेक्ट करें 7413 999-5252 पर अलवर बाईपास रोड नियर मार्बल मार्केट भिवाड़ी।
10: राहुल, इंडस्ट्री प्लान तो बढ़िया है, पर इस बार अपनी फैक्ट्री के इलेक्ट्रिकल्स पर एक्स्ट्रा फोकस रखना।
11: डोंट वरी सर, इंडस्ट्री का सारा इलेक्ट्रिकल्स खंडेलवाल एजेंसी से आएगा। ये NCR का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस है, जहां हमें पैनल, स्विच गियर, मोटर ड्राइव, इंडस्ट्रियल लाइटनिंग और वायर एंड केबल में 30 से ज्यादा मल्टीनेशनल ब्रांड ऑप्शंस मिल जाएंगे।
12: खंडेलवाल एजेंसीज, NCR का लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस इन भिवाड़ी।
0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
13: हेलो जी, नमस्कार है, आदाब है और हाजिर है आपका दोस्त एंड होस्ट RJ यश, यानी कि आपका खुर्राफत यश। और भाई साहब, आपको तो पता है कि जब भी यश आता है तो अपने साथ में बहुत ही ढेर सारी मस्ती और मजाक वाली बातें लेकर के आता है। लेकिन साहब, आपको ये भी पता है कि जब भी मस्ती और मजाक वाली बातें लेकर के आता है तो अपने साथ में एक बहुत ही प्यारे से नन्हे से मेहमान को भी लेकर के आता है। तो चले अब बिना देर किए हुए बुलाते अपने प्यारे से नन्हे से मेहमान को। अरे चिंटू बेटे।
14: जी अंकल, जी अंकल, बताओ, बुलाया क्या?
13: अरे बेटे, आवाज दी है तो बुलाया ही होगा यार, ऐसे क्यों सीधे दौड़ लगा के चले आते हो? थोड़ा तो टाइम लगा लिया करो बेटे।
14: अरे अंकल, मेरा तो सीधा ऑनलाइन काम चलता है, हाल बुलाओ, हाल प्रिंट आउट से निकलता है मेरा तो।
13: अच्छा चलो, चुटकुला सुनाओ आज बढ़िया सा।
14: अरे अंकल, आज तो गजब ही हो गया यार।
13: गजब हो गया? ऐसा क्या गजब हो गया बेटा, क्या हो गया बताओ?
14: अरे अंकल, अंकल, आज मेरे मोहल्ले के बड़े भैया डॉक्टर के पास गए।
13: अरे बेटा, ऐसा क्या हो गया कि वो डॉक्टर के पास गए? सब सही है ना?
14: अरे अंकल, अंकल, सब सही है, डॉक्टर बेचारे बेहोश हो गए।
13: डॉक्टर बेहोश हो गए? ऐसा क्यों, ऐसा क्या हो गया?
14: अरे अंकल, डॉक्टर ने पूछा कि बेटा बेटा, जब तुम तनाव में होते हो तो क्या करते हो?
13: हाँ, फिर आपके भाई ने क्या बोला?
14: अरे अंकल, उन्होंने बोला, जी सर, मैं मंदिर चला जाता हूँ।
13: हाँ तो ये तो बढ़िया बात है।
14: अरे अंकल, यही तो डॉक्टर ने बोला, बहुत बढ़िया बेटा, ध्यान व्यान लगाते हो वहाँ।
13: हाँ फिर?
14: फिर क्या, मेरे भैया बोले, जी नहीं सर, मैं तो लोगों के जूते चप्पल मिक्स कर देता हूँ, जब उन लोगों को देखता रहता हूँ तो उनको तनाव में देख देख कर मेरा तनाव दूर हो जाता है।
13: बेटे, जैसे तुम वैसे ही तुम्हारा बड़ा भाई, क्या ही करे इस लड़के का यार, कहाँ से कैसे क्यों लेकर आते हो चिंटू बेटे, क्या ही बताएं भाई साहब। देख रहे हैं आप, अपना तनाव दूर करने के लिए लोगों के चप्पल जूते मिक्स कर देते हैं ये, और जैसे ही चप्पल जूते मिक्स करते हैं, लोग अपने चप्पल जूते ढूंढते रहते हैं और परेशान हो जाते हैं, तो ये उनकी परेशानी को देख कर खुद की परेशानी दूर करते हैं। भाई साहब, क्या ही लड़के आ गए आजकल मार्केट में। चलिए बहरहाल, चिंटू की ऐसी बातें चलती रहेंगी, आप लोग कहीं बजाय सुनते रहे अपने प्यारे से शहर भिवाड़ी का प्यारा सा रेडियो 90.8 FM 24। यश, यू जाएगा, यू आएगा, लेकर और भी ढेर सारी मस्ती और मजाक वाली बातें। तब तक जरा मुस्कुराइए, क्योंकि आप शहर के नंबर 1 रेडियो 90.8 FM 24 पर हैं। चलिए एंजॉय कीजिए इस गाने को।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
1: अरे यार, आज शाम पार्टी करें?
2: नहीं यार, आज डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाना था।
1: गुरुग्राम? इतनी दूर?
2: हाँ यार, वहीं तो बेस्ट हाइजीन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और पेनलेस ट्रीटमेंट मिलता है।
1: ये बात पहले सही थी पर अब नहीं।
2: मतलब?
1: गुरुग्राम के ही एक्सपीरियंस्ड डेंटल एक्सपर्ट डॉक्टर जितिन टक्कर पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ मिलता है प्रीमियम सेटअप, एडवांस टेक्नोलॉजी, कंप्लीट हाइजीन और 100% पेनलेस डेंटल ट्रीटमेंट। और सबसे अच्छी बात, चार्जेस दिल्ली और गुरुग्राम से काफी कम।
2: तो फिर दूर जाने का टेंशन खत्म।
1: बिल्कुल, अब एक्सपीरियंस, भरोसा और क्वालिटी, सब कुछ घर के पास भिवाड़ी में। आइए 32 Bites डेंटल क्लिनिक, ए ब्लॉक, A140, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। आज ही संपर्क करें डॉक्टर जितिन टक्कर 9871122135। 32 Bites डेंटल क्लिनिक, बेहतर चॉइसेस, बेहतर मुस्कान। अजी, सुनते हो, मेरा फोन टूट गया है।
2: अरे भाग्यवान, सुनो, घबराओ नहीं, खंडेलवाल मोबाइल भिवाड़ी लाया है 0% डाउन पेमेंट पर। मोबाइल फोन 9784960000। और सुनो, ओप्पो ने लॉन्च किया है अभी रेनो 15 सी कम दामों में, बजाज फाइनेंस के साथ 0% ब्याज, 10% कैश बैक के साथ, प्लस ट्रॉली बैग, 0% डाउन पेमेंट। और बैटरी से हो परेशान तो रियलमी ने लॉन्च किया है अपना एक नया मॉडल 10,000 mAh बैटरी के साथ। अभी जाइए खंडेलवाल मोबाइल पर ढेर सारे गिफ्ट के साथ, नीलम चौक। चिंता क्यों करते हो, बजाज फाइनेंस है ना अपने साथ। 9784960000 और 9828288666।
3: राहुल यार, मैंने नोएडा से जॉब स्विच कर दिया है, अब सोच रही हूँ भिवाड़ी में रेंटल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा।
4: चिंता की कोई बात नहीं, मेगा एयर कंडीशनर्स एंड इलेक्ट्रिक सर्विस है ना, ये पूरे दिल्ली NCR में अपनी रेंटल सर्विस दे रहे हैं। और इनके यहाँ टावर AC, विंडो AC, स्प्लिट AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड LED TV, सभी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
3: लेकिन इनकी सर्विस भिवाड़ी तो बहुत महंगी होगी ना?
4: बिल्कुल भी नहीं, आपको ये सर्विस सेम रेट पर मिलने वाली है। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9899247102 पर या फिर विजिट करें www.maces.in पर।
5: ये क्या, अभी भी डीजल कार चला रहे हो? अब समय है स्मार्ट फ्यूल पर स्विच करने का, वो भी ज्यादा बचत के साथ। पेश है विक्टोरिस SCNG। ये स्मार्ट है क्योंकि ये देता है 27.02 किलोमीटर पर KG का शानदार माइलेज। और इसका अंडरबॉडी CNG टैंक बूट स्पेस पर कोई समझौता नहीं करता। ज्यादा बचत भी, क्योंकि अपनी पुरानी डीजल कार के एक्सचेंज पर पाएं 50,000 रुपए तक का फायदा। तो देर किस बात की, आज ही बुक करें, अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम पर जाएं। नियम बशर्ते लागू।
6: विजिट फॉर्च्यून कार्स भिवाड़ी।
7: मॉडर्न अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर भिवाड़ी पर अनुभवी रेडियोलॉजिस्ट व पैथोलॉजिस्ट द्वारा अत्याधुनिक मशीनों से 32 slice, 3D CT scan, 4D ultrasound, color Doppler, echo cardiography, digital X-ray, IVP, barium, HSG, digital OPG, DMT, ECG, EEG, BFT, mammography व fully advanced computerized pathology lab की सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध हैं।
8: Near सरकारी हॉस्पिटल 135 भिवाड़ी, दूसरी ब्रांच, मॉडर्न डायग्नोस्टिक एवं इमेजिंग सेंटर, नियर नगर पालिका ऑफिस, अपोजिट अंबेडकर पार्क, धारूहेड़ा। कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800-123-4494 या 9983040100 पर।
0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
9: और लीजिए भाई साहब, एक बार फिर से हाजिर है आपका दोस्त एंड होस्ट RJ यश, यानी कि आपका खुर्राफत यश। और भाई साहब, आपको तो पता है कि जब भी यश आता है तो बहुत ही ढेर सारी मस्ती और मजाक वाली बातें लेकर के आता है। लेकिन साहब, आपको ये भी पता है कि जब भी यश आता है तो दौड़ते भागते छलते कूदते फाते चला भी जाता है। जी हाँ भाई साहब, कुल मिलाकर के बात यह है कि अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। लेकिन जाते जाते इतना जरूर कहूंगा कि भाई साहब, जिंदगी में खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और यूं ही यश को प्यार देते रहिए। और साथ में सुनते रहिए अपने प्यारे से शहर भिवाड़ी का प्यारा सा रेडियो 90.8 FM 24। मैं शो गया और कल आया लेकर और भी ढेर सारी मस्ती और मजाक वाली बातें। जी हाँ भाई साहब, और जाते जाते इतना जरूर कहूंगा कि आप लोगों को शो कैसा लगता है हमें जरूर बताइएगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8432666588 पर बस फोन उठाइए, कॉल लगाइए, मैं आपके कॉल का इंतजार करूंगा। क्योंकि भाई साहब, मैं आपका इंतजार करता ही रहता हूँ, क्या करूँ, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर के सुबह तक। सिर्फ इंतजार ही करता रहता हूँ, तो बस इंतजार मत कराइए, सीधे फोन उठाइए, कॉल लगाइए और हमें जरूर बताइएगा। बहरहाल यहाँ पर मैं लेता हूँ आपसे विदा, टाटा बाय बाय, टेक केयर भिवाड़ी, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और यही यश को प्यार देते रहो। बस मैं शो गया और कल आया लेकर और भी ढेर सारी मस्ती और मजाक वाली बातें। टाटा बाय बाय, टेक केयर भिवाड़ी।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
1: मैं जयपुर जा रहा हूँ।
2: अच्छा, तो आते हुए जयपुर के मशहूर दूध लड्डू और प्याज कचौरी लेते आना।
1: अरे, दूध लड्डू और प्याज कचौरी के लिए जयपुर जाने का इंतजार क्यों करना, क्योंकि अब आपके शहर भिवाड़ी में अलवर बाईपास पर खुल चुका है कान्हा स्वीट्स।
2: जी हाँ, कान्हा स्वीट्स पर मिलते हैं स्वादिष्ट दूध लड्डू, प्याज कचौरी, समोसे किसी कलाकंद, रसमलाई, कुल्हड़ रबड़ी और सभी प्रकार की मिठाइयाँ।
1: बिल्कुल, हर मिठाई में स्वाद ऐसा कि एक बार खाएं तो दिल कहे एक और।
2: तो फिर आज मिठास हो जाए कान्हा स्वीट्स के साथ।
1: हाँ, परिवार हो या मेहमान, त्योहार हो या कोई खास खुशी, हर मौके की मिठास कान्हा स्वीट्स के साथ। पता नोट कर लीजिए,
2: शॉप नंबर AG F04, कैपिटल आर्केडिया, अलवर बाईपास इन फ्रंट ऑफ वेदांता फार्म, भिवाड़ी, राजस्थान।
3: मोहाली और गुड़गांव का डेंटल अनुभव अब भिवाड़ी में। आइए वी केयर डेंटल क्लिनिक इम्प्लांट सेंटर, जहां RCT, कैपिंग और डेंटल इम्प्लांट के एक्सपर्ट ट्रीटमेंट के साथ आपको मिलता है डॉक्टर रुकु सिंगला के 16 वर्षों के अनुभव और विशेषज्ञता का भरोसा। आर्मी और कॉर्पोरेट कर्मचारियों के लिए स्पेशल डिस्काउंट। पता, अपोजिट मैकडोनल्ड्स, JMK पेट क्लिनिक के पास, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉल करें 7814399374। वी केयर डेंटल, आपकी मुस्कान हमारा भरोसा।
2: क्या आपकी आँखों की रोशनी से जुड़ी कोई परेशानी है? क्या आप चश्मे से छुटकारा पाना चाहते हैं?
1: तो आइए, आधुनिक सुविधाओं से युक्त मिश्री देवी आई हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी आई सेंटर।
2: पिछले 15 वर्षों से नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में भरोसेमंद सेवाएं, अब बाहर रोड, नियम राणा और टपुकड़ा भिवाड़ी में।
1: यहाँ उपलब्ध है मोतियाबिंद, फेको, मल्टीफोकल एवं प्रीमियम लेंस, लेसिक लेजर, कॉर्निया, ग्लूकोमा और रेटिना उपचार एवं सर्जरी की आधुनिक सुविधाएं।
2: और अब दोनों आँखों का लेसिक लेजर उपचार आधुनिक तकनीक के साथ आपकी पहुंच में और उचित दरों पर।
1: बेहतर नेत्र उपचार, उचित खर्च और भरोसेमंद देखभाल के साथ चश्मे से आजादी की ओर बढ़ाइए अपना कदम। मिश्री देवी आई हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी आई सेंटर। संपर्क नंबर
2: 9783220043 या 01493294200। अब आपके शहर भिवाड़ी में साइकियाट्री एवं ऑर्थोपेडिक्स की नियमित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है ओजस हॉस्पिटल में।
1: मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितिका अग्रवाल द्वारा डिप्रेशन, नींद की समस्या, बेचैनी, घबराहट, मानसिक तनाव, स्किजोफ्रेनिया और OCD जैसी समस्याओं का उचित उपचार किया जाता है एवं काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध है।
2: वहीं हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेंद्र अग्रवाल द्वारा चोट, ट्रॉमा, फ्रैक्चर, घुटने एवं कमर का दर्द, लिगामेंट की चोट, गठिया और आर्थराइटिस जैसी हड्डी एवं जोड़ संबंधी समस्याओं का उपचार किया जाता है।
1: साथ ही सर्जरी, फिजियोथेरेपी और पेन मैनेजमेंट की सुविधा भी उपलब्ध है।
2: तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या को नजरअंदाज न करें, पहुंचिए ओजस हॉस्पिटल।
1: पता, नगीना गार्डन के पास, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी।
2: फोन करें 9521333591। ओजस हॉस्पिटल, बेहतर स्वास्थ्य की ओर एक कदम। अब आपके शहर धारूहेड़ा में ही मिल रही है आधुनिक और बेहतरीन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सुविधाएं। लोटस हॉस्पिटल, बेस्ट टैग सिटी, BPL फ्लैट के सामने धारूहेड़ा में, डॉक्टर अन्विका बंसल, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, 15 वर्ष से अधिक अनुभव के साथ, जो पहले से ही भिवाड़ी में अपनी सेवाएं दे रही थी, अब अपने नए लोटस हॉस्पिटल में OPD और इमरजेंसी सर्विस के लिए उपलब्ध हैं। इसके साथ ही यहां उपलब्ध है अनुभवी हड्डी रोग विशेषज्ञ। यहां घुटना बदलना, कुल्हा बदलना और रीढ़ से जुड़ी सभी बीमारी का इलाज होता है, और एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट और लैप्रोस्कोपिक जनरल सर्जन, जहां लेजर टेक्निक से बवासीर, भगंदर का इलाज लोटस हॉस्पिटल में मिलता है, तथा 24 घंटे आपातकालीन सुविधा, एडवांस्ड एक्सरे, लैबोरेटरी, फार्मेसी, अल्ट्रासाउंड सर्विस, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, AC प्राइवेट रूम की सुविधाएं उपलब्ध हैं। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आज ही विजिट करें लोटस हॉस्पिटल, बेस्ट टैग सिटी, BPL फ्लैट के सामने, धारूहेड़ा। संपर्क करें 01274415033।
4: भिवाड़ी का पहला ISO

0: और NABH सर्टिफाइड श्री कृष्णा हॉस्पिटल, जिसमें मल्टी स्पेशलिस्ट OPD, 10 बेड का ICU, सबसे बड़ा मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 50 बेड का इंडोर, 24 आवर्स एम्बुलेंस, फार्मेसी और इमरजेंसी सेवाएं तथा लैब, डिजिटल एक्सरे जैसी सुविधाओं से लैस श्री कृष्णा हॉस्पिटल अधिकांश मल्टीनेशनल कंपनियों के मेडिकल कंसल्टेंसी एवं कैशलेस उपचार का एकमात्र सेंटर। श्री कृष्णा हॉस्पिटल, B14849 भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी, 8529113916, 7340013916। इस हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट और फिजिशियन की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
1: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
2: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे, किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
1: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
3: आपके हर खास समारोह को शानदार और यादगार बनाने के लिए आइए भाटोटिया टेंट हाउस एंड इवेंट ऑर्गेनाइजर।
4: सभी प्रकार के टेंट आइटम, शानदार डेकोरेशन और इंडोर आउटडोर कैटरिंग की बेहतरीन सुविधा, शादी, सगाई, जन्मदिन या किसी भी समारोह के लिए एक ही जगह पर पूरी व्यवस्था।
3: संपर्क करें हंसराज भाटोटिया, मोबाइल नंबर 9416347214।
4: और आपके खास समारोह के लिए शानदार राजविलास मैरिज एवं बैंक्वेट हॉल, शिवनगर पार्ट 2, पांचाल कॉलोनी, सीथल रोड, धारूहेड़ा, जिला रेवाड़ी, हरियाणा।
3: बाटोटिया टेंट हाउस और राजविलास मैरिज बैंक्वेट हॉल, आपके समारोह की पूरी तैयारी एक ही जगह।
0: अब भिवाड़ी के सबसे बड़े NABH सर्टिफाइड SS हॉस्पिटल में स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे पाएं। यहां पाएं स्किन स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, नेफ्रोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी, ब्लड बैंक, एल और डायलिसिस, सभी बड़े TPA, कैशलेस RGHS, ECHS, ESIC, चिरंजीवी योजना की कैशलेस सुविधा, यहां 24 घंटे की इमरजेंसी सेवा और एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें OCF2 ऑपोजिट मॉडर्न पब्लिक स्कूल, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी, कॉन्टैक्ट 7230011191 और 9785013999।
5: टाटा की गाड़ी तो ले ली है, अब भिवाड़ी में सर्विस सेंटर ढूंढते रहो।
6: अरे ढूंढना क्यों है, टाटा ऑथराइज्ड AK ऑटोमोबाइल है ना, जो संजय मोटर्स की ही यूनिट है। 2017 से भिवाड़ी का भरोसा है, टाटा के सर्टिफाइड मैकेनिक्स हैं और वहाँ सर्विसिंग बहुत ही शॉर्ट टाइम में हो जाती है।
5: अच्छा, और उसमें क्या खर्चे ही खर्चे?
6: अरे नहीं नहीं, AK ऑटोमोबाइल्स पर कार सर्विसिंग, बॉडी शॉप और व्हील अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग के अलावा कैशलेस इंश्योरेंस और रिन्यूअल, AMC, ऑन रोड मेंटेनेंस और एक्सीडेंट वारंटी जैसी सारी फैसिलिटीज हैं, जो खर्चे बहुत ही कम कर देती हैं। मेन रोड पर फूल बाग थाने के पास ही है ये।
5: अरे वाह, तो वेट क्यों करना, 9462369786 पे कॉल करके अभी AK ऑटोमोबाइल पे सर्विस बुक करो जल्दी।
7: सोनम ये लो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट।
8: अरे इसमें क्या है?
7: वही जो तुम्हें बहुत टाइम से चाहिए था।
8: ये ब्रेसलेट तो मुझे बहुत टाइम से चाहिए था।
7: क्या आप इसे दिल्ली से लाए हो?
8: लेकिन आप दिल्ली कब गए?
7: अरे वो है ना भिवाड़ी में अपने शांति ज्वेलर्स, इनके पास है सोने चांदी हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन और यहां मिलती है हॉलमार्क ज्वेलरी।
8: इनका एड्रेस क्या है?
7: इनका एड्रेस है शॉप नंबर 5, गणपति मॉल, भिवाड़ी। और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9812210987 पर।
9: एक बेहतर कल के लिए, बेहतर मजबूती के लिए, बेहतर बचत के लिए यूज करें SBF रैपिड 550D TMT।
10: मजबूत निर्माण सदा के लिए।
11: मुझे अपने बच्चों के लिए चाहिए एक ऐसा स्कूल जो ICSE से एफिलिएटेड हो।
12: भिवाड़ी में है एक मात्र ऐसा स्कूल SPS ग्लोबल स्कूल, जिसके बच्चों ने ICSE 10th की बोर्ड परीक्षाओं में 100% रिजल्ट के साथ साथ राज्य स्तर पर कराटे, स्केटिंग आदि प्रतियोगिताओं में भी अपने स्कूल का नाम रोशन किया है। यहां शिक्षा से बच्चों का बौद्धिक विकास और खेलकूद से शारीरिक विकास, डिसिप्लिन और समय समय पर सामाजिक व सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं होती रहती हैं, जो बच्चों के सर्वांगीण विकास में मदद करता है। यहां है बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, खेल का मैदान, ऐसी क्लासरूम, डिजिटल क्लासरूम, आधुनिक सुविधाओं से लैस लैब, बेस्ट टीचर की फैसिलिटी।
11: SPS ग्लोबल स्कूल नियर कैपिटल मॉल भिवाड़ी, आज ही विजिट करें या कॉल करें 9952388330।

0: औद्योगिक क्षेत्र सारे खुद करौली बंदापुर खुशखेड़ा व चौपान की में 16 औद्योगिक व 2 वेयर हाउस भूखंडों को ई नीलामी के माध्यम से बेचैन किया जा रहा है। इन भूखंडों के लिए अमानत राशि दिनांक 9/10/2026 समय 6 बजे तक जमा कराकर बिड लगा सकते हैं। बिड लगाने की अंतिम तिथि 14/10/2026 समय 5 बजे तक है। इसके साथ ही औद्योगिक क्षेत्र सलारपुर व पथरेड़ी में 43 भूखंडों को प्रत्यक्ष आवंटन योजना के माध्यम से बेचैन किया जा रहा है। इन भूखंडों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 12/10/2026 समय 6 बजे तक है। अंतिम जानकारी के लिए रिको की वेबसाइट www.riico.co.in यानी www.rico.co.in पर एवं रिको इकाई कार्यालय भिवाड़ी द्वितीय रिको रेस्ट हाउस रोड भिवाड़ी में संपर्क कर सकते हैं।
1: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।

0: मैं जयपुर जा रहा हूँ।
1: अच्छा, तो आते हुए जयपुर के मशहूर दूध लड्डू और प्याज कचौरी लेते आना।
0: अरे, दूध लड्डू और प्याज कचौरी के लिए जयपुर जाने का इंतजार क्यों करना, क्योंकि अब आपके शहर भिवाड़ी में अलवर बाईपास पर खुल चुका है कान्हा स्वीट्स।
1: जी हाँ, कान्हा स्वीट्स पर मिलते हैं स्वादिष्ट दूध लड्डू, प्याज कचौरी, समोसे किसी कलाकंद, रसमलाई, कुल्हड़ रबड़ी और सभी प्रकार की मिठाइयाँ।
0: बिल्कुल, हर मिठाई में स्वाद ऐसा कि एक बार खाएं तो दिल कहे एक और।
1: तो फिर आज मिठास हो जाए कान्हा स्वीट्स के साथ।
0: हाँ, परिवार हो या मेहमान, त्योहार हो या कोई खास खुशी, हर मौके की मिठास कान्हा स्वीट्स के साथ। पता नोट कर लीजिए,
1: शॉप नंबर AG F04, कैपिटल आर्केडिया, अलवर बाईपास इन फ्रंट ऑफ वेदांता फार्म, भिवाड़ी, राजस्थान।
2: मोहाली और गुड़गांव का डेंटल अनुभव अब भिवाड़ी में। आइए वी केयर डेंटल क्लिनिक इम्प्लांट सेंटर, जहां RCT, कैपिंग और डेंटल इम्प्लांट के एक्सपर्ट ट्रीटमेंट के साथ आपको मिलता है डॉक्टर रुकु सिंगला के 16 वर्षों के अनुभव और विशेषज्ञता का भरोसा। आर्मी और कॉर्पोरेट कर्मचारियों के लिए स्पेशल डिस्काउंट। पता, अपोजिट मैकडोनल्ड्स, JMK पेट क्लिनिक के पास, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉल करें 7814399374। वी केयर डेंटल, आपकी मुस्कान हमारा भरोसा।
1: क्या आपकी आँखों की रोशनी से जुड़ी कोई परेशानी है? क्या आप चश्मे से छुटकारा पाना चाहते हैं?
0: तो आइए आधुनिक सुविधाओं से युक्त मिश्री देवी आई हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी आई सेंटर।
1: पिछले 15 वर्षों से नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में भरोसेमंद सेवाएं, अब बहर रोड, नियम राणा और टपूकड़ा भिवाड़ी में।
0: यहाँ उपलब्ध है मोतियाबिंद, फेको, मल्टीफोकल एवं प्रीमियम लेंस, लेसिक लेजर, कॉर्निया, ग्लूकोमा और रेटिना उपचार एवं सर्जरी की आधुनिक सुविधाएं।
1: और अब दोनों आँखों का लेसिक लेजर उपचार आधुनिक तकनीक के साथ आपकी पहुंच में और उचित दरों पर।
0: बेहतर नेत्र उपचार, उचित खर्च और भरोसेमंद देखभाल के साथ चश्मे से आजादी की ओर बढ़ाइए अपना कदम। मिश्री देवी आई हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी आई सेंटर। संपर्क नंबर
1: 9783220043 या 01493294200। अब आपके शहर भिवाड़ी में साइकियाट्री एवं ऑर्थोपेडिक्स की नियमित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है ओजस हॉस्पिटल में।
0: मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितिका अग्रवाल द्वारा डिप्रेशन, नींद की समस्या, बेचैनी, घबराहट, मानसिक तनाव, स्किजोफ्रेनिया और OCD जैसी समस्याओं का उचित उपचार किया जाता है एवं काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध है।
1: वहीं हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेंद्र अग्रवाल द्वारा चोट, ट्रॉमा, फ्रैक्चर, घुटने एवं कमर का दर्द, लिगामेंट की चोट, गठिया और आर्थराइटिस जैसी हड्डी एवं जोड़ संबंधी समस्याओं का उपचार किया जाता है।
0: साथ ही सर्जरी, फिजियोथेरेपी और पेन मैनेजमेंट की सुविधा भी उपलब्ध है।
1: तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या को नजरअंदाज न करें, पहुंचिए ओजस हॉस्पिटल।
0: पता, नगीना गार्डन के पास, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी।
1: फोन करें 9521333591। ओजस हॉस्पिटल, बेहतर स्वास्थ्य की ओर एक कदम। अब आपके शहर धारूहेड़ा में ही मिल रही है आधुनिक और बेहतरीन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सुविधाएं। लोटस हॉस्पिटल, बेस्ट टैग सिटी, BPL फ्लैट के सामने धारूहेड़ा में, डॉक्टर अन्विका बंसल, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, 15 वर्ष से अधिक अनुभव के साथ, जो पहले से ही भिवाड़ी में अपनी सेवाएं दे रही थी, अब अपने नए लोटस हॉस्पिटल में OPD और इमरजेंसी सर्विस के लिए उपलब्ध हैं। इसके साथ ही यहां उपलब्ध है अनुभवी हड्डी रोग विशेषज्ञ। यहां घुटना बदलना, कुल्हा बदलना और रीढ़ से जुड़ी सभी बीमारी का इलाज होता है, और एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट और लैप्रोस्कोपिक जनरल सर्जन, जहां लेजर टेक्निक से बवासीर, भगंदर का इलाज लोटस हॉस्पिटल में मिलता है, तथा 24 घंटे आपातकालीन सुविधा, एडवांस्ड एक्सरे, लैबोरेटरी, फार्मेसी, अल्ट्रासाउंड सर्विस, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, AC प्राइवेट रूम की सुविधाएं उपलब्ध हैं। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आज ही विजिट करें लोटस हॉस्पिटल, बेस्ट टैग सिटी, BPL फ्लैट के सामने, धारूहेड़ा। संपर्क करें 01274415033।
3: भिवाड़ी का पहला ISO और NABH सर्टिफाइड श्री कृष्णा हॉस्पिटल, जिसमें मल्टी स्पेशलिस्ट OPD, 10 बेड का ICU, सबसे बड़ा मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 50 बेड का इंडोर, 24 आवर्स एम्बुलेंस, फार्मेसी और इमरजेंसी सेवाएं तथा लैब, डिजिटल एक्सरे जैसी सुविधाओं से लैस श्री कृष्णा हॉस्पिटल अधिकांश मल्टीनेशनल कंपनियों के मेडिकल कंसल्टेंसी एवं कैशलेस उपचार का एकमात्र सेंटर। श्री कृष्णा हॉस्पिटल, B14849 भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी, 8529113916, 7340013916। इस हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट और फिजिशियन की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं।
4: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
5: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
4: कान नाक गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
6: आपके हर खास समारोह को शानदार और यादगार बनाने के लिए आइए भाटोटिया टेंट हाउस एंड इवेंट ऑर्गेनाइजर।
7: सभी प्रकार के टेंट आइटम, शानदार डेकोरेशन और इंडोर आउटडोर कैटरिंग की बेहतरीन सुविधा, शादी, सगाई, जन्मदिन या किसी भी समारोह के लिए एक ही जगह पर पूरी व्यवस्था।
6: संपर्क करें हंसराज भाटोटिया, मोबाइल नंबर 9416347214।
7: और आपके खास समारोह के लिए शानदार राज विलास मैरिज एवं बैंक्वेट हॉल, शिवनगर पार्ट 2, पांचाल कॉलोनी, सीथल रोड, धारूहेड़ा, जिला रेवाड़ी, हरियाणा।
6: बाटोटिया टेंट हाउस और राज विलास मैरिज बैंक्वेट हॉल, आपके समारोह की पूरी तैयारी एक ही जगह। भिवाड़ी का भरोसा, वर्षों से आपकी सेवा में। सिटी नर्सिंग होम, सदर मार्केट, भिवाड़ी, औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी का पहला नर्सिंग होम, NABH द्वारा प्रमाणित।
7: यहाँ उपलब्ध हैं 2 आधुनिक ICU, अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, दूरबीन सर्जरी की सुविधा तथा अधिकांश मेडिक्लेम कंपनियों की कैशलेस सुविधा, डायबिटीज के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर कौशल, मनोरोग परामर्श हेतु डॉक्टर कनिष्का तथा मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर रूप सिंह की सेवाएं उपलब्ध, अनुभवी डॉक्टर, आधुनिक सुविधाएं और मरीजों की समर्पित देखभाल।
6: सिटी नर्सिंग होम, सदर मार्केट, भिवाड़ी, स्वास्थ्य का भरोसा आपके अपने शहर में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सिटी नर्सिंग होम, भिवाड़ी।
8: अरे कहाँ जा रही हो?
9: मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए अंशुल ज्वेलर्स।
8: अच्छा, पर अंशुल ज्वेलर्स से क्यों?
9: अंशुल ज्वेलर्स के पास है सोने, चांदी और हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन, वो भी DIS के 6 अंकों वाले हॉलमार्क HUID के साथ। और तो और, इनकी ज्वेलरी को हम भारत सरकार द्वारा चलाए गए BIS केयर ऐप के वेरीफाई HUID फीचर से आभूषणों की शुद्धता का प्रमाण देख सकते हैं।
8: जी हाँ, खरे आभूषणों की प्रामाणिकता जिसके साथ बढ़ेगी आपकी सुंदरता। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर। हमारा पता, शॉप नंबर 7, गणपति मॉल, समतल मोड़, भिवाड़ी, राजस्थान, या मेन बाजार नजदीक हनुमान मंदिर, टावलू, हरियाणा। संपर्क करें 9992533611 या फिर 9354898521 पर। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर।
10: कभी भी इमरजेंसी हो या सिर्फ एक छोटी सी चेकअप की जरूरत हो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेड़ा और भिवाड़ी में आपका अपना हॉस्पिटल है। 24 घंटे इमरजेंसी, AC प्राइवेट रूम्स, वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर, डिजिटल एक्सरे, क्लिनिकल लैब, TMT, ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी, फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी, स्किन प्रिक एंड ब्लड एलर्जी टेस्ट, एलर्जी का जड़ से इलाज। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, मेडिसिन, सर्जरी, ENT, हेड एंड नेक सर्जरी, ऑब्स एंड गाइनी, ऑर्थोपेडिक्स, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कैशलेस फैसिलिटी, सभी TPA के साथ। तो अब टेंशन मत लो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेड़ा, प्लॉट नंबर 5, सेक्टर 6 और भिवाड़ी, B83, भगत सिंह कॉलोनी। बस एक कॉल या एक विजिट, नो है 8607274999।
11: भारत अल्ट्रासाउंड एवं डायग्नोस्टिक सेंटर पर अत्याधुनिक MRI, 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 5D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर डिजिटल एक्सरे डीआर टीएमटी ईईजी व फुल्ली कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब प्रतिदिन उपलब्ध है।
12: भारत डायग्नोस्टिक्स द्वारा गत 20 वर्षों से एमडी रेडियोलॉजिस्ट पीजीआई चंडीगढ़ में प्रशिक्षित अनुभवी डॉक्टर्स द्वारा सभी जांचें की जा रही हैं।
11: भारत डायग्नोस्टिक्स पर 5D अल्ट्रासाउंड मशीन द्वारा लेवल 1 एंड 2 फीटल अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इको कार्डियोग्राफी, लिवर फाइब्रो स्कैन व 3D सीटी स्कैन मशीन पर एंजियोग्राफी, यूरोग्राफी व एंटेरोग्राफी की जांच भी की जाती है। 1/57/58 राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, सेंट्रल मार्केट के पास, भिवाड़ी। कॉल 9351004500।
13: दूसरी ब्रांच A50 भगत सिंह कॉलोनी भिवाड़ी। कॉल 8058304500।
14: श्रीराम इंडस्ट्रीज आर्मर जैन भारत में मेक इन इंडिया पहल के तहत विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाले उत्पादों के निर्माण में एक भरोसेमंद नाम। यहाँ बनते हैं फायर रेटेड और नॉन फायर रेटेड डोर्स, मोटराइज्ड और मैनुअल गेट्स, जनरल पर्पस डोर्स, एक्सेस डोर्स, डॉक लेवलर, फायर हॉज कैबिनेट्स और आपकी जरूरत के मुताबिक कस्टमाइज्ड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस। BIS, CBRI और NABL सर्टिफाइड वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स उचित कीमत पर। आर्मर जैन आपको देता है वादा गुणवत्ता, सुरक्षा और विश्वास का। संपर्क करें 7014735108। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.armorzain.co.in। आर्मर जैन, जब बात हो गुणवत्ता और भरोसे की।
15: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: मैं जयपुर जा रहा हूँ।
1: अच्छा, तो आते हुए जयपुर के मशहूर दूध लड्डू और प्याज कचौरी लेते आना।
0: अरे, दूध लड्डू और प्याज कचौरी के लिए जयपुर जाने का इंतजार क्यों करना? क्योंकि अब आपके शहर भिवाड़ी में अलवर बाईपास पर खुल चुका है कान्हा स्वीट्स।
1: जी हाँ, कान्हा स्वीट्स पर मिलते हैं स्वादिष्ट दूध लड्डू, प्याज कचौरी, समोसे, किसी कलाकंद, रस मलाई, कुल्हड़ रबड़ी और सभी प्रकार की मिठाइयाँ।
0: बिल्कुल, हर मिठाई में स्वाद ऐसा कि एक बार खाएं तो दिल कहे एक और।
1: तो फिर आज मिठास हो जाए कान्हा स्वीट्स के साथ।
0: हाँ, परिवार हो या मेहमान, त्योहार हो या कोई खास खुशी, हर मौके की मिठास कान्हा स्वीट्स के साथ। पता नोट कर लीजिए,
1: शॉप नंबर A GF04, कैपिटल आर्केडिया, अलवर बाईपास इन फ्रंट ऑफ वेदांता फार्म, भिवाड़ी, राजस्थान।
2: मोहाली और गुड़गांव का डेंटल अनुभव अब भिवाड़ी में। आइए वी केयर डेंटल क्लिनिक इम्प्लांट सेंटर, जहां RCP, कैपिंग और डेंटल इम्प्लांट के एक्सपर्ट ट्रीटमेंट के साथ आपको मिलता है डॉक्टर रुकु सिंगला के 16 वर्षों के अनुभव और विशेषज्ञता का भरोसा। आर्मी और कॉर्पोरेट कर्मचारियों के लिए स्पेशल डिस्काउंट। पता, अपोजिट मैकडोनल्ड्स, JMK पेट क्लिनिक के पास, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉल करें 7814399374। वी केयर डेंटल, आपकी मुस्कान हमारा भरोसा।
1: क्या आपकी आँखों की रोशनी से जुड़ी कोई परेशानी है? क्या आप चश्मे से छुटकारा पाना चाहते हैं?
0: तो आइए आधुनिक सुविधाओं से युक्त मिश्री देवी आई हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी आई सेंटर।
1: पिछले 15 वर्षों से नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में भरोसेमंद सेवाएं, अब बहर रोड, नियम राणा और टपुकड़ा भिवाड़ी में।
0: यहाँ उपलब्ध हैं मोतियाबिंद, फेको, मल्टीफोकल एवं प्रीमियम लेंस, लेसिक लेजर, कॉर्निया, ग्लूकोमा और रेटिना उपचार एवं सर्जरी की आधुनिक सुविधाएं।
1: और अब दोनों आँखों का लेसिक लेजर उपचार आधुनिक तकनीक के साथ आपकी पहुंच में और उचित दरों पर।
0: बेहतर नेत्र उपचार, उचित खर्च और भरोसेमंद देखभाल के साथ चश्मे से आजादी की ओर बढ़ाइए अपना कदम। मिश्री देवी आई हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी आई सेंटर। संपर्क नंबर
1: 9783220043 या 01493294200। अब आपके शहर भिवाड़ी में साइकियाट्री एवं ऑर्थोपेडिक्स की नियमित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है ओजस हॉस्पिटल में।
0: मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितिका अग्रवाल द्वारा डिप्रेशन, नींद की समस्या, बेचैनी, घबराहट, मानसिक तनाव, स्किजोफ्रेनिया और OCD जैसी समस्याओं का उचित उपचार किया जाता है एवं काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध है।
1: वहीं हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेंद्र अग्रवाल द्वारा चोट, ट्रॉमा, फ्रैक्चर, घुटने एवं कमर का दर्द, लिगामेंट की चोट, गठिया और आर्थराइटिस जैसी हड्डी एवं जोड़ संबंधी समस्याओं का उपचार किया जाता है।
0: साथ ही सर्जरी, फिजियोथेरेपी और पेन मैनेजमेंट की सुविधा भी उपलब्ध है।
1: तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या को नजरअंदाज न करें, पहुंचिए ओजस हॉस्पिटल।
0: पता, नगीना गार्डन के पास, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी।
1: फोन करें 9521333591। ओजस हॉस्पिटल, बेहतर स्वास्थ्य की ओर एक कदम। अब आपके शहर धारूहेड़ा में ही मिल रही है आधुनिक और बेहतरीन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सुविधाएं। लोटस हॉस्पिटल, बेस्ट टैक्स सिटी, BPL फ्लैट के सामने धारूहेड़ा में, डॉक्टर अन्विका बंसल, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, 15 वर्ष से अधिक अनुभव के साथ, जो पहले से ही भिवाड़ी में अपनी सेवाएं दे रही थी, अब अपने नए लोटस हॉस्पिटल में OPD और इमरजेंसी सर्विस के लिए उपलब्ध हैं। इसके साथ ही यहां उपलब्ध है अनुभवी हड्डी रोग विशेषज्ञ। यहां घुटना बदलना, कुल्हा बदलना और रीढ़ से जुड़ी सभी बीमारी का इलाज होता है, और एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट और लैप्रोस्कोपिक जनरल सर्जन, जहां लेजर टेक्निक से बवासीर, भगंदर का इलाज लोटस हॉस्पिटल में मिलता है, तथा 24 घंटे आपातकालीन सुविधा, एडवांस्ड एक्सरे, लैबोरेटरी, फार्मेसी, अल्ट्रासाउंड सर्विस, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, AC प्राइवेट रूम की सुविधाएं उपलब्ध हैं। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आज ही विजिट करें लोटस हॉस्पिटल, बेस्ट टैक्स सिटी, BPL फ्लैट के सामने, धारूहेड़ा। संपर्क करें 01274415033।
3: भिवाड़ी का पहला ISO और NABH सर्टिफाइड श्री कृष्णा हॉस्पिटल, जिसमें मल्टी स्पेशलिस्ट OPD, 10 बेड का ICU, सबसे बड़ा मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 50 बेड का इंडोर, 24 आवर्स एम्बुलेंस, फार्मेसी और इमरजेंसी सेवाएं तथा लैब, डिजिटल एक्सरे जैसी सुविधाओं से लैस श्री कृष्णा हॉस्पिटल अधिकांश मल्टीनेशनल कंपनियों के मेडिकल कंसल्टेंसी एवं कैशलेस उपचार का एकमात्र सेंटर। श्री कृष्णा हॉस्पिटल, B14849 भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी, 8529113916, 7340013916। इस हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट और फिजिशियन की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
4: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
5: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे, किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
4: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
6: आपके हर खास समारोह को शानदार और यादगार बनाने के लिए आइए भटोटिया टेंट हाउस एंड इवेंट ऑर्गेनाइजर।
7: सभी प्रकार के टेंट आइटम, शानदार डेकोरेशन और इंडोर आउटडोर कैटरिंग की बेहतरीन सुविधा, शादी, सगाई, जन्मदिन या किसी भी समारोह के लिए एक ही जगह पर पूरी व्यवस्था।
6: संपर्क करें हंसराज भाटोटिया, मोबाइल नंबर 9416347214।
7: और आपके खास समारोह के लिए शानदार राजविलास मैरिज एवं बैंकवेट हॉल, शिवनगर पार्ट 2, पांचाल कॉलोनी, सीथल रोड, धारूहेड़ा, जिला रेवाड़ी, हरियाणा।
6: भाटोटिया टेंट हाउस और राजविलास मैरिज बैंकवेट हॉल, आपके समारोह की पूरी तैयारी एक ही जगह।
8: क्या कर रही है?
9: ऑनलाइन बुकिंग देख रही हूँ, जयपुर जाना है।
8: फिर से? अभी तो गई थी।
9: हाँ, फिर से जाना है।
8: तू अपनी गाड़ी क्यों नहीं ले लेती?
9: गाड़ी नॉट इन बजट।
8: अरे, गांधी मोटर्स है ना?
9: गांधी मोटर्स?
8: हाँ, गांधी मोटर्स। गांधी मोटर्स कार सेल और परचेज के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर हर तरह की गाड़ियाँ बहुत अच्छी कीमत पे मिलती हैं।
9: तो कब चलें?
8: अरे, इसमें सोचना कैसा, अभी चलना। गाड़ियों के सेल और परचेज के लिए आज ही संपर्क करें।
10: हमारा पता है शॉप नंबर S16 एवलॉन रॉयल प्लाजा, अल्बर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9785980000 या फिर 8740000144 पर।
11: भिवाड़ी में 27 वर्षों से सेवारत, भरोसेमंद 24 घंटे इलाज हेतु गोपीनाथ अस्पताल, ISO तथा NABH मान्यता एवं राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मल्टी स्पेशलिटी सेंट्रल AC OPD, 50 बेड की सुविधा से युक्त गोपीनाथ हॉस्पिटल, अत्याधुनिक 3 ऑपरेशन थिएटर, 7 बेड ICU, 2 जीवन रक्षक एम्बुलेंस, डिजिटल एक्सरे, ऑर्थोपेडिक सर्जन, फिजिशियन तथा लेडी डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा से युक्त गोपीनाथ अस्पताल। यहाँ नेफ्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, डायबिटोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट की नियमित OPD भी उपलब्ध है। लगभग सभी TPA कैशलेस सुविधा के साथ तथा भिवाड़ी की व आसपास की औद्योगिक इकाइयों के बीमा कंपनियां भी पैनल पर हैं। पता 226 इंडस्ट्रियल एरिया, सदर बाजार के पीछे, गोपीनाथ रोड, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 01493619563 एंड 9784333863।
12: क्या आप बिजली के बिल से परेशान हैं? क्या आप जानते हैं सोलर एनर्जी से आप बिजली के बिल से आजादी पा सकते हैं? जी हाँ, अपने घर, ऑफिस और फैक्ट्री की छत पर सोलर पैनल लगाएं और भारी बिजली के बिल से मुक्ति पाएं। सोलर एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको 30% तक रिटर्न देता है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9610255584। ग्रीन रूट्स रिन्यूएबल एनर्जी।
6: आपकी आंखें हैं अनमोल, आपकी आंखों को चाहिए बेहतर देखभाल, तो आइए गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स भिवाड़ी।
13: यहाँ मिलते हैं सभी ब्रांडेड कंपनियों के स्टाइलिश फ्रेम और हाई क्वालिटी लेंस, Ray-Ban, Vogue, टॉमी हिल्फिगर, ओकेली, प्रदा, जीस, एसिलोर क्रिजाल, विजन आर एक्स और भी कई नेशनल व इंटरनेशनल ब्रांड्स।
6: साथ ही कॉन्टैक्ट लेंस, लो विजन क्लिनिक, मायोपिया क्लिनिक, विजन थेरेपी और आधुनिक मशीनों द्वारा कंप्यूटरीकृत आई एग्जामिनेशन, प्रशिक्षित ऑप्टोमेट्रिस्ट की पूरी टीम।
13: भिवाड़ी में सन 2006 से भरोसे का नाम गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स।
6: गणपति मॉल गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास समतल चौक भिवाड़ी और अशियाना आंगन के सामने BDI सोसाइटी के पास अलवर बाईपास रोड भिवाड़ी।
7: अपॉइंटमेंट या जानकारी के लिए अभी कॉल करें 9636061776 या 9928929309।
14: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है, कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है, और इन्हीं श्रृंगार को सवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, एक से एक उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A, आशियाना आंगन प्लाजा नियर मैकडॉनल्ड, अलवर बाईपास रोड भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट करें 01-4934-9322 या फिर 9034-9697-31 पर। ऐसे डिजाइंस जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्स ही आए।
15: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।

0: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव कान ना गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
1: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
0: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
2: जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी, आँखों का NABH मान्यता प्राप्त सुपर स्पेशलिटी आँखों का हॉस्पिटल आपके शहर भिवाड़ी में। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी आपको प्रदान करता है विश्व स्तरीय आँखों की देखभाल।
3: हमारे सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल में आपको मिलेगी अनुभवी डॉक्टरों, आई सर्जनों की विशेषज्ञ टीम, पूर्णतः मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर MICS टॉपिकल फैको तकनीक से, कैटरेक्ट मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेजर से ऑपरेशन बिना इंजेक्शन और टांके,
2: रेटिना आँख का पर्दा, ग्लूकोमा, काला मोतियाबिंद का उन्नत इलाज, बच्चों की आँखों का इलाज, हमारे पास सभी इंश्योरेंस और TPA पैनल उपलब्ध हैं। निशुल्क कैशलेस इलाज का लाभ उठाएं।
3: आज ही हमें सेवा का मौका दें। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भगत सिंह कॉलोनी अलवर बाईपास हरीश बेकरी के पास भिवाड़ी।
2: संपर्क करें 7424830174। आज ही अपनी आँखों का इलाज कराएं और पाएं एक उज्जला भविष्य। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी।
4: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं कैशलेस सर्विस के लिए, कहां मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
5: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहां मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंट मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार एसी वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
4: एकता मोटर्स अलवर बाईपास रोड नियर बाय थड़ा मोड़ भिवाड़ी। फॉर इन्फॉर्मेशन कॉल 9799278900।
6: न्यू गर्ल्स सुपर स्टोर, जहां मिलते हैं ग्रोसरीज, ड्राई फ्रूट्स, कॉस्मेटिक्स आइटम और सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स। बजट की दुकान, MRP की छुट्टी, आपका फायदा हमारा वादा। अब वक्त है MRP को कहें बाय बाय। कॉन्टेक्ट करें 7413099952 पर अलवर बाईपास रोड नियर मार्बल मार्केट भिवाड़ी।
7: राहुल, इंडस्ट्री प्लान तो बढ़िया है पर इस बार अपनी फैक्ट्री के इलेक्ट्रिकल्स पर एक्स्ट्रा फोकस रखना।
8: डोंट वरी सर, इंडस्ट्री का सारा इलेक्ट्रिकल्स खंडेलवाल एजेंसी से आएगा। ये NCR का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस है, जहां हमें पैनल, स्विच गियर, मोटर ड्राइव, इंडस्ट्रियल लाइटनिंग और वायर एंड केबल में 30 से ज्यादा मल्टीनेशनल ब्रांड ऑप्शंस मिल जाएंगे।
9: खंडेलवाल एजेंसीज, NCR का लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस इन भिवाड़ी।
10: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: मैं जयपुर जा रहा हूँ।
1: अच्छा, तो आते हुए जयपुर के मशहूर दूध लड्डू और प्याज कचौरी लेते आना।
0: अरे, दूध लड्डू और प्याज कचौरी के लिए जयपुर जाने का इंतजार क्यों करना, क्योंकि अब आपके शहर भिवाड़ी में अलवर बाईपास पर खुल चुका है कान्हा स्वीट्स।
1: जी हाँ, कान्हा स्वीट्स पर मिलते हैं स्वादिष्ट दूध लड्डू, प्याज कचौरी, समोसे किसी कलाकंद, रस मलाई, कुल्हड़ रबड़ी और सभी प्रकार की मिठाइयाँ।
0: बिल्कुल, हर मिठाई में स्वाद ऐसा कि एक बार खाएं तो दिल कहे एक और।
1: तो फिर आज मिठास हो जाए कान्हा स्वीट्स के साथ।
0: हाँ, परिवार हो या मेहमान, त्योहार हो या कोई खास खुशी, हर मौके की मिठास कान्हा स्वीट्स के साथ। पता नोट कर लीजिए,
1: शॉप नंबर AG F04, कैपिटल आर्केडिया, अलवर बाईपास इन फ्रंट ऑफ वेदांता फार्म, भिवाड़ी, राजस्थान।
2: मोहाली और गुड़गांव का डेंटल अनुभव अब भिवाड़ी में। आइए वी केयर डेंटल क्लिनिक इम्प्लांट सेंटर, जहां RCT, कैपिंग और डेंटल इम्प्लांट के एक्सपर्ट ट्रीटमेंट के साथ आपको मिलता है डॉक्टर रुकु सिंगला के 16 वर्षों के अनुभव और विशेषज्ञता का भरोसा। आर्मी और कॉर्पोरेट कर्मचारियों के लिए स्पेशल डिस्काउंट। पता, अपोजिट मैकडोनल्ड्स, JMK पेट क्लिनिक के पास, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉल करें 7814399374। वी केयर डेंटल, आपकी मुस्कान हमारा भरोसा।
1: क्या आपकी आँखों की रोशनी से जुड़ी कोई परेशानी है? क्या आप चश्मे से छुटकारा पाना चाहते हैं?
0: तो आइए आधुनिक सुविधाओं से युक्त मिश्री देवी आई हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी आई सेंटर।
1: पिछले 15 वर्षों से नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में भरोसेमंद सेवाएं, अब बाहर रोड, नियम राणा और टपुकड़ा भिवाड़ी में।
0: यहाँ उपलब्ध है मोतियाबिंद, फेको, मल्टीफोकल एवं प्रीमियम लेंस, लेसिक लेजर, कॉर्निया, ग्लूकोमा और रेटिना उपचार एवं सर्जरी की आधुनिक सुविधाएं।
1: और अब दोनों आँखों का लेसिक लेजर उपचार आधुनिक तकनीक के साथ आपकी पहुंच में और उचित दरों पर।
0: बेहतर नेत्र उपचार, उचित खर्च और भरोसेमंद देखभाल के साथ चश्मे से आजादी की ओर बढ़ाइए अपना कदम। मिश्री देवी आई हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी आई सेंटर। संपर्क नंबर
1: 9783220043 या 01493294200। अब आपके शहर भिवाड़ी में साइकियाट्री एवं ऑर्थोपेडिक्स की नियमित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है ओजस हॉस्पिटल में।
0: मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितिका अग्रवाल द्वारा डिप्रेशन, नींद की समस्या, बेचैनी, घबराहट, मानसिक तनाव, स्किजोफ्रेनिया और OCD जैसी समस्याओं का उचित उपचार किया जाता है एवं काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध है।
1: वहीं हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेंद्र अग्रवाल द्वारा चोट, ट्रॉमा, फ्रैक्चर, घुटने एवं कमर का दर्द, लिगामेंट की चोट, गठिया और आर्थराइटिस जैसी हड्डी एवं जोड़ संबंधी समस्याओं का उपचार किया जाता है।
0: साथ ही सर्जरी, फिजियोथेरेपी और पेन मैनेजमेंट की सुविधा भी उपलब्ध है।
1: तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या को नजरअंदाज न करें, पहुंचिए ओजस हॉस्पिटल।
0: पता, नगीना गार्डन के पास, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी।
1: फोन करें 9521333591

0: ओजस हॉस्पिटल, बेहतर स्वास्थ्य की ओर एक कदम। अब आपके शहर धारूहेड़ा में ही मिल रही है आधुनिक और बेहतरीन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सुविधाएं। लोटस हॉस्पिटल, बेस्ट टैक्स सिटी, BPL फ्लैट के सामने धारूहेड़ा में डॉक्टर अन्विका बंसल, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, 15 वर्ष से अधिक अनुभव के साथ, जो पहले से ही भिवाड़ी में अपनी सेवाएं दे रही थी, अब अपने नए लोटस हॉस्पिटल में OPD और इमरजेंसी सर्विस के लिए उपलब्ध है। इसके साथ ही यहां उपलब्ध है अनुभवी हड्डी रोग विशेषज्ञ। यहां घुटना बदलना, कुल्हा बदलना और रीढ़ से जुड़ी सभी बीमारी का इलाज होता है, और एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट और लैप्रोस्कोपिक जनरल सर्जन, जहां लेजर टेक्निक से बवासीर, भगंदर का इलाज लोटस हॉस्पिटल में मिलता है, तथा 24 घंटे आपातकालीन सुविधा, एडवांस्ड एक्सरे, लैबोरेटरी, फार्मेसी, अल्ट्रासाउंड सर्विस, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, AC प्राइवेट रूम की सुविधाएं उपलब्ध हैं। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आज ही विजिट करें लोटस हॉस्पिटल, बेस्ट टैक्स सिटी, BPL फ्लैट के सामने धारूहेड़ा। संपर्क करें 01274415033।
1: भिवाड़ी का पहला ISO और NABH सर्टिफाइड श्री कृष्णा हॉस्पिटल, जिसमें मल्टी स्पेशलिस्ट OPD, 10 बेड का ICU, सबसे बड़ा मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 50 बेड का इंडोर, 24 आवर्स एम्बुलेंस, फार्मेसी और इमरजेंसी सेवाएं, तथा लैब, डिजिटल एक्सरे जैसी सुविधाओं से लैस श्री कृष्णा हॉस्पिटल अधिकांश मल्टीनेशनल कंपनियों के मेडिकल कंसल्टेंसी एवं कैशलेस उपचार का एकमात्र सेंटर। श्री कृष्णा हॉस्पिटल, B14849 भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी, 8529113916 7340013916। इस हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट और फिजिशियन की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं।
2: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव, कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल, B160 भगत सिंह कॉलोनी, सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
3: डॉक्टर अंकित जैन, हड्डी रोग विशेषज्ञ, अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे, किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
2: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
0: आपके हर खास समारोह को शानदार और यादगार बनाने के लिए आइए भाटोटिया टेंट हाउस एंड इवेंट ऑर्गेनाइजर।
4: सभी प्रकार के टेंट आइटम, शानदार डेकोरेशन और इंडोर आउटडोर कैटरिंग की बेहतरीन सुविधा, शादी, सगाई, जन्मदिन या किसी भी समारोह के लिए एक ही जगह पर पूरी व्यवस्था।
0: संपर्क करें हंसराज भाटोटिया, मोबाइल नंबर 9416347214।
4: और आपके खास समारोह के लिए शानदार राजविलास मैरिज एवं बैंक्वेट हॉल, शिवनगर पार्ट 2, पांचाल कॉलोनी, सीथल रोड, धारूहेड़ा, जिला रेवाड़ी, हरियाणा।
0: बाटोटिया टेंट हाउस और राजविलास मैरिज बैंक्वेट हॉल, आपके समारोह की पूरी तैयारी एक ही जगह। अरे यार, आज शाम पार्टी करें?
5: नहीं यार, आज डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाना था।
0: गुरुग्राम? इतनी दूर?
5: हाँ यार, वहीं तो बेस्ट हाइजीन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और पेनलेस ट्रीटमेंट मिलता है।
0: ये बात पहले सही थी, पर अब नहीं।
5: मतलब?
0: गुरुग्राम के ही एक्सपीरियंस्ड डेंटल एक्सपर्ट डॉक्टर जितिन टक्कर पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ मिलता है प्रीमियम सेटअप, एडवांस टेक्नोलॉजी, कंप्लीट हाइजीन और 100% पेनलेस डेंटल ट्रीटमेंट। और सबसे अच्छी बात, चार्जेस दिल्ली और गुरुग्राम से काफी कम।
5: तो फिर दूर जाने का टेंशन खत्म।
0: बिल्कुल, अब एक्सपीरियंस, भरोसा और क्वालिटी, सब कुछ घर के पास भिवाड़ी में। आइए 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, A ब्लॉक, A140, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। आज ही संपर्क करें डॉक्टर जितिन टक्कर, 9871122135। 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, बेहतर चॉइसेस, बेहतर मुस्कान। अजी, सुनते हो, मेरा फोन टूट गया है।
5: अरे भाग्यवान, सुनो, घबराओ नहीं, खंडेलवाल मोबाइल भिवाड़ी लाया है 0% डाउन पेमेंट पर। मोबाइल फोन 9784960000। और सुनो, ओप्पो ने लॉन्च किया है अभी रेनो 15 सी कम दामों में, बजाज फाइनेंस के साथ 0% ब्याज, 10% कैश बैक के साथ, प्लस ट्रॉली बैग, 0 डाउन पेमेंट। और बैटरी से हो परेशान तो रियलमी ने लॉन्च किया है अपना एक नया मॉडल 10,000 mAh बैटरी के साथ। अभी जाइए खंडेलवाल मोबाइल पर ढेर सारे गिफ्ट के साथ, नीलम चौक। चिंता क्यों करते हो, बजाज फाइनेंस है ना अपने साथ। 9784960000। और 9828288666।
6: राहुल यार, मैंने नोएडा से जॉब स्विच कर दिया है, अब सोच रही हूँ भिवारी में रेंटल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा।
7: चिंता की कोई बात नहीं, मेगा एयर कंडीशनर्स एंड इलेक्ट्रिक सर्विस है ना, ये पूरे दिल्ली NCR में अपनी रेंटल सर्विस दे रहे हैं और इनके यहाँ टावर AC, विंडो AC, स्प्लिट AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड LED TV सभी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं।
6: लेकिन इनकी सर्विस भिवाड़ी में तो बहुत महंगी होगी ना।
7: बिल्कुल भी नहीं, आपको ये सर्विस सेम रेट पर मिलने वाली है। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9899247102 पर या फिर विजिट करें www.maces.in पर।
8: ये क्या, अभी भी डीजल कार चला रहे हो? अब समय है स्मार्ट फ्यूल पर स्विच करने का, वो भी ज्यादा बचत के साथ। पेश है विक्टोरिस SCNG। ये स्मार्ट है क्योंकि ये देता है 27.02 किलोमीटर पर kg का शानदार माइलेज, और इसका अंडरबॉडी CNG टैंक बूट स्पेस पर कोई समझौता नहीं करता। ज्यादा बचत भी, क्योंकि अपनी पुरानी डीजल कार के एक्सचेंज पर पाएं 50,000 रुपए तक का फायदा। तो देर किस बात की, आज ही बुक करें, अपनी नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम पर जाएं। नियम बशर्ते लागू।
9: विजिट फॉर्च्यून कार्स भिवाड़ी।
10: मॉडर्न अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर भिवाड़ी पर अनुभवी रेडियोलॉजिस्ट व पैथोलॉजिस्ट द्वारा अत्याधुनिक मशीनों से 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 4D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इको कार्डियोग्राफी, डिजिटल एक्सरे, IVP, बैरियम, HSG, डिजिटल OPG, DMT, ECG, EEG, BFT, मैमोग्राफी व फुली एडवांस्ड कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब की सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध हैं।
11: नियर सरकारी हॉस्पिटल 135 भिवाड़ी, दूसरी ब्रांच मॉडर्न डायग्नोस्टिक एवं इमेजिंग सेंटर, नियर नगर पालिका ऑफिस, अपोजिट अम्बेडकर पार्क, धारूहेड़ा। कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800-123-4494 या 9983040100 पर।
12: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: मैं जयपुर जा रहा हूँ।
1: अच्छा, तो आते हुए जयपुर के मशहूर दूध लड्डू और प्याज कचौरी लेते आना।
0: अरे, दूध लड्डू और प्याज कचौरी के लिए जयपुर जाने का इंतजार क्यों करना, क्योंकि अब आपके शहर भिवाड़ी में अलवर बाईपास पर खुल चुका है कान्हा स्वीट्स।
1: जी हाँ, कान्हा स्वीट्स पर मिलते हैं स्वादिष्ट दूध लड्डू, प्याज कचौरी, समोसे किसी कलाकंद, रसमलाई, कुल्हड़ रबड़ी और सभी प्रकार की मिठाइयाँ।
0: बिल्कुल, हर मिठाई में स्वाद ऐसा कि एक बार खाएं तो दिल कहे एक और।
1: तो फिर आज मिठास हो जाए कान्हा स्वीट्स के साथ।
0: हाँ, परिवार हो या मेहमान, त्योहार हो या कोई खास खुशी, हर मौके की मिठास कान्हा स्वीट्स के साथ। पता नोट कर लीजिए,
1: शॉप नंबर ए GF04, कैपिटल आर्केडिया, अलवर बाईपास इन फ्रंट ऑफ वेदांता फार्म, भिवाड़ी, राजस्थान।
2: मोहाली और गुड़गांव का डेंटल अनुभव अब भिवाड़ी में। आइए वी केयर डेंटल क्लिनिक इम्प्लांट सेंटर, जहां RCT, कैपिंग और डेंटल इम्प्लांट के एक्सपर्ट ट्रीटमेंट के साथ आपको मिलता है डॉक्टर रुकु सिंगला के 16 वर्षों के अनुभव और विशेषज्ञता का भरोसा। आर्मी और कॉर्पोरेट कर्मचारियों के लिए स्पेशल डिस्काउंट। पता, अपोजिट मैकडोनल्ड्स, JMK पेट क्लिनिक के पास, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉल करें 7814399374। वी केयर डेंटल, आपकी मुस्कान हमारा भरोसा।
1: क्या आपकी आँखों की रोशनी से जुड़ी कोई परेशानी है? क्या आप चश्मे से छुटकारा पाना चाहते हैं?
0: तो आइए आधुनिक सुविधाओं से युक्त मिश्री देवी आई हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी आई सेंटर।
1: पिछले 15 वर्षों से नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में भरोसेमंद सेवाएं, अब बाहर रोड, नियम राणा और टपुकड़ा भिवाड़ी में।
0: यहाँ उपलब्ध है मोतियाबिंद, फेको, मल्टीफोकल एवं प्रीमियम लेंस, लेसिक लेजर, कॉर्निया, ग्लूकोमा और रेटिना उपचार एवं सर्जरी की आधुनिक सुविधाएं।
1: और अब दोनों आँखों का लेसिक लेजर उपचार आधुनिक तकनीक के साथ आपकी पहुंच में और उचित दरों पर।
0: बेहतर नेत्र उपचार, उचित खर्च और भरोसेमंद देखभाल के साथ चश्मे से आजादी की ओर बढ़ाइए अपना कदम। मिश्री देवी आई हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी आई सेंटर। संपर्क नंबर
1: 9783220043 या 01493294200। अब आपके शहर भिवाड़ी में साइकियाट्री एवं ऑर्थोपेडिक्स की नियमित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है ओजस हॉस्पिटल में।
0: मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितिका अग्रवाल द्वारा डिप्रेशन, नींद की समस्या, बेचैनी, घबराहट, मानसिक तनाव, स्किजोफ्रेनिया और OCD जैसी समस्याओं का उचित उपचार किया जाता है एवं काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध है।
1: वहीं हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेंद्र अग्रवाल द्वारा चोट, ट्रॉमा, फ्रैक्चर, घुटने एवं कमर का दर्द, लिगामेंट की चोट, गठिया और आर्थराइटिस जैसी हड्डी एवं जोड़ संबंधी समस्याओं का उपचार किया जाता है।
0: साथ ही सर्जरी, फिजियोथेरेपी और पेन मैनेजमेंट की सुविधा भी उपलब्ध है।
1: तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या को नजरअंदाज न करें, पहुंचिए ओजस हॉस्पिटल।
0: पता, नगीना गार्डन के पास, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी।
1: फोन करें 9521333591। ओजस हॉस्पिटल, बेहतर स्वास्थ्य की ओर एक कदम। अब आपके शहर धारूहेड़ा में ही मिल रही है आधुनिक और बेहतरीन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सुविधाएं। लोटस हॉस्पिटल, बेस्ट टैग सिटी, BPL फ्लैट के सामने धारूहेड़ा में, डॉक्टर अन्विका बंसल, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, 15 वर्ष से अधिक अनुभव के साथ, जो पहले से ही भिवाड़ी में अपनी सेवाएं दे रही थी, अब अपने नए लोटस हॉस्पिटल में OPD और इमरजेंसी सर्विस के लिए उपलब्ध हैं। इसके साथ ही यहाँ उपलब्ध है अनुभवी हड्डी रोग विशेषज्ञ। यहाँ घुटना बदलना, कुल्हा बदलना और रीढ़ से जुड़ी सभी बीमारी का इलाज होता है, और एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट और लैप्रोस्कोपिक जनरल सर्जन, जहाँ लेजर टेक्निक से बवासीर, भगंदर का इलाज लोटस हॉस्पिटल में मिलता है, तथा 24 घंटे आपातकालीन सुविधा, एडवांस्ड एक्सरे, लैबोरेटरी, फार्मेसी, अल्ट्रासाउंड सर्विस, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, AC प्राइवेट रूम की सुविधाएं उपलब्ध हैं। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आज ही विजिट करें लोटस हॉस्पिटल, बेस्ट टैग सिटी, BPL फ्लैट के सामने, धारूहेड़ा। संपर्क करें 01274415033।
3: भिवाड़ी का पहला ISO और NABH सर्टिफाइड श्री कृष्णा हॉस्पिटल, जिसमें मल्टी स्पेशलिस्ट OPD, 10 बेड का ICU, सबसे बड़ा मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 50 बेड का इंडोर, 24 आवर्स एम्बुलेंस, फार्मेसी और इमरजेंसी सेवाएं, तथा लैब, डिजिटल एक्सरे जैसी सुविधाओं से लैस श्री कृष्णा हॉस्पिटल अधिकांश मल्टीनेशनल कंपनी कंपनियों के मेडिकल कंसल्टेंसी एवं कैशलेस उपचार का एकमात्र सेंटर श्री कृष्णा हॉस्पिटल B14849 भगत सिंह कॉलोनी भिवाड़ी 8529113916 7340013916। इस हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट गायनेकोलॉजिस्ट ENT स्पेशलिस्ट और फिजिशियन की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
4: विजय हॉस्पिटल डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
5: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
4: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
6: आपके हर खास समारोह को शानदार और यादगार बनाने के लिए आइए भाटोटिया टेंट हाउस एंड इवेंट ऑर्गेनाइजर।
7: सभी प्रकार के टेंट आइटम, शानदार डेकोरेशन और इंडोर आउटडोर कैटरिंग की बेहतरीन सुविधा, शादी सगाई जन्मदिन या किसी भी समारोह के लिए एक ही जगह पर पूरी व्यवस्था।
6: संपर्क करें हंसराज भाटोटिया, मोबाइल नंबर 9416347214।
7: और आपके खास समारोह के लिए शानदार राजविलास मैरिज एवं बैंक्वेट हॉल, शिवनगर पार्ट 2, पांचाल कॉलोनी, सीथल रोड, धारूहेड़ा, जिला रेवाड़ी, हरियाणा।
6: भाटोटिया टेंट हाउस और राजविलास मैरिज बैंक्वेट हॉल, आपके समारोह की पूरी तैयारी एक ही जगह।
2: अब भिवाड़ी के सबसे बड़े NABH सर्टिफाइड SS हॉस्पिटल में स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे पाएं। यहां पाएं स्किन स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, नेफ्रोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी, ब्लड बैंक L और डायलिसिस, सभी बड़े TPA, कैशलेस RGHS, ECHS, ESIC, चिरंजीवी योजना की कैशलेस सुविधा, यहां 24 घंटे की इमरजेंसी सेवा और एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें OCF2 ऑपोजिट मॉडर्न पब्लिक स्कूल भगत सिंह कॉलोनी भिवाड़ी, कॉन्टैक्ट 7230011191 और 9785013999।
8: टाटा की गाड़ी तो ले ली है, अब भिवाड़ी में सर्विस सेंटर ढूंढते रहो।
9: अरे ढूंढना क्यों है, टाटा ऑथराइज्ड AK ऑटोमोबाइल है ना, जो संजय मोटर्स की ही यूनिट है। 2017 से भिवाड़ी का भरोसा है, टाटा के सर्टिफाइड मैकेनिक्स हैं और वहाँ सर्विसिंग बहुत ही शॉर्ट टाइम में हो जाती है।
8: अच्छा, और उसमें क्या खर्चे ही खर्चे?
9: अरे नहीं नहीं, AK ऑटोमोबाइल्स पर कार सर्विसिंग, बॉडी शॉप और व्हील अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग के अलावा कैशलेस इंश्योरेंस और रिन्यूअल, AMC, ऑन रोड मेंटेनेंस और एक्सीडेंट वारंटी जैसी सारी फैसिलिटीज हैं, जो खर्चे बहुत ही कम कर देती हैं। मेन रोड पर फूलबाग थाने के पास ही है ये।
8: अरे वाह, तो वेट क्यों करना, 9462369786 पे कॉल करके अभी AK ऑटोमोबाइल पे सर्विस बुक करो जल्दी।
10: सोनम ये लो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट।
11: अरे इसमें क्या है?
10: वही जो तुम्हें बहुत टाइम से चाहिए था।
11: ये ब्रेसलेट तो मुझे बहुत टाइम से चाहिए था।
10: क्या आप इसे दिल्ली से लाए हो?
11: लेकिन आप दिल्ली कब गए?
10: अरे वो है ना भिवाड़ी में अपने शांति ज्वेलर्स, इनके पास है सोने चांदी हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन और यहाँ मिलती है हॉलमार्क ज्वेलरी।
11: इनका एड्रेस क्या है?
10: इनका एड्रेस है शॉप नंबर 5 गणपति मॉल भिवाड़ी। और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9812210987 पर।
12: एक बेहतर कल के लिए, बेहतर मजबूती के लिए, बेहतर बचत के लिए यूज करें SBF रैपिड 550D TMT।
13: मजबूत निर्माण सदा के लिए।
14: मुझे अपने बच्चों के लिए चाहिए एक ऐसा स्कूल जो ICSE से अफिलिएटेड हो।
15: भिवाड़ी में है एकमात्र ऐसा स्कूल SPS ग्लोबल स्कूल, जिसके बच्चों ने ICSE 10th की बोर्ड परीक्षाओं में 100% रिजल्ट के साथ साथ राज्य स्तर पर कराटे, स्केटिंग आदि प्रतियोगिताओं में भी अपने स्कूल का नाम रोशन किया है। यहां शिक्षा से बच्चों का बौद्धिक विकास और खेलकूद से शारीरिक विकास, डिसिप्लिन और समय समय पर सामाजिक व सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं होती रहती हैं, जो बच्चों के सर्वांगीण विकास में मदद करता है। यहां है बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, खेल का मैदान, AC क्लासरूम, डिजिटल क्लासरूम, आधुनिक सुविधाओं से लैस लैब, बेस्ट टीचर की फैसिलिटी।
14: SPS ग्लोबल स्कूल नियर कैपिटल मॉल भिवाड़ी, आज ही विजिट करें या कॉल करें 9950888330।
16: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: अब भिलवाड़ी के शिवोहम हॉस्पिटल में पाएं एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं। यहां 25 बेड से लेस इंडोर, 6 बेड से लेस आईसीयू, दो बड़े ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजी लैब तथा अत्याधुनिक एक्सरे मशीनों के द्वारा एक्सरे सुविधा, तकनीकी मशीनों द्वारा जांच, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, एम्बुलेंस, सभी कैशलेस टीपीए सुविधाओं के साथ 14 साल से कम आयु की बच्चियों के लिए निःशुल्क परामर्श, गायनेकोलॉजी, इनफर्टिलिटी, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नम्रता मेहता चतुर्वेदी व हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हेमंत चतुर्वेदी जैसे अनुभवी डॉक्टर से परामर्श सुविधा, जो कि पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में निरंतर अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। शिवोहम हॉस्पिटल, B4 भगत सिंह कॉलोनी, पुराने RTO ऑफिस के पास, भिवाड़ी। संपर्क 9799996778।
1: भिवाड़ी का पहला ISO और NABH सर्टिफाइड श्री कृष्णा हॉस्पिटल, जिसमें मल्टी स्पेशलिस्ट OPD, 10 बेड का ICU, सबसे बड़ा मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 50 बेड का इंडोर, 24 आवर्स एम्बुलेंस, फार्मेसी और इमरजेंसी सेवाएं तथा लैब, डिजिटल एक्सरे जैसी सुविधाओं से लैस श्री कृष्णा हॉस्पिटल अधिकांश मल्टीनेशनल कंपनियों के मेडिकल कंसल्टेंसी एवं कैशलेस उपचार का एकमात्र सेंटर। श्री कृष्णा हॉस्पिटल, B14849 भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी, 8529113916, 7340013916। इस हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट और फिजिशियन की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं।
2: क्या आपकी त्वचा, बाल या नाखून की समस्या बार बार परेशान कर रही है?
3: अब सही इलाज के लिए मिलिए डॉक्टर गौरव, एम्स से प्रशिक्षित त्वचा रोग विशेषज्ञ, SS हॉस्पिटल, भिवाड़ी में।
2: मुंहासे, पिगमेंटेशन, एलर्जी, हेयर फॉल से लेकर लेजर, केमिकल पील और बोटॉक्स जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध।
3: ECHS, RGHS तथा NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल में सभी प्रमुख TPA मान्य।
2: SS हॉस्पिटल, भिवाड़ी, भरोसेमंद विशेषज्ञ से देखभाल। समय रोजाना शाम 4:30 से 6:30 तक, गुरुवार अवकाश।
4: पूजा, तुम्हारे फेस पर कितने पिंपल्स और धब्बे हो रहे हैं?
5: हाँ यार, और बाल भी हर दिन झड़ रहे हैं। कई बार दिल्ली गुरुग्राम में भी दिखा चुकी हूँ।
4: अरे पूजा, अब दिल्ली या गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपनी भिवाड़ी में है डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, जहाँ पर स्किन, हेयर एंड नेल्स की सभी बीमारियों का पूर्ण इलाज डॉक्टर सुचेता MD डर्मेटोलॉजी द्वारा किया जाता है, जो भिवाड़ी में अपनी सेवाएं दे रही है। इनके यहाँ लेजर हेयर रिमूवल, माइक्रो नीडलिंग, PRP, RF, अन्य सभी स्किन समस्याओं का समाधान विदेशी मशीनों व नई तकनीकों द्वारा किया जाता है। कॉल करें 6367551007। विजिट डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, A56 फर्स्ट फ्लोर, भगत सिंह कॉलोनी, बिहाइंड सुखम टावर, भिवाड़ी।
6: आपके सारे जरूरतों का बीमा एक ही जगह, विधि एंटरप्राइजेज भिवाड़ी। स्वास्थ्य बीमा, वाहन बीमा, जीवन बीमा, फायर बीमा, सब मिलेगा यहाँ। और हाँ, बीमा कराने पर खास ऑफर भी मिलेंगे। संपर्क करें चंद्रभान, विधि एंटरप्राइजेज, रिको चौक, भिवाड़ी, 9887066308।
7: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: मैं जयपुर जा रहा हूँ।
1: अच्छा, तो आते हुए जयपुर के मशहूर दूध लड्डू और प्याज कचौरी लेते आना।
0: अरे, दूध लड्डू और प्याज कचौरी के लिए जयपुर जाने का इंतजार क्यों करना? क्योंकि अब आपके शहर भिवाड़ी में अलवर बाईपास पर खुल चुका है कान्हा स्वीट्स।
1: जी हाँ, कान्हा स्वीट्स पर मिलते हैं स्वादिष्ट दूध लड्डू, प्याज कचौरी, समोसे, किसी कलाकंद, रस मलाई, कुल्हड़ रबड़ी और सभी प्रकार की मिठाइयाँ।
0: बिल्कुल, हर मिठाई में स्वाद ऐसा कि एक बार खाएं तो दिल कहे एक और।
1: तो फिर आज मिठास हो जाए कान्हा स्वीट्स के साथ।
0: हाँ, परिवार हो या मेहमान, त्योहार हो या कोई खास खुशी, हर मौके की मिठास कान्हा स्वीट्स के साथ। पता नोट कर लीजिए,
1: शॉप नंबर ए GF04, कैपिटल आर्केडिया, अलवर बाईपास इन फ्रंट ऑफ वेदांता फार्म, भिवाड़ी, राजस्थान।
2: मोहाली और गुड़गांव का डेंटल अनुभव अब भिवाड़ी में। आइए वी केयर डेंटल क्लिनिक इम्प्लांट सेंटर, जहां RCT, कैपिंग और डेंटल इम्प्लांट के एक्सपर्ट ट्रीटमेंट के साथ आपको मिलता है डॉक्टर रुकु सिंगला के 16 वर्षों के अनुभव और विशेषज्ञता का भरोसा। आर्मी और कॉर्पोरेट कर्मचारियों के लिए स्पेशल डिस्काउंट। पता, अपोजिट मैकडोनल्ड्स, JMK पेट क्लिनिक के पास, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉल करें 7814399374। वी केयर डेंटल, आपकी मुस्कान हमारा भरोसा।
1: क्या आपकी आँखों की रोशनी से जुड़ी कोई परेशानी है? क्या आप चश्मे से छुटकारा पाना चाहते हैं?
0: तो आइए आधुनिक सुविधाओं से युक्त मिश्री देवी आई हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी आई सेंटर।
1: पिछले 15 वर्षों से नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में भरोसेमंद सेवाएं, अब बाहर रोड, नियम राणा और टपुकड़ा भिवाड़ी में।
0: यहाँ उपलब्ध है मोतियाबिंद, फेको, मल्टीफोकल एवं प्रीमियम लेंस, लेसिक लेजर, कॉर्निया, ग्लूकोमा और रेटिना उपचार एवं सर्जरी की आधुनिक सुविधाएं।
1: और अब दोनों आँखों का लेसिक लेजर उपचार आधुनिक तकनीक के साथ आपकी पहुंच में और उचित दरों पर।
0: बेहतर नेत्र उपचार, उचित खर्च और भरोसेमंद देखभाल के साथ चश्मे से आजादी की ओर बढ़ाइए अपना कदम। मिश्री देवी आई हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी आई सेंटर। संपर्क नंबर
1: 9783220043 या 01493294200। अब आपके शहर भिवाड़ी में साइकियाट्री एवं ऑर्थोपेडिक्स की नियमित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है ओजस हॉस्पिटल में।
0: मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितिका अग्रवाल द्वारा डिप्रेशन, नींद की समस्या, बेचैनी, घबराहट, मानसिक तनाव, स्किजोफ्रेनिया और OCD जैसी समस्याओं का उचित उपचार किया जाता है एवं काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध है।
1: वहीं हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेंद्र अग्रवाल द्वारा चोट, ट्रॉमा, फ्रैक्चर, घुटने एवं कमर का दर्द, लिगामेंट की चोट, गठिया और आर्थराइटिस जैसी हड्डी एवं जोड़ संबंधी समस्याओं का उपचार किया जाता है।
0: साथ ही सर्जरी, फिजियोथेरेपी और पेन मैनेजमेंट की सुविधा भी उपलब्ध है।
1: तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या को नजरअंदाज न करें, पहुंचिए ओजस हॉस्पिटल।
0: पता, नगीना गार्डन के पास, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी।
1: फोन करें 9521333591। ओजस हॉस्पिटल, बेहतर स्वास्थ्य की ओर एक कदम। अब आपके शहर धारूहेड़ा में ही मिल रही है आधुनिक और बेहतरीन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सुविधाएं। लोटस हॉस्पिटल, बेस्ट टैक्स सिटी, BPL फ्लैट के सामने धारूहेड़ा में डॉक्टर अन्विका बंसल, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, 15 वर्ष से अधिक अनुभव के साथ, जो पहले से ही भिवाड़ी में अपनी सेवाएं दे रही थी, अब अपने नए लोटस हॉस्पिटल में OPD और इमरजेंसी सर्विस के लिए उपलब्ध हैं। इसके साथ ही यहां उपलब्ध है अनुभवी हड्डी रोग विशेषज्ञ। यहां घुटना बदलना, कुल्हा बदलना और रीढ़ से जुड़ी सभी बीमारी का इलाज होता है, और एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट और लैप्रोस्कोपिक जनरल सर्जन, जहां लेजर टेक्निक से बवासीर, भगंदर का इलाज लोटस हॉस्पिटल में मिलता है, तथा 24 घंटे आपातकालीन सुविधा, एडवांस्ड एक्सरे, लैबोरेटरी, फार्मेसी, अल्ट्रासाउंड सर्विस, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, AC प्राइवेट रूम की सुविधाएं उपलब्ध हैं। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आज ही विजिट करें लोटस हॉस्पिटल, बेस्ट सिटी, BPL फ्लैट के सामने धारूहेड़ा। संपर्क करें 01274415033।
3: भिवाड़ी का पहला ISO और NABH सर्टिफाइड श्री कृष्णा हॉस्पिटल, जिसमें मल्टी स्पेशलिस्ट OPD, 10 बेड का ICU, सबसे बड़ा मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 50 बेड का इंडोर, 24 आवर्स एम्बुलेंस, फार्मेसी और इमरजेंसी सेवाएं तथा लैब, डिजिटल एक्सरे जैसी सुविधाओं से लैस श्री कृष्णा हॉस्पिटल अधिकांश मल्टीनेशनल कंपनियों के मेडिकल कंसल्टेंसी एवं कैशलेस उपचार का एकमात्र सेंटर। श्री कृष्णा हॉस्पिटल, B14849 भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी, 8529113916, 7340013916। इस हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट और फिजिशियन की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
4: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
5: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे, किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
4: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
6: आपके हर खास समारोह को शानदार और यादगार बनाने के लिए आइए भाटोटिया टेंट हाउस एंड इवेंट ऑर्गेनाइजर।
7: सभी प्रकार के टेंट आइटम, शानदार डेकोरेशन और इंडोर आउटडोर कैटरिंग की बेहतरीन सुविधा, शादी, सगाई, जन्मदिन या किसी भी समारोह के लिए एक ही जगह पर पूरी व्यवस्था।
6: संपर्क करें हंसराज भाटोटिया, मोबाइल नंबर 9416347214।
7: और आपके खास समारोह के लिए शानदार राजविलास मैरिज एवं बैंक्वेट हॉल, शिवनगर पार्ट 2, पांचाल कॉलोनी, सीथल रोड, धारूहेड़ा, जिला रेवाड़ी, हरियाणा।
6: भाटोटिया टेंट हाउस और राजविलास मैरिज बैंक्वेट हॉल, आपके समारोह की पूरी तैयारी एक ही जगह।
8: आपनो देश, आपनो रंग, सब मिले आपनो बाजार के संग। जी हाँ, आपनो बाजार आपका कंप्लीट फैमिली स्टोर, जहाँ उत्तम क्वालिटी और वाजिब दामों के साथ आपको मिलता है किराना, ग्रोसरी आइटम, कॉस्मेटिक, हाउसकीपिंग, हाउसहोल्ड आइटम, गिफ्ट आइटम, क्रॉकरी, टॉयज एंड गेम्स। इन सभी आइटम के MRP दामों पर खास छूट। इतना ही नहीं, फ्री होम डिलीवरी की सुविधा भी है। इनके स्टोर अलवर बाईपास, थड़ा रोड, भिवाड़ी, कृष्ण मॉल, टपुकड़ा आशियाना विलेज सेंटर। संपर्क करें 9680870184 या फिर 7822091287।
9: अरे, प्लांट का तो सारा काम हो गया, अब LED लाइट कहाँ से खरीदें?
10: सर, क्या आपको नहीं पता है नैप LED लाइटिंग कंपनी इंडस्ट्रियल लाइटिंग जैसे फ्लड लाइट, हाईवे लाइट, स्ट्रीट लाइट आदि के साथ साथ सभी प्रकार की LED लाइट बनाती है, वो भी 2 साल की वारंटी के साथ। और इतना ही नहीं, वो इंडस्ट्रियल लाइटिंग कंसल्टेंट सर्विस भी फ्री देते हैं।
9: अरे वाह, इनसे संपर्क कैसे करें?
10: सर, इनका सेल्स ऑफिस एड्रेस JFF 22, कैपिटल हाई स्ट्रीट, फूलबाग चौक, भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए नैप LED लाइटिंग कंपनी से संपर्क करें 7988627064।
6: आपके हर खास समारोह को शानदार और यादगार बनाने के लिए आइए भाटोटिया टेंट हाउस एंड इवेंट ऑर्गेनाइजर।
7: सभी प्रकार के टेंट आइटम, शानदार डेकोरेशन और इंडोर आउटडोर कैटरिंग की बेहतरीन सुविधा, शादी, सगाई, जन्मदिन या किसी भी समारोह के लिए एक ही जगह पर पूरी व्यवस्था।
6: संपर्क करें हंसराज भाटोटिया, मोबाइल नंबर 9416347214।
7: और आपके खास समारोह के लिए शानदार राजविलास मैरिज एवं बैंक्वेट हॉल, शिवनगर पार्ट 2, पांचाल कॉलोनी, सीथल रोड, धारूहेड़ा, जिला रेवाड़ी, हरियाणा।
6: भाटोटिया टेंट हाउस और राजविलास मैरिज बैंक्वेट हॉल, आपके समारोह की पूरी तैयारी एक ही जगह। जब बात आपकी मुस्कान की हो तो समझौता क्यों, अब स्पेशलिस्ट डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं। आइए डेंटल एक्सपर्ट्स भिवाड़ी, भिवाड़ी का इकलौता डेंटल क्लिनिक, जहां पूरी टीम MDS स्पेशलिस्ट्स की है और जिन्हें 15 साल से अधिक का अनुभव है। डॉक्टर विनोद यादव, MDS ऑर्थोडोंटिस्ट, भिवाड़ी के एकमात्र ब्रेसेस स्पेशलिस्ट एंड इनविसलाइन प्रोवाइडर। इसके अलावा डेंटल इम्प्लांट्स और जटिल दांतों की समस्याओं का आधुनिक उपचार प्रदान करते हैं। साथ ही डॉक्टर ऋतु यादव, MDS एंडोडोंटिस्ट, रूट कैनाल, स्माइल डिजाइनिंग और फुल माउथ रिहैबिलिटेशन की विशेषज्ञ। डेंटल एक्सपर्ट्स, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट आशियाना आंगन, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 8824232823। डेंटल एक्सपर्ट्स, आपकी मुस्कान हमारी विशेषज्ञता।
7: भिवाड़ी वासियों, अब हर जरूरत की सर्विस सिर्फ एक ऐप पर। मैसन केयर लेकर आया है आपके लिए भरोसेमंद होम और प्रोफेशनल सर्विसेज।
6: बाथरूम डीप क्लीनिंग, किचन डीप क्लीनिंग, पूरे घर की सफाई, ऑफिस क्लीनिंग, जिम क्लीनिंग, कार क्लीनिंग, पानी की टंकी की सफाई, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ड्राइवर सर्विस, कैब बुकिंग और बहुत सारी अन्य सेवाएं। अब सब कुछ एक ही ऐप पर।
7: अभी मेस एंड केयर ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे अपनी पसंद की सर्विस बुक करें।
6: मेस एंड केयर, आपका घर हमारी जिम्मेदारी। बुकिंग के लिए अभी कॉल या व्हाट्सएप करें 8824106060।
11: फ्यूचर लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहे। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
12: गणेश स्टेशनर्स, बेटर देन द बेस्ट,
11: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा A to Z सामान। इसी के साथ यहाँ प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
12: गणेश स्टेशनर्स, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड, नियर हरी राम हॉस्पिटल, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।
13: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: मैं जयपुर जा रहा हूँ।
1: अच्छा, तो आते हुए जयपुर के मशहूर दूध लड्डू और प्याज कचौरी लेते आना।
0: अरे, दूध लड्डू और प्याज कचौरी के लिए जयपुर जाने का इंतजार क्यों करना? क्योंकि अब आपके शहर भिवाड़ी में अलवर बाईपास पर खुल चुका है कान्हा स्वीट्स।
1: जी हाँ, कान्हा स्वीट्स पर मिलते हैं स्वादिष्ट दूध लड्डू, प्याज कचौरी, समोसे किसी कलाकंद, रस मलाई, कुल्हड़ रबड़ी और सभी प्रकार की मिठाइयाँ।
0: बिल्कुल, हर मिठाई में स्वाद ऐसा कि एक बार खाएं तो दिल कहे एक और।
1: तो फिर आज मिठास हो जाए कान्हा स्वीट्स के साथ।
0: हाँ, परिवार हो या मेहमान, त्योहार हो या कोई खास खुशी, हर मौके की मिठास कान्हा स्वीट्स के साथ। पता नोट कर लीजिए,
1: शॉप नंबर A G F04, कैपिटल आर्केडिया, अलवर बाईपास इन फ्रंट ऑफ वेदांता फार्म, भिवाड़ी, राजस्थान।
2: मोहाली और गुड़गांव का डेंटल अनुभव अब भिवाड़ी में। आइए वी केयर डेंटल क्लिनिक इम्प्लांट सेंटर, जहां RCT, कैपिंग और डेंटल इम्प्लांट के एक्सपर्ट ट्रीटमेंट के साथ आपको मिलता है डॉक्टर रुकु सिंगला के 16 वर्षों के अनुभव और विशेषज्ञता का भरोसा। आर्मी और कॉर्पोरेट कर्मचारियों के लिए स्पेशल डिस्काउंट। पता, अपोजिट मैकडोनल्ड्स, JMK पेट क्लिनिक के पास, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉल करें 7814399374। वी केयर डेंटल, आपकी मुस्कान हमारा भरोसा।
1: क्या आपकी आँखों की रोशनी से जुड़ी कोई परेशानी है? क्या आप चश्मे से छुटकारा पाना चाहते हैं?
0: तो आइए आधुनिक सुविधाओं से युक्त मिश्री देवी आई हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी आई सेंटर।
1: पिछले 15 वर्षों से नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में भरोसेमंद सेवाएं, अब बहर रोड, नियम राणा और टपुकड़ा भिवाड़ी में।
0: यहाँ उपलब्ध हैं मोतियाबिंद, फेको, मल्टीफोकल एवं प्रीमियम लेंस, लेसिक लेजर, कॉर्निया, ग्लूकोमा और रेटिना उपचार एवं सर्जरी की आधुनिक सुविधाएं।
1: और अब दोनों आँखों का लेसिक लेजर उपचार आधुनिक तकनीक के साथ आपकी पहुंच में और उचित दरों पर।
0: बेहतर नेत्र उपचार, उचित खर्च और भरोसेमंद देखभाल के साथ चश्मे से आजादी की ओर बढ़ाइए अपना कदम। मिश्री देवी आई हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी आई सेंटर। संपर्क नंबर
1: 9783220043 या 01493294200। अब आपके शहर भिवाड़ी में साइकियाट्री एवं ऑर्थोपेडिक्स की नियमित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है ओजस हॉस्पिटल में।
0: मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितिका अग्रवाल द्वारा डिप्रेशन, नींद की समस्या, बेचैनी, घबराहट, मानसिक तनाव, स्किजोफ्रेनिया और OCD जैसी समस्याओं का उचित उपचार किया जाता है एवं काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध है।
1: वहीं हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेंद्र अग्रवाल द्वारा चोट, ट्रॉमा, फ्रैक्चर, घुटने एवं कमर का दर्द, लिगामेंट की चोट, गठिया और आर्थराइटिस जैसी हड्डी एवं जोड़ संबंधी समस्याओं का उपचार किया जाता है।
0: साथ ही सर्जरी, फिजियोथेरेपी और पेन मैनेजमेंट की सुविधा भी उपलब्ध है।
1: तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या को नजरअंदाज न करें, पहुंचिए ओजस हॉस्पिटल।
0: पता, नगीना गार्डन के पास, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी।
1: फोन करें 9521333591। ओजस हॉस्पिटल, बेहतर स्वास्थ्य की ओर एक कदम। अब आपके शहर धारूहेड़ा में ही मिल रही है आधुनिक और बेहतरीन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सुविधाएं। लोटस हॉस्पिटल, बेस्ट टैक्स सिटी, BPL फ्लैट के सामने धारूहेड़ा में, डॉक्टर अन्विका बंसल, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, 15 वर्ष से अधिक अनुभव के साथ, जो पहले से ही भिवाड़ी में अपनी सेवाएं दे रही थी, अब अपने नए लोटस हॉस्पिटल में OPD और इमरजेंसी सर्विस के लिए उपलब्ध हैं। इसके साथ ही यहाँ उपलब्ध है अनुभवी हड्डी रोग विशेषज्ञ। यहाँ घुटना बदलना, कुल्हा बदलना और रीढ़ से जुड़ी सभी बीमारी का इलाज होता है, और एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट और लैप्रोस्कोपिक जनरल सर्जन, जहाँ लेजर टेक्निक से बवासीर, भगंदर का इलाज लोटस हॉस्पिटल में मिलता है, तथा 24 घंटे आपातकालीन सुविधा, एडवांस्ड एक्सरे, लैबोरेटरी, फार्मेसी, अल्ट्रासाउंड सर्विस, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, AC प्राइवेट रूम की सुविधाएं उपलब्ध हैं। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आज ही विजिट करें लोटस हॉस्पिटल, बेस्ट टैक्स सिटी, BPL फ्लैट के सामने, धारूहेड़ा। संपर्क करें 01274415033।
3: भिवाड़ी का पहला ISO और NABH सर्टिफाइड श्री कृष्णा हॉस्पिटल, जिसमें मल्टी स्पेशलिस्ट OPD, 10 बेड का ICU, सबसे बड़ा मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 50 बेड का इंडोर, 24 आवर्स एम्बुलेंस, फार्मेसी और इमरजेंसी सेवाएं, तथा लैब, डिजिटल एक्सरे जैसी सुविधाओं से लैस श्री कृष्ण कृष्णा हॉस्पिटल अधिकांश मल्टीनेशनल कंपनियों के मेडिकल कंसल्टेंसी एवं कैशलेस उपचार का एकमात्र सेंटर। श्री कृष्णा हॉस्पिटल B14849 भगत सिंह कॉलोनी भिवाड़ी 8529113916 7340013916। इस हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट और फिजिशियन की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
4: विजय हॉस्पिटल डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
5: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
4: कान नाक गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
1: आपके हर खास समारोह को शानदार और यादगार बनाने के लिए

0: वाल्मीकि में 16 औद्योगिक व 2 वेयर हाउस भूखंडों को ई नीलामी के माध्यम से बेचान किया जा रहा है। इन भूखंडों के लिए अमानत राशि दिनांक 9/10/2026 समय 6 बजे तक जमा कराकर बिड लगा सकते हैं। बिड लगाने की अंतिम तिथि 14/10/2026 समय 5 बजे तक है। इसके साथ ही औद्योगिक क्षेत्र सलारपुर व पथरेड़ी में 43 भूखंडों को प्रत्यक्ष आवंटन योजना के माध्यम से बेचान किया जा रहा है। इन भूखंडों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 12/10/2026 समय 6 बजे तक है। अंतिम जानकारी के लिए रिको की वेबसाइट www.riico.co.in यानी www.rico.co.in पर एवं रिको इकाई कार्यालय भिवाड़ी द्वितीय रिको रेस्ट हाउस रोड भिवाड़ी में संपर्क कर सकते हैं।
1: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।

0: भिवाड़ी का भरोसा वर्षों से आपकी सेवा में। सिटी नर्सिंग होम सदर मार्केट भिवाड़ी, औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी का पहला नर्सिंग होम NABH द्वारा प्रमाणित।
1: यहाँ उपलब्ध हैं 2 आधुनिक ICU, अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, दूरबीन सर्जरी की सुविधा तथा अधिकांश मेडिक्लेम कंपनियों की कैशलेस सुविधा, डायबिटीज के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर कौशल, मनोरोग परामर्श हेतु डॉक्टर कनिष्का तथा मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर रूप सिंह की सेवाएं उपलब्ध। अनुभवी डॉक्टर, आधुनिक सुविधाएं और मरीजों की समर्पित देखभाल।
0: सिटी नर्सिंग होम सदर मार्केट भिवाड़ी, स्वास्थ्य का भरोसा आपके अपने शहर में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सिटी नर्सिंग होम भिवाड़ी।

0: अरे कहाँ जा रही हो?
1: मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए अंशुल ज्वेलर्स।
0: अच्छा, पर अंशुल ज्वेलर्स से क्यों?
1: अंशुल ज्वेलर्स के पास है सोने, चांदी और हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन, वो भी DIS के 6 अंकों वाले हॉलमार्क HUID के साथ। और तो और, इनकी ज्वेलरी को हम भारत सरकार द्वारा चलाए गए BIS केयर ऐप के वेरीफाइड HUID फीचर से आभूषणों की शुद्धता का प्रमाण देख सकते हैं।
0: जी हाँ, खरे आभूषणों की प्रामाणिकता जिसके साथ बढ़ेगी आपकी सुंदरता। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर। हमारा पता, शॉप नंबर 7, गणपति मॉल, समतल मोड़, भिवाड़ी, राजस्थान, या मेन बाजार नजदीक हनुमान मंदिर, टावड़ू, हरियाणा। संपर्क करें 9952336111 या फिर 9354898521 पर। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर।
2: कभी भी इमरजेंसी हो या सिर्फ एक छोटी सी चेकअप की जरूरत हो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा और भिवाड़ी में आपका अपना हॉस्पिटल है। 24 घंटे इमरजेंसी, AC प्राइवेट रूम्स, वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर, डिजिटल एक्सरे, क्लिनिकल लैब, TMT, ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी, फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी, स्किन प्रिक एंड ब्लड एलर्जी टेस्ट, एलर्जी का जड़ से इलाज। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं मेडिसिन, सर्जरी, ENT, हेड एंड नेक सर्जरी, ऑब्स एंड गाइनी, ऑर्थोपेडिक्स, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कैशलेस फैसिलिटी, सभी TPA के साथ। तो अब टेंशन मत लो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा, प्लॉट नंबर 5, सेक्टर 6 और भिवाड़ी, B83, भगत सिंह कॉलोनी। बस एक कॉल या एक विजिट, नो है 8607274999।
3: भारत अल्ट्रासाउंड एवं डायग्नोस्टिक सेंटर पर अत्याधुनिक MRI, 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 5D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, डिजिटल एक्सरे, DR, TMT, EEG व फुल्ली कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब प्रतिदिन उपलब्ध है।
4: भारत डायग्नोस्टिक्स द्वारा गत 20 वर्षों से MT रेडियोलॉजिस्ट, PGI चंडीगढ़ में प्रशिक्षित अनुभवी डॉक्टर्स द्वारा सभी जांचें की जा रही हैं।
3: भारत डायग्नोस्टिक्स पर 5D अल्ट्रासाउंड मशीन द्वारा लेवल 1 एंड 2 फीटल अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इकोकार्डियोग्राफी, लिवर फाइब्रोस्कैन व 3D CT स्कैन मशीन पर एंजियोग्राफी, यूरोग्राफी व एंटेरोग्राफी की जांच भी की जाती है। 1/57-58 राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, सेंट्रल मार्केट के पास, भिवाड़ी। कॉल 9351004500।
5: दूसरी ब्रांच A50 भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉल 8058304500।
6: श्रीराम इंडस्ट्रीज आर्मर जैन, भारत में मेक इन इंडिया पहल के तहत विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाले उत्पादों के निर्माण में एक भरोसेमंद नाम। यहाँ बनते हैं फायर रेटेड और नॉन फायर रेटेड डोर्स, मोटराइज्ड और मैनुअल गेट्स, जनरल पर्पस डोर्स, एक्सेस डोर्स, डॉक लेवलर, फायर हॉज कैबिनेट्स और आपकी जरूरत के मुताबिक कस्टमाइज्ड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस, BIS, CBRI और NABL सर्टिफाइड, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स, उचित कीमत पर। आर्मर जैन आपको देता है वादा गुणवत्ता, सुरक्षा और विश्वास का। संपर्क करें 7014735108। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.armorzain.co.in। आर्मर जैन, जब बात हो गुणवत्ता और भरोसे की।
7: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: कर रही है?
1: ऑनलाइन बुकिंग देख रही हूँ, जयपुर जाना है।
0: फिर से? अभी तो गई थी।
1: हाँ, फिर से जाना है।
0: तू अपनी गाड़ी क्यों नहीं ले लेती?
1: गाड़ी नॉट इन बजट।
0: अरे गांधी मोटर्स है ना?
1: गांधी मोटर्स?
0: हाँ गांधी मोटर्स। गांधी मोटर्स कार सेल और परचेज के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर हर तरह की गाड़ियाँ बहुत अच्छी कीमत पे मिलती हैं।
1: तो कब चले?
0: अरे इसमें सोचना कैसा, अभी चलना। गाड़ियों के सेल और परचेज के लिए आज ही संपर्क करें।
2: हमारा पता है शॉप नंबर S16 एवलॉन रॉयल प्लाजा अलवर बाईपास रोड भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9785980000 या फिर 8740000144 पर।
3: भिवाड़ी में 27 वर्षों से सेवारत, भरोसेमंद 24 घंटे इलाज हेतु गोपीनाथ अस्पताल, ISO तथा NABH मान्यता एवं राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मल्टी स्पेशलिटी सेंट्रल ACOPD, 50 बेड की सुविधा से युक्त गोपीनाथ हॉस्पिटल, अत्याधुनिक 3 ऑपरेशन थिएटर, 7 बेड ICU, 2 जीवन रक्षक एम्बुलेंस, डिजिटल एक्सरे, ऑर्थोपेडिक सर्जन, फिजिशियन तथा लेडी डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा से युक्त गोपीनाथ अस्पताल। यहाँ नेफ्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, डायबिटोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट की नियमित OPD भी उपलब्ध है। लगभग सभी TPA कैशलेस सुविधा के साथ तथा भिवाड़ी की व आसपास की औद्योगिक इकाइयों के बीमा कंपनियां भी पैनल पर हैं। पता 226 इंडस्ट्रियल एरिया सदर बाजार के पीछे गोपीनाथ रोड भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 01493619563 एंड 9784333863।
4: क्या आप बिजली के बिल से परेशान हैं? क्या आप जानते हैं सोलर एनर्जी से आप बिजली के बिल से आजादी पा सकते हैं? जी हाँ, अपने घर, ऑफिस और फैक्ट्री की छत पर सोलर पैनल लगाएं और भारी बिजली के बिल से मुक्ति पाएं। सोलर एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको 30% तक रिटर्न देता है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9610255584। ग्रीन रूट्स रिन्यूएबल एनर्जी।
5: आपकी आँखें हैं अनमोल, आपकी आँखों को चाहिए बेहतर देखभाल, तो आइए गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स भिवाड़ी।
6: यहाँ मिलते हैं सभी ब्रांडेड कंपनियों के स्टाइलिश फ्रेम और हाई क्वालिटी लेंस। Ray-Ban, Vogue, टॉमी हिल्फिगर, ओकेली, प्रदा, जीज, एसिलोर क्रिजाल, विजन आर एक्स और भी कई नेशनल व इंटरनेशनल ब्रांड्स।
5: साथ ही कॉन्टैक्ट लेंस, लो विजन क्लिनिक, मायोपिया क्लिनिक, विजन थेरेपी और आधुनिक मशीनों द्वारा कंप्यूटरीकृत आई एग्जामिनेशन, प्रशिक्षित ऑप्टोमेट्रिस्ट की पूरी टीम।
6: भिवाड़ी में सन 2006 से भरोसे का नाम गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स।
5: गणपति मॉल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास, समतल चौक भिवाड़ी और अशियाना आंगन के सामने BDI सोसाइटी के पास अलवर बाईपास रोड भिवाड़ी।
7: अपॉइंटमेंट या जानकारी के लिए अभी कॉल करें 9636061776 या 9928929309।
8: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है, कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है, और इन्हीं श्रृंगार को सवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, एक से एक उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A, आशियाना आंगन प्लाजा, नियर मैकडॉनल्ड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट करें 01493493222 या फिर 9034969731 पर। ऐसे डिजाइन्स जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्स ही आए।
9: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: मैं जयपुर जा रहा हूँ।
1: अच्छा, तो आते हुए जयपुर के मशहूर दूध लड्डू और प्याज कचौरी लेते आना।
0: अरे, दूध लड्डू और प्याज कचौरी के लिए जयपुर जाने का इंतजार क्यों करना, क्योंकि अब आपके शहर भिवाड़ी में अलवर बाईपास पर खुल चुका है कान्हा स्वीट्स।
1: जी हाँ, कान्हा स्वीट्स पर मिलते हैं स्वादिष्ट दूध लड्डू, प्याज कचौरी, समोसे किसी कलाकंद, रसमलाई, कुल्हड़ रबड़ी और सभी प्रकार की मिठाइयाँ।
0: बिल्कुल, हर मिठाई में स्वाद ऐसा कि एक बार खाएं तो दिल कहे एक और।
1: तो फिर आज मिठास हो जाए कान्हा स्वीट्स के साथ।
0: हाँ, परिवार हो या मेहमान, त्योहार हो या कोई खास खुशी, हर मौके की मिठास कान्हा स्वीट्स के साथ। पता नोट कर लीजिए,
1: शॉप नंबर AG F04, कैपिटल आर्केडिया, अलवर बाईपास इन फ्रंट ऑफ वेदांता फार्म, भिवाड़ी, राजस्थान।
2: मोहाली और गुड़गांव का डेंटल अनुभव अब भिवाड़ी में। आइए वी केयर डेंटल क्लिनिक इम्प्लांट सेंटर, जहां RCT, कैपिंग और डेंटल इम्प्लांट के एक्सपर्ट ट्रीटमेंट के साथ आपको मिलता है डॉक्टर रुकु सिंगला के 16 वर्षों के अनुभव और विशेषज्ञता का भरोसा। आर्मी और कॉर्पोरेट कर्मचारियों के लिए स्पेशल डिस्काउंट। पता, अपोजिट मैकडोनल्ड्स, JMK पेट क्लिनिक के पास, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉल करें 7814399374। वी केयर डेंटल, आपकी मुस्कान हमारा भरोसा।
1: क्या आपकी आँखों की रोशनी से जुड़ी कोई परेशानी है? क्या आप चश्मे से छुटकारा पाना चाहते हैं?
0: तो आइए आधुनिक सुविधाओं से युक्त मिश्री देवी आई हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी आई सेंटर।
1: पिछले 15 वर्षों से नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में भरोसेमंद सेवाएं, अब बहर रोड, नियम राणा और टपूकड़ा भिवाड़ी में।
0: यहाँ उपलब्ध है मोतियाबिंद, फेको, मल्टीफोकल एवं प्रीमियम लेंस, लेसिक लेजर, कॉर्निया, ग्लूकोमा और रेटिना उपचार एवं सर्जरी की आधुनिक सुविधाएं।
1: और अब दोनों आँखों का लेसिक लेजर उपचार आधुनिक तकनीक के साथ आपकी पहुंच में और उचित दरों पर।
0: बेहतर नेत्र उपचार, उचित खर्च और भरोसेमंद देखभाल के साथ चश्मे से आजादी की ओर बढ़ाइए अपना कदम। मिश्री देवी आई हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी आई सेंटर। संपर्क नंबर
1: 9783220043।
3: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
4: 90.8 FM 24 पर आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड कैफे आरजे सनी के साथ। दोस्तों, दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो मल्टी टैलेंटेड होते हैं। मानो भगवान ने अपने टैलेंट के पिटारे से निकली हुई पूरी की पूरी पोटली उन्हीं के ऊपर उड़ेल दी हो। और अब तक आप शायद गैस करना शुरू भी कर चुके होंगे। और इससे पहले कि आप अपने निष्कर्ष तक पहुंचे, आपको बता दूं दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं निशांत खुराना उर्फ आयुष्मान खुराना की। अब निशांत खुराना, ये क्या मिस्ट्री है भाई? दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है, ये कोई मिस्ट्री नहीं है। असल में जब आयुष्मान पैदा हुए थे तब उनका नाम निशांत खुराना था, जिसे बाद में आयुष्मान खुराना कर दिया गया था। वैसे इनके नाम में एक और बार फेरबदल हुआ था, लेकिन ये फेरबदल सिर्फ आयुष्मान के नाम की स्पेलिंग में हुआ था जी। और उसके पीछे का कारण ये था कि आयुष्मान खुराना के पिता का मानना था कि आयुष्मान के नाम की स्पेलिंग को बदलने से उनका भाग्य, जो कि पहले से ही अच्छा है, वो और भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। वैसे दोस्तों, भाग्य तो आयुष्मान खुराना अपने साथ लेकर के ही पैदा हुए थे, तभी तो इतने ज्यादा टैलेंटेड। चलिए दोस्तों, बताएंगे आपको आयुष्मान खुराना के टैलेंट और उनके करियर से जुड़ी हुई तमाम सारी बातों को और उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी। लेकिन इसके लिए आपको करना होगा थोड़ा सा इंतजार, और इंतजार की इन घड़ियों में छोड़े जाते हैं आपके लिए आयुष्मान खुराना का एक बेहतरीन सा गाना, जो उन्होंने अभी रिसेंटली गाया है। और दोस्तों, ये गाना भी काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है लोगों के द्वारा। शुभ मंगल ज्यादा सावधान, इस मूवी को तो आपने देखा ही होगा, तो इसी मूवी का गाना है आयुष्मान खुराना की आवाज में। इस गाने को सुनिए, वापस लौटते हैं कुछ ही देर में।

0: काफी हो।
1: मुझसे तो लड़ने बेटा, तुम यहाँ से कैसे लड़ोगे? आप ही दुनिया हो
0: मेरे लिए, तुम काफी हो।
2: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
3: औद्योगिक क्षेत्र सारे खुद करौली बंदापुर खुशखेड़ा व चौपानकी में 16 औद्योगिक व 2 वेयर हाउस भूखंडों को ई नीलामी के माध्यम से बेचैन किया जा रहा है। इन भूखंडों के लिए अमानत राशि दिनांक 9/10/2026 समय 6 बजे तक जमा कराकर बिड लगा सकते हैं। बिड लगाने की अंतिम तिथि 14/10/2026 समय 5 बजे तक है। इसके साथ ही औद्योगिक क्षेत्र सलारपुर व पथरेड़ी में 43 भूखंडों को प्रत्यक्ष आवंटन योजना के माध्यम से बेचैन किया जा रहा है। इन भूखंडों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 12/10/2026 समय 6 बजे तक है। अंतिम जानकारी के लिए रिको की वेबसाइट www.riico.co.in यानी www.rico.co.in पर एवं रिको इकाई कार्यालय भिवाड़ी द्वितीय रिको रेस्ट हाउस रोड भिवाड़ी में संपर्क कर सकते हैं।
4: अब भिलवाड़ी के शिवोहम हॉस्पिटल में पाएं एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं। यहां 25 बेड से लेस इंडोर, 6 बेड से लेस आईसीयू, 2 बड़े ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजी लैब तथा अत्याधुनिक एक्सरे मशीनों के द्वारा एक्सरे सुविधा, तकनीकी मशीनों द्वारा जांच, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, एम्बुलेंस, सभी कैशलेस टीपी सुविधाओं के साथ 14 साल से कम आयु की बच्चियों के लिए निशुल्क परामर्श, गायनेकोलॉजी, इनफर्टिलिटी, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नम्रता मेहता चतुर्वेदी व हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हेमंत चतुर्वेदी जैसे अनुभवी डॉक्टर से परामर्श सुविधा, जो कि पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में निरंतर अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। शिवोहम हॉस्पिटल B4 भगत सिंह कॉलोनी पुराने RTO ऑफिस के पास भिवाड़ी। संपर्क 9799996778।
5: भिवाड़ी का पहला ISO और NABH सर्टिफाइड श्री कृष्णा हॉस्पिटल, जिसमें मल्टी स्पेशलिस्ट OPD, 10 बेड का ICU, सबसे बड़ा मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 50 बेड का इंडोर, 24 आवर्स एम्बुलेंस, फार्मेसी और इमरजेंसी सेवाएं तथा लैब, डिजिटल एक्सरे जैसी सुविधाओं से लैस श्री कृष्णा हॉस्पिटल अधिकांश मल्टीनेशनल कंपनियों के मेडिकल कंसल्टेंसी एवं कैशलेस उपचार का एकमात्र सेंटर। श्री कृष्णा हॉस्पिटल B14849 भगत सिंह कॉलोनी भिवाड़ी 8529113916 7340013916। इस हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट और फिजिशियन की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं।
6: क्या आपकी त्वचा, बाल या नाखून की समस्या बार बार परेशान कर रही है?
7: अब सही इलाज के लिए मिलिए डॉक्टर गौरव, एम्स से प्रशिक्षित त्वचा रोग विशेषज्ञ, SS हॉस्पिटल भिवाड़ी में।
6: मुंहासे, पिगमेंटेशन, एलर्जी, हेयर फॉल से लेकर लेजर, केमिकल पील और बोटॉक्स जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध।
7: ECHS RGHS तथा NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल में सभी प्रमुख TPA मान्य।
6: SS हॉस्पिटल भिवाड़ी, भरोसेमंद विशेषज्ञ से देखभाल। समय रोजाना शाम 4:30 to 6:30 तक, गुरुवार अवकाश।
8: पूजा, तुम्हारे फेस पर कितने पिंपल्स और धब्बे हो रहे हैं?
9: हाँ यार, और बाल भी हर दिन झड़ रहे हैं। कई बार दिल्ली गुरुग्राम में भी दिखा चुकी हूँ।
8: अरे पूजा, अब दिल्ली या गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपनी भिवाड़ी में है डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, जहाँ पर स्किन, हेयर एंड नेल्स की सभी बीमारियों का पूर्ण इलाज डॉक्टर सुचेता MD डर्मेटोलॉजी द्वारा किया जाता है, जो भिवाड़ी में अपनी सेवाएं दे रही है। इनके यहाँ लेजर हेयर रिमूवल, माइक्रो नीडलिंग, PRP, RF, अन्य सभी स्किन समस्याओं का समाधान विदेशी मशीनों व नई तकनीकों द्वारा किया जाता है। कॉल करें 6367551007। विजिट डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, A56 फर्स्ट फ्लोर भगत सिंह कॉलोनी, बिहाइंड सुखम टावर भिवाड़ी।
10: आपके सारे जरूरतों का बीमा एक ही जगह, विधि एंटरप्राइजेज भिवाड़ी। स्वास्थ्य बीमा, वाहन बीमा, जीवन बीमा, फायर बीमा सब मिलेगा यहाँ। और हाँ, बीमा कराने पर खास ऑफर भी मिलेंगे। संपर्क करें चंद्रभान विधि एंटरप्राइजेज, रिको चौक भिवाड़ी, 9887066308।
2: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
11: एक बार फिर से दोस्तों स्वागत है आपका 90.8 FM 24 पर, और शो चल रहा है बॉलीवुड कैफे RJ सनी के साथ। दोस्तों बातें हो रही थी आयुष्मान खुराना की, और जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा, आयुष्मान खुराना का नाम मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्टों में गिना जाता है। एक्टर आयुष्मान खुराना इंडियन टेलीविजन के एंकर होने के साथ साथ फिल्म अभिनेता और गायक भी हैं। आईफा हो या फिर फिल्म फेयर अवार्ड या फिर टेलीविजन का कोई अवार्ड शो, हर जगह आपको आयुष्मान खुराना की एंकरिंग देखने को मिल ही जाएगी। और दोस्तों बात करें अगर सिंगिंग की, तो दोस्तों इनकी फर्स्ट फिल्म यानी कि डेब्यू फिल्म साल 2012 में सुजीत सिरकर के निर्देशन में बनी विक्की डोनर में मुख्य किरदार के साथ सिंगिंग का भी इन्होंने अपना हुनर दिखाया था। आयुष्मान का गाया हुआ गाना काफी ज्यादा पसंद किया गया और फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर काफी ज्यादा हिट रही। वैसे दोस्तों ये डेब्यू केवल आयुष्मान खुराना के लिए नहीं था, बल्कि इस फिल्म में अभिनेता जॉन अब्राहम ने निर्माता के रूप में डेब्यू किया था। दोस्तों फिल्म के विषय की बात करें तो फिल्म का विषय थोड़ा सा अलग जरूर था, लेकिन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था, जो कि लोगों के द्वारा बहुत ज्यादा पसंद भी किया गया। शायद इसीलिए फिल्म हिट रही। इस फिल्म में आयुष्मान खुराना ने विक्की अरोरा का किरदार निभाया था, जो कि एक स्पर्म डोनर होता है और वह एक बंगाली लड़की से शादी कर लेता है। बंगाली लड़की के किरदार में उनकी सह अभिनेत्री यामी गौतम रहती हैं। और दोस्तों खास बात ये कि फिल्म बहुत ही कम बजट में बनी थी, बावजूद इसके फिल्म ने व्यावसायिक रूप से काफी ज्यादा कमाई की। खैर दोस्तों अभी आपको सुनवाते इस फिल्म में आयुष्मान खुराना का गाया हुआ वो गाना जो लोगों के द्वारा काफी ज्यादा पसंद किया गया और लड़कियां उनकी फैन हो गई, जी गाने की भी और उनकी एक्टिंग की भी। फिलहाल दोस्तों आप इस गाने को एंजॉय कीजिए, वापस लौटते हैं कुछ ही देर में।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
1: मैं जयपुर जा रहा हूँ।
2: अच्छा तो आते हुए जयपुर के मशहूर दूध लड्डू और प्याज कचौरी लेते आना।
1: अरे दूध लड्डू और प्याज कचौरी के लिए जयपुर जाने का इंतजार क्यों करना, क्योंकि अब आपके शहर भिवाड़ी में अलवर बाईपास पर खुल चुका है कान्हा स्वीट्स।
2: जी हाँ, कान्हा स्वीट्स पर मिलते हैं स्वादिष्ट दूध लड्डू, प्याज कचौरी, समोसे, किसी कलाकंद, रस मलाई, कुल्हड़ रबड़ी और सभी प्रकार की मिठाइयाँ।
1: बिल्कुल, हर मिठाई में स्वाद ऐसा कि एक बार खाएं तो दिल कहे एक और।
2: तो फिर आज मिठास हो जाए कान्हा स्वीट्स के साथ।
1: हाँ, परिवार हो या मेहमान, त्योहार हो या कोई खास खुशी, हर मौके की मिठास कान्हा स्वीट्स के साथ। पता नोट कर लीजिए,
2: शॉप नंबर AG F04, कैपिटल आर्केडिया, अलवर बाईपास इन फ्रंट ऑफ वेदांता फार्म, भिवाड़ी, राजस्थान।
3: मोहाली और गुड़गांव का डेंटल अनुभव अब भिवाड़ी में। आइए वी केयर डेंटल क्लिनिक इम्प्लांट सेंटर, जहां RCT, कैपिंग और डेंटल इम्प्लांट के एक्सपर्ट ट्रीटमेंट के साथ आपको मिलता है डॉक्टर रुकु सिंगला के 16 वर्षों के अनुभव और विशेषज्ञता का भरोसा। आर्मी और कॉर्पोरेट कर्मचारियों के लिए स्पेशल डिस्काउंट। पता, अपोजिट मैकडोनल्ड्स, JMK पेट क्लिनिक के पास, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉल करें 7814399374। वी केयर डेंटल, आपकी मुस्कान हमारा भरोसा।
2: क्या आपकी आँखों की रोशनी से जुड़ी कोई परेशानी है? क्या आप चश्मे से छुटकारा पाना चाहते हैं?
1: तो आइए आधुनिक सुविधाओं से युक्त मिश्री देवी आई हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी आई सेंटर।
2: पिछले 15 वर्षों से नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में भरोसेमंद सेवाएं, अब बहर रोड, नियम राणा और टपुकड़ा भिवाड़ी में।
1: यहाँ उपलब्ध है मोतियाबिंद, फेको, मल्टीफोकल एवं प्रीमियम लेंस, लेसिक लेजर, कॉर्निया, ग्लूकोमा और रेटिना उपचार एवं सर्जरी की आधुनिक सुविधाएं।
2: और अब दोनों आँखों का लेसिक लेजर उपचार आधुनिक तकनीक के साथ आपकी पहुंच में और उचित दरों पर।
1: बेहतर नेत्र उपचार, उचित खर्च और भरोसेमंद देखभाल के साथ चश्मे से आजादी की ओर बढ़ाइए अपना कदम। मिश्री देवी आई हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी आई सेंटर। संपर्क नंबर
2: 9783220043 या 01493294200। अब आपके शहर भिवाड़ी में साइकियाट्री एवं ऑर्थोपेडिक्स की नियमित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है ओजस हॉस्पिटल में।
1: मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितिका अग्रवाल द्वारा डिप्रेशन, नींद की समस्या, बेचैनी, घबराहट, मानसिक तनाव, स्किजोफ्रेनिया और OCD जैसी समस्याओं का उचित उपचार किया जाता है एवं काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध है।
2: वहीं हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेंद्र अग्रवाल द्वारा चोट, ट्रॉमा, फ्रैक्चर, घुटने एवं कमर का दर्द, लिगामेंट की चोट, गठिया और आर्थराइटिस जैसी हड्डी एवं जोड़ संबंधी समस्याओं का उपचार किया जाता है।
1: साथ ही सर्जरी, फिजियोथेरेपी और पेन मैनेजमेंट की सुविधा भी उपलब्ध है।
2: तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या को नजरअंदाज न करें, पहुंचिए ओजस हॉस्पिटल।
1: पता, नगीना गार्डन के पास, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी।
2: फोन करें 9521333591। ओजस हॉस्पिटल, बेहतर स्वास्थ्य की ओर एक कदम। अब आपके शहर धारूहेड़ा में ही मिल रही है आधुनिक और बेहतरीन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सुविधाएं। लोटस हॉस्पिटल, बेस्ट टैक सिटी, BPL फ्लैट के सामने धारूहेड़ा में डॉक्टर अन्विका बंसल, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, 15 वर्ष से अधिक अनुभव के साथ, जो पहले से ही भिवाड़ी में अपनी सेवाएं दे रही थी, अब अपने नए लोटस हॉस्पिटल में OPD और इमरजेंसी सर्विस के लिए उपलब्ध हैं। इसके साथ ही यहाँ उपलब्ध है अनुभवी हड्डी रोग विशेषज्ञ। यहाँ घुटना बदलना, कुल्हा बदलना और रीढ़ से जुड़ी सभी बीमारी का इलाज होता है, और एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट और लैप्रोस्कोपिक जनरल सर्जन, जहाँ लेजर टेक्निक से बवासीर, भगंदर का इलाज लोटस हॉस्पिटल में मिलता है, तथा 24 घंटे आपातकालीन सुविधा, एडवांस्ड एक्सरे, लैबोरेटरी, फार्मेसी, अल्ट्रासाउंड सर्विस, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, AC प्राइवेट रूम की सुविधाएं उपलब्ध हैं। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आज ही विजिट करें लोटस हॉस्पिटल, बेस्ट टैक सिटी, BPL फ्लैट के सामने धारूहेड़ा। संपर्क करें 01274415033।
4: भिवाड़ी का पहला ISO और NABH सर्टिफाइड श्री कृष्णा हॉस्पिटल, जिसमें मल्टी स्पेशलिस्ट OPD, 10 बेड का ICU, सबसे बड़ा मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 50 बेड का इंडोर, 24 आवर्स एम्बुलेंस, फार्मेसी और इमरजेंसी सेवाएं, तथा लैब, डिजिटल एक्सरे जैसी सुविधाओं से लैस श्री कृष्णा हॉस्पिटल अधिकांश मल्टीनेशनल कंपनियों के मेडिकल कंसल्टेंसी एवं कैशलेस उपचार का एकमात्र सेंटर। श्री कृष्णा हॉस्पिटल B14849 भगत सिंह कॉलोनी भिवाड़ी 8529113916 7340013916। इस हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट और फिजिशियन की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
5: विजय हॉस्पिटल डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
6: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
5: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
7: आपके हर खास समारोह को शानदार और यादगार बनाने के लिए आइए भाटोटिया टेंट हाउस एंड इवेंट ऑर्गेनाइजर।
8: सभी प्रकार के टेंट आइटम, शानदार डेकोरेशन और इंडोर आउटडोर कैटरिंग की बेहतरीन सुविधा, शादी, सगाई, जन्मदिन या किसी भी समारोह के लिए एक ही जगह पर पूरी व्यवस्था।
7: संपर्क करें हंसराज भाटोटिया, मोबाइल नंबर 9416347214।
8: और आपके खास समारोह के लिए शानदार राजविलास मैरिज एवं बैंक्वेट हॉल, शिवनगर पार्ट 2, पांचाल कॉलोनी, सीथल रोड, धारूहेड़ा, जिला रेवाड़ी, हरियाणा।
7: भाटोटिया टेंट हाउस और राजविलास मैरिज बैंक्वेट हॉल, आपके समारोह की पूरी तैयारी एक ही जगह। भिवाड़ी का भरोसा वर्षों से आपकी सेवा में। सिटी नर्सिंग होम सदर मार्केट भिवाड़ी, औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी का पहला नर्सिंग होम NABH द्वारा प्रमाणित।
8: यहां उपलब्ध हैं 2 आधुनिक ICU, अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, दूरबीन सर्जरी की सुविधा तथा अधिकांश मेडिक्लेम कंपनियों की कैशलेस सुविधा, डायबिटीज के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर कौशल, मनोरोग परामर्श हेतु डॉक्टर कनिष्का तथा मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर रूप सिंह की सेवाएं उपलब्ध, अनुभवी डॉक्टर, आधुनिक सुविधाएं और मरीजों की समर्पित देखभाल।
7: सिटी नर्सिंग होम सदर मार्केट भिवाड़ी, स्वास्थ्य का भरोसा आपके अपने शहर में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सिटी नर्सिंग होम भिवाड़ी।
9: अरे कहाँ जा रही हो?
10: मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए अंशुल ज्वेलर्स।
9: अच्छा, पर अंशुल ज्वेलर्स से क्यों?
10: अंशुल ज्वेलर्स के पास है सोने, चांदी और हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन, वो भी BIS के 6 अंकों वाले हॉलमार्क HUID के साथ। और तो और, इनकी ज्वेलरी को हम भारत सरकार द्वारा चलाए गए BIS केयर ऐप के वेरीफाई HUID फीचर से आभूषणों की शुद्धता का प्रमाण देख सकते हैं।
9: जी हाँ, खरे आभूषणों की प्रामाणिकता जिसके साथ बढ़ेगी आपकी सुंदरता। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर। हमारा पता शॉप नंबर 7 गणपति मॉल समतल मोड़ भिवाड़ी राजस्थान या मेन बाजार नजदीक हनुमान मंदिर टावड़ू हरियाणा। संपर्क करें 9992533611 या फिर 9354898521 पर। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर।
11: कभी भी इमरजेंसी हो या सिर्फ एक छोटी सी चेकअप की जरूरत हो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेड़ा और भिवाड़ी में आपका अपना हॉस्पिटल है। 24 घंटे इमरजेंसी, AC प्राइवेट रूम्स, वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर, डिजिटल एक्सरे, क्लिनिकल लैब, TMT, ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी, फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी, स्किन प्रिक एंड ब्लड एलर्जी टेस्ट, एलर्जी का जड़ से इलाज हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं। मेडिसिन, सर्जरी, ENT, हेड एंड नेक सर्जरी, ऑब्स एंड गाइनी, ऑर्थोपेडिक्स, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कैशलेस फैसिलिटी, सभी TPA के साथ। तो अब टेंशन मत लो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेड़ा प्लॉट नंबर 5 सेक्टर 6 और भिवाड़ी B83 भगत सिंह कॉलोनी। बस एक कॉल या एक विजिट, नो है 8607274999।
12: भारत अल्ट्रासाउंड एवं डायग्नोस्टिक सेंटर पर अत्याधुनिक MRI, 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 5D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर डिजिटल एक्सरे, DR, TMT, EEG व फुल्ली कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब प्रतिदिन उपलब्ध है।
13: भारत डायग्नोस्टिक्स द्वारा गत 20 वर्षों से MD रेडियोलॉजिस्ट PGI चंडीगढ़ में प्रशिक्षित अनुभवी डॉक्टर्स द्वारा सभी जांचें की जा रही हैं।
12: भारत डायग्नोस्टिक्स पर 5D अल्ट्रासाउंड मशीन द्वारा लेवल 1 एंड 2 फीटल अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इको कार्डियोग्राफी, लिवर फाइब्रोस्कैन व 3D सीटी स्कैन मशीन पर एंजियोग्राफी, यूरोग्राफी व एंटेरोग्राफी की जांच भी की जाती है। 1/57/58 राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, सेंट्रल मार्केट के पास, भिवाड़ी। कॉल 9351004500।
6: दूसरी ब्रांच A50 भगत सिंह कॉलोनी भिवाड़ी। कॉल 8058304500।
14: श्रीराम इंडस्ट्रीज आर्मर जैन भारत में मेक इन इंडिया पहल के तहत विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाले उत्पादों के निर्माण में एक भरोसेमंद नाम। यहाँ बनते हैं फायर रेटेड और नॉन फायर रेटेड डोर्स, मोटराइज्ड और मैनुअल गेट्स, जनरल पर्पस डोर्स, एक्सेस डोर्स, डॉक लेवलर, फायर हॉज कैबिनेट्स और आपकी जरूरत के मुताबिक कस्टमाइज्ड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस। BIS, CBRI और NABL सर्टिफाइड वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स उचित कीमत पर। आर्मर जैन आपको देता है वादा गुणवत्ता, सुरक्षा और विश्वास का। संपर्क करें 7014735108। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.armorzain.co.in। आर्मर जैन, जब बात हो गुणवत्ता और भरोसे की।
15: आपनो देश, आपनो रंग, सब मिले आपनो बाजार के संग। जी हाँ, आपनो बाजार आपका कंप्लीट फैमिली स्टोर, जहाँ उत्तम क्वालिटी और वाजिब दामों के साथ आपको मिलता है किराना, ग्रोसरी आइटम, कॉस्मेटिक, हाउसकीपिंग, हाउसहोल्ड आइटम, गिफ्ट आइटम, क्रॉकरी, टॉयज एंड गेम्स। इन सभी आइटम के MRP दामों पर खास छूट। इतना ही नहीं, फ्री होम डिलीवरी की सुविधा भी है। इनके स्टोर अलवर बाईपास, थड़ा रोड, भिवाड़ी, कृष्ण मॉल, टपुकड़ा आशियाना विलेज सेंटर। संपर्क करें 9680870184 या फिर 7822091287।
16: अरे, प्लांट का तो सारा काम हो गया, अब LED लाइट कहाँ से खरीदें?
17: सर, क्या आपको नहीं पता है नेप LED लाइटिंग कंपनी इंडस्ट्रियल लाइटिंग जैसे फ्लड लाइट, हाईवे लाइट, स्ट्रीट लाइट आदि के साथ साथ सभी प्रकार की LED लाइट बनाती है, वो भी 2 साल की वारंटी के साथ। और इतना ही नहीं, वो इंडस्ट्रियल लाइटिंग कंसल्टेंट सर्विस भी फ्री देते हैं।
16: अरे वाह, इनसे संपर्क कैसे करें?
17: सर, इनका सेल्स ऑफिस एड्रेस JFF 22 कैपिटल हाई स्ट्रीट, फूलबाग चौक, भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए नेप LED लाइटिंग कंपनी से संपर्क करें 7988627064।
18: आपके हर खास समारोह को शानदार और यादगार बनाने के लिए आइए भाटोटिया टेंट हाउस एंड इवेंट ऑर्गेनाइजर।
19: सभी प्रकार के टेंट आइटम, शानदार डेकोरेशन और इंडोर आउटडोर कैटरिंग की बेहतरीन सुविधा। शादी, सगाई, जन्मदिन या किसी भी समारोह के लिए एक ही जगह पर पूरी व्यवस्था।
18: संपर्क करें हंस राज भाटोटिया, मोबाइल नंबर 9416347214।
19: और आपके खास समारोह के लिए शानदार राजविलास मैरिज एवं बैंक्वेट हॉल, शिवनगर पार्ट 2, पांचाल कॉलोनी, सीथल रोड, धारूहेड़ा, जिला रेवाड़ी, हरियाणा।
18: भाटोटिया टेंट हाउस और राजविलास मैरिज बैंक्वेट हॉल, आपके समारोह की पूरी तैयारी एक ही जगह। जब बात आपकी मुस्कान की हो तो समझौता क्यों, अब स्पेशलिस्ट डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं। आइए डेंटल एक्सपर्ट्स भिवाड़ी, भिवाड़ी का इकलौता डेंटल क्लिनिक, जहां पूरी टीम MDS स्पेशलिस्ट्स की है और जिन्हें 15 साल से अधिक का अनुभव है। डॉक्टर विनोद यादव, MDS ऑर्थोडोंटिस्ट, भिवाड़ी के एकमात्र ब्रेसेस स्पेशलिस्ट एंड इनविसलाइन प्रोवाइडर। इसके अलावा डेंटल इम्प्लांट्स और जटिल दांतों की समस्याओं का आधुनिक उपचार प्रदान करते हैं। साथ ही डॉक्टर ऋतु यादव, MDS एंडोडोंटिस्ट, रूट कैनाल, स्माइल डिजाइनिंग और फुल माउथ रिहैबिलिटेशन की विशेषज्ञ। डेंटल एक्सपर्ट्स, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट आशियाना आंगन, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 8824232823। डेंटल एक्सपर्ट्स, आपकी मुस्कान हमारी विशेषज्ञता।
19: भिवाड़ी वासियों, अब हर जरूरत की सर्विस सिर्फ एक ऐप पर। मैसन केयर लेकर आया है आपके लिए भरोसेमंद होम और प्रोफेशनल सर्विसेज।
18: बाथरूम डीप क्लीनिंग, किचन डीप क्लीनिंग, पूरे घर की सफाई, ऑफिस क्लीनिंग, जिम क्लीनिंग, कार क्लीनिंग, पानी की टंकी की सफाई, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ड्राइवर सर्विस, कैब बुकिंग और बहुत सारी अन्य सेवाएं, अब सब कुछ एक ही ऐप पर।
19: अभी मैस एन केयर ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे अपनी पसंद की सर्विस बुक करें।
18: मैस एन केयर, आपका घर हमारी जिम्मेदारी। बुकिंग के लिए अभी कॉल या व्हाट्सएप करें 8824106060।
20: फ्यूचर लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहें। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
21: गणेश स्टेशनर्स।
0: बेटर देन द बेस्ट,
20: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा ए टू जेड सामान। इसी के साथ यहां प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
0: गणेश स्टेशनर्स, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड, नियर हरी राम हॉस्पिटल, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।
21: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
22: वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है 90.8 FM 24 पर, और शो चल रहा है आरजे सनी के साथ बॉलीवुड कैफे, आपका वही पुराना शो जिसमें हम बात करते हैं फिल्मी कलाकारों के बारे में। वैसे दोस्तों हम लोग आयुष्मान खुराना की बातें कर रहे थे और इनके फिल्मी करियर की तो हमने कुछ बातें आपसे की, इनकी फर्स्ट फिल्म यानी कि डेब्यू फिल्म के बारे में हमने आपको बताया, लेकिन अब चलिए हम चलते हैं जरा इनकी पर्सनल लाइफ की ओर यानी कि इनकी निजी जिंदगी की ओर। वैसे दोस्तों आयुष्मान रहने वाले तो चंडीगढ़ के थे, लेकिन इनका जन्म पंजाब के अमृतसर में हुआ था। और अगर बात करें इनकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई की, तो हाई स्कूल तक की पढ़ाई इन्होंने सेंट जॉन्स हाई स्कूल से की, और इसके बाद फिर वो डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ में अंग्रेजी साहित्य में पढ़ाई करने लग गए। और फिर दोस्तों पंजाब यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन स्टडीज से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में मास्टर डिग्री हासिल की। अब मास कम्युनिकेशन किया है तो फिर इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं इनकी एक और फील्ड डेवलप होती है, जी रेडियो जॉकी की। फिलहाल दोस्तों आपको बताएंगे कि रेडियो जॉकी कैसे बने और किस रेडियो चैनल के रेडियो जॉकी रहे और कितने दिन तक रहे, लेकिन अभी फिलहाल हम आपको इनके शुरुआती दिनों के बारे में बता रहे हैं। दोस्तों आयुष्मान जब स्कूल में थे तब वे स्कूल में होने वाले स्टेज शो में हिस्सा लिया करते थे और उसमें वो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते थे। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा, कई बार कह चुका हूं, बचपन से ही बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड थे, अभिनेता बनना चाहते थे, और इसकी उन्हें प्रेरणा अपनी दादी से मिली थी जो कि राज कपूर और दिलीप कुमार की मिमिक्री किया करती थी। जब आयुष्मान 5 साल के थे तब वे अपने माता पिता के साथ पहली बार थिएटर गए, जहां पर उन्होंने माधुरी दीक्षित की फिल्म तेजाब देखी। इस समय आयुष्मान ने अभिनेता बनने का निश्चय कर लिया था। इसके बाद आयुष्मान अपने अभिनय कौशल को बढ़ाने के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी के थिएटर में शामिल हो गए और फिर वे डीएवी कॉलेज के आगाज और साथ ही साथ मंच तंत्र के संस्थापक सदस्यों में एक बन गए। और जिसके बारे में शायद आपको पता हो, चंडीगढ़ में सक्रिय थिएटर समूह है। आयुष्मान ने कई नुक्कड़ नाटकों में भी हिस्सा लिया और अभिनय किया। खैर दोस्तों बात करेंगे इनके करियर की भी, लेकिन अभी एक बढ़िया सा गाना बनता है, इस गाने को सुनिए। वापस लौटते 90.8 FM 24 पर, आप कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिएगा 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: क्या कर रही है?
1: ऑनलाइन बुकिंग देख रही हूँ, जयपुर जाना है।
0: फिर से? अभी तो गई थी।
1: हाँ, फिर से जाना है।
0: तू अपनी गाड़ी क्यों नहीं ले लेती?
1: गाड़ी नॉट इन बजट।
0: अरे गांधी मोटर्स है ना?
1: गांधी मोटर्स?
0: हाँ गांधी मोटर्स। गांधी मोटर्स कार सेल और परचेज के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर हर तरह की गाड़ियाँ बहुत अच्छी कीमत पे मिलती हैं।
1: तो कब चले?
0: अरे इसमें सोचना कैसा, अभी चलना। गाड़ियों के सेल और परचेज के लिए आज ही संपर्क करें।
2: हमारा पता है शॉप नंबर S16 एवलॉन रॉयल प्लाजा अलवर बाईपास रोड भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9785980000 या फिर 8740000144 पर।
3: भिवाड़ी में 27 वर्षों से सेवारत, भरोसेमंद 24 घंटे इलाज हेतु गोपीनाथ अस्पताल, ISO तथा NABH मान्यता एवं राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मल्टी स्पेशलिटी सेंट्रल ACOPD, 50 बेड की सुविधा से युक्त गोपीनाथ हॉस्पिटल, अत्याधुनिक 3 ऑपरेशन थिएटर, 7 बेड ICU, 2 जीवन रक्षक एम्बुलेंस, डिजिटल एक्सरे, ऑर्थोपेडिक सर्जन, फिजिशियन तथा लेडी डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा से युक्त गोपीनाथ अस्पताल। यहाँ नेफ्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, डायबिटोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट की नियमित OPD भी उपलब्ध है। लगभग सभी TPA कैशलेस सुविधा के साथ तथा भिवाड़ी की व आसपास की औद्योगिक इकाइयों के बीमा कंपनियां भी पैनल पर हैं। पता 226 इंडस्ट्रियल एरिया सदर बाजार।

0: Reality Lens, Ray-Ban, Vogue, Tommy Hilfiger, O'Kelly, Prada, Jeez, Essilor Crizal, Vision RX और भी कई नेशनल व इंटरनेशनल ब्रांड्स.
1: साथ ही कॉन्टैक्ट लेंस, लो विजन क्लिनिक, मायोपिया क्लिनिक, विजन थेरेपी और आधुनिक मशीनों द्वारा कंप्यूटरीकृत आई एग्जामिनेशन. प्रशिक्षित ऑप्टोमेट्रिस्ट की पूरी टीम.
0: भिवाड़ी में सन 2006 से भरोसे का नाम गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स.
1: गणपति मॉल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास, समतल चौक, भिवाड़ी और अशियाना आंगन के सामने, BDI सोसाइटी के पास, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी.
2: अपॉइंटमेंट या जानकारी के लिए अभी कॉल करें 9636061776 या 9928929309.
3: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है. कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है, और इन्हीं श्रृंगार को सवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, एक से एक उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ. शॉप नंबर 12A, आशियाना आंगन प्लाजा, नियर मैकडॉनल्ड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी. कॉन्टैक्ट करें 01-49-34-93-222 या फिर 9034-96-97-31 पर. ऐसे डिजाइन्स जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्स ही आए.
2: मैं जयपुर जा रहा हूँ.
1: अच्छा, तो आते हुए जयपुर के मशहूर दूध लड्डू और प्याज कचौरी लेते आना.
2: अरे, दूध लड्डू और प्याज कचौरी के लिए जयपुर जाने का इंतजार क्यों करना, क्योंकि अब आपके शहर भिवाड़ी में अलवर बाईपास पर खुल चुका है कान्हा स्वीट्स.
1: जी हाँ, कान्हा स्वीट्स पर मिलते हैं स्वादिष्ट दूध लड्डू, प्याज कचौरी, समोसे किसी कलाकंद, रस मलाई, कुल्हड़ रबड़ी और सभी प्रकार की मिठाइयाँ.
2: बिल्कुल, हर मिठाई में स्वाद ऐसा कि एक बार खाएं तो दिल कहे एक और.
1: तो फिर आज मिठास हो जाए कान्हा स्वीट्स के साथ.
2: हाँ, परिवार हो या मेहमान, त्योहार हो या कोई खास खुशी, हर मौके की मिठास कान्हा स्वीट्स के साथ. पता नोट कर लीजिए,
1: शॉप नंबर AG F04, कैपिटल आर्केडिया, अलवर बाईपास इन फ्रंट ऑफ वेदांता फार्म, भिवाड़ी, राजस्थान.
4: मोहाली और गुड़गांव का डेंटल अनुभव अब भिवाड़ी में. आइए वी केयर डेंटल क्लिनिक इम्प्लांट सेंटर, जहां RCT, कैपिंग और डेंटल इम्प्लांट के एक्सपर्ट ट्रीटमेंट के साथ आपको मिलता है डॉक्टर रुकु सिंगला के 16 वर्षों के अनुभव और विशेषज्ञता का भरोसा. आर्मी और कॉर्पोरेट कर्मचारियों के लिए स्पेशल डिस्काउंट. पता: अपोजिट मैकडोनल्ड्स, JMK पेट क्लिनिक के पास, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी. कॉल करें 7814399374. वी केयर डेंटल, आपकी मुस्कान हमारा भरोसा.
1: क्या आपकी आँखों की रोशनी से जुड़ी कोई परेशानी है? क्या आप चश्मे से छुटकारा पाना चाहते हैं?
2: तो आइए आधुनिक सुविधाओं से युक्त मिश्री देवी आई हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी आई सेंटर.
1: पिछले 15 वर्षों से नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में भरोसेमंद सेवाएं, अब बहर रोड, नियम राणा और टपुकड़ा भिवाड़ी में.
2: यहाँ उपलब्ध हैं मोतियाबिंद, फेको, मल्टीफोकल एवं प्रीमियम लेंस, लेसिक लेजर, कॉर्निया, ग्लूकोमा और रेटिना उपचार एवं सर्जरी की आधुनिक सुविधाएं.
1: और अब दोनों आँखों का लेसिक लेजर उपचार आधुनिक तकनीक के साथ आपकी पहुंच में और उचित दरों पर.
2: बेहतर नेत्र उपचार, उचित खर्च और भरोसेमंद देखभाल के साथ चश्मे से आजादी की ओर बढ़ाइए अपना कदम. मिश्री देवी आई हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी आई सेंटर. संपर्क नंबर
1: 9783220043 या 01493294200. अब आपके शहर भिवाड़ी में साइकियाट्री एवं ऑर्थोपेडिक्स की नियमित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है ओजस हॉस्पिटल में.
2: मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितिका अग्रवाल द्वारा डिप्रेशन, नींद की समस्या, बेचैनी, घबराहट, मानसिक तनाव, स्किजोफ्रेनिया और OCD जैसी समस्याओं का उचित उपचार किया जाता है एवं काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध है.
1: वहीं हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेंद्र अग्रवाल द्वारा चोट, ट्रॉमा, फ्रैक्चर, घुटने एवं कमर का दर्द, लिगामेंट की चोट, गठिया और आर्थराइटिस जैसी हड्डी एवं जोड़ संबंधी समस्याओं का उपचार किया जाता है.
2: साथ ही सर्जरी, फिजियोथेरेपी और पेन मैनेजमेंट की सुविधा भी उपलब्ध है।
1: तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या को नजरअंदाज न करें, पहुँचिए ओजस हॉस्पिटल।

0: गया, नगीना गार्डन के पास, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी।
1: फोन करें 9521-333-591। ओजस हॉस्पिटल, बेहतर स्वास्थ्य की ओर एक कदम। अब आपके शहर धारूहेड़ा में ही मिल रही है आधुनिक और बेहतरीन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सुविधाएं। लोटस हॉस्पिटल, बेस्ट टैक्स सिटी, BPL फ्लैट के सामने धारूहेड़ा में डॉक्टर अन्विका बंसल, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, 15 वर्ष से अधिक अनुभव के साथ, जो पहले से ही भिवाड़ी में अपनी सेवाएं दे रही थी, अब अपने नए लोटस हॉस्पिटल में OPD और इमरजेंसी सर्विस के लिए उपलब्ध है। इसके साथ ही यहां उपलब्ध है अनुभवी हड्डी रोग विशेषज्ञ। यहां घुटना बदलना, कुल्हा बदलना और रीढ़ से जुड़ी सभी बीमारी का इलाज होता है, और एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट और लैप्रोस्कोपिक जनरल सर्जन, जहां लेजर टेक्निक से बवासीर, भगंदर का इलाज लोटस हॉस्पिटल में मिलता है, तथा 24 घंटे आपातकालीन सुविधा, एडवांस्ड एक्सरे, लैबोरेटरी, फार्मेसी, अल्ट्रासाउंड सर्विस, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, AC प्राइवेट रूम की सुविधाएं उपलब्ध हैं। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आज ही विजिट करें लोटस हॉस्पिटल, बेस्ट टैक्स सिटी, BPL फ्लैट के सामने धारूहेड़ा। संपर्क करें 01274-415-033।
2: भिवाड़ी का पहला ISO और NABH सर्टिफाइड श्री कृष्णा हॉस्पिटल, जिसमें मल्टी स्पेशलिस्ट OPD, 10 बेड का ICU, सबसे बड़ा मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 50 बेड का इंडोर, 24 आवर्स एम्बुलेंस, फार्मेसी और इमरजेंसी सेवाएं, तथा लैब, डिजिटल एक्सरे जैसी सुविधाओं से लैस श्री कृष्णा हॉस्पिटल अधिकांश मल्टीनेशनल कंपनियों के मेडिकल कंसल्टेंसी एवं कैशलेस उपचार का एकमात्र सेंटर। श्री कृष्णा हॉस्पिटल, B14849, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी, 8529113916-7340013916। इस हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट और फिजिशियन की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
3: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव, कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल, B160, भगत सिंह कॉलोनी, सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
4: डॉक्टर अंकित जैन, हड्डी रोग विशेषज्ञ, अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे, किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
3: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
1: आपके हर खास समारोह को शानदार और यादगार बनाने के लिए आइए भाटोटिया टेंट हाउस एंड इवेंट ऑर्गेनाइजर।
0: सभी प्रकार के टेंट आइटम, शानदार डेकोरेशन और इंडोर आउटडोर कैटरिंग की बेहतरीन सुविधा, शादी, सगाई, जन्मदिन या किसी भी समारोह के लिए एक ही जगह पर पूरी व्यवस्था।
1: संपर्क करें हंसराज भाटोटिया, मोबाइल नंबर 9416347214।
0: और आपके खास समारोह के लिए शानदार राज विलास मैरिज एवं बैंक्वेट हॉल, शिवनगर पार्ट 2, पांचाल कॉलोनी, सीथल रोड, धारूहेड़ा, जिला रेवाड़ी, हरियाणा।
1: बाटोटिया टेंट हाउस और राज विलास मैरिज बैंक्वेट हॉल, आपके समारोह की पूरी तैयारी एक ही जगह।
5: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
6: 90.8 FM 24 पर आप सुन रहे हैं बॉलीवुड कैफे RJ सनी के साथ। दोस्तों, जैसा कि अब आपको पता चल चुका है कि आयुष्मान को बचपन से ही अभिनेता बनने का शौक था, और इसकी प्रेरणा उन्हें अपनी दादी से मिली थी, जो कि मिमिक्री किया करती थी, और शायद इसीलिए अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने ऑडिशन देना शुरू कर दिया था। लेकिन टैलेंट के होने के बावजूद सभी ऑडिशंस में रिमार्क्स के साथ रिजेक्ट होते चले जाते थे। इसका कारण क्या था? दोस्तों, इसका कारण था उनकी मोटी आईब्रो और उनका पंजाबी लहजा। दोस्तों, आयुष्मान ने अपने करियर की शुरुआत करने से पहले एक RJ के रूप में काम भी किया था, जी, जिसका जिक्र मैंने आपसे पहले भी किया। तो चलिए अब आपको बता ही देते हैं कि किस रेडियो स्टेशन के RJ बने थे आयुष्मान खुराना। दोस्तों, इन्होंने अपनी पहली नौकरी रेडियो जॉकी के तौर पर Big FM दिल्ली में की थी। और अगर बात करें इनके करियर की, तो इन्होंने अपने करियर की शुरुआत MTV के मशहूर शो, जो उन दिनों काफी पॉपुलर था, Roadies 2, इस शो से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी, और जिसमें वो विजेता भी रहे थे। रेडियो के बाद वीडियो जॉकी भी बने थे आयुष्मान खुराना। उन्होंने बहुत सारे शो का संचालन किया, और इसके बाद का सफर तो आपको पता ही है दोस्तों। विक्की डोनर फिल्म से इन्होंने अपने करियर की एक लंबी छलांग लगाई। वैसे दोस्तों करियर के साथ साथ इनके पर्सनल रिलेशन के बारे में भी हम बात करने वाले, यानी कि इनकी फैमिली के बारे में। तो कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिएगा 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन। चलिए दोस्तों आपको आयुष्मान खुराना का एक और बढ़िया सा गाना सुनवाते चलते हैं, सड्डी गली। और दोस्तों ये गाना आयुष्मान खुराना की आवाज में नौटंकी साला फिल्म का है। इस गाने को सुनिए, इंजॉय कीजिए, वापस लौटते हैं कुछ ही देर में।
7: आज

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
1: विजय हॉस्पिटल डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
2: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए
1: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
3: जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी आँखों का NABH मान्यता प्राप्त सुपर स्पेशलिटी आँखों का हॉस्पिटल आपके शहर भिवाड़ी में। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी आपको प्रदान करता है विश्व स्तरीय आँखों की देखभाल।
4: हमारे सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल में आपको मिलेगी अनुभवी डॉक्टरों आई सर्जनों की विशेषज्ञ टीम, पूर्णतः मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर MICS टॉपिकल फैको तकनीक से कैटरेक्ट मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेजर से ऑपरेशन बिना इंजेक्शन और टांके,
3: रेटिना आंख का पर्दा, ग्लूकोमा, काला मोतियाबिंद का उन्नत इलाज, बच्चों की आंखों का इलाज, हमारे पास सभी इंश्योरेंस और TPA पैनल उपलब्ध हैं। निशुल्क कैशलेस इलाज का लाभ उठाएं।
4: आज ही हमें सेवा का मौका दें। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भगत सिंह कॉलोनी अलवर बाईपास हरीश बेकरी के पास भिवाड़ी।
3: संपर्क करें 7424830174। आज ही अपनी आँखों का इलाज कराएं और पाएं एक उज्जला भविष्य। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी।
5: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं कैशलेस सर्विस के लिए, कहाँ मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
6: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहाँ मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंट मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार एसी वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
5: एकता मोटर्स अलवर बाईपास रोड नियर बाय थड़ा मोड़ भिवाड़ी। फॉर इन्फॉर्मेशन कॉल 9799278900।
7: न्यू गर्ल्स सुपर स्टोर, जहां मिलते हैं ग्रोसरीज, ड्राई फ्रूट्स, कॉस्मेटिक्स आइटम और सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स। बजट की दुकान, MRP की छुट्टी, आपका फायदा हमारा वादा। अब वक्त है MRP को कहें बाय बाय। कॉन्टेक्ट करें 7413099952 पर अलवर बाईपास रोड नियर मार्बल मार्केट भिवाड़ी।
8: राहुल, इंडस्ट्री प्लान तो बढ़िया है पर इस बार अपनी फैक्ट्री के इलेक्ट्रिकल्स पर एक्स्ट्रा फोकस रखना।
9: डोंट वरी सर, इंडस्ट्री का सारा इलेक्ट्रिकल्स खंडेलवाल एजेंसी से आएगा। ये NCR का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस है, जहां हमें पैनल, स्विच गियर, मोटर ड्राइव, इंडस्ट्रियल लाइटनिंग और वायर एंड केबल में 30 से ज्यादा मल्टीनेशनल ब्रांड ऑप्शंस मिल जाएंगे।
10: खंडेलवाल एजेंसीज, NCR का लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस इन भिवाड़ी।
0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
11: आप सुन रहे हैं बॉलीवुड कैफे 90.8 FM 24 पर RJ सनी के साथ। दोस्तों, जैसा कि म्यूजिकल ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया था कि हम आपको आयुष्मान खुराना की पर्सनल लाइफ के बारे में बताएंगे। दोस्तों, अगर आयुष्मान खुराना की फैमिली के बारे में बात करें तो उनके पिता एक बहुत ही फेमस ज्योतिषी हैं और उन्होंने ज्योतिषी के विषय पर बहुत सारी प्रसिद्ध लेख भी लिखे हैं, जबकि माँ एक सिंपल गृहिणी हैं और हिंदी में उन्होंने MA किया है और इनके भाई अपार शक्ति दिल्ली में 104.8 FM में रेडियो जॉकी हैं, साथ ही वो एक TV स्टार, एंकर और एक्टर भी हैं। आयुष्मान की बचपन में एक बहुत ही अच्छी दोस्त भी थी जिसका नाम ताहिरा था। हालांकि ये रिश्ता बाद में जाकर के बदल गया। अब रिश्ता कैसे बदला ये तो आपको समझ में आ ही चुका होगा। जी, साल 2011 में आयुष्मान ने अपनी उस खास दोस्त से शादी कर ली और तब से दोनों हैप्पी और लविंग लाइफ बिता रहे हैं। दोस्तों, आयुष्मान के दो बच्चे भी हैं, एक लड़का विराजवीर जिसका जन्म 2 जनवरी साल 2012 में हुआ था और दूसरी लड़की जिसका नाम वरुष्का जिसका जन्म 21 अप्रैल साल 2014 में हुआ। चलिए दोस्तों, फिलहाल वक्त हो रहा है एक बढ़िया से गाने का, वापस लौटते हैं कुछ ही देर में। सुनते रहिएगा 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
12: एक्शन।

0: मैं जयपुर जा रहा हूँ।
1: अच्छा, तो आते हुए जयपुर के मशहूर दूध लड्डू और प्याज कचौरी लेते आना।
0: अरे, दूध लड्डू और प्याज कचौरी के लिए जयपुर जाने का इंतजार क्यों करना? क्योंकि अब आपके शहर भिवाड़ी में अलवर बाईपास पर खुल चुका है कान्हा स्वीट्स।
1: जी हाँ, कान्हा स्वीट्स पर मिलते हैं स्वादिष्ट दूध लड्डू, प्याज कचौरी, समोसे किसी कलाकंद, रस मलाई, कुल्हड़ रबड़ी और सभी प्रकार की मिठाइयाँ।
0: बिल्कुल, हर मिठाई में स्वाद ऐसा कि एक बार खाएं तो दिल कहे एक और।
1: तो फिर आज मिठास हो जाए कान्हा स्वीट्स के साथ।
0: हाँ, परिवार हो या मेहमान, त्योहार हो या कोई खास खुशी, हर मौके की मिठास कान्हा स्वीट्स के साथ। पता नोट कर लीजिए,
1: शॉप नंबर A GF04, कैपिटल आर्केडिया, अलवर बाईपास इन फ्रंट ऑफ वेदांता फार्म, भिवाड़ी, राजस्थान।
2: मोहाली और गुड़गांव का डेंटल अनुभव अब भिवाड़ी में। आइए वी केयर डेंटल क्लिनिक इम्प्लांट सेंटर, जहां RCT, कैपिंग और डेंटल इम्प्लांट के एक्सपर्ट ट्रीटमेंट के साथ आपको मिलता है डॉक्टर रुकु सिंगला के 16 वर्षों के अनुभव और विशेषज्ञता का भरोसा। आर्मी और कॉर्पोरेट कर्मचारियों के लिए स्पेशल डिस्काउंट। पता, अपोजिट मैकडोनल्ड्स, JMK पेट क्लिनिक के पास, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉल करें 7814399374। वी केयर डेंटल, आपकी मुस्कान हमारा भरोसा।
1: क्या आपकी आँखों की रोशनी से जुड़ी कोई परेशानी है? क्या आप चश्मे से छुटकारा पाना चाहते हैं?
0: तो आइए आधुनिक सुविधाओं से युक्त मिश्री देवी आई हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी आई सेंटर।
1: पिछले 15 वर्षों से नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में भरोसेमंद सेवाएं, अब बाहर रोड, नियम राणा और टपुकड़ा भिवाड़ी में।
0: यहाँ उपलब्ध हैं मोतियाबिंद, फेको, मल्टीफोकल एवं प्रीमियम लेंस, लेसिक लेजर, कॉर्निया, ग्लूकोमा और रेटिना उपचार एवं सर्जरी की आधुनिक सुविधाएं।
1: और अब दोनों आँखों का लेसिक लेजर उपचार आधुनिक तकनीक के साथ आपकी पहुंच में और उचित दरों पर।
0: बेहतर नेत्र उपचार, उचित खर्च और भरोसेमंद देखभाल के साथ चश्मे से आजादी की ओर बढ़ाइए अपना कदम। मिश्री देवी आई हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी आई सेंटर। संपर्क नंबर
1: 9783220043 या 01493294200। अब आपके शहर भिवाड़ी में साइकियाट्री एवं ऑर्थोपेडिक्स की नियमित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है ओजस हॉस्पिटल में।
0: मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितिका अग्रवाल द्वारा डिप्रेशन, नींद की समस्या, बेचैनी, घबराहट, मानसिक तनाव, स्किजोफ्रेनिया और OCD जैसी समस्याओं का उचित उपचार किया जाता है एवं काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध है।
1: वहीं हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेंद्र अग्रवाल द्वारा चोट, ट्रॉमा, फ्रैक्चर, घुटने एवं कमर का दर्द, लिगामेंट की चोट, गठिया और आर्थराइटिस जैसी हड्डी एवं जोड़ संबंधी समस्याओं का उपचार किया जाता है।
0: साथ ही सर्जरी, फिजियोथेरेपी और पेन मैनेजमेंट की सुविधा भी उपलब्ध है।
1: तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या को नजरअंदाज न करें, पहुंचिए ओजस हॉस्पिटल।
0: पता, नगीना गार्डन के पास, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी।
1: फोन करें 9521333591। ओजस हॉस्पिटल, बेहतर स्वास्थ्य की ओर एक कदम। अब आपके शहर धारूहेड़ा में ही मिल रही है आधुनिक और बेहतरीन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सुविधाएं। लोटस हॉस्पिटल, बेस्ट टैक्स सिटी, BPL फ्लैट के सामने धारूहेड़ा में डॉक्टर अन्विका बंसल, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, 15 वर्ष से अधिक अनुभव के साथ, जो पहले से ही भिवाड़ी में अपनी सेवाएं दे रही थी, अब अपने नए लोटस हॉस्पिटल में OPD और इमरजेंसी सर्विस के लिए उपलब्ध हैं। इसके साथ ही यहां उपलब्ध है अनुभवी हड्डी रोग विशेषज्ञ। यहां घुटना बदलना, कुल्हा बदलना और रीढ़ से जुड़ी सभी बीमारी का इलाज होता है, और एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट और लैप्रोस्कोपिक जनरल सर्जन, जहां लेजर टेक्निक से बवासीर, भगंदर का इलाज लोटस हॉस्पिटल में मिलता है, तथा 24 घंटे आपातकालीन सुविधा, एडवांस्ड एक्सरे, लैबोरेटरी, फार्मेसी, अल्ट्रासाउंड सर्विस, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, AC प्राइवेट रूम की सुविधाएं उपलब्ध हैं। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आज ही विजिट करें लोटस हॉस्पिटल, बेस्ट सिटी, BPL फ्लैट के सामने धारूहेड़ा। संपर्क करें 01274415033।
3: भिवाड़ी का पहला ISO और NABH सर्टिफाइड श्री कृष्णा हॉस्पिटल, जिसमें मल्टी स्पेशलिस्ट OPD, 10 बेड का ICU, सबसे बड़ा मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 50 बेड का इंडोर, 24 आवर्स एम्बुलेंस, फार्मेसी और इमरजेंसी सेवाएं तथा लैब, डिजिटल एक्सरे जैसी सुविधाओं से लैस श्री कृष्णा हॉस्पिटल अधिकांश मल्टीनेशनल कंपनियों के मेडिकल कंसल्टेंसी एवं कैशलेस उपचार का एकमात्र सेंटर। श्री कृष्णा हॉस्पिटल, B14849 भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी, 8529113916, 7340013916। इस हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट और फिजिशियन की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
4: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
5: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे, किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
4: कान नाक गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
6: आपके हर खास समारोह को शानदार और यादगार बनाने के लिए आइए भाटोटिया टेंट हाउस एंड इवेंट ऑर्गेनाइजर।
7: सभी प्रकार के टेंट आइटम, शानदार डेकोरेशन और इंडोर आउटडोर कैटरिंग की बेहतरीन सुविधा, शादी, सगाई, जन्मदिन या किसी भी समारोह के लिए एक ही जगह पर पूरी व्यवस्था।
6: संपर्क करें हंसराज भाटोटिया, मोबाइल नंबर 9416347214।
7: और आपके खास समारोह के लिए शानदार राजविलास मैरिज एवं बैंक्वेट हॉल, शिवनगर पार्ट 2, पांचाल कॉलोनी, सीथल रोड, धारूहेड़ा, जिला रेवाड़ी, हरियाणा।
6: बाटोटिया टेंट हाउस और राजविलास मैरिज बैंक्वेट हॉल, आपके समारोह की पूरी तैयारी एक ही जगह। अरे यार, आज शाम पार्टी करें?
8: नहीं यार, आज डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाना था।
6: गुरुग्राम? इतनी दूर?
8: हाँ यार, वहीं तो बेस्ट हाइजीन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और पेनलेस ट्रीटमेंट मिलता है।
6: ये बात पहले सही थी पर अब नहीं।
8: मतलब?
6: गुरुग्राम के ही एक्सपीरियंस्ड डेंटल एक्सपर्ट डॉक्टर जितिन टक्कर पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ मिलता है प्रीमियम सेटअप, एडवांस टेक्नोलॉजी, कंप्लीट हाइजीन और 100% पेनलेस डेंटल ट्रीटमेंट। और सबसे अच्छी बात, चार्जेस दिल्ली और गुरुग्राम से काफी कम,
8: तो फिर दूर जाने का टेंशन खत्म।
6: बिल्कुल, अब एक्सपीरियंस, भरोसा और क्वालिटी सब कुछ घर के पास भिवाड़ी में। आइए 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, ए ब्लॉक, A140, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। आज ही संपर्क करें डॉक्टर जितिन टक्कर 9871122135। 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, बेहतर चॉइसेस, बेहतर मुस्कान। अजी सुनते हो, मेरा फोन टूट गया है।
8: अरे भाग्यवान, सुनो, घबराओ नहीं, खंडेलवाल मोबाइल भिवाड़ी लाया है 0% डाउन पेमेंट पर। मोबाइल फोन 9784960000। और सुनो, ओप्पो ने लॉन्च किया है अभी रेनो 15 सी कम दामों में, बजाज फाइनेंस के साथ 0% ब्याज, 10% कैश बैक के साथ, प्लस ट्रॉली बैग, 0 डाउन पेमेंट। और बैटरी से हो परेशान तो रियलमी ने लॉन्च किया है अपना एक नया मॉडल 10,000 mAh बैटरी के साथ। अभी जाइए खंडेलवाल मोबाइल पर ढेर सारे गिफ्ट के साथ, नीलम चौक। चिंता क्यों करते हो, बजाज फाइनेंस है ना अपने साथ। 9784960000 और 9828288666।
9: राहुल यार, मैंने नोएडा से जॉब स्विच कर दिया है, अब सोच रही हूँ भिवाड़ी में रेंटल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा।
10: चिंता की कोई बात नहीं, मेगा एयर कंडीशनर्स एंड इलेक्ट्रिक सर्विस है ना, ये पूरे दिल्ली NCR में अपनी रेंटल सर्विस दे रहे हैं। और इनके यहाँ टावर AC, विंडो AC, स्प्लिट AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड LED TV सभी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं।
9: लेकिन इनकी सर्विस भिवाड़ी में तो बहुत महंगी होगी ना?
10: बिल्कुल भी नहीं, आपको ये सर्विस सेम रेट पर मिलने वाली है। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9899247102 पर या फिर विजिट करें www.maces.in पर।
11: ये क्या, अभी भी डीजल कार चला रहे हो? अब समय है स्मार्ट फ्यूल पर स्विच करने का, वो भी ज्यादा बचत के साथ।
12: पेश है विक्टोरिस SCNG। ये स्मार्ट है क्योंकि ये देता है 27.02 किलोमीटर पर KG का शानदार माइलेज, और इसका अंडरबॉडी CNG टैंक बूट स्पेस पर कोई समझौता नहीं करता। ज्यादा बचत भी, क्योंकि अपनी पुरानी डीजल कार के एक्सचेंज पर पाएं 50,000 रुपए तक का फायदा। तो देर किस बात की, आज ही बुक करें, अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम पर जाएं। नियम व शर्तें लागू।
13: विजिट फॉर्च्यून कार्स भिवाड़ी।
14: मॉडर्न अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर भिवाड़ी पर अनुभवी रेडियोलॉजिस्ट व पैथोलॉजिस्ट द्वारा अत्याधुनिक मशीनों से MRI, 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 4D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इको कार्डियोग्राफी, डिजिटल एक्सरे, IVP, बैरियम, HSG, डिजिटल OPG, DMT, ECG, EEG, BFT, मैमोग्राफी व फुली एडवांस्ड कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब की सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध है।
15: नियर सरकारी हॉस्पिटल 135 भिवाड़ी, दूसरी ब्रांच, मॉडर्न डायग्नोस्टिक एवं इमेजिंग सेंटर नियर नगर पालिका ऑफिस, अपोजिट अम्बेडकर पार्क, धारूहेड़ा। कॉल करें टोल फ्री नंबर 1-800-123-4494 या 9983-04010 पर।
16: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
17: 90.8 FM 24 पर आप सुन रहे हैं बॉलीवुड कैफे RJ सनी के साथ। दोस्तों, वैसे तो समय हो रहा है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन चलिए चलते चलते कुछ एकाध और बातें कर लेते आयुष्मान खुराना के बारे में। लेकिन जो बातें मैं करने जा रहा हूँ, शायद उससे आपको थोड़ा सा जेलसी फील हो। जी दोस्तों, आयुष्मान खुराना का जब भी जिक्र होगा, एक्टर, गायक, एंकर और साथ ही लेखक के रूप में भी इनकी गिनती गिनी जाएगी। अब लेखक के रूप में ये थोड़ी सी नई बात है, और ये नई बात यूं है कि साल 2015 में आयुष्मान ने अपनी बॉलीवुड करियर के बारे में बताते हुए एक किताब लिखी थी। जी, और ये किताब एक आत्मकथा थी आयुष्मान खुराना के द्वारा लिखी गई, जिसका नाम था क्रैकिंग द कोड, माय जर्नी टू बॉलीवुड, जो उनके संघर्षों से सफलता तक के रास्ते में सारा मंजर बताती है। तो ये तो खैर लड़के ने कुछ ज्यादा ही दिमाग लगा लिया, एक आध कैटेगरी बच रही थी उसमें भी इन्होंने अपना नाम दाखिल करवा दिया। चलिए दोस्तों, इतनी तारीफें हम किए जा रहे हैं तो चलिए एक नजर अवार्ड्स पर भी डाल लेते हैं, भाई कौन कौन से अवार्ड्स इन्होंने जीते। एक सेलिब्रिटी बनने से पहले आयुष्मान ने अपने कॉलेज के समय में कई अवार्ड्स जीते थे। उस समय वे नुक्कड़ नाटकों में अभिनय किया करते थे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, और जिसके चलते उन्हें नेशनल कॉलेज फेस्टिवल जैसे मूल इंडिगो, IIT बॉम्बे और सेंट बेट्स शिमला में पुरस्कार जीते थे। इसके अलावा आयुष्मान ने धर्मवीर भारती अंधा युग में अश्वत्थामा की भूमिका निभाने के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार भी जीता था। इसके बाद सेलिब्रिटी के रूप में इन्हें बहुत सारे पुरस्कार दिए गए। साल 2007 में भारत निर्मन अवार्ड्स यंग अचीवर्स में इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड स्टार डेब्यू ऑफ द ईयर कैटेगरी में, और साथ ही टाइम्स ऑफ इंडिया फिल्म अवार्ड सर्वश्रेष्ठ डेब्यू कैटेगरी में, और साथ ही दोस्तों रेनॉल्ड स्टार गिल्ड अवार्ड सर्वश्रेष्ठ प्लेबैक सिंगर कैटेगरी में। तो दोस्तों, ये थे कुछ अवार्ड्स। वैसे दोस्तों अवार्ड्स की लिस्ट बहुत लंबी है और समय थोड़ा सा कम, तो फिलहाल दोस्तों अभी तो हमें आपसे इजाजत लेनी पड़ेगी। वैसे बताना तो बहुत कुछ चाहते थे आपको आयुष्मान खुराना के बारे में, लेकिन अभी हमें लेना होगा आपसे इजाजत। और आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए, आपके लिए छोड़े जाते हैं एक बढ़िया सा गाना। सुनते रहिए 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
1: अब भिवाड़ी के सबसे बड़े NABH सर्टिफाइड SS हॉस्पिटल में स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे पाएं। यहां पाएं स्किन स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, नेफ्रोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी, ब्लड बैंक, एल और डायलिसिस, सभी बड़े TPA, कैशलेस, RGHS, ECHS, ESIC, चिरंजीवी योजना की कैशलेस सुविधा, यहां 24 घंटे की इमरजेंसी सेवा और एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें OCF2 ऑपोजिट मॉडर्न पब्लिक स्कूल, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट 7230011191 और 9785013999।
2: टाटा की गाड़ी तो ले ली है, अब भिवाड़ी में सर्विस सेंटर ढूंढते रहो।
3: अरे ढूंढना क्यों है, टाटा ऑथराइज्ड AK ऑटोमोबाइल है ना, जो संजय मोटर्स की ही यूनिट है। 2017 से भिवाड़ी का भरोसा है, टाटा के सर्टिफाइड मैकेनिक्स हैं और वहाँ सर्विसिंग बहुत ही शॉर्ट टाइम में हो जाती है।
2: अच्छा, और उसमें क्या खर्चे ही खर्चे?
3: अरे नहीं नहीं, AK ऑटोमोबाइल्स पर कार सर्विसिंग, बॉडी शॉप और व्हील अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग के अलावा कैशलेस इंश्योरेंस और रिन्यूअल, AMC, ऑन रोड मेंटेनेंस और एक्सीडेंट वारंटी जैसी सारी फैसिलिटीज हैं, जो खर्चे बहुत ही कम कर देती हैं। मेन रोड पर फूलबाग थाने के पास ही है ये।
2: अरे वाह, तो वेट क्यों करना, 9462369786 पे कॉल करके अभी AK ऑटोमोबाइल पे सर्विस बुक करो जल्दी।
4: सोनम, ये लो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट।
5: अरे इसमें क्या है?
4: वही जो तुम्हें बहुत टाइम से चाहिए था।
5: ये ब्रेसलेट तो मुझे बहुत टाइम से चाहिए था।
4: क्या आप इसे दिल्ली से लाए हो?
5: लेकिन आप दिल्ली कब गए?
4: अरे वो है ना, भिवाड़ी में अपने शांति ज्वेलर्स, इनके पास है सोने चांदी हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन और यहाँ मिलती है हॉलमार्क ज्वेलरी।
5: इनका एड्रेस क्या है?
4: इनका एड्रेस है शॉप नंबर 5, गणपति मॉल, भिवाड़ी। और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9812210987 पर।
6: एक बेहतर कल के लिए, बेहतर मजबूती के लिए, बेहतर बचत के लिए यूज करें SBF रैपिड 550D TMT। मजबूत निर्माण सदा के लिए।
7: मुझे अपने बच्चों के लिए चाहिए एक ऐसा स्कूल जो ICSE से अफिलेटेड हो।
8: भिवाड़ी में है एक मात्र ऐसा स्कूल SPS ग्लोबल स्कूल, जिसके बच्चों ने ICSE 10th की बोर्ड परीक्षाओं में 100% रिजल्ट के साथ साथ राज्य स्तर पर कराटे, स्केटिंग आदि प्रतियोगिताओं में भी अपने स्कूल का नाम रोशन किया है। यहाँ शिक्षा से बच्चों का बौद्धिक विकास और खेलकूद से शारीरिक विकास, डिसिप्लिन और समय समय पर सामाजिक व सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं होती रहती हैं, जो बच्चों के सर्वांगीण विकास में मदद करता है। यहाँ है बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, खेल का मैदान, ऐसी क्लासरूम, डिजिटल क्लासरूम, आधुनिक सुविधाओं से लैस लैब, बेस्ट टीचर की फैसिलिटी।
7: SPS ग्लोबल स्कूल नियर कैपिटल मॉल, भिवाड़ी। आज ही विजिट करें या कॉल करें 9950888330।
9: मैं जयपुर जा रहा हूँ।
10: अच्छा, तो आते हुए जयपुर के मशहूर दूध लड्डू और प्याज कचौरी लेते आना।
9: अरे दूध लड्डू और प्याज कचौरी के लिए जयपुर जाने का इंतजार क्यों करना, क्योंकि अब आपके शहर भिवाड़ी में अलवर बाईपास पर खुल चुका है कान्हा स्वीट्स।
10: जी हाँ, कान्हा स्वीट्स पर मिलते हैं स्वादिष्ट दूध लड्डू, प्याज कचौरी, समोसे, किसी कलाकंद, रसमलाई, कुल्हड़, रबड़ी और सभी प्रकार की मिठाइयाँ।
9: बिल्कुल, हर मिठाई में स्वाद ऐसा कि एक बार खाएं तो दिल कहे एक और।
10: तो फिर आज मिठास हो जाए कान्हा स्वीट्स के साथ।
9: हाँ, परिवार हो या मेहमान, त्योहार हो या कोई खास खुशी, हर मौके की मिठास कान्हा स्वीट्स के साथ। पता नोट कर लीजिए,
10: शॉप नंबर AG F04, कैपिटल आर्केडिया, अलवर बाईपास इन फ्रंट ऑफ वेदांता फार्म, भिवाड़ी, राजस्थान।
11: मोहाली और गुड़गांव का डेंटल अनुभव अब भिवाड़ी में। आइए वी केयर डेंटल क्लिनिक इम्प्लांट सेंटर, जहां RCT, कैपिंग और डेंटल इम्प्लांट के एक्सपर्ट ट्रीटमेंट के साथ आपको मिलता है डॉक्टर रुकु सिंगला के 16 वर्षों के अनुभव और विशेषज्ञता का भरोसा। आर्मी और कॉर्पोरेट कर्मचारियों के लिए स्पेशल डिस्काउंट। पता, अपोजिट मैकडोनल्ड्स, JMK पेट क्लिनिक के पास, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉल करें 7814399374। वी केयर डेंटल, आपकी मुस्कान हमारा भरोसा।
10: क्या आपकी आँखों की रोशनी से जुड़ी कोई परेशानी है? क्या आप चश्मे से छुटकारा पाना चाहते हैं?
9: तो आइए आधुनिक सुविधाओं से युक्त मिश्री देवी आई हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी आई सेंटर।
10: पिछले 15 वर्षों से नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में भरोसेमंद सेवाएं, अब बहर रोड, नियम राणा और टपूकड़ा भिवाड़ी में।
9: यहाँ उपलब्ध हैं मोतियाबिंद, फेको, मल्टीफोकल एवं प्रीमियम लेंस, लेसिक लेजर, कॉर्निया, ग्लूकोमा और रेटिना उपचार एवं सर्जरी की आधुनिक सुविधाएं।
10: और अब दोनों आँखों का लेसिक लेजर उपचार आधुनिक तकनीक के साथ आपकी पहुँच में और उचित दरों पर।
9: बेहतर नेत्र उपचार, उचित खर्च और भरोसेमंद देखभाल के साथ चश्मे से आजादी की ओर बढ़ाइए अपना कदम। मिश्री देवी आई हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी आई सेंटर। संपर्क नंबर
10: 9783220043 या 01493294200। अब आपके शहर भिवाड़ी में साइकियाट्री एवं ऑर्थोपेडिक्स की नियमित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है ओजस हॉस्पिटल में।
9: मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितिका अग्रवाल द्वारा डिप्रेशन, नींद की समस्या, बेचैनी, घबराहट, मानसिक तनाव, स्किजोफ्रेनिया और ओसीडी जैसी समस्याओं का उचित उपचार किया जाता है एवं काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध है।
10: वहीं हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेंद्र अग्रवाल द्वारा चोट, ट्रॉमा, फ्रैक्चर, घुटने एवं कमर का दर्द, लिगामेंट की चोट, गठिया और आर्थराइटिस जैसी हड्डी एवं जोड़ संबंधी समस्याओं का उपचार किया जाता है।
9: साथ ही सर्जरी, फिजियोथेरेपी और पेन मैनेजमेंट की सुविधा भी उपलब्ध है।
10: तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या को नजरअंदाज न करें, पहुंचिए ओजस हॉस्पिटल,
9: पता नगीना गार्डन के पास, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी।
10: फोन करें 9521333591। ओजस हॉस्पिटल, बेहतर स्वास्थ्य की ओर एक कदम। अब आपके शहर धारूहेड़ा में ही मिल रही है आधुनिक और बेहतरीन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सुविधाएं। लोटस हॉस्पिटल, बेस्ट टैग सिटी, बीपीएल फ्लैट के सामने धारूहेड़ा में डॉक्टर अन्विका बंसल, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, 15 वर्ष से अधिक अनुभव के साथ, जो पहले से ही भिवाड़ी में अपनी सेवाएं दे रही थी, अब अपने नए लोटस हॉस्पिटल में ओपीडी और इमरजेंसी सर्विस के लिए उपलब्ध हैं। इसके साथ ही यहां उपलब्ध है अनुभवी हड्डी रोग विशेषज्ञ। यहां घुटना बदलना, कुल्हा बदलना और रीढ़ से जुड़ी सभी बीमारी का इलाज होता है और एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट और लैप्रोस्कोपिक जनरल सर्जन, जहां लेजर टेक्निक से बवासीर, भगंदर का इलाज लोटस हॉस्पिटल में मिलता है, तथा 24 घंटे आपातकालीन सुविधा, एडवांस्ड एक्सरे, लैबोरेटरी, फार्मेसी, अल्ट्रासाउंड सर्विस, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, एसी प्राइवेट रूम की सुविधाएं उपलब्ध हैं। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आज ही विजिट करें लोटस हॉस्पिटल, बेस्ट टैग सिटी, बीपीएल फ्लैट के सामने धारूहेड़ा। संपर्क करें 01274415033।
12: भिवाड़ी का पहला ISO और NABH सर्टिफाइड श्री कृष्णा हॉस्पिटल, जिसमें मल्टी स्पेशलिस्ट ओपीडी, 10 बेड का ICU, सबसे बड़ा मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 50 बेड का इंडोर, 24 आवर्स एम्बुलेंस, फार्मेसी और इमरजेंसी सेवाएं, तथा लैब, डिजिटल एक्सरे जैसी सुविधाओं से लैस श्री कृष्णा हॉस्पिटल अधिकांश मल्टीनेशनल कंपनियों के मेडिकल कंसल्टेंसी एवं कैशलेस उपचार का एकमात्र सेंटर। श्री कृष्णा हॉस्पिटल, B14849, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी, 8529113916 7340001391 6। इस हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट और फिजिशियन की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
13: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव, कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल, B160, भगत सिंह कॉलोनी, सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
14: डॉक्टर अंकित जैन, हड्डी रोग विशेषज्ञ, अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे, किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
13: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
10: आपके हर खास समारोह को शानदार और यादगार बनाने के लिए आइए भाटोटिया टेंट हाउस एंड इवेंट ऑर्गेनाइजर।
9: सभी प्रकार के टेंट आइटम, शानदार डेकोरेशन और इंडोर आउटडोर कैटरिंग की बेहतरीन सुविधा, शादी, सगाई, जन्मदिन या किसी भी समारोह के लिए एक ही जगह पर पूरी व्यवस्था।
10: संपर्क करें हंसराज भाटोटिया, मोबाइल नंबर 9416347214।
9: और आपके खास समारोह के लिए शानदार राजविलास मैरिज एवं बैंक्वेट हॉल, शिवनगर पार्ट 2, पांचाल कॉलोनी, सीथल रोड, धारूहेड़ा, जिला रेवाड़ी, हरियाणा।
10: बाटोटिया टेंट हाउस और राजविलास मैरिज बैंक्वेट हॉल, आपके समारोह की पूरी तैयारी एक ही जगह।
15: 9978322043 या 01493294200। अब आपके शहर भिवाड़ी में साइकियाट्री एवं ऑर्थोपेडिक्स की नियमित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है ओजस हॉस्पिटल में।
9: मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितिका अग्रवाल द्वारा डिप्रेशन, नींद की समस्या, बेचैनी, घबराहट, मानसिक तनाव, स्किजोफ्रेनिया और ओसीडी जैसी समस्याओं का उचित उपचार किया जाता है एवं काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध है।
15: वहीं हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेंद्र अग्रवाल द्वारा चोट, ट्रॉमा, फ्रैक्चर, घुटने एवं कमर का दर्द, लिगामेंट की चोट, गठिया और आर्थराइटिस जैसी हड्डी एवं जोड़ संबंधी समस्याओं का उपचार किया जाता है।
9: साथ ही सर्जरी, फिजियोथेरेपी और पेन मैनेजमेंट की सुविधा भी उपलब्ध है।
15: तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या को नजरअंदाज न करें, पहुंचिए ओजस हॉस्पिटल,
9: पता नगीना गार्डन के पास, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी।
15: फोन करें 9521333591। ओजस हॉस्पिटल, बेहतर स्वास्थ्य की ओर एक कदम। अब आपके शहर धारूहेड़ा में ही मिल रही है आधुनिक और बेहतरीन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सुविधाएं। लोटस हॉस्पिटल, बेस्ट टैक्स सिटी, BPL फ्लैट के सामने धारूहेड़ा में डॉक्टर अन्विका बंसल, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, 15 वर्ष से अधिक अनुभव के साथ, जो पहले से ही भिवाड़ी में अपनी सेवाएं दे रही थी, अब अपने नए लोटस हॉस्पिटल में OPD और इमरजेंसी सर्विस के लिए उपलब्ध है। इसके साथ ही यहां उपलब्ध है अनुभवी हड्डी रोग विशेषज्ञ। यहां घुटना बदलना, कुल्हा बदलना और रीढ़ से जुड़ी सभी बीमारी का इलाज होता है और एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट और लैप्रोस्कोपिक जनरल सर्जन, जहां लेजर टेक्निक से बवासीर, भगंदर का इलाज लोटस हॉस्पिटल में मिलता है, तथा 24 घंटे आपातकालीन सुविधा, एडवांस्ड एक्सरे, लैबोरेटरी, फार्मेसी, अल्ट्रासाउंड सर्विस, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, AC प्राइवेट रूम की सुविधाएं उपलब्ध हैं। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आज ही विजिट करें लोटस हॉस्पिटल, बेस्ट टैक्स सिटी, BPL फ्लैट के सामने धारूहेड़ा। संपर्क करें 01274415033।
12: भिवाड़ी का पहला ISO और NABH सर्टिफाइड श्री कृष्णा हॉस्पिटल, जिसमें मल्टी स्पेशलिस्ट OPD, 10 बेड का ICU, सबसे बड़ा मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 50 बेड का इंडोर, 24 आवर्स एम्बुलेंस, फार्मेसी और इमरजेंसी सेवाएं, तथा लैब, डिजिटल एक्सरे जैसी सुविधाओं से लैस श्री कृष्णा हॉस्पिटल अधिकांश मल्टीनेशनल कंपनियों के मेडिकल कंसल्टेंसी एवं कैशलेस उपचार का एकमात्र सेंटर। श्री कृष्णा हॉस्पिटल, B14849 भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी, 8529113916, 7340013916। इस हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट और फिजिशियन की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
13: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
14: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे, किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
13: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
15: आपके हर खास समारोह को शानदार और यादगार बनाने के लिए आइए भाटोटिया टेंट हाउस एंड इवेंट ऑर्गेनाइजर।
9: सभी प्रकार के टेंट आइटम, शानदार डेकोरेशन और इंडोर आउटडोर कैटरिंग की बेहतरीन सुविधा, शादी, सगाई, जन्मदिन या किसी भी समारोह के लिए एक ही जगह पर पूरी व्यवस्था।
15: संपर्क करें हंसराज भाटोटिया, मोबाइल नंबर 9416347214।
9: और आपके खास समारोह के लिए शानदार राजविलास मैरिज एवं बैंक्वेट हॉल, शिवनगर पार्ट 2, पांचाल कॉलोनी, सीथल रोड, धारूहेड़ा, जिला रेवाड़ी, हरियाणा।
15: बाटोटिया टेंट हाउस और राजविलास मैरिज बैंक्वेट हॉल, आपके समारोह की पूरी तैयारी एक ही जगह।
13: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
14: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे, किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
13: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
15: जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी आँखों का NABH मान्यता प्राप्त सुपर स्पेशलिटी आँखों का हॉस्पिटल आपके शहर भिवाड़ी में। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी आपको प्रदान करता है विश्व स्तरीय आँखों की देखभाल।
9: हमारे सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल में आपको मिलेगी अनुभवी डॉक्टरों आई सर्जनों की विशेषज्ञ टीम, पूर्णतः मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर MICS टॉपिकल फैको तकनीक से कैटरेक्ट मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेजर से ऑपरेशन बिना इंजेक्शन और टांके,
15: रेटिना आंख का पर्दा, ग्लूकोमा, काला मोतियाबिंद का उन्नत इलाज, बच्चों की आंखों का इलाज, हमारे पास सभी इंश्योरेंस और TPA पैनल उपलब्ध हैं। निशुल्क कैशलेस इलाज का लाभ उठाएं।
9: आज ही हमें सेवा का मौका दें। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भगत सिंह कॉलोनी अलवर बाईपास हरीश बेकरी के पास भिवाड़ी।
15: संपर्क करें 7424830174। आज ही अपनी आँखों का इलाज कराएं और पाएं एक उज्जला भविष्य। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी।
16: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं कैशलेस सर्विस के लिए, कहां मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
17: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहां मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंड मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार एसी वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
16: एकता मोटर्स अलवर बाईपास रोड नियर बाय थड़ा मोड़ भिवाड़ी। फॉर इन्फॉर्मेशन कॉल 9799278900।
18: न्यू गर्ल्स सुपर स्टोर, जहाँ मिलते हैं ग्रोसरीज, ड्राई फ्रूट्स, कॉस्मेटिक्स आइटम और सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स। बजट की दुकान, MRP की छुट्टी, आपका फायदा हमारा वादा। अब वक्त है MRP को कहें बाय बाय। कॉन्टेक्ट करें 7413099952 पर अलवर बाईपास रोड नियर मार्बल मार्केट भिवाड़ी।
19: राहुल, इंडस्ट्री प्लान तो बढ़िया है पर इस बार अपनी फैक्ट्री के इलेक्ट्रिकल्स पर एक्स्ट्रा फोकस रखना।
20: डोंट वरी सर, इंडस्ट्री का सारा इलेक्ट्रिकल्स खंडेलवाल एजेंसी से आएगा। ये NCR का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस है, जहां हमें पैनल, स्विच गियर, मोटर ड्राइव, इंडस्ट्रियल लाइटनिंग और वायर एंड केबल में 30 से ज्यादा मल्टीनेशनल ब्रांड ऑप्शंस मिल जाएंगे।
21: खंडेलवाल एजेंसीज, NCR का लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस इन भिवाड़ी।
0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: अरे यार, आज शाम पार्टी करें?
1: नहीं यार, आज डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाना था।
0: गुरुग्राम? इतनी दूर?
1: हाँ यार, वहीं तो बेस्ट हाइजीन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और पेनलेस ट्रीटमेंट मिलता है।
0: ये बात पहले सही थी, पर अब नहीं।
1: मतलब?
0: गुरुग्राम के ही एक्सपीरियंस्ड डेंटल एक्सपर्ट डॉक्टर जितिन टक्कर पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ मिलता है प्रीमियम सेटअप, एडवांस टेक्नोलॉजी, कंप्लीट हाइजीन और 100% पेनलेस डेंटल ट्रीटमेंट। और सबसे अच्छी बात, चार्जेस दिल्ली और गुरुग्राम से काफी कम।
1: तो फिर दूर जाने का टेंशन खत्म।
0: बिल्कुल, अब एक्सपीरियंस, भरोसा और क्वालिटी, सब कुछ घर के पास, भिवाड़ी में। आइए 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, ए ब्लॉक, A140, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। आज ही संपर्क करें डॉक्टर जितिन टक्कर, 9871122135। 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, बेहतर चॉइसेस, बेहतर मुस्कान। अजी, सुनते हो, मेरा फोन टूट गया है।
1: अरे भाग्यवान, सुनो, घबराओ नहीं, खंडेलवाल मोबाइल भिवाड़ी लाया है 0% डाउन पेमेंट पर। मोबाइल फोन 9784960000। और सुनो, ओप्पो ने लॉन्च किया है अभी रेनो 15 सी कम दामों में, बजाज फाइनेंस के साथ 0% ब्याज, 10% कैश बैक के साथ, प्लस ट्रॉली बैग, 0 डाउन पेमेंट। और बैटरी से हो परेशान तो रियलमी ने लॉन्च किया है अपना एक नया मॉडल 10,000 mAh बैटरी के साथ। अभी जाइए खंडेलवाल मोबाइल पर ढेर सारे गिफ्ट के साथ, नीलम चौक। चिंता क्यों करते हो, बजाज फाइनेंस है ना अपने साथ। 9784960000 और 9828288666।
2: राहुल यार, मैंने नोएडा से जॉब स्विच कर दिया है, अब सोच रही हूँ भिवाड़ी में रेंटल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा।
3: चिंता की कोई बात नहीं, मेगा एयर कंडीशनर्स एंड इलेक्ट्रिक सर्विस है ना, ये पूरे दिल्ली NCR में अपनी रेंटल सर्विस दे रहे हैं। और इनके यहाँ टावर AC, विंडो AC, स्प्लिट AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड LED TV, सभी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
2: लेकिन इनकी सर्विस भिवाड़ी में तो बहुत महंगी होगी ना।
3: बिल्कुल भी नहीं, आपको ये सर्विस सेम रेट पर मिलने वाली है। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9899247102 पर, या फिर विजिट करें www.maces.in पर।
4: ये क्या, अभी भी डीजल कार चला रहे हो? अब समय है स्मार्ट फ्यूल पर स्विच करने का, वो भी ज्यादा बचत के साथ। पेश है विक्टोरिस SCNG। ये स्मार्ट है क्योंकि ये देता है 27.02 किलोमीटर पर KG का शानदार माइलेज, और इसका अंडरबॉडी CNG टैंक बूट स्पेस पर कोई समझौता नहीं करता। ज्यादा बचत भी, क्योंकि अपनी पुरानी डीजल कार के एक्सचेंज पर पाएं 50,000 रुपए तक का फायदा। तो देर किस बात की, आज ही बुक करें, अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम पर जाएं। नियम व शर्तें लागू।
5: विजिट फॉर्च्यून कार्स भिवाड़ी।
6: मॉडर्न अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर भिवाड़ी पर अनुभवी रेडियोलॉजिस्ट व पैथोलॉजिस्ट द्वारा अत्याधुनिक मशीनों से 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 4D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इको कार्डियोग्राफी, डिजिटल एक्सरे, IVP, बैरियम, HSG, डिजिटल OPG, DMT, ECG, EEG, BFT, मैमोग्राफी व फुली एडवांस कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब की सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध है।
7: नियर सरकारी हॉस्पिटल 135 भिवाड़ी, दूसरी ब्रांच, मॉडर्न डायग्नोस्टिक एवं इमेजिंग सेंटर, नियर नगर पालिका ऑफिस, अपोजिट अम्बेडकर पार्क, धारूहेड़ा। कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800-123-4494 या 9983-04-0100 पर।
8: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: मैं जयपुर जा रहा हूँ।
1: अच्छा, तो आते हुए जयपुर के मशहूर दूध लड्डू और प्याज कचौरी लेते आना।
0: अरे, दूध लड्डू और प्याज कचौरी के लिए जयपुर जाने का इंतजार क्यों करना, क्योंकि अब आपके शहर भिवाड़ी में अलवर बाईपास पर खुल चुका है कान्हा स्वीट्स।
1: जी हाँ, कान्हा स्वीट्स पर मिलते हैं स्वादिष्ट दूध लड्डू, प्याज कचौरी, समोसे किसी कलाकंद, रसमलाई, कुल्हड़ रबड़ी और सभी प्रकार की मिठाइयाँ।
0: बिल्कुल, हर मिठाई में स्वाद ऐसा कि एक बार खाएं तो दिल कहे एक और।
1: तो फिर आज मिठास हो जाए कान्हा स्वीट्स के साथ।
0: हाँ, परिवार हो या मेहमान, त्योहार हो या कोई खास खुशी, हर मौके की मिठास कान्हा स्वीट्स के साथ। पता नोट कर लीजिए,
1: शॉप नंबर AG F04, कैपिटल आर्केडिया, अलवर बाईपास इन फ्रंट ऑफ वेदांता फार्म, भिवाड़ी, राजस्थान।
2: मोहाली और गुड़गांव का डेंटल अनुभव अब भिवाड़ी में। आइए वी केयर डेंटल क्लिनिक इम्प्लांट सेंटर, जहां RCT, कैपिंग और डेंटल इम्प्लांट के एक्सपर्ट ट्रीटमेंट के साथ आपको मिलता है डॉक्टर रुकु सिंगला के 16 वर्षों के अनुभव और विशेषज्ञता का भरोसा। आर्मी और कॉर्पोरेट कर्मचारियों के लिए स्पेशल डिस्काउंट। पता, अपोजिट मैकडोनल्ड्स, JMK पेट क्लिनिक के पास, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉल करें 7814399374। वी केयर डेंटल, आपकी मुस्कान हमारा भरोसा।
1: क्या आपकी आँखों की रोशनी से जुड़ी कोई परेशानी है? क्या आप चश्मे से छुटकारा पाना चाहते हैं?
0: तो आइए आधुनिक सुविधाओं से युक्त मिश्री देवी आई हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी आई सेंटर।
1: पिछले 15 वर्षों से नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में भरोसेमंद सेवाएं, अब बहर रोड, नियम राणा और टपुकड़ा भिवाड़ी में।
0: यहाँ उपलब्ध हैं मोतियाबिंद, फेको, मल्टीफोकल एवं प्रीमियम लेंस, लेसिक लेजर, कॉर्निया, ग्लूकोमा और रेटिना उपचार एवं सर्जरी की आधुनिक सुविधाएं।
1: और अब दोनों आंखों का लेसिक लेजर उपचार आधुनिक तकनीक के साथ आपकी पहुंच में और उचित दरों पर।
0: बेहतर नेत्र उपचार, उचित खर्च और भरोसेमंद देखभाल के साथ चश्मे से आजादी की ओर बढ़ाइए अपना कदम। मिश्री देवी आई हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी आई सेंटर। संपर्क नंबर
1: 9783220043 या 01493294200। अब आपके शहर भिवाड़ी में साइकियाट्री एवं ऑर्थोपेडिक्स की नियमित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है ओजस हॉस्पिटल में।
0: मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितिका अग्रवाल द्वारा डिप्रेशन, नींद की समस्या, बेचैनी, घबराहट, मानसिक तनाव, स्किजोफ्रेनिया और OCD जैसी समस्याओं का उचित उपचार किया जाता है एवं काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध है।
1: वहीं हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेंद्र अग्रवाल द्वारा चोट, ट्रॉमा, फ्रैक्चर, घुटने एवं कमर का दर्द, लिगामेंट की चोट, गठिया और आर्थराइटिस जैसी हड्डी एवं जोड़ संबंधी समस्याओं का उपचार किया जाता है।
0: साथ ही सर्जरी, फिजियोथेरेपी और पेन मैनेजमेंट की सुविधा भी उपलब्ध है।
1: तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या को नजरअंदाज न करें, पहुंचिए ओजस हॉस्पिटल।
0: पता, नगीना गार्डन के पास, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी।
1: फोन करें 9521333591। ओजस हॉस्पिटल, बेहतर स्वास्थ्य की ओर एक कदम। अब आपके शहर धारूहेड़ा में ही मिल रही है आधुनिक और बेहतरीन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सुविधाएं। लोटस हॉस्पिटल, बेस्ट टैक्स सिटी, BPL फ्लैट के सामने धारूहेड़ा में, डॉक्टर अन्विका बंसल, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, 15 वर्ष से अधिक अनुभव के साथ, जो पहले से ही भिवाड़ी में अपनी सेवाएं दे रही थी, अब अपने नए लोटस हॉस्पिटल में OPD और इमरजेंसी सर्विस के लिए उपलब्ध है। इसके साथ ही यहाँ उपलब्ध है अनुभवी हड्डी रोग विशेषज्ञ। यहाँ घुटना बदलना, कुल्हा बदलना और रीढ़ से जुड़ी सभी बीमारी का इलाज होता है, और एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट और लैप्रोस्कोपिक जनरल सर्जन, जहां लेजर टेक्निक से बवासीर, भगंदर का इलाज लोटस हॉस्पिटल में मिलता है, तथा 24 घंटे आपातकालीन सुविधा, एडवांस्ड एक्सरे, लैबोरेटरी, फार्मेसी, अल्ट्रासाउंड सर्विस, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, AC प्राइवेट रूम की सुविधाएं उपलब्ध हैं। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आज ही विजिट करें लोटस हॉस्पिटल, बेस्ट सिटी, BPL फ्लैट के सामने, धारूहेड़ा। संपर्क करें 01274415033।
3: भिवाड़ी का पहला ISO और NABH सर्टिफाइड श्री कृष्णा हॉस्पिटल, जिसमें मल्टी स्पेशलिस्ट OPD, 10 बेड का ICU, सबसे बड़ा मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 50 बेड का इंडोर, 24 आवर्स एम्बुलेंस, फार्मेसी और इमरजेंसी सेवाएं तथा लैब, डिजिटल एक्सरे जैसी सुविधाओं से लैस श्री कृष्णा हॉस्पिटल अधिकांश मल्टीनेशनल कंपनियों के मेडिकल कंसल्टेंसी एवं कैशलेस उपचार का एकमात्र सेंटर। श्री कृष्णा हॉस्पिटल, B14849 भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी, 8529113916, 7340013916। इस हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट और फिजिशियन की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
4: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
5: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे, किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
4: कान नाक गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
6: आपके हर खास समारोह को शानदार और यादगार बनाने के लिए आइए भाटोटिया टेंट हाउस एंड इवेंट ऑर्गेनाइजर।
7: सभी प्रकार के टेंट आइटम, शानदार डेकोरेशन और इंडोर आउटडोर कैटरिंग की बेहतरीन सुविधा, शादी, सगाई, जन्मदिन या किसी भी समारोह के लिए एक ही जगह पर पूरी व्यवस्था।
6: संपर्क करें हंसराज भाटोटिया, मोबाइल नंबर 9416347214।
7: और आपके खास समारोह के लिए शानदार राजविलास मैरिज एवं बैंक्वेट हॉल, शिवनगर पार्ट 2, पांचाल कॉलोनी, सीथल रोड, धारूहेड़ा, जिला रेवाड़ी, हरियाणा।
6: भाटोटिया टेंट हाउस और राजविलास मैरिज बैंक्वेट हॉल, आपके समारोह की पूरी तैयारी एक ही जगह।
2: अब भिवाड़ी के सबसे बड़े NABH सर्टिफाइड SS हॉस्पिटल में स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे पाएं। यहां पाएं स्किन स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, नेफ्रोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी, ब्लड बैंक L और डायलिसिस, सभी बड़े TPA, कैशलेस RGHS, ECHS, ESIC, चिरंजीवी योजना की कैशलेस सुविधा, यहां 24 घंटे की इमरजेंसी सेवा और एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें OCF2 ऑपोजिट मॉडर्न पब्लिक स्कूल, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी, कॉन्टैक्ट 7230011191 और 9785013999।
8: टाटा की गाड़ी तो ले ली है, अब भिवाड़ी में सर्विस सेंटर ढूंढते रहो।
9: अरे ढूंढना क्यों है, टाटा ऑथराइज्ड AK ऑटोमोबाइल है ना, जो संजय मोटर्स की ही यूनिट है। 2017 से भिवाड़ी का भरोसा है, टाटा के सर्टिफाइड मैकेनिक्स हैं और वहाँ सर्विसिंग बहुत ही शॉर्ट टाइम में हो जाती है।
8: अच्छा, और उसमें क्या खर्चे ही खर्चे?
9: अरे नहीं नहीं, AK ऑटोमोबाइल्स पर कार सर्विसिंग, बॉडी शॉप और व्हील अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग के अलावा कैशलेस इंश्योरेंस और रिन्यूअल, AMC, ऑन रोड मेंटेनेंस और एक्सीडेंट वारंटी जैसी सारी फैसिलिटीज हैं, जो खर्चे बहुत ही कम कर देती हैं। मेन रोड पर फूलबाग थाने के पास ही है ये।
8: अरे वाह, तो वेट क्यों करना, 9462369786 पे कॉल करके अभी AK ऑटोमोबाइल पे सर्विस बुक करो जल्दी।
10: सोनम, ये लो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट।
11: अरे इसमें क्या है?
10: वही जो तुम्हें बहुत टाइम से चाहिए था।
11: ये ब्रेसलेट तो मुझे बहुत टाइम से चाहिए था।
10: क्या आप इसे दिल्ली से लाए हो?
11: लेकिन आप दिल्ली कब गए?
10: अरे वो है ना, भिवाड़ी में अपने शांति ज्वेलर्स, इनके पास है सोने चांदी हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन और यहाँ मिलती है हॉलमार्क ज्वेलरी।
11: इनका एड्रेस क्या है?
10: इनका एड्रेस है शॉप नंबर 5, गणपति मॉल, भिवाड़ी। और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9812210987 पर।
12: एक बेहतर कल के लिए, बेहतर मजबूती के लिए, बेहतर बचत के लिए यूज करें SBF रैपिड 550D TMT। मजबूत निर्माण सदा के लिए।
13: मुझे अपने बच्चों के लिए चाहिए एक ऐसा स्कूल जो ICSE से अफिलिएटेड हो।
14: भिवाड़ी में है एकमात्र ऐसा स्कूल SPS ग्लोबल स्कूल, जिसके बच्चों ने ICSE 10th की बोर्ड परीक्षाओं में 100% रिजल्ट के साथ साथ राज्य स्तर पर कराटे, स्केटिंग आदि प्रतियोगिताओं में भी अपने स्कूल का नाम रोशन किया है। यहां शिक्षा से बच्चों का बौद्धिक विकास और खेल कूद से शारीरिक विकास, डिसिप्लिन और समय समय पर सामाजिक व सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं होती रहती हैं, जो बच्चों के सर्वांगीण विकास में मदद करता है। यहां है बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, खेल का मैदान, AC क्लासरूम, डिजिटल क्लास क्लासरूम, आधुनिक सुविधाओं से लैस लैब, बेस्ट टीचर की फैसिलिटी।
13: SPS ग्लोबल स्कूल नियर कैपिटल मॉल भिवाड़ी। आज ही विजिट करें या कॉल करें 9950888330।
15: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: भिलवाड़ी के शिवोहम हॉस्पिटल में पाएं एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं। यहां 25 बेड से लेस इंडोर, 6 बेड से लेस आईसीयू, दो बड़े ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजी लैब तथा अत्याधुनिक एक्सरे मशीनों के द्वारा एक्सरे सुविधा, तकनीकी मशीनों द्वारा जाँच, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, एम्बुलेंस, सभी कैशलेस टीपी सुविधाओं के साथ 14 साल से कम आयु की बच्चियों के लिए निशुल्क परामर्श, गायनेकोलॉजी, इनफर्टिलिटी, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नम्रता मेहता चतुर्वेदी व हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हेमंत चतुर्वेदी जैसे अनुभवी डॉक्टर से परामर्श सुविधा, जो कि पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में निरंतर अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। शिवोहम हॉस्पिटल, B4 भगत सिंह कॉलोनी, पुराने RTO ऑफिस के पास, भिवाड़ी। संपर्क 9799996778।
1: भिवाड़ी का पहला ISO और NABH सर्टिफाइड श्री कृष्णा हॉस्पिटल, जिसमें मल्टी स्पेशलिस्ट OPD, 10 बेड का ICU, सबसे बड़ा मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 50 बेड का इंडोर, 24 आवर्स एम्बुलेंस, फार्मेसी और इमरजेंसी सेवाएं तथा लैब, डिजिटल एक्सरे जैसी सुविधाओं से लैस श्री कृष्णा हॉस्पिटल अधिकांश मल्टीनेशनल कंपनियों के मेडिकल कंसल्टेंसी एवं कैशलेस उपचार का एकमात्र सेंटर। श्री कृष्णा हॉस्पिटल, B14849 भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी, 8529113916, 7340013916। इस हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट और फिजिशियन की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं।
2: क्या आपकी त्वचा, बाल या नाखून की समस्या बार बार परेशान कर रही है?
3: अब सही इलाज के लिए मिलिए डॉक्टर गौरव, एम्स से प्रशिक्षित त्वचा रोग विशेषज्ञ, SS हॉस्पिटल, भिवाड़ी में।
2: मुंहासे, पिगमेंटेशन, एलर्जी, हेयर फॉल से लेकर लेजर, केमिकल पील और बोटॉक्स जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध।
3: ECHS, RGHS तथा NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल में सभी प्रमुख TPA मान्य।
2: SS हॉस्पिटल, भिवाड़ी, भरोसेमंद विशेषज्ञ से देखभाल। समय रोजाना शाम 4:30 से 6:30 तक, गुरुवार अवकाश।
4: पूजा, तुम्हारे फेस पर कितने पिंपल्स और धब्बे हो रहे हैं?
5: हाँ यार, और बाल भी हर दिन झड़ रहे हैं। कई बार दिल्ली गुरुग्राम में भी दिखा चुकी हूँ।
4: अरे पूजा, अब दिल्ली या गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपनी भिवाड़ी में है डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, जहाँ पर स्किन, हेयर एंड नेल्स की सभी बीमारियों का पूर्ण इलाज डॉक्टर सुचेता MD डर्मेटोलॉजी द्वारा किया जाता है, जो भिवाड़ी में अपनी सेवाएं दे रही है। इनके यहाँ लेजर हेयर रिमूवल, माइक्रो

0: लिंक पीआरपी आरएफ अन्य सभी स्किन समस्याओं का समाधान विदेशी मशीनों व नई तकनीकों द्वारा किया जाता है। कॉल करें 6367551007। विजिट डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक A56 फर्स्ट फ्लोर भगत सिंह कॉलोनी बिहाइंड सुखम टावर भिवाड़ी।
1: आपके सारे जरूरतों का बीमा एक ही जगह विधि एंटरप्राइजेज भिवाड़ी। स्वास्थ्य बीमा, वाहन बीमा, जीवन बीमा, फायर बीमा सब मिलेगा यहाँ। और हाँ, बीमा कराने पर खास ऑफर भी मिलेंगे। संपर्क करें चंद्रभान विधि एंटरप्राइजेज, रिको चौक भिवाड़ी 9887066308।
2: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: मैं जयपुर जा रहा हूँ।
1: अच्छा, तो आते हुए जयपुर के मशहूर दूध लड्डू और प्याज कचौरी लेते आना।
0: अरे, दूध लड्डू और प्याज कचौरी के लिए जयपुर जाने का इंतजार क्यों करना, क्योंकि अब आपके शहर भिवाड़ी में अलवर बाईपास पर खुल चुका है कान्हा स्वीट्स।
1: जी हाँ, कान्हा स्वीट्स पर मिलते हैं स्वादिष्ट दूध लड्डू, प्याज कचौरी, समोसे किसी कलाकंद, रसमलाई, कुल्हड़ रबड़ी और सभी प्रकार की मिठाइयाँ।
0: बिल्कुल, हर मिठाई में स्वाद ऐसा कि एक बार खाएं तो दिल कहे एक और।
1: तो फिर आज मिठास हो जाए कान्हा स्वीट्स के साथ।
0: हाँ, परिवार हो या मेहमान, त्योहार हो या कोई खास खुशी, हर मौके की मिठास कान्हा स्वीट्स के साथ। पता नोट कर लीजिए,
1: शॉप नंबर AG F04, कैपिटल आर्केडिया, अलवर बाईपास इन फ्रंट ऑफ वेदांता फार्म, भिवाड़ी, राजस्थान।
2: मोहाली और गुड़गांव का डेंटल अनुभव अब भिवाड़ी में। आइए वी केयर डेंटल क्लिनिक इम्प्लांट सेंटर, जहां RCT कैपिंग और

0: डेंटल इम्प्लांट के एक्सपर्ट ट्रीटमेंट के साथ आपको मिलता है डॉक्टर रुकु सिंगला के 16 वर्षों के अनुभव और विशेषज्ञता का भरोसा। आर्मी और कॉर्पोरेट कर्मचारियों के लिए स्पेशल डिस्काउंट। पता: अपोजिट मैकडोनल्ड्स, JMK पेट क्लिनिक के पास, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉल करें 7814399374। वी केयर डेंटल, आपकी मुस्कान हमारा भरोसा।
1: क्या आपकी आँखों की रोशनी से जुड़ी कोई परेशानी है? क्या आप चश्मे से छुटकारा पाना चाहते हैं?
2: तो आइए आधुनिक सुविधाओं से युक्त मिश्री देवी आई हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिटी आई सेंटर।
1: पिछले 15 वर्षों से नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में भरोसेमंद सेवाएं, अब बाहर रोड, नियम राणा और टपुकड़ा भिवाड़ी में।
2: यहाँ उपलब्ध है मोतियाबिंद, फेको, मल्टीफोकल एवं प्रीमियम लेंस, लेसिक लेजर, कॉर्निया, ग्लूकोमा और रेटिना उपचार एवं सर्जरी की आधुनिक सुविधाएं।
1: और अब दोनों आँखों का लेसिक लेजर उपचार आधुनिक तकनीक के साथ आपकी पहुंच में और उचित दरों पर।
2: बेहतर नेत्र उपचार, उचित खर्च और भरोसेमंद देखभाल के साथ चश्मे से आजादी की ओर बढ़ाइए अपना कदम। मिश्री देवी आई हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिटी आई सेंटर। संपर्क नंबर
1: 9783220043 या 01493294200। अब आपके शहर भिवाड़ी में साइकियाट्री एवं ऑर्थोपेडिक्स की नियमित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है ओजस हॉस्पिटल में।
2: मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितिका अग्रवाल द्वारा डिप्रेशन, नींद की समस्या, बेचैनी, घबराहट, मानसिक तनाव, स्किजोफ्रेनिया और OCD जैसी समस्याओं का उचित उपचार किया जाता है एवं काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध है।
1: वहीं हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेंद्र अग्रवाल द्वारा चोट, ट्रॉमा, फ्रैक्चर, घुटने एवं कमर का दर्द, लिगामेंट की चोट, गठिया और आर्थराइटिस जैसी हड्डी एवं जोड़ संबंधी समस्याओं का उपचार किया जाता है।
2: साथ ही सर्जरी, फिजियोथेरेपी और पेन मैनेजमेंट की सुविधा भी उपलब्ध है।
1: तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या को नजरअंदाज न करें, पहुंचिए ओजस हॉस्पिटल।
2: पता: नगीना गार्डन के पास, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी।
1: फोन करें 9521333591। ओजस हॉस्पिटल, बेहतर स्वास्थ्य की ओर एक कदम। अब आपके शहर धारूहेड़ा में ही मिल रही है आधुनिक और बेहतरीन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सुविधाएं। लोटस हॉस्पिटल बेस्ट टैग सिटी BPL फ्लैट के सामने धारूहेड़ा में डॉक्टर अन्विका बंसल, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, 15 वर्ष से अधिक अनुभव के साथ, जो पहले से ही भिवाड़ी में अपनी सेवाएं दे रही थी, अब अपने नए लोटस हॉस्पिटल में OPD और इमरजेंसी सर्विस के लिए उपलब्ध हैं। इसके साथ ही यहां उपलब्ध है अनुभवी हड्डी रोग विशेषज्ञ। यहां घुटना बदलना, कुल्हा बदलना और रीढ़ से जुड़ी सभी बीमारी का इलाज होता है और एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट और लैप्रोस्कोपिक जनरल सर्जन, जहां लेजर टेक्निक से बवासीर, भगंदर का इलाज लोटस हॉस्पिटल में मिलता है, तथा 24 घंटे आपातकालीन सुविधा, एडवांस्ड एक्सरे, लैबोरेटरी, फार्मेसी, अल्ट्रासाउंड सर्विस, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, AC प्राइवेट रूम की सुविधाएं उपलब्ध हैं। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आज ही विजिट करें लोटस हॉस्पिटल बेस्ट टैग सिटी BPL फ्लैट के सामने धारूहेड़ा। संपर्क करें 01274415033।
3: भिवाड़ी का पहला ISO और NABH सर्टिफाइड श्री कृष्णा हॉस्पिटल, जिसमें मल्टी स्पेशलिस्ट OPD, 10 बेड का ICU, सबसे बड़ा मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 50 बेड का इंडोर, 24 आवर्स एम्बुलेंस, फार्मेसी और इमरजेंसी सेवाएं, तथा लैब, डिजिटल एक्सरे जैसी सुविधाओं से लैस श्री कृष्णा हॉस्पिटल अधिकांश मल्टीनेशनल कंपनियों के मेडिकल कंसल्टेंसी एवं कैशलेस उपचार का एकमात्र सेंटर। श्री कृष्णा हॉस्पिटल B14849 भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी 8529113916 7340013916। इस हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट और फिजिशियन की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं।
4: विजय हॉस्पिटल डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
5: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे, किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
4: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529 9987901।
6: आपके हर खास समारोह को शानदार और यादगार बनाने के लिए आइए भाटोटिया टेंट हाउस एंड इवेंट ऑर्गेनाइजर।
2: सभी प्रकार के टेंट आइटम, शानदार डेकोरेशन और इंडोर आउटडोर कैटरिंग की बेहतरीन सुविधा, शादी, सगाई, जन्मदिन या किसी भी समारोह के लिए एक ही जगह पर पूरी व्यवस्था।
6: संपर्क करें हंसराज भाटोटिया, मोबाइल नंबर 9416347214।
2: और आपके खास समारोह के लिए शानदार राजविलास मैरिज एवं बैंक्वेट हॉल, शिवनगर पार्ट 2, पांचाल कॉलोनी, सीथल रोड, धारूहेड़ा, जिला रेवाड़ी, हरियाणा।
6: भाटोटिया टेंट हाउस और राजविलास मैरिज बैंक्वेट हॉल, आपके समारोह की पूरी तैयारी एक ही जगह।
7: आपनो देश आपनो रंग, सब मिले आपनो बाजार के संग। जी हाँ, आपनो बाजार आपका कंप्लीट फैमिली स्टोर, जहाँ उत्तम क्वालिटी और वाजिब दामों के साथ आपको मिलता है किराना, ग्रोसरी आइटम, कॉस्मेटिक, हाउसकीपिंग, हाउसहोल्ड आइटम, गिफ्ट आइटम, क्रॉकरी, टॉयज एंड गेम्स। इन सभी आइटम के MRP दामों पर खास छूट। इतना ही नहीं, फ्री होम डिलीवरी की सुविधा भी है। इनके स्टोर अलवर बाईपास, थड़ा रोड, भिवाड़ी, कृष्ण मॉल, टपुकड़ा आशियाना विलेज सेंटर। संपर्क करें 9680870184 या फिर 7822091287।
8: अरे, प्लांट का तो सारा काम हो गया, अब LED लाइट कहाँ से खरीदें?
9: सर, क्या आपको नहीं पता है नैप LED लाइटिंग कंपनी इंडस्ट्रियल लाइटिंग जैसे फ्लड लाइट, हाईवे लाइट, स्ट्रीट लाइट आदि के साथ साथ सभी प्रकार की LED लाइट बनाती है, वो भी 2 साल की वारंटी के साथ। और इतना ही नहीं, वो इंडस्ट्रियल लाइटिंग कंसल्टेंट सर्विस भी फ्री देते हैं।
8: अरे वाह, इनसे संपर्क कैसे करें?
9: सर, इनका सेल्स ऑफिस एड्रेस JFF 22, कैपिटल हाई स्ट्रीट, फूलबाग चौक, भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए नैप LED लाइटिंग कंपनी से संपर्क करें 7988627064।
6: आपके हर खास समारोह को शानदार और यादगार बनाने के लिए आइए भाटोटिया टेंट हाउस एंड इवेंट ऑर्गेनाइजर।
2: सभी प्रकार के टेंट आइटम, शानदार डेकोरेशन और इंडोर आउटडोर कैटरिंग की बेहतरीन सुविधा, शादी, सगाई, जन्मदिन या किसी भी समारोह के लिए एक ही जगह पर पूरी व्यवस्था।
6: संपर्क करें हंसराज भाटोटिया, मोबाइल नंबर 9416347214।
2: और आपके खास समारोह के लिए शानदार राजविलास मैरिज एवं बैंक्वेट हॉल, शिवनगर पार्ट 2, पांचाल कॉलोनी, सीथल रोड, धारूहेड़ा, जिला रेवाड़ी, हरियाणा।
6: भाटोटिया टेंट हाउस और राजविलास मैरिज बैंक्वेट हॉल, आपके समारोह की पूरी तैयारी एक ही जगह। जब बात आपकी मुस्कान की हो तो समझौता क्यों, अब स्पेशलिस्ट डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं। आइए डेंटल एक्सपर्ट्स भिवाड़ी, भिवाड़ी का इकलौता डेंटल क्लिनिक, जहां पूरी टीम MDS स्पेशलिस्ट्स की है और जिन्हें 15 साल से अधिक का अनुभव है। डॉक्टर विनोद यादव, MDS ऑर्थोडोंटिस्ट, भिवाड़ी के एकमात्र ब्रेसेस स्पेशलिस्ट एंड इनविसलाइन प्रोवाइडर। इसके अलावा डेंटल इम्प्लांट्स और जटिल दांतों की समस्याओं का आधुनिक उपचार प्रदान करते हैं। साथ ही डॉक्टर ऋतु यादव, MDS एंडोडोंटिस्ट, रूट कैनाल, स्माइल डिजाइनिंग और फुल माउथ रिहैबिलिटेशन की विशेषज्ञ। डेंटल एक्सपर्ट्स, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट आशियाना आंगन, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 8824232823। डेंटल एक्सपर्ट्स, आपकी मुस्कान हमारी विशेषज्ञता।
2: भिवाड़ी वासियों, अब हर जरूरत की सर्विस सिर्फ एक ऐप पर। मैसन केयर लेकर आया है आपके लिए भरोसेमंद होम और प्रोफेशनल सर्विसेज।
6: बाथरूम डीप क्लीनिंग, किचन डीप क्लीनिंग, पूरे घर की सफाई, ऑफिस क्लीनिंग, जिम क्लीनिंग, कार क्लीनिंग, पानी की टंकी की सफाई, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ड्राइवर सर्विस, कैब बुकिंग और बहुत सारी अन्य सेवाएं, अब सब कुछ एक ही ऐप पर।
2: अभी मेस एन केयर ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे अपनी पसंद की सर्विस बुक करें।
6: मेस एन केयर, आपका घर हमारी जिम्मेदारी। बुकिंग के लिए अभी कॉल या व्हाट्सएप करें 8824106060।
10: फ्यूचर लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहें। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
11: गणेश स्टेशनर, बेटर देन द बेस्ट,
10: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा A to Z सामान। इसी के साथ यहां प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
11: गणेश स्टेशनर, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड, नियर हरी राम हॉस्पिटल, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।
12: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: मैं जयपुर जा रहा हूँ।
1: अच्छा, तो आते हुए जयपुर के मशहूर दूध लड्डू और प्याज कचौरी लेते आना।
0: अरे, दूध लड्डू और प्याज कचौरी के लिए जयपुर जाने का इंतजार क्यों करना, क्योंकि अब आपके शहर भिवाड़ी में अलवर बाईपास पर खुल चुका है कान्हा स्वीट्स।
1: जी हाँ, कान्हा स्वीट्स पर मिलते हैं स्वादिष्ट दूध लड्डू, प्याज कचौरी, समोसे किसी कलाकंद, रस मलाई, कुल्हड़ रबड़ी और सभी प्रकार की मिठाइयाँ।
0: बिल्कुल, हर मिठाई में स्वाद ऐसा कि एक बार खाएं तो दिल कहे एक और।
1: तो फिर आज मिठास हो जाए कान्हा स्वीट्स के साथ।
0: हाँ, परिवार हो या मेहमान, त्योहार हो या कोई खास खुशी, हर मौके की मिठास कान्हा स्वीट्स के साथ। पता नोट कर लीजिए,
1: शॉप नंबर A GF04, कैपिटल आर्केडिया, अलवर बाईपास इन फ्रंट ऑफ वेदांता फार्म, भिवाड़ी, राजस्थान।
2: मोहाली और गुड़गांव का डेंटल अनुभव अब भिवाड़ी में। आइए वी केयर डेंटल क्लिनिक इम्प्लांट सेंटर, जहां RCT, कैपिंग और डेंटल इम्प्लांट के एक्सपर्ट ट्रीटमेंट के साथ आपको मिलता है डॉक्टर रुकु सिंगला के 16 वर्षों के अनुभव और विशेषज्ञता का भरोसा। आर्मी और कॉर्पोरेट कर्मचारियों के लिए स्पेशल डिस्काउंट। पता, अपोजिट मैकडोनल्ड्स, JMK पेट क्लिनिक के पास, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉल करें 7814399374। वी केयर डेंटल, आपकी मुस्कान हमारा भरोसा।
1: क्या आपकी आँखों की रोशनी से जुड़ी कोई परेशानी है? क्या आप चश्मे से छुटकारा पाना चाहते हैं?
0: तो आइए आधुनिक सुविधाओं से युक्त मिश्री देवी आई हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी आई सेंटर।
1: पिछले 15 वर्षों से नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में भरोसेमंद सेवाएं, अब बहर रोड, नियम राणा और टपुकड़ा भिवाड़ी में।
0: यहाँ उपलब्ध है मोतियाबिंद, फेको, मल्टीफोकल एवं प्रीमियम लेंस, लेसिक लेजर, कॉर्निया, ग्लूकोमा और रेटिना उपचार एवं सर्जरी की आधुनिक सुविधाएं।
1: और अब दोनों आँखों का लेसिक लेजर उपचार आधुनिक तकनीक के साथ आपकी पहुंच में और उचित दरों पर।
0: बेहतर नेत्र उपचार, उचित खर्च और भरोसेमंद देखभाल के साथ चश्मे से आजादी की ओर बढ़ाइए अपना कदम। मिश्री देवी आई हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी आई सेंटर। संपर्क नंबर
1: 9783220043 या 01493294200। अब आपके शहर भिवाड़ी में साइकियाट्री एवं ऑर्थोपेडिक्स की नियमित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है ओजस हॉस्पिटल में।
0: मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितिका अग्रवाल द्वारा डिप्रेशन, नींद की समस्या, बेचैनी, घबराहट, मानसिक तनाव, स्किजोफ्रेनिया और OCD जैसी समस्याओं का उचित उपचार किया जाता है एवं काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध है।
1: वहीं हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेंद्र अग्रवाल द्वारा चोट, ट्रॉमा, फ्रैक्चर, घुटने एवं कमर का दर्द, लिगामेंट की चोट, गठिया और आर्थराइटिस जैसी हड्डी एवं जोड़ संबंधी समस्याओं का उपचार किया जाता है।
0: साथ ही सर्जरी, फिजियोथेरेपी और पेन मैनेजमेंट की सुविधा भी उपलब्ध है।
1: तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या को नजरअंदाज न करें, पहुंचिए ओजस हॉस्पिटल।
0: पता, नगीना गार्डन के पास, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी।
1: फोन करें 9521333591। ओजस हॉस्पिटल, बेहतर स्वास्थ्य की ओर एक कदम। अब आपके शहर धारूहेड़ा में ही मिल रही है आधुनिक और बेहतरीन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सुविधाएं। लोटस हॉस्पिटल, बेस्ट टैक सिटी, BPL फ्लैट के सामने धारूहेड़ा में डॉक्टर अन्विका बंसल, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, 15 वर्ष से अधिक अनुभव के साथ, जो पहले से ही भिवाड़ी में अपनी सेवाएं दे रही थी, अब अपने नए लोटस हॉस्पिटल में OPD और इमरजेंसी सर्विस के लिए उपलब्ध हैं। इसके साथ ही यहां उपलब्ध है अनुभवी हड्डी रोग विशेषज्ञ। यहां घुटना बदलना, कुल्हा बदलना और रीढ़ से जुड़ी सभी बीमारी का इलाज होता है और एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट और लैप्रोस्कोपिक जनरल सर्जन, जहां लेजर टेक्निक से बवासीर, भगंदर का इलाज लोटस हॉस्पिटल में मिलता है, तथा 24 घंटे आपातकालीन सुविधा, एडवांस्ड एक्सरे, लैबोरेटरी, फार्मेसी, अल्ट्रासाउंड सर्विस, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, AC प्राइवेट रूम की सुविधाएं उपलब्ध हैं। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आज ही विजिट करें लोटस हॉस्पिटल, बेस्ट टैक सिटी, BPL फ्लैट के सामने धारूहेड़ा। संपर्क करें 01274415033।
3: भिवाड़ी का पहला ISO और NABH सर्टिफाइड श्री कृष्णा हॉस्पिटल, जिसमें मल्टी स्पेशलिस्ट OPD, 10 बेड का ICU, सबसे बड़ा मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 50 बेड का इंडोर, 24 आवर्स एम्बुलेंस, फार्मेसी और इमरजेंसी सेवाएं तथा लैब, डिजिटल एक्सरे जैसी सुविधाओं से लैस श्री कृष्णा हॉस्पिटल अधिकांश मल्टीनेशनल कंपनियों के मेडिकल कंसल्टेंसी एवं कैशलेस उपचार का एकमात्र सेंटर। श्री कृष्णा हॉस्पिटल, B14849 भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी, 8529113916, 7340013916। इस हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट और फिजिशियन की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
4: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
5: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
4: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
6: आपके हर खास समारोह को शानदार और यादगार बनाने के लिए आइए भाटोटिया टेंट हाउस एंड इवेंट ऑर्गेनाइजर।
7: सभी प्रकार के टेंट आइटम, शानदार डेकोरेशन और इंडोर आउटडोर कैटरिंग की बेहतरीन सुविधा, शादी, सगाई, जन्मदिन या किसी भी समारोह के लिए एक ही जगह पर पूरी व्यवस्था।
6: संपर्क करें हंसराज भाटोटिया, मोबाइल नंबर 9416347214।
7: और आपके खास समारोह के लिए शानदार राज विलास मैरिज एवं बैंक्वेट हॉल, शिवनगर पार्ट 2, पांचाल कॉलोनी, सीथल रोड, धारूहेड़ा, जिला रेवाड़ी, हरियाणा।
6: बाटोटिया टेंट हाउस और राज विलास मैरिज बैंक्वेट हॉल, आपके समारोह की पूरी तैयारी एक ही जगह।
8: औद्योगिक क्षेत्र सारे खुद करौली, बंदापुर, खुशखेड़ा व चौपानकी में 16 औद्योगिक व 2 वेयर हाउस भूखंडों को ई नीलामी के माध्यम से बेचान किया जा रहा है। इन भूखंडों के लिए अमानत राशि दिनांक 9/10/2026 समय 6 बजे तक जमा कराकर बिड लगा सकते हैं। बिड लगाने की अंतिम तिथि 14/10/2026 समय 5 बजे तक है। इसके साथ ही औद्योगिक क्षेत्र सलारपुर व पथरेड़ी में 43 भूखंडों को प्रत्यक्ष आवंटन योजना के माध्यम से बेचान किया जा रहा है। इन भूखंडों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 12/10/2026 समय 6 बजे तक है। अंतिम जानकारी के लिए रिको की वेबसाइट www.riico.co.in यानी www.rico.co.in पर एवं रिको इकाई कार्यालय भिवाड़ी, द्वितीय रिको रेस्ट हाउस रोड, भिवाड़ी में संपर्क कर सकते हैं।
9: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: भिवाड़ी का भरोसा वर्षों से आपकी सेवा में। सिटी नर्सिंग होम सदर मार्केट भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी का पहला नर्सिंग होम NABH द्वारा प्रमाणित।
1: यहाँ उपलब्ध है 2 आधुनिक ICU, अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, दूरबीन सर्जरी की सुविधा तथा अधिकांश मेडिक्लेम कंपनियों की कैशलेस सुविधा, डायबिटीज के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर कौशल, मनोरोग परामर्श हेतु डॉक्टर कनिष्का तथा मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर रूप सिंह की सेवाएं उपलब्ध। अनुभवी डॉक्टर, आधुनिक सुविधाएं और मरीजों की समर्पित देखभाल।
0: सिटी नर्सिंग होम सदर मार्केट भिवाड़ी, स्वास्थ्य का भरोसा आपके अपने शहर में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सिटी नर्सिंग होम भिवाड़ी।
2: अरे कहाँ जा रही हो?
3: मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए अंशुल ज्वेलर्स।
2: अच्छा, पर अंशुल ज्वेलर्स से क्यों?
3: अंशुल ज्वेलर्स के पास है सोने, चांदी और हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन, वो भी DIS के 6 अंकों वाले हॉलमार्क HUID के साथ। और तो और, इनकी ज्वेलरी को हम भारत सरकार द्वारा चलाए गए BIS केयर ऐप के वेरीफाई HUID फीचर से आभूषणों की शुद्धता का प्रमाण देख सकते हैं।
2: जी हाँ, खरे आभूषणों की प्रामाणिकता जिसके साथ बढ़ेगी आपकी सुंदरता। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर। हमारा पता शॉप नंबर 7 गणपति मॉल समतल मोड़ भिवाड़ी राजस्थान या मेन बाजार नजदीक हनुमान मंदिर टावड़ू हरियाणा। संपर्क करें 9992533611 या फिर 9354898521 पर। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर।
4: कभी भी इमरजेंसी हो या सिर्फ एक छोटी सी चेकअप की जरूरत हो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा और भिवाड़ी में आपका अपना हॉस्पिटल है। 24 घंटे इमरजेंसी, AC प्राइवेट रूम्स, वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर, डिजिटल एक्सरे, क्लिनिकल लैब, TMT, ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी, फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी, स्किन प्रिक एंड ब्लड एलर्जी टेस्ट, एलर्जी का जड़ से इलाज। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं मेडिसिन, सर्जरी, ENT, हेड एंड नेक सर्जरी, ऑब्स एंड गाइनी, ऑर्थोपेडिक्स, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कैशलेस फैसिलिटी, सभी TPA के साथ। तो अब टेंशन मत लो, एपेक्स हॉस्पिटल धारू।

0: जांच भी की जाती है। 1/57-58 राजस्थान हाउसिंग बोर्ड सेंट्रल मार्केट के पास भिवाड़ी। कॉल 9351-004500।
1: दूसरी ब्रांच A50 भगत सिंह कॉलोनी भिवाड़ी। कॉल 8058304500।
2: श्रीराम इंडस्ट्रीज आर्मर जैन भारत में मेक इन इंडिया पहल के तहत विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाले उत्पादों के निर्माण में एक भरोसेमंद नाम। यहाँ बनते हैं फायर रेटेड और नॉन फायर रेटेड डोर्स, मोटराइज्ड और मैनुअल गेट्स, जनरल पर्पस डोर्स, एक्सेस डोर्स, डॉक लेवलर, फायर हॉज कैबिनेट्स और आपकी जरूरत के मुताबिक कस्टमाइज्ड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस। BIS, CBRI और NABL सर्टिफाइड वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स उचित कीमत पर। आर्मर जैन आपको देता है वादा गुणवत्ता, सुरक्षा और विश्वास का। संपर्क करें 7014735108। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.armorzain.co .in। आर्मर जैन, जब बात हो गुणवत्ता और भरोसे की।
3: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: मैं जयपुर जा रहा हूँ।
1: अच्छा, तो आते हुए जयपुर के मशहूर दूध लड्डू और प्याज कचौरी लेते आना।
0: अरे, दूध लड्डू और प्याज कचौरी के लिए जयपुर जाने का इंतजार क्यों करना, क्योंकि अब आपके शहर भिवाड़ी में अलवर बाईपास पर खुल चुका है कान्हा स्वीट्स।
1: जी हाँ, कान्हा स्वीट्स पर मिलते हैं स्वादिष्ट दूध लड्डू, प्याज कचौरी, समोसे किसी कलाकंद, रसमलाई, कुल्हड़ रबड़ी और सभी प्रकार की मिठाइयाँ।
0: बिल्कुल, हर मिठाई में स्वाद ऐसा कि एक बार खाएं तो दिल कहे एक और।
1: तो फिर आज मिठास हो जाए कान्हा स्वीट्स के साथ।
0: हाँ, परिवार हो या मेहमान, त्योहार हो या कोई खास खुशी, हर मौके की मिठास कान्हा स्वीट्स के साथ। पता नोट कर लीजिए,
1: शॉप नंबर AG F04, कैपिटल आर्केडिया, अलवर बाईपास इन फ्रंट ऑफ वेदांता फार्म, भिवाड़ी, राजस्थान।
2: मोहाली और गुड़गांव का डेंटल अनुभव अब भिवाड़ी में। आइए वी केयर डेंटल क्लिनिक इम्प्लांट सेंटर, जहां RCT, कैपिंग और डेंटल इम्प्लांट के एक्सपर्ट ट्रीटमेंट के साथ आपको मिलता है डॉक्टर रुकु सिंह।

0: सेना के 16 वर्षों के अनुभव और विशेषज्ञता का भरोसा, आर्मी और कॉर्पोरेट कर्मचारियों के लिए स्पेशल डिस्काउंट। पता: अपोजिट मैकडोनल्ड्स, JMK पेट क्लिनिक के पास, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉल करें 7814399374। वी केयर डेंटल, आपकी मुस्कान हमारा भरोसा।
1: क्या आपकी आँखों की रोशनी से जुड़ी कोई परेशानी है? क्या आप चश्मे से छुटकारा पाना चाहते हैं?
2: तो आइए आधुनिक सुविधाओं से युक्त मिश्री देवी आई हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी आई सेंटर।
1: पिछले 15 वर्षों से नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में भरोसेमंद सेवाएं, अब बहर रोड, नियम राणा और टपूकड़ा भिवाड़ी में।
2: यहां उपलब्ध हैं मोतियाबिंद, फेको, मल्टीफोकल एवं प्रीमियम लेंस, लेसिक लेजर, कॉर्निया, ग्लूकोमा और रेटिना उपचार एवं सर्जरी की आधुनिक सुविधाएं।
1: और अब दोनों आँखों का लेसिक लेजर उपचार आधुनिक तकनीक के साथ आपकी पहुंच में और उचित दरों पर।
2: बेहतर नेत्र उपचार, उचित खर्च और भरोसेमंद देखभाल के साथ चश्मे से आजादी की ओर बढ़ाइए अपना कदम। मिश्री देवी आई हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी आई सेंटर। संपर्क नंबर
1: 9783220043 या 01493294200। अब आपके शहर भिवाड़ी में साइकियाट्री एवं ऑर्थोपेडिक्स की नियमित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है ओजस हॉस्पिटल में।
2: मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितिका अग्रवाल द्वारा डिप्रेशन, नींद की समस्या, बेचैनी, घबराहट, मानसिक तनाव, स्किजोफ्रेनिया और OCD जैसी समस्याओं का उचित उपचार किया जाता है एवं काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध है।
1: वहीं हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेंद्र अग्रवाल द्वारा चोट, ट्रॉमा, फ्रैक्चर, घुटने एवं कमर का दर्द, लिगामेंट की चोट, गठिया और आर्थराइटिस जैसी हड्डी एवं जोड़ संबंधी समस्याओं का उपचार किया जाता है।
2: साथ ही सर्जरी, फिजियोथेरेपी और पेन मैनेजमेंट की सुविधा भी उपलब्ध है।
1: तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या को नजरअंदाज न करें, पहुंचिए ओजस हॉस्पिटल।
2: पता: नगीना गार्डन के पास, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी।
1: फोन करें 9521333591। ओजस हॉस्पिटल, बेहतर स्वास्थ्य की ओर एक कदम। अब आपके शहर धारूहेड़ा में ही मिल रही है आधुनिक और बेहतरीन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सुविधाएं। लोटस हॉस्पिटल, बेस्ट टैग सिटी, BPL फ्लैट के सामने धारूहेड़ा में, डॉक्टर अन्विका बंसल, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, 15 वर्ष से अधिक अनुभव के साथ, जो पहले से ही भिवाड़ी में अपनी सेवाएं दे रही थी, अब अपने नए लोटस हॉस्पिटल में OPD और इमरजेंसी सर्विस के लिए उपलब्ध हैं। इसके साथ ही यहां उपलब्ध है अनुभवी हड्डी रोग विशेषज्ञ। यहां घुटना बदलना, कुल्हा बदलना और रीढ़ से जुड़ी सभी बीमारी का इलाज होता है, और एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट और लैप्रोस्कोपिक जनरल सर्जन, जहां लेजर टेक्निक से बवासीर, भगंदर का इलाज लोटस हॉस्पिटल में मिलता है, तथा 24 घंटे आपातकालीन सुविधा, एडवांस्ड एक्सरे, लैबोरेटरी, फार्मेसी, अल्ट्रासाउंड सर्विस, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, AC प्राइवेट रूम की सुविधाएं उपलब्ध हैं। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आज ही विजिट करें लोटस हॉस्पिटल, बेस्ट टैग सिटी, BPL फ्लैट के सामने, धारूहेड़ा। संपर्क करें 01274415033।
3: भिवाड़ी का पहला ISO और NABH सर्टिफाइड श्री कृष्णा हॉस्पिटल, जिसमें मल्टी स्पेशलिस्ट OPD, 10 बेड का ICU, सबसे बड़ा मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 50 बेड का इंडोर, 24 आवर्स एम्बुलेंस, फार्मेसी और इमरजेंसी सेवाएं, तथा लैब, डिजिटल एक्सरे जैसी सुविधाओं से लैस श्री कृष्णा हॉस्पिटल अधिकांश मल्टीनेशनल कंपनियों के मेडिकल कंसल्टेंसी एवं कैशलेस उपचार का एकमात्र सेंटर। श्री कृष्णा हॉस्पिटल, B14849, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी, 8529113916 7340001391 6। इस हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट और फिजिशियन की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
4: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव, कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल, B160, भगत सिंह कॉलोनी, सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
5: डॉक्टर अंकित जैन, हड्डी रोग विशेषज्ञ, अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे, किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
4: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
1: आपके हर खास समारोह को शानदार और यादगार बनाने के लिए आइए भाटोटिया टेंट हाउस एंड इवेंट ऑर्गेनाइजर।
2: सभी प्रकार के टेंट आइटम, शानदार डेकोरेशन और इंडोर आउटडोर कैटरिंग की बेहतरीन सुविधा। शादी, सगाई, जन्मदिन या किसी भी समारोह के लिए एक ही जगह पर पूरी व्यवस्था।
6: संपर्क करें हंसराज भाटोटिया, मोबाइल नंबर 9416347214।
2: और आपके खास समारोह के लिए शानदार राजविलास मैरिज एवं बैंक्वेट हॉल, शिवनगर पार्ट 2, पांचाल कॉलोनी, सीथल रोड, धारूहेड़ा, जिला रेवाड़ी, हरियाणा।
6: बाटोटिया टेंट हाउस और राजविलास मैरिज बैंक्वेट हॉल, आपके समारोह की पूरी तैयारी एक ही जगह।
7: क्या कर रही है?
8: ऑनलाइन बुकिंग देख रही हूँ, जयपुर जाना है।
7: फिर से? अभी तो गई थी।
8: हाँ, फिर से जाना है।
7: तू अपनी गाड़ी क्यों नहीं ले लेती?
8: गाड़ी नॉट इन बजट।
7: अरे गांधी मोटर्स है ना?
8: गांधी मोटर्स?
7: हाँ गांधी मोटर्स। गांधी मोटर्स कार सेल और परचेज के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर हर तरह की गाड़ियाँ बहुत अच्छी कीमत पे मिलती हैं।
8: तो कब चले?
7: अरे इसमें सोचना कैसा, अभी चलना। गाड़ियों के सेल और परचेज के लिए आज ही संपर्क करें।
9: हमारा पता है शॉप नंबर S16 एवलॉन रॉयल प्लाजा, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9785980000 या फिर 8740000144 पर।
10: भिवाड़ी में 27 वर्षों से सेवारत, भरोसेमंद 24 घंटे इलाज हेतु गोपीनाथ अस्पताल, ISO तथा NABH मान्यता एवं राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मल्टी स्पेशलिटी सेंट्रल ACOPD, 50 बेड की सुविधा से युक्त गोपीनाथ हॉस्पिटल, अत्याधुनिक 3 ऑपरेशन थिएटर, 7 बेड ICU, 2 जीवन रक्षक एम्बुलेंस, डिजिटल एक्सरे, ऑर्थोपेडिक सर्जन, फिजिशियन तथा लेडी डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा से युक्त गोपीनाथ अस्पताल। यहाँ नेफ्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, डायबिटोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट की नियमित OPD भी उपलब्ध है। लगभग सभी TPA कैशलेस सुविधा के साथ तथा भिवाड़ी की व आसपास की औद्योगिक इकाइयों के बीमा कंपनियां भी पैनल पर हैं। पता 226 इंडस्ट्रियल एरिया, सदर बाजार के पीछे, गोपीनाथ रोड, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 01493619563 एंड 9784333863।
11: क्या आप बिजली के बिल से परेशान हैं? क्या आप जानते हैं सोलर एनर्जी से आप बिजली के बिल से आजादी पा सकते हैं? जी हाँ, अपने घर, ऑफिस और फैक्ट्री की छत पर सोलर पैनल लगाएं और भारी बिजली के बिल से मुक्ति पाएं। सोलर एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको 30% तक रिटर्न देता है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9610255584। ग्रीन रूट्स रिन्यूएबल एनर्जी।
12: आपकी आंखें हैं अनमोल, आपकी आंखों को चाहिए बेहतर देखभाल, तो आइए गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स भिवाड़ी।
13: यहाँ मिलते हैं सभी ब्रांडेड कंपनियों के स्टाइलिश फ्रेम और हाई क्वालिटी लेंस। Ray-Ban, Vogue, टॉमी हिल्फिगर, ओकेली, प्रदा, जीस, एसिलोर क्रिजाल, विजन आर एक्स और भी कई नेशनल व इंटरनेशनल ब्रांड्स।
12: साथ ही कॉन्टैक्ट लेंस, लो विजन क्लिनिक, मायोपिया क्लिनिक, विजन थेरेपी और आधुनिक मशीनों द्वारा कंप्यूटरीकृत आई एग्जामिनेशन, प्रशिक्षित ऑप्टोमेट्रिस्ट की पूरी टीम।
13: भिवाड़ी में सन 2006 से भरोसे का नाम गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स।
12: गणपति मॉल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास, समतल चौक, भिवाड़ी, और अशियाना आंगन के सामने, BDI सोसाइटी के पास, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी।
2: अपॉइंटमेंट या जानकारी के लिए अभी कॉल करें 9636061776 या 9928929309।
14: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है, कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है, और इन्हीं श्रृंगार को सवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, एक से एक उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A, आशियाना आंगन प्लाजा, नियर मैकडॉनल्ड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट करें 01493493222 या फिर 9034969731 पर। ऐसे डिजाइंस जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्स ही आए।
15: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: विजय हॉस्पिटल डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
1: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
0: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
2: जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी आँखों का NABH मान्यता प्राप्त सुपर स्पेशलिटी आँखों का हॉस्पिटल आपके शहर भिवाड़ी में। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी आपको प्रदान करता है विश्व स्तरीय आँखों की देखभाल।
3: हमारे सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल में आपको मिलेगी अनुभवी डॉक्टरों आई सर्जनों की विशेषज्ञ टीम, पूर्णतः मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर MICS टॉपिकल फैको तकनीक से कैटरेक्ट मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेजर से ऑपरेशन बिना इंजेक्शन और टांके,
2: रेटिना आंख का पर्दा, ग्लूकोमा, काला मोतियाबिंद का उन्नत इलाज, बच्चों की आंखों का इलाज, हमारे पास सभी इंश्योरेंस और TPA पैनल उपलब्ध हैं। निःशुल्क कैशलेस इलाज का लाभ उठाएं।
3: आज ही हमें सेवा का मौका दें। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भगत सिंह कॉलोनी अलवर बाईपास हरीश बेकरी के पास भिवाड़ी।
2: संपर्क करें 7424830174। आज ही अपनी आँखों का इलाज कराएं और पाएं एक उज्जला भविष्य। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी।
4: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं कैशलेस सर्विस के लिए, कहां मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
5: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहां मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंड मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार एसी वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
4: एकता मोटर्स अलवर बाईपास रोड नियर बाय थड़ा मोड़ भिवाड़ी। फॉर इन्फॉर्मेशन कॉल 9799278900।
6: न्यू गर्ल्ड सुपर स्टोर, जहाँ मिलते हैं ग्रोसरीज, ड्राई फ्रूट्स, कॉस्मेटिक्स आइटम और सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स। बजट की दुकान, MRP की छुट्टी, आपका फायदा हमारा वादा। अब वक्त है MRP को कहें बाय बाय। कॉन्टेक्ट करें 7413099952 पर अलवर बाईपास रोड नियर मार्बल मार्केट भिवाड़ी।
7: राहुल, इंडस्ट्री प्लान तो बढ़िया है पर इस बार अपनी फैक्ट्री के इलेक्ट्रिकल्स पर एक्स्ट्रा फोकस रखना।
8: डोंट वरी सर, इंडस्ट्री का सारा इलेक्ट्रिकल्स खंडेलवाल एजेंसी से आएगा। ये NCR का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस है, जहां हमें पैनल, स्विच गियर, मोटर ड्राइव, इंडस्ट्रियल लाइटनिंग और वायर एंड केबल में 30 से ज्यादा मल्टीनेशनल ब्रांड ऑप्शंस मिल जाएंगे।
9: खंडेलवाल एजेंसीज, NCR का लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस इन भिवाड़ी।
10: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24। आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
11: हाय, हेलो, नमस्ते, स्वागत आप सभी का 90.8 FM 24 पर। मैं हाजिर हो चुकी हूँ लेकर आप सबका पसंदीदा शो प्रज्ञान। मैं लेकर आई हूँ एक अनकही कहानी, आजे पावना की जवानी। तो इस अनकही कहानी में हम बात करेंगे इतिहास के सबसे बड़े जौहर के बारे में, जिसमें एक रानी के साथ हजारों शत्रानियों ने आत्मदाह कर लिया। रानी और हजारों शत्रानियों ने जौहर में कूदकर खुद को आग के गले लगा लिया। आखिर क्यों रानियों ने जौहर किया, क्या कारण था, कौन थी रानी, ये सब बातें मैं आपको बताऊंगी थोड़ी ही देर बाद। फिलहाल शो की शुरुआत करते एक बेहतरीन से म्यूजिकल ट्रैक के साथ। सुनते रहिए 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
1: औद्योगिक क्षेत्र सारे खुद करौली बंदापुर खुशखेड़ा व चौपानकी में 16 औद्योगिक व 2 वेयर हाउस भूखंडों को ई नीलामी के माध्यम से बेचैन किया जा रहा है। इन भूखंडों के लिए अमानत राशि दिनांक 9/10/2026 समय 6 बजे तक जमा कराकर बिड लगा सकते हैं। बिड लगाने की अंतिम तिथि 14/10/2026 समय 5 बजे तक है। इसके साथ ही औद्योगिक क्षेत्र सलारपुर व पथरेड़ी में 43 भूखंडों को प्रत्यक्ष आवंटन योजना के माध्यम से बेचैन किया जा रहा है। इन भूखंडों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 12/10/2026 समय

0: www.rico.in यानी www.rico.co.in पर एवं रिको इकाई कार्यालय भिवाड़ी द्वितीय रिको रेस्ट हाउस रोड भिवाड़ी में संपर्क कर सकते हैं।
1: मैं जयपुर जा रहा हूँ।
2: अच्छा, तो आते हुए जयपुर के मशहूर दूध लड्डू और प्याज कचौरी लेते आना।
1: अरे, दूध लड्डू और प्याज कचौरी के लिए जयपुर जाने का इंतजार क्यों करना, क्योंकि अब आपके शहर भिवाड़ी में अलवर बाईपास पर खुल चुका है कान्हा स्वीट्स।
2: जी हाँ, कान्हा स्वीट्स पर मिलते हैं स्वादिष्ट दूध लड्डू, प्याज कचौरी, समोसे, किसी कलाकंद, रसमलाई, कुल्हड़, रबड़ी और सभी प्रकार की मिठाइयाँ।
1: बिल्कुल, हर मिठाई में स्वाद ऐसा कि एक बार खाएं तो दिल कहे एक और।
2: तो फिर आज मिठास हो जाए कान्हा स्वीट्स के साथ।
1: हाँ, परिवार हो या मेहमान, त्योहार हो या कोई खास खुशी, हर मौके की मिठास कान्हा स्वीट्स के साथ। पता नोट कर लीजिए,
2: शॉप नंबर AG F04, कैपिटल आर्केडिया, अलवर बाईपास इन फ्रंट ऑफ वेदांता फार्म, भिवाड़ी, राजस्थान।
3: मोहाली और गुड़गांव का डेंटल अनुभव अब भिवाड़ी में। आइए वी केयर डेंटल क्लिनिक इम्प्लांट सेंटर, जहां RCT, कैपिंग और डेंटल इम्प्लांट के एक्सपर्ट ट्रीटमेंट के साथ आपको मिलता है डॉक्टर रुकु सिंगला के 16 वर्षों के अनुभव और विशेषज्ञता का भरोसा। आर्मी और कॉर्पोरेट कर्मचारियों के लिए स्पेशल डिस्काउंट। पता, अपोजिट मैकडोनल्ड्स, JMK पेट क्लिनिक के पास, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉल करें 7814399374। वी केयर डेंटल, आपकी मुस्कान हमारा भरोसा।
2: क्या आपकी आँखों की रोशनी से जुड़ी कोई परेशानी है? क्या आप चश्मे से छुटकारा पाना चाहते हैं?
1: तो आइए आधुनिक सुविधाओं से युक्त मिश्री देवी आई हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी आई सेंटर।
2: पिछले 15 वर्षों से नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में भरोसेमंद सेवाएं, अब बहर रोड, नियम राणा और टपूकड़ा भिवाड़ी में।
1: यहाँ उपलब्ध है मोतियाबिंद, फेको, मल्टीफोकल एवं प्रीमियम लेंस, लेसिक लेजर, कॉर्निया, ग्लूकोमा और रेटिना उपचार एवं सर्जरी की आधुनिक सुविधाएं।
2: और अब दोनों आँखों का लेसिक लेजर उपचार आधुनिक तकनीक के साथ आपकी पहुंच में और उचित दरों पर।
1: बेहतर नेत्र उपचार, उचित खर्च और भरोसेमंद देखभाल के साथ चश्मे से आजादी की ओर बढ़ाइए अपना कदम। मिश्री देवी आई हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी आई सेंटर। संपर्क नंबर
2: 9783220043 या 01493294200। अब आपके शहर भिवाड़ी में साइकियाट्री एवं ऑर्थोपेडिक्स की नियमित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है ओजस हॉस्पिटल में।
1: मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितिका अग्रवाल द्वारा डिप्रेशन, नींद की समस्या, बेचैनी, घबराहट, मानसिक तनाव, स्किजोफ्रेनिया और OCD जैसी समस्याओं का उचित उपचार किया जाता है एवं काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध है।
2: वहीं हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेंद्र अग्रवाल द्वारा चोट, ट्रॉमा, फ्रैक्चर, घुटने एवं कमर का दर्द, लिगामेंट की चोट, गठिया और आर्थराइटिस जैसी हड्डी एवं जोड़ संबंधी समस्याओं का उपचार किया जाता है।
1: साथ ही सर्जरी, फिजियोथेरेपी और पेन मैनेजमेंट की सुविधा भी उपलब्ध है।
2: तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या को नजरअंदाज न करें, पहुंचिए ओजस हॉस्पिटल।
1: पता, नगीना गार्डन के पास, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी।
2: फोन करें 9521333591। ओजस हॉस्पिटल, बेहतर स्वास्थ्य की ओर एक कदम। अब आपके शहर धारूहेड़ा में ही मिल रही है आधुनिक और बेहतरीन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सुविधाएं। लोटस हॉस्पिटल, बेस्ट टैक्स सिटी, BPL फ्लैट के सामने धारूहेड़ा में, डॉक्टर अन्विका बंसल, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, 15 वर्ष से अधिक अनुभव के साथ, जो पहले से ही भिवाड़ी में अपनी सेवाएं दे रही थी, अब अपने नए लोटस हॉस्पिटल में OPD और इमरजेंसी सर्विस के लिए उपलब्ध है। इसके साथ ही यहाँ उपलब्ध है अनुभवी हड्डी रोग विशेषज्ञ। यहाँ घुटना बदलना, कुल्हा बदलना और रीढ़ से जुड़ी सभी बीमारी का इलाज होता है, और एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट और लैप्रोस्कोपिक जनरल सर्जन, जहाँ लेजर टेक्निक से बवासीर, भगंदर का इलाज लोटस हॉस्पिटल में मिलता है, तथा 24 घंटे आपातकालीन सुविधा, एडवांस्ड एक्सरे, लैबोरेटरी, फार्मेसी, अल्ट्रासाउंड सर्विस, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, AC प्राइवेट रूम की सुविधाएं उपलब्ध हैं। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आज ही विजिट करें लोटस हॉस्पिटल बैस्टैग सिटी BPL फ्लैट के सामने धारूहेड़ा। संपर्क करें 01274415033।
4: भिवाड़ी का पहला ISO और NABH सर्टिफाइड श्री कृष्णा हॉस्पिटल, जिसमें मल्टी स्पेशलिस्ट OPD, 10 बेड का ICU, सबसे बड़ा मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 50 बेड का इंडोर, 24 आवर्स एम्बुलेंस, फार्मेसी और इमरजेंसी सेवाएं तथा लैब, डिजिटल एक्सरे जैसी सुविधाओं से लैस श्री कृष्णा हॉस्पिटल अधिकांश मल्टीनेशनल कंपनियों के मेडिकल कंसल्टेंसी एवं कैशलेस उपचार का एकमात्र सेंटर। श्री कृष्णा हॉस्पिटल, B14849 भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी, 8529113916 7340001391 6। इस हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट और फिजिशियन की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
5: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
6: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे, किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
5: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
7: आपके हर खास समारोह को शानदार और यादगार बनाने के लिए आइए भाटोटिया टेंट हाउस एंड इवेंट ऑर्गेनाइजर।
1: सभी प्रकार के टेंट आइटम, शानदार डेकोरेशन और इंडोर आउटडोर कैटरिंग की बेहतरीन सुविधा, शादी, सगाई, जन्मदिन या किसी भी समारोह के लिए एक ही जगह पर पूरी व्यवस्था।
7: संपर्क करें हंसराज भाटोटिया, मोबाइल नंबर 9416347214।
1: और आपके खास समारोह के लिए शानदार राजविलास मैरिज एवं बैंक्वेट हॉल, शिवनगर पार्ट 2, पांचाल कॉलोनी, सीथल रोड, धारूहेड़ा, जिला रेवाड़ी, हरियाणा।
7: बाटोटिया टेंट हाउस और राजविलास मैरिज बैंक्वेट हॉल, आपके समारोह की पूरी तैयारी एक ही जगह।
8: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
9: एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है 90.8 FM 24 पर। आप सुन रहे हैं आप सभी का पसंदीदा शो प्रज्ञान आरजे भावना के साथ। तो हम बात कर रहे थे जौहर के बारे में, कौन थी वो रानी जिसने जौहर किया। इतिहास में वैसे तो जौहर की गाथा भरी पड़ी है। ऐसा ही एक जौहर हुआ था आज से तकरीबन 720 साल पहले। यह वो दौर था जब दिल्ली की सल्तनत पर अलाउद्दीन खिलजी का कब्जा था। ऐसा कहा जाता है कि खिलजी ने चित्तौड़गढ़ के किले पर जीत हासिल की तो रानी पद्मनी और हजारों शत्रानियों ने जौहर कुंड में छलांग लगाकर आत्मदाह कर लिया। आज भी चित्तौड़गढ़ के दुर्ग पर वह जौहर कुंड है। इतिहासकारों के मुताबिक सन 1303 में 26 अगस्त की वो तारीख थी जब रानी पद्मनी ने हजारों शत्रानियों के साथ जौहर की आग को गले लगाया था। मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 में पद्मावत में इसका जिक्र किया है। इसके अलावा कई अन्य किताबों में भी रानी पद्मनी के उस जौहर का जिक्र किया है। रानी ने क्यों जौहर किया और रानी कौन थी, किसकी पुत्री थी, किसकी पत्नी थी, ये सब मैं आपको बताऊंगी थोड़ी ही देर बाद। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, सुनते रहिए 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
1: भिवाड़ी का भरोसा वर्षों से आपकी सेवा में। सिटी नर्सिंग होम सदर मार्केट भिवाड़ी, औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी का पहला नर्सिंग होम NABH द्वारा प्रमाणित।
2: यहाँ उपलब्ध हैं 2 आधुनिक ICU, अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, दूरबीन सर्जरी की सुविधा तथा अधिकांश मेडिक्लेम कंपनियों की कैशलेस सुविधा। डायबिटीज के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर कौशल, मनोरोग परामर्श हेतु डॉक्टर कनिष्का तथा मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर रूप सिंह की सेवाएं उपलब्ध। अनुभवी डॉक्टर, आधुनिक सुविधाएं और मरीजों की समर्पित देखभाल।
1: सिटी नर्सिंग होम सदर मार्केट भिवाड़ी, स्वास्थ्य का भरोसा आपके अपने शहर में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सिटी नर्सिंग होम भिवाड़ी।
3: अरे कहाँ जा रही हो?
4: मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए अंशुल ज्वेलर्स।
3: अच्छा, पर अंशुल ज्वेलर्स ही क्यों?
4: अंशुल ज्वेलर्स के पास है सोने, चांदी और हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन, वो भी BIS के 6 अंकों वाले हॉलमार्क HUID के साथ। और तो और, इनकी ज्वेलरी को हम भारत सरकार द्वारा चलाए गए BIS केयर ऐप के वेरीफाई HUID फीचर से आभूषणों की शुद्धता का प्रमाण देख सकते हैं।
3: जी हाँ, खरे आभूषणों की प्रामाणिकता जिसके साथ बढ़ेगी आपकी सुंदरता। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर। हमारा पता, शॉप नंबर 7, गणपति मॉल, समतल मोड, भिवाड़ी, राजस्थान, या मेन बाजार नजदीक हनुमान मंदिर, तावड़ो, हरियाणा। संपर्क करें 9992533611 या फिर 9354898521 पर। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर।
5: कभी भी इमरजेंसी हो या सिर्फ एक छोटी सी चेकअप की जरूरत हो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा और भिवाड़ी में आपका अपना हॉस्पिटल है। 24 घंटे इमरजेंसी, AC प्राइवेट रूम्स, वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर, डिजिटल एक्सरे, क्लिनिकल लैब, TMT, ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी, फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी, स्किन प्रिक एंड ब्लड एलर्जी टेस्ट, एलर्जी का जड़ से इलाज। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं मेडिसिन, सर्जरी, ENT, हेड एंड नेक सर्जरी, ऑब्स एंड गायनी, ऑर्थोपेडिक्स, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कैशलेस फैसिलिटी, सभी TPA के साथ। तो अब टेंशन मत लो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा, प्लॉट नंबर 5, सेक्टर 6 और भिवाड़ी, B83, भगत सिंह कॉलोनी। बस एक कॉल या एक विजिट, नो है 8607274999।
6: भारत अल्ट्रासाउंड एवं डायग्नोस्टिक सेंटर पर अत्याधुनिक MRI, 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 5D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, डिजिटल एक्सरे, DR, TMT, EEG व फुल्ली कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब प्रतिदिन उपलब्ध है।
7: भारत डायग्नोस्टिक्स द्वारा गत 20 वर्षों से MD रेडियोलॉजिस्ट, PGI चंडीगढ़ में प्रशिक्षित अनुभवी डॉक्टर्स द्वारा सभी जांचें की जा रही हैं।
6: भारत डायग्नोस्टिक्स पर 5D अल्ट्रासाउंड मशीन द्वारा लेवल 1 एंड 2, फीटल अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इको कार्डियोग्राफी, लिवर फाइब्रो स्कैन व 3D CT स्कैन मशीन पर एंजियोग्राफी, यूरोग्राफी व एंटेरोग्राफी की जांच भी की जाती है। 1/57-58, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, सेंट्रल मार्केट के पास, भिवाड़ी। कॉल 9351004500।
8: दूसरी ब्रांच A50 भगत सिंह कॉलोनी भिवाड़ी, कॉल 8058304500।
9: श्रीराम इंडस्ट्रीज आर्मर जैन, भारत में मेक इन इंडिया पहल के तहत विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाले उत्पादों के निर्माण में एक भरोसेमंद नाम। यहाँ बनते हैं फायर रेटेड और नॉन फायर रेटेड डोर्स, मोटराइज्ड और मैनुअल गेट्स, जनरल पर्पस डोर्स, एक्सेस डोर्स, डॉक लेवलर, फायर हॉज कैबिनेट्स और आपकी जरूरत के मुताबिक कस्टमाइज्ड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस। BIS, CBRI और NABL सर्टिफाइड वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स उचित कीमत पर। आर्मर जैन आपको देता है वादा गुणवत्ता, सुरक्षा और विश्वास का। संपर्क करें 7014735108। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.armorzain.co.in। आर्मर जैन, जब बात हो गुणवत्ता और भरोसे की।
10: अब भिलवाड़ी के शिवोहम हॉस्पिटल में पाएं एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं। यहां 25 बेड से लेस इंडोर, 6 बेड से लेस ICU, 2 बड़े ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजी लैब तथा अत्याधुनिक एक्सरे मशीनों के द्वारा एक्सरे सुविधा, तकनीकी मशीनों द्वारा जांच, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, एम्बुलेंस, सभी कैशलेस TPA सुविधाओं के साथ, 14 साल से कम आयु की बच्चियों के लिए निःशुल्क परामर्श, गायनेकोलॉजी, इनफर्टिलिटी, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, विशेषज्ञ डॉक्टर नम्रता मेहता चतुर्वेदी व हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हेमंत चतुर्वेदी जैसे अनुभवी डॉक्टर से परामर्श सुविधा, जो कि पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में निरंतर अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। शिवोहम हॉस्पिटल B4 भगत सिंह कॉलोनी पुराने RTO ऑफिस के पास भिवाड़ी। संपर्क 9799996778।
11: भिवाड़ी का पहला ISO और NABH सर्टिफाइड श्री कृष्णा हॉस्पिटल, जिसमें मल्टी स्पेशलिस्ट OPD, 10 बेड का ICU, सबसे बड़ा मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 50 बेड का इंडोर, 24 आवर्स एम्बुलेंस, फार्मेसी और इमरजेंसी सेवाएं तथा लैब, डिजिटल एक्सरे जैसी सुविधाओं से लैस श्री कृष्णा हॉस्पिटल अधिकांश मल्टीनेशनल कंपनियों के मेडिकल कंसल्टेंसी एवं कैशलेस उपचार का एकमात्र सेंटर। श्री कृष्णा हॉस्पिटल B14849 भगत सिंह कॉलोनी भिवाड़ी 8529113916 7340013916। इस हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट और फिजिशियन की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं।
12: क्या आपकी त्वचा, बाल या नाखून की समस्या बार बार परेशान कर रही है?
13: अब सही इलाज के लिए मिलिए डॉक्टर गौरव, एम्स से प्रशिक्षित त्वचा रोग विशेषज्ञ, SS हॉस्पिटल भिवाड़ी में।
12: मुंहासे, पिगमेंटेशन, एलर्जी, हेयर फॉल से लेकर लेजर, केमिकल पील और बोटॉक्स जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध।
13: ECHS RGHS तथा NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल में सभी प्रमुख TPA मान्य।
12: SS हॉस्पिटल भिवाड़ी, भरोसेमंद विशेषज्ञ से देखभाल। समय रोजाना शाम 4:30 to 6:30 तक, गुरुवार अवकाश।
14: पूजा, तुम्हारे फेस पर कितने पिंपल्स और धब्बे हो रहे हैं?
15: हाँ यार, और बाल भी हर दिन झड़ रहे हैं। कई बार दिल्ली गुरुग्राम में भी दिखा चुकी हूँ।
14: अरे पूजा, अब दिल्ली या गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपनी भिवाड़ी में है डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, जहाँ पर स्किन, हेयर एंड नेल्स की सभी बीमारियों का पूर्ण इलाज डॉक्टर सुचेता MD डर्मेटोलॉजी द्वारा किया जाता है, जो भिवाड़ी में अपनी सेवाएं दे रही है। इनके यहाँ लेजर हेयर रिमूवल, माइक्रो नीडलिंग, PRP, RF, अन्य सभी स्किन समस्याओं का समाधान विदेशी मशीनों व नई तकनीकों द्वारा किया जाता है। कॉल करें 6367551007। विजिट डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, A56 फर्स्ट फ्लोर भगत सिंह कॉलोनी बिहाइंड सुखम टावर भिवाड़ी।
16: आपके सारे जरूरतों का बीमा एक ही जगह, विधि एंटरप्राइजेज भिवाड़ी। स्वास्थ्य बीमा, वाहन बीमा, जीवन बीमा, फायर बीमा सब मिलेगा यहाँ। और हाँ, बीमा कराने पर खास ऑफर भी मिलेंगे। संपर्क करें चंद्रभान विधि एंटरप्राइजेस, रिको चौक भिवाड़ी 9887066308।
0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
17: वेलकम बैक टू 90.8 FM 24 और आप सुन रहे हैं आप सबका पसंदीदा शो प्रज्ञान। मैं हूं आपके साथ आरजे भावना। तो आज की इस अनकही कहानी में हम बात कर रहे थे रानी पद्मिनी। कौन थी रानी पद्मिनी? रानी पद्मिनी का मूल नाम रानी पद्मावती था। वह सिंगल द्वीप के राजा की पुत्री थी। राजा रतन सिंह से विवाह के बाद वह चित्तौड़गढ़ की रानी बन गई थी। ऐसा कहा जाता है कि रानी पद्मिनी बेहद ही खूबसूरत थी। ऐसा कहा जाता है कि उसकी खूबसूरती के किस्से सुनकर अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर चढ़ाई की थी ताकि वह रानी पद्मिनी को पा सके। हालांकि इतिहासकारों ने इस तथ्य को लेकर मतभेद भी किया है। इतिहासकार डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के मुताबिक खिलजी के आक्रमण का प्रमुख कारण रानी पद्मिनी नहीं बल्कि चित्तौड़गढ़ का किला था। अलाउद्दीन खिलजी कौन था? वह चित्तौड़गढ़ के किले को क्यों पाना चाहता था? उसका क्या मकसद था? आगे की कहानी मैं आपको बताऊंगी थोड़ी ही देर बाद। फिलहाल वक्त एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। सुनते रहिए 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
1: क्या कर रही है?
2: ऑनलाइन बुकिंग देख रही हूँ, जयपुर जाना है।
1: फिर से? अभी तो गई थी।
2: हाँ, फिर से जाना है।
1: तू अपनी गाड़ी क्यों नहीं ले लेती?
2: गाड़ी नॉट इन बजट।
1: अरे गांधी मोटर्स है ना।
2: गांधी मोटर्स?
1: हाँ गांधी मोटर्स। गांधी मोटर्स कार सेल और परचेज के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर हर तरह की गाड़ियाँ बहुत अच्छी कीमत पे मिलती है।
2: तो कब चले?
1: अरे इसमें सोचना कैसा, अभी चलना। गाड़ियों के सेल और परचेज के लिए आज ही संपर्क करें।
3: हमारा पता है शॉप नंबर S16 एवलॉन रॉयल प्लाजा अलवर बाईपास रोड भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9785980000 या फिर 8740000144 पर।
4: भिवाड़ी में 27 वर्षों से सेवारत, भरोसेमंद 24 घंटे इलाज हेतु गोपीनाथ अस्पताल, ISO तथा NABH मान्यता एवं राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मल्टी स्पेशलिटी सेंट्रल AC OPD, 50 बेड की सुविधा से युक्त गोपीनाथ हॉस्पिटल, अत्याधुनिक 3 ऑपरेशन थिएटर, 7 बेड ICU, 2 जीवन रक्षक एम्बुलेंस, डिजिटल एक्सरे, ऑर्थोपेडिक सर्जन, फिजिशियन तथा लेडी डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा से युक्त गोपीनाथ अस्पताल। यहाँ नेफ्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, डायबिटोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट की नियमित OPD भी उपलब्ध है। लगभग सभी TPA कैशलेस सुविधा के साथ तथा भिवाड़ी की व आसपास की औद्योगिक इकाइयों के बीमा कंपनियां भी पैनल पर हैं। पता 226 इंडस्ट्रियल एरिया, सदर बाजार के पीछे, गोपीनाथ रोड, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 01493619563 एंड 9784333863।
5: क्या आप बिजली के बिल से परेशान हैं? क्या आप जानते हैं सोलर एनर्जी से आप बिजली के बिल से आजादी पा सकते हैं? जी हाँ, अपने घर, ऑफिस और फैक्ट्री की छत पर सोलर पैनल लगाएं और भारी बिजली के बिल से मुक्ति पाएं। सोलर एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको 30% तक रिटर्न देता है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9610255584। ग्रीन रूट्स रिन्यूएबल एनर्जी।
6: आपकी आंखें हैं अनमोल, आपकी आंखों को चाहिए बेहतर देखभाल, तो आइए गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स भिवाड़ी।
7: यहाँ मिलते हैं सभी ब्रांडेड कंपनियों के स्टाइलिश फ्रेम और हाई क्वालिटी लेंस। Ray-Ban, Vogue, टॉमी हिलफिगर, ओकेली, प्रदा, जीस, एसिलोर क्रिजाल, विजन आर एक्स और भी कई नेशनल व इंटरनेशनल ब्रांड्स।
6: साथ ही कॉन्टैक्ट लेंस, लो विजन क्लिनिक, मायोपिया क्लिनिक, विजन थेरेपी और आधुनिक मशीनों द्वारा कंप्यूटरीकृत आई एग्जामिनेशन, प्रशिक्षित ऑप्टोमेट्रिस्ट की पूरी टीम।
7: भिवाड़ी में सन 2006 से भरोसे का नाम गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स।
6: गणपति मॉल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास, समतल चौक, भिवाड़ी, और अशियाना आंगन के सामने, BDI सोसाइटी के पास, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी।
8: अपॉइंटमेंट या जानकारी के लिए अभी कॉल करें 9636061776 या 9928929309।
9: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है, कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है, और इन्हीं श्रृंगार को सवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, एक से एक उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A, आशियाना आंगन प्लाजा, नियर मैकडॉनल्ड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट करें 01493493222 या फिर 9034969731 पर। ऐसे डिजाइन्स जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्स ही आए।
10: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव, कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
11: डॉक्टर अंकित जैन, हड्डी रोग विशेषज्ञ, अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
10: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
12: जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी आँखों का NABH मान्यता प्राप्त सुपर स्पेशलिटी आँखों का हॉस्पिटल आपके शहर भिवाड़ी में। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी आपको प्रदान करता है विश्व स्तरीय आँखों की देखभाल।
13: हमारे सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल में आपको मिलेगी अनुभवी डॉक्टरों आई सर्जनों की विशेषज्ञ टीम, पूर्णतः मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर MICS टॉपिकल फैको तकनीक से कैटरेक्ट मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेजर से ऑपरेशन बिना इंजेक्शन और टांके,
12: रेटिना आँख का पर्दा, ग्लूकोमा, काला मोतियाबिंद का उन्नत इलाज, बच्चों की आँखों का इलाज, हमारे पास सभी इंश्योरेंस और TPA पैनल उपलब्ध हैं। निशुल्क कैशलेस इलाज का लाभ उठाएं।
13: आज ही हमें सेवा का मौका दें। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भगत सिंह कॉलोनी अलवर बाईपास हरीश बेकरी के पास भिवाड़ी।
12: संपर्क करें 7424830174। आज ही अपनी आँखों का इलाज कराएं और पाएं एक उज्जला भविष्य। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी।
14: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं कैशलेस सर्विस के लिए, कहां मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
15: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहां मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंट मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार एसी वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
16: एकता मोटर्स अलवर बाईपास रोड नियर बाय थड़ा मोड़ भिवाड़ी। फॉर इन्फॉर्मेशन कॉल 9799278900।
17: न्यू गर्ल सुपर स्टोर, जहाँ मिलते हैं ग्रोसरीज, ड्राई फ्रूट्स, कॉस्मेटिक्स आइटम और सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स। बजट की दुकान, MRP की छुट्टी, आपका फायदा हमारा वादा। अब वक्त है MRP को कहें बाय बाय। कॉन्टेक्ट करें 7413099952 पर अलवर बाईपास रोड नियर मार्बल मार्केट भिवाड़ी।
18: राहुल, इंडस्ट्री प्लान तो बढ़िया है पर इस बार अपनी फैक्ट्री के इलेक्ट्रिकल्स पर एक्स्ट्रा फोकस रखना।
19: डोंट वरी सर, इंडस्ट्री का सारा इलेक्ट्रिकल्स खंडेलवाल एजेंसी से आएगा। ये NCR का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस है, जहां हमें पैनल, स्विच गियर, मोटर ड्राइव, इंडस्ट्रियल लाइटनिंग और वायर एंड केबल में 30 से ज्यादा मल्टीनेशनल ब्रांड ऑप्शंस मिल जाएंगे।
20: खंडेलवाल एजेंसीज, NCR का लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस इन भिवाड़ी।
0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
21: एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है 90.8 FM 24 पर और आप सुन रहे हैं आप सबका पसंदीदा शो प्रज्ञान आरजे भावना के साथ। तो चित्तौड़गढ़ के किले में ऐसी क्या खास बात थी कि अलाउद्दीन खिलजी उसे पाना चाहता था? तो मैं बता दूं आपको, चित्तौड़गढ़ का जो किला था उसमें व्यापारिक महत्ता बहुत ही अधिक थी। गुजरात, मालवा, मध्य प्रदेश, सिंध आदि सभी के रास्ते चित्तौड़गढ़ से ही होकर निकलते थे। अलाउद्दीन खिलजी कौन था? अलाउद्दीन खिलजी एक मुगल शासक था। चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या हो जाने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली की सल्तनत संभाली। हालांकि उसका शासनकाल चुनौतियों से भरा रहा, क्योंकि हिंदू और राजपूत शासक लगातार विद्रोह करते रहे। ऐसे में खिलजी राजपूत शासकों का दमन करने के लिए चित्तौड़गढ़ का रुख लिया। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि खिलजी ने

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
1: मैं जयपुर जा रहा हूँ।
2: अच्छा, तो आते हुए जयपुर के मशहूर दूध लड्डू और प्याज कचौरी लेते आना।
1: अरे, दूध लड्डू और प्याज कचौरी के लिए जयपुर जाने का इंतजार क्यों करना, क्योंकि अब आपके शहर भिवाड़ी में अलवर बाईपास पर खुल चुका है कान्हा स्वीट्स।
2: जी हाँ, कान्हा स्वीट्स पर मिलते हैं स्वादिष्ट दूध लड्डू, प्याज कचौरी, समोसे, किसी कलाकंद, रसमलाई, कुल्हड़ रबड़ी और सभी प्रकार की मिठाइयाँ।
1: बिल्कुल, हर मिठाई में स्वाद ऐसा कि एक बार खाएं तो दिल कहे एक और।
2: तो फिर आज मिठास हो जाए कान्हा स्वीट्स के साथ।
1: हाँ, परिवार हो या मेहमान, त्योहार हो या कोई खास खुशी, हर मौके की मिठास कान्हा स्वीट्स के साथ। पता नोट कर लीजिए,
2: शॉप नंबर A GF04, कैपिटल आर्केडिया, अलवर बाईपास इन फ्रंट ऑफ वेदांता फार्म, भिवाड़ी, राजस्थान।
3: मोहाली और गुड़गांव का डेंटल अनुभव अब भिवाड़ी में। आइए वी केयर डेंटल क्लिनिक इम्प्लांट सेंटर, जहां RCT, कैपिंग और डेंटल इम्प्लांट के एक्सपर्ट ट्रीटमेंट के साथ आपको मिलता है डॉक्टर रुकु सिंगला के 16 वर्षों के अनुभव और विशेषज्ञता का भरोसा। आर्मी और कॉर्पोरेट कर्मचारियों के लिए स्पेशल डिस्काउंट। पता, अपोजिट मैकडोनल्ड्स, JMK पेट क्लिनिक के पास, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉल करें 7814399374। वी केयर डेंटल, आपकी मुस्कान हमारा भरोसा।
2: क्या आपकी आँखों की रोशनी से जुड़ी कोई परेशानी है? क्या आप चश्मे से छुटकारा पाना चाहते हैं?
1: तो आइए आधुनिक सुविधाओं से युक्त मिश्री देवी आई हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी आई सेंटर।
2: पिछले 15 वर्षों से नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में भरोसेमंद सेवाएं, अब बाहर रोड, नियम राणा और टपुकड़ा भिवाड़ी में।
1: यहाँ उपलब्ध हैं मोतियाबिंद, फेको, मल्टीफोकल एवं प्रीमियम लेंस, लेसिक लेजर, कॉर्निया, ग्लूकोमा और रेटिना उपचार एवं सर्जरी की आधुनिक सुविधाएं।
2: और अब दोनों आँखों का लेसिक लेजर उपचार आधुनिक तकनीक के साथ आपकी पहुंच में और उचित दरों पर।
1: बेहतर नेत्र उपचार, उचित खर्च और भरोसेमंद देखभाल के साथ चश्मे से आजादी की ओर बढ़ाइए अपना कदम। मिश्री देवी आई हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी आई सेंटर। संपर्क नंबर
2: 9783220043 या 014

0: 9400। अब आपके शहर भिवाड़ी में साइकियाट्री एवं ऑर्थोपेडिक्स की नियमित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है ओजस हॉस्पिटल में।
1: मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितिका अग्रवाल द्वारा डिप्रेशन, नींद की समस्या, बेचैनी, घबराहट, मानसिक तनाव, स्किजोफ्रेनिया और ओसीडी जैसी समस्याओं का उचित उपचार किया जाता है एवं काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध है।
0: वहीं हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेंद्र अग्रवाल द्वारा चोट, ट्रॉमा, फ्रैक्चर, घुटने एवं कमर का दर्द, लिगामेंट की चोट, गठिया और आर्थराइटिस जैसी हड्डी एवं जोड़ संबंधी समस्याओं का उपचार किया जाता है।
1: साथ ही सर्जरी, फिजियोथेरेपी और पेन मैनेजमेंट की सुविधा भी उपलब्ध है।
0: तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या को नजरअंदाज न करें, पहुंचिए ओजस हॉस्पिटल,
1: पता नगीना गार्डन के पास, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी।
0: फोन करें 9521333591। ओजस हॉस्पिटल, बेहतर स्वास्थ्य की ओर एक कदम। अब आपके शहर धारूहेड़ा में ही मिल रही है आधुनिक और बेहतरीन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सुविधाएं। लोटस हॉस्पिटल, बेस्ट टैक्स सिटी, BPL फ्लैट के सामने धारूहेड़ा में डॉक्टर अन्विका बंसल, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, 15 वर्ष से अधिक अनुभव के साथ, जो पहले से ही भिवाड़ी में अपनी सेवाएं दे रही थी, अब अपने नए लोटस हॉस्पिटल में OPD और इमरजेंसी सर्विस के लिए उपलब्ध हैं। इसके साथ ही यहां उपलब्ध है अनुभवी हड्डी रोग विशेषज्ञ। यहां घुटना बदलना, कुल्हा बदलना और रीढ़ से जुड़ी सभी बीमारी का इलाज होता है और एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट और लैप्रोस्कोपिक जनरल सर्जन, जहां लेजर टेक्निक से बवासीर, भगंदर का इलाज लोटस हॉस्पिटल में मिलता है, तथा 24 घंटे आपातकालीन सुविधा, एडवांस्ड एक्सरे, लैबोरेटरी, फार्मेसी, अल्ट्रासाउंड सर्विस, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, AC प्राइवेट रूम की सुविधाएं उपलब्ध हैं। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आज ही विजिट करें लोटस हॉस्पिटल, बेस्ट सिटी, BPL फ्लैट के सामने धारूहेड़ा। संपर्क करें 01274415033।
2: भिवाड़ी का पहला ISO और NABH सर्टिफाइड श्री कृष्णा हॉस्पिटल, जिसमें मल्टी स्पेशलिस्ट OPD, 10 बेड का ICU, सबसे बड़ा मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 50 बेड का इंडोर, 24 आवर्स एम्बुलेंस, फार्मेसी और इमरजेंसी सेवाएं, तथा लैब, डिजिटल एक्सरे जैसी सुविधाओं से लैस श्री कृष्णा हॉस्पिटल अधिकांश मल्टीनेशनल कंपनियों के मेडिकल कंसल्टेंसी एवं कैशलेस उपचार का एकमात्र सेंटर। श्री कृष्णा हॉस्पिटल, B14849, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी, 8529113916, 7340001391। इस हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट और फिजिशियन की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
3: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव, कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल, B160, भगत सिंह कॉलोनी, सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
4: डॉक्टर अंकित जैन, हड्डी रोग विशेषज्ञ, अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे, किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
3: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
0: आपके हर खास समारोह को शानदार और यादगार बनाने के लिए आइए भाटोटिया टेंट हाउस एंड इवेंट ऑर्गेनाइजर।
1: सभी प्रकार के टेंट आइटम, शानदार डेकोरेशन और इंडोर आउटडोर कैटरिंग की बेहतरीन सुविधा, शादी, सगाई, जन्मदिन या किसी भी समारोह के लिए एक ही जगह पर पूरी व्यवस्था।
0: संपर्क करें हंस राज भाटोटिया, मोबाइल नंबर 9416347214।
1: और आपके खास समारोह के लिए शानदार राजविलास मैरिज एवं बैंक्वेट हॉल, शिवनगर पार्ट 2, पांचाल कॉलोनी, सीथल रोड, धारूहेड़ा, जिला रेवाड़ी, हरियाणा।
0: बाटोटिया टेंट हाउस और राजविलास मैरिज बैंक्वेट हॉल, आपके समारोह की पूरी तैयारी एक ही जगह।
5: आपनो देश, आपनो रंग, सब मिले आपनो बाजार के संग। जी हाँ, आपनो बाजार आपका कंप्लीट फैमिली स्टोर, जहाँ उत्तम क्वालिटी और वाजिब दामों के साथ आपको मिलता है किराना, ग्रोसरी आइटम, कॉस्मेटिक, हाउसकीपिंग, हाउसहोल्ड आइटम, गिफ्ट आइटम, क्रॉकरी, टॉयज एंड गेम्स। इन सभी आइटम के MRP दामों पर खास छूट। इतना ही नहीं, फ्री होम डिलीवरी की सुविधा भी है। इनके स्टोर अलवर बाईपास, ठड़ा रोड, भिवाड़ी, कृष्ण मॉल, टपुकड़ा, आशियाना विलेज सेंटर। संपर्क करें 9680 7018704 या फिर 7822091287।
6: अरे प्लांट का तो सारा काम हो गया, अब एलईडी लाइट कहाँ से खरीदें?
7: सर क्या आपको नहीं पता है नैप एलईडी लाइटिंग कंपनी इंडस्ट्रियल लाइटिंग जैसे फ्लड लाइट, हाईवे लाइट, स्ट्रीट लाइट आदि के साथ साथ सभी प्रकार की एलईडी लाइट बनाती है, वो भी 2 साल की वारंटी के साथ। और इतना ही नहीं, वो इंडस्ट्रियल लाइटिंग कंसल्टेंट सर्विस भी फ्री देते हैं।
6: अरे वाह, इनसे संपर्क कैसे करें?
7: सर इनका सेल्स ऑफिस एड्रेस JFF 22 कैपिटल हाई स्ट्रीट, फूलबाग चौक, भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए नैप एलईडी लाइटिंग कंपनी से संपर्क करें 7988627064।
8: आपके हर खास समारोह को शानदार और यादगार बनाने के लिए आइए भाटोटिया टेंट हाउस एंड इवेंट ऑर्गेनाइजर।
1: सभी प्रकार के टेंट आइटम, शानदार डेकोरेशन और इंडोर आउटडोर कैटरिंग की बेहतरीन सुविधा, शादी, सगाई, जन्मदिन या किसी भी समारोह के लिए एक ही जगह पर पूरी व्यवस्था।
8: संपर्क करें हंसराज भाटोटिया, मोबाइल नंबर 9416347214।
1: और आपके खास समारोह के लिए शानदार राजविलास मैरिज एवं बैंक्वेट हॉल, शिवनगर पार्ट 2, पांचाल कॉलोनी, सीथल रोड, धारूहेड़ा, जिला रेवाड़ी, हरियाणा।
8: भाटोटिया टेंट हाउस और राजविलास मैरिज बैंक्वेट हॉल, आपके समारोह की पूरी तैयारी एक ही जगह। जब बात आपकी मुस्कान की हो तो समझौता क्यों, अब स्पेशलिस्ट डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं। आइए डेंटल एक्सपर्ट्स भिवाड़ी, भिवाड़ी का इकलौता डेंटल क्लिनिक जहां पूरी टीम MDS स्पेशलिस्ट्स की है और जिन्हें 15 साल से अधिक का अनुभव है। डॉक्टर विनोद यादव MDS ऑर्थोडोंटिस्ट, भिवाड़ी के एकमात्र ब्रेसेस स्पेशलिस्ट एंड इनविसलाइन प्रोवाइडर। इसके अलावा डेंटल इम्प्लांट्स और जटिल दांतों की समस्याओं का आधुनिक उपचार प्रदान करते हैं। साथ ही डॉक्टर ऋतु यादव MDS एंडोडोंटिस्ट, रूट कैनाल, स्माइल डिजाइनिंग और फुल माउथ रिहैबिलिटेशन की विशेषज्ञ। डेंटल एक्सपर्ट्स, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट आशियाना आंगन, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 8824232823। डेंटल एक्सपर्ट्स, आपकी मुस्कान हमारी विशेषज्ञता।
1: भिवाड़ी वासियों, अब हर जरूरत की सर्विस सिर्फ एक ऐप पर। मैसन केयर लेकर आया है आपके लिए भरोसेमंद होम और प्रोफेशनल सर्विसेज।
8: बाथरूम डीप क्लीनिंग, किचन डीप क्लीनिंग, पूरे घर की सफाई, ऑफिस क्लीनिंग, जिम क्लीनिंग, कार क्लीनिंग, पानी की टंकी की सफाई, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ड्राइवर सर्विस, कैब बुकिंग और बहुत सारी अन्य सेवाएं, अब सब कुछ एक ही ऐप पर।
1: अभी मेस एंड केयर ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे अपनी पसंद की सर्विस बुक करें।
8: मेस एंड केयर, आपका घर हमारी जिम्मेदारी। बुकिंग के लिए अभी कॉल या व्हाट्सएप करें 8824106060।
9: फ्यूचर लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहें। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
10: गणेश स्टेशनर्स, बेटर देन द बेस्ट,
9: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा A to Z सामान। इसी के साथ यहां प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
10: गणेश स्टेशनर्स, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड, नियर हरी राम हॉस्पिटल, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।
11: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
12: एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है 90.8 FM 24 पर। आप सुन रहे हैं आप सबका पसंदीदा शो प्रज्ञान। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में बताया था कि किले में रसद की कमी हो गई थी, प्रजा में भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई थी, ऐसे में राजा अपनी प्रजा की रक्षा करने के लिए युद्ध का ऐलान कर दिया। भीषण युद्ध हुआ। राजा रतन सिंह ने बहादुरी से खिलजी का मुकाबला किया, लेकिन उसकी भारी भरकम सेना के आगे राजपूत सेना टिक नहीं सकी। इतिहास के मुताबिक खिलजी किले में दाखिल होता है उससे पहले ही रानी पद्मिनी और हजारों शत्रानियों के साथ ने जौहर कर लिया था। रानी पद्मिनी के साहस और बलिदान की गौरव गाथा इतिहास में अमर हो गई। उसने खुद को खिलजी से बचाने के लिए खुद का आत्मदाह कर लिया। अब वक्त हो चला है आप सबसे विदा लेने का। कल मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक आप सुनते रहिए 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
1: अरे यार, आज शाम पार्टी करें?
2: नहीं यार, आज डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाना था।
1: गुरुग्राम इतनी दूर?
0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
3: 90.8 FM 24 पर आप सुन रहे हैं आरजे सनी के साथ तंदुरुस्ती मौज मस्ती। तो जैसा कि दोस्तों हम इस कार्यक्रम में करते हैं तंदुरुस्ती की बातें मौज मस्ती के साथ, और रोजाना हम किसी न किसी डॉक्टर से जुड़ते हैं और उनसे जानते हैं सेहत के राज। और मेडिकल संबंधी समस्याएं हमारी जिंदगी में होती हैं या फिर हमारी सेहत अच्छी नहीं होती है तो हमें चाहिए होती है डॉक्टर्स की सही राय और सही सलाह, तो वो हम आपको देते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। तो जैसा कि दोस्तों आज हमारे साथ नेत्र सर्जन डॉक्टर गौरव जी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर गौरव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है 90.8 FM 24 के कार्यक्रम तंदुरुस्ती मौज मस्ती में।
4: नमस्कार
3: डॉक्टर साहब, हम अपने श्रोताओं को बता दें कि आज हम अपनी इस बेशकीमती आंखों पर बहुत सारी जानकारी आपसे लेने वाले हैं। अक्सर नेत्रदान के बारे में हम सुनते हैं आस पड़ोस में, लेकिन बहुत कम लोगों को जानकारी होती है कि नेत्रदान किस प्रकार से किया जा सकता है, और आपसे बहुत सारी जानकारी लेंगे और इस विषय पर प्रकाश डालेंगे। तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूंगा कि नेत्रदान ये क्या है, इसका महत्व आप हमें समझाएं। वैसे तो नेत्रदान मेरे ख्याल से मरने के बाद ही हम अपनी आंखों को दान कर सकते हैं, तो जानना चाहेंगे कि पूरी प्रक्रिया कैसे होती है और कैसे हम कर सकते हैं, इसके लिए हमें क्या करना होता है?
4: पहले मैं थोड़ा बताना चाहूंगा कि किसको जरूरत है नेत्रदान की।
3: जी,
4: ये जो हमारे सामने आंख में काली वाली पुतली दिखाई देती है
3: जी,
4: अगर इसमें कोई चोट लग जाए, जल जाए या कोई केमिकल गिरने से सफेद हो जाती है कई बार
3: जी,
4: उसकी वजह से दिखाई देना कम हो जाता है या बिल्कुल दिखना बंद हो जाता है
3: जी।
4: तो इस पोर्शन को, इस पार्ट को जो कॉर्निया कहलाता है या पुतली, इसको बदलने की प्रक्रिया को आई ट्रांसप्लांटेशन बोला जाता है
3: जी।
4: सिर्फ इसी पार्ट को डोनेट किया जाता है तो यही पार्ट जो है दूसरे शरीर में लगाया जा सकता है
3: जी।
4: और जो देने वाले हैं, डोनर हैं, वो कोई भी व्यक्ति डोनेट कर सकता है, लेकिन ये मृत्यु के बाद में ही डोनेट कर सकते हैं, जीवित रहते डोनेशन नहीं किया जाता है। आज भारत में लगभग 11 लाख लोग कॉर्निया की ओपेसिटी से पीड़ित हैं, काली वाली पुतली के सफेद होने से
3: जी,
4: और लगभग 25,000 लोग हर साल इनमें और जुड़ जाते हैं। कॉर्निया की बहुत कमी है, जागरूकता की बहुत आवश्यकता है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोशनी दे सकें
3: जी। डॉक्टर साहब, जैसे कि चिकित्सा इतनी आगे बढ़ गई है, हम नई नई तकनीकें जान चुके हैं, मेडिकल फील्ड में नई नई तकनीकें आती रहती हैं और दिन पर दिन डॉक्टर्स भी रिसर्च कर रहे हैं, नई नई तकनीकें आ रही हैं, तो हम देखते हैं अपने आस पड़ोस में कुछ बच्चे पैदा होते हैं जिनकी आंखें प्रॉपर तरीके से नहीं बनी होती हैं या आंखों में रोशनी नहीं होती है, तो उस मामले में हम क्या कर सकते हैं? क्या उन बच्चों की आंखों में हम रोशनी उन्हें दे सकते हैं? क्या उन्हें ऐसे योग्य बना सकते हैं कि वो इस दुनिया को देख सकें?
4: जी देखिए, कई बार जो इस तरह की आंख की बीमारियां होती हैं
3: जी,
4: वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जब बच्चा होने वाला होता है, माँ के पेट में होता है, उस समय सही जांचें ना होना, कई बार कुछ इन्फेक्शन हो जाना, शरीर में कुछ पोषक पदार्थों की कमी हो जाना, उसकी वजह से भी बच्चे को दिखाई देने में दिक्कत आती है। तो एक तो गर्भवती महिला को समय समय पर जाकर अपना चेकअप कराना चाहिए और जो डॉक्टर सलाह दे रहा है उन सलाहों को मानना चाहिए, ताकि जो बचपन से जन्म से ही होने वाली कुछ बीमारियां हैं उनको हम रोक सकें। अब अगर वो बीमारी हो जाती है, जैसे दिखाई देना कम हो रहा है कॉर्निया की वजह से जो हमने अभी बताया, तो कॉर्नियल ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, उससे हम ठीक कर सकते हैं। अगर बच्चे को कैटरेक्ट हो गया है तो कैटरेक्ट का ऑपरेशन करके उसको ठीक किया जा सकता है सही समय पर
3: जी।
4: लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जैसे रेटिना खराब हो गया या उसकी नस खराब हो गई, तो उन बीमारियों का इलाज अभी बहुत अच्छा संभव नहीं हो पाया। हालांकि कई पर्दे की बीमारियों के भी इलाज अभी संभव है, जिनको समय रहते अगर डॉक्टर से सलाह ली जाए और उनको सही समय पर इलाज किया जाए तो उनका इलाज संभव है।
3: जी, तो डॉक्टर साहब बढ़ेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक की ओर और श्रोताओं को गाना सुनवाएंगे। वापस लौटेंगे कुछ ही देर बाद, तो आपसे कुछ और जानकारी लेंगे नेत्रदान से संबंधित इस विषय पर, और ये भी जानेंगे कि क्या ऐसी भी कोई तकनीक आई है कि जब बच्चा पैदा होता है जिसकी आंखों में रोशनी ना हो, और यदि कोई प्रॉब्लम हो जाती, कई बार बच्चे खेल खेल में एक दूसरे की आंख में पेंसिल या कोई नुकीली चीज चुभो देते हैं जिसकी वजह से आंखों की रोशनी तक के जाने का खतरा रहता है, तो ऐसी कोई एक्सीडेंट जब हो जाता है तो उसमें डॉक्टर्स क्या कर सकते हैं, हमारी चिकित्सा कितनी बेहतर हुई है, वो आपसे जानेंगे। लेकिन अभी बढ़ते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक की ओर। सुनते रहेगा 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
1: एडवर्टिजमेंट के लिए संपर्क करें 9783001786 पे या फिर 8432665588 पे।
0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
2: एक बार पुनः आप सबका स्वागत है 90.8 FM 24 पर और आप इस वक्त सुन रहे हैं आरजे सनी के साथ तंदुरुस्ती मौज मस्ती। तो जैसे कि दोस्तों इस कार्यक्रम का नाम है तंदुरुस्ती मौज मस्ती, तंदुरुस्ती की बातें मौज मस्ती के साथ। तो दोस्तों मौज मस्ती में भी कई बार ऐसे हादसे हो जाते हैं, कई बार ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसकी वजह से हमें काफी नुकसान होता है। तो डॉक्टर साहब मैं ये आपसे जानना चाहूंगा, कई बार ऐसा सुनने में आया है कि बच्चे एक दूसरे को नुकीली चीजें चुभो देते हैं आंख में, तो ऐसा करने से आंखों को क्या नुकसान पहुंच सकता है और क्या गंभीर स्थिति पैदा हो सकती है?
3: हाँ जी, ये बच्चों के साथ में समस्या है। कई बार बच्चे एक दूसरे को पेंसिल या पेन फेंक देते हैं
2: जी,
3: तो वो एक्सीडेंटली आंख में लग जाता है
2: जी।
3: या जैसे तीर कमान से खेलते हैं, तलवार से खेलते हैं तो आंख में लग जाती है। कई बार हमारे पास पेशेंट इस तरह से आते हैं कि पेंसिल आंख में लग गई, तीर लग गया या बच्चों के खेल खेल में तलवार लग गई। तो इसमें पेरेंट्स को, टीचर्स को, बच्चों को अवेयर करने की जरूरत है कि जब भी किसी को पेन पेंसिल दें, फेंक कर ना दें, ठीक है? देते समय जो उसका पॉइंटेड पार्ट है वो अपनी तरफ रखें, दूसरा वाली पार्ट की तरफ को करके हमेशा दूसरे को देना चाहिए नुकीली चीज। तीर कमान वगैरह से खेलते समय या तलवार वगैरह से खेलते समय थोड़ा सा बच्चों को ध्यान रखना चाहिए कि वो एक दूसरे पर उससे चोट ना पहुंचा सकें। इसके अलावा कई बार बच्चे कुछ केमिकल आंख में एक्सीडेंटली डाल लेते हैं, फेविक्विक डाल दिया या कोई घर में केमिकल रखा है, टॉयलेट क्लीनर है या कुछ है, तो इस तरह की चीजें डाल लेते हैं। तो जैसे चोट लगती है अगर तीर कमान वगैरह से, इस समय तो जितना जल्दी हो सके डॉक्टर को जाकर दिखाएं कि वो कितनी गंभीर चोट है, उसी के अनुसार डॉक्टर का इलाज करेगा। अगर कोई केमिकल आंख में गिर जाता है तो सबसे पहले काम उसकी माँ या स्कूल में अगर बच्चा है तो टीचर को करना चाहिए कि वो सबसे पहले उसको वॉश करें अच्छे से, लगभग 20 से 30 मिनट तक वॉश करें, उसके बाद डॉक्टर के पास लेकर जाएं। तो सबसे ज्यादा फायदा जो होगा तुरंत वॉश का होता है अगर कोई केमिकल आंख में गिरता है। उसके बाद में फिर डॉक्टर की भूमिका उसमें आती है।
2: तो कहने का मतलब यह है कि अगर कोई आंख में केमिकल चला जाता है तो आप तुरंत आंख को वॉश कर लें एक साफ पानी से। जी। और डॉक्टर साहब जैसे कि कई बार होता है कि कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो आंख पर कोई चोट आ जाती है, तो आंख पर धक्का लगने से आंख में सूजन आ गई या फिर चारों तरफ एक ब्लैक सर्कल बन गया, तो उस समय क्या करना चाहिए?
3: उस समय अगर मान लो चोट लगी है तो थोड़ा सा प्रेशर दे के रखें ताकि ब्लीडिंग ज्यादा ना हो। अगर अंदरूनी ब्लीडिंग हो रही है वो ब्लीडिंग रुक जाए
2: जी,
3: और जितना जल्दी हो सके जाके डॉक्टर को दिखाएं ताकि समय रहते सही इलाज उसका हो पाए। ये इसमें इलाज डिपेंड करता है कि उसको चोट कहाँ पे लगी है
2: जी,
3: क्योंकि आंख के भी कई सारे पार्ट होते हैं, एंटीरियर सेगमेंट में, पोस्टीरियर सेगमेंट में, तो उसी के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट होता है। तो सही समय पर दिखाएं और सही इलाज करें
2: जी। तो डॉक्टर साहब बढ़ेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक की ओर और वापस लौटेंगे तो आपसे जानेंगे। अभी हम कुछ ही समय पहले नेत्रदान के विषय पर चर्चा कर रहे थे, नेत्रदान कौन कर सकता है, नेत्रदान करने के लिए क्या कोई दस्तावेज वगैरह भी हैं जो भरने होते हैं और कहां संपर्क करना है, किस तरह से नेत्रदान किया जा सकता है, तो वो सब बातें आपसे जानेंगे। लेकिन बढ़ते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक की ओर। श्रोताओं सुनते रहेगा 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
1: एडवर्टिजमेंट के लिए संपर्क करें 9783001786 पे या फिर 8432665588 पे।
2: आपनो देश आपनो रंग सब मिले आपनो बाजार के संग। जी हाँ, आपनो बाजार आपका कंप्लीट फैमिली स्टोर जहाँ उत्तम क्वालिटी और वाजिब दामों के साथ आपको मिलता है किराना ग्रोसरी आइटम, कॉस्मेटिक, हाउसकीपिंग, हाउसहोल्ड आइटम, गिफ्ट आइटम, क्रॉकरी, टॉयज एंड गेम्स। इन सभी आइटम के MRP दामों पर खास छूट। इतना ही नहीं, फ्री होम डिलीवरी की सुविधा भी है। इनके स्टोर अलवर बाईपास, थड़ा रोड, भिवाड़ी, कृष्ण मॉल, टपुकड़ा, आशियाना विलेज सेंटर। संपर्क करें 9680870184 या फिर 7822091287।
3: अरे, प्लांट का तो सारा काम हो गया, अब LED लाइट कहाँ से खरीदें?
4: सर, क्या आपको नहीं पता है नैप LED लाइटिंग कंपनी इंडस्ट्रियल लाइटिंग जैसे फ्लड लाइट, हाईवे लाइट, स्ट्रीट लाइट आदि के साथ साथ सभी प्रकार की LED लाइट बनाती है, वो भी 2 साल की वारंटी के साथ। और इतना ही नहीं, वो इंडस्ट्रियल लाइटिंग कंसल्टेंट सर्विस भी फ्री देते हैं।
3: अरे वाह, इनसे संपर्क कैसे करें?
4: सर, इनका सेल्स ऑफिस एड्रेस JFF 22 कैपिटल हाई स्ट्रीट, फूलबाग चौक, भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए नैप LED लाइटिंग कंपनी से संपर्क करें 7988627064।
5: आपके हर खास समारोह को शानदार और यादगार बनाने के लिए आइए भाटोटिया टेंट हाउस एंड इवेंट ऑर्गेनाइजर।
6: सभी प्रकार के टेंट आइटम, शानदार डेकोरेशन और इंडोर आउटडोर कैटरिंग की बेहतरीन सुविधा। शादी, सगाई, जन्मदिन या किसी भी समारोह के लिए एक ही जगह पर पूरी व्यवस्था।
5: संपर्क करें हंस राज भाटोटिया, मोबाइल नंबर 9416347214।
6: और आपके खास समारोह के लिए शानदार राजविलास मैरिज एवं बैंक्वेट हॉल, शिवनगर पार्ट 2, पांचाल कॉलोनी, सीथल रोड, धारूहेड़ा, जिला रेवाड़ी, हरियाणा।
5: भाटोटिया टेंट हाउस और राजविलास मैरिज बैंक्वेट हॉल, आपके समारोह की पूरी तैयारी एक ही जगह। जब बात आपकी मुस्कान की हो तो समझौता क्यों, अब स्पेशलिस्ट डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं। आइए डेंटल एक्सपर्ट्स भिवाड़ी, भिवाड़ी का इकलौता डेंटल क्लिनिक जहां पूरी टीम MDS स्पेशलिस्ट्स की है और जिन्हें 15 साल से अधिक का अनुभव है। डॉक्टर विनोद यादव MDS ऑर्थोडोंटिस्ट, भिवाड़ी के एकमात्र ब्रेसेस स्पेशलिस्ट एंड इनविसलाइन प्रोवाइडर। इसके अलावा डेंटल इम्प्लांट्स और जटिल दांतों की समस्याओं का आधुनिक उपचार प्रदान करते हैं। साथ ही डॉक्टर ऋतु यादव MDS एंडोडोंटिस्ट, रूट कैनाल, स्माइल डिजाइनिंग और फुल माउथ रिहेबिलिटेशन की विशेषज्ञ। डेंटल एक्सपर्ट्स, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट आशियाना आंगन, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 8824232823। डेंटल एक्सपर्ट्स, आपकी मुस्कान हमारी विशेषज्ञता।
6: भिवाड़ी वासियों, अब हर जरूरत की सर्विस सिर्फ एक ऐप पर। मैसन केयर लेकर आया है आपके लिए भरोसेमंद होम और प्रोफेशनल सर्विसेज।
5: बाथरूम डीप क्लीनिंग, किचन डीप क्लीनिंग, पूरे घर की सफाई, ऑफिस क्लीनिंग, जिम क्लीनिंग, कार क्लीनिंग, पानी की टंकी की सफाई, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ड्राइवर सर्विस, कैब बुकिंग और बहुत सारी अन्य सेवाएं, अब सब कुछ एक ही ऐप पर।
6: अभी मेस एन केयर ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे अपनी पसंद की सर्विस बुक करें।
5: मेस एन केयर, आपका घर हमारी जिम्मेदारी। बुकिंग के लिए अभी कॉल या व्हाट्सएप करें 8824106060।
7: फ्यूचर लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहें। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
1: गणेश स्टेशनर, बेटर देन द बेस्ट,
7: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा A to Z सामान। इसी के साथ यहां प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
1: गणेश स्टेशनर, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड, नियर हरी राम हॉस्पिटल, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।
0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
8: एक बार फिर से दोस्तों स्वागत है आपका 90.8 FM 24 के प्रोग्राम तंदुरुस्ती मौज मस्ती में, जिसे आप सुन रहे हैं इस समय RJ सनी के साथ। और जैसे कि दोस्तों इस प्रोग्राम में आज हमारे साथ नेत्र सर्जन डॉक्टर गौरव जी जुड़े हुए हैं। तो डॉक्टर गौरव जी, कई बार होता है कि हम बहुत सारे प्रोसीजर से अनजान होते हैं, क्या नेत्रदान के लिए कोई दस्तावेज वगैरह भी होते हैं जो फिल करने होते हैं?
9: देखिए, नेत्रदान जो होता है वो मृत्यु के बाद होता है
8: जी,
9: और मृत्यु के बाद में जो मृत शरीर है उस पे उसके परिवार जनों का हक होता है
8: जी।
9: तो अगर उसके परिवारजन चाहते हैं कि नेत्रदान किया जाए
8: जी,
9: तो समय रहते अगर कोई भी व्यक्ति को लगता है कि मेरी मृत्यु समीप है या कोई भी है जागरूक किसी के साथ में भी इस तरह की दुर्घटना या कुछ भी हो सकता है, तो वो अपने परिवार वालों को बता के रखे कि मैं अपनी मृत्यु के बाद अपना शरीर दान करना चाहता हूँ या अपना नेत्र दान करना चाहता हूँ। और जो निकटतम आई बैंक है वहां से संपर्क रखें, वहां पे एक फॉर्म आता है सिंपल एक पेज का, उसको भर के वहां पे जमा कर सकते हैं। और यदि किसी ने फॉर्म नहीं भी जमा किया है तो भी वो नेत्रदान कर सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फॉर्म जमा कर रहा है मृत व्यक्ति ने तभी वो नेत्रदान कर सकता है। अगर उसके परिवारजन चाहते हैं कि नेत्रदान किया जाए हमारे संबंधी का, तो वो कर सकते हैं बिना किसी फॉर्म के भी। बस ये पता होना चाहिए कि हमारे पास निकटतम कौन सी आई बैंक है और उसका फोन नंबर होना चाहिए, और 4-5 घंटे के अंदर अंदर उनको इन्फॉर्म कर दें ताकि वो समय से आके 6-7 घंटे या 8 घंटे के अंदर अंदर, वो डिपेंड करता है कई बार गर्मियां हैं या सर्दियों का दिन है, उस आंख को नेत्रदान करा के वो अपने साथ ले जाए प्रोक्योर करके और उसको प्रिजर्व कर सके ताकि सही व्यक्ति को उसको समय रहते लगाया जा सके। 8 घंटे के बाद थोड़ा सा आई खराब होने की चांस रहती है, और इसमें अगर कोई दान करना चाहते हैं नेत्र तो अच्छा रहता है कि इसका जो हेड एंड है सिर वाला हिस्सा उसको ग्लो लगा के थोड़ा उठा दें और आंख पे थोड़ा सा गीला रुई रख दें, इससे कॉर्निया ज्यादा समय तक सही सलामत रहती है और आई बैंक वाले आके उसको निकाल के ले जा सकते हैं।
8: डॉक्टर साहब,
9: डर रहता है कि कहीं कोई हमारे मृत व्यक्ति जो हमारे संबंधी है उसका चेहरा खराब हो जाएगा, इसमें किसी तरह का डिसफिगरमेंट नहीं होता, चेहरा विकृत नहीं होता
8: जी,
9: उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं होती
8: जी। डॉक्टर साहब, क्या जब आंख डोनेट करना होता है या मृत व्यक्ति की आंख डोनेट करी जाती है तो क्या बॉडी को भी भेजना पड़ता है, घर से ले जाते हैं बॉडी?
9: वो लोग आई बैंक से खुद आते हैं और घर पर ही आकर आई को ले जाते हैं।
8: लगभग कितना वक्त लगता है इस पूरी प्रक्रिया में?
9: 15-20 मिनट का समय लगता है
8: जी। तो बहुत अच्छी बात और बहुत अच्छी जानकारी दी आपने डॉक्टर साहब। बढ़ेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक की ओर और वापस लौटेंगे तो आपसे जानेंगे कि कुछ लोगों की ये भी भ्रांति होती है कि नेत्रदान जीते जी किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति किसी अपने प्रिय को अपनी दोनों आंखों में से एक आंख को डोनेट करना चाहे तो क्या वो कर सकता है, ये आपसे जानेंगे। लेकिन अभी बढ़ते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक की ओर। सुनते रहेगा 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
1: एडवर्टिजमेंट के लिए संपर्क करें 9783001786 पे या फिर 8432665588 पे।
0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
2: एक बार फिर से दोस्तों आप सबका स्वागत है 90.8 FM 24 पर और आप इस समय सुन रहे हैं आरजे सनी के साथ तंदुरुस्ती मौज मस्ती। तो जैसे कि दोस्तों आज हम नेत्रदान के विषय पर चर्चा कर रहे हैं और वैसे भी दान के बारे में एक बड़ी अच्छी बात है कि दान जो होता है ना वो महापुण्य होता है। नेत्रदान महादान में गिना जाता है क्योंकि मरने के बाद आपकी नजरों से कोई दूसरा इस दुनिया को देखेगा और उसके इस जीवन में रोशनी भरेगी, तो ये एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है। डॉक्टर साहब, जैसे कि म्यूजिकल ब्रेक से बढ़ने से पहले मैंने आपसे पूछा था कि क्या ऐसा हो सकता है कि हम अपने प्रिय को, यानी हमारा कोई प्रिय हो, रिलेटिव हो, रिश्तेदार हो या फिर अपरिचित इंसान को भी क्या कोई व्यक्ति अपने जीते जी अपनी दोनों आंख में से एक आंख दान कर सकता है?
3: नहीं, जीते जी नेत्रदान की कानूनी व्यवस्था नहीं है
2: जी।
3: अपने भारत में तो आप
2: जी।
3: जीते जी नेत्रदान नहीं कर सकते। मृत्यु के बाद आप अगर नेत्रदान करते हैं
2: जी।
3: तो आप दो लोगों को रोशनी देते हैं
2: जी।
3: आपकी दो आंखें दो अलग अलग लोगों को लगेंगी और आपकी आंखें आपकी मृत्यु के बाद में भी इस दुनिया को देख सकेंगी दो लोगों के माध्यम से। तो ये बहुत ही अच्छा चीज है, जैसे कि आपने बताया नेत्रदान महादान, ये बहुत ही अच्छा दान है जिससे आप दो लोगों को रोशनी दे पाएंगे।
2: डॉक्टर साहब, यदि किसी व्यक्ति ने अपने रहते हुए एक फॉर्म फिल करके नेत्र डोनेट किया हुआ है, उसके बाद रिश्तेदारों को यदि उसने नहीं बताया है, तो ये पूरी प्रक्रिया कैसे संभव होगी? क्योंकि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने नेत्रदान कर दिया, उसने फॉर्म वगैरह दस्तावेज वगैरह भर दिए अपने जीते जी और उसके बाद उसकी डेथ हो गई, तो अब जिसको कांटेक्ट करना है, जिन डॉक्टर्स को, आई बैंक को, तो उसे कैसे पता चलेगा कि ये व्यक्ति मर गया है या उसकी डेथ हो गई है?
3: निकट संबंधी ही अगर इस चीज को बताएगा तभी उनको मालूम पड़ेगा, और कोई व्यवस्था तो है नहीं ना। तो इसमें निकट संबंधी को ही बता के रखना होता है कि भी मेरी मृत्यु के बाद मेरे शरीर को या मेरी आंखों को यहाँ पे दान किया जाए, तभी ये संभव हो पाएगा, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है
2: जी। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि इसमें ज्यादातर भागीदारी होती है जो मृत इंसान है उसके सगे संबंधियों की, निकट संबंधियों की, कि वो इन्फॉर्म करें आई बैंक में और वो सूचित करें वहां पर कि व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। और अगर उन्होंने पहले से डोनेशन का फॉर्म भर रखा होगा आई डोनेट करने का, तो वो आंखें उनकी डोनेट की जा सकती हैं। अगर नहीं भी भर रखा होगा तो भी डोनेट कर सकते हैं ना
3: डॉक्टर? की जा सकती हैं
2: जी। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि दोनों ही तरह से डोनेट हो सकती हैं आंखें, डॉक्टर साहब आपसे कुछ और बातें जानेंगे इस विषय में, लेकिन अभी बढ़ते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक की ओर। सुनते रहेगा 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
1: एडवर्टिजमेंट के लिए संपर्क करें 9783001786 पे या फिर 8432665588 पे।
0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
2: एक बार पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत है 90.8 FM 24 के कार्यक्रम तंदुरुस्ती मौज मस्ती में, जिसे आप सुन रहे हैं आज आरजे सनी के साथ रोजाना की तरह। और जैसा कि हमारे साथ नेत्र सर्जन डॉक्टर गौरव जी जुड़े हुए हैं, तो डॉक्टर साहब कई बार खेल खेल में आंखों पर काफी चोट पहुंचती है। हमने आपसे कुछ ही देर पहले नेत्रदान के विषय पर बात की और आंखों से संबंधित बहुत सारी बातें हैं जो शायद लोगों को नहीं पता होंगी। लोगों के अंदर तमाम तरीके की भ्रांतियां हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आंखों को साफ रखने के लिए गुलाब के फूल को आप मीस करके उसका रस जो है आप आंखों पे डालें तो आंखें हेल्दी रहती हैं। तो इन सब भ्रांतियों के बारे में आपका क्या कहना है डॉक्टर साहब?
3: हाँ, जैसे देखा गया है कुछ लोग गुलाब जल का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग शहद का इस्तेमाल करते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनका, कुछ लोग प्याज के रस का इस्तेमाल करते हैं, कई सारी चीजें हैं। आयुर्वेद में इनका क्या रोल है वो तो कोई आयुर्वेदिक चिकित्सक ही अच्छे से बता पाएगा, लेकिन कई बार जैसे ये जो चीजें आती हैं हमारे खाने के लिए, चाहे प्याज है, चाहे आपका शहद है या गुलाब जल है, ये मेडिकल यूज के लिए नहीं होते हैं। अगर आप उनसे देखेंगे तो वो लिखा होगा वो या तो फ्लेवर के लिए या खाने के लिए है, वो मेडिकल यूज के लिए नहीं है, वो स्ट्रायल नहीं है
2: जी।
3: तो कई बार उसमें क्या होता है, जैसे शहद है तो शहद में काफी सारे पोलन ग्रेन्स हो सकते हैं या उसमें कुछ फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, जो खाने पे तो हमें ज्यादा नुकसान नहीं करता, ठीक है, अगर हम आंख में डालेंगे तो हमें इन्फेक्शन हो सकता है
2: जी।
3: कुछ लोग प्याज का रस आंख में डालने के लिए यहाँ की सफाई हो जाएगी उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। और प्याज का रस हिंदुस्तान में एक काफी बड़ा कारण है कॉर्नियल ओपेसिटी का, क्योंकि कई लोगों की आंख में थोड़ा सा रेडनेस भी, उनको पता ही नहीं है कि वहां पे आंख में छोटा सा जख्म है, तो वो प्याज का रस डाल लेते हैं। प्याज में कई बार फंगल इन्फेक्शन होते हैं, आप कभी प्याज को अगर छीलेंगे तो वहां पे ब्लैक कलर के पाउडर से दिखाई देता है, ये फंगल इन्फेक्शन होता है। कई बार इसके स्पोर्ट्स वहां पे जाके वो इन्फेक्शन कर देते हैं और आंख की रोशनी जाने का डर बना रहता है। तो इस तरह की चीजें बिना डॉक्टर की सलाह के इस्तेमाल ना करें। अगर आप आयुर्वेदिक प्रिपरेशन लेते हैं तो किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह से, जो मेडिकल लेवल का गुलाब जल है या शहद है या इनका कोई मिक्सचर इस्तेमाल वो बनाते हैं तो वो इस्तेमाल करना चाहिए, अपनी मर्जी से ऐसे ही ना इस्तेमाल करें
2: जी। डॉक्टर साहब, जैसे कि कहने का मतलब ये है कि बहुत

जो चीजें हम आंखों में डालने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि गुलाब जल हो गया, प्याज का रस हो गया, ये हमें डायरेक्टली नहीं डालना चाहिए, किसी डॉक्टर से संपर्क कर लें, उसकी राय ले लें। और कई बार होता यह है कि वो फ्लेवर होते हैं और खाने के लिए या फिर चेहरे पर लगाने के लिए, और हम उसका इस्तेमाल आंखों में डालने के लिए कर लेते हैं, तो ये सही नहीं है। और कई बार जो कंपनी से जो चीजें बन करके आती हैं, तो उन्होंने किसी अदर यूज के लिए वो चीजें दी हैं और आप उसे किसी दूसरे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो आपको नुकसान भी कर सकता है। डॉक्टर साहब, बढ़ेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक की ओर और वापस लौटेंगे तो कुछ और भ्रांतियों पर आपसे जानकारी लेंगे और जानेंगे आपसे इसी विषय में आंखों से संबंधित जो भी बातें होंगी, आपसे उन पर जानकारी लेंगे। अभी बढ़ते हैं एक बहुत ही अच्छे गाने के लिए। श्रोताओं, सुनते रहिएगा 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
1: एडवर्टिजमेंट के लिए संपर्क करें 9783001786 पे या फिर 8432665588 पे।
0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
2: एक बार फिर से दोस्तों स्वागत है आपका 90.8 FM 24 पर और आप इस वक्त सुन रहे हैं आरजे सनी के साथ तंदुरुस्ती मौज मस्ती। तो जैसा कि आज हमारे साथ नेत्र सर्जन डॉक्टर गौरव जी जुड़े हुए हैं और हम बात कर रहे हैं बहुत सारी भ्रांतियों पर जो हमारे आसपास के लोग ही हमें बताते हैं कि भाई हमें आंखों को स्वस्थ रखने के लिए ये करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने नेत्रदान से संबंधित जो बातें हैं उन पर कितनी सारी जानकारी दी आपको। और डॉक्टर साहब अब एक और बहुत बड़ी और तगड़ी भ्रांति है लोगों की। कई बार लोगों का ये कहना है और कई बार लोग ज्यादातर जो है किसी भी बात को जानने के लिए इंटरनेट का सहारा लेते हैं और उसमें जो बातें लिखी होती हैं उसको वो करने लग जाते हैं। तो कई बार लोग ये भी कहते हैं कि जो लार होती है मुंह की, तो उस लार को आंख में लगाने से, अगर आंख पे आप हल्का सा लगाते हैं उंगलियों से, तो आंख को काफी फायदा मिलता है और उसमें कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं लार में जो आंख के लिए काफी फायदेमंद होते हैं। तो ऐसा संभव है?
3: इस्तेमाल आंख में नहीं करना चाहिए
2: जी।
3: कुछ लोग आंख में फॉरेन बॉडी गिर जाने पर जीभ करवाते हैं, जीभ से निकाल दो, ये भी गलत तरीका है। जीभ वगैरह नहीं करवानी चाहिए क्योंकि हमारे मुंह में बहुत सारे बैक्टीरिया वगैरह होते हैं
2: जी।
3: अगर हम आंख में लार का इस्तेमाल करेंगे या जीभ करवाते हैं, जीभ से फॉरमोडी को निकलवाने की कोशिश करते हैं, तो इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं
2: जी।
3: और ये कई बार बहुत खतरनाक होते हैं, रोशन जाने का भी डर बना रहता है, ये चीजें नहीं करनी चाहिए
2: जी। डॉक्टर साहब अगर हम बात करें कि आंखों को स्वस्थ रखने के लिए अगर हम एडिशनल कुछ करना चाहते हैं आंखों को राहत पहुंचाने के लिए, तो हम फिर क्या कर सकते हैं उसमें?
3: इसके लिए एक आंखों की मांसपेशियों के लिए, कई बार बच्चों को भारीपन महसूस होता है, सिर में दर्द होता है, तो आंखों की मांसपेशियों के लिए एक्सरसाइज कर सकते हैं, पेन वाली
2: जी,
3: बच्चे काफी जानते हैं
2: जी जी।
3: इसके अलावा आंख को बंद करें, दोनों हथेलियों से आंखों को ढकें
2: जी।
3: उसके बाद में आंखों को तीन चार बार क्लॉक वाइज, तीन चार बार एंटी क्लॉक वाइज घुमाए, ऊपर नीचे दाएं बाएं करें घुमाए
2: जी।
3: इससे टीयर्स की स्प्रेडिंग अच्छी होती है और आंखों की थकावट दूर होती है
2: जी।
3: इसके अलावा आप अगर निगाह का काम कर रहे हैं, जैसे कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर, मोबाइल पर ज्यादा देर काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, हर 20 मिनट पर 20 सेकंड के लिए 20 फीट की दूरी पर देखें, इससे आंखें रिलैक्स होती हैं, इससे भी आपको आराम मिलता है, ज्यादा देर तक आप काम कर पाते हैं। इसके अलावा आंखें बंद करके सादे पानी के छींटे या ठंडे पानी के छींटे आप आंखों पर मार सकते हैं, बंद करके, खुली आंखों पर पानी न मारें, सिर्फ बंद करके आंखों पर साफ और आधा या ठंडा पानी मारें, इससे भी आंखों को आराम मिलता है। इसके अलावा दिन में 2-3 बार फेस वॉश के साथ साथ आई को भी क्लीन करना चाहिए, बाहर बाहर से आंखें बंद करके सिर्फ लिड को और आईलैशेस को क्लीन करना चाहिए। कभी आप बाहर से आ रहे हैं, आईलैशेस बहुत सारी डस्ट होती है
2: जी जी,
3: बहुत सारी ग्रीस डिपॉजिट हो जाता है, तो उसको क्लीन आप कर सकते हैं, खुली आंखों पर पानी मारना अवॉइड करें
2: जी। और डॉक्टर साहब जैसा कि वक्त हो रहा है कार्यक्रम के समापन का, चलते चलते मैं बस एक बात आपसे जानना चाहूंगा, जैसा कि आपने जिक्र किया जो आई लैशेस होते हैं, तो कई बार देखा गया है कि आई लैशेस पे कुछ बैक्टीरिया या कुछ उन्हें क्या कहेंगे, आप मुझे शब्द भी नहीं कह सकता, लेकिन
3: कई बार कई रंग के डिपॉजिट होते
2: जी जी जी
3: जी, डैंड्रफ जैसे सिर में होता है, डैंड्रफ हो जाता है, तो क्लीनिंग से काफी फायदा मिलता है, और अगर आराम नहीं मिल रहा है तो लंबाई तो होगा नहीं, अगर प्रॉपर क्लीनिंग करेंगे तो, या फिर अगर हो जाता है तो डॉक्टर से सलाह करें, उसका ट्रीटमेंट होगा। कई बार पलकों पे फुंसियाँ हो जाती हैं छोटी छोटी, जिसको अंजनियारी या गुहरी बोलते हैं, तो वो भी अगर आप सफाई कर रहे हैं तो उससे काफी कुछ उससे बचा जा सकता है। कई बार चश्मे के सही नंबर ना लगने से या चश्मे के नंबर हैं ना लगाने की वजह से भी बार बार पलकों में इन्फेक्शन होते हैं, तो चश्मा लगाने से वो भी ना हो जाता है। इसके अलावा एक बहुत जरूरी चीज है कि हर बच्चे का 5 से 6 साल की उम्र पे, 4 से 5 या 6 साल की उम्र पर जब वो स्कूल जाना शुरू कर दे, जब वो थोड़ा एबीसीडी सीख जाए, तो उसको जरूर आंखों का चेकअप कराएं, दांतों का चेकअप कराएं, कान का चेकअप कराएं। कई बार बच्चा बता नहीं पाता उसकी एक आंख में या एक कान में या दांत वगैरह में दिक्कत है। मैं हालांकि नेत्र रोग विशेषज्ञ हूँ, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि कुछ चीजें हैं जिनका तीन चार साल पाँच साल की उम्र पे चेकअप होना चाहिए, ताकि अगर कान से कम सुनाई दे रहा है एक से तो वो सही समय पर उसका इलाज हो जाए, आँख से कम दिखाई दे रहा है तो उसको ठीक से उसको चश्मा जो भी इलाज है वो कर पाए, क्योंकि बच्चे कई बार बता नहीं पाते
2: जी जी।
3: अभी चीज से तो हर बच्चे का चेकअप एक चार साल या पाँच साल की उम्र पे जरूरी होना चाहिए
2: जी। डॉक्टर साहब अब बढ़ेंगे, जैसे कि वक्त हो रहा है प्रोग्राम के समापन का। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए FM24 की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से।
3: FM24 का आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे ये मौका दिया लोगों को जागरूक करने का, धन्यवाद, नमस्कार।
2: श्रोताओं अब बढ़ेंगे एक गाने की ओर और आपको एक बहुत ही अच्छे गाने के साथ छोड़े जा रहे हैं, कल फिर आपसे मुलाकात होगी तंदुरुस्ती मौज मस्ती में, अभी के लिए दीजिएगा इजाजत, नमस्कार, अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, सुनते रहिएगा 90.8 FM24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।

इवनिंग टी विद शर्मा जी, ओनली ऑन 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग भिवाड़ी। जी हाँ, शाम का वो समय जब आपकी और मेरी मीटिंग शुरू हो चुकी है, आप ऑफिस से निकल रहे हो घर जाने के लिए, और शाम को जाते ही वो चाय का जुगाड़ जो आपका घर पे है, इसी के लिए तो खैर आप जा रहे हो, अभी ऑफिस में भी पी थी, अब घर जाके भी पियोगे। चाय का नशा ही कुछ ऐसा होता है, आपको दिन में 3-4 बार मिल जाए तो भी मजे आ जाते हैं। मेरे जैसे कई लोग हैं जो चाय के लिए सच में बहुत एक्साइटेड रहते हैं। खैर, इन सब बातों को छोड़ करके मुझे पता चला है कि आज है बहुत लोगों का बर्थडे, तो उन सब के लिए

है कभी कभी, कोई बात नहीं, आप उसको इग्नोर कर दें, बट जिन जिन का भी बर्थडेज है उन सब के लिए विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। मेरे पास एक्चुअली बहुत सारे कॉल्स आए थे जिनमें लोग कह रहे थे कि हमारा बर्थडे है, हमारे बच्चों का आज बर्थडे है, तो हमने सोचा कि क्यों ना सबको एक साथ ही विश कर दें। जिन जिन का भी आज बर्थडे है उनको एक बार फिर से बहुत ही बढ़िया वाला हैप्पी बर्थडे। इसी के साथ या कुछ भी किया हो कल आज, जो भी आज की भसड़ रही हो दिन भर की, कुछ भी शेयर करना हो, कॉल करें हमें 1-843-266-5588। आपकी आवाज सुनने के लिए तो हम यहां पे आते हैं। आपको एक चीज और बता दूं कि हम आज आपके लिए लेकर के आए हैं साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन, साइबर सिक्योरिटी और साइबर सेफ्टी रिलेटेड बहुत सारी बातें। तो कहीं ना जाइएगा, अगर आपका थोड़ा सा भी प्लान है फ्रीक्वेंसी चेंज करने का तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा। बहुत बढ़िया सारे गाने लगा रखे हैं। अगर आप साइबर फ्रॉड से बचना चाहते हैं तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी है और मस्ती मजाक हंसी खुशी का पिटारा भी है। सुनते रहे 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन। शो शुरू हो चुका है इवनिंग टीवी शर्मा जी आपके अपने होस्ट एंड दोस्त आरजे यश के साथ।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
1: एडवर्टिजमेंट के लिए संपर्क करें 9783001786 पे या फिर 8432665588 पे।
2: औद्योगिक क्षेत्र सारे खुद करौली बंदापुर खुशखेड़ा व चौपानकी में 16 औद्योगिक व 2 वेयर हाउस भूखंडों को ई नीलामी के माध्यम से बेचान किया जा रहा है। इन भूखंडों के लिए अमानत राशि दिनांक 9/10/2026 समय 6 बजे तक जमा कराकर बिड लगा सकते हैं। बिड लगाने की अंतिम तिथि 14/10/2026 समय 5 बजे तक है। इसके साथ ही औद्योगिक क्षेत्र सलारपुर व पथरेड़ी में 43 भूखंडों को प्रत्यक्ष आवंटन योजना के माध्यम से बेचान किया जा रहा है। इन भूखंडों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 12/10/2026 समय 6 बजे तक है। अंतिम जानकारी के लिए रिको की वेबसाइट www.riico.co.in यानी www.rico.co.in पर एवं रिको इकाई कार्यालय भिवाड़ी द्वितीय रिको रेस्ट हाउस रोड भिवाड़ी में संपर्क कर सकते हैं।
3: अब भिलवाड़ी के शिवोहम हॉस्पिटल में पाएं एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं। यहां 25 बेड से लेस इंडोर, 6 बेड से लेस आईसीयू, 2 बड़े ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजी लैब तथा अत्याधुनिक एक्सरे मशीनों के द्वारा एक्सरे सुविधा, तकनीकी मशीनों द्वारा जांच, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, एम्बुलेंस, सभी कैशलेस टीपीए सुविधाओं के साथ 14 साल से कम आयु की बच्चियों के लिए निशुल्क परामर्श, गायनेकोलॉजी, इनफर्टिलिटी, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नम्रता मेहता चतुर्वेदी व हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हेमंत चतुर्वेदी जैसे अनुभवी डॉक्टर से परामर्श सुविधा, जो कि पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में निरंतर अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। शिवोहम हॉस्पिटल B4 भगत सिंह कॉलोनी पुराने RTO ऑफिस के पास भिवाड़ी। संपर्क 9799996778।
4: भिवाड़ी का पहला ISO और NABH सर्टिफाइड श्री कृष्णा हॉस्पिटल, जिसमें मल्टी स्पेशलिस्ट OPD, 10 बेड का ICU, सबसे बड़ा मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 50 बेड का इंडोर, 24 आवर्स एम्बुलेंस, फार्मेसी और इमरजेंसी सेवाएं तथा लैब, डिजिटल एक्सरे जैसी सुविधाओं से लैस श्री कृष्णा हॉस्पिटल अधिकांश मल्टीनेशनल कंपनियों के मेडिकल कंसल्टेंसी एवं कैशलेस उपचार का एकमात्र सेंटर। श्री कृष्णा हॉस्पिटल B14849 भगत सिंह कॉलोनी भिवाड़ी 8529113916 7340013916। इस हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट और फिजिशियन की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं।
5: क्या आपकी त्वचा, बाल या नाखून की समस्या बार बार परेशान कर रही है?
6: अब सही इलाज के लिए मिलिए डॉक्टर गौरव, एम्स से प्रशिक्षित त्वचा रोग विशेषज्ञ, SS हॉस्पिटल भिवाड़ी में।
5: मुंहासे, पिगमेंटेशन, एलर्जी, हेयर फॉल से लेकर लेजर, केमिकल पील और बोटॉक्स जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध।
6: ECHS, RGHS तथा NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल में सभी प्रमुख TPA मान्य।
5: SS हॉस्पिटल भिवाड़ी, भरोसेमंद विशेषज्ञ से देखभाल। समय रोजाना शाम 4:30 से 6:30 बजे तक, गुरुवार अवकाश।
7: पूजा, तुम्हारे फेस पर कितने पिंपल्स और धब्बे हो रहे हैं?
8: हाँ यार, और बाल भी हर दिन झड़ रहे हैं। कई बार दिल्ली गुरुग्राम में भी दिखा चुकी हूँ।
7: अरे पूजा, अब दिल्ली या गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपनी भिवाड़ी में है डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, जहाँ पर स्किन, हेयर एंड नेल्स की सभी बीमारियों का पूर्ण इलाज डॉक्टर सुचेता MD डर्मेटोलॉजी द्वारा किया जाता है, जो भिवाड़ी में अपनी सेवाएं दे रही है। इनके यहाँ लेजर हेयर रिमूवल, माइक्रो नीडलिंग, PRP, RF, अन्य सभी स्किन समस्याओं का समाधान विदेशी मशीनों व नई तकनीकों द्वारा किया जाता है। कॉल करें 6367551007। विजिट डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, A56 फर्स्ट फ्लोर भगत सिंह कॉलोनी बिहाइंड सुखम टावर भिवाड़ी।
9: आपके सारे जरूरतों का बीमा एक ही जगह, विधि एंटरप्राइजेज भिवाड़ी। स्वास्थ्य बीमा, वाहन बीमा, जीवन बीमा, फायर बीमा सब मिलेगा यहाँ। और हाँ, बीमा कराने पर खास ऑफर भी मिलेंगे। संपर्क करें चंद्रभान विधि एंटरप्राइजेज, रिको चौक भिवाड़ी, 9887066308।
0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
10: शाम

0: इवनिंग टी विद शर्मा जी, ओनली ऑन 90.8 एफएम 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
1: एक बार फिर से स्वागत है आपका इवनिंग टी विद शर्मा जी पे। आपके अपने होस्ट एंड दोस्त आरजे यश के साथ हैं आप। पर अगर भिवाड़ी की जनता की भी कुछ भावनाएं हैं जो वो व्यक्त करना चाहते हैं गवर्नमेंट अधिकारियों को, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं ऑन 8432-66-5588। अब तक तो ये नंबर आपको याद हो ही गया होगा। नहीं याद हुआ कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा। शो सुनते रहें, क्योंकि यही वो नंबर है जो आपको हर टाइम हेल्प कर सकता है भिवाड़ी से रिलेटेड कोई भी बात करनी हो या आपको कुछ भी बताना हो। तो अगर आपको कुछ भी शेयर करना है, कोई भी बात बोलनी है, किसी ऑफिसर को बोलनी है, अपने बॉस को बोलनी है, अपने घर में कुछ शेयर करना है या कुछ भी है, इस नंबर पे कॉल करें और हमें बताएं। हम आपकी फीलिंग्स, आपकी बातें, आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो आगे फॉरवर्ड कर देंगे। और अगर आपको कोई गाना सुनना है तो वो तो हमारे लिए, तो हम आपके लिए बढ़िया सा गाना भी चला देंगे। सुनते रहे 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
1: एडवर्टिजमेंट के लिए संपर्क करें 9783001786 पे या फिर 8432665588 पे।
2: मैं जयपुर जा रहा हूँ।
3: अच्छा, तो आते हुए जयपुर के मशहूर दूध लड्डू और प्याज कचौरी लेते आना।
2: अरे, दूध लड्डू और प्याज कचौरी के लिए जयपुर जाने का इंतजार क्यों करना, क्योंकि अब आपके शहर भिवाड़ी में अलवर बाईपास पर खुल चुका है कान्हा स्वीट्स।
3: जी हाँ, कान्हा स्वीट्स पर मिलते हैं स्वादिष्ट दूध लड्डू, प्याज कचौरी, समोसे, किसी कलाकंद, रसमलाई, कुल्हड़ रबड़ी और सभी प्रकार की मिठाइयाँ।
2: बिल्कुल, हर मिठाई में स्वाद ऐसा कि एक बार खाएं तो दिल कहे एक और।
3: तो फिर आज मिठास हो जाए कान्हा स्वीट्स के साथ।
2: हाँ, परिवार हो या मेहमान, त्योहार हो या कोई खास खुशी, हर मौके की मिठास कान्हा स्वीट्स के साथ। पता नोट कर लीजिए,
3: शॉप नंबर AG F04, कैपिटल आर्केडिया, अलवर बाईपास इन फ्रंट ऑफ वेदांता फार्म, भिवाड़ी, राजस्थान।
4: मोहाली और गुड़गांव का डेंटल अनुभव अब भिवाड़ी में। आइए वी केयर डेंटल क्लिनिक इम्प्लांट सेंटर, जहां RCT, कैपिंग और डेंटल इम्प्लांट के एक्सपर्ट ट्रीटमेंट के साथ आपको मिलता है डॉक्टर रुकु सिंगला के 16 वर्षों के अनुभव और विशेषज्ञता का भरोसा। आर्मी और कॉर्पोरेट कर्मचारियों के लिए स्पेशल डिस्काउंट। पता, अपोजिट मैकडोनल्ड्स, JMK पेट क्लिनिक के पास, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉल करें 7814399374। वी केयर डेंटल, आपकी मुस्कान हमारा भरोसा।
3: क्या आपकी आँखों की रोशनी से जुड़ी कोई परेशानी है? क्या आप चश्मे से छुटकारा पाना चाहते हैं?
2: तो आइए आधुनिक सुविधाओं से युक्त मिश्री देवी आई हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी आई सेंटर।
3: पिछले 15 वर्षों से नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में भरोसेमंद सेवाएं, अब बहर रोड, नियम राणा और टपुकड़ा भिवाड़ी में।
2: यहाँ उपलब्ध हैं मोतियाबिंद, फेको, मल्टीफोकल एवं प्रीमियम लेंस, लेसिक लेजर, कॉर्निया, ग्लूकोमा और रेटिना उपचार एवं सर्जरी की आधुनिक सुविधाएं।
3: और अब दोनों आँखों का लेसिक लेजर उपचार आधुनिक तकनीक के साथ आपकी पहुँच में और उचित दरों पर।
2: बेहतर नेत्र उपचार, उचित खर्च और भरोसेमंद देखभाल के साथ चश्मे से आजादी की ओर बढ़ाइए अपना कदम। मिश्री देवी आई हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी आई सेंटर। संपर्क नंबर
3: 9783220043 या 01493294200। अब आपके शहर भिवाड़ी में साइकियाट्री एवं ऑर्थोपेडिक्स की नियमित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है ओजस हॉस्पिटल में।
2: मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितिका अग्रवाल द्वारा डिप्रेशन, नींद की समस्या, बेचैनी, घबराहट, मानसिक तनाव, स्किजोफ्रेनिया और OCD जैसी समस्याओं का उचित उपचार किया जाता है एवं काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध है।
3: वहीं हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेंद्र अग्रवाल द्वारा चोट, ट्रॉमा, फ्रैक्चर, घुटने एवं कमर का दर्द, लिगामेंट की चोट, गठिया और आर्थराइटिस जैसी हड्डी एवं जोड़ संबंधी समस्याओं का उपचार किया जाता है।
2: साथ ही सर्जरी, फिजियोथेरेपी और पेन मैनेजमेंट की सुविधा भी उपलब्ध है।
3: तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या को नजरअंदाज न करें, पहुंचिए ओजस हॉस्पिटल।
2: पता, नगीना गार्डन के पास, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी।
3: फोन करें 9521333591। ओजस हॉस्पिटल, बेहतर स्वास्थ्य की ओर एक कदम। अब आपके शहर धारूहेड़ा में ही मिल रही है आधुनिक और बेहतरीन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सुविधाएं। लोटस हॉस्पिटल, बेस्ट टैक्स सिटी, BPL फ्लैट के सामने धारूहेड़ा में डॉक्टर अन्विका बंसल, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, 15 वर्ष से अधिक अनुभव के साथ, जो पहले से ही भिवाड़ी में अपनी सेवाएं दे रही थी, अब अपने नए लोटस हॉस्पिटल में OPD और इमरजेंसी सर्विस के लिए उपलब्ध हैं। इसके साथ ही यहां उपलब्ध है अनुभवी हड्डी रोग विशेषज्ञ। यहां घुटना बदलना, कुल्हा बदलना और रीढ़ से जुड़ी सभी बीमारी का इलाज होता है, और एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट और लैप्रोस्कोपिक जनरल सर्जन, जहां लेजर टेक्निक से बवासीर, भगंदर का इलाज लोटस हॉस्पिटल में मिलता है, तथा 24 घंटे आपातकालीन सुविधा, एडवांस्ड एक्सरे, लैबोरेटरी, फार्मेसी, अल्ट्रासाउंड सर्विस, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, AC प्राइवेट रूम की सुविधाएं उपलब्ध हैं। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आज ही विजिट करें लोटस हॉस्पिटल, बेस्ट सिटी, BPL फ्लैट के सामने धारूहेड़ा। संपर्क करें 01274415033। भिवाड़ी का पहला ISO और NABH सर्टिफाइड श्री कृष्णा हॉस्पिटल, जिसमें मल्टी स्पेशलिस्ट OPD, 10 बेड का ICU, सबसे बड़ा मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 50 बेड का इंडोर, 24 आवर्स एम्बुलेंस, फार्मेसी और इमरजेंसी सेवाएं तथा लैब, डिजिटल एक्सरे जैसी सुविधाओं से लैस श्री कृष्णा हॉस्पिटल अधिकांश मल्टीनेशनल कंपनियों के मेडिकल कंसल्टेंसी एवं कैशलेस उपचार का एकमात्र सेंटर। श्री कृष्णा हॉस्पिटल, B14849 भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी, 8529113916, 7340013916। इस हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट और फिजिशियन की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
5: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
6: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
5: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
3: आपके हर खास समारोह को शानदार और यादगार बनाने के लिए आइए भाटोटिया टेंट हाउस एंड इवेंट ऑर्गेनाइजर।
2: सभी प्रकार के टेंट आइटम, शानदार डेकोरेशन और इंडोर आउटडोर कैटरिंग की बेहतरीन सुविधा, शादी, सगाई, जन्मदिन या किसी भी समारोह के लिए एक ही जगह पर पूरी व्यवस्था।
3: संपर्क करें हंसराज भाटोटिया, मोबाइल नंबर 9416347214।
2: और आपके खास समारोह के लिए शानदार राजविलास मैरिज एवं बैंक्वेट हॉल, शिवनगर पार्ट 2, पांचाल कॉलोनी, सीथल रोड, धारूहेड़ा, जिला रेवाड़ी, हरियाणा।
3: बाटोटिया टेंट हाउस और राजविलास मैरिज बैंक्वेट हॉल, आपके समारोह की पूरी तैयारी एक ही जगह। भिवाड़ी का भरोसा, वर्षों से आपकी सेवा में। सिटी नर्सिंग होम, सदर मार्केट, भिवाड़ी, औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी का पहला नर्सिंग होम, NABH द्वारा प्रमाणित।
2: यहाँ उपलब्ध है 2 आधुनिक ICU, अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, दूरबीन सर्जरी की सुविधा तथा अधिकांश मेडिक्लेम कंपनियों की कैशलेस सुविधा, डायबिटीज के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर कौशल, मनोरोग परामर्श हेतु डॉक्टर कनिष्का तथा मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर रूप सिंह की सेवाएं उपलब्ध, अनुभवी डॉक्टर, आधुनिक सुविधाएं और मरीजों की समर्पित देखभाल।
3: सिटी नर्सिंग होम, सदर मार्केट, भिवाड़ी, स्वास्थ्य का भरोसा आपके अपने शहर में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सिटी नर्सिंग होम भिवाड़ी।
7: अरे कहाँ जा रही हो?
8: मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए अंशुल ज्वेलर्स।
7: अच्छा, पर अंशुल ज्वेलर्स ही क्यों?
8: अंशुल ज्वेलर्स के पास है सोने, चांदी और हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन, वो भी BIS के 6 अंकों वाले हॉलमार्क HUID के साथ। और तो और, इनकी ज्वेलरी को हम भारत सरकार द्वारा चलाए गए BIS केयर ऐप के वेरीफाई HUID फीचर से आभूषणों की शुद्धता का प्रमाण देख सकते हैं।
7: जी हाँ, खरे आभूषणों की प्रामाणिकता जिसके साथ बढ़ेगी आपकी सुंदरता। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर। हमारा पता, शॉप नंबर 7, गणपति मॉल, समतल मोड़, भिवाड़ी, राजस्थान, या मेन बाजार नजदीक हनुमान मंदिर, टावड़ू, हरियाणा। संपर्क करें 9992533611 या फिर 9354898521 पर। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर।
9: कभी भी इमरजेंसी हो या सिर्फ एक छोटी सी चेकअप की जरूरत हो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेड़ा और भिवाड़ी में आपका अपना हॉस्पिटल है। 24 घंटे इमरजेंसी, AC प्राइवेट रूम्स, वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर, डिजिटल एक्सरे, क्लिनिकल लैब, TMT, ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी, फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी, स्किन प्रिक एंड ब्लड एलर्जी टेस्ट, एलर्जी का जड़ से इलाज। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं मेडिसिन, सर्जरी, ENT, हेड एंड नेक सर्जरी, ऑब्स एंड गाइनी, ऑर्थोपेडिक्स, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कैशलेस फैसिलिटी, सभी TPA के साथ। तो अब टेंशन मत लो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेड़ा, प्लॉट नंबर 5, सेक्टर 6 और भिवाड़ी, B83, भगत सिंह कॉलोनी। बस एक कॉल या एक विजिट, नो है 8607274999।
2: भारत अल्ट्रासाउंड एवं डायग्नोस्टिक सेंटर पर अत्याधुनिक MRI, 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 5D
10: अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर डिजिटल एक्सरे डीआर, टीएमटी, ईईजी व फुल्ली कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब प्रतिदिन उपलब्ध है।
11: भारत डायग्नोस्टिक्स द्वारा गत 20 वर्षों से एमडी रेडियोलॉजिस्ट पीजीआई चंडीगढ़ में प्रशिक्षित अनुभवी डॉक्टर्स द्वारा सभी जांचें की जा रही हैं।
10: भारत डायग्नोस्टिक्स पर 5D अल्ट्रासाउंड मशीन द्वारा लेवल 1 एंड 2 फीटल अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इको कार्डियोग्राफी, लिवर फाइब्रो स्कैन व 3D सीटी स्कैन मशीन पर एंजियोग्राफी, यूरोग्राफी व एंटेरोग्राफी की जांच भी की जाती है। 1/57/58 राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, सेंट्रल मार्केट के पास, भिवाड़ी। कॉल 9351004500।
12: दूसरी ब्रांच A50 भगत सिंह कॉलोनी भिवाड़ी, कॉल 8058304500।
13: श्रीराम इंडस्ट्रीज आर्मर जैन, भारत में मेक इन इंडिया पहल के तहत विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाले उत्पादों के निर्माण में एक भरोसेमंद नाम। यहाँ बनते हैं फायर रेटेड और नॉन फायर

0: इवनिंग टी विद शर्मा जी, ओनली ऑन 90.8 एफएम 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन। एक बार फिर से स्वागत है आपका इवनिंग टी विद शर्मा जी में, आपके अपने होस्ट एंड दोस्त आरजे यश के साथ हैं आप। और जैसा मैंने आपसे शो की स्टार्टिंग में बोला था कि जब हम साइबर सिक्योरिटी और साइबर सेफ्टी की बात करेंगे, सर गुड इवनिंग।
1: गुड इवनिंग।
0: तो सर, मेरा आज का जो मेन फोकस रहेगा, क्योंकि हम आजकल टेक्नोलॉजी के युग में हैं, हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, हम टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस होते जा रहे हैं, तो मेरा मेन फोकस आज की डेट में रहेगा साइबर रिलेटेड क्राइम्स के ऊपर। और हम सब जानते हैं कि राजस्थान पुलिस और इंडियन पुलिस उसके ऊपर बहुत सारी एक्टिविटीज कर रही है, तो उन्हीं से रिलेटेड मेरे कुछ सवाल रहेंगे। इसी प्रोसेस को स्टार्ट करते हुए मेरा पहला सवाल आपसे ये कि ये साइबर फ्रॉड होता क्या है, अगर मैं आपसे सिंपल भाषा में जानना चाहूं तो।
1: साइबर फ्रॉड जो भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, मोबाइल टेक्नोलॉजी है, जैसे मोबाइल यूज करते हैं, तो उसके थ्रू यदि हमारा कोई बैंक अकाउंट का पैसा निकाल ले, किसी तरह का हमारा डेटा है वो यूज कर ले अपने पर्पस के लिए, खासकर फिनेंशियल बेनिफिट के लिए करते हैं, या किसी तरह का दुर्भावना पहुंचाने के लिए करते हैं, तो मल्टीपल चीज होता है जिसमें जिसका डेटा चुराया जाता है, लिया जाता है, उसको नुकसान पहुंचाया जाता है, जिसमें ये कंप्यूटर और मोबाइल टेक्नोलॉजी का यूज होता है।
0: ओके, तो हमारे पास जितने भी टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस है उनकी हेल्प से अगर किसी को भी तकलीफ पहुंचाई जा सके, उसके फाइनेंशियल लॉस करा जा सके या उसको मेंटल हरासमेंट करा जा सके, उसको हम साइबर फ्रॉड के तहत मानेंगे। सर, मेरा अब आपसे दूसरा सवाल कि इन साइबर फ्रॉड से मैं अपने अकाउंट्स को, यानी बैंक अकाउंट्स को, अपने कार्ड्स को, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या मेरे पास जो भी चीजें हैं, उनको मैं कैसे बचा सकता हूं अपने आप को?
1: देखिए, इसमें कुछ चीज है जो आपको फॉलो करना होगा। सबसे पहला चीज है जो आप जो पर्सनल डेटा है, आपका नाम हुआ, अकाउंट नंबर हुआ, ओटीपी हुआ, पासवर्ड हुआ, इसको आप प्रोटेक्ट रखें। कोई भी बैंक वाला, कोई भी एटीएम वाला, कोई भी आपसे ये डेटा नहीं मांगेगा। तो कभी भी किसी तरह का कॉल आता है जो मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आपको ये चीज़ बताना है, खासकर ये अकाउंट नंबर, पासवर्ड, तो आप नहीं बताएं। ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट है। जब आप एटीएम में जा रहे हैं तो आप इंश्योर करें जो दूसरा कोई एटीएम में साथ ना घुसे, जिसको आप जानते नहीं है।
0: ओके।
1: तीसरा चीज़ है, जब आप पासवर्ड डाल रहे हैं तो आप अपने हाथ ऊपर रख के पासवर्ड डाल सकते हैं। तो ये कुछ सावधानियां जो आप बरत सकते हैं।
0: तो भिवाड़ी, जैसा आपने सुना कि ये बहुत ही कुछ सिंपल स्टेप्स हैं जिससे हम अपनी इन्फॉर्मेशन किसी के साथ शेयर ना करें, हम ध्यान रखें हमारी सराउंडिंग का जब भी हम एटीएम में जाएं, इन सब तरीकों से हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं, हम अपने अकाउंट्स को सेफ रख सकते हैं। अब लिए चलता हूं आपको बहुत ही जोरदार गानों के पास, सुनते रहे 90.8 एफएम 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन जी। और हम बात कर रहे हैं साइबर सिक्योरिटी की, साइबर सेफ्टी की, कहीं ना जाइएगा।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
1: एडवर्टिजमेंट के लिए संपर्क करें 9783001786 पे या फिर 8432665588 पे।
2: क्या कर रही है?
3: ऑनलाइन बुकिंग देख रही हूँ, जयपुर जाना है।
2: फिर से? अभी तो गई थी।
3: हाँ, फिर से जाना है।
2: तू अपनी गाड़ी क्यों नहीं ले लेती?
3: गाड़ी नॉट इन बजट।
2: अरे गांधी मोटर्स है ना।
3: गांधी मोटर्स?
2: हाँ गांधी मोटर्स। गांधी मोटर्स कार सेल और परचेज के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर हर तरह की गाड़ियाँ बहुत अच्छी कीमत पे मिलती हैं।
3: तो कब चले?
2: अरे इसमें सोचना कैसा, अभी चलना। गाड़ियों के सेल और परचेज के लिए आज ही संपर्क करें।
4: हमारा पता है शॉप नंबर S16 एवलॉन रॉयल प्लाजा अल्बर बाईपास रोड भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9785980000 या फिर 8740000144 पर।
5: भिवाड़ी में 27 वर्षों से सेवारत, भरोसेमंद 24 घंटे इलाज हेतु गोपीनाथ अस्पताल, ISO तथा NABH मान्यता एवं राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मल्टी स्पेशलिटी सेंट्रल ACOPD, 50 बेड की सुविधा से युक्त गोपीनाथ हॉस्पिटल, अत्याधुनिक 3 ऑपरेशन थिएटर, 7 बेड ICU, 2 जीवन रक्षक एम्बुलेंस, डिजिटल एक्सरे, ऑर्थोपेडिक सर्जन, फिजिशियन तथा लेडी डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा से युक्त गोपीनाथ अस्पताल। यहाँ नेफ्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, डायबिटोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट की नियमित OPD भी उपलब्ध है। लगभग सभी TPA कैशलेस सुविधा के साथ तथा भिवाड़ी की व आसपास की औद्योगिक इकाइयों के बीमा कंपनियां भी पैनल पर हैं। पता 226 इंडस्ट्रियल एरिया, सदर बाजार के पीछे, गोपीनाथ रोड, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 01493619563 एंड 9784333863।
6: क्या आप बिजली के बिल से परेशान हैं? क्या आप जानते हैं सोलर एनर्जी से आप बिजली के बिल से आजादी पा सकते हैं? जी हाँ, अपने घर, ऑफिस और फैक्ट्री की छत पर सोलर पैनल लगाएं और भारी बिजली के बिल से मुक्ति पाएं। सोलर एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको 30% तक रिटर्न देता है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9610255584। ग्रीन रूट्स रिन्यूएबल एनर्जी।
7: आपकी आंखें हैं अनमोल, आपकी आंखों को चाहिए बेहतर देखभाल, तो आइए गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स भिवाड़ी।
8: यहाँ मिलते हैं सभी ब्रांडेड कंपनियों के स्टाइलिश फ्रेम और हाई क्वालिटी लेंस। Ray-Ban, Vogue, टॉमी हिल्फिगर, ओकेली, प्रदा, जीस, एसिलोर क्रिजाल, विजन आर एक्स और भी कई नेशनल व इंटरनेशनल ब्रांड्स।
7: साथ ही कॉन्टैक्ट लेंस, लो विजन क्लिनिक, मायोपिया क्लिनिक, विजन थेरेपी और आधुनिक मशीनों द्वारा कंप्यूटरीकृत आई एग्जामिनेशन, प्रशिक्षित ऑप्टोमेट्रिस्ट की पूरी टीम।
8: भिवाड़ी में सन 2006 से भरोसे का नाम गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स।
7: गणपति मॉल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास, समतल चौक, भिवाड़ी, और अशियाना आंगन के सामने, BDI सोसाइटी के पास, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी।
9: अपॉइंटमेंट या जानकारी के लिए अभी कॉल करें 9636061776 या 9928929309।
10: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है, कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है, और इन्हीं श्रृंगार को सवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, एक से एक उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A, आशियाना आंगन प्लाजा, नियर मैकडॉनल्ड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट करें 01493493222 या फिर 9034969731 पर। ऐसे डिजाइन्स जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्स ही आए।
0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो, आपकी धड़कन। शाम की

0: इवनिंग डेविड शर्मा जी, ओनली ऑन 90.8 एफएम 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन। वेलकम बैक टू 90.8 एफएम 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन। शो का नाम है इवनिंग डेविड शर्मा जी, रहे हैं साइबर सेफ्टी और साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड पॉइंट्स की। सर, जैसा मैं आपसे पहले भी साइबर फ्रॉड रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ रहा था, अब मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि कई बार लोगों के पास कॉल आते हैं कि हम आपकी ये लॉटरी लग गई है, या हम लोन डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं फलाना फलाना बैंक के, या आपके लिए कुछ बेनिफिट हैं, तो ऐसे कॉल्स को हमें कैसे अटेंड करना चाहिए और हम कैसे पता लगाएं कि ये कॉल सही नहीं है या ये गलत कॉल है या ये सस्पिशियस कॉल है, हमें इसको एंटरटेन नहीं करना चाहिए, क्या बेसिक चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए?
1: देखिए, जो बेसिक चीज होता है जब कोई कॉल करता है, तो वो आपको जब फोन करता है तो आप बताते हैं जो आपको लाभ पहुंचेगा, कुछ बेनिफिट होने वाला है, गेन होने वाला है। तो आप बेनिफिट और गेन में मत पड़िए जब वो मोबाइल के थ्रू कॉल आता है। आप फिजिकली मिलिए, जहां से कॉल आ रहा है उसे आइडेंटिफिकेशन करने की कोशिश कीजिए जो ये सही है गलत है। बहुत सारे बिजनेसमैन भी जो है वो इस तरह के प्रलोभन में आके अपना लॉस पहुंचा चुके हैं, जब उन्हें बोला जाता है जो आप माल पहुंचा दो, आपको इतना रुपए देना होगा, फिर मैं बाद में आपको पूरा पैसा दे दूंगा। इसमें बहुत सारे लोग जो अच्छे लोग हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो भी इसमें आ जाते हैं। तो किसी तरह का लोभ में ना पड़े, लालच में ना पड़े, क्विक गेन में ना पड़े। कोई यदि बताता है जो इस ऐप के थ्रू आप इन्वेस्ट करो, आपको मतलब 2 दिन में या 5 दिन में या 1 महीने में आपको मल्टीपल टाइम्स उसका पैसा मिल जाएगा, तो इस तरह के ऐप में ना पड़े। या फ्री का जो चीज है, चाहे वो ऐप है, कॉल है, या किसी तरह का चीज है, उसमें ना पड़े, अदरवाइज आपका डेटा वो ले लेता है, फिर आप कॉम्प्रोमाइज हो जाते हो।
0: तो भिवाड़ी, जैसा आपने सुना कि लालच बुरी बला है, वैसे हम ये बचपन से सुनते ही आ रहे हैं कि लालच पे हमें नहीं जाना चाहिए, तो फ्री की कोई भी चीज मिले तो उस पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। अगला सवाल मेरा सर आपसे ये है कि हमारा जो बेसिक डॉक्यूमेंट है आधार कार्ड, वो एक बहुत ही इजी वे बनता जा रहा है साइबर क्राइम करने का, तो उससे हम अपने आधार कार्ड को कैसे बचा सकते हैं या हम अपनी डिटेल कैसे बचा के रख सकते हैं? क्या बेसिक चीज हम कर सकते हैं कि हमारा आधार कार्ड सेफ रहे, मतलब हमारे जो डिटेल्स है हमारी सेफ रहे?
1: देखिए, आधार कार्ड एज सच डायरेक्ट से तो आपका कुछ नहीं होता है।
0: ओके,
1: आपका आधार कार्ड जो मोबाइल नंबर से लिंक होता है, तो जब भी आप आधार डेटा डालते हैं तो आपको एक ओटीपी आता है उसके ऑथेंटिकेशन के लिए। तो आप इंश्योर करिए जो आपका ईमेल है, जो आपका मोबाइल फोन है, उसका सिक्योर एक्सेस आपके पास होना चाहिए।
0: Okay.
1: किसी तरह का पिन आप किसी को ना बताएं, अदरवाइज वो कॉम्प्रोमाइज हो सकता है।
0: ओके, तो फिर से भिवाड़ी, अगर आपने सुना हो, बेसिक चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपकी डिटेल, आपका ओटीपी आप किसी के साथ भी शेयर ना करें, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। उम्मीद करता हूँ हम सब भिवाड़ी वाले सर के द्वारा दी गई इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे और अपने आप को, अपने साथियों को सेफ रखेंगे साइबर फ्रॉड से और साइबर क्राइम से। सर, थैंक यू फॉर योर टाइम और उम्मीद करता हूँ हम बहुत जल्द मिलेंगे। अब भिवाड़ी वालों के लिए मैंने लगा रखे हैं बहुत ही जोरदार जबरदस्त जिंदाबाद वाले गाने, तो सुनते रहे 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन। छोड़े जा रहा हूं आपको इन शानदार गानों के साथ।

0: मैं जयपुर जा रहा हूँ।
1: अच्छा, तो आते हुए जयपुर के मशहूर दूध लड्डू और प्याज कचौरी लेते आना।
0: अरे, दूध लड्डू और प्याज कचौरी के लिए जयपुर जाने का इंतजार क्यों करना, क्योंकि अब आपके शहर भिवाड़ी में अलवर बाईपास पर खुल चुका है कान्हा स्वीट्स।
1: जी हाँ, कान्हा स्वीट्स पर मिलते हैं स्वादिष्ट दूध लड्डू, प्याज कचौरी, समोसे, किसी कलाकंद, रसमलाई, कुल्हड़ रबड़ी और सभी प्रकार की मिठाइयाँ।
0: बिल्कुल, हर मिठाई में स्वाद ऐसा कि एक बार खाएं तो दिल कहे एक और।
1: तो फिर आज मिठास हो जाए कान्हा स्वीट्स के साथ।
0: हाँ, परिवार हो या मेहमान, त्योहार हो या कोई खास खुशी, हर मौके की मिठास कान्हा स्वीट्स के साथ। पता नोट कर लीजिए,
1: शॉप नंबर AG F04, कैपिटल आर्केडिया, अलवर बाईपास इन फ्रंट ऑफ वेदांता फार्म, भिवाड़ी, राजस्थान।
2: मोहाली और गुड़गांव का डेंटल अनुभव अब भिवाड़ी में। आइए वी केयर डेंटल क्लिनिक इम्प्लांट सेंटर, जहां RCT, कैपिंग और डेंटल इम्प्लांट के एक्सपर्ट ट्रीटमेंट के साथ आपको मिलता है डॉक्टर रुकु सिंगला के 16 वर्षों के अनुभव और विशेषज्ञता का भरोसा। आर्मी और कॉर्पोरेट कर्मचारियों के लिए स्पेशल डिस्काउंट। पता, अपोजिट मैकडोनल्ड्स, JMK पेट क्लिनिक के पास, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉल करें 7814399374। वी केयर डेंटल, आपकी मुस्कान हमारा भरोसा।
1: क्या आपकी आँखों की रोशनी से जुड़ी कोई परेशानी है? क्या आप चश्मे से छुटकारा पाना चाहते हैं?
0: तो आइए आधुनिक सुविधाओं से युक्त मिश्री देवी आई हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी आई सेंटर।
1: पिछले 15 वर्षों से नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में भरोसेमंद सेवाएं, अब बहर रोड, नियम राणा और टपुकड़ा भिवाड़ी में।
0: यहाँ उपलब्ध है मोतियाबिंद, फेको, मल्टीफोकल एवं प्रीमियम लेंस, लेसिक लेजर, कॉर्निया, ग्लूकोमा और रेटिना उपचार एवं सर्जरी की आधुनिक सुविधाएं।
1: और अब दोनों आँखों का लेसिक लेजर उपचार आधुनिक तकनीक के साथ आपकी पहुंच में और उचित दरों पर।
0: बेहतर नेत्र उपचार, उचित खर्च और भरोसेमंद देखभाल के साथ चश्मे से आजादी की ओर बढ़ाइए अपना कदम। मिश्री देवी आई हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी आई सेंटर। संपर्क नंबर
1: 9783220043 या 01493294200। अब आपके शहर भिवाड़ी में साइकियाट्री एवं ऑर्थोपेडिक्स की नियमित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है ओजस हॉस्पिटल में।
0: मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितिका अग्रवाल द्वारा डिप्रेशन, नींद की समस्या, बेचैनी, घबराहट, मानसिक तनाव, स्किजोफ्रेनिया और OCD जैसी समस्याओं का उचित उपचार किया जाता है एवं काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध है।
1: वहीं हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेंद्र अग्रवाल द्वारा चोट, ट्रॉमा, फ्रैक्चर, घुटने एवं कमर का दर्द, लिगामेंट की चोट, गठिया और आर्थराइटिस जैसी हड्डी एवं जोड़ संबंधी समस्याओं का उपचार किया जाता है।
0: साथ ही सर्जरी, फिजियोथेरेपी और पेन मैनेजमेंट की सुविधा भी उपलब्ध है।
1: तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या को नजरअंदाज न करें, पहुंचिए ओजस हॉस्पिटल।
0: पता, नगीना गार्डन के पास, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी।
1: फोन करें 9521333591। ओजस हॉस्पिटल, बेहतर स्वास्थ्य की ओर एक कदम। अब आपके शहर धारूहेड़ा में ही मिल रही है आधुनिक और बेहतरीन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सुविधाएं। लोटस हॉस्पिटल, बेस्ट टैक्स सिटी, BPL फ्लैट के सामने धारूहेड़ा में डॉक्टर अन्विका बंसल, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, 15 वर्ष से अधिक अनुभव के साथ, जो पहले से ही भिवाड़ी में अपनी सेवाएं दे रही थी, अब अपने नए लोटस हॉस्पिटल में OPD और इमरजेंसी सर्विस के लिए उपलब्ध है। इसके साथ ही यहाँ उपलब्ध है अनुभवी हड्डी रोग विशेषज्ञ। यहाँ घुटना बदलना, कुल्हा बदलना और रीढ़ से जुड़ी सभी बीमारी का इलाज होता है, और एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट और लैप्रोस्कोपिक जनरल सर्जन, जहाँ लेजर टेक्निक से बवासीर, भगंदर का इलाज लोटस हॉस्पिटल में मिलता है, तथा 24 घंटे आपातकालीन सुविधा, एडवांस्ड एक्सरे, लैबोरेटरी, फार्मेसी, अल्ट्रासाउंड सर्विस, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, AC प्राइवेट रूम की सुविधाएं उपलब्ध हैं। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आज ही विजिट करें लोटस हॉस्पिटल, बेस्ट टैक्स सिटी, BPL फ्लैट के सामने धारूहेड़ा। संपर्क करें 01274415033।
3: भिवाड़ी का पहला ISO और NABH सर्टिफाइड श्री कृष्णा हॉस्पिटल, जिसमें मल्टी स्पेशलिस्ट OPD, 10 बेड का ICU, सबसे बड़ा मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 50 बेड का इंडोर, 24 आवर्स एम्बुलेंस, फार्मेसी और इमरजेंसी सेवाएं तथा लैब, डिजिटल एक्सरे जैसी सुविधाओं से लैस श्री कृष्णा हॉस्पिटल अधिकांश मल्टीनेशनल कंपनियों के मेडिकल कंसल्टेंसी एवं कैशलेस उपचार का एकमात्र सेंटर। श्री कृष्णा हॉस्पिटल, B14849 भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी, 8529113916, 7340013916। इस हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट और फिजिशियन की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
4: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
5: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे, किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
4: कान नाक गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
1: आपके हर खास समारोह को शानदार

0: और यादगार बनाने के लिए आइए भाटोटिया टेंट हाउस एंड इवेंट ऑर्गेनाइजर।
1: सभी प्रकार के टेंट आइटम, शानदार डेकोरेशन और इंडोर आउटडोर कैटरिंग की बेहतरीन सुविधा, शादी, सगाई, जन्मदिन या किसी भी समारोह के लिए एक ही जगह पर पूरी व्यवस्था।
0: संपर्क करें हंसराज भाटोटिया, मोबाइल नंबर 9416347214।
1: और आपके खास समारोह के लिए शानदार राजविलास मैरिज एवं बैंक्वेट हॉल, शिवनगर पार्ट 2, पांचाल कॉलोनी, सीथल रोड, धारूहेड़ा, जिला रेवाड़ी, हरियाणा।
0: भाटोटिया टेंट हाउस और राजविलास मैरिज बैंक्वेट हॉल, आपके समारोह की पूरी तैयारी एक ही जगह।
2: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
3: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
2: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
0: जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी, आँखों का NABH मान्यता प्राप्त सुपर स्पेशलिटी आँखों का हॉस्पिटल आपके शहर भिवाड़ी में। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी आपको प्रदान करता है विश्व स्तरीय आँखों की देखभाल।
1: हमारे सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल में आपको मिलेगी अनुभवी डॉक्टरों, सर्जनों की विशेषज्ञ टीम, पूर्णतः मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर MICS टॉपिकल फैको तकनीक से कैटरेक्ट, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेजर से ऑपरेशन बिना इंजेक्शन और टांके,
0: रेटिना आंख का पर्दा, ग्लूकोमा, काला मोतियाबिंद का उन्नत इलाज, बच्चों की आंखों का इलाज, हमारे पास सभी इंश्योरेंस और TPA पैनल उपलब्ध हैं। निशुल्क कैशलेस इलाज का लाभ उठाएं।
1: आज ही हमें सेवा का मौका दें। जगदम्बा आई हॉस्पिटल, भगत सिंह कॉलोनी, अलवर बाईपास, हरीश बेकरी के पास, भिवाड़ी।
0: संपर्क करें 7424830174। आज ही अपनी आँखों का इलाज कराएं और पाएं एक उजला भविष्य। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी।
4: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं कैशलेस सर्विस के लिए, कहां मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
5: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहां मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंट मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार एसी वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
4: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड नियर बाय, थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इन्फॉर्मेशन कॉल 9799278900।
6: न्यू गर्ल्स सुपर स्टोर, जहां मिलते हैं ग्रोसरीज, ड्राई फ्रूट्स, कॉस्मेटिक्स आइटम और सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स। बजट की दुकान, MRP की छुट्टी, आपका फायदा हमारा वादा। अब वक्त है MRP को कहें बाय बाय। कॉन्टेक्ट करें 7413099952 पर, अलवर बाईपास रोड नियर मार्बल मार्केट, भिवाड़ी।
7: राहुल, इंडस्ट्री प्लान तो बढ़िया है पर इस बार अपनी फैक्ट्री के इलेक्ट्रिकल्स पर एक्स्ट्रा फोकस रखना।
8: डोंट वरी सर, इंडस्ट्री का सारा इलेक्ट्रिकल्स खंडेलवाल एजेंसी से आएगा। ये NCR का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस है, जहां हमें पैनल, स्विच गियर, मोटर ड्राइव, इंडस्ट्रियल लाइटनिंग और वायर एंड केबल में 30 से ज्यादा मल्टीनेशनल ब्रांड ऑप्शंस मिल जाएंगे।
9: खंडेलवाल एजेंसीज, NCR का लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस इन भिवाड़ी।
10: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
11: शाम

0: इवनिंग टी विद शर्मा जी, ओनली ऑन 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
1: साहेबान, कदरदान, मेहरबान, दिल थाम के बैठिए, क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही है आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा मोहिनी।

माधुरी दीक्षित का ना ये गाना अपने आप में एक बवाल है, और मैं जानता हूं जैसे ही माधुरी दीक्षित का गाना बजेगा आपके चेहरे की जो स्माइल है ना, ये जो स्माइल है कानों को टच करने लगती है। इतनी पसंद है आपको यार माधुरी दीक्षित।

0: इवनिंग टी विद शर्मा जी, ओनली ऑन 90.8 FM 24,
1: आपका रेडियो, आपकी धड़कन। और इसी धड़कन को ही तो हम जोड़े रखते हैं जब हम एक दूसरे से बातें करते हैं। जी हाँ, जब भी हम एक दूसरे के साथ अपनी बातें, अपनी फीलिंग शेयर करते हैं तो हम एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाते हैं। जैसे मुझे अब पता है कि अब आप घर पहुंचने वाले हैं और भाभी जी ने आपके लिए बढ़िया बढ़िया गरम गरम चाय बना रखी है, चाय के साथ या तो कुकीज या बिस्किट या टोस्ट। मैंने पूछा था, आप लोगों ने बताया। अच्छा हाँ, मैंने जब आपसे लास्ट टाइम पूछा था कि आप लोगों को चाय के साथ क्या पसंद आता है, तो मैं बताना चाहूंगा ज्यादातर मोस्ट ऑफ द पीपल के यही आंसर आए थे कि उन्हें चाय के साथ बिस्किट्स बहुत पसंद है। कोई मारी बिस्किट खाता है, कोई फाइबर वाले बिस्किट खाता है, कोई नॉर्मल ग्लूकोज बिस्किट खाता है, बट हर कोई, मतलब मोस्ट ऑफ द परसेंटेज वाज कि बिस्किट्स पसंद है और नेक्स्ट वाज कि सिंपल चाय और कुछ नहीं चाहिए साथ में। मैं तो उसी परसेंटेज में हूं जो कहता है कि बस चाय चाहिए, कुछ हो चाहे नहीं हो, हमें तो चाय से मतलब है, हमें और किसी चीज की जरूरत नहीं है। जब आप घर पहुंचने वाले हैं तो अच्छा, अब मैं जब अपने कलीग से बात कर रहा था, साथी आरजे से, तो वो ना एक शब्द बार बार यूज करते हैं, जैसे जिसको हम तकिया कलाम कहते हैं। कई लोगों का तकिया कलाम होता है, ऐसे नहीं चलता बॉस। कईयों का तकिया कलाम होता है, तुम आदमी है कि हजाम है। ऐसे कई सारे लोगों के बहुत सारे तकिया कलाम होते हैं। क्या आपके भी ऑफिस में या घर में या कोई ऐसा जानने वाला है जिसका कोई तकिया कलाम है, जैसे हर बात पे वो भाई साहब बोलता हो, अरे भाई साहब, अरे सुनो भाई साहब, अरे ये देखो भाई साहब, तो या इन सबको ना तकिया कलाम कहते हैं। तो क्या आपका कोई यूनिक सा, आपका खुद का कोई यूनिक सा तकिया कलाम है, या आपने किसी का यूनिक सा तकिया कलाम सुना है, तो आप वो भी हमें भेज सकते हैं ना। हम तो बस भिवाड़ी को बताएंगे, जो सबसे यूनिक वाला जो तकिया कलाम होगा ना, वो हम पूरे भिवाड़ी को सुनाएंगे और आपकी आवाज पूरे भिवाड़ी पे प्ले करेंगे ऑन एयर। तो सुनते रहे 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन। आपके कॉल का मैं वेट कर रहा हूं। इस शो में आपके पसंद के गाने ही बजेंगे, इसीलिए मैं लेके आता हूं 21st सेंचुरी के सभी जोरदार से गाने।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
1: एडवर्टिजमेंट के लिए संपर्क करें 9783001786 पे या फिर 8432665588 पे।
2: अरे यार, आज शाम पार्टी करें?
3: नहीं यार, आज डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाना था।
2: गुरुग्राम? इतनी दूर?
3: हाँ यार, वहीं तो बेस्ट हाइजीन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और पेनलेस ट्रीटमेंट मिलता है।
2: ये बात पहले सही थी पर अब नहीं।
3: मतलब?
2: गुरुग्राम के ही एक्सपीरियंस्ड डेंटल एक्सपर्ट डॉक्टर जितिन टक्कर पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ मिलता है प्रीमियम सेटअप, एडवांस टेक्नोलॉजी, कंप्लीट हाइजीन और 100% पेनलेस डेंटल ट्रीटमेंट। और सबसे अच्छी बात, चार्जेस दिल्ली और गुरुग्राम से काफी कम।
3: तो फिर दूर जाने का टेंशन खत्म।
2: बिल्कुल, अब एक्सपीरियंस, भरोसा और क्वालिटी सब कुछ घर के पास भिवाड़ी में। आइए 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, ए ब्लॉक, A140, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। आज ही संपर्क करें डॉक्टर जितिन टक्कर 9871122135। 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, बेहतर चॉइसेस, बेहतर मुस्कान। अजी सुनते हो, मेरा फोन टूट गया है।
3: अरे भाग्यवान, सुनो, घबराओ नहीं, खंडेलवाल मोबाइल भिवाड़ी लाया है 0% डाउन पेमेंट पर। मोबाइल फोन 9784960000। और सुनो, ओप्पो ने लॉन्च किया है अभी रेनो 15 सी कम दामों में, बजाज फाइनेंस के साथ 0% ब्याज, 10% कैश बैक के साथ, प्लस ट्रॉली बैग, 0% डाउन पेमेंट। और बैटरी से हो परेशान तो रियलमी ने लॉन्च किया है अपना एक नया मॉडल 10,000 mAh बैटरी के साथ। अभी जाइए खंडेलवाल मोबाइल पर ढेर सारे गिफ्ट के साथ, नीलम चौक। चिंता क्यों करते हो, बजाज फाइनेंस है ना अपने साथ। 9784960000 और 9828288666।
4: राहुल यार, मैंने नोएडा से जॉब स्विच कर दिया है, अब सोच रही हूँ भिवाड़ी में रेंटल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा।
5: चिंता की कोई बात नहीं, मेगा एयर कंडीशनर्स एंड इलेक्ट्रिक सर्विस है ना, ये पूरे दिल्ली NCR में अपनी रेंटल सर्विस दे रहे हैं। और इनके यहाँ टावर AC, विंडो AC, स्प्लिट AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड LED TV, सभी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
4: लेकिन इनकी सर्विस भिवाड़ी में तो बहुत महंगी होगी ना।
5: बिल्कुल भी नहीं, आपको ये सर्विस सेम रेट पर मिलने वाली है। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9899247102 पर या फिर विजिट करें www.maces.in पर।
6: ये क्या, अभी भी डीजल कार चला रहे हो? अब समय है स्मार्ट फ्यूल पर स्विच करने का, वो भी ज्यादा बचत के साथ। पेश है विक्टोरिस

0: डायग्नोस्टिक एवं इमेजिंग सेंटर नियर नगर पालिका ऑफिस अपोजिट अंबेडकर पार्क धारूहेड़ा। कॉल करें टोल फ्री नंबर 1-800-123-4494 या 9-9830-40100 पर।
1: औद्योगिक क्षेत्र सारे खुद करौली बंदापुर खुशखेड़ा व चौपानकी में 16 औद्योगिक व 2 वेयर हाउस भूखंडों को ई नीलामी के माध्यम से बेचान किया जा रहा है। इन भूखंडों के लिए अमानत राशि दिनांक 9/10/2026 समय 6 बजे तक जमा कराकर बिड लगा सकते हैं। बिड लगाने की अंतिम तिथि 14/10/2026 समय 5 बजे तक है। इसके साथ ही औद्योगिक क्षेत्र सलारपुर व पथरेड़ी में 43 भूखंडों को प्रत्यक्ष आवंटन योजना के माध्यम से बेचान किया जा रहा है। इन भूखंडों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 12/10/2026 समय 6 बजे तक है। अंतिम जानकारी के लिए रिको की वेबसाइट www.riico.co.in यानी www.rico.co.in पर एवं रिको इकाई कार्यालय भिवाड़ी द्वितीय रिको रेस्ट हाउस रोड भिवाड़ी में संपर्क कर सकते हैं।
2: आपनो देश आपनो रंग सब मिले आपनो बाजार के संग। जी हाँ, आपनो बाजार आपका कंप्लीट फैमिली स्टोर जहाँ उत्तम क्वालिटी और वाजिब दामों के साथ आपको मिलता है किराना ग्रोसरी आइटम कॉस्मेटिक हाउसकीपिंग हाउसहोल्ड आइटम गिफ्ट आइटम क्रॉकरी टॉयज एंड गेम्स। इन सभी आइटम के MRP दामों पर खास छूट। इतना ही नहीं, फ्री होम डिलीवरी की सुविधा भी है। इनके स्टोर अलवर बाईपास थड़ा रोड भिवाड़ी कृष्ण मॉल टपुकड़ा आशियाना विलेज सेंटर। संपर्क करें 9680870184 या फिर 7822091287।
3: अरे प्लांट का तो सारा काम हो गया, अब LED लाइट कहाँ से खरीदें?
4: सर क्या आपको नहीं पता है नैप LED लाइटिंग कंपनी इंडस्ट्रियल लाइटिंग जैसे फ्लड लाइट हाईवे लाइट स्ट्रीट लाइट आदि के साथ साथ सभी प्रकार की LED लाइट बनाती है, वो भी 2 साल की वारंटी के साथ। और इतना ही नहीं, वो इंडस्ट्रियल लाइटिंग कंसल्टेंट सर्विस भी फ्री देते हैं।
3: अरे वाह, इनसे संपर्क कैसे करें?
4: सर इनका सेल्स ऑफिस एड्रेस JFF 22 कैपिटल हाई स्ट्रीट फूलबाग चौक भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए नैप LED लाइटिंग कंपनी से संपर्क करें 7988627064।
5: आपके हर खास समारोह को शानदार और यादगार बनाने के लिए आइए भाटोटिया टेंट हाउस एंड इवेंट ऑर्गेनाइजर।
6: सभी प्रकार के टेंट आइटम शानदार डेकोरेशन और इंडोर आउटडोर कैटरिंग की बेहतरीन सुविधा। शादी सगाई जन्मदिन या किसी भी समारोह के लिए एक ही जगह पर पूरी व्यवस्था।
5: संपर्क करें हंसराज भाटोटिया मोबाइल नंबर 9416347214।
6: और आपके खास समारोह के लिए शानदार राजविलास मैरिज एवं बैंक्वेट हॉल शिवनगर पार्ट 2 पांचाल कॉलोनी सीथल रोड धारूहेड़ा जिला रेवाड़ी हरियाणा।
5: भाटोटिया टेंट हाउस और राजविलास मैरिज बैंक्वेट हॉल, आपके समारोह की पूरी तैयारी एक ही जगह। जब बात आपकी मुस्कान की हो तो समझौता क्यों, अब स्पेशलिस्ट डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं। आइए डेंटल एक्सपर्ट्स भिवाड़ी, भिवाड़ी का इकलौता डेंटल क्लिनिक जहां पूरी टीम MDS स्पेशलिस्ट्स की है और जिन्हें 15 साल से अधिक का अनुभव है। डॉक्टर विनोद यादव MDS ऑर्थोडोंटिस्ट भिवाड़ी के एकमात्र ब्रेसेस स्पेशलिस्ट एंड इनविसलाइन प्रोवाइडर। इसके अलावा डेंटल इम्प्लांट्स और जटिल दांतों की समस्याओं का आधुनिक उपचार प्रदान करते हैं। साथ ही डॉक्टर ऋतु यादव MDS एंडोडोंटिस्ट रूट कैनाल स्माइल डिजाइनिंग और फुल माउथ रिहेबिलिटेशन की विशेषज्ञ। डेंटल एक्सपर्ट्स फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट आशियाना आंगन अलवर बाईपास रोड भिवाड़ी। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 8824232823। डेंटल एक्सपर्ट्स आपकी मुस्कान हमारी विशेषज्ञता।
6: भिवाड़ी वासियों, अब हर जरूरत की सर्विस सिर्फ एक ऐप पर। मैसन केयर लेकर आया है आपके लिए भरोसेमंद होम और प्रोफेशनल सर्विसेज।
5: बाथरूम डीप क्लीनिंग, किचन डीप क्लीनिंग, पूरे घर की सफाई, ऑफिस क्लीनिंग, जिम क्लीनिंग, कार क्लीनिंग, पानी की टंकी की सफाई, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ड्राइवर सर्विस, कैब बुकिंग और बहुत सारी अन्य सेवाएं, अब सब कुछ एक ही ऐप पर।
6: अभी मेस एंड केयर ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे अपनी पसंद की सर्विस बुक करें।
5: मेस एंड केयर, आपका घर हमारी जिम्मेदारी। बुकिंग के लिए अभी कॉल या व्हाट्सएप करें 8824106060।
7: फ्यूचर लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहें। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
8: गणेश स्टेशनर्स, बेटर देन द बेस्ट।

0: आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा ए टू जेड सामान। इसी के साथ यहाँ प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
1: गणेश स्टेशनर, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड, नियर हरी राम हॉस्पिटल, भिवारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।
2: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन। शाम

इवनिंग डेविड शर्मा जी, ओनली ऑन 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

इवनिंग डेविड शर्मा जी, ओनली ऑन 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन। वेलकम बैक टू 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन। अब सूरज जब ढल ही चुका है, आप थोड़े थोड़े जाम में फंसने से लग गए हो, क्योंकि हर जगह तो रोड खुदी पड़ी है, तो कहीं ना कहीं जाम लग रहा होगा। तो यार कॉल करके इतना तो बता दो कहां कहां जाम है, एटलीस्ट हम बाकियों को बता देंगे, वो तो नहीं फंसेंगे, इतनी तो हेल्प कर ही सकते हो। और जब आप ऑफिस से निकल ही चुके हो तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी जनता घर पहुंच चुकी है सेफली, आप अब पीछे रह रहे हो क्योंकि आज आपने बहुत सारे टारगेट अचीव करने का एक साथ सोचा, तो थोड़ा लेट हो गए, चलता है। पर आपने सीट बेल्ट लगा रखी है या नहीं ये जरूर ध्यान रख लें, आपके को पायलट ने सीट बेल्ट लगा रखी है या नहीं ये जरूर ध्यान रखें, क्योंकि भिवाड़ी की ट्रैफिक पुलिस अब बहुत ज्यादा चालान करने पे लगी हुई है। फालतू की भसड़ का ट्रैफिक जाम नहीं लगता है कि मैं भी घुस जाऊं तुम भी घुस जाओ, इधर से भी आ जाए उधर से भी आ जाए और सब स्टक अप हो गए, ऐसा नहीं होता है। तो सामने ही हमारे रिस्पेक्टेबल पुलिस ऑफिसर ट्रैफिक ऑफिसर खड़े होते हैं जो आपके लिए फटाफट से चालान बना देंगे, तो प्लीज ऐसी गलती ना करें। अब मेरा समय हो चुका है आपसे विदा लेने का, शाम का यही वो समय होता है जब मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, बट फिर एक फीलिंग आती है अंदर से कि आज नहीं जाएंगे तो कल कैसे आएंगे। तो कल मिलने की खुशी के साथ आज आपसे विदा लेता हूं, जिन जिनका भी आज बर्थडे था उनको वापस से विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, आज आपका दिन बहुत अच्छा रहे, बल्कि आने वाले सभी साल आपके बहुत अच्छे रहे। मे गॉड ब्लेस यू, मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू। और इसी के साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि आपको मेरा ये शो कैसा लग रहा है, मैं ये जो पूरे एफर्ट्स मारता हूं आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए या इतने बढ़िया बढ़िया से गाने आपके लिए लगाता हूं, आपको कुछ भी हमारे साथ शेयर करना है, कोई फीडबैक देना है, कोई सजेशन देना है या कुछ और जो भी चीज आपको बतानी है, आप हमें कॉल करें 1-843-266-5588। आपके मैसेजेस का, आपके कॉल का, आपके फीडबैक का हम वेट कर रहे होते हैं। सो यश शर्मा साइनिंग ऑफ फॉर द इवनिंग, इट वॉज अ लवली इवनिंग विद यू, टेक एक्सट्रीम गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, हास्ता ला विस्ता, सी या, नमस्कार।

0: औद्योगिक क्षेत्र सारे खुर्द, करौली, बंदापुर, खुशखेड़ा व चौपानकी में 16 औद्योगिक व 2 वेयर हाउस भूखंडों को ई नीलामी के माध्यम से बेचैन किया जा रहा है। इन भूखंडों के लिए अमानत राशि दिनांक 9/10/2026 समय 6 बजे तक जमा कराकर बिड लगा सकते हैं। बिड लगाने की अंतिम तिथि 14/10/2026 समय 5 बजे तक है। इसके साथ ही औद्योगिक क्षेत्र सलारपुर व पथरेड़ी में 43 भूखंडों को प्रत्यक्ष आवंटन योजना के माध्यम से बेचैन किया जा रहा है। इन भूखंडों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 12/10/2026 समय 6 बजे तक है। अंतिम जानकारी के लिए रिको की वेबसाइट www.riico.co.in यानी www.rico.co.in पर एवं रिको इकाई कार्यालय भिवाड़ी, द्वितीय रिको रेस्ट हाउस रोड भिवाड़ी में संपर्क कर सकते हैं।
1: अब भिवाड़ी के सबसे बड़े NABH सर्टिफाइड SS हॉस्पिटल में स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे पाएं। यहां पाएं स्किन स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, नेफ्रोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, गेस्ट्रोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी, ब्लड बैंक, एल और डायलिसिस, सभी बड़े TPA, कैशलेस, RGHS, ECHS, ESIC, चिरंजीवी योजना की कैशलेस सुविधा, यहां 24 घंटे की इमरजेंसी सेवा और एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें OCF2 ऑपोजिट मॉडर्न पब्लिक स्कूल, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट 7230011191 और 9785013999।
2: टाटा की गाड़ी तो ले ली है, अब भिवाड़ी में सर्विस सेंटर ढूंढते रहो।
3: अरे ढूंढना क्यों है, टाटा ऑथराइज्ड AK ऑटोमोबाइल है ना, जो संजय मोटर्स की ही यूनिट है। 2017 से भिवाड़ी का भरोसा है, टाटा के सर्टिफाइड मैकेनिक्स हैं और वहाँ सर्विसिंग बहुत ही शॉर्ट टाइम में हो जाती है।
2: अच्छा, और उसमें क्या खर्चे ही खर्चे?
3: अरे नहीं नहीं, AK ऑटोमोबाइल्स पर कार सर्विसिंग, बॉडी शॉप और व्हील अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग के अलावा कैशलेस इंश्योरेंस और रिन्यूअल, AMC, ऑन रोड मेंटेनेंस और एक्सीडेंट वारंटी जैसी सारी फैसिलिटीज हैं, जो खर्चे बहुत ही कम कर देती हैं। मेन रोड पर फूलबाग थाने के पास ही है ये।
2: अरे वाह, तो वेट क्यों करना, 9462369786 पे कॉल करके अभी AK ऑटोमोबाइल पे सर्विस बुक करो जल्दी।
4: सोनम ये लो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट।
5: अरे इसमें क्या है?
4: वही जो तुम्हें बहुत टाइम से चाहिए था।
5: ये ब्रेसलेट तो मुझे बहुत टाइम से चाहिए था।
4: क्या आप इसे दिल्ली से लाए हो?
5: लेकिन आप दिल्ली कब गए?
4: अरे वो है ना भिवाड़ी में अपने शांति ज्वेलर्स, इनके पास है सोने चांदी हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन और यहाँ मिलती है हॉलमार्क ज्वेलरी।
5: इनका एड्रेस क्या है?
4: इनका एड्रेस है शॉप नंबर 5 गणपति मॉल भिवाड़ी। और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9812210987 पर।
6: एक बेहतर कल के लिए, बेहतर मजबूती के लिए, बेहतर बचत के लिए यूज करें SBF रैपिड 550D TMT।
7: मजबूत निर्माण सदा के लिए।
8: मुझे अपने बच्चों के लिए चाहिए एक ऐसा स्कूल जो ICSE से एफिलेटेड हो।
9: भिवाड़ी में है एक मात्र ऐसा स्कूल SPS ग्लोबल स्कूल, जिसके बच्चों ने ICSE 10th की बोर्ड परीक्षाओं में 100% रिजल्ट के साथ साथ राज्य स्तर पर कराटे, स्केटिंग आदि प्रतियोगिताओं में भी अपने स्कूल का नाम रोशन किया है। यहाँ शिक्षा से बच्चों का बौद्धिक विकास और खेल कूद से शारीरिक विकास, डिसिप्लिन और समय समय पर सामाजिक व सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं होती रहती हैं, जो बच्चों के सर्वांगीण विकास में मदद करता है। यहाँ है बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, खेल का मैदान, ऐसी क्लासरूम, डिजिटल क्लासरूम, आधुनिक सुविधाओं से लैस लैब, बेस्ट टीचर की फैसिलिटी।
8: SPS ग्लोबल स्कूल नियर कैपिटल मॉल भिवाड़ी, आज ही विजिट करें या कॉल करें 9950888330।
10: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: मैं जयपुर जा रहा हूँ।
1: अच्छा, तो आते हुए जयपुर के मशहूर दूध लड्डू और प्याज कचौरी लेते आना।
0: अरे, दूध लड्डू और प्याज कचौरी के लिए जयपुर जाने का इंतजार क्यों करना, क्योंकि अब आपके शहर भिवाड़ी में अलवर बाईपास पर खुल चुका है कान्हा स्वीट्स।
1: जी हाँ, कान्हा स्वीट्स पर मिलते हैं स्वादिष्ट दूध लड्डू, प्याज कचौरी, समोसे किसी कलाकंद, रसमलाई, कुल्हड़ रबड़ी और सभी प्रकार की मिठाइयाँ।
0: बिल्कुल, हर मिठाई में स्वाद ऐसा कि एक बार खाएं तो दिल कहे एक और।
1: तो फिर आज मिठास हो जाए कान्हा स्वीट्स के साथ।
0: हाँ, परिवार हो या मेहमान, त्योहार हो या कोई खास खुशी, हर मौके की मिठास कान्हा स्वीट्स के साथ। पता नोट कर लीजिए,
1: शॉप नंबर A GF04, कैपिटल आर्केडिया, अलवर बाईपास इन फ्रंट ऑफ वेदांता फार्म, भिवाड़ी, राजस्थान।
2: मोहाली और गुड़गांव का डेंटल अनुभव अब भिवाड़ी में। आइए वी केयर डेंटल क्लिनिक इम्प्लांट सेंटर, जहां RCT, कैपिंग और डेंटल इम्प्लांट के एक्सपर्ट ट्रीटमेंट के साथ आपको मिलता है डॉक्टर रुकु सिंगला के 16 वर्षों के अनुभव और विशेषज्ञता का भरोसा। आर्मी और कॉर्पोरेट कर्मचारियों के लिए स्पेशल डिस्काउंट। पता, अपोजिट मैकडोनल्ड्स, JMK पेट क्लिनिक के पास, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉल करें 7814399374। वी केयर डेंटल, आपकी मुस्कान हमारा भरोसा।
1: क्या आपकी आँखों की रोशनी से जुड़ी कोई परेशानी है? क्या आप चश्मे से छुटकारा पाना चाहते हैं?
0: तो आइए आधुनिक सुविधाओं से युक्त मिश्री देवी आई हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी आई सेंटर।
1: पिछले 15 वर्षों से नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में भरोसेमंद सेवाएं, अब बहर रोड, नियम राणा और टपुकड़ा भिवाड़ी में।
0: यहाँ उपलब्ध है मोतियाबिंद, फेको।

0: मल्टीफोकल एवं प्रीमियम लेंस, लेसिक लेजर, कॉर्निया, ग्लूकोमा और रेटिना उपचार एवं सर्जरी की आधुनिक सुविधाएं।
1: और अब दोनों आँखों का लेसिक लेजर उपचार आधुनिक तकनीक के साथ आपकी पहुंच में और उचित दरों पर।
0: बेहतर नेत्र उपचार, उचित खर्च और भरोसेमंद देखभाल के साथ चश्मे से आजादी की ओर बढ़ाइए अपना कदम। मिश्री देवी आई हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी आई सेंटर। संपर्क नंबर
1: 9783220043 या 01493294200। अब आपके शहर भिवाड़ी में साइकियाट्री एवं ऑर्थोपेडिक्स की नियमित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है ओजस हॉस्पिटल में।
0: मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितिका अग्रवाल द्वारा डिप्रेशन, नींद की समस्या, बेचैनी, घबराहट, मानसिक तनाव, स्किजोफ्रेनिया और ओसीडी जैसी समस्याओं का उचित उपचार किया जाता है एवं काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध है।
1: वहीं हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेंद्र अग्रवाल द्वारा चोट, ट्रॉमा, फ्रैक्चर, घुटने एवं कमर का दर्द, लिगामेंट की चोट, गठिया और आर्थराइटिस जैसी हड्डी एवं जोड़ संबंधी समस्याओं का उपचार किया जाता है।
0: साथ ही सर्जरी, फिजियोथेरेपी और पेन मैनेजमेंट की सुविधा भी उपलब्ध है।
1: तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या को नजरअंदाज न करें, पहुंचिए ओजस हॉस्पिटल,
0: पता नगीना गार्डन के पास, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी।
1: फोन करें 9521333591। ओजस हॉस्पिटल, बेहतर स्वास्थ्य की ओर एक कदम। अब आपके शहर धारूहेड़ा में ही मिल रही है आधुनिक और बेहतरीन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सुविधाएं। लोटस हॉस्पिटल, बेस्ट टैक्स सिटी BPL फ्लैट के सामने धारूहेड़ा में डॉक्टर अन्विका बंसल, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, 15 वर्ष से अधिक अनुभव के साथ, जो पहले से ही भिवाड़ी में अपनी सेवाएं दे रही थी, अब अपने नए लोटस हॉस्पिटल में OPD और इमरजेंसी सर्विस के लिए उपलब्ध है। इसके साथ ही यहां उपलब्ध है अनुभवी हड्डी रोग विशेषज्ञ। यहां घुटना बदलना, कुल्हा बदलना और रीढ़ से जुड़ी सभी बीमारी का इलाज होता है और एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट और लैप्रोस्कोपिक जनरल सर्जन, जहां लेजर टेक्निक से बवासीर, भगंदर का इलाज लोटस हॉस्पिटल में मिलता है, तथा 24 घंटे आपातकालीन सुविधा, एडवांस्ड एक्सरे, लैबोरेटरी, फार्मेसी, अल्ट्रासाउंड सर्विस, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, AC प्राइवेट रूम की सुविधाएं उपलब्ध हैं। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आज ही विजिट करें लोटस हॉस्पिटल, बेस्ट टैक्स सिटी, BPL फ्लैट के सामने धारूहेड़ा। संपर्क करें 01274415033।
2: भिवाड़ी का पहला ISO और NABH सर्टिफाइड श्री कृष्णा हॉस्पिटल, जिसमें मल्टी स्पेशलिस्ट OPD, 10 बेड का ICU, सबसे बड़ा मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 50 बेड का इंडोर, 24 आवर्स एम्बुलेंस, फार्मेसी और इमरजेंसी सेवाएं, तथा लैब, डिजिटल एक्सरे जैसी सुविधाओं से लैस श्री कृष्णा हॉस्पिटल अधिकांश मल्टीनेशनल कंपनियों के मेडिकल कंसल्टेंसी एवं कैशलेस उपचार का एकमात्र सेंटर। श्री कृष्णा हॉस्पिटल, B14849 भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी, 8529113916, 7340013916। इस हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट और फिजिशियन की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
3: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी, सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
4: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे, किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
3: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
1: आपके हर खास समारोह को शानदार और यादगार बनाने के लिए आइए भाटोटिया टेंट हाउस एंड इवेंट ऑर्गेनाइजर।
0: सभी प्रकार के टेंट आइटम, शानदार डेकोरेशन और इंडोर आउटडोर कैटरिंग की बेहतरीन सुविधा, शादी, सगाई, जन्मदिन या किसी भी समारोह के लिए एक ही जगह पर पूरी व्यवस्था।
1: संपर्क करें हंस राज भाटोटिया, मोबाइल नंबर 9416347214।
0: और आपके खास समारोह के लिए शानदार राज विलास मैरिज एवं बैंक्वेट हॉल, शिवनगर पार्ट 2, पांचाल कॉलोनी, सीथल रोड, धारूहेड़ा, जिला रेवाड़ी, हरियाणा।
1: बाटोटिया टेंट हाउस और राजविलास मैरिज बैंक्वेट हॉल, आपके समारोह की पूरी तैयारी एक ही जगह।
2: अरे यार, आज शाम पार्टी करें?
5: नहीं यार, आज डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाना था।
2: गुरुग्राम? इतनी दूर?
5: हाँ यार, वहीं तो बेस्ट हाइजीन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और पेनलेस ट्रीटमेंट मिलता है।
2: ये बात पहले सही थी, पर अब नहीं।
5: मतलब?
2: गुरुग्राम के ही एक्सपीरियंस्ड डेंटल एक्सपर्ट डॉक्टर जितिन टक्कर पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ मिलता है प्रीमियम सेटअप, एडवांस टेक्नोलॉजी, कंप्लीट हाइजीन और 100% पेनलेस डेंटल ट्रीटमेंट। और सबसे अच्छी बात, चार्जेस दिल्ली और गुरुग्राम से काफी कम।
5: तो फिर दूर जाने का टेंशन खत्म।
2: बिल्कुल, अब एक्सपीरियंस, भरोसा और क्वालिटी, सब कुछ घर के पास भिवाड़ी में। आइए 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, ए ब्लॉक, A140, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। आज ही संपर्क करें डॉक्टर जितिन टक्कर 9871122135। 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, बेहतर चॉइसेस, बेहतर मुस्कान। अजी, सुनते हो, मेरा फोन टूट गया है।
5: अरे भाग्यवान, सुनो, घबराओ नहीं, खंडेलवाल मोबाइल भिवाड़ी लाया है 0% डाउन पेमेंट पर। मोबाइल फोन 9784960000। और सुनो, ओप्पो ने लॉन्च किया है अभी रेनो 15C कम दामों में, बजाज फाइनेंस के साथ 0% ब्याज, 10% कैश बैक के साथ, प्लस ट्रॉली बैग, 0 डाउन पेमेंट। और बैटरी से हो परेशान तो रियलमी ने लॉन्च किया है अपना एक नया मॉडल 10,000 mAh बैटरी के साथ। अभी जाइए खंडेलवाल मोबाइल पर ढेर सारे गिफ्ट के साथ, नीलम चौक। चिंता क्यों करते हो, बजाज फाइनेंस है ना अपने साथ। 9784960000 और 9828288666।
6: राहुल यार, मैंने नोएडा से जॉब स्विच कर दिया है, अब सोच रही हूँ भिवाड़ी में रेंटल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा।
7: चिंता की कोई बात नहीं, मेगा एयर कंडीशनर्स एंड इलेक्ट्रिक सर्विस है ना, ये पूरे दिल्ली NCR में अपनी रेंटल सर्विस दे रहे हैं। और इनके यहाँ टावर AC, विंडो AC, स्प्लिट AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड LED TV, सभी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
6: लेकिन इनकी सर्विस भिवाड़ी में तो बहुत महंगी होगी ना।
7: बिल्कुल भी नहीं, आपको ये सर्विस सेम रेट पर मिलने वाली है। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9899247102 पर, या फिर विजिट करें www.maces.in पर।
8: ये क्या, अभी भी डीजल कार चला रहे हो? अब समय है स्मार्ट फ्यूल पर स्विच करने का, वो भी ज्यादा बचत के साथ। पेश है विक्टोरिस SCNG। ये स्मार्ट है क्योंकि ये देता है 27.02 किलोमीटर पर KG का शानदार माइलेज, और इसका अंडरबॉडी CNG टैंक बूट स्पेस पर कोई समझौता नहीं करता। ज्यादा बचत भी, क्योंकि अपनी पुरानी डीजल कार के एक्सचेंज पर पाएं 50,000 रुपए तक का फायदा। तो देर किस बात की, आज ही बुक करें, अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम पर जाएं। नियम व शर्तें लागू।
9: विजय फॉर्च्यून कार्स भिवाड़ी।
10: मॉडर्न अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर भिवाड़ी पर अनुभवी रेडियोलॉजिस्ट व पैथोलॉजिस्ट द्वारा अत्याधुनिक मशीनों से 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 4D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इको कार्डियोग्राफी, डिजिटल एक्सरे, IVP, बैरियम, HSG, डिजिटल OPG, DMT, ECG, EEG, BFT, मैमोग्राफी व फुली एडवांस कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब की सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध है।
11: नियर सरकारी हॉस्पिटल 135 भिवाड़ी, दूसरी ब्रांच, मॉडर्न डायग्नोस्टिक एवं इमेजिंग सेंटर, नियर नगर पालिका ऑफिस, अपोजिट अंबेडकर पार्क, धारूहेड़ा। कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800-123-4494 या 9983040100 पर।
12: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: अब भिवाड़ी के सबसे बड़े NABH सर्टिफाइड SS हॉस्पिटल में स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे पाएं। यहां पाएं स्किन स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, नेफ्रोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी, ब्लड बैंक L और डायलिसिस, सभी बड़े TPA, कैशलेस RGHS, ECHS, ESIC, चिरंजीवी योजना की कैशलेस सुविधा, यहां 24 घंटे की इमरजेंसी सेवा और एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें OCF2 ऑपोजिट मॉडर्न पब्लिक स्कूल, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट 7230011191 और 9785013999।
1: टाटा की गाड़ी तो ले ली है, अब भिवाड़ी में सर्विस सेंटर ढूंढते रहो।
2: अरे ढूंढना क्यों है, टाटा ऑथराइज्ड AK ऑटोमोबाइल है ना, जो संजय मोटर्स की ही यूनिट है। 2017 से भिवाड़ी का भरोसा है, टाटा के सर्टिफाइड मैकेनिक्स हैं और वहाँ सर्विसिंग बहुत ही शॉर्ट टाइम में हो जाती है।
1: अच्छा, और उसमें क्या खर्चे ही खर्चे?
2: अरे नहीं नहीं, AK ऑटोमोबाइल्स पर कार सर्विसिंग, बॉडी शॉप और व्हील अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग के अलावा कैशलेस इंश्योरेंस और रिन्यूअल, AMC, ऑन रोड मेंटेनेंस और एक्सीडेंट वारंटी जैसी सारी फैसिलिटीज हैं, जो खर्चे बहुत ही कम कर देती हैं। मेन रोड पर फूलबाग थाने के पास ही है ये।
1: अरे वाह, तो वेट क्यों करना, 9462369786 पे कॉल करके अभी AK ऑटोमोबाइल पे सर्विस बुक करो जल्दी।
3: सोनम ये लो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट।
4: अरे इसमें क्या है?
3: वही जो तुम्हें बहुत टाइम से चाहिए था।
4: ये ब्रेसलेट तो मुझे बहुत टाइम से चाहिए था।
3: क्या आप इसे दिल्ली से लाए हो?
4: लेकिन आप दिल्ली कब गए?
3: अरे वो है ना भिवाड़ी में अपने शांति ज्वेलर्स, इनके पास है सोने चांदी हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन और यहाँ मिलती है हॉलमार्क ज्वेलरी।
4: इनका एड्रेस क्या है?
3: इनका एड्रेस है शॉप नंबर 5 गणपति मॉल भिवाड़ी। और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9812210987 पर।
5: एक बेहतर कल के लिए, बेहतर मजबूती के लिए, बेहतर बचत के लिए यूज करें SBF रैपिड 550D TMT।
6: मजबूत निर्माण सदा के लिए।
7: मुझे अपने बच्चों के लिए चाहिए एक ऐसा स्कूल जो ICSE से एफिलिएटेड हो।
8: भिवाड़ी में है एक मात्र ऐसा स्कूल SPS ग्लोबल स्कूल, जिसके बच्चों ने ICSE 10th की बोर्ड परीक्षाओं में 100% रिजल्ट के साथ साथ राज्य स्तर पर कराटे, स्केटिंग आदि प्रतियोगिताओं में भी अपने स्कूल का नाम रोशन किया है। यहां शिक्षा से बच्चों का बौद्धिक विकास और खेलकूद से शारीरिक विकास, डिसिप्लिन और समय समय पर सामाजिक व सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं होती रहती हैं, जो बच्चों के सर्वांगीण विकास में मदद करता है। यहां है बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, खेल का मैदान, AC क्लासरूम, डिजिटल क्लासरूम, आधुनिक सुविधाओं से लैस लैब, बेस्ट टीचर की फैसिलिटी।
7: SPS ग्लोबल स्कूल नियर कैपिटल मॉल भिवाड़ी। आज ही विजिट करें या कॉल करें 9950888330।
9: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: मैं जयपुर जा रहा हूँ।
1: अच्छा, तो आते हुए जयपुर के मशहूर दूध लड्डू और प्याज कचौरी लेते आना।
0: अरे, दूध लड्डू और प्याज कचौरी के लिए जयपुर जाने का इंतजार क्यों करना, क्योंकि अब आपके शहर भिवाड़ी में अलवर बाईपास पर खुल चुका है कान्हा स्वीट्स।
1: जी हाँ, कान्हा स्वीट्स पर मिलते हैं स्वादिष्ट दूध लड्डू, प्याज कचौरी, समोसे किसी कलाकंद, रसमलाई, कुल्हड़ रबड़ी और सभी प्रकार की मिठाइयाँ।
0: बिल्कुल, हर मिठाई में स्वाद ऐसा कि एक बार खाएं तो दिल कहे एक और।
1: तो फिर आज मिठास हो जाए कान्हा स्वीट्स के साथ।
0: हाँ, परिवार हो या मेहमान, त्योहार हो या कोई खास खुशी, हर मौके की मिठास कान्हा स्वीट्स के साथ। पता नोट कर लीजिए,
1: शॉप नंबर A GF04, कैपिटल आर्केडिया, अलवर बाईपास इन फ्रंट ऑफ वेदांता फार्म, भिवाड़ी, राजस्थान।
2: मोहाली और गुड़गांव का डेंटल अनुभव अब भिवाड़ी में। आइए वी केयर डेंटल क्लिनिक इम्प्लांट सेंटर, जहां RCT, कैपिंग और डेंटल इम्प्लांट के एक्सपर्ट ट्रीटमेंट के साथ आपको मिलता है डॉक्टर रुकु सिंगला के 16 वर्षों के अनुभव और विशेषज्ञता का भरोसा। आर्मी और कॉर्पोरेट कर्मचारियों के लिए स्पेशल डिस्काउंट। पता, अपोजिट मैकडोनल्ड्स, JMK पेट क्लिनिक के पास, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉल करें 7814399374। वी केयर डेंटल, आपकी मुस्कान हमारा भरोसा।
1: क्या आपकी आँखों की रोशनी से जुड़ी कोई परेशानी है? क्या आप चश्मे से छुटकारा पाना चाहते हैं?
0: तो आइए आधुनिक सुविधाओं से युक्त मिश्री देवी आई हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी आई सेंटर।
1: पिछले 15 वर्षों से नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में भरोसेमंद सेवाएं, अब बहर रोड, नियम राणा और टपुकड़ा भिवाड़ी में।
0: यहाँ उपलब्ध है मोतियाबिंद, फेको, मल्टीफोकल एवं प्रीमियम लेंस, लेसिक लेजर, कॉर्निया, ग्लूकोमा और रेटिना उपचार एवं सर्जरी की आधुनिक सुविधाएं।
1: और अब दोनों आँखों का लेसिक लेजर उपचार आधुनिक तकनीक के साथ आपकी पहुंच में और उचित दरों पर।
0: बेहतर नेत्र उपचार, उचित खर्च और भरोसेमंद देखभाल के साथ चश्मे से आजादी की ओर बढ़ाइए अपना कदम। मिश्री देवी आई हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी आई सेंटर। संपर्क नंबर
1: 9783220043 या 01493294200। अब आपके शहर भिवाड़ी में साइकियाट्री एवं ऑर्थोपेडिक्स की नियमित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है ओजस हॉस्पिटल में।
0: मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितिका अग्रवाल द्वारा डिप्रेशन, नींद की समस्या, बेचैनी, घबराहट, मानसिक तनाव, स्किजोफ्रेनिया और OCD जैसी समस्याओं का उचित उपचार किया जाता है एवं काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध है।
1: वहीं हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेंद्र अग्रवाल द्वारा चोट, ट्रॉमा, फ्रैक्चर, घुटने एवं कमर का दर्द, लिगामेंट की चोट, गठिया और आर्थराइटिस जैसी हड्डी एवं जोड़ संबंधी समस्याओं का उपचार किया जाता है।
0: साथ ही सर्जरी, फिजियोथेरेपी और पेन मैनेजमेंट की सुविधा भी उपलब्ध है।
1: तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या को नजरअंदाज न करें, पहुंचिए ओजस हॉस्पिटल।
0: पता, नगीना गार्डन के पास, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी।
1: फोन करें 9521333591। ओजस हॉस्पिटल, बेहतर स्वास्थ्य की ओर एक कदम। अब आपके शहर धारूहेड़ा में ही मिल रही है आधुनिक और बेहतरीन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सुविधाएं। लोटस हॉस्पिटल, बेस्ट टैग सिटी, BPL फ्लैट के सामने धारूहेड़ा में डॉक्टर अन्विका बंसल, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, 15 वर्ष से अधिक अनुभव के साथ, जो पहले से ही भिवाड़ी में अपनी सेवाएं दे रही थी, अब अपने नए लोटस हॉस्पिटल में OPD और इमरजेंसी सर्विस के लिए उपलब्ध हैं। इसके साथ ही यहां उपलब्ध है अनुभवी हड्डी रोग विशेषज्ञ। यहां घुटना बदलना, कुल्हा बदलना और रीढ़ से जुड़ी सभी बीमारी का इलाज होता है, और एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट और लैप्रोस्कोपिक जनरल सर्जन, जहां लेजर टेक्निक से बवासीर, भगंदर का इलाज लोटस हॉस्पिटल में मिलता है, तथा 24 घंटे आपातकालीन सुविधा, एडवांस्ड एक्सरे, लैबोरेटरी, फार्मेसी, अल्ट्रासाउंड सर्विस, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, AC प्राइवेट रूम की सुविधाएं उपलब्ध हैं। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आज ही विजिट करें लोटस हॉस्पिटल, बेस्ट टैग सिटी, BPL फ्लैट के सामने धारूहेड़ा। संपर्क करें 01274415033।
3: भिवाड़ी का पहला ISO और NABH सर्टिफाइड श्री कृष्णा हॉस्पिटल, जिसमें मल्टी स्पेशलिस्ट OPD, 10 बेड का ICU, सबसे बड़ा मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 50 बेड का इंडोर, 24 आवर्स एम्बुलेंस, फार्मेसी और इमरजेंसी सेवाएं तथा लैब, डिजिटल एक्सरे जैसी सुविधाओं से लैस श्री कृष्णा हॉस्पिटल अधिकांश मल्टीनेशनल कंपनियों के मेडिकल कंसल्टेंसी एवं कैशलेस उपचार का एकमात्र सेंटर। श्री कृष्णा हॉस्पिटल, B14849 भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी, 8529113916, 7340013916। इस हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट और फिजिशियन की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
4: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
5: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
4: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
6: आपके हर खास समारोह को शानदार और यादगार बनाने के लिए आइए भाटोटिया टेंट हाउस एंड इवेंट ऑर्गेनाइजर।
7: सभी प्रकार के टेंट आइटम, शानदार डेकोरेशन और इंडोर आउटडोर कैटरिंग की बेहतरीन सुविधा, शादी, सगाई, जन्मदिन या किसी भी समारोह के लिए एक ही जगह पर पूरी व्यवस्था।
6: संपर्क करें हंसराज भाटोटिया, मोबाइल नंबर 9416347214।
7: और आपके खास समारोह के लिए शानदार राजविलास मैरिज एवं बैंक्वेट हॉल, शिवनगर पार्ट 2, पांचाल कॉलोनी, सीथल रोड, धारूहेड़ा, जिला रेवाड़ी, हरियाणा।
6: बाटोटिया टेंट हाउस और राजविलास मैरिज बैंक्वेट हॉल, आपके समारोह की पूरी तैयारी एक ही जगह।
8: अब भिलवाड़ी के शिवोहम हॉस्पिटल में पाएं एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं। यहां 25 बेड से लेस इंडोर, 6 बेड से लेस ICU, 2 बड़े ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजी लैब तथा अत्याधुनिक एक्सरे मशीनों के द्वारा एक्सरे सुविधा, तकनीकी मशीनों द्वारा जांच, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, एम्बुलेंस, सभी कैशलेस TPA सुविधाओं के साथ 14 साल से कम आयु की बच्चियों के लिए निशुल्क परामर्श, गायनेकोलॉजी, इनफर्टिलिटी, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नम्रता मेहता चतुर्वेदी व हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हेमंत चतुर्वेदी जैसे अनुभवी डॉक्टर से परामर्श सुविधा, जो कि पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में निरंतर अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। शिवोहम हॉस्पिटल, B4 भगत सिंह कॉलोनी, पुराने RTO ऑफिस के पास, भिवाड़ी। संपर्क 9799996778।
3: भिवाड़ी का पहला ISO और NABH सर्टिफाइड श्री कृष्णा हॉस्पिटल, जिसमें मल्टी स्पेशलिस्ट OPD, 10 बेड का ICU, सबसे बड़ा मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 50 बेड का इंडोर, 24 आवर्स एम्बुलेंस, फार्मेसी और इमरजेंसी सेवाएं तथा लैब, डिजिटल एक्सरे जैसी सुविधाओं से लैस श्री कृष्णा हॉस्पिटल अधिकांश मल्टीनेशनल कंपनियों के मेडिकल कंसल्टेंसी एवं कैशलेस उपचार का एकमात्र सेंटर। श्री कृष्णा हॉस्पिटल, B14849 भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी, 8529113916, 7340013916। इस हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट और फिजिशियन की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
6: क्या आपकी त्वचा, बाल या नाखून की समस्या बार बार परेशान कर रही है?
9: अब सही इलाज के लिए मिलिए डॉक्टर गौरव, एम्स से प्रशिक्षित त्वचा रोग विशेषज्ञ, SS हॉस्पिटल, भिवाड़ी में।
6: मुंहासे, पिगमेंटेशन, एलर्जी, हेयर फॉल से लेकर लेजर, केमिकल पील और बोटॉक्स जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध।
9: ECHS RGHS तथा NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल में सभी प्रमुख TPA मान्य।
6: SS हॉस्पिटल, भिवाड़ी, भरोसेमंद विशेषज्ञ से देखभाल। समय रोजाना शाम 4:30 से 6:30 तक, गुरुवार अवकाश।
10: पूजा, तुम्हारे फेस पर कितने पिंपल्स और धब्बे हो रहे हैं?
11: हाँ यार, और बाल भी हर दिन झड़ रहे हैं। कई बार दिल्ली गुरुग्राम में भी दिखा चुकी हूँ।
10: अरे पूजा, अब दिल्ली या गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपनी भिवाड़ी में है डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, जहाँ पर स्किन, हेयर एंड नेल्स की सभी बीमारियों का पूर्ण इलाज डॉक्टर सुचेता MD डर्मेटोलॉजी द्वारा किया जाता है, जो भिवाड़ी में अपनी सेवाएं दे रही है। इनके यहाँ लेजर हेयर रिमूवल, माइक्रो नीडलिंग, PRP, RF, अन्य सभी स्किन समस्याओं का समाधान विदेशी मशीनों व नई तकनीकों द्वारा किया जाता है। कॉल करें 6367551007। विजिट डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, A56 फर्स्ट फ्लोर भगत सिंह कॉलोनी, बिहाइंड सुखम टावर, भिवाड़ी।
12: आपके सारे जरूरतों का बीमा एक ही जगह विधि एंटरप्राइजेस भिवाड़ी। स्वास्थ्य बीमा, वाहन बीमा, जीवन बीमा, फायर बीमा सब मिलेगा यहाँ। और हाँ, बीमा कराने पर खास ऑफर भी मिलेंगे। संपर्क करें चंद्रभान विधि एंटरप्राइजेस, रिको चौक भिवाड़ी, 9887066308।
13: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: आपनो देश आपनो रंग सब मिले आपनो बाजार के संग। जी हाँ, आपनो बाजार आपका कंप्लीट फैमिली स्टोर, जहाँ उत्तम क्वालिटी और वाजिब दामों के साथ आपको मिलता है किराना, ग्रोसरी आइटम, कॉस्मेटिक, हाउसकीपिंग, हाउसहोल्ड आइटम, गिफ्ट आइटम, क्रॉकरी, टॉयज एंड गेम्स। इन सभी आइटम के MRP दामों पर खास छूट। इतना ही नहीं, फ्री होम डिलीवरी की सुविधा भी है। इनके स्टोर अलवर बाईपास, थड़ा रोड, भिवाड़ी, कृष्ण मॉल, टपुकड़ा आशियाना विलेज सेंटर। संपर्क करें 9680870184 या फिर 7822091287।
1: अरे, प्लांट का तो सारा काम हो गया, अब LED लाइट कहाँ से खरीदे?
2: सर, क्या आपको नहीं पता है नेप LED लाइटिंग कंपनी इंडस्ट्रियल लाइटिंग जैसे फ्लड लाइट, हाईवे लाइट, स्ट्रीट लाइट आदि के साथ साथ सभी प्रकार की LED लाइट बनाती है, वो भी 2 साल की वारंटी के साथ। और इतना ही नहीं, वो इंडस्ट्रियल लाइटिंग कंसल्टेंट सर्विस भी फ्री देते हैं।
1: अरे वाह, इनसे संपर्क कैसे करें?
2: सर, इनका सेल्स ऑफिस एड्रेस JFF 22 कैपिटल हाई स्ट्रीट, फूलबाग चौक, भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए नेप LED लाइटिंग कंपनी से संपर्क करें 7988627064।
3: आपके हर खास समारोह को शानदार और यादगार बनाने के लिए आइए भाटोटिया टेंट हाउस एंड इवेंट ऑर्गेनाइजर।
4: सभी प्रकार के टेंट आइटम, शानदार डेकोरेशन और इंडोर आउटडोर कैटरिंग की बेहतरीन सुविधा, शादी, सगाई, जन्मदिन या किसी भी समारोह के लिए एक ही जगह पर पूरी व्यवस्था।
3: संपर्क करें हंसराज भाटोटिया, मोबाइल नंबर 9416347214।
4: और आपके खास समारोह के लिए शानदार राजविलास मैरिज एवं बैंक्वेट हॉल, शिवनगर पार्ट 2, पांचाल कॉलोनी, सीथल रोड, धारूहेड़ा, जिला रेवाड़ी, हरियाणा।
3: भाटोटिया टेंट हाउस और राजविलास मैरिज बैंक्वेट हॉल, आपके समारोह की पूरी तैयारी एक ही जगह। जब बात आपकी मुस्कान की हो तो समझौता क्यों, अब स्पेशलिस्ट डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं। आइए डेंटल एक्सपर्ट्स भिवाड़ी, भिवाड़ी का इकलौता डेंटल क्लिनिक, जहां पूरी टीम MDS स्पेशलिस्ट्स की है और जिन्हें 15 साल से अधिक का अनुभव है। डॉक्टर विनोद यादव, MDS ऑर्थोडोंटिस्ट, भिवाड़ी के एकमात्र ब्रेसेस स्पेशलिस्ट एंड इनविसलाइन प्रोवाइडर। इसके अलावा डेंटल इम्प्लांट्स और जटिल दांतों की समस्याओं का आधुनिक उपचार प्रदान करते हैं। साथ ही डॉक्टर ऋतु यादव, MDS एंडोडोंटिस्ट, रूट कैनाल, स्माइल डिजाइनिंग और फुल माउथ रिहेबिलिटेशन की विशेषज्ञ। डेंटल एक्सपर्ट्स, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट आशियाना आंगन, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 8824232823। डेंटल एक्सपर्ट्स, आपकी मुस्कान हमारी विशेषज्ञता।

0: चीजों के साथ तैयार रहे। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
1: गणेश स्टेशनर्स, बेटर देन द बेस्ट,
0: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा A to Z सामान। इसी के साथ यहां प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
1: गणेश स्टेशनर्स, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड नियर हरी राम हॉस्पिटल, भिवारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।
2: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: नहीं तेरे।
1: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
2: हेलो जी, प्यारी सी गुड वेल इवनिंग है, नमस्कार है, आदाब है और हाजिर है आपका दोस्त एंड होस्ट आरजे यश, यानी कि आपका खुर्राफत यश। और भाई साहब, आपको तो पता है कि जब भी यश आता है तो अपने साथ में बहुत ही ढेर सारी बातों का शोर लेकर के आता है। लेकिन साहब, आपको ये भी पता है कि जब भी यश आता है तो भाई साहब भिवाड़ी शहर से जुड़ी बातों को लेकर के आता है, भिवाड़ी शहर के बाहर से जुड़ी बातों को लेकर के आता है। और यही कहां रुकता है भाई साहब, साथ में लेकर के आता है देश और दुनिया से जुड़ी बहुत ही ढेर सारी खबरों को भी। तो भाई साहब, बहुत ही ढेर सारी खबरें हमारे साथ होंगी, भिवाड़ी शहर से जुड़ी बातें हमारे साथ होंगी, कुछ भिवाड़ी शहर के बाहर से जुड़ी भी बातें हमारे साथ होंगी। और भाई साहब, साथ में आज हुआ जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट, उस पर भी बातें होंगी, क्योंकि भाई साहब प्रदर्शनकारियों का जलवा है, प्रदर्शनकारियों का जलवा अंग अंग भड़का। राइमिंग हो या ना हो, प्रदर्शन में मजा जरूर आया। चलो भाई साहब, उस पर भी बातें बहुत ढेर सारी होंगी, ढेर सारी बातें आपको बताऊंगा, बस उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप लोग अपने ऑफिस से घर की ओर निकल चुके हैं तो भाई साहब सबसे पहले तो कार का सीट बेल्ट जरा टाइट बांधिए, उसके बाद रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा सा हाई कीजिए, और बस रेडियो का वॉल्यूम हाई करने के बाद अब यहाँ पर आप एंजॉय कीजिएगा इस प्यारे से गाने को, क्योंकि भाई साहब गाने साथ में होते हैं तो आपका टाइम पास भी होता जाता है, और टाइम पास के साथ में अगर बातें होती जाए तो चार चांद लग जाते हैं। तो बस भाई साहब, यश का काम है आपको प्यारे प्यारे से गाने सुनवाना, प्यारी प्यारी सी बातें आपको बताना, तो बहुत ही ढेर सारी बातें होंगी गानों के साथ होंगी। तो बस भाई साहब, यहाँ पर एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लेकर के आऊंगा और भी ढेर सारी बातों को। फिलहाल आप चेहरे पर स्माइल लाइए, क्योंकि आप शहर के नंबर वन रेडियो पर है। तो चलिए भाई साहब, चेहरे पर स्माइल लाइए और यहाँ पर एंजॉय कीजिएगा इस गाने को। चलिए लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, ब्रेक के बाद लेकर के आऊंगा बहुत ही ढेर सारी बातें, कहीं मत जाइए, सुनते रहिए अपने प्यारे से शहर भिवाड़ी का प्यारा सा रेडियो 90.8 FM 24।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
1: मैं जयपुर जा रहा हूँ।
2: अच्छा, तो आते हुए जयपुर के मशहूर दूध लड्डू और प्याज कचौरी लेते आना।
1: अरे, दूध लड्डू और प्याज कचौरी के लिए जयपुर जाने का इंतजार क्यों करना, क्योंकि अब आपके शहर भिवाड़ी में अलवर बाईपास पर खुल चुका है कान्हा स्वीट्स।
2: जी हाँ, कान्हा स्वीट्स पर मिलते हैं स्वादिष्ट दूध लड्डू, प्याज कचौरी, समोसे, किसी कलाकंद, रसमलाई, कुल्हड़ रबड़ी और सभी प्रकार की मिठाइयाँ।
1: बिल्कुल, हर मिठाई में स्वाद ऐसा कि एक बार खाएं तो दिल कहे एक और।
2: तो फिर आज मिठास हो जाए कान्हा स्वीट्स के साथ।
1: हाँ, परिवार हो या मेहमान, त्योहार हो या कोई खास खुशी, हर मौके की मिठास कान्हा स्वीट्स के साथ। पता नोट कर लीजिए,
2: शॉप नंबर AG F04, कैपिटल आर्केडिया, अलवर बाईपास इन फ्रंट ऑफ वेदांता फार्म, भिवाड़ी, राजस्थान।
3: मोहाली और गुड़गांव का डेंटल अनुभव अब भिवाड़ी में। आइए वी केयर डेंटल क्लिनिक इम्प्लांट सेंटर, जहां RCT, कैपिंग और डेंटल इम्प्लांट के एक्सपर्ट ट्रीटमेंट के साथ आपको मिलता है डॉक्टर रुकु सिंगला के 16 वर्षों के अनुभव और विशेषज्ञता का भरोसा। आर्मी और कॉर्पोरेट कर्मचारियों के लिए स्पेशल डिस्काउंट। पता, अपोजिट मैकडोनल्ड्स, JMK पेट क्लिनिक के पास, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉल करें 7814399374। वी केयर डेंटल, आपकी मुस्कान हमारा भरोसा।
2: क्या आपकी आँखों की रोशनी से जुड़ी कोई परेशानी है? क्या आप चश्मे से छुटकारा पाना चाहते हैं?
1: तो आइए आधुनिक सुविधाओं से युक्त मिश्री देवी आई हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी आई सेंटर।
2: पिछले 15 वर्षों से नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में भरोसेमंद सेवाएं, अब बहर रोड, नियम राणा और टपुकड़ा भिवाड़ी में।
1: यहाँ उपलब्ध हैं मोतियाबिंद, फेको, मल्टीफोकल एवं प्रीमियम लेंस, लेसिक लेजर, कॉर्निया, ग्लूकोमा और रेटिना उपचार एवं सर्जरी की आधुनिक सुविधाएं।
2: और अब दोनों आंखों का लेसिक लेजर उपचार आधुनिक तकनीक के साथ आपकी पहुंच में और उचित दरों पर।
1: बेहतर नेत्र उपचार, उचित खर्च और भरोसेमंद देखभाल के साथ चश्मे से आजादी की ओर बढ़ाइए अपना कदम। मिश्री देवी आई हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी आई सेंटर। संपर्क नंबर
2: 9783220043 या 01493294200। अब आपके शहर भिवाड़ी में साइकियाट्री एवं ऑर्थोपेडिक्स की नियमित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है ओजस हॉस्पिटल में।
1: मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितिका अग्रवाल द्वारा डिप्रेशन, नींद की समस्या, बेचैनी, घबराहट, मानसिक तनाव, स्किजोफ्रेनिया और OCD जैसी समस्याओं का उचित उपचार किया जाता है एवं काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध है।
2: वहीं हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेंद्र अग्रवाल द्वारा चोट, ट्रॉमा, फ्रैक्चर, घुटने एवं कमर का दर्द, लिगामेंट की चोट, गठिया और आर्थराइटिस जैसी हड्डी एवं जोड़ संबंधी समस्याओं का उपचार किया जाता है।
1: साथ ही सर्जरी, फिजियोथेरेपी और पेन मैनेजमेंट की सुविधा भी उपलब्ध है।
2: तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या को नजरअंदाज न करें, पहुंचिए ओजस हॉस्पिटल।
1: पता, नगीना गार्डन के पास, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी।
2: फोन करें 9521333591। ओजस हॉस्पिटल, बेहतर स्वास्थ्य की ओर एक कदम। अब आपके शहर धारूहेड़ा में ही मिल रही है आधुनिक और बेहतरीन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सुविधाएं। लोटस हॉस्पिटल, बेस्ट टैक्स सिटी, BPL फ्लैट के सामने धारूहेड़ा में डॉक्टर अन्विका बंसल, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, 15 वर्ष से अधिक अनुभव के साथ, जो पहले से ही भिवाड़ी में अपनी सेवाएं दे रही थी, अब अपने नए लोटस हॉस्पिटल में OPD और इमरजेंसी सर्विस के लिए उपलब्ध है। इसके साथ ही यहाँ उपलब्ध है अनुभवी हड्डी रोग विशेषज्ञ। यहाँ घुटना बदलना, कुल्हा बदलना और रीढ़ से जुड़ी सभी बीमारी का इलाज होता है, और एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट और लैप्रोस्कोपिक जनरल सर्जन, जहाँ लेजर टेक्निक से बवासीर, भगंदर का इलाज लोटस हॉस्पिटल में मिलता है, तथा 24 घंटे आपातकालीन सुविधा, एडवांस्ड एक्सरे, लैबोरेटरी, फार्मेसी, अल्ट्रासाउंड सर्विस, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, AC प्राइवेट रूम की सुविधाएं उपलब्ध हैं। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आज ही विजिट करें लोटस हॉस्पिटल, बेस्ट टैक्स सिटी, BPL फ्लैट के सामने धारूहेड़ा। संपर्क करें 01274415033।
4: भिवाड़ी का पहला ISO और NABH सर्टिफाइड श्री कृष्णा हॉस्पिटल, जिसमें मल्टी स्पेशलिस्ट OPD, 10 बेड का ICU, सबसे बड़ा मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 50 बेड का इंडोर, 24 आवर्स एम्बुलेंस, फार्मेसी और इमरजेंसी सेवाएं तथा लैब, डिजिटल एक्सरे जैसी सुविधाओं से लैस श्री कृष्णा हॉस्पिटल अधिकांश मल्टीनेशनल कंपनियों के मेडिकल कंसल्टेंसी एवं कैशलेस उपचार का एकमात्र सेंटर। श्री कृष्णा हॉस्पिटल, B14849 भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी, 8529113916, 7340013916। इस हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट और फिजिशियन की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
5: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
6: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे, किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
5: कान नाक गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
7: आपके हर खास समारोह को शानदार और यादगार बनाने के लिए आइए भाटोटिया टेंट हाउस एंड इवेंट ऑर्गेनाइजर।
8: सभी प्रकार के टेंट आइटम, शानदार डेकोरेशन और इंडोर आउटडोर कैटरिंग की बेहतरीन सुविधा, शादी, सगाई, जन्मदिन या किसी भी समारोह के लिए एक ही जगह पर पूरी व्यवस्था।
7: संपर्क करें हंस राज भाटोटिया, मोबाइल नंबर 9416347214।
8: और आपके खास समारोह के लिए शानदार राजविलास मैरिज एवं बैंक्वेट हॉल, शिवनगर पार्ट 2, पांचाल कॉलोनी, सीथल रोड, धारूहेड़ा, जिला रेवाड़ी, हरियाणा।
7: बाटोटिया टेंट हाउस और राजविलास मैरिज बैंक्वेट हॉल, आपके समारोह की पूरी तैयारी एक ही जगह।
9: औद्योगिक क्षेत्र सारे खुर्द, करौली, बंदापुर, खुशखेड़ा व चौपानकी में 16 औद्योगिक व 2 वेयर हाउस भूखंडों को ई नीलामी के माध्यम से बेचान किया जा रहा है। इन भूखंडों के लिए अमानत राशि दिनांक 9/10/2026 समय 6 बजे तक जमा कराकर बिड लगा सकते हैं। बिड लगाने की अंतिम तिथि 14/10/2026 समय 5 बजे तक है। इसके साथ ही औद्योगिक क्षेत्र सलारपुर व पथरेड़ी में 43 भूखंडों को प्रत्यक्ष आवंटन योजना के माध्यम से बेचान किया जा रहा है। इन भूखंडों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 12/10/2026 समय 6 बजे तक है। अंतिम जानकारी के लिए रिको की वेबसाइट www.riico.co.in यानी www.rico.co.in पर एवं रिको इकाई कार्यालय भिवाड़ी, द्वितीय रिको रेस्ट हाउस रोड, भिवाड़ी में संपर्क कर सकते हैं।
0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
9: हेलो जी, एक बार फिर से प्यारी सी गुड वाली इवनिंग है, नमस्कार है, आदाब है और हसर है। आपका दोस्त एंड होस्ट आरजे यश, यानी कि आपका खुर्रा फाती यश। और भाई साहब, आपको तो पता है कि जब भी यश आता है तो अपने साथ में बहुत ही ढेर सारी बातों को लेकर के आता है। लेकिन साहब, आपको ये भी पता है कि जब भी यश पायदान नंबर 2 पर आता है तो भाई साहब अपने साथ में लेकर के आता है मौसम वाली बातें। जी हाँ, वैसे मौसम वाली बातें भी जरूरी है, क्योंकि मौसम का हाल बड़ा ही बेहाल सा होता जा रहा है। मौसम कुछ इस तरीके से करवटें बदल रहा है कि भाई साहब हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है। तो चलिए जरा जान लेते हैं कि आज टेम्परेचर किस मुकाम तक जा पहुंचा है, कहां तक जा करके रुका हुआ है। तो भैया, अगर सीधे

26 डिग्री सेल्सियस और 26 डिग्री सेल्सियस से कम होकर के 26 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर 11, 12, 1, 2 बजे तक की बात की जाए तो 26 से सीधा 2 कदम नीचे होकर के 24 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर जा पहुंचेगा, और जब 3 और 4 सुबह का बजेगा तो भाई साहब टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस तक भी जा पहुंचेगा। मतलब तगड़ा ही टेम्परेचर नीचे होता जाएगा। लेकिन अगर वही दोपहर की बात की जाए यानी कि 2 बजे के आसपास की, तो 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर टिका हुआ था, जो कि लगभग 3 दिन से लगातार 34, 35 पर ही है। मतलब अब टेम्परेचर ने अपना जरा से यूटर्न लिया है और भाई साहब अब नीचे नीचे नीचे नीचे कम होना शुरू हुआ है। तो भाई साहब अब लगता है कि नवरात्रि 10 दिन तक यानी दशहरा तक अच्छे से ठंडक थोड़ा थोड़ा आना ठीक हो जाएगी और दिवाली तक ठीक ठाक ठंडक होना शुरू हो जाएगी। तो भैया आपका क्या कहना है, मौसम अचानक से करवट बदलते हुए अब सीधा ठंडक पर आ रहा है, हमें जरूर बताइए। क्या आपका भी इंतजार था ठंडक का, तो हमें जरूर बताइए। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8432665588 पर, बस फोन उठाइए, कॉल लगाइए और हमें जरूर बताइए, क्योंकि भाई साहब ठंडक का इंतजार तो हमें भी था और हमें पता है कि ठंडक का इंतजार आपको भी होगा। तो चले भाई साहब यहाँ पर आप एंजॉय कीजिएगा इस प्यारे से गाने को, लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। ब्रेक के बाद हाजिर होऊंगा लेकर और भी ढेर सारी बातों को। फिलहाल यहाँ पर आप चेहरे पर स्माइल लाइए, क्योंकि आप शहर के नंबर वन रेडियो 90.8 FM 24 पर है। चलिए एंजॉय कीजिएगा इस गाने को और सुनते रहिए अपने प्यारे से शहर भिवाड़ी का प्यारा सा रेडियो।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
1: भिवाड़ी का भरोसा वर्षों से आपकी सेवा में, सिटी नर्सिंग होम सदर मार्केट भिवाड़ी, औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी का पहला नर्सिंग होम NABH द्वारा प्रमाणित।
2: यहाँ उपलब्ध हैं 2 आधुनिक ICU, अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, दूरबीन सर्जरी की सुविधा तथा अधिकांश मेडिक्लेम कंपनियों की कैशलेस सुविधा, डायबिटीज के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर कौशल, मनोरोग परामर्श हेतु डॉक्टर कनिष्का तथा मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर रूप सिंह की सेवाएं उपलब्ध, अनुभवी डॉक्टर, आधुनिक सुविधाएं और मरीजों की समर्पित देखभाल।
1: सिटी नर्सिंग होम सदर मार्केट भिवाड़ी, स्वास्थ्य का भरोसा आपके अपने शहर में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सिटी नर्सिंग होम भिवाड़ी।
3: अरे कहाँ जा रही हो?
4: मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए अंशुल ज्वेलर्स।
3: अच्छा, पर अंशुल ज्वेलर्स से क्यों?
4: अंशुल ज्वेलर्स के पास है सोने, चांदी और हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन, वो भी BIS के 6 अंकों वाले हॉलमार्क HUID के साथ। और तो और, इनकी ज्वेलरी को हम भारत सरकार द्वारा चलाए गए BIS केयर ऐप के वेरीफाई HUID फीचर से आभूषणों की शुद्धता का प्रमाण देख सकते हैं।
3: जी हाँ, खरे आभूषणों की प्रामाणिकता जिसके साथ बढ़ेगी आपकी सुंदरता। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर। हमारा पता, शॉप नंबर 7, गणपति मॉल, समतल मोड़, भिवाड़ी, राजस्थान, या मेन बाजार नजदीक हनुमान मंदिर, तावड़ू, हरियाणा। संपर्क करें 9992533611 या फिर 9354898521 पर। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर।
5: कभी भी इमरजेंसी हो या सिर्फ एक छोटी सी चेकअप की जरूरत हो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा और भिवाड़ी में आपका अपना हॉस्पिटल है। 24 घंटे इमरजेंसी, AC प्राइवेट रूम्स, वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर, डिजिटल एक्सरे, क्लिनिकल लैब, TMT, ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी, फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी, स्किन प्रिक एंड ब्लड एलर्जी टेस्ट, एलर्जी का जड़ से इलाज। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं मेडिसिन, सर्जरी, ENT, हेड एंड नेक सर्जरी, ऑब्स एंड गाइनी, ऑर्थोपीडिक्स, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कैशलेस फैसिलिटी, सभी TPA के साथ। तो अब टेंशन मत लो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा, प्लॉट नंबर 5, सेक्टर 6 और भिवाड़ी, B83, भगत सिंह कॉलोनी। बस एक कॉल या एक विजिट, नो है 8607274999।
6: भारत अल्ट्रासाउंड एवं डायग्नोस्टिक सेंटर पर अत्याधुनिक MRI, 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 5D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, डिजिटल एक्सरे, DR, TMT, EEG व फुल्ली कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब प्रतिदिन उपलब्ध है।
7: भारत डायग्नोस्टिक्स द्वारा गत 20 वर्षों से MD रेडियोलॉजिस्ट, PGI चंडीगढ़ में प्रशिक्षित अनुभवी डॉक्टर्स द्वारा सभी जांचें की जा रही हैं।
6: भारत डायग्नोस्टिक्स पर 5D अल्ट्रासाउंड मशीन द्वारा लेवल 1 एंड 2 फीटल अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इको कार्डियोग्राफी, लिवर फाइब्रो स्कैन व 3D CT स्कैन मशीन पर एंजियोग्राफी, यूरोग्राफी व एंटेरोग्राफी की जांच भी की जाती है। 1/57-58, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, सेंट्रल मार्केट के पास, भिवाड़ी। कॉल 9351004500।
8: दूसरी ब्रांच A50 भगत सिंह कॉलोनी भिवाड़ी, कॉल 8058304500।
9: श्रीराम इंडस्ट्रीज आर्मर जैन, भारत में मेक इन इंडिया पहल के तहत विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाले उत्पादों के निर्माण में एक भरोसेमंद नाम। यहाँ बनते हैं फायर रेटेड और नॉन फायर रेटेड डोर्स, मोटराइज्ड और मैनुअल गेट्स, जनरल पर्पस डोर्स, एक्सेस डोर्स, डॉक लेवलर, फायर हॉज कैबिनेट्स और आपकी जरूरत के मुताबिक कस्टमाइज्ड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस, BIS, CBRI और NABL सर्टिफाइड वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स उचित कीमत पर। आर्मर जैन आपको देता है वादा गुणवत्ता, सुरक्षा और विश्वास का। संपर्क करें 7014735108। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.armorzain.co. in आर्मर जैन, जब बात हो गुणवत्ता और भरोसे की।
10: आपनो देश, आपनो रंग, सब मिले आपनो बाजार के संग। जी हाँ, आपनो बाजार आपका कंप्लीट फैमिली स्टोर, जहाँ उत्तम क्वालिटी और वाजिब दामों के साथ आपको मिलता है किराना, ग्रोसरी आइटम, कॉस्मेटिक, हाउसकीपिंग, हाउसहोल्ड आइटम, गिफ्ट आइटम, क्रॉकरी, टॉयज एंड गेम्स। इन सभी आइटम के MRP दामों पर खास छूट। इतना ही नहीं, फ्री होम डिलीवरी की सुविधा भी है। इनके स्टोर अलवर बाईपास, थड़ा रोड, भिवाड़ी, कृष्ण मॉल, टपुकड़ा, आशियाना विलेज सेंटर। संपर्क करें 9680870184 या फिर 7822091287।
8: अरे
11: प्लांट का तो सारा काम हो गया, अब एलईडी लाइट कहाँ से खरीदें?
12: सर क्या आपको नहीं पता है नेप एलईडी लाइटिंग कंपनी इंडस्ट्रियल लाइटिंग जैसे फ्लड लाइट, हाईवे लाइट, स्ट्रीट लाइट आदि के साथ साथ सभी प्रकार की एलईडी लाइट बनाती है, वो भी 2 साल की वारंटी के साथ। और इतना ही नहीं, वो इंडस्ट्रियल लाइटिंग कंसल्टेंट सर्विस भी फ्री देते हैं।
11: अरे वाह, इनसे संपर्क कैसे करें?
12: सर इनका सेल्स ऑफिस एड्रेस JFF 22 कैपिटल हाई स्ट्रीट फूलबाग चौक भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए नेप एलईडी लाइटिंग कंपनी से संपर्क करें 7988627064।
13: आपके हर खास समारोह को शानदार और यादगार बनाने के लिए आइए भाटोटिया टेंट हाउस एंड इवेंट ऑर्गेनाइजर।
14: सभी प्रकार के टेंट आइटम, शानदार डेकोरेशन और इंडोर आउटडोर कैटरिंग की बेहतरीन सुविधा, शादी, सगाई, जन्मदिन या किसी भी समारोह के लिए एक ही जगह पर पूरी व्यवस्था।
13: संपर्क करें हंसराज भाटोटिया, मोबाइल नंबर 9416347214।
14: और आपके खास समारोह के लिए शानदार राजविलास मैरिज एवं बैंक्वेट हॉल, शिवनगर पार्ट 2, पांचाल कॉलोनी, सीथल रोड, धारूहेड़ा, जिला रेवाड़ी, हरियाणा।
13: भाटोटिया टेंट हाउस और राजविलास मैरिज बैंक्वेट हॉल, आपके समारोह की पूरी तैयारी एक ही जगह। जब बात आपकी मुस्कान की हो तो समझौता क्यों, अब स्पेशलिस्ट डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं। आइए डेंटल एक्सपर्ट्स भिवाड़ी, भिवाड़ी का इकलौता डेंटल क्लिनिक जहां पूरी टीम MDS स्पेशलिस्ट्स की है और जिन्हें 15 साल से अधिक का अनुभव है। डॉक्टर विनोद यादव MDS ऑर्थोडोंटिस्ट, भिवाड़ी के एकमात्र ब्रेसेस स्पेशलिस्ट एंड इनविसलाइन प्रोवाइडर। इसके अलावा डेंटल इम्प्लांट्स और जटिल दांतों की समस्याओं का आधुनिक उपचार प्रदान करते हैं। साथ ही डॉक्टर ऋतु यादव MDS एंडोडोंटिस्ट, रूट कैनाल, स्माइल डिजाइनिंग और फुल माउथ रिहेबिलिटेशन की विशेषज्ञ। डेंटल एक्सपर्ट्स, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट आशियाना आंगन, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 8824232823। डेंटल एक्सपर्ट्स, आपकी मुस्कान हमारी विशेषज्ञता।
14: भिवाड़ी वासियों, अब हर जरूरत की सर्विस सिर्फ एक ऐप पर। मैसन केयर लेकर आया है आपके लिए भरोसेमंद होम और प्रोफेशनल सर्विसेज।
13: बाथरूम डीप क्लीनिंग, किचन डीप क्लीनिंग, पूरे घर की सफाई, ऑफिस क्लीनिंग, जिम क्लीनिंग, कार क्लीनिंग, पानी की टंकी की सफाई, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ड्राइवर सर्विस, कैब बुकिंग और बहुत सारी अन्य सेवाएं, अब सब कुछ एक ही ऐप पर।
14: अभी मेस एन केयर ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे अपनी पसंद की सर्विस बुक करें।
13: मेस एन केयर, आपका घर हमारी जिम्मेदारी। बुकिंग के लिए अभी कॉल या व्हाट्सएप करें 8824106060।
15: फ्यूचर लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहें। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
16: गणेश स्टेशनर्स, बेटर देन द बेस्ट,
15: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा A to Z सामान। इसी के साथ यहां प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
16: गणेश स्टेशनर्स, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड नियर हरी राम हॉस्पिटल, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।
0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
17: तो हेलो जी, एक बार फिर से प्यारी सी गुड वाली इवनिंग है, नमस्कार है, आदाब है और हाजिर है आपका दोस्त एंड होस्ट आरजे यश, यानी कि आपका खुर्राफत यश। और भाई साहब, आपको तो पता है कि जब भी यश आता है तो अपने साथ में बहुत ही ढेर सारी बातों को लेकर के आता है। लेकिन साहब, आपको ये भी पता है कि जब भी यश रेडियो पर होता है तो यश के पास एक बड़ी ही प्यारी सी दौड़ते भागते उछलते कूदते फोदते रिक्वेस्ट आ जाती है। जी हाँ, और आज तो बड़े ही प्यारे से गाने की रिक्वेस्ट है। वैसे एक टाइम पर बड़ा ट्रेंड किया था इस गाने ने, गाना कुछ ऐसा है कि

का नाम। जी भाई साहब, बड़ा ही प्यारा सा, बड़ा ही शानदार सा गाना है। और इस गाने को सुनने के बाद ना अंदर से पता नहीं यार, एकदम फील बहुत बढ़िया सा आता है, बहुत ही मस्त सा फील आता है। और आज सुबह मैं इसी गाने को गुनगुना रहा था, मेरा दोस्त भी गुनगुना रहा था, और भैया इसी गाने की रिक्वेस्ट मेरे पास आ जाती है, मैं बड़ा खुश हो जाता हूँ कि यार वाह, आपके साथ मुझे भी ये प्यारा सा गाना सुनने को मिलेगा। तो भैया ये रिक्वेस्ट भिवाड़ी शहर से ही है, जिनकी तरफ से ये रिक्वेस्ट है, उनका नाम है प्रदीप जी। तो प्रदीप जी की तरफ से ये रिक्वेस्ट है, प्रदीप जी आप अपने प्यारे से गाने को एंजॉय कीजिएगा, और मेरे लाखों प्यारे से लिसनर्स आप लोग बेस प्यारे से गाने को एंजॉय कीजिएगा। फिलहाल यहाँ पर मैं लेता हूँ छोटा सा रिक्वेस्ट भरा म्यूजिकल ब्रेक, ब्रेक के बाद लेकर के आऊंगा और भी ढेर सारी बातों को, क्योंकि अभी बहुत ही ढेर सारी चटपटी बातें बाकी है। चलिए बहरहाल यहाँ पर आप कहीं मत जाइए, एंजॉय कीजिएगा इस प्यारे से गाने को, गाने के बाद लेकर के आऊंगा और भी ढेर सारी बातें। और हाँ, चेहरे पर स्माइल लाइए यार, क्योंकि आप शहर के नंबर वन रेडियो 90.8 FM 24 पर हैं। तो लीजिए लेते हैं यहाँ पर छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, ब्रेक के बाद मिलता हूँ लेकर और भी ढेर सारी बातों को।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
1: मैं जयपुर जा रहा हूँ।
2: अच्छा तो आते हुए जयपुर के मशहूर दूध लड्डू और प्याज कचौरी लेते आना।
1: अरे दूध लड्डू और प्याज कचौरी के लिए जयपुर जाने का इंतजार क्यों करना, क्योंकि अब आपके शहर भिवाड़ी में अलवर बाईपास पर खुल चुका है कान्हा स्वीट्स।
2: जी हाँ, कान्हा स्वीट्स पर मिलते हैं स्वादिष्ट दूध लड्डू, प्याज कचौरी, समोसे किसी कलाकंद, रस मलाई, कुल्हड़ रबड़ी और सभी प्रकार की मिठाइयाँ।
1: बिल्कुल, हर मिठाई में स्वाद ऐसा कि एक बार खाएं तो दिल कहे एक और।
2: तो फिर आज मिठास हो जाए कान्हा स्वीट्स के साथ।
1: हाँ, परिवार हो या मेहमान, त्योहार हो या कोई खास खुशी, हर मौके की मिठास कान्हा स्वीट्स के साथ। पता नोट कर लीजिए,
2: शॉप नंबर AG F04, कैपिटल आर्केडिया, अलवर बाईपास इन फ्रंट ऑफ वेदांता फार्म, भिवाड़ी, राजस्थान।
3: मोहाली और गुड़गांव का डेंटल अनुभव अब भिवाड़ी में। आइए वी केयर डेंटल क्लिनिक इम्प्लांट सेंटर, जहां RCT, कैपिंग और डेंटल इम्प्लांट के एक्सपर्ट ट्रीटमेंट के साथ आपको मिलता है डॉक्टर रुकु सिंगला के 16 वर्षों के अनुभव और विशेषज्ञता का भरोसा। आर्मी और कॉर्पोरेट कर्मचारियों के लिए स्पेशल डिस्काउंट। पता, अपोजिट मैकडोनल्ड्स, JMK पेट क्लिनिक के पास, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉल करें 7814399374। वी केयर डेंटल, आपकी मुस्कान हमारा भरोसा।
2: क्या आपकी आँखों की रोशनी से जुड़ी कोई परेशानी है? क्या आप चश्मे से छुटकारा पाना चाहते हैं?
1: तो आइए आधुनिक सुविधाओं से युक्त मिश्री देवी आई हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी आई सेंटर।
2: पिछले 15 वर्षों से नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में भरोसेमंद सेवाएं, अब बहर रोड, नियम राणा और टपुकड़ा भिवाड़ी में।
1: यहाँ उपलब्ध है मोतियाबिंद, फेको, मल्टीफोकल एवं प्रीमियम लेंस, लेसिक लेजर, कॉर्निया, ग्लूकोमा और रेटिना उपचार एवं सर्जरी की आधुनिक सुविधाएं।
2: और अब दोनों आँखों का लेसिक लेजर उपचार आधुनिक तकनीक के साथ आपकी पहुंच में और उचित दरों पर।
1: बेहतर नेत्र उपचार, उचित खर्च और भरोसेमंद देखभाल के साथ चश्मे से आजादी की ओर बढ़ाइए अपना कदम। मिश्री देवी आई हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी आई सेंटर। संपर्क नंबर
2: 9783220043 या 01493294200। अब आपके शहर भिवाड़ी में साइकियाट्री एवं ऑर्थोपेडिक्स की नियमित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है ओजस हॉस्पिटल में।
1: मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितिका अग्रवाल द्वारा डिप्रेशन, नींद की समस्या, बेचैनी, घबराहट, मानसिक तनाव, स्किजोफ्रेनिया और OCD जैसी समस्याओं का उचित उपचार किया जाता है एवं काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध है।
2: वहीं हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेंद्र अग्रवाल द्वारा चोट, ट्रॉमा, फ्रैक्चर, घुटने एवं कमर का दर्द, लिगामेंट की चोट, गठिया और आर्थराइटिस जैसी हड्डी एवं जोड़ संबंधी समस्याओं का उपचार किया जाता है।
1: साथ ही सर्जरी, फिजियोथेरेपी और पेन मैनेजमेंट की सुविधा भी उपलब्ध है।
2: तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या को नजरअंदाज न करें, पहुंचिए ओजस हॉस्पिटल।
1: पता, नगीना गार्डन के पास, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी।
2: फोन करें 9521333591। ओजस हॉस्पिटल, बेहतर स्वास्थ्य की ओर एक कदम। अब आपके शहर धारूहेड़ा में ही मिल रही है आधुनिक और बेहतरीन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सुविधाएं। लोटस हॉस्पिटल, बेस्ट टैक सिटी, BPL फ्लैट के सामने धारूहेड़ा में डॉक्टर अन्विका बंसल, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, 15 वर्ष से अधिक अनुभव के साथ, जो पहले से ही भिवाड़ी में अपनी सेवाएं दे रही थी, अब अपने नए लोटस हॉस्पिटल में OPD और इमरजेंसी सर्विस के लिए उपलब्ध हैं। इसके साथ ही यहां उपलब्ध है अनुभवी हड्डी रोग विशेषज्ञ। यहां घुटना बदलना, कुल्हा बदलना और रीढ़ से जुड़ी सभी बीमारी का इलाज होता है, और एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट और लैप्रोस्कोपिक जनरल सर्जन, जहां लेजर टेक्निक से बवासीर, भगंदर का इलाज लोटस हॉस्पिटल में मिलता है, तथा 24 घंटे आपातकालीन सुविधा, एडवांस्ड एक्सरे, लैबोरेटरी, फार्मेसी, अल्ट्रासाउंड सर्विस, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, AC प्राइवेट रूम की सुविधाएं उपलब्ध हैं। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आज ही विजिट करें लोटस हॉस्पिटल, बेस्ट टैक सिटी, BPL फ्लैट के सामने धारूहेड़ा। संपर्क करें 01274415033।
4: भिवाड़ी का पहला ISO और NABH सर्टिफाइड श्री कृष्णा हॉस्पिटल, जिसमें मल्टी स्पेशलिस्ट OPD, 10 बेड का ICU, सबसे बड़ा मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 50 बेड का इंडोर, 24 आवर्स एम्बुलेंस, फार्मेसी और इमरजेंसी सेवाएं तथा लैब, डिजिटल एक्सरे जैसी सुविधाओं से लैस श्री कृष्णा हॉस्पिटल अधिकांश मल्टीनेशनल कंपनियों के मेडिकल कंसल्टेंसी एवं कैशलेस उपचार का एकमात्र सेंटर। श्री कृष्णा हॉस्पिटल, B14849 भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी, 8529113916, 7340013916। इस हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट और फिजिशियन की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
5: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
6: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
5: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
7: आपके हर खास समारोह को शानदार और यादगार बनाने के लिए आइए भाटोटिया टेंट हाउस एंड इवेंट ऑर्गेनाइजर।
8: सभी

0: से जाना है।
1: तू अपनी गाड़ी क्यों नहीं ले लेती?
0: गाड़ी नॉट इन बजट।
1: अरे गांधी मोटर्स है ना।
0: गांधी मोटर्स?
1: हाँ गांधी मोटर्स। गांधी मोटर्स कार सेल और परचेज के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर हर तरह की गाड़ियाँ बहुत अच्छी कीमत पे मिलती हैं।
0: तो कब चले?
1: अरे इसमें सोचना कैसा, अभी चलना। गाड़ियों के सेल और परचेज के लिए आज ही संपर्क करें।
2: हमारा पता है शॉप नंबर S16 एवलॉन रॉयल प्लाजा अल्बर बाईपास रोड भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9785980000 या फिर 8740000144 पर।
3: भिवाड़ी में 27 वर्षों से सेवारत, भरोसेमंद 24 घंटे इलाज हेतु गोपीनाथ अस्पताल, ISO तथा NABH मान्यता एवं राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मल्टी स्पेशलिटी सेंट्रल AC OPD, 50 बेड की सुविधा से युक्त गोपीनाथ हॉस्पिटल, अत्याधुनिक 3 ऑपरेशन थिएटर, 7 बेड ICU, 2 जीवन रक्षक एम्बुलेंस, डिजिटल एक्सरे, ऑर्थोपेडिक सर्जन, फिजिशियन तथा लेडी डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा से युक्त गोपीनाथ अस्पताल। यहाँ नेफ्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, डायबिटोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट की नियमित OPD भी उपलब्ध है। लगभग सभी TPA कैशलेस सुविधा के साथ तथा भिवाड़ी की व आसपास की औद्योगिक इकाइयों के बीमा कंपनियां भी पैनल पर हैं। पता 226 इंडस्ट्रियल एरिया सदर बाजार के पीछे गोपीनाथ रोड भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 01493619563 एंड 9784333863।
4: क्या आप बिजली के बिल से परेशान हैं? क्या आप जानते हैं सोलर एनर्जी से आप बिजली के बिल से आजादी पा सकते हैं? जी हाँ, अपने घर, ऑफिस और फैक्ट्री की छत पर सोलर पैनल लगाएं और भारी बिजली के बिल से मुक्ति पाएं। सोलर एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको 30% तक रिटर्न देता है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9610255584। ग्रीन रूट्स रिन्यूएबल एनर्जी।
5: आपकी आंखें हैं अनमोल, आपकी आंखों को चाहिए बेहतर देखभाल, तो आइए गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स भिवाड़ी।
6: यहाँ मिलते हैं सभी ब्रांडेड कंपनियों के स्टाइलिश फ्रेम और हाई क्वालिटी लेंस। Ray-Ban, Vogue, टॉमी हिलफिगर, ओकेली, प्रदा, जीज, एसिलोर क्रिजाल, विजन RX और भी कई नेशनल व इंटरनेशनल ब्रांड्स।
5: साथ ही कॉन्टैक्ट लेंस, लो विजन क्लिनिक, मायोपिया क्लिनिक, विजन थेरेपी और आधुनिक मशीनों द्वारा कंप्यूटरीकृत आई एग्जामिनेशन, प्रशिक्षित ऑप्टोमेट्रिस्ट की पूरी टीम।
6: भिवाड़ी में सन 2006 से भरोसे का नाम गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स।
5: गणपति मॉल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास, समतल चौक भिवाड़ी और अशियाना आंगन के सामने BDI सोसाइटी के पास अलवर बाईपास रोड भिवाड़ी।
7: अपॉइंटमेंट या जानकारी के लिए अभी कॉल करें 9636061776 या 9928929309।
8: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है, कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है, और इन्हीं श्रृंगार को सवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, 1 से 1 उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A, आशियाना आंगन प्लाजा, नियर मैकडॉनल्ड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट करें 01493493222 या फिर 9034969731 पर। ऐसे डिजाइंस जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्स ही आए।
9: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
10: और लीजिए भाई साहब, एक बार फिर से हाजिर है आपका दोस्त एंड होस्ट RJ यश, यानी कि आपका खुर्राफाती यश। और भाई साहब, आपको तो पता है कि जब भी यश आता है तो अपने साथ वह बहुत ही ढेर सारी मस्ती और मजाक वाली बातें लेकर के आता है। लेकिन साहब, आपको ये भी पता है कि जब भी यश आता है तो भाई साहब भिवाड़ी शहर से जुड़ी बातें लेकर के आता है, क्योंकि मेरा काम है आप लोगों की आवाज को हमारे उन लोगों तक भेजना जो हर मुद्दे पर काम कर सकते हैं। तो भैया, बात कुछ ऐसी है कि मैं पहुंच जाता हूं सीधे भिवाड़ी बस स्टैंड पर। तो भैया, बस स्टैंड पर जाने के बाद जो मेरे साथ में कारनामे हुए ना, वो सच में बड़ा दुख हुआ मुझे उसके बाद। पता है क्यों? क्योंकि भाई साहब, आप जरा गौर से सोचिए कि कोई इंसान बस स्टैंड पर है, उसे लगभग 100 किलोमीटर का सफर तय करना है बस से, और भाई साहब उसे बस स्टैंड पर बैठे बैठे आ जाए सूसू।

भैया हंसने वाली बात नहीं, मैं सच बता रहा हूँ आपको। अगर बस स्टैंड पर बैठे बैठो से सूसू आ गया और बस स्टैंड पर सूसू की व्यवस्था करने के लिए शौचालय ही नहीं है, फिर वो क्या करेगा भाई? बस एक अकेले इंसान के लिए तो बीच में रुकेगी नहीं, कहीं भी तो बस रुकेगी नहीं। तो भैया वो तो बस स्टैंड पर ही खाली होकर के जाएगा ना, जितनी समस्याएं होंगी, चाहे पानी पीना होगा, कुछ भी करना होगा, बस स्टैंड पर ही करेगा। लेकिन भाई साहब अंदाजा लगाइए, अलवर के लिए आपको बस मिलेगी, आपको बीकानेर के लिए बस मिल जाएगी, मानेसर के लिए बस मिलेगी, आपको दिल्ली के लिए बस मिलेगी, आपको गुड़गांव के लिए बस मिलेगी, आपको जयपुर के लिए बस मिलेगी, मतलब सारी जगहों के लिए आपको भिवाड़ी बस स्टैंड से बस मिल जाएगी। लेकिन भाई साहब भिवाड़ी बस स्टैंड पर आपको सही शौचालय नहीं मिलेगा, ये सोचने वाला विषय है। जरा गौर से सोचिए कि आज मैं था, मुझे सूसू आया, भैया मैं तो जैसे तैसे करके अपना इंतजाम कर लिया, लेकिन मेरी जगह कोई और होता तो भैया उसके साथ क्या बीतती? हालांकि बस स्टैंड पर एक शौचालय है, जब भाई साहब आउट ऑफ कंट्रोल वाला मामला मेरा हुआ तो मैंने जरा छानबीन की तो भाई साहब वहाँ पर एक शौचालय मुझे दिखा, लेकिन वो शौचालय ऐसे था जैसे भाई साहब डंपिंग यार्ड हो। वहाँ पर भाई साहब आपके पैरों से ऊपर तक कूड़ा जमा हुआ है, गेट नहीं है, दीवारें सही से नहीं है, ऊपर की छत टूटी हुई है, मतलब एकदम खस्ता हालत में है, और उसे ही लोग यूज कर रहे हैं या तो फिर उसके बगल में खड़े होकर के यूज कर रहे हैं, जो कि भिवाड़ी को गंदा करेगा और बाद में हम कहेंगे कि भिवाड़ी हमारा साफ नहीं है। तो भैया इस बार नगर निगम से बहुत बहुत बहुत बड़ी रिक्वेस्ट मेरी है, अगर चेयरमैन डॉक्टर गुंजन खटाना मैम मुझे सुन रही है तो प्लीज मैम कम से कम इस बार शौचालयों पर काम आप जरूर करवाइए, और ऐसी सार्वजनिक जगहों पर जरूर करवाइए जहाँ पर लोग आते हैं, और जगह जगह पर जहाँ पर बहुत ढेर सारे लोग आकर के इकट्ठा होते हैं, जैसे बस स्टैंड हो गया और भी ढेर सारी जगह होगी, किसी एक ऐसे चौराहे को चुन लीजिए जहाँ पर बहुत ढेर सारे लोग ऐसे आकर के खड़े होते हैं, वहाँ पर भी शौचालय की बहुत जरूरत होती है, मतलब ऐसी जगह आपको चुननी होगी और इन सारी चीजों की आपको व्यवस्था करवानी होगी। मैम उम्मीद है कि आप मुझे सुन रही होगी और इस पर भी काम करवाना आप शुरू करेंगे, खास तौर से बस स्टैंड का तो जरूर करवा दीजिए मैम, इसमें सिर्फ मैं ही अकेला परेशान नहीं बल्कि हजारों लोग मेरे जैसे परेशान होते होंगे, तो प्लीज मैम इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप इस काम को जरूर करवाइए मैम। चलिए उम्मीद है हमारा नगर निगम हमें सुन रहा होगा, गुंजन खटाना मैम हमें सुन रही होंगी। वैसे दोस्तों आप लोगों का क्या कहना है बस स्टैंड के शौचालय को लेकर, आप लोगों ने कभी यूज किया है या नहीं, हमारे साथ अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर साझा कीजिए, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8432665588 पर, बस फोन उठाइए, कॉल लगाइए और हमें जरूर बताइएगा। चले बहरहाल यहाँ पर आप एंजॉय कीजिएगा इस प्यारे से गाने को, मैं शो गया और यू आया लेकर और भी ढेर सारी बातें, आप चेहरे पर स्माइल लाइए और एंजॉय कीजिएगा इस प्यारे से गाने को।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
1: मैं जयपुर जा रहा हूँ।
2: अच्छा, तो आते हुए जयपुर के मशहूर दूध लड्डू और प्याज कचौरी लेते आना।
1: अरे, दूध लड्डू और प्याज कचौरी के लिए जयपुर जाने का इंतजार क्यों करना, क्योंकि अब आपके शहर भिवाड़ी में अलवर बाईपास पर खुल चुका है कान्हा स्वीट्स।
2: जी हाँ, कान्हा स्वीट्स पर मिलते हैं स्वादिष्ट दूध लड्डू, प्याज कचौरी, समोसे, किसी कलाकंद, रसमलाई, कुल्हड़, रबड़ी और सभी प्रकार की मिठाइयाँ।
1: बिल्कुल, हर मिठाई में स्वाद ऐसा कि एक बार खाएं तो दिल कहे एक और।
2: तो फिर आज मिठास हो जाए कान्हा स्वीट्स के साथ।
1: हाँ, परिवार हो या मेहमान, त्योहार हो या कोई खास खुशी, हर मौके की मिठास कान्हा स्वीट्स के साथ। पता नोट कर लीजिए,
2: शॉप नंबर AG F04, कैपिटल आर्केडिया, अलवर बाईपास इन फ्रंट ऑफ वेदांता फार्म, भिवाड़ी, राजस्थान।
3: मोहाली और गुड़गांव का डेंटल अनुभव अब भिवाड़ी में। आइए वी केयर डेंटल क्लिनिक इम्प्लांट सेंटर, जहां RCT, कैपिंग और डेंटल इम्प्लांट के एक्सपर्ट ट्रीटमेंट के साथ आपको मिलता है डॉक्टर रुकु सिंगला के 16 वर्षों के अनुभव और विशेषज्ञता का भरोसा। आर्मी और कॉर्पोरेट कर्मचारियों के लिए स्पेशल डिस्काउंट। पता, अपोजिट मैकडोनल्ड्स, JMK पेट क्लिनिक के पास, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉल करें 7814399374। वी केयर डेंटल, आपकी मुस्कान हमारा भरोसा।
2: क्या आपकी आँखों की रोशनी से जुड़ी कोई परेशानी है? क्या आप चश्मे से छुटकारा पाना चाहते हैं?
1: तो आइए आधुनिक सुविधाओं से युक्त मिश्री देवी आई हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी आई सेंटर।
2: पिछले 15 वर्षों से नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में भरोसेमंद सेवाएं, अब बहर रोड, नियम राणा और टपुकड़ा भिवाड़ी में।
1: यहाँ उपलब्ध है मोतियाबिंद, फेको, मल्टीफोकल एवं प्रीमियम लेंस, लेसिक लेजर, कॉर्निया, ग्लूकोमा और रेटिना उपचार एवं सर्जरी की आधुनिक सुविधाएं।
2: और अब दोनों आँखों का लेसिक लेजर उपचार आधुनिक तकनीक के साथ।

0: की पहुंच में और उचित दरों पर।
1: बेहतर नेत्र उपचार, उचित खर्च और भरोसेमंद देखभाल के साथ चश्मे से आजादी की ओर बढ़ाइए अपना कदम। मिश्री देवी आई हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी आई सेंटर। संपर्क नंबर
0: 9783220043 या 01493294200। अब आपके शहर भिवाड़ी में साइकियाट्री एवं ऑर्थोपेडिक्स की नियमित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है ओजस हॉस्पिटल में।
1: मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितिका अग्रवाल द्वारा डिप्रेशन, नींद की समस्या, बेचैनी, घबराहट, मानसिक तनाव, स्किजोफ्रेनिया और ओसीडी जैसी समस्याओं का उचित उपचार किया जाता है एवं काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध है।
0: वहीं हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेंद्र अग्रवाल द्वारा चोट, ट्रॉमा, फ्रैक्चर, घुटने एवं कमर का दर्द, लिगामेंट की चोट, गठिया और आर्थराइटिस जैसी हड्डी एवं जोड़ संबंधी समस्याओं का उपचार किया जाता है।
1: साथ ही सर्जरी, फिजियोथेरेपी और पेन मैनेजमेंट की सुविधा भी उपलब्ध है।
0: तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या को नजरअंदाज न करें, पहुंचिए ओजस हॉस्पिटल,
1: पता नगीना गार्डन के पास, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी।
0: फोन करें 9521333591। ओजस हॉस्पिटल, बेहतर स्वास्थ्य की ओर एक कदम। अब आपके शहर धारूहेड़ा में ही मिल रही है आधुनिक और बेहतरीन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सुविधाएं। लोटस हॉस्पिटल, बेस्ट टैक्स सिटी बीपीएल फ्लैट के सामने धारूहेड़ा में डॉक्टर अन्विका बंसल, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, 15 वर्ष से अधिक अनुभव के साथ, जो पहले से ही भिवाड़ी में अपनी सेवाएं दे रही थी, अब अपने नए लोटस हॉस्पिटल में ओपीडी और इमरजेंसी सर्विस के लिए उपलब्ध हैं। इसके साथ ही यहां उपलब्ध है अनुभवी हड्डी रोग विशेषज्ञ। यहां घुटना बदलना, कुल्हा बदलना और रीढ़ से जुड़ी सभी बीमारी का इलाज होता है, और एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट और लैप्रोस्कोपिक जनरल सर्जन, जहां लेजर टेक्निक से बवासीर, भगंदर का इलाज लोटस हॉस्पिटल में मिलता है, तथा 24 घंटे आपातकालीन सुविधा, एडवांस्ड एक्सरे, लैबोरेटरी, फार्मेसी, अल्ट्रासाउंड सर्विस, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, एसी प्राइवेट रूम की सुविधाएं उपलब्ध हैं। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आज ही विजिट करें लोटस हॉस्पिटल, बेस्ट टैक्स सिटी बीपीएल फ्लैट के सामने धारूहेड़ा। संपर्क करें 01274415033।
2: भिवाड़ी का पहला ISO और NABH सर्टिफाइड श्री कृष्णा हॉस्पिटल, जिसमें मल्टी स्पेशलिस्ट ओपीडी, 10 बेड का ICU, सबसे बड़ा मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 50 बेड का इंडोर, 24 आवर्स एम्बुलेंस, फार्मेसी और इमरजेंसी सेवाएं, तथा लैब, डिजिटल एक्सरे जैसी सुविधाओं से लैस श्री कृष्णा हॉस्पिटल अधिकांश मल्टीनेशनल कंपनियों के मेडिकल कंसल्टेंसी एवं कैशलेस उपचार का एकमात्र सेंटर। श्री कृष्णा हॉस्पिटल, B14849 भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी, 8529113916, 7340013916। इस हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट और फिजिशियन की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
3: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय ओपीडी सेवाएं प्रदान करेंगे।
4: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे, किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
3: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
0: आपके हर खास समारोह को शानदार और यादगार बनाने के लिए आइए भाटोटिया टेंट हाउस एंड इवेंट ऑर्गेनाइजर।
1: सभी प्रकार के टेंट आइटम, शानदार डेकोरेशन और इंडोर आउटडोर कैटरिंग की बेहतरीन सुविधा, शादी, सगाई, जन्मदिन या किसी भी समारोह के लिए एक ही जगह पर पूरी व्यवस्था।
0: संपर्क करें हंसराज भाटोटिया, मोबाइल नंबर 9416347214।
1: और आपके खास समारोह के लिए शानदार राजविलास मैरिज एवं बैंक्वेट हॉल, शिवनगर पार्ट 2, पांचाल कॉलोनी, सीथल रोड, धारूहेड़ा, जिला रेवाड़ी, हरियाणा।
0: बाटोटिया टेंट हाउस और राजविलास मैरिज बैंक्वेट हॉल, आपके समारोह की पूरी तैयारी एक ही जगह।
3: विजय हॉस्पिटल डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
4: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
3: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
0: जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी आँखों का NABH मान्यता प्राप्त सुपर स्पेशलिटी आँखों का हॉस्पिटल आपके शहर भिवाड़ी में। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी आपको प्रदान करता है विश्व स्तरीय आँखों की देखभाल।
1: हमारे सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल में आपको मिलेगी अनुभवी डॉक्टरों आई सर्जनों की विशेषज्ञ टीम, पूर्णतः मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर MICS टॉपिकल फैको तकनीक से कैटरेक्ट मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेजर से ऑपरेशन बिना इंजेक्शन और टांके,
0: रेटिना आंख का पर्दा, ग्लूकोमा, काला मोतियाबिंद का उन्नत इलाज, बच्चों की आंखों का इलाज, हमारे पास सभी इंश्योरेंस और TPA पैनल उपलब्ध हैं। निशुल्क कैशलेस इलाज का लाभ उठाएं।
1: आज ही हमें सेवा का मौका दें। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भगत सिंह कॉलोनी अलवर बाईपास हरीश बेकरी के पास भिवाड़ी।
0: संपर्क करें 7424830174। आज ही अपनी आँखों का इलाज कराएं और पाएं एक उज्जला भविष्य। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी।
5: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं कैशलेस सर्विस के लिए, कहां मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
6: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहां मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंड मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार एसी वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
5: एकता मोटर्स अलवर बाईपास रोड नियर बाय थड़ा मोड़ भिवाड़ी। फॉर इन्फॉर्मेशन कॉल 9799278900।
7: न्यू गर्ल्स सुपर स्टोर, जहां मिलते हैं ग्रोसरीज, ड्राई फ्रूट्स, कॉस्मेटिक्स आइटम और सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स। बजट की दुकान, MRP की छुट्टी, आपका फायदा हमारा वादा। अब वक्त है MRP को कहें बाय बाय। कॉन्टेक्ट करें 7413099952 पर अलवर बाईपास रोड नियर मार्बल मार्केट भिवाड़ी।
8: राहुल, इंडस्ट्री प्लान तो बढ़िया है पर इस बार अपनी फैक्ट्री के इलेक्ट्रिकल्स पर एक्स्ट्रा फोकस रखना।
9: डोंट वरी सर, इंडस्ट्री का सारा इलेक्ट्रिकल्स खंडेलवाल एजेंसी से आएगा। ये NCR का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस है, जहां हमें पैनल, स्विच गियर, मोटर ड्राइव, इंडस्ट्रियल लाइटनिंग और वायर एंड केबल में 30 से ज्यादा मल्टीनेशनल ब्रांड ऑप्शंस मिल जाएंगे।
10: खंडेलवाल एजेंसीज, NCR का लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस इन भिवाड़ी।
11: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
12: और लीजिए भाई साहब, एक बार फिर से हाजिर है आपका दोस्त एंड होस्ट RJ यश, यानी कि आपका खुर्राफत यश। और भाई साहब, आपको तो पता है कि जब भी यश आता है तो अपने साथ में बहुत ही ढेर सारी बातों को लेकर के आता है। लेकिन साहब, फिलहाल दौर है खबरों का, वक्त है खबरों का। तो चले भाई साहब, करते हैं आज का बिना देर किए हुए न्यूज बुलेटिन शुरू। तो भैया, अगर सबसे पहले खबर की बात की जाए तो भाई साहब, सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर है दिल्ली से। जी हां, दिल्ली में प्रदर्शन, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। दोस्तों, पहले बात राजधानी दिल्ली की, जहां जंतर मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और मतदाता सूची को और मतदाता सूची में संशोधन यानी SIR को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। इस प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली में बड़ी संख्या में पुलिस और सुरक्षा बल तैनात किए गए। मेट्रो के 45 स्टेशनों पर एंट्री और एग्जिट पर भी अस्थायी पाबंदियां लगाई गई हैं। अब देखना होगा कि प्रदर्शन के बाद इस पूरे मामले में आगे क्या घटनाक्रम सामने आता है। फिलहाल दिल्ली से जुड़ी इस खबर पर सबकी नजर है। दोस्तों, जरा गौर से सोचिए कि 45 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए जाते हैं, कुछ ट्रेन्स बंद कर दी जाती हैं, कुछ रेलवे स्टेशन पर भी लोगों को पकड़ लिया जाता है, डिटेन कर लिया जाता है, उन्हें आगे नहीं जाने दिया जाता है, फिर चाहे वो प्रदर्शन में शामिल हो रहे हों या फिर यूं ही अपने काम से कहीं जा रहे हों। फिलहाल खबर नंबर 2, राजस्थान के किशनगढ़ में पुलिसकर्मी और वकील के बीच विवाद। अब रुख करते हैं राजस्थान का, जहां किशनगढ़ में पार्किंग को लेकर ट्रैफिक पुलिस अधिकारी और एक वकील के बीच विवाद का मामला सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वकील ने आरोप लगाया है कि पार्किंग को लेकर हुई बहस के दौरान महिला ट्रैफिक अधिकारी ने उन्हें थप्पड़ मारा। घटना का वीडियो भी सामने आने की बात कही गई है। इसके बाद वकीलों ने विरोध प्रदर्शन किया और करीब एक घंटे तक सड़क पर यातायात प्रभावित रहा। और अब खबर नंबर 3, मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण पर हाई कोर्ट का अहम फैसला। अब चलते हैं जरा मध्य प्रदेश की ओर, जहां ओबीसी के

लेकर हाईकोर्ट के फैसले की चर्चा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आरक्षण की 50% सीमा से अधिक बढ़ोतरी के समर्थन में राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त आधार प्रस्तुत नहीं किए जाने की बात कही है। वहीं बढ़े हुए आरक्षण के तहत मार्च 2019 से सितंबर 2022 के बीच नियुक्त कुछ ओबीसी उम्मीदवारों की नियुक्तियों को सुरक्षा दी गई है। और दोस्तों अब खबर नंबर 4, जोधपुर में दौड़ पूरी करने के बाद एएसआई की मौत। दोस्तों अब एक दुखद खबर राजस्थान के जोधपुर से। मंडोर स्थित राजस्थान पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में पदोन्नति के लिए शारीरिक परीक्षा देने पहुंचे 50 वर्षीय सहायक उप निरीक्षक दुर्गाराम भील की मौत हो गई। रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने 2 किलोमीटर की दौड़ पूरी कर ली, लेकिन कुछ समय बाद उनके सीने में तेज दर्द हुआ। उन्हें अस्पताल में लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शुरुआती जानकारी में हार्ट अटैक की आशंका जताई गई है। हालांकि मौत के सटीक कारण की पुष्टि अलग से होनी बाकी है। दोस्तों खबर नंबर 5, राजस्थान में मौसम को लेकर अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, अब आखिरी और सबसे बड़ी खबर मौसम से जुड़ी, जो खास तौर पर राजस्थान के लोगों के लिए जरूरी है। मौसम विभाग के 10 अक्टूबर के पूर्वानुमान के अनुसार पश्चिमी राजस्थान में 10 और 11 अक्टूबर को गरज चमक और तेज हवाओं जैसी मौसमी गतिविधियों की चेतावनी जारी की गई है। पूर्वी राजस्थान के लिए 10 अक्टूबर को भी चेतावनी दी गई है। तो दोस्तों आपको इनमें से कौन सी खबर सबसे महत्वपूर्ण लगी, हमें अपनी राय जरूर बताइए। इसी तरह की ताज़ा खबर और भिवाड़ी की स्थानीय हलचल से जुड़े रहने के लिए जुड़ रही है हमारे साथ। मैं हूँ आपका दोस्त एंड होस्ट आरजे यश, यानी कि आपका खुर्रा फाती यश, लेकर के आऊंगा और भी ढेर सारी बातों को। फिलहाल आप यहाँ पर एंजॉय कीजिएगा इस खाने को। मैं शिव गया और शिव आया लेकर और भी ढेर सारी मस्ती और मजाक वाली बातें। फिलहाल चेहरे पर लाइए स्माइल, क्योंकि आप शहर के नंबर 1 रेडियो पर है।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
1: मैं जयपुर जा रहा हूँ।
2: अच्छा, तो आते हुए जयपुर के मशहूर दूध लड्डू और प्याज कचौरी लेते आना।
1: अरे, दूध लड्डू और प्याज कचौरी के लिए जयपुर जाने का इंतजार क्यों करना, क्योंकि अब आपके शहर भिवाड़ी में अलवर बाईपास पर खुल चुका है कान्हा स्वीट्स।
2: जी हाँ, कान्हा स्वीट्स पर मिलते हैं स्वादिष्ट दूध लड्डू, प्याज कचौरी, समोसे किसी कलाकंद, रसमलाई, कुल्हड़ रबड़ी और सभी प्रकार की मिठाइयाँ।
1: बिल्कुल, हर मिठाई में स्वाद ऐसा कि एक बार खाएं तो दिल कहे एक और।
2: तो फिर आज मिठास हो जाए कान्हा स्वीट्स के साथ।
1: हाँ, परिवार हो या मेहमान, त्योहार हो या कोई खास खुशी, हर मौके की मिठास कान्हा स्वीट्स के साथ। पता नोट कर लीजिए।

0: शॉप नंबर ए GF04 कैपिटल आर्केडिया अलवर बाईपास इन फ्रंट ऑफ वेदांता फार्म भिवाड़ी राजस्थान।
1: मोहाली और गुड़गांव का डेंटल अनुभव अब भिवाड़ी में। आइए वी केयर डेंटल क्लिनिक इम्प्लांट सेंटर, जहां RCT कैपिंग और डेंटल इम्प्लांट के एक्सपर्ट ट्रीटमेंट के साथ आपको मिलता है डॉक्टर रुकु सिंगला के 16 वर्षों के अनुभव और विशेषज्ञता का भरोसा। आर्मी और कॉर्पोरेट कर्मचारियों के लिए स्पेशल डिस्काउंट। पता: अपोजिट मैकडोनल्ड्स, JMK पेट क्लिनिक के पास, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉल करें 7814399374। वी केयर डेंटल, आपकी मुस्कान हमारा भरोसा।
0: क्या आपकी आँखों की रोशनी से जुड़ी कोई परेशानी है? क्या आप चश्मे से छुटकारा पाना चाहते हैं?
2: तो आइए आधुनिक सुविधाओं से युक्त मिश्री देवी आई हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी आई सेंटर।
0: पिछले 15 वर्षों से नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में भरोसेमंद सेवाएं, अब बहर रोड, नियम राणा और टपुकड़ा भिवाड़ी में।
2: यहाँ उपलब्ध है मोतियाबिंद, फेको, मल्टीफोकल एवं प्रीमियम लेंस, लेसिक लेजर, कॉर्निया, ग्लूकोमा और रेटिना उपचार एवं सर्जरी की आधुनिक सुविधाएं।
0: और अब दोनों आँखों का लेसिक लेजर उपचार आधुनिक तकनीक के साथ आपकी पहुंच में और उचित दरों पर।
2: बेहतर नेत्र उपचार, उचित खर्च और भरोसेमंद देखभाल के साथ चश्मे से आजादी की ओर बढ़ाइए अपना कदम। मिश्री देवी आई हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी आई सेंटर। संपर्क नंबर
0: 9783220043 या 01493294200। अब आपके शहर भिवाड़ी में साइकियाट्री एवं ऑर्थोपेडिक्स की नियमित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है ओजस हॉस्पिटल में।
2: मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितिका अग्रवाल द्वारा डिप्रेशन, नींद की समस्या, बेचैनी, घबराहट, मानसिक तनाव, स्किजोफ्रेनिया और OCD जैसी समस्याओं का उचित उपचार किया जाता है एवं काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध है।
0: वहीं हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेंद्र अग्रवाल द्वारा चोट, ट्रॉमा, फ्रैक्चर, घुटने एवं कमर का दर्द, लिगामेंट की चोट, गठिया और आर्थराइटिस जैसी हड्डी एवं जोड़ संबंधी समस्याओं का उपचार किया जाता है।
2: साथ ही सर्जरी, फिजियोथेरेपी और पेन मैनेजमेंट की सुविधा भी उपलब्ध है।
0: तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या को नजरअंदाज न करें, पहुंचिए ओजस हॉस्पिटल।
2: पता: नगीना गार्डन के पास, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी।
0: फोन करें 9521333591। ओजस हॉस्पिटल, बेहतर स्वास्थ्य की ओर एक कदम। अब आपके शहर धारूहेड़ा में ही मिल रही है आधुनिक और बेहतरीन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सुविधाएं। लोटस हॉस्पिटल, बेस्ट टैक सिटी, BPL फ्लैट के सामने धारूहेड़ा में डॉक्टर अन्विका बंसल, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, 15 वर्ष से अधिक अनुभव के साथ, जो पहले से ही भिवाड़ी में अपनी सेवाएं दे रही थी, अब अपने नए लोटस हॉस्पिटल में OPD और इमरजेंसी सर्विस के लिए उपलब्ध हैं। इसके साथ ही यहां उपलब्ध है अनुभवी हड्डी रोग विशेषज्ञ। यहां घुटना बदलना, कुल्हा बदलना और रीढ़ से जुड़ी सभी बीमारी का इलाज होता है और एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट और लैप्रोस्कोपिक जनरल सर्जन, जहां लेजर टेक्निक से बवासीर, भगंदर का इलाज लोटस हॉस्पिटल में मिलता है, तथा 24 घंटे आपातकालीन सुविधा, एडवांस्ड एक्सरे, लैबोरेटरी, फार्मेसी, अल्ट्रासाउंड सर्विस, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, AC प्राइवेट रूम की सुविधाएं उपलब्ध हैं। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आज ही विजिट करें लोटस हॉस्पिटल, बेस्ट टैक सिटी, BPL फ्लैट के सामने धारूहेड़ा। संपर्क करें 01274415033।
3: भिवाड़ी का पहला ISO और NABH सर्टिफाइड श्री कृष्णा हॉस्पिटल, जिसमें मल्टी स्पेशलिस्ट OPD, 10 बेड का ICU, सबसे बड़ा मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 50 बेड का इंडोर, 24 आवर्स एम्बुलेंस, फार्मेसी और इमरजेंसी सेवाएं, तथा लैब, डिजिटल एक्सरे जैसी सुविधाओं से लैस श्री कृष्णा हॉस्पिटल अधिकांश मल्टीनेशनल कंपनियों के मेडिकल कंसल्टेंसी एवं कैशलेस उपचार का एकमात्र सेंटर। श्री कृष्णा हॉस्पिटल, B14849, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी, 8529113916734001391। इस हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट और फिजिशियन की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
4: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव, कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
5: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
4: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
6: आपके हर खास समारोह को शानदार और यादगार बनाने के लिए आइए भाटोटिया टेंट हाउस एंड इवेंट ऑर्गेनाइजर।
2: सभी प्रकार के टेंट आइटम, शानदार डेकोरेशन और इंडोर आउटडोर कैटरिंग की बेहतरीन सुविधा, शादी सगाई जन्मदिन या किसी भी समारोह के लिए एक ही जगह पर पूरी व्यवस्था।
6: संपर्क करें हंसराज भाटोटिया, मोबाइल नंबर 9416347214।
2: और आपके खास समारोह के लिए शानदार राजविलास मैरिज एवं बैंक्वेट हॉल, शिवनगर पार्ट 2, पांचाल कॉलोनी, सीथल रोड, धारूहेड़ा, जिला रेवाड़ी, हरियाणा।
6: भाटोटिया टेंट हाउस और राजविलास मैरिज बैंक्वेट हॉल, आपके समारोह की पूरी तैयारी एक ही जगह। अरे यार, आज शाम पार्टी करें?
7: नहीं यार, आज डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाना था।
6: गुरुग्राम? इतनी दूर?
7: हाँ यार, वहीं तो बेस्ट हाइजीन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और पेनलेस ट्रीटमेंट मिलता है।
6: ये बात पहले सही थी पर अब नहीं।
7: मतलब?
6: गुरुग्राम के ही एक्सपीरियंस्ड डेंटल एक्सपर्ट डॉक्टर जितिन टक्कर पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ मिलता है प्रीमियम सेटअप, एडवांस टेक्नोलॉजी, कंप्लीट हाइजीन और 100% पेनलेस डेंटल ट्रीटमेंट। और सबसे अच्छी बात, चार्जेस दिल्ली और गुरुग्राम से काफी कम,
7: तो फिर दूर जाने का टेंशन खत्म।
6: बिल्कुल, अब एक्सपीरियंस, भरोसा और क्वालिटी सब कुछ घर के पास भिवाड़ी में। आइए 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, ए ब्लॉक, A140, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। आज ही संपर्क करें डॉक्टर जितिन टक्कर 9871122135। 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, बेहतर चॉइसेस, बेहतर मुस्कान। अजी, सुनते हो, मेरा फोन टूट गया है।
7: अरे भाग्यवान, सुनो, घबराओ नहीं, खंडेलवाल मोबाइल भिवाड़ी लाया है 0% डाउन पेमेंट पर। मोबाइल फोन 9784960000। और सुनो, ओप्पो ने लॉन्च किया है अभी रेनो 15 सी कम दामों में बजाज फाइनेंस के साथ 0% ब्याज, 10% कैश बैक के साथ, प्लस ट्रॉली बैग, 0 डाउन पेमेंट। और बैटरी से हो परेशान तो रियलमी ने लॉन्च किया है अपना एक नया मॉडल 10,000 mAh बैटरी के साथ। अभी जाइए खंडेलवाल मोबाइल पर ढेर सारे गिफ्ट के साथ, नीलम चौक। चिंता क्यों करते हो, बजाज फाइनेंस है ना अपने साथ। 9784960000 और 9828288666।
8: राहुल यार, मैंने नोएडा से जॉब स्विच कर दिया है, अब सोच रही हूँ भिवाड़ी में रेंटल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा।
9: चिंता की कोई बात नहीं, मेगा एयर कंडीशनर्स एंड इलेक्ट्रिक सर्विस है ना, ये पूरे दिल्ली NCR में अपनी रेंटल सर्विस दे रहे हैं। और इनके यहाँ टावर AC, विंडो AC, स्प्लिट AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड LED TV सभी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं।
8: लेकिन इनकी सर्विस भिवाड़ी में तो बहुत महंगी होगी ना।
9: बिल्कुल भी नहीं, आपको ये सर्विस सेम रेट पर मिलने वाली है। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9899247102 पर या फिर विजिट करें www.maces.in पर।
10: ये क्या, अभी भी डीजल कार चला रहे हो? अब समय है स्मार्ट फ्यूल पर स्विच करने का, वो भी ज्यादा बचत के साथ। पेश है विक्टोरिस SCNG। ये स्मार्ट है क्योंकि ये देता है 27.02 किलोमीटर पर kg का शानदार माइलेज, और इसका अंडरबॉडी CNG टैंक बूट स्पेस पर कोई समझौता नहीं करता। ज्यादा बचत भी, क्योंकि अपनी पुरानी डीजल कार के एक्सचेंज पर पाएं 50,000 रुपए तक का फायदा। तो देर किस बात की, आज ही बुक करें, अपनी नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम पर जाएं। नियम व शर्तें लागू।
11: विजय फॉर्चून कार्स भिवाड़ी।
12: मॉडर्न अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर भिवाड़ी पर अनुभवी रेडियोलॉजिस्ट व पैथोलॉजिस्ट द्वारा अत्याधुनिक मशीनों से 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 4D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इको कार्डियोग्राफी, डिजिटल एक्सरे, IVP, बैरियम, HSG, डिजिटल OPG, DMT, ECG, EEG, BFT, मैमोग्राफी व फुली एडवांस्ड कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब की सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध हैं।
13: नियर सरकारी हॉस्पिटल 135 भिवाड़ी, दूसरी ब्रांच, मॉडर्न डायग्नोस्टिक एवं इमेजिंग सेंटर, नियर नगर पालिका ऑफिस, अपोजिट अंबेडकर पार्क, धारूहेड़ा। कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800123-4494 या 9983040100 पर।
14: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
15: हेलो दोस्तों, गुड वेल इवनिंग है, नमस्कार है, आदाब है और हाजिर है आपका दोस्त एंड होस्ट आरजे यश, यानी कि आपका खुर्राफत यश। और भाई साहब, आपको तो पता है कि जब भी यश आता है तो अपने साथ में बहुत ही ढेर सारी मस्ती और मजाक वाली बातें लेकर के आता है। लेकिन साहब, आपको ये भी पता है कि जब भी यश आता है तो भाई साहब अपने साथ में बहुत ही ढेर सारी फनी बातें भी लेकर के आता है। जी हाँ, और फनी बातें जब लेकर के आता है तो अपने साथ में एक बहुत ही प्यारे से नन्हे से मेहमान को भी लेकर के आता है। जी हाँ भाई साहब, मैं बात कर

0: कर रहे हैं। मुझे तो पता है आप बोलने वाले हो कि मैं बात कर रहा हूँ चिंटू बेटे की। बताओ बताओ अंकल, आज तो मार्केट में बहुत ही नया चुटकुला आया यार।
1: अच्छा, लेकिन बेटे मैंने तो आपसे बोला ही नहीं कि चुटकुला सुनाओ।
0: अरे अंकल अंकल, आपके बोलने ना बोलने से क्या होता है। मुझे तो पता ही है कि आपको तो चुटकुला सुनना है।
1: अच्छा ठीक है, फिर आज क्या सुनाने वाले हो।
0: अरे अंकल, बोला तो है आज मार्केट में एकदम नया चुटकुला आया यार।
1: अच्छा कैसा।
0: अरे अंकल, आजकल ना मच्छरों के साथ तो बहुत नाइंसाफी हो रही है यार।
1: अच्छा बेटे, तुम मच्छरों के बारे में ज्यादा सोच रहे हो, क्या नाइंसाफी हो रही है मच्छरों के साथ भाई।
0: अरे अंकल, आप ये बताओ आजकल क्या लोग मच्छरों को बेचारों को खून पीने दे रहे हैं क्या।
1: बेटे पागल हो क्या यार, कौन ही अपना खून पीने देगा यार मच्छरों को, हैं? तुम पीने देते हो क्या।
0: अरे अंकल नहीं पीने देता हूँ, तभी तो दो मच्छर आपस में मिलकर के बातें कर रहे हैं।
1: अच्छा क्या बातें कर रहे हैं।

0: फिर के अंकल वो मच्छर बोला, यार गजब ही हो गया। आप बताओ, चूहेदानी में चूहा, साबुनदानी में साबुन, लेकिन भाई साहब मच्छरदानी में आदमी, मच्छर क्यों नहीं भाई? मच्छरों को भी तो मच्छरदानी के अंदर जाने दो, तभी तो खून पी पाएंगे। हाँ
1: भैया, चिंटू बेटे कैसे, कहाँ से, क्यों?
2: एक तो हमारे चिंटू भाई साहब इतने तेजस्वी हैं कि इन्होंने मच्छर की बातें सुन ली, कि दो मच्छर आपस में बातें कर रहे हैं कि भाई साहब गजब हो गया है दुनिया में, कि चूहेदानी में चूहा, साबुनदानी में साबुन, लेकिन मच्छरदानी में आदमी, मच्छरदानी में मच्छर क्यों नहीं? अब कौन समझाए ना, मच्छरदानी मच्छरों से बचने के लिए है। बहरहाल भाई साहब, चिंटू की ऐसी बातें चलती रहेंगी, आप लोग कहीं मजा ही सुनते रहे अपने प्यारे से शहर भोपाली का प्यारा से रेडियो 90.4 FM यश, यू जाएगा यू आएगा लेकर के और भी ढेर सारी मस्ती और मजाक वाली बातें। तब तक आप है शहर के नंबर वन रेडियो पर, तो सबसे पहले तो जरा सा मुस्कुराइए और मुस्कुराते हुए एंजॉय कीजिएगा इस प्यारे से गाने को। नीचे मैं जाता हूँ दौड़ते भागते, आता हूँ उछलते कूदते फागते।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
1: मैं जयपुर जा रहा हूँ।
2: अच्छा तो आते हुए जयपुर के मशहूर दूध लड्डू और प्याज कचौरी लेते आना।
1: अरे दूध लड्डू और प्याज कचौरी के लिए जयपुर जाने का इंतजार क्यों करना, क्योंकि अब आपके शहर भिवाड़ी में अलवर बाईपास पर खुल चुका है कान्हा स्वीट्स।
2: जी हाँ, कान्हा स्वीट्स पर मिलते हैं स्वादिष्ट दूध लड्डू, प्याज कचौरी, समोसे किसी कलाकंद, रस मलाई, कुल्हड़ रबड़ी और सभी प्रकार की मिठाइयाँ।
1: बिल्कुल, हर मिठाई में स्वाद ऐसा कि एक बार खाएं तो दिल कहे एक और।
2: तो फिर आज मिठास हो जाए कान्हा स्वीट्स के साथ।
1: हाँ, परिवार हो या मेहमान, त्योहार हो या कोई खास खुशी, हर मौके की मिठास कान्हा स्वीट्स के साथ। पता नोट कर लीजिए,
2: शॉप नंबर AG F04, कैपिटल आर्केडिया, अलवर बाईपास इन फ्रंट ऑफ वेदांता फार्म, भिवाड़ी, राजस्थान।
3: मोहाली और गुड़गांव का डेंटल अनुभव अब भिवाड़ी में। आइए वी केयर डेंटल क्लिनिक इम्प्लांट सेंटर, जहां RCT, कैपिंग और डेंटल इम्प्लांट के एक्सपर्ट ट्रीटमेंट के साथ आपको मिलता है डॉक्टर रुकु सिंगला के 16 वर्षों के अनुभव और विशेषज्ञता का भरोसा। आर्मी और कॉर्पोरेट कर्मचारियों के लिए स्पेशल डिस्काउंट। पता, अपोजिट मैकडोनल्ड्स, JMK पेट क्लिनिक के पास, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉल करें 7814399374। वी केयर डेंटल, आपकी मुस्कान हमारा भरोसा।
2: क्या आपकी आँखों की रोशनी से जुड़ी कोई परेशानी है? क्या आप चश्मे से छुटकारा पाना चाहते हैं?
1: तो आइए आधुनिक सुविधाओं से युक्त मिश्री देवी आई हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी आई सेंटर।
2: पिछले 15 वर्षों से नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में भरोसेमंद सेवाएं, अब बहर रोड, नियम राणा और टपुकड़ा भिवाड़ी में।
1: यहाँ उपलब्ध है मोतियाबिंद, फेको, मल्टीफोकल एवं प्रीमियम लेंस, लेसिक लेजर, कॉर्निया, ग्लूकोमा और रेटिना उपचार एवं सर्जरी की आधुनिक सुविधाएं।
2: और अब दोनों आँखों का लेसिक लेजर उपचार आधुनिक तकनीक के साथ आपकी पहुंच में और उचित दरों पर।
1: बेहतर नेत्र उपचार, उचित खर्च और भरोसेमंद देखभाल के साथ चश्मे से आजादी की ओर बढ़ाइए अपना कदम। मिश्री देवी आई हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी आई सेंटर। संपर्क नंबर
2: 9783220043 या 01493294200। अब आपके शहर भिवाड़ी में साइकियाट्री एवं ऑर्थोपेडिक्स की नियमित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है ओजस हॉस्पिटल में।
1: मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितिका अग्रवाल द्वारा डिप्रेशन, नींद की समस्या, बेचैनी, घबराहट, मानसिक तनाव, स्किजोफ्रेनिया और OCD जैसी समस्याओं का उचित उपचार किया जाता है एवं काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध है।
2: वहीं हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेंद्र अग्रवाल द्वारा चोट, ट्रॉमा, फ्रैक्चर, घुटने एवं कमर का दर्द, लिगामेंट की चोट, गठिया और आर्थराइटिस जैसी हड्डी एवं जोड़ संबंधी समस्याओं का उपचार किया जाता है।
1: साथ ही सर्जरी, फिजियोथेरेपी और पेन मैनेजमेंट की सुविधा भी उपलब्ध है।
2: तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या को नजरअंदाज न करें, पहुंचिए ओजस हॉस्पिटल।
1: पता, नगीना गार्डन के पास, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी।
2: फोन करें 9521333591। ओजस हॉस्पिटल, बेहतर स्वास्थ्य की ओर एक कदम। अब आपके शहर धारूहेड़ा में ही मिल रही है आधुनिक और बेहतरीन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सुविधाएं। लोटस हॉस्पिटल, बेस्ट टैक सिटी, BPL फ्लैट के सामने धारूहेड़ा में डॉक्टर अन्विका बंसल, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, 15 वर्ष से अधिक अनुभव के साथ, जो पहले से ही भिवाड़ी में अपनी सेवाएं दे रही थी, अब अपने नए लोटस हॉस्पिटल में OPD और इमरजेंसी सर्विस के लिए उपलब्ध हैं। इसके साथ ही यहां उपलब्ध है अनुभवी हड्डी रोग विशेषज्ञ। यहां घुटना बदलना, कुल्हा बदलना और रीढ़ से जुड़ी सभी बीमारी का इलाज होता है, और एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट और लैप्रोस्कोपिक जनरल सर्जन, जहां लेजर टेक्निक से बवासीर, भगंदर का इलाज लोटस हॉस्पिटल में मिलता है, तथा 24 घंटे आपातकालीन सुविधा, एडवांस्ड एक्सरे, लैबोरेटरी, फार्मेसी, अल्ट्रासाउंड सर्विस, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, AC प्राइवेट रूम की सुविधाएं उपलब्ध हैं। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आज ही विजिट करें लोटस हॉस्पिटल, बेस्ट टैक सिटी, BPL फ्लैट के सामने धारूहेड़ा। संपर्क करें 01274415033।
4: भिवाड़ी का पहला ISO और NABH सर्टिफाइड श्री कृष्णा हॉस्पिटल, जिसमें मल्टी स्पेशलिस्ट OPD, 10 बेड का ICU, सबसे बड़ा मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 50 बेड का इंडोर, 24 आवर्स एम्बुलेंस, फार्मेसी और इमरजेंसी सेवाएं तथा लैब, डिजिटल एक्सरे जैसी सुविधाओं से लैस श्री कृष्णा हॉस्पिटल अधिकांश मल्टीनेशनल कंपनियों के मेडिकल कंसल्टेंसी एवं कैशलेस उपचार का एकमात्र सेंटर। श्री कृष्णा हॉस्पिटल, B14849 भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी, 8529113916, 7340013916। इस हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट और फिजिशियन की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
5: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
6: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
5: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
7: आपके हर खास समारोह को शानदार और यादगार बनाने के लिए आइए भाटोटिया टेंट हाउस एंड इवेंट ऑर्गेनाइजर।
8: सभी प्रकार के टेंट आइटम, शानदार डेकोरेशन और इंडोर आउटडोर कैटरिंग की बेहतरीन सुविधा, शादी, सगाई, जन्मदिन या किसी भी समारोह के लिए एक ही जगह पर पूरी व्यवस्था।
7: संपर्क करें हंसराज भाटोटिया, मोबाइल नंबर 9416347214।
8: और आपके खास समारोह के लिए शानदार राजविलास मैरिज एवं बैंक्वेट हॉल, शिवनगर पार्ट 2, पांचाल कॉलोनी, सीथल रोड, धारूहेड़ा, जिला रेवाड़ी, हरियाणा।
7: बाटोटिया टेंट हाउस और राजविलास मैरिज बैंक्वेट हॉल, आपके समारोह की पूरी तैयारी एक ही जगह।
3: अब भिवाड़ी के सबसे बड़े NABH सर्टिफाइड SS हॉस्पिटल में स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे पाएं। यहां पाएं स्किन स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, नेफ्रोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी, ब्लड बैंक L और डायलिसिस, सभी बड़े TPA, कैशलेस RGHS, ECHS, ESIC, चिरंजीवी योजना की कैशलेस सुविधा, यहां 24 घंटे की इमरजेंसी सेवा और एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें OCF2 ऑपोजिट मॉडर्न पब्लिक स्कूल, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी, कॉन्टैक्ट 7230011191 और 9785013999।
9: टाटा की गाड़ी तो ले ली है, अब भिवाड़ी में सर्विस सेंटर ढूंढते रहो।
10: अरे ढूंढना क्यों है, टाटा ऑथराइज्ड AK ऑटोमोबाइल है ना, जो संजय मोटर्स की ही यूनिट है। 2017 से भिवाड़ी का भरोसा है, टाटा के सर्टिफाइड मैकेनिक्स हैं और वहाँ सर्विसिंग बहुत ही शॉर्ट टाइम में हो जाती है।
9: अच्छा, और उसमें क्या खर्चे ही खर्चे?
10: अरे नहीं नहीं, AK ऑटोमोबाइल्स पर कार सर्विसिंग, बॉडी शॉप और व्हील अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग के अलावा कैशलेस इंश्योरेंस और रिन्यूअल, AMC, ऑन रोड मेंटेनेंस और एक्सीडेंट वारंटी जैसी सारी फैसिलिटीज हैं, जो खर्चे बहुत ही कम कर देती हैं। मेन रोड पर फूलबाग थाने के पास ही है ये।
9: अरे वाह, तो वेट क्यों करना, 9462369786 पे कॉल करके अभी AK ऑटोमोबाइल पे सर्विस बुक करो जल्दी।
11: सोनम, ये लो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट।
12: अरे इसमें क्या है?
11: वही जो तुम्हें बहुत टाइम से चाहिए था।
12: ये ब्रेसलेट तो मुझे बहुत टाइम से चाहिए था।
11: क्या आप इसे दिल्ली से लाए हो?
12: लेकिन आप दिल्ली कब गए?
11: अरे वो है ना, भिवाड़ी में अपने शांति ज्वेलर्स, इनके पास है सोने चांदी हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन और यहां मिलती है हॉलमार्क ज्वेलरी।
12: इनका एड्रेस क्या है?
11: इनका एड्रेस है शॉप नंबर 5, गणपति मॉल, भिवाड़ी। और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9812210987 पर।
13: एक बेहतर कल के लिए, बेहतर मजबूती के लिए, बेहतर बचत के लिए यूज करें SBF रैपिड 550D TMT। मजबूत निर्माण सदा के लिए।
14: मुझे अपने बच्चों के लिए चाहिए एक ऐसा स्कूल जो ICSE से एफिलिएटेड हो।
15: भिवाड़ी में है एक मात्र ऐसा स्कूल SPS ग्लोबल स्कूल, जिसके बच्चों ने ICSE 10th की बोर्ड परीक्षाओं में 100% रिजल्ट के साथ साथ राज्य स्तर पर कराटे, स्केटिंग आदि प्रतियोगिताओं में भी अपने स्कूल का नाम रोशन किया है। यहां शिक्षा से बच्चों का बौद्धिक विकास और खेल कूद से शारीरिक विकास, डिसिप्लिन और समय समय पर सामाजिक व सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं होती रहती हैं, जो बच्चों के सर्वांगीण विकास में मदद करता है। यहां है बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, खेल का मैदान, SE क्लासरूम, डिजिटल क्लास क्लासरूम, आधुनिक सुविधाओं से लैस लैब, बेस्ट टीचर की फैसिलिटी।
14: SPS ग्लोबल स्कूल नियर कैपिटल मॉल भिवाड़ी। आज ही विजिट करें या कॉल करें 9950888330।
0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
16: हेलो जी, गुड वेल इवनिंग है, नमस्कार है, आदाब है और हसर है। आपका दोस्त होस्ट आरजे यश, यानी कि आपका खुर्राफाती यश। और भाई साहब, आपको तो पता है कि जब भी यश आता है तो अपने साथ में बहुत ही ढेर सारी मस्ती और मजाक वाली बातें लेकर के आता है। और साहब, आपको ये भी पता है कि जब भी यश आता है तो फिर एक के बाद एक बहुत ढेर सारी बातें करने के बाद चला भी जाता है। जी हाँ, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। टाइम ने अल्टीमेटम दे दिया है, घड़ी का लाम बज चुका है कि बेटा यश, अब आप जा सकते हो और भी ढेर सारे काम करने वो कर सकते हो। बहुत ही मस्ती मजाक वाली बातें हो गई, बहुत ढेर सारे गाने सुन लिए, बहुत टाइम पास हो गया, अब आप जा सकते हैं। लेकिन भाई साहब, यश जाते जाते इतना जरूर कहेगा, जिंदगी में आगे बढ़िए, जिंदगी में कुछ ऐसा अचीव कीजिए जिससे हर इंसान आपका नाम लेने पर मजबूर हो जाए, चाहे अगल वाले हो, चाहे बगल वाले हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो। मतलब अगर आप सक्सेस होते हैं ना, कुछ आप करना चाहते हैं ना, तो उसे दिल से, लगन से, आत्मा से, विश्वास के साथ कीजिए। सिर्फ इसलिए नहीं कीजिए कि आप किसी को दिखाने के लिए कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कीजिए कि इससे सिर्फ मुझे ही प्रॉफिट होगा। उस काम को इसलिए कीजिए ताकि आपका नाम हो, आप दूसरों के लिए कुछ करने के लायक बने, आप दूसरों की मदद कर सकें, अपने घर वालों को खुश रख सकें, खुद भी खुश रह सकें और जिंदगी में बहुत आगे बढ़ सकें। और भाई साहब, जब आप ये सारी चीजें कर लेते हैं ना, तो देखने वाले आपको देखते हैं, बातें करने वाले आपके बारे में बातें कर लेते हैं, जलने वाले जल भी लेते हैं, सारे काम होने लग जाते हैं। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत, मशक्कत करनी पड़ेगी। जोश, जुनून और जज्बा, तीनों चीजें आपको चाहिए बहुत ही ज्यादा मात्रा में भाई साहब, तब जाकर के आप आगे बढ़ेंगे। तो बस जो भी काम आपको करना है उसे आज ही ठान लीजिए कि कल से मेरा ये वाला काम शुरू होगा ही होगा। सपोज दैट आप सोशल मीडिया पेज ओपन करना चाहते हैं तो सोचिए मत, कीजिए, अभी आईडी बनाइए, अभी कोई सोशल मीडिया पेज बनाइए, उस पर कुछ ना कुछ आज ही पोस्ट कीजिए। ये नहीं कि आज पेज बना लिया परसों से मंडे से करेंगे, ये नहीं भाई साहब, आपको आज करना है तो आज ही करना है, कल पर नहीं डालना है। बस यश जाते जाते इतना और कहेगा कि जिंदगी में खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और यूं जिस तरीके से आप यश को प्यार देते हैं वैसे ही देते रहिए। टाटा बाबा, ठीक कर भवाड़ी, मिलता हूँ कल फिर लेकर के और भी ढेर सारी बातों को। तब तक आप लोग कहीं मत जाइए, सुनते रहिए अपने प्यारे से शहर भवाड़ी का प्यारा सा रेडियो 90.8 FM 24। और हाँ, जाते जाते आप हैं शहर के नंबर वन रेडियो पर, तो एक प्यारी सी मुस्कान देते जाइए। चलिए अब एंजॉय कीजिए इस गाने को। टाटा बाय बाय।
17: अच्छा

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
1: मैं जयपुर जा रहा हूँ।
2: अच्छा, तो आते हुए जयपुर के मशहूर दूध लड्डू और प्याज कचौरी लेते आना।
1: अरे, दूध लड्डू और प्याज कचौरी के लिए जयपुर जाने का इंतजार क्यों करना, क्योंकि अब आपके शहर भिवाड़ी में अलवर बाईपास पर खुल चुका है कान्हा स्वीट्स।
2: जी हाँ, कान्हा स्वीट्स पर मिलते हैं स्वादिष्ट दूध लड्डू, प्याज कचौरी, समोसे, किसी कलाकंद, रसमलाई, कुल्हड़, रबड़ी और सभी प्रकार की मिठाइयाँ।
1: बिल्कुल, हर मिठाई में स्वाद ऐसा कि एक बार खाएं तो दिल कहे एक और।
2: तो फिर आज मिठास हो जाए कान्हा स्वीट्स के साथ।
1: हाँ, परिवार हो या मेहमान, त्योहार हो या कोई खास खुशी, हर मौके की मिठास कान्हा स्वीट्स के साथ। पता नोट कर लीजिए,
2: शॉप नंबर AG F04, कैपिटल आर्केडिया, अलवर बाईपास इन फ्रंट ऑफ वेदांता फार्म, भिवाड़ी, राजस्थान।
3: मोहाली और गुड़गांव का डेंटल अनुभव अब भिवाड़ी में। आइए वी केयर डेंटल क्लिनिक इम्प्लांट सेंटर, जहां RCT, कैपिंग और डेंटल इम्प्लांट के एक्सपर्ट ट्रीटमेंट के साथ आपको मिलता है डॉक्टर रुकु सिंगला के 16 वर्षों के अनुभव और विशेषज्ञता का भरोसा। आर्मी और कॉर्पोरेट कर्मचारियों के लिए स्पेशल डिस्काउंट। पता, अपोजिट मैकडोनल्ड्स, JMK पेट क्लिनिक के पास, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉल करें 7814399374। वी केयर डेंटल, आपकी मुस्कान हमारा भरोसा।
2: क्या आपकी आँखों की रोशनी से जुड़ी कोई परेशानी है? क्या आप चश्मे से छुटकारा पाना चाहते हैं?
1: तो आइए आधुनिक सुविधाओं से युक्त मिश्री देवी आई हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी आई सेंटर।
2: पिछले 15 वर्षों से नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में भरोसेमंद सेवाएं, अब बाहर रोड, नियम राणा और टपुकड़ा भिवाड़ी में।
1: यहाँ उपलब्ध है मोतियाबिंद, फेको, मल्टीफोकल एवं प्रीमियम लेंस, लेसिक लेजर, कॉर्निया, ग्लूकोमा और रेटिना उपचार एवं सर्जरी की आधुनिक सुविधाएं।
2: और अब दोनों आँखों का लेसिक लेजर उपचार आधुनिक तकनीक के साथ आपकी पहुंच में और उचित दरों पर।
1: बेहतर नेत्र उपचार, उचित खर्च और भरोसेमंद देखभाल के साथ चश्मे से आजादी की ओर बढ़ाइए अपना कदम। मिश्री देवी आई हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी आई सेंटर। संपर्क नंबर
2: 9783220043 या 01493294200। अब आपके शहर भिवाड़ी में साइकियाट्री एवं ऑर्थोपेडिक्स की नियमित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है ओजस हॉस्पिटल में।
1: मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितिका अग्रवाल द्वारा डिप्रेशन, नींद की समस्या, बेचैनी, घबराहट, मानसिक तनाव, स्किजोफ्रेनिया और OCD जैसी समस्याओं का उचित उपचार किया जाता है एवं काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध है।
2: वहीं हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेंद्र अग्रवाल द्वारा चोट, ट्रॉमा, फ्रैक्चर, घुटने एवं कमर का दर्द, लिगामेंट की चोट, गठिया और आर्थराइटिस जैसी हड्डी एवं जोड़ संबंधी समस्याओं का उपचार किया जाता है।
1: साथ ही सर्जरी, फिजियोथेरेपी और पेन मैनेजमेंट की सुविधा भी उपलब्ध है।
2: तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या को नजरअंदाज न करें, पहुंचिए ओजस हॉस्पिटल।
1: पता, नगीना गार्डन के पास, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी।
2: फोन करें 9521333591। ओजस हॉस्पिटल, बेहतर स्वास्थ्य की ओर एक कदम। अब आपके शहर धारूहेड़ा में ही मिल रही है आधुनिक और बेहतरीन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सुविधाएं। लोटस हॉस्पिटल, बेस्ट टैग सिटी, BPL फ्लैट के सामने धारूहेड़ा में, डॉक्टर अन्विका बंसल, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, 15 वर्ष से अधिक अनुभव के साथ, जो पहले से ही भिवाड़ी में अपनी सेवाएं दे रही थी, अब अपने नए लोटस हॉस्पिटल में OPD और इमरजेंसी सर्विस के लिए उपलब्ध हैं। इसके साथ ही यहां उपलब्ध है अनुभवी हड्डी रोग विशेषज्ञ। यहां घुटना बदलना, कुल्हा बदलना और रीढ़ से जुड़ी सभी बीमारी का इलाज होता है, और एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट और लैप्रोस्कोपिक जनरल सर्जन, जहां लेजर टेक्निक से बवासीर, भगंदर का इलाज लोटस हॉस्पिटल में मिलता है, तथा 24 घंटे आपातकालीन सुविधा, एडवांस्ड एक्सरे, लैबोरेटरी, फार्मेसी, अल्ट्रासाउंड सर्विस, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, AC प्राइवेट रूम की सुविधाएं उपलब्ध हैं। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आज ही विजिट करें लोटस हॉस्पिटल, बेस्ट टैग सिटी, BPL फ्लैट के सामने, धारूहेड़ा। संपर्क करें 01274415033।
4: भिवाड़ी का पहला ISO और NABH सर्टिफाइड श्री कृष्णा हॉस्पिटल, जिसमें मल्टी स्पेशलिस्ट OPD, 10 बेड का ICU, सबसे बड़ा मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 50 बेड का इंडोर, 24 आवर्स एम्बुलेंस, फार्मेसी और इमरजेंसी सेवाएं, तथा लैब, डिजिटल एक्सरे जैसी सुविधाओं से लैस श्री कृष्णा हॉस्पिटल अधिकांश मल्टीनेशनल कंपनियों के मेडिकल कंसल्टेंसी एवं कैशलेस उपचार का एकमात्र सेंटर। श्री कृष्णा हॉस्पिटल, B14849 भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी, 8529113916, 7340013916। इस हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट और फिजिशियन की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
5: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
6: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
5: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
7: आपके हर खास समारोह को शानदार और यादगार बनाने के लिए आइए भाटोटिया टेंट हाउस एंड इवेंट ऑर्गेनाइजर।
1: सभी प्रकार के टेंट आइटम, शानदार डेकोरेशन और इंडोर आउटडोर कैटरिंग की बेहतरीन सुविधा, शादी, सगाई, जन्मदिन या किसी भी समारोह के लिए एक ही जगह पर पूरी व्यवस्था।
7: संपर्क करें हंसराज भाटोटिया, मोबाइल नंबर 9416347214।
1: और आपके खास समारोह के लिए शानदार राजविलास मैरिज एवं बैंक्वेट हॉल, शिवनगर पार्ट 2, पांचाल कॉलोनी, सीथल रोड, धारूहेड़ा, जिला रेवाड़ी, हरियाणा।
7: भाटोटिया टेंट हाउस और राजविलास मैरिज बैंक्वेट हॉल, आपके समारोह की पूरी तैयारी एक ही जगह।
8: अब भिलवाड़ी के शिवोहम हॉस्पिटल में पाएं एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं। यहां 25 बेड से लेस इंडोर, 6 बेड से लेस ICU, 2 बड़े ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजी लैब तथा अत्याधुनिक एक्सरे मशीनों के द्वारा एक्सरे सुविधा, तकनीकी मशीनों द्वारा जांच, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, एम्बुलेंस, सभी कैशलेस TPA सुविधाओं के साथ 14 साल से कम आयु की बच्चियों के लिए निशुल्क परामर्श, गायनेकोलॉजी, इनफर्टिलिटी, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नम्रता मेहता चतुर्वेदी व हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हेमंत चतुर्वेदी जैसे अनुभवी डॉक्टर से परामर्श सुविधा, जो कि पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में निरंतर अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। शिवोहम हॉस्पिटल, B4 भगत सिंह कॉलोनी, पुराने RTO ऑफिस के पास, भिवाड़ी। संपर्क 9799996778।
4: भिवाड़ी का पहला ISO और NABH सर्टिफाइड श्री कृष्णा हॉस्पिटल, जिसमें मल्टी स्पेशलिस्ट OPD, 10 बेड का ICU, सबसे बड़ा मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 50 बेड का इंडोर, 24 आवर्स एम्बुलेंस, फार्मेसी और इमरजेंसी सेवाएं तथा लैब, डिजिटल एक्सरे जैसी सुविधाओं से लैस श्री कृष्णा हॉस्पिटल अधिकांश मल्टीनेशनल कंपनियों के मेडिकल कंसल्टेंसी एवं कैशलेस उपचार का एकमात्र सेंटर। श्री कृष्णा हॉस्पिटल, B14849 भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी, 8529113916, 7340013916। इस हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट और फिजिशियन की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
7: क्या आपकी त्वचा, बाल या नाखून की समस्या बार बार परेशान कर रही है?
9: अब सही इलाज के लिए मिलिए डॉक्टर गौरव, एम्स से प्रशिक्षित त्वचा रोग विशेषज्ञ, SS हॉस्पिटल, भिवाड़ी में।
7: मुंहासे, पिगमेंटेशन, एलर्जी, हेयर फॉल से लेकर लेजर, केमिकल पील और बोटॉक्स जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध।
9: ECHS RGHS तथा NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल में सभी प्रमुख TPA मान्य।
7: SS हॉस्पिटल, भिवाड़ी, भरोसेमंद विशेषज्ञ से देखभाल। समय रोजाना शाम 4:30 to 6:30 तक, गुरुवार अवकाश।
10: पूजा, तुम्हारे फेस पर कितने पिंपल्स और धब्बे हो रहे हैं?
11: हाँ यार, और बाल भी हर दिन झड़ रहे हैं। कई बार दिल्ली गुरुग्राम में भी दिखा चुकी हूँ।
10: अरे पूजा, अब दिल्ली या गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपनी भिवाड़ी में है डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, जहाँ पर स्किन, हेयर एंड नेल्स की सभी बीमारियों का पूर्ण इलाज डॉक्टर सुचेता MD डर्मेटोलॉजी द्वारा किया जाता है, जो भिवाड़ी में अपनी सेवाएं दे रही है। इनके यहाँ लेजर हेयर रिमूवल, माइक्रो नीडलिंग, PRP, RF, अन्य सभी स्किन समस्याओं का समाधान विदेशी मशीनों व नई तकनीकों द्वारा किया जाता है। कॉल करें 6367551007। विजिट डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, A56 फर्स्ट फ्लोर, भगत सिंह कॉलोनी, बिहाइंड सुखम टावर, भिवाड़ी।
12: आपके सारे जरूरतों का बीमा एक ही जगह, विधि एंटरप्राइजेज, भिवाड़ी। स्वास्थ्य बीमा, वाहन बीमा, जीवन बीमा, फायर बीमा सब मिलेगा यहाँ। और हाँ, बीमा कराने पर खास ऑफर भी मिलेंगे। संपर्क करें चंद्रभान विधि एंटरप्राइजेस, रिको चौक, भिवाड़ी, 9887066308।

0: औद्योगिक क्षेत्र सारे खुद करौली बंदापुर खुशखेड़ा व चौपान की में 16 औद्योगिक व 2 वेयर हाउस भूखंडों को ई नीलामी के माध्यम से बेचैन किया जा रहा है। इन भूखंडों के लिए अमानत राशि दिनांक 9/10/2026 समय 6 बजे तक जमा कराकर बिड लगा सकते हैं। बिड लगाने की अंतिम तिथि 14/10/2026 समय 5 बजे तक है। इसके साथ ही औद्योगिक क्षेत्र सलारपुर व पथरेड़ी में 43 भूखंडों को प्रत्यक्ष आवंटन योजना के माध्यम से बेचैन किया जा रहा है। इन भूखंडों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 12/10/2026 समय 6 बजे तक है। अंतिम जानकारी के लिए रिको की वेबसाइट www.riico.co.in यानी www.rico.co.in पर एवं रिको इकाई कार्यालय भिवाड़ी द्वितीय रिको रेस्ट हाउस रोड भिवाड़ी में संपर्क कर सकते हैं।
1: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।

0: मैं जयपुर जा रहा हूँ।
1: अच्छा, तो आते हुए जयपुर के मशहूर दूध लड्डू और प्याज कचौरी लेते आना।
0: अरे, दूध लड्डू और प्याज कचौरी के लिए जयपुर जाने का इंतजार क्यों करना, क्योंकि अब आपके शहर भिवाड़ी में अलवर बाईपास पर खुल चुका है कान्हा स्वीट्स।
1: जी हाँ, कान्हा स्वीट्स पर मिलते हैं स्वादिष्ट दूध लड्डू, प्याज कचौरी, समोसे, किसी कलाकंद, रसमलाई, कुल्हड़, रबड़ी और सभी प्रकार की मिठाइयाँ।
0: बिल्कुल, हर मिठाई में स्वाद ऐसा कि एक बार खाएं तो दिल कहे एक और।
1: तो फिर आज मिठास हो जाए कान्हा स्वीट्स के साथ।
0: हाँ, परिवार हो या मेहमान, त्योहार हो या कोई खास खुशी, हर मौके की मिठास कान्हा स्वीट्स के साथ। पता नोट कर लीजिए,
1: शॉप नंबर AG F04, कैपिटल आर्केडिया, अलवर बाईपास इन फ्रंट ऑफ वेदांता फार्म, भिवाड़ी, राजस्थान।
2: मोहाली और गुड़गांव का डेंटल अनुभव अब भिवाड़ी में। आइए वी केयर डेंटल क्लिनिक इम्प्लांट सेंटर, जहां RCT, कैपिंग और डेंटल इम्प्लांट के एक्सपर्ट ट्रीटमेंट के साथ आपको मिलता है डॉक्टर रुकु सिंगला के 16 वर्षों के अनुभव और विशेषज्ञता का भरोसा। आर्मी और कॉर्पोरेट कर्मचारियों के लिए स्पेशल डिस्काउंट। पता, अपोजिट मैकडोनल्ड्स, JMK पेट क्लिनिक के पास, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉल करें 7814399374। वी केयर डेंटल, आपकी मुस्कान हमारा भरोसा।
1: क्या आपकी आँखों की रोशनी से जुड़ी कोई परेशानी है? क्या आप चश्मे से छुटकारा पाना चाहते हैं?
0: तो आइए आधुनिक सुविधाओं से युक्त मिश्री देवी आई हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी आई सेंटर।
1: पिछले 15 वर्षों से नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में भरोसेमंद सेवाएं, अब बहर रोड, नियम राणा और टपूकड़ा भिवाड़ी में।
0: यहाँ उपलब्ध है मोतियाबिंद, फेको, मल्टीफोकल एवं प्रीमियम लेंस, लेसिक लेजर, कॉर्निया, ग्लूकोमा और रेटिना उपचार एवं सर्जरी की आधुनिक सुविधाएं।
1: और अब दोनों आँखों का लेसिक लेजर उपचार आधुनिक तकनीक के साथ आपकी पहुँच में और उचित दरों पर।
0: बेहतर नेत्र उपचार, उचित खर्च और भरोसेमंद देखभाल के साथ चश्मे से आजादी की ओर बढ़ाइए अपना कदम। मिश्री देवी आई हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी आई सेंटर। संपर्क नंबर
1: 9783220043 या 01493294200। अब आपके शहर भिवाड़ी में साइकियाट्री एवं ऑर्थोपेडिक्स की नियमित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है ओजस हॉस्पिटल में।
0: मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितिका अग्रवाल द्वारा डिप्रेशन, नींद की समस्या, बेचैनी, घबराहट, मानसिक तनाव, स्किजोफ्रेनिया और OCD जैसी समस्याओं का उचित उपचार किया जाता है एवं काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध है।
1: वहीं हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेंद्र अग्रवाल द्वारा चोट, ट्रॉमा, फ्रैक्चर, घुटने एवं कमर का दर्द, लिगामेंट की चोट, गठिया और आर्थराइटिस जैसी हड्डी एवं जोड़ संबंधी समस्याओं का उपचार किया जाता है।
0: साथ ही सर्जरी, फिजियोथेरेपी और पेन मैनेजमेंट की सुविधा भी उपलब्ध है।
1: तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या को नजरअंदाज न करें, पहुंचिए ओजस हॉस्पिटल।
0: पता, नगीना गार्डन के पास, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी।
1: फोन करें 9521333591। ओजस हॉस्पिटल, बेहतर स्वास्थ्य की ओर एक कदम। अब आपके शहर धारूहेड़ा में ही मिल रही है आधुनिक और बेहतरीन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सुविधाएं। लोटस हॉस्पिटल, बेस्ट टैग सिटी, BPL फ्लैट के सामने धारूहेड़ा में, डॉक्टर अन्विका बंसल, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, 15 वर्ष से अधिक अनुभव के साथ, जो पहले से ही भिवाड़ी में अपनी सेवाएं दे रही थी, अब अपने नए लोटस हॉस्पिटल में OPD और इमरजेंसी सर्विस के लिए उपलब्ध हैं। इसके साथ ही यहाँ उपलब्ध है अनुभवी हड्डी रोग विशेषज्ञ। यहाँ घुटना बदलना, कुल्हा बदलना और रीढ़ से जुड़ी सभी बीमारी का इलाज होता है, और एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट और लैप्रोस्कोपिक जनरल सर्जन, जहाँ लेजर टेक्निक से बवासीर, भगंदर का इलाज लोटस हॉस्पिटल में मिलता है, तथा 24 घंटे आपातकालीन सुविधा, एडवांस्ड एक्सरे, लैबोरेटरी, फार्मेसी, अल्ट्रासाउंड सर्विस, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, AC प्राइवेट रूम की सुविधाएं उपलब्ध हैं। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आज ही विजिट करें लोटस हॉस्पिटल, बेस्ट टैग सिटी, BPL फ्लैट के सामने, धारूहेड़ा। संपर्क करें 01274415033।
3: भिवाड़ी का पहला ISO और NABH सर्टिफाइड श्री कृष्णा हॉस्पिटल, जिसमें मल्टी स्पेशलिस्ट OPD, 10 बेड का ICU, सबसे बड़ा मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 50 बेड का इंडोर, 24 आवर्स एम्बुलेंस, फार्मेसी और इमरजेंसी सेवाएं तथा लैब, डिजिटल एक्सरे जैसी सुविधाओं से लैस श्री कृष्णा हॉस्पिटल अधिकांश मल्टीनेशनल कंपनियों के मेडिकल कंसल्टेंसी एवं कैशलेस उपचार का एकमात्र सेंटर। श्री कृष्णा हॉस्पिटल, B14849 भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी, 8529113916, 7340013916। इस हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट और फिजिशियन की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
4: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
5: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
4: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
6: आपके हर खास समारोह को शानदार और यादगार बनाने के लिए आइए भाटोटिया टेंट हाउस एंड इवेंट ऑर्गेनाइजर।
7: सभी प्रकार के टेंट आइटम, शानदार डेकोरेशन और इंडोर आउटडोर कैटरिंग की बेहतरीन सुविधा, शादी, सगाई, जन्मदिन या किसी भी समारोह के लिए एक ही जगह पर पूरी व्यवस्था।
6: संपर्क करें हंसराज भाटोटिया, मोबाइल नंबर 9416347214।
7: और आपके खास समारोह के लिए शानदार राजविलास मैरिज एवं बैंक्वेट हॉल, शिवनगर पार्ट 2, पांचाल कॉलोनी, सीथल रोड, धारूहेड़ा, जिला रेवाड़ी, हरियाणा।
6: बाटोटिया टेंट हाउस और राजविलास मैरिज बैंक्वेट हॉल, आपके समारोह की पूरी तैयारी एक ही जगह। भिवाड़ी का भरोसा वर्षों से आपकी सेवा में। सिटी नर्सिंग होम, सदर मार्केट, भिवाड़ी, औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी का पहला नर्सिंग होम NABH द्वारा प्रमाणित।
7: यहाँ उपलब्ध है 2 आधुनिक ICU, अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, दूरबीन सर्जरी की सुविधा तथा अधिकांश मेडिक्लेम कंपनियों की कैशलेस सुविधा, डायबिटीज के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर कौशल, मनोरोग परामर्श हेतु डॉक्टर कनिष्का तथा मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर रूप सिंह की सेवाएं उपलब्ध, अनुभवी डॉक्टर, आधुनिक सुविधाएं और मरीजों की समर्पित देखभाल।
6: सिटी नर्सिंग होम, सदर मार्केट, भिवाड़ी, स्वास्थ्य का भरोसा आपके अपने शहर में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सिटी नर्सिंग होम भिवाड़ी।
8: अरे कहाँ जा रही हो?
9: मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए अंशुल ज्वेलर्स।
8: अच्छा, पर अंशुल ज्वेलर्स ही क्यों?
9: अंशुल ज्वेलर्स के पास है सोने, चांदी और हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन, वो भी DIS के 6 अंकों वाले हॉलमार्क HUID के साथ। और तो और, इनकी ज्वेलरी को हम भारत सरकार द्वारा चलाए गए BIS केयर ऐप के वेरीफाई HUID फीचर से आभूषणों की शुद्धता का प्रमाण देख सकते हैं।
8: जी हाँ, खरे आभूषणों की प्रामाणिकता जिसके साथ बढ़ेगी आपकी सुंदरता। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर। हमारा पता, शॉप नंबर 7, गणपति मॉल, समतल मोड़, भिवाड़ी, राजस्थान, या मेन बाजार नजदीक हनुमान मंदिर, टावड़ू, हरियाणा। संपर्क करें 9992533611 या फिर 9354898521 पर। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर।
10: कभी

0: 8607274999।
1: भारत अल्ट्रासाउंड एवं डायग्नोस्टिक सेंटर पर अत्याधुनिक MRI, 32 स्लाइस 3D CT स्कैन, 5D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर डिजिटल एक्सरे DR, TMT, EEG व फुल्ली कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब प्रतिदिन उपलब्ध है।
2: भारत डायग्नोस्टिक्स द्वारा गत 20 वर्षों से MD रेडियोलॉजिस्ट PGI चंडीगढ़ में प्रशिक्षित अनुभवी डॉक्टर्स द्वारा सभी जांचें की जा रही हैं।
1: भारत डायग्नोस्टिक्स पर 5D अल्ट्रासाउंड मशीन द्वारा लेवल 1 एंड 2 फीटल अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इकोकार्डियोग्राफी, लिवर फाइब्रोस्कैन व 3D CT स्कैन मशीन पर एंजियोग्राफी, यूरोग्राफी व एंटेरोग्राफी की जांच भी की जाती है। 1/57-58 राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, सेंट्रल मार्केट के पास, भिवाड़ी। कॉल 9351004500।
3: दूसरी ब्रांच A50 भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉल 8058304500।
4: श्रीराम इंडस्ट्रीज आर्मर जैन, भारत में मेक इन इंडिया पहल के तहत विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाले उत्पादों के निर्माण में एक भरोसेमंद नाम। यहाँ बनते हैं फायर रेटेड और नॉन फायर रेटेड डोर्स, मोटराइज्ड और मैनुअल गेट्स, जनरल पर्पस डोर्स, एक्सेस डोर्स, डॉक लेवलर, फायर हॉज कैबिनेट्स और आपकी जरूरत के मुताबिक कस्टमाइज्ड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस, BIS, CBRI और NABL सर्टिफाइड वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स उचित कीमत पर। आर्मर जैन आपको देता है वादा गुणवत्ता, सुरक्षा और विश्वास का। संपर्क करें 7014735108। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.armorzain.co.in। आर्मर जैन, जब बात हो गुणवत्ता और भरोसे की।
5: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: कर रही है?
1: ऑनलाइन बुकिंग देख रही हूँ, जयपुर जाना है।
0: फिर से? अभी तो गई थी।
1: हाँ, फिर से जाना है।
0: तू अपनी गाड़ी क्यों नहीं ले लेती?
1: गाड़ी नॉट इन बजट।
0: अरे गांधी मोटर्स है ना?
1: गांधी मोटर्स?
0: हाँ गांधी मोटर्स। गांधी मोटर्स कार सेल और परचेज के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर हर तरह की गाड़ियाँ बहुत अच्छी कीमत पे मिलती हैं।
1: तो कब चलें?
0: अरे इसमें सोचना कैसा, अभी चलना। गाड़ियों के सेल और परचेज के लिए आज ही संपर्क करें।
2: हमारा पता है शॉप नंबर S16 एवलॉन रॉयल प्लाजा अलवर बाईपास रोड भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9785980000 या फिर 8

0: 7400001 पर।
1: भिवाड़ी में 27 वर्षों से सेवारत, भरोसेमंद 24 घंटे इलाज हेतु गोपीनाथ अस्पताल, ISO तथा NABH मान्यता एवं राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मल्टी स्पेशलिटी सेंट्रल AC OPD, 50 बेड की सुविधा से युक्त गोपीनाथ हॉस्पिटल, अत्याधुनिक 3 ऑपरेशन थिएटर, 7 बेड ICU, 2 जीवन रक्षक एम्बुलेंस, डिजिटल एक्सरे, ऑर्थोपेडिक सर्जन, फिजिशियन तथा लेडी डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा से युक्त गोपीनाथ अस्पताल। यहाँ नेफ्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, डायबिटोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट की नियमित OPD भी उपलब्ध है। लगभग सभी TPA कैशलेस सुविधा के साथ तथा भिवाड़ी की व आसपास की औद्योगिक इकाइयों के बीमा कंपनियां भी पैनल पर हैं। पता 226 इंडस्ट्रियल एरिया, सदर बाजार के पीछे, गोपीनाथ रोड, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 01493619563 एंड 9784333863।
2: क्या आप बिजली के बिल से परेशान हैं? क्या आप जानते हैं सोलर एनर्जी से आप बिजली के बिल से आजादी पा सकते हैं? जी हाँ, अपने घर, ऑफिस और फैक्ट्री की छत पर सोलर पैनल लगाएं और भारी बिजली के बिल से मुक्ति पाएं। सोलर एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको 30% तक रिटर्न देता है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9610255584। ग्रीन रूट्स रिन्यूएबल एनर्जी।
3: आपकी आंखें हैं अनमोल, आपकी आंखों को चाहिए बेहतर देखभाल, तो आइए गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स भिवाड़ी।
4: यहाँ मिलते हैं सभी ब्रांडेड कंपनियों के स्टाइलिश फ्रेम और हाई क्वालिटी लेंस। Ray-Ban, Vogue, Tommy Hilfiger, Oakley, Prada, Jeez, Essilor Crizal, Vision RX और भी कई नेशनल व इंटरनेशनल ब्रांड्स।
3: साथ ही कॉन्टैक्ट लेंस, लो विजन क्लिनिक, मायोपिया क्लिनिक, विजन थेरेपी और आधुनिक मशीनों द्वारा कंप्यूटरीकृत आई एग्जामिनेशन, प्रशिक्षित ऑप्टोमेट्रिस्ट की पूरी टीम।
4: भिवाड़ी में सन 2006 से भरोसे का नाम गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स।
3: गणपति मॉल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास, समतल चौक, भिवाड़ी, और अशियाना आंगन के सामने, BDI सोसाइटी के पास, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी।
5: अपॉइंटमेंट या जानकारी के लिए अभी कॉल करें 9636061776 या 9928929309।
6: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है, कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है, और इन्हीं श्रृंगार को सवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, एक से एक उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A, आशियाना आंगन प्लाजा, नियर मैकडॉनल्ड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट करें 01493493222 या फिर 9034969731 पर। ऐसे डिजाइन जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्सी आए।
7: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: मैं जयपुर जा रहा हूँ।
1: अच्छा, तो आते हुए जयपुर के मशहूर दूध लड्डू और प्याज कचौरी लेते आना।
0: अरे, दूध लड्डू और प्याज कचौरी के लिए जयपुर जाने का इंतजार क्यों करना? क्योंकि अब आपके शहर भिवाड़ी में अलवर बाईपास पर खुल चुका है कान्हा स्वीट्स।
1: जी हाँ, कान्हा स्वीट्स पर मिलते हैं स्वादिष्ट दूध लड्डू, प्याज कचौरी, समोसे, किसी कलाकंद, रस मलाई, कुल्हड़ रबड़ी और सभी प्रकार की मिठाइयाँ।
0: बिल्कुल, हर मिठाई में स्वाद ऐसा कि एक बार खाएं तो दिल कहे एक और।
1: तो फिर आज मिठास हो जाए कान्हा स्वीट्स के साथ।
0: हाँ, परिवार हो या मेहमान, त्योहार हो या कोई खास खुशी, हर मौके की मिठास कान्हा स्वीट्स के साथ। पता नोट कर लीजिए,
1: शॉप नंबर A GF04, कैपिटल आर्केडिया, अलवर बाईपास इन फ्रंट ऑफ वेदांता फार्म, भिवाड़ी, राजस्थान।
2: मोहाली और गुड़गांव का डेंटल अनुभव अब भिवाड़ी में। आइए वी केयर डेंटल क्लिनिक इम्प्लांट सेंटर, जहां RCT, कैपिंग और डेंटल इम्प्लांट के एक्सपर्ट ट्रीटमेंट के साथ आपको मिलता है डॉक्टर रुकु सिंगला के 16 वर्षों के अनुभव और विशेषज्ञता का भरोसा। आर्मी और कॉर्पोरेट कर्मचारियों के लिए स्पेशल डिस्काउंट। पता, अपोजिट मैकडोनल्ड्स, JMK पेट क्लिनिक के पास, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉल करें 7814399374। वी केयर डेंटल, आपकी मुस्कान हमारा भरोसा।
1: क्या आपकी आँखों की रोशनी से जुड़ी कोई परेशानी है? क्या आप चश्मे से छुटकारा पाना चाहते हैं?
0: तो आइए आधुनिक सुविधाओं से युक्त मिश्री देवी आई हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी आई सेंटर।
1: पिछले 15 वर्षों से नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में भरोसेमंद सेवाएं, अब बहर रोड, नियम राणा और टपुकड़ा भिवाड़ी में।
0: यहाँ उपलब्ध है मोतियाबिंद, फेको, मल्टीफोकल एवं प्रीमियम लेंस, लेसिक लेजर, कॉर्निया, ग्लूकोमा और रेटिना उपचार एवं सर्जरी की आधुनिक सुविधाएं।
1: और अब दोनों आँखों का लेसिक लेजर उपचार आधुनिक तकनीक के साथ आपकी पहुंच में और उचित दरों पर।
0: बेहतर नेत्र उपचार, उचित खर्च और भरोसेमंद देखभाल के साथ चश्मे से आजादी की ओर बढ़ाइए अपना कदम। मिश्री देवी आई हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी आई सेंटर। संपर्क नंबर
1: 9783220043 या 01493294200। अब आपके शहर भिवाड़ी में साइकियाट्री एवं ऑर्थोपेडिक्स की नियमित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है ओजस हॉस्पिटल में।
0: मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितिका अग्रवाल द्वारा डिप्रेशन, नींद की समस्या, बेचैनी, घबराहट, मानसिक तनाव, स्किजोफ्रेनिया और OCD जैसी समस्याओं का उचित उपचार किया जाता है एवं काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध है।
1: वहीं हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेंद्र अग्रवाल द्वारा चोट, ट्रॉमा, फ्रैक्चर, घुटने एवं कमर का दर्द, लिगामेंट की चोट, गठिया और आर्थराइटिस जैसी हड्डी एवं जोड़ संबंधी समस्याओं का उपचार किया जाता है।
0: साथ ही सर्जरी, फिजियोथेरेपी और पेन मैनेजमेंट की सुविधा भी उपलब्ध है।
1: तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या को नजरअंदाज न करें, पहुंचिए ओजस हॉस्पिटल।
0: पता, नगीना गार्डन के पास, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी।
1: फोन करें 9521333591। ओजस हॉस्पिटल, बेहतर स्वास्थ्य की ओर एक कदम। अब आपके शहर धारूहेड़ा में ही मिल रही है आधुनिक और बेहतरीन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सुविधाएं। लोटस हॉस्पिटल, बेस्ट टैक सिटी, BPL फ्लैट के सामने धारूहेड़ा में डॉक्टर अन्विका बंसल, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, 15 वर्ष से अधिक अनुभव के साथ, जो पहले से ही भिवाड़ी में अपनी सेवाएं दे रही थी, अब अपने नए लोटस हॉस्पिटल में OPD और इमरजेंसी सर्विस के लिए उपलब्ध हैं। इसके साथ ही यहां उपलब्ध है अनुभवी हड्डी रोग विशेषज्ञ। यहां घुटना बदलना, कुल्हा बदलना और रीढ़ से जुड़ी सभी बीमारी का इलाज होता है और एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट और लैप्रोस्कोपिक जनरल सर्जन, जहां लेजर टेक्निक से बवासीर, भगंदर का इलाज लोटस हॉस्पिटल में मिलता है, तथा 24 घंटे आपातकालीन सुविधा, एडवांस्ड एक्सरे, लैबोरेटरी, फार्मेसी, अल्ट्रासाउंड सर्विस, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, AC प्राइवेट रूम की सुविधाएं उपलब्ध हैं। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आज ही विजिट करें लोटस हॉस्पिटल, बेस्ट टैक सिटी, BPL फ्लैट के सामने धारूहेड़ा। संपर्क करें 01274415033।
3: भिवाड़ी का पहला ISO और NABH सर्टिफाइड श्री कृष्णा हॉस्पिटल, जिसमें मल्टी स्पेशलिस्ट OPD, 10 बेड का ICU, सबसे बड़ा मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 50 बेड का इंडोर, 24 आवर्स एम्बुलेंस, फार्मेसी और इमरजेंसी सेवाएं तथा लैब, डिजिटल एक्सरे जैसी सुविधाओं से लैस श्री कृष्णा हॉस्पिटल अधिकांश मल्टीनेशनल कंपनियों के मेडिकल कंसल्टेंसी एवं कैशलेस उपचार का एकमात्र सेंटर। श्री कृष्णा हॉस्पिटल, B14849 भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी, 8529113916, 7340013916। इस हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट और फिजिशियन की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
4: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
5: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
4: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
6: आपके हर खास समारोह को शानदार और यादगार बनाने के लिए आइए भाटोटिया टेंट हाउस एंड इवेंट ऑर्गेनाइजर।
7: सभी प्रकार के टेंट आइटम, शानदार डेकोरेशन और इंडोर आउटडोर कैटरिंग की बेहतरीन सुविधा, शादी, सगाई, जन्मदिन या किसी भी समारोह के लिए एक ही जगह पर पूरी व्यवस्था।
6: संपर्क करें हंसराज भाटोटिया, मोबाइल नंबर 9416347214।
7: और आपके खास समारोह के लिए शानदार राजविलास मैरिज एवं बैंक्वेट हॉल, शिवनगर पार्ट 2, पांचाल कॉलोनी, सीथल रोड, धारूहेड़ा, जिला रेवाड़ी, हरियाणा।
6: भाटोटिया टेंट हाउस और राजविलास मैरिज बैंक्वेट हॉल, आपके समारोह की पूरी तैयारी एक ही जगह।
4: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
5: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
4: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
6: जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी, आँखों का NABH मान्यता प्राप्त सुपर स्पेशलिटी आँखों का हॉस्पिटल आपके शहर भिवाड़ी में। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी आपको प्रदान करता है विश्व स्तरीय आँखों की देखभाल।
7: हमारे सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल में आपको मिलेगी अनुभवी डॉक्टरों, आई सर्जनों की विशेषज्ञ टीम, पूर्णतः मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर MICS टॉपिकल फैको तकनीक से कैटरेक्ट, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेजर से ऑपरेशन बिना इंजेक्शन और टांके,
6: रेटिना आंख का पर्दा, ग्लूकोमा, काला मोतियाबिंद का उन्नत इलाज, बच्चों की आंखों का इलाज, हमारे पास सभी इंश्योरेंस और TPA पैनल उपलब्ध हैं। निशुल्क कैशलेस इलाज का लाभ उठाएं।
7: आज ही हमें सेवा का मौका दें। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भगत सिंह कॉलोनी, अलवर बाईपास, हरीश बेकरी के पास, भिवाड़ी।
6: संपर्क करें 7424830174। आज ही अपनी आंखों का इलाज कराएं और पाएं एक उज्जला भविष्य। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी।
8: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं कैशलेस सर्विस के लिए, कहां मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
9: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहां मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंड मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार एसी वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
8: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड नियर बाय, थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इन्फॉर्मेशन कॉल 9799278900।
10: न्यू गर्ल सुपर स्टोर, जहाँ मिलते हैं ग्रोसरीज, ड्राई फ्रूट्स, कॉस्मेटिक्स आइटम और सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स। बजट की दुकान, MRP की छुट्टी, आपका फायदा हमारा वादा। अब वक्त है MRP को कहें बाय बाय। कॉन्टेक्ट करें 7413099952 पर, अलवर बाईपास रोड नियर मार्बल मार्केट, भिवाड़ी।
11: राहुल, इंडस्ट्री प्लान तो बढ़िया है, पर इस बार अपनी फैक्ट्री के इलेक्ट्रिकल्स पर एक्स्ट्रा फोकस रखना।
12: डोंट वरी सर, इंडस्ट्री का सारा इलेक्ट्रिकल्स खंडेलवाल एजेंसी से आएगा। ये NCR का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस है, जहां हमें पैनल, स्विच गियर, मोटर ड्राइव, इंडस्ट्रियल लाइटनिंग और वायर एंड केबल में 30 से ज्यादा मल्टीनेशनल ब्रांड ऑप्शंस मिल जाएंगे।
13: खंडेलवाल एजेंसीज, NCR का लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस इन भिवाड़ी।
14: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: Pussy Gamgee.
1: अरे यार, आज शाम पार्टी करें?
2: नहीं यार, आज डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाना था।
1: गुरुग्राम? इतनी दूर?
2: हाँ यार, वहीं तो बेस्ट हाइजीन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और पेनलेस ट्रीटमेंट मिलता है।
1: ये बात पहले सही थी, पर अब नहीं।
2: मतलब?
1: गुरुग्राम के ही एक्सपीरियंस्ड डेंटल एक्सपर्ट डॉक्टर जितिन टक्कर पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ मिलता है प्रीमियम सेटअप, एडवांस टेक्नोलॉजी, कंप्लीट हाइजीन और 100% पेनलेस डेंटल ट्रीटमेंट। और सबसे अच्छी बात, चार्जेस दिल्ली और गुरुग्राम से काफी कम।
2: तो फिर दूर जाने का टेंशन खत्म।
1: बिल्कुल, अब एक्सपीरियंस, भरोसा और क्वालिटी, सब कुछ घर के पास भिवाड़ी में। आइए 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, ए ब्लॉक, A140, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। आज ही संपर्क करें डॉक्टर जितिन टक्कर, 9871122135। 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, बेहतर चॉइसेस, बेहतर मुस्कान। अजी, सुनते हो, मेरा फोन टूट गया है।
2: अरे भाग्यवान, सुनो, घबराओ नहीं, खंडेलवाल मोबाइल भिवाड़ी लाया है 0% डाउन पेमेंट पर। मोबाइल फोन 9784960000। और सुनो, ओप्पो ने लॉन्च किया है अभी रेनो 15 सी कम दामों में, बजाज फाइनेंस के साथ 0% ब्याज, 10% कैश बैक के साथ, प्लस ट्रॉली बैग, 0 डाउन पेमेंट। और बैटरी से हो परेशान तो रियलमी ने लॉन्च किया है अपना एक नया मॉडल 10,000 mAh बैटरी के साथ। अभी जाइए खंडेलवाल मोबाइल पर ढेर सारे गिफ्ट के साथ, नीलम चौक। चिंता क्यों करते हो, बजाज फाइनेंस है ना अपने साथ। 9784960000 और 9828288666।
3: राहुल यार, मैंने नोएडा से जॉब स्विच कर दिया है, अब सोच रही हूँ भिवाड़ी में रेंटल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा।
4: चिंता की कोई बात नहीं, मेगा एयर कंडीशनर्स एंड इलेक्ट्रिक सर्विस है ना, ये पूरे दिल्ली NCR में अपनी रेंटल सर्विस दे रहे हैं। और इनके यहाँ टावर AC, विंडो AC, स्प्लिट AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड LED TV, सभी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
3: लेकिन इनकी सर्विस भिवाड़ी तो बहुत महंगी होगी ना?
4: बिल्कुल भी नहीं, आपको ये सर्विस सेम रेट पर मिलने वाली है। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9899247102 पर या फिर विजिट करें www.maces.in पर।
5: ये क्या, अभी भी डीजल कार चला रहे हो? अब समय है स्मार्ट फ्यूल पर स्विच करने का, वो भी ज्यादा बचत के साथ। पेश है विक्टोरिस SCNG। ये स्मार्ट है क्योंकि ये देता है 27.02 किलोमीटर पर KG का शानदार माइलेज, और इसका अंडरबॉडी CNG टैंक बूट स्पेस पर कोई समझौता नहीं करता। ज्यादा बचत भी, क्योंकि अपनी पुरानी डीजल कार के एक्सचेंज पर पाएं 50,000 रुपए तक का फायदा। तो देर किस बात की, आज ही बुक करें, अपनी नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम पर जाएं। नियम व शर्तें लागू।
6: विजय फॉर्च्यून कार्स भिवाड़ी।
7: मॉडर्न अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर भिवाड़ी पर अनुभवी रेडियोलॉजिस्ट व पैथोलॉजिस्ट द्वारा अत्याधुनिक मशीनों से 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 4D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इको कार्डियोग्राफी, डिजिटल एक्सरे, IVP, बैरियम, HSG, डिजिटल OPG, DMT, ECG, EEG, BFT, मैमोग्राफी व फुली एडवांस्ड कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब की सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध हैं।
8: नियर सरकारी हॉस्पिटल 135 भिवाड़ी, दूसरी ब्रांच, मॉडर्न डायग्नोस्टिक एवं इमेजिंग सेंटर, नियर नगर पालिका ऑफिस, अपोजिट अम्बेडकर पार्क, धारूहेड़ा। कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800-123-4494 या 9983040100 पर।
9: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: मैं जयपुर जा रहा हूँ।
1: अच्छा, तो आते हुए जयपुर के मशहूर दूध लड्डू और प्याज कचौरी लेते आना।
0: अरे, दूध लड्डू और प्याज कचौरी के लिए जयपुर जाने का इंतजार क्यों करना, क्योंकि अब आपके शहर भिवाड़ी में अलवर बाईपास पर खुल चुका है कान्हा स्वीट्स।
1: जी हाँ, कान्हा स्वीट्स पर मिलते हैं स्वादिष्ट दूध लड्डू, प्याज कचौरी, समोसे किसी कलाकंद, रसमलाई, कुल्हड़ रबड़ी और सभी प्रकार की मिठाइयाँ।
0: बिल्कुल, हर मिठाई में स्वाद ऐसा कि एक बार खाएं तो दिल कहे एक और।
1: तो फिर आज मिठास हो जाए कान्हा स्वीट्स के साथ।
0: हाँ, परिवार हो या मेहमान, त्योहार हो या कोई खास खुशी, हर मौके की मिठास कान्हा स्वीट्स के साथ। पता नोट कर लीजिए,
1: शॉप नंबर AG F04, कैपिटल आर्केडिया, अलवर बाईपास इन फ्रंट ऑफ वेदांता फार्म, भिवाड़ी, राजस्थान।
2: मोहाली और गुड़गांव का डेंटल अनुभव अब भिवाड़ी में। आइए वी केयर डेंटल क्लिनिक इम्प्लांट सेंटर, जहां RCT, कैपिंग और डेंटल इम्प्लांट के एक्सपर्ट ट्रीटमेंट के साथ आपको मिलता है डॉक्टर रुकु सिंगला के 16 वर्षों के अनुभव और विशेषज्ञता का भरोसा। आर्मी और कॉर्पोरेट कर्मचारियों के लिए स्पेशल डिस्काउंट। पता, अपोजिट मैकडोनल्ड्स, JMK पेट क्लिनिक के पास, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉल करें 7814399374। वी केयर डेंटल, आपकी मुस्कान हमारा भरोसा।
1: क्या आपकी आँखों की रोशनी से जुड़ी कोई परेशानी है? क्या आप चश्मे से छुटकारा पाना चाहते हैं?
0: तो आइए आधुनिक सुविधाओं से युक्त मिश्री देवी आई हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी आई सेंटर।
1: पिछले 15 वर्षों से नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में भरोसेमंद सेवाएं, अब बहर रोड, नियम राणा और टपुकड़ा भिवाड़ी में।
0: यहाँ उपलब्ध है मोतियाबिंद, फेको, मल्टीफोकल एवं प्रीमियम लेंस, लेसिक लेजर, कॉर्निया, ग्लूकोमा और रेटिना उपचार एवं सर्जरी की आधुनिक सुविधाएं।
1: और अब दोनों आँखों का लेसिक लेजर उपचार आधुनिक तकनीक के साथ आपकी पहुंच में और उचित दरों पर।
0: बेहतर नेत्र उपचार, उचित खर्च और भरोसेमंद देखभाल के साथ चश्मे से आजादी की ओर बढ़ाइए अपना कदम। मिश्री देवी आई हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी आई सेंटर। संपर्क नंबर
1: 9783220043 या 01493294200। अब आपके शहर भिवाड़ी में साइकियाट्री एवं ऑर्थोपेडिक्स की नियमित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है ओजस हॉस्पिटल में।
0: मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितिका अग्रवाल द्वारा डिप्रेशन, नींद की समस्या, बेचैनी, घबराहट, मानसिक तनाव, स्किजोफ्रेनिया और OCD जैसी समस्याओं का उचित उपचार किया जाता है एवं काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध है।
1: वहीं हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेंद्र अग्रवाल द्वारा चोट, ट्रॉमा, फ्रैक्चर, घुटने एवं कमर का दर्द, लिगामेंट की चोट, गठिया और आर्थराइटिस जैसी हड्डी एवं जोड़ संबंधी समस्याओं का उपचार किया जाता है।
0: साथ ही सर्जरी, फिजियोथेरेपी और पेन मैनेजमेंट की सुविधा भी उपलब्ध है।
1: तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या को नजरअंदाज न करें, पहुंचिए ओजस हॉस्पिटल।
0: पता, नगीना गार्डन के पास, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी।
1: फोन करें 9521333591। ओजस हॉस्पिटल, बेहतर स्वास्थ्य की ओर एक कदम। अब आपके शहर धारूहेड़ा में ही मिल रही है आधुनिक और बेहतरीन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सुविधाएं। लोटस हॉस्पिटल, बेस्ट टैग सिटी, BPL फ्लैट के सामने धारूहेड़ा में, डॉक्टर अन्विका बंसल, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, 15 वर्ष से अधिक अनुभव के साथ, जो पहले से ही भिवाड़ी में अपनी सेवाएं दे रही थी, अब अपने नए लोटस हॉस्पिटल में OPD और इमरजेंसी सर्विस के लिए उपलब्ध हैं। इसके साथ ही यहाँ उपलब्ध है अनुभवी हड्डी रोग विशेषज्ञ। यहाँ घुटना बदलना, कुल्हा बदलना और रीढ़ से जुड़ी सभी बीमारी का इलाज होता है, और एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट और लैप्रोस्कोपिक जनरल सर्जन, जहाँ लेजर टेक्निक से बवासीर, भगंदर का इलाज लोटस हॉस्पिटल में मिलता है, तथा 24 घंटे आपातकालीन सुविधा, एडवांस्ड एक्सरे, लैबोरेटरी, फार्मेसी, अल्ट्रासाउंड सर्विस, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, AC प्राइवेट रूम की सुविधाएं उपलब्ध हैं। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आज ही विजिट करें लोटस हॉस्पिटल, बेस्ट टैग सिटी, BPL फ्लैट के सामने, धारूहेड़ा। संपर्क करें 01274415033।
3: भिवाड़ी का पहला ISO और NABH सर्टिफाइड श्री कृष्णा हॉस्पिटल, जिसमें मल्टी स्पेशलिस्ट OPD, 10 बेड का ICU, सबसे बड़ा मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 50 बेड का इंडोर, 24 आवर्स एम्बुलेंस, फार्मेसी और इमरजेंसी सेवाएं तथा लैब, डिजिटल एक्सरे जैसी सुविधाओं से लैस श्री कृष्णा हॉस्पिटल अधिकांश मल्टीनेशनल कंपनियों के मेडिकल कंसल्टेंसी एवं कैशलेस उपचार का एकमात्र सेंटर। श्री कृष्णा हॉस्पिटल, B14849 भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी, 8529113916, 7340013916। इस हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट और फिजिशियन की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
4: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
5: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
4: कान नाक गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
6: आपके हर खास समारोह को शानदार और यादगार बनाने के लिए आइए भाटोटिया टेंट हाउस एंड इवेंट ऑर्गेनाइजर।
7: सभी प्रकार के टेंट आइटम, शानदार डेकोरेशन और इंडोर आउटडोर कैटरिंग की बेहतरीन सुविधा, शादी, सगाई, जन्मदिन या किसी भी समारोह के लिए एक ही जगह पर पूरी व्यवस्था।
6: संपर्क करें हंसराज भाटोटिया, मोबाइल नंबर 9416347214।
7: और आपके खास समारोह के लिए शानदार राजविलास मैरिज एवं बैंक्वेट हॉल, शिवनगर पार्ट 2, पांचाल कॉलोनी, सीथल रोड, धारूहेड़ा, जिला रेवाड़ी, हरियाणा।
6: बाटोटिया टेंट हाउस और राजविलास मैरिज बैंक्वेट हॉल, आपके समारोह की पूरी तैयारी एक ही जगह।
2: अब भिवाड़ी के सबसे बड़े NABH सर्टिफाइड SS हॉस्पिटल में स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे पाएं। यहां पाएं स्किन स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, नेफ्रोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी, ब्लड बैंक, एल और डायलिसिस, सभी बड़े TPA, कैशलेस RGHS, ECHS, ESIC, चिरंजीवी योजना की कैशलेस सुविधा, यहां 24 घंटे की इमरजेंसी सेवा और एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें OCF2 ऑपोजिट मॉडर्न पब्लिक स्कूल, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी, कॉन्टैक्ट 7230011191 और 9785013999।
8: टाटा की गाड़ी तो ले ली है, अब भिवाड़ी में सर्विस सेंटर ढूंढते रहो।
9: अरे ढूंढना क्यों है, टाटा ऑथराइज्ड AK ऑटोमोबाइल है ना, जो संजय मोटर्स की ही यूनिट है। 2017 से भिवाड़ी का भरोसा है, टाटा के सर्टिफाइड मैकेनिक्स हैं और वहाँ सर्विसिंग बहुत ही शॉर्ट टाइम में हो जाती है।
8: अच्छा, और उसमें क्या खर्चे ही खर्चे?
9: अरे नहीं नहीं, AK ऑटोमोबाइल्स पर कार सर्विसिंग, बॉडी शॉप और व्हील अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग के अलावा कैशलेस इंश्योरेंस और रिन्यूअल, AMC, ऑन रोड मेंटेनेंस और एक्सीडेंट वारंटी जैसी सारी फैसिलिटीज हैं, जो खर्चे बहुत ही कम कर देती हैं। मेन रोड पर फूलबाग थाने के पास ही है ये।
8: अरे वाह, तो वेट क्यों करना, 9462369786 पे कॉल करके अभी AK ऑटोमोबाइल पे सर्विस बुक करो जल्दी।
10: सोनम, ये लो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट।
11: अरे इसमें क्या है?
10: वही जो तुम्हें बहुत टाइम से चाहिए था।
11: ये ब्रेसलेट तो मुझे बहुत टाइम से चाहिए था।
10: क्या आप इसे दिल्ली से लाए हो?
11: लेकिन आप दिल्ली कब गए?
10: अरे वो है ना, भिवाड़ी में अपने शांति ज्वेलर्स, इनके पास है सोने चांदी हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन और यहां मिलती है हॉलमार्क ज्वेलरी।
11: इनका एड्रेस क्या है?
10: इनका एड्रेस है शॉप नंबर 5, गणपति मॉल, भिवाड़ी। और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9812210987 पर।
12: एक बेहतर कल के लिए, बेहतर मजबूती के लिए, बेहतर बचत के लिए यूज करें SBF रैपिड 550D TMT।
13: मजबूत निर्माण सदा के लिए।
14: मुझे अपने बच्चों के लिए चाहिए एक ऐसा स्कूल जो ICSE से एफिलिएटेड हो।
15: भिवाड़ी में है एक मात्र ऐसा स्कूल SPS ग्लोबल स्कूल, जिसके बच्चों ने ICSE 10th की बोर्ड परीक्षाओं में 100% रिजल्ट के साथ साथ राज्य स्तर पर कराटे, स्केटिंग आदि प्रतियोगिताओं में भी अपने स्कूल का नाम रोशन किया है। यहां शिक्षा से बच्चों का बौद्धिक विकास और खेल कूद से शारीरिक विकास, डिसिप्लिन और समय समय पर सामाजिक व सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं होती रहती हैं, जो बच्चों के सर्वांगीण विकास में मदद करता है। यहां है बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, खेल का मैदान, SE क्लासरूम, डिजिटल क्लास क्लासरूम, आधुनिक सुविधाओं से लैस लैब, बेस्ट टीचर की फैसिलिटी।
14: SPS ग्लोबल स्कूल नियर कैपिटल मॉल भिवाड़ी। आज ही विजिट करें या कॉल करें 9950888330।
16: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 44, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: भिलवाड़ी के शिवोहम हॉस्पिटल में पाएं एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं। यहां 25 बेड से लेस इंडोर, 6 बेड से लेस आईसीयू, दो बड़े ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजी लैब तथा अत्याधुनिक एक्सरे मशीनों के द्वारा एक्सरे सुविधा, तकनीकी मशीनों द्वारा जाँच, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, एम्बुलेंस, सभी कैशलेस टीपी सुविधाओं के साथ 14 साल से कम आयु की बच्चियों के लिए निशुल्क परामर्श, गायनेकोलॉजी, इनफर्टिलिटी, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नम्रता मेहता चतुर्वेदी व हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हेमंत चतुर्वेदी जैसे अनुभवी डॉक्टर से परामर्श सुविधा, जो कि पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में निरंतर अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। शिवोहम हॉस्पिटल, B4 भगत सिंह कॉलोनी, पुराने RTO ऑफिस के पास, भिवाड़ी। संपर्क 9799996778।
1: भिवाड़ी का पहला ISO और NABH सर्टिफाइड श्री कृष्णा हॉस्पिटल, जिसमें मल्टी स्पेशलिस्ट OPD, 10 बेड का ICU, सबसे बड़ा मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 50 बेड का इंडोर, 24 आवर्स एम्बुलेंस, फार्मेसी और इमरजेंसी सेवाएं तथा लैब, डिजिटल एक्सरे जैसी सुविधाओं से लैस श्री कृष्णा हॉस्पिटल अधिकांश मल्टीनेशनल कंपनियों के मेडिकल कंसल्टेंसी एवं कैशलेस उपचार का एकमात्र सेंटर। श्री कृष्णा हॉस्पिटल, B14849 भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी, 8529113916, 7340013916। इस हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट और फिजिशियन की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं।
2: क्या आपकी त्वचा, बाल या नाखून की समस्या बार बार परेशान कर रही है?
3: अब सही इलाज के लिए मिलिए डॉक्टर गौरव, एम्स से प्रशिक्षित त्वचा रोग विशेषज्ञ, SS हॉस्पिटल, भिवाड़ी में।
2: मुंहासे, पिगमेंटेशन, एलर्जी, हेयर फॉल से लेकर लेजर, केमिकल पील और बोटॉक्स जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध।
3: ECHS, RGHS तथा NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल में सभी प्रमुख TPA मान्य।
2: SS हॉस्पिटल, भिवाड़ी, भरोसेमंद विशेषज्ञ से देखभाल। समय रोजाना शाम 4:30 से 6:30 तक, गुरुवार अवकाश।
4: पूजा, तुम्हारे फेस पर कितने पिंपल्स और धब्बे हो रहे हैं?
5: हाँ यार, और बाल भी हर दिन झड़ रहे हैं। कई बार दिल्ली गुरुग्राम में भी दिखा चुकी हूँ।
4: अरे पूजा, अब दिल्ली या गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपनी भिवाड़ी में है डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, जहाँ पर स्किन, हेयर एंड नेल्स की सभी बीमारियों का पूर्ण इलाज डॉक्टर सुचेता MD डर्मेटोलॉजी द्वारा किया जाता है, जो भिवाड़ी में अपनी सेवाएं दे रही है। इनके यहाँ लेजर हेयर रिमूवल, माइक्रो नीडलिंग, PRP, RF, अन्य सभी स्किन समस्याओं का समाधान विदेशी मशीनों व नई तकनीकों द्वारा किया जाता है। कॉल करें 6367551007। विजिट डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, A56 फर्स्ट फ्लोर, भगत सिंह कॉलोनी, बिहाइंड सुखम टावर, भिवाड़ी।
6: आपके सारे जरूरतों का बीमा एक ही जगह, विधि एंटरप्राइजेज भिवाड़ी। स्वास्थ्य बीमा, वाहन बीमा, जीवन बीमा, फायर बीमा, सब मिलेगा यहाँ। और हाँ, बीमा कराने पर खास ऑफर भी मिलेंगे। संपर्क करें चंद्रभान, विधि एंटरप्राइजेज, रिको चौक, भिवाड़ी, 9887066308।
7: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: मैं जयपुर जा रहा हूँ।
1: अच्छा, तो आते हुए जयपुर के मशहूर दूध लड्डू और प्याज कचौरी लेते आना।
0: अरे, दूध लड्डू और प्याज कचौरी के लिए जयपुर जाने का इंतजार क्यों करना, क्योंकि अब आपके शहर भिवाड़ी में अलवर बाईपास पर खुल चुका है कान्हा स्वीट्स।
1: जी हाँ, कान्हा स्वीट्स पर मिलते हैं स्वादिष्ट दूध लड्डू, प्याज कचौरी, समोसे किसी कलाकंद, रसमलाई, कुल्हड़ रबड़ी और सभी प्रकार की मिठाइयाँ।
0: बिल्कुल, हर मिठाई में स्वाद ऐसा कि एक बार खाएं तो दिल कहे एक और।
1: तो फिर आज मिठास हो जाए कान्हा स्वीट्स के साथ।
0: हाँ, परिवार हो या मेहमान, त्योहार हो या कोई खास खुशी, हर मौके की मिठास कान्हा स्वीट्स के साथ। पता नोट कर लीजिए,
1: शॉप नंबर AG F04, कैपिटल आर्केडिया, अलवर बाईपास इन फ्रंट ऑफ वेदांता फार्म, भिवाड़ी, राजस्थान।
2: मोहाली और गुड़गांव का डेंटल अनुभव अब भिवाड़ी में। आइए वी केयर डेंटल क्लिनिक इम्प्लांट सेंटर, जहां RCT, कैपिंग और डेंटल इम्प्लांट के एक्सपर्ट ट्रीटमेंट के साथ आपको मिलता है डॉक्टर रुकु सिंगला के 16 वर्षों के अनुभव और विशेषज्ञता का भरोसा। आर्मी और कॉर्पोरेट कर्मचारियों के लिए स्पेशल डिस्काउंट। पता, अपोजिट मैकडोनल्ड्स, JMK पेट क्लिनिक के पास, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉल करें 7813993974। वी केयर डेंटल, आपकी मुस्कान हमारा भरोसा।
1: क्या आपकी आँखों की रोशनी से जुड़ी कोई परेशानी है? क्या आप चश्मे से छुटकारा पाना चाहते हैं?
0: तो आइए आधुनिक सुविधाओं से युक्त मिश्री देवी आई हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी आई सेंटर।
1: पिछले 15 वर्षों से नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में भरोसेमंद सेवाएं, अब बहर रोड, नियम राणा और टपूकड़ा भिवाड़ी में।
0: यहाँ उपलब्ध है मोतियाबिंद, फेको, मल्टीफोकल एवं प्रीमियम लेंस, लेसिक लेजर, कॉर्निया, ग्लूकोमा और रेटिना उपचार एवं सर्जरी की आधुनिक सुविधाएं।
1: और अब दोनों आँखों का लेसिक लेजर उपचार आधुनिक तकनीक के साथ आपकी पहुंच में और उचित दरों पर।
0: बेहतर नेत्र उपचार, उचित खर्च और भरोसेमंद देखभाल के साथ चश्मे से आजादी की ओर बढ़ाइए अपना कदम। मिश्री देवी आई हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी आई सेंटर। संपर्क नंबर
1: 9783220043 या 01493294200। अब आपके शहर भिवाड़ी में साइकियाट्री एवं ऑर्थोपेडिक्स की नियमित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है ओजस हॉस्पिटल में।
0: मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितिका अग्रवाल द्वारा डिप्रेशन, नींद की समस्या, बेचैनी, घबराहट, मानसिक तनाव, स्किजोफ्रेनिया और OCD जैसी समस्याओं का उचित उपचार किया जाता है एवं काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध है।
1: वहीं हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेंद्र अग्रवाल द्वारा चोट, ट्रॉमा, फ्रैक्चर, घुटने एवं कमर का दर्द, लिगामेंट की चोट, गठिया और आर्थराइटिस जैसी हड्डी एवं जोड़ संबंधी समस्याओं का उपचार किया जाता है।
0: साथ ही सर्जरी, फिजियोथेरेपी और पेन मैनेजमेंट की सुविधा भी उपलब्ध है।
1: तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या को नजरअंदाज न करें, पहुंचिए ओजस हॉस्पिटल।
0: पता, नगीना गार्डन के पास, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी।
1: फोन करें 9521333591। ओजस हॉस्पिटल, बेहतर स्वास्थ्य की ओर एक कदम। अब आपके शहर धारूहेड़ा में ही मिल रही है आधुनिक और बेहतरीन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सुविधाएं। लोटस हॉस्पिटल, बेस्ट टैग सिटी, BPL फ्लैट के सामने धारूहेड़ा में, डॉक्टर अन्विका बंसल, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, 15 वर्ष से अधिक अनुभव के साथ, जो पहले से ही भिवाड़ी में अपनी सेवाएं दे रही थी, अब अपने नए लोटस हॉस्पिटल में OPD और इमरजेंसी सर्विस के लिए उपलब्ध हैं। इसके साथ ही यहां उपलब्ध है अनुभवी हड्डी रोग विशेषज्ञ। यहां घुटना बदलना, कुल्हा बदलना और रीढ़ से जुड़ी सभी बीमारी का इलाज होता है, और एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट और लैप्रोस्कोपिक जनरल सर्जन, जहां लेजर टेक्निक से बवासीर, भगंदर का इलाज लोटस हॉस्पिटल में मिलता है, तथा 24 घंटे आपातकालीन सुविधा, एडवांस्ड एक्सरे, लैबोरेटरी, फार्मेसी, अल्ट्रासाउंड सर्विस, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, AC प्राइवेट रूम की सुविधाएं उपलब्ध हैं। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आज ही विजिट करें लोटस हॉस्पिटल, बेस्ट टैग सिटी, BPL फ्लैट के सामने, धारूहेड़ा। संपर्क करें 01274415033।
3: भिवाड़ी का पहला ISO और NABH सर्टिफाइड श्री कृष्णा हॉस्पिटल, जिसमें मल्टी स्पेशलिस्ट OPD, 10 बेड का ICU, सबसे बड़ा मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 50 बेड का इंडोर, 24 आवर्स एम्बुलेंस, फार्मेसी और इमरजेंसी सेवाएं तथा लैब, डिजिटल एक्सरे जैसी सुविधाओं से लैस श्री कृष्णा हॉस्पिटल अधिकांश मल्टीनेशनल कंपनियों के मेडिकल कंसल्टेंसी एवं कैशलेस उपचार का एकमात्र सेंटर। श्री कृष्णा हॉस्पिटल, B14849 भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी, 8529113916, 7340013916। इस हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट और फिजिशियन की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
4: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
5: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
4: कान नाक गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
6: आपके हर खास समारोह को शानदार और यादगार बनाने के लिए आइए भाटोटिया टेंट हाउस एंड इवेंट ऑर्गेनाइजर।
7: सभी प्रकार के टेंट आइटम, शानदार डेकोरेशन और इंडोर आउटडोर कैटरिंग की बेहतरीन सुविधा, शादी, सगाई, जन्मदिन या किसी भी समारोह के लिए एक ही जगह पर पूरी व्यवस्था।
6: संपर्क करें हंसराज भाटोटिया, मोबाइल नंबर 9416347214।
7: और आपके खास समारोह के लिए शानदार राजविलास मैरिज एवं बैंक्वेट हॉल, शिवनगर पार्ट 2, पांचाल कॉलोनी, सीथल रोड, धारूहेड़ा, जिला रेवाड़ी, हरियाणा।

के साथ आपको मिलता है किराना ग्रोसरी आइटम, कॉस्मेटिक, हाउसकीपिंग, हाउसहोल्ड आइटम, गिफ्ट आइटम, क्रॉकरी, टॉयज एंड गेम्स। इन सभी आइटम के MRP दामों पर खास छूट। इतना ही नहीं, फ्री होम डिलीवरी की सुविधा भी है। इनके स्टोर अलवर बाईपास, थड़ा रोड, भिवाड़ी, कृष मॉल, टपुकड़ा आशियाना विलेज सेंटर। संपर्क करें 9680870184 या फिर 7822091.

0: हर खास समारोह को शानदार और यादगार बनाने के लिए आइए भाटोटिया टेंट हाउस एंड इवेंट ऑर्गेनाइजर।
1: सभी प्रकार के टेंट आइटम, शानदार डेकोरेशन और इंडोर आउटडोर कैटरिंग की बेहतरीन सुविधा, शादी, सगाई, जन्मदिन या किसी भी समारोह के लिए एक ही जगह पर पूरी व्यवस्था।
0: संपर्क करें हंसराज भाटोटिया, मोबाइल नंबर 9416347214।
1: और आपके खास समारोह के लिए शानदार राज विलास मैरिज एवं बैंक्वेट हॉल, शिवनगर पार्ट 2, पांचाल कॉलोनी, सीथल रोड, धारूहेड़ा, जिला रेवाड़ी, हरियाणा।
0: बाटोटिया टेंट हाउस और राज विलास मैरिज बैंक्वेट हॉल, आपके समारोह की पूरी तैयारी एक ही जगह। जब बात आपकी मुस्कान की हो तो समझौता क्यों, अब स्पेशलिस्ट डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं। आइए डेंटल एक्सपर्ट्स भिवाड़ी, भिवाड़ी का इकलौता डेंटल क्लिनिक, जहां पूरी टीम MDS स्पेशलिस्ट्स की है और जिन्हें 15 साल से अधिक का अनुभव है। डॉक्टर विनोद यादव MDS ऑर्थोडोंटिस्ट, भिवाड़ी के एकमात्र ब्रेसेस स्पेशलिस्ट एंड इनविसलाइन प्रोवाइडर। इसके अलावा डेंटल इम्प्लांट्स और जटिल दांतों की समस्याओं का आधुनिक उपचार प्रदान करते हैं। साथ ही डॉक्टर ऋतु यादव MDS एंडोडोंटिस्ट, रूट कैनाल, स्माइल डिजाइनिंग और फुल माउथ रिहैबिलिटेशन की विशेषज्ञ। डेंटल एक्सपर्ट्स, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट आशियाना आंगन, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 8824232823। डेंटल एक्सपर्ट्स, आपकी मुस्कान हमारी विशेषज्ञता।
1: भिवाड़ी वासियों, अब हर जरूरत की सर्विस सिर्फ एक ऐप पर। मैस एंड केयर लेकर आया है आपके लिए भरोसेमंद होम और प्रोफेशनल सर्विसेज।
0: बाथरूम डीप क्लीनिंग, किचन डीप क्लीनिंग, पूरे घर की सफाई, ऑफिस क्लीनिंग, जिम क्लीनिंग, कार क्लीनिंग, पानी की टंकी की सफाई, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ड्राइवर सर्विस, कैब बुकिंग और बहुत सारी अन्य सेवाएं, अब सब कुछ एक ही ऐप पर।
1: अभी मैस एंड केयर ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे अपनी पसंद की सर्विस बुक करें।
0: मैस एंड केयर, आपका घर हमारी जिम्मेदारी। बुकिंग के लिए अभी कॉल या व्हाट्सएप करें 8824106060।
2: फ्यूचर लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहें। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
3: गणेश स्टेशनर्स, बेटर देन द बेस्ट,
2: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा A to Z सामान। इसी के साथ यहां प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
3: गणेश स्टेशनर्स, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड, नियर हरी राम हॉस्पिटल, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।
4: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: औद्योगिक क्षेत्र सारे खुर्द करौली बंदापुर खुशखेड़ा व चौपान की में 16 औद्योगिक व 2 वेयर हाउस भूखंडों को ई नीलामी के माध्यम से बेचान किया जा रहा है। इन भूखंडों के लिए अमानत राशि दिनांक 9/10/2026 समय 6 बजे तक जमा कराकर बिड लगा सकते हैं। बिड लगाने की अंतिम तिथि 14/10/2026 समय 5 बजे तक है। इसके साथ ही औद्योगिक क्षेत्र सलारपुर व पथरेड़ी में 43 भूखंडों को प्रत्यक्ष आवंटन योजना के माध्यम से बेचान किया जा रहा है। इन भूखंडों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 12/10/2026 समय 6 बजे तक है। अंतिम जानकारी के लिए रिको की वेबसाइट www.riico.co.in यानी www.rico.co.in पर एवं रिको इकाई कार्यालय भिवाड़ी द्वितीय रिको रेस्ट हाउस रोड भिवाड़ी में संपर्क कर सकते हैं।
1: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।

0: भिवाड़ी का भरोसा वर्षों से आपकी सेवा में। सिटी नर्सिंग होम सदर मार्केट भिवाड़ी, औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी का पहला नर्सिंग होम NABH द्वारा प्रमाणित।
1: यहाँ उपलब्ध है 2 आधुनिक ICU, अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, दूरबीन सर्जरी की सुविधा तथा अधिकांश मेडिक्लेम कंपनियों की कैशलेस सुविधा, डायबिटीज के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर कौशल, मनोरोग परामर्श हेतु डॉक्टर कनिष्का तथा मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर रूप सिंह की सेवाएं उपलब्ध, अनुभवी डॉक्टर, आधुनिक सुविधाएं और मरीजों की समर्पित देखभाल।
0: सिटी नर्सिंग होम सदर मार्केट भिवाड़ी, स्वास्थ्य का भरोसा आपके अपने शहर में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सिटी नर्सिंग होम भिवाड़ी।
2: अरे कहाँ जा रही हो?
3: मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए अंशुल ज्वेलर्स।
2: अच्छा, पर अंशुल ज्वेलर्स ही क्यों?
3: अंशुल ज्वेलर्स के पास है सोने, चांदी और हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन, वो भी BIS के 6 अंकों वाले हॉलमार्क HUID के साथ। और तो और, इनकी ज्वेलरी को हम भारत सरकार द्वारा चलाए गए BIS केयर ऐप के वेरीफाई HUID फीचर से आभूषणों की शुद्धता का प्रमाण देख सकते हैं।
2: जी हाँ, खरे आभूषणों की प्रामाणिकता जिसके साथ बढ़ेगी आपकी सुंदरता। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर। हमारा पता शॉप नंबर 7 गणपति मॉल समतल मोड़ भिवाड़ी राजस्थान, या मेन बाजार नजदीक हनुमान मंदिर टावलो हरियाणा। संपर्क करें 9995336111 या फिर 9354898521 पर। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर।
4: कभी भी इमरजेंसी हो या सिर्फ एक छोटी सी चेकअप की जरूरत हो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा और भिवाड़ी में आपका अपना हॉस्पिटल है। 24 घंटे इमरजेंसी, AC प्राइवेट रूम्स, वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर, डिजिटल एक्सरे, क्लिनिकल लैब, TMT, ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी, फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी, स्किन प्रिक एंड ब्लड एलर्जी टेस्ट, एलर्जी का जड़ से इलाज। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं मेडिसिन, सर्जरी, ENT, हेड एंड नेक सर्जरी, ऑब्स एंड गाइनी, ऑर्थोपेडिक्स, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कैशलेस फैसिलिटी, सभी TPA के साथ। तो अब टेंशन मत लो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा, प्लॉट नंबर 5, सेक्टर 6 और भिवाड़ी, B83, भगत सिंह कॉलोनी। बस एक कॉल या एक विजिट, नो है 8607274999।
5: भारत अल्ट्रासाउंड एवं डायग्नोस्टिक सेंटर पर अत्याधुनिक MRI, 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 5D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, डिजिटल एक्सरे, DR, TMT, EEG व फुल्ली कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब प्रतिदिन उपलब्ध है।
6: भारत डायग्नोस्टिक्स द्वारा गत 20 वर्षों से MD रेडियोलॉजिस्ट, PGI चंडीगढ़ में प्रशिक्षित अनुभवी डॉक्टर्स द्वारा सभी जांचें की जा रही हैं।
5: भारत डायग्नोस्टिक्स पर 5D अल्ट्रासाउंड मशीन द्वारा लेवल 1 एंड 2 फीटल अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इको कार्डियोग्राफी, लिवर फाइब्रो स्कैन व 3D CT स्कैन मशीन पर एंजियोग्राफी, यूरोग्राफी व एंटेरोग्राफी की जांच भी की जाती है। 1/57-58 राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, सेंट्रल मार्केट के पास भिवाड़ी। कॉल 9351-004500।
7: दूसरी ब्रांच A50 भगत सिंह कॉलोनी भिवाड़ी, कॉल 8058304500।
8: श्रीराम इंडस्ट्रीज आर्मर जैन, भारत में मेक इन इंडिया पहल के तहत विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाले उत्पादों के निर्माण में एक भरोसेमंद नाम। यहाँ बनते हैं फायर रेटेड और नॉन फायर रेटेड डोर्स, मोटराइज्ड और मैनुअल गेट्स, जनरल पर्पस डोर्स, एक्सेस डोर्स, डॉक लेवलर, फायर हॉज कैबिनेट्स और आपकी जरूरत के मुताबिक कस्टमाइज्ड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस। BIS, CBRI और NABL सर्टिफाइड वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स उचित कीमत पर। आर्मर जैन आपको देता है वादा गुणवत्ता, सुरक्षा और विश्वास का। संपर्क करें 7014735108। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.armorzain.co.in। आर्मर जैन, जब बात हो गुणवत्ता और भरोसे की।
9: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: मैं जयपुर जा रहा हूँ।
1: अच्छा, तो आते हुए जयपुर के मशहूर दूध लड्डू और प्याज कचौरी लेते आना।
0: अरे, दूध लड्डू और प्याज कचौरी के लिए जयपुर जाने का इंतजार क्यों करना, क्योंकि अब आपके शहर भिवाड़ी में अलवर बाईपास पर खुल चुका है कान्हा स्वीट्स।
1: जी हाँ, कान्हा स्वीट्स पर मिलते हैं स्वादिष्ट दूध लड्डू, प्याज कचौरी, समोसे किसी कलाकंद, रसमलाई, कुल्हड़ रबड़ी और सभी प्रकार की मिठाइयाँ।
0: बिल्कुल, हर मिठाई में स्वाद ऐसा कि एक बार खाएं तो दिल कहे एक और।
1: तो फिर आज मिठास हो जाए कान्हा स्वीट्स के साथ।
0: हाँ, परिवार हो या मेहमान, त्योहार हो या कोई खास खुशी, हर मौके की मिठास कान्हा स्वीट्स के साथ। पता नोट कर लीजिए,
1: शॉप नंबर AG F04, कैपिटल आर्केडिया, अलवर बाईपास इन फ्रंट ऑफ वेदांता फार्म, भिवाड़ी, राजस्थान।
2: मोहाली और गुड़गांव का डेंटल अनुभव अब भिवाड़ी में। आइए वी केयर डेंटल क्लिनिक इम्प्लांट सेंटर, जहां RCT, कैपिंग और डेंटल इम्प्लांट के एक्सपर्ट ट्रीटमेंट के साथ आपको मिलता है डॉक्टर रुकु सिंगला के 16 वर्षों के अनुभव और विशेषज्ञता का भरोसा। आर्मी और कॉर्पोरेट कर्मचारियों के लिए स्पेशल डिस्काउंट। पता, अपोजिट मैकडोनल्ड्स, JMK पेट क्लिनिक के पास, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉल करें 7814399374। वी केयर डेंटल, आपकी मुस्कान हमारा भरोसा।
1: क्या आपकी आँखों की रोशनी से जुड़ी कोई परेशानी है? क्या आप चश्मे से छुटकारा पाना चाहते हैं?
0: तो आइए आधुनिक सुविधाओं से युक्त मिश्री देवी आई हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी आई सेंटर।
1: पिछले 15 वर्षों से नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में भरोसेमंद सेवाएं, अब बहर रोड, नियम राणा और टपुकड़ा भिवाड़ी में।
0: यहां उपलब्ध हैं मोतियाबिंद, फेको, मल्टीफोकल एवं प्रीमियम लेंस, लेसिक लेजर, कॉर्निया, ग्लूकोमा और रेटिना उपचार एवं सर्जरी की आधुनिक सुविधाएं।
1: और अब दोनों आँखों का लेसिक लेजर उपचार आधुनिक तकनीक के साथ आपकी पहुंच में और उचित दरों पर।
0: बेहतर नेत्र उपचार, उचित खर्च और भरोसेमंद देखभाल के साथ चश्मे से आजादी की ओर बढ़ाइए अपना कदम। मिश्री देवी आई हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी आई सेंटर। संपर्क नंबर
1: 9783220043 या 01493294200। अब आपके शहर भिवाड़ी में साइकियाट्री एवं ऑर्थोपेडिक्स की नियमित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है ओजस हॉस्पिटल में।
0: मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितिका अग्रवाल द्वारा डिप्रेशन, नींद की समस्या, बेचैनी, घबराहट, मानसिक तनाव, स्किजोफ्रेनिया और OCD जैसी समस्याओं का उचित उपचार किया जाता है एवं काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध है।
1: वहीं हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेंद्र अग्रवाल द्वारा चोट, ट्रॉमा, फ्रैक्चर, घुटने एवं कमर का दर्द, लिगामेंट की चोट, गठिया और आर्थराइटिस जैसी हड्डी एवं जोड़ संबंधी समस्याओं का उपचार किया जाता है।
0: साथ ही सर्जरी, फिजियोथेरेपी और पेन मैनेजमेंट की सुविधा भी उपलब्ध है।
1: तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या को नजरअंदाज न करें, पहुंचिए ओजस हॉस्पिटल।
0: पता, नगीना गार्डन के पास, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी।
1: फोन करें 9521333591। ओजस हॉस्पिटल, बेहतर स्वास्थ्य की ओर एक कदम। अब आपके शहर धारूहेड़ा में ही मिल रही है आधुनिक और बेहतरीन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सुविधाएं। लोटस हॉस्पिटल, बेस्ट टैग सिटी, BPL फ्लैट के सामने धारूहेड़ा में, डॉक्टर अन्विका बंसल, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, 15 वर्ष से अधिक अनुभव के साथ, जो पहले से ही भिवाड़ी में अपनी सेवाएं दे रही थी, अब अपने नए लोटस हॉस्पिटल में OPD और इमरजेंसी सर्विस के लिए उपलब्ध हैं। इसके साथ ही यहां उपलब्ध है अनुभवी हड्डी रोग विशेषज्ञ। यहां घुटना बदलना, कुल्हा बदलना और रीढ़ से जुड़ी सभी बीमारी का इलाज होता है, और एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट और लैप्रोस्कोपिक जनरल सर्जन, जहां लेजर टेक्निक से बवासीर, भगंदर का इलाज लोटस हॉस्पिटल में मिलता है, तथा 24 घंटे आपातकालीन सुविधा, एडवांस्ड एक्सरे, लैबोरेटरी, फार्मेसी, अल्ट्रासाउंड सर्विस, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, AC प्राइवेट रूम की सुविधाएं उपलब्ध हैं। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आज ही विजिट करें लोटस हॉस्पिटल, बेस्ट टैग सिटी, BPL फ्लैट के सामने, धारूहेड़ा। संपर्क करें 01274415033।
3: भिवाड़ी का पहला ISO और NABH सर्टिफाइड श्री कृष्णा हॉस्पिटल, जिसमें मल्टी स्पेशलिस्ट OPD, 10 बेड का ICU, सबसे बड़ा मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 50 बेड का इंडोर, 24 आवर्स एम्बुलेंस, फार्मेसी और इमरजेंसी सेवाएं तथा लैब, डिजिटल एक्सरे जैसी सुविधाओं से लैस श्री कृष्णा हॉस्पिटल अधिकांश मल्टीनेशनल कंपनियों के मेडिकल कंसल्टेंसी एवं कैशलेस उपचार का एकमात्र सेंटर। श्री कृष्णा हॉस्पिटल, B14849 भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी, 8529113916 7340013916। इस हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट और फिजिशियन की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
4: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
5: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
4: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
6: आपके हर खास समारोह को शानदार और यादगार बनाने के लिए आइए भाटोटिया टेंट हाउस एंड इवेंट ऑर्गेनाइजर।
7: सभी प्रकार के टेंट आइटम, शानदार डेकोरेशन और इंडोर आउटडोर कैटरिंग की बेहतरीन सुविधा, शादी, सगाई, जन्मदिन या किसी भी समारोह के लिए एक ही जगह पर पूरी व्यवस्था।
6: संपर्क करें हंसराज भाटोटिया, मोबाइल नंबर 9416347214।
7: और आपके खास समारोह के लिए शानदार राजविलास मैरिज एवं बैंक्वेट हॉल, शिवनगर पार्ट 2, पांचाल कॉलोनी, सीथल रोड, धारूहेड़ा, जिला रेवाड़ी, हरियाणा।
6: बाटोटिया टेंट हाउस और राजविलास मैरिज बैंक्वेट हॉल, आपके समारोह की पूरी तैयारी एक ही जगह।
8: क्या कर रही है?
9: ऑनलाइन बुकिंग देख रही हूँ, जयपुर जाना है।
8: फिर से? अभी तो गई थी।
9: हाँ, फिर से जाना है।
8: तू अपनी गाड़ी क्यों नहीं ले लेती?
9: गाड़ी नॉट इन बजट।
8: अरे गांधी मोटर्स है ना?
9: गांधी मोटर्स?
8: हाँ गांधी मोटर्स। गांधी मोटर्स कार सेल और परचेज के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर हर तरह की गाड़ियाँ बहुत अच्छी कीमत पे मिलती हैं।
9: तो कब चले?
8: अरे इसमें सोचना कैसा, अभी चलना। गाड़ियों के सेल और परचेज के लिए आज ही संपर्क करें।
10: हमारा पता है शॉप नंबर S16 एवलॉन रॉयल प्लाजा, अल्बर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9785980000 या फिर 8740000144 पर।
11: भिवाड़ी में 27 वर्षों से सेवारत, भरोसेमंद 24 घंटे इलाज हेतु गोपीनाथ अस्पताल, ISO तथा NABH मान्यता एवं राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मल्टी स्पेशलिटी सेंट्रल AC OPD, 50 बेड की सुविधा से युक्त गोपीनाथ हॉस्पिटल, अत्याधुनिक 3 ऑपरेशन थिएटर, 7 बेड ICU, 2 जीवन रक्षक एम्बुलेंस, डिजिटल एक्सरे, ऑर्थोपेडिक सर्जन, फिजिशियन तथा लेडी डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा से युक्त गोपीनाथ अस्पताल। यहाँ नेफ्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, डायबिटोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट की नियमित OPD भी उपलब्ध है। लगभग सभी TPA कैशलेस सुविधा के साथ तथा भिवाड़ी की व आसपास की औद्योगिक इकाइयों के बीमा कंपनियां भी पैनल पर हैं। पता 226 इंडस्ट्रियल एरिया, सदर बाजार के पीछे, गोपीनाथ रोड, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 01493619563 एंड 9784333863।
12: क्या आप बिजली के बिल से परेशान हैं? क्या आप जानते हैं सोलर एनर्जी से आप बिजली के बिल से आजादी पा सकते हैं? जी हाँ, अपने घर, ऑफिस और फैक्ट्री की छत पर सोलर पैनल लगाएं और भारी बिजली के बिल से मुक्ति पाएं। सोलर एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको 30% तक रिटर्न देता है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9610255584। ग्रीन रूट्स रिन्यूएबल एनर्जी।
6: आपकी आंखें हैं अनमोल, आपकी आंखों को चाहिए बेहतर देखभाल, तो आइए गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स भिवाड़ी।
13: यहाँ मिलते हैं सभी ब्रांडेड कंपनियों के स्टाइलिश फ्रेम और हाई क्वालिटी लेंस। Ray-Ban, Vogue, टॉमी हिलफिगर, ओकेली, प्रदा, जीस, एसिलोर क्रिजाल, विजन आर एक्स और भी कई नेशनल व इंटरनेशनल ब्रांड्स।
6: साथ ही कॉन्टैक्ट लेंस, लो विजन क्लिनिक, मायोपिया क्लिनिक, विजन थेरेपी और आधुनिक मशीनों द्वारा कंप्यूटरीकृत आई एग्जामिनेशन, प्रशिक्षित ऑप्टोमेट्रिस्ट की पूरी टीम।
13: भिवाड़ी में सन 2006 से भरोसे का नाम गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स।
6: गणपति मॉल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास, समतल चौक भिवाड़ी और अशियाना आंगन के सामने BDI सोसाइटी के पास, अलवर बाईपास रोड भिवाड़ी।
7: अपॉइंटमेंट या जानकारी के लिए अभी कॉल करें 9636061776 या 9928929309।
14: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है, कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है, और इन्हीं श्रृंगार को सवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, एक से एक उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A, आशियाना आंगन प्लाजा, नियर मैकडॉनल्ड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट करें 01-4934-9322 या फिर 9034-9697-31 पर। ऐसे डिजाइन्स जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्स ही आए।
15: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
1: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
0: कान नाक गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
2: जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी, आँखों का NABH मान्यता प्राप्त सुपर स्पेशलिटी आँखों का हॉस्पिटल आपके शहर भिवाड़ी में। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी आपको प्रदान करता है विश्व स्तरीय आँखों की देखभाल।
3: हमारे सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल में आपको मिलेगी अनुभवी डॉक्टरों, आई सर्जनों की विशेषज्ञ टीम, पूर्णतः मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर MICS टॉपिकल फैको तकनीक से, कैटरेक्ट मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेजर से ऑपरेशन बिना इंजेक्शन और टांके,
2: रेटिना आंख का पर्दा, ग्लूकोमा, काला मोतियाबिंद का उन्नत इलाज, बच्चों की आंखों का इलाज, हमारे पास सभी इंश्योरेंस और TPA पैनल उपलब्ध हैं। निशुल्क कैशलेस इलाज का लाभ उठाएं।
3: आज ही हमें सेवा का मौका दें। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भगत सिंह कॉलोनी अलवर बाईपास हरीश बेकरी के पास भिवाड़ी।
2: संपर्क करें 7424830174। आज ही अपनी आँखों का इलाज कराएं और पाएं एक उज्जला भविष्य। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी।
4: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं कैशलेस सर्विस के लिए, कहां मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
5: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहां मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंड मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार एसी वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
4: एकता मोटर्स अलवर बाईपास रोड नियर बाय थड़ा मोड़ भिवाड़ी। फॉर इन्फॉर्मेशन कॉल 9799278900।
6: न्यू गर्ल्स सुपर स्टोर, जहाँ मिलते हैं ग्रोसरीज, ड्राई फ्रूट्स, कॉस्मेटिक्स आइटम और सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स। बजट की दुकान, MRP की छुट्टी, आपका फायदा हमारा वादा। अब वक्त है MRP को कहें बाय बाय। कॉन्टेक्ट करें 7413099952 पर अलवर बाईपास रोड नियर मार्बल मार्केट भिवाड़ी।
7: राहुल, इंडस्ट्री प्लान तो बढ़िया है पर इस बार अपनी फैक्ट्री के इलेक्ट्रिकल्स पर एक्स्ट्रा फोकस रखना।
8: डोंट वरी सर, इंडस्ट्री का सारा इलेक्ट्रिकल्स खंडेलवाल एजेंसी से आएगा। ये NCR का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस है, जहां हमें पैनल, स्विच गियर, मोटर ड्राइव, इंडस्ट्रियल लाइटनिंग और वायर एंड केबल में 30 से ज्यादा मल्टीनेशनल ब्रांड ऑप्शंस मिल जाएंगे।
9: खंडेलवाल एजेंसीज, NCR का लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस इन भिवाड़ी।
10: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: मैं जयपुर जा रहा हूँ।
1: अच्छा, तो आते हुए जयपुर के मशहूर दूध लड्डू और प्याज कचौरी लेते आना।
0: अरे, दूध लड्डू और प्याज कचौरी के लिए जयपुर जाने का इंतजार क्यों करना, क्योंकि अब आपके शहर भिवाड़ी में अलवर बाईपास पर खुल चुका है कान्हा स्वीट्स।
1: जी हाँ, कान्हा स्वीट्स पर मिलते हैं स्वादिष्ट दूध लड्डू, प्याज कचौरी, समोसे किसी कलाकंद, रस मलाई, कुल्हड़ रबड़ी और सभी प्रकार की मिठाइयाँ।
0: बिल्कुल, हर मिठाई में स्वाद ऐसा कि एक बार खाएं तो दिल कहे एक और।
1: तो फिर आज मिठास हो जाए कान्हा स्वीट्स के साथ।
0: हाँ, परिवार हो या मेहमान, त्योहार हो या कोई खास खुशी, हर मौके की मिठास कान्हा स्वीट्स के साथ। पता नोट कर लीजिए,
1: शॉप नंबर A G F04, कैपिटल आर्केडिया, अलवर बाईपास इन फ्रंट ऑफ वेदांता फार्म, भिवाड़ी, राजस्थान।
2: मोहाली और गुड़गांव का डेंटल अनुभव अब भिवाड़ी में। आइए वी केयर डेंटल क्लिनिक इम्प्लांट सेंटर, जहां RCT, कैपिंग और डेंटल इम्प्लांट के एक्सपर्ट ट्रीटमेंट के साथ आपको मिलता है डॉक्टर रुकु सिंगला के 16 वर्षों के अनुभव और विशेषज्ञता का भरोसा। आर्मी और कॉर्पोरेट कर्मचारियों के लिए स्पेशल डिस्काउंट। पता, अपोजिट मैकडोनल्ड्स, JMK पेट क्लिनिक के पास, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉल करें 7814399374। वी केयर डेंटल, आपकी मुस्कान हमारा भरोसा।
1: क्या आपकी आँखों की रोशनी से जुड़ी कोई परेशानी है? क्या आप चश्मे से छुटकारा पाना चाहते हैं?
0: तो आइए आधुनिक सुविधाओं से युक्त मिश्री देवी आई हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी आई सेंटर।
1: पिछले 15 वर्षों से नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में भरोसेमंद सेवाएं, अब बहर रोड, नियम राणा और टपुकड़ा भिवाड़ी में।
0: यहाँ उपलब्ध है मोतियाबिंद, फेको, मल्टीफोकल एवं प्रीमियम लेंस, लेसिक लेजर, कॉर्निया, ग्लूकोमा और रेटिना उपचार एवं सर्जरी की आधुनिक सुविधाएं।
1: और अब दोनों आँखों का लेसिक लेजर उपचार आधुनिक तकनीक के साथ आपकी पहुंच में और उचित दरों पर।
0: बेहतर नेत्र उपचार, उचित खर्च और भरोसेमंद देखभाल के साथ चश्मे से आजादी की ओर बढ़ाइए अपना कदम। मिश्री देवी आई हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी आई सेंटर। संपर्क नंबर
1: 9783220043 या 01493294200। अब आपके शहर भिवाड़ी में साइकियाट्री एवं ऑर्थोपेडिक्स की नियमित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है ओजस हॉस्पिटल में।
0: मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितिका अग्रवाल द्वारा डिप्रेशन, नींद की समस्या, बेचैनी, घबराहट, मानसिक तनाव, स्किजोफ्रेनिया और OCD जैसी समस्याओं का उचित उपचार किया जाता है एवं काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध है।
1: वहीं हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेंद्र अग्रवाल द्वारा चोट, ट्रॉमा, फ्रैक्चर, घुटने एवं कमर का दर्द, लिगामेंट की चोट, गठिया और आर्थराइटिस जैसी हड्डी एवं जोड़ संबंधी समस्याओं का उपचार किया जाता है।
0: साथ ही सर्जरी, फिजियोथेरेपी और पेन मैनेजमेंट की सुविधा भी उपलब्ध है।
1: तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या को नजरअंदाज न करें, पहुंचिए ओजस हॉस्पिटल।
0: पता, नगीना गार्डन के पास, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी।
1: फोन करें 9521333591। ओजस हॉस्पिटल, बेहतर स्वास्थ्य की ओर एक कदम। अब आपके शहर धारूहेड़ा में ही मिल रही है आधुनिक और बेहतरीन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सुविधाएं। लोटस हॉस्पिटल, बेस्ट टैक्स सिटी, BPL फ्लैट के सामने धारूहेड़ा में, डॉक्टर अन्विका बंसल, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, 15 वर्ष से अधिक अनुभव के साथ, जो पहले से ही भिवाड़ी में अपनी सेवाएं दे रही थी, अब अपने नए लोटस हॉस्पिटल में OPD और इमरजेंसी सर्विस के लिए उपलब्ध हैं। इसके साथ ही यहाँ उपलब्ध है अनुभवी हड्डी रोग विशेषज्ञ। यहाँ घुटना बदलना, कुल्हा बदलना और रीढ़ से जुड़ी सभी बीमारी का इलाज होता है, और एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट और लैप्रोस्कोपिक जनरल सर्जन, जहाँ लेजर टेक्निक से बवासीर, भगंदर का इलाज लोटस हॉस्पिटल में मिलता है, तथा 24 घंटे आपातकालीन सुविधा, एडवांस्ड एक्सरे, लैबोरेटरी, फार्मेसी, अल्ट्रासाउंड सर्विस, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, AC प्राइवेट रूम की सुविधाएं उपलब्ध हैं। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आज ही विजिट करें लोटस हॉस्पिटल, बेस्ट टैक्स सिटी, BPL फ्लैट के सामने, धारूहेड़ा। संपर्क करें 01274415033।
3: भिवाड़ी का पहला ISO और NABH सर्टिफाइड श्री कृष्णा हॉस्पिटल, जिसमें मल्टी स्पेशलिस्ट OPD, 10 बेड का ICU, सबसे बड़ा मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 50 बेड का इंडोर, 24 आवर्स एम्बुलेंस, फार्मेसी और इमरजेंसी सेवाएं तथा लैब, डिजिटल एक्सरे जैसी सुविधाओं से लैस श्री कृष्णा हॉस्पिटल अधिकांश मल्टीनेशनल कंपनियों के मेडिकल कंसल्टेंसी एवं कैशलेस उपचार का एकमात्र सेंटर। श्री कृष्णा हॉस्पिटल, B14849 भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी, 8529113916, 7340013916। इस हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट और फिजिशियन की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
4: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
5: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे, किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
4: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
6: आपके हर खास समारोह को शानदार और यादगार बनाने के लिए आइए भाटोटिया टेंट हाउस एंड इवेंट ऑर्गेनाइजर।
7: सभी प्रकार के टेंट आइटम, शानदार डेकोरेशन और इंडोर आउटडोर कैटरिंग की बेहतरीन सुविधा, शादी, सगाई, जन्मदिन या किसी भी समारोह के लिए एक ही जगह पर पूरी व्यवस्था।
6: संपर्क करें हंसराज भाटोटिया, मोबाइल नंबर 9416347214।
7: और आपके खास समारोह के लिए शानदार राजविलास मैरिज एवं बैंक्वेट हॉल, शिवनगर पार्ट 2, पांचाल कॉलोनी, सीथल रोड, धारूहेड़ा, जिला रेवाड़ी, हरियाणा।
6: भाटोटिया टेंट हाउस और राजविलास मैरिज बैंक्वेट हॉल, आपके समारोह की पूरी तैयारी एक ही जगह। अरे यार, आज शाम पार्टी करें?
8: नहीं यार, आज डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाना था।
6: गुरुग्राम? इतनी दूर?
8: हाँ यार, वहीं तो बेस्ट हाइजीन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और पेनलेस ट्रीटमेंट मिलता है।
6: ये बात पहले सही थी, पर अब नहीं।
8: मतलब?
6: गुरुग्राम के ही एक्सपीरियंस्ड डेंटल एक्सपर्ट डॉक्टर जितिन टक्कर पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ मिलता है प्रीमियम सेटअप, एडवांस टेक्नोलॉजी, कंप्लीट हाइजीन और 100% पेनलेस डेंटल ट्रीटमेंट। और सबसे अच्छी बात, चार्जेस दिल्ली और गुरुग्राम से काफी कम।
8: तो फिर दूर जाने का टेंशन खत्म।
6: बिल्कुल, अब एक्सपीरियंस, भरोसा और क्वालिटी सब कुछ घर के पास भिवाड़ी में। आइए 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, ए ब्लॉक, A140, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। आज ही संपर्क करें डॉक्टर जितिन टक्कर 9871122135। 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, बेहतर चॉइसेस, बेहतर मुस्कान। अजी, सुनते हो, मेरा फोन टूट गया है।
8: अरे भाग्यवान, सुनो, घबराओ नहीं, खंडेलवाल मोबाइल भिवाड़ी लाया है 0% डाउन पेमेंट पर। मोबाइल फोन 9784960000। और सुनो, ओप्पो ने लॉन्च किया है अभी रेनो 15 सी कम दामों में, बजाज फाइनेंस के साथ 0% ब्याज, 10% कैश बैक के साथ, प्लस ट्रॉली बैग, 0 डाउन पेमेंट। और बैटरी से हो परेशान तो रियलमी ने लॉन्च किया है अपना एक नया मॉडल 10,000 mAh बैटरी के साथ। अभी जाइए खंडेलवाल मोबाइल पर ढेर सारे गिफ्ट के साथ, नीलम चौक। चिंता क्यों करते हो, बजाज फाइनेंस है ना अपने साथ। 9784960000 और 9828288666।
9: राहुल यार, मैंने नोएडा से जॉब स्विच कर दिया है, अब सोच रही हूँ भिवाड़ी में रेंटल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा।
10: चिंता की कोई बात नहीं, मेगा एयर कंडीशनर्स एंड इलेक्ट्रिक सर्विस है ना, ये पूरे दिल्ली NCR में अपनी रेंटल सर्विस दे रहे हैं। और इनके यहाँ टावर AC, विंडो AC, स्प्लिट AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड LED TV सभी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं।
9: लेकिन इनकी सर्विस भिवाड़ी में तो बहुत महंगी होगी ना?
10: बिल्कुल भी नहीं, आपको ये सर्विस सेम रेट पर मिलने वाली है। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9899247102 पर या फिर विजिट करें www.maces.in पर।
11: ये क्या, अभी भी डीजल कार चला रहे हो? अब समय है स्मार्ट फ्यूल पर स्विच करने का, वो भी ज्यादा बचत के साथ।
12: पेश है विक्टोरिस SCNG। ये स्मार्ट है क्योंकि ये देता है 27.02 किलोमीटर पर kg का शानदार माइलेज, और इसका अंडरबॉडी CNG टैंक बूट स्पेस पर कोई समझौता नहीं करता। ज्यादा बचत भी, क्योंकि अपनी पुरानी डीजल कार के एक्सचेंज पर पाएं 50,000 रुपए तक का फायदा। तो देर किस बात की, आज ही बुक करें। अपनी नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम पर जाएं। नियम बशर्ते लागू।
13: विजिट फॉर्च्यून कार्स भिवाड़ी।
14: मॉडर्न अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर भिवाड़ी पर अनुभवी रेडियोलॉजिस्ट व पैथोलॉजिस्ट द्वारा अत्याधुनिक मशीनों से MRI, 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 4D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इको कार्डियोग्राफी, डिजिटल एक्सरे, IVP, बैरियम, HSG, डिजिटल OPG, DMT, ECG, EEG, BFT, मैमोग्राफी व फुली एडवांस कंप्यूटराइज पैथोलॉजी लैब की सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध है।
15: नियर सरकारी हॉस्पिटल 135 भिवाड़ी, दूसरी ब्रांच मॉडर्न डायग्नोस्टिक एवं इमेजिंग सेंटर, नियर नगर पालिका ऑफिस, अपोजिट अंबेडकर पार्क, धारूहेड़ा। कॉल करें टोल फ्री नंबर 1-800-123-4494 या 9983-04010 पर।
16: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 44, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: अब भिवाड़ी के सबसे बड़े NABH सर्टिफाइड SS हॉस्पिटल में स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे पाएं। यहां पाएं स्किन स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, नेफ्रोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी, ब्लड बैंक L और डायलिसिस, सभी बड़े TPA, कैशलेस RGHS, ECHS, ESIC, चिरंजीवी योजना की कैशलेस सुविधा, यहां 24 घंटे की इमरजेंसी सेवा और एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें OCF2 ऑपोजिट मॉडर्न पब्लिक स्कूल, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट 7230011191 और 9785013999।
1: टाटा की गाड़ी तो ले ली है, अब भिवाड़ी में सर्विस सेंटर ढूंढते रहो।
2: अरे ढूंढना क्यों है, टाटा ऑथराइज्ड AK ऑटोमोबाइल है ना, जो संजय मोटर्स की ही यूनिट है। 2017 से भिवाड़ी का भरोसा है, टाटा के सर्टिफाइड मैकेनिक्स हैं और वहाँ सर्विसिंग बहुत ही शॉर्ट टाइम में हो जाती है।
1: अच्छा, और उसमें क्या खर्चे ही खर्चे?
2: अरे नहीं नहीं, AK ऑटोमोबाइल्स पर कार सर्विसिंग, बॉडी शॉप और व्हील अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग के अलावा कैशलेस इंश्योरेंस और रिन्यूअल, AMC, ऑन रोड मेंटेनेंस और एक्सीडेंट वारंटी जैसी सारी फैसिलिटीज हैं, जो खर्चे बहुत ही कम कर देती हैं। मेन रोड पर फूलबाग थाने के पास ही है ये।
1: अरे वाह, तो वेट क्यों करना, 9462369786 पे कॉल करके अभी AK ऑटोमोबाइल पे सर्विस बुक करो जल्दी।
3: सोनम ये लो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट।
4: अरे इसमें क्या है?
3: वही जो तुम्हें बहुत टाइम से चाहिए था।
4: ये ब्रेसलेट तो मुझे बहुत टाइम से चाहिए था।
3: क्या आप इसे दिल्ली से लाए हो?
4: लेकिन आप दिल्ली कब गए?
3: अरे वो है ना भिवाड़ी में अपने शांति ज्वेलर्स, इनके पास है सोने चांदी हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन और यहां मिलती है हॉलमार्क ज्वेलरी।
4: इनका एड्रेस क्या है?
3: इनका एड्रेस है शॉप नंबर 5 गणपति मॉल भिवाड़ी। और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9812210987 पर।
5: एक बेहतर कल के लिए, बेहतर मजबूती के लिए, बेहतर बचत के लिए यूज करें SBF रैपिड 550D TMT। मजबूत निर्माण सदा के लिए।
6: मुझे अपने बच्चों के लिए चाहिए एक ऐसा स्कूल जो ICSE से अफिलेटेड हो।
7: भिवाड़ी में है एकमात्र ऐसा स्कूल SPS ग्लोबल स्कूल, जिसके बच्चों ने ICSE 10th की बोर्ड परीक्षाओं में 100% रिजल्ट के साथ साथ राज्य स्तर पर कराटे, स्केटिंग आदि प्रतियोगिताओं में भी अपने स्कूल का नाम रोशन किया है। यहां शिक्षा से बच्चों का बौद्धिक विकास और खेलकूद से शारीरिक विकास, डिसिप्लिन और समय समय पर सामाजिक व सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं होती रहती हैं, जो बच्चों के सर्वांगीण विकास में मदद करता है। यहां है बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, खेल का मैदान, AC क्लासरूम, डिजिटल क्लास रूम, आधुनिक सुविधाओं से लैस लैब, बेस्ट टीचर की फैसिलिटी।
6: SPS ग्लोबल स्कूल नियर कैपिटल मॉल भिवाड़ी। आज ही विजिट करें या कॉल करें 9950888330।
8: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: GF04, Capital Arcadia, Alwar Bypass in front of Vedanta Farm, Bhiwadi, Rajasthan.
1: मोहाली और गुड़गांव का डेंटल अनुभव अब भिवाड़ी में आइए वी केयर डेंटल क्लिनिक इम्प्लांट सेंटर, जहां RCT, कैपिंग और डेंटल इम्प्लांट के एक्सपर्ट ट्रीटमेंट के साथ आपको मिलता है डॉक्टर रुकु सिंगला के 16 वर्षों के अनुभव और विशेषज्ञता का भरोसा। आर्मी और कॉर्पोरेट कर्मचारियों के लिए स्पेशल डिस्काउंट। पता: अपोजिट मैकडोनल्ड्स, JMK पेट क्लिनिक के पास, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉल करें 7814399374। वी केयर डेंटल, आपकी मुस्कान हमारा भरोसा।
0: क्या आपकी आंखों की रोशनी से जुड़ी कोई परेशानी है? क्या आप चश्मे से छुटकारा पाना चाहते हैं?
2: तो आइए आधुनिक सुविधाओं से युक्त मिश्री देवी आई हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी आई सेंटर।
0: पिछले 15 वर्षों से नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में भरोसेमंद सेवाएं, अब बाहर रोड, नियम राणा और टपुकड़ा भिवाड़ी में।
2: यहाँ उपलब्ध है मोतियाबिंद, फेको, मल्टीफोकल एवं प्रीमियम लेंस, लेसिक लेजर, कॉर्निया, ग्लूकोमा और रेटिना उपचार एवं सर्जरी की आधुनिक सुविधाएं।
0: और अब दोनों आँखों का लेसिक लेजर उपचार आधुनिक तकनीक के साथ आपकी पहुंच में और उचित दरों पर।
2: बेहतर नेत्र उपचार, उचित खर्च और भरोसेमंद देखभाल के साथ चश्मे से आजादी की ओर बढ़ाइए अपना कदम। मिश्री देवी आई हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी आई सेंटर। संपर्क नंबर
0: 9783220043 या 01493294200। अब आपके शहर भिवाड़ी में साइकियाट्री एवं ऑर्थोपेडिक्स की नियमित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है ओजस हॉस्पिटल में।
2: मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितिका अग्रवाल द्वारा डिप्रेशन, नींद की समस्या, बेचैनी, घबराहट, मानसिक तनाव, स्किजोफ्रेनिया और OCD जैसी समस्याओं का उचित उपचार किया जाता है एवं काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध है।
0: वहीं हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेंद्र अग्रवाल द्वारा चोट, ट्रॉमा, फ्रैक्चर, घुटने एवं कमर का दर्द, लिगामेंट की चोट, गठिया और आर्थराइटिस जैसी हड्डी एवं जोड़ संबंधी समस्याओं का उपचार किया जाता है।
2: साथ ही सर्जरी, फिजियोथेरेपी और पेन मैनेजमेंट की सुविधा भी उपलब्ध है।
0: तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या को नजरअंदाज न करें, पहुंचिए ओजस हॉस्पिटल।
2: पता: नगीना गार्डन के पास, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी।
0: फोन करें 9521333591। ओजस हॉस्पिटल, बेहतर स्वास्थ्य की ओर एक कदम। अब आपके शहर धारूहेड़ा में ही मिल रही है आधुनिक और बेहतरीन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सुविधाएं। लोटस हॉस्पिटल, बेस्ट टैक्स सिटी, BPL फ्लैट के सामने धारूहेड़ा में डॉक्टर अन्विका बंसल, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, 15 वर्ष से अधिक अनुभव के साथ, जो पहले से ही भिवाड़ी में अपनी सेवाएं दे रही थी, अब अपने नए लोटस हॉस्पिटल में OPD और इमरजेंसी सर्विस के लिए उपलब्ध हैं। इसके साथ ही यहां उपलब्ध है अनुभवी हड्डी रोग विशेषज्ञ। यहां घुटना बदलना, कुल्हा बदलना और रीढ़ से जुड़ी सभी बीमारी का इलाज होता है और एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट और लैप्रोस्कोपिक जनरल सर्जन, जहां लेजर टेक्निक से बवासीर, भगंदर का इलाज लोटस हॉस्पिटल में मिलता है, तथा 24 घंटे आपातकालीन सुविधा, एडवांस्ड एक्सरे, लैबोरेटरी, फार्मेसी, अल्ट्रासाउंड सर्विस, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, AC प्राइवेट रूम की सुविधाएं उपलब्ध हैं। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आज ही विजिट करें लोटस हॉस्पिटल, बेस्ट टैक्स सिटी, BPL फ्लैट के सामने धारूहेड़ा। संपर्क करें 01274415033।
3: भिवाड़ी का पहला ISO और NABH सर्टिफाइड श्री कृष्णा हॉस्पिटल, जिसमें मल्टी स्पेशलिस्ट OPD, 10 बेड का ICU, सबसे बड़ा मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 50 बेड का इंडोर, 24 आवर्स एम्बुलेंस, फार्मेसी और इमरजेंसी सेवाएं, तथा लैब, डिजिटल एक्सरे जैसी सुविधाओं से लैस श्री कृष्णा हॉस्पिटल अधिकांश मल्टीनेशनल कंपनियों के मेडिकल कंसल्टेंसी एवं कैशलेस उपचार का एकमात्र सेंटर। श्री कृष्णा हॉस्पिटल, B14849, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी, 8529113916734001391। इस हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट और फिजिशियन की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
4: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव, कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल, B160, भगत सिंह कॉलोनी, सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
5: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
4: कान ना गले एवं महिलाओं

0: संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
1: आपके हर खास समारोह को शानदार और यादगार बनाने के लिए आइए भाटोटिया टेंट हाउस एंड इवेंट ऑर्गेनाइजर।
2: सभी प्रकार के टेंट आइटम, शानदार डेकोरेशन और इंडोर आउटडोर कैटरिंग की बेहतरीन सुविधा, शादी, सगाई, जन्मदिन या किसी भी समारोह के लिए एक ही जगह पर पूरी व्यवस्था।
1: संपर्क करें हंसराज भाटोटिया, मोबाइल नंबर 9416347214।
2: और आपके खास समारोह के लिए शानदार राजविलास मैरिज एवं बैंक्वेट हॉल, शिवनगर पार्ट 2, पांचाल कॉलोनी, सीथल रोड, धारूहेड़ा, जिला रेवाड़ी, हरियाणा।
1: भाटोटिया टेंट हाउस और राजविलास मैरिज बैंक्वेट हॉल, आपके समारोह की पूरी तैयारी एक ही जगह।
3: अब भिलवाड़ी के शिवोहम हॉस्पिटल में पाएं एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं। यहां 25 बेड से लेस इंडोर, 6 बेड से लेस आईसीयू, 2 बड़े ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजी लैब तथा अत्याधुनिक एक्सरे मशीनों के द्वारा एक्सरे सुविधा, तकनीकी मशीनों द्वारा जांच, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, एम्बुलेंस, सभी कैशलेस टीपीए सुविधाओं के साथ 14 साल से कम आयु की बच्चियों के लिए निशुल्क परामर्श, गायनेकोलॉजी, इनफर्टिलिटी, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नम्रता मेहता चतुर्वेदी व हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हेमंत चतुर्वेदी जैसे अनुभवी डॉक्टर से परामर्श सुविधा, जो कि पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में निरंतर अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। शिवोहम हॉस्पिटल, B4 भगत सिंह कॉलोनी, पुराने RTO ऑफिस के पास, भिवाड़ी। संपर्क 9799996778।
4: भिवाड़ी का पहला ISO और NABH सर्टिफाइड श्री कृष्णा हॉस्पिटल, जिसमें मल्टी स्पेशलिस्ट OPD, 10 बेड का ICU, सबसे बड़ा मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 50 बेड का इंडोर, 24 आवर्स एम्बुलेंस, फार्मेसी और इमरजेंसी सेवाएं तथा लैब, डिजिटल एक्सरे जैसी सुविधाओं से लैस श्री कृष्णा हॉस्पिटल अधिकांश मल्टीनेशनल कंपनियों के मेडिकल कंसल्टेंसी एवं कैशलेस उपचार का एकमात्र सेंटर। श्री कृष्णा हॉस्पिटल, B14849 भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी, 8529113916, 7340013916। इस हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट और फिजिशियन की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं।
1: क्या आपकी त्वचा, बाल या नाखून की समस्या बार बार परेशान कर रही है?
5: अब सही इलाज के लिए मिलिए डॉक्टर गौरव, एम्स से प्रशिक्षित त्वचा रोग विशेषज्ञ, SS हॉस्पिटल, भिवाड़ी में।
1: मुंहासे, पिगमेंटेशन, एलर्जी, हेयर फॉल से लेकर लेजर, केमिकल पील और बोटॉक्स जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध।
5: ECHS RGHS तथा NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल में सभी प्रमुख TPA मान्य।
1: SS हॉस्पिटल, भिवाड़ी, भरोसेमंद विशेषज्ञ से देखभाल। समय रोजाना शाम 4:30 से 6:30 तक, गुरुवार अवकाश।
6: पूजा, तुम्हारे फेस पर कितने पिंपल्स और धब्बे हो रहे हैं?
7: हाँ यार, और बाल भी हर दिन झड़ रहे हैं। कई बार दिल्ली गुरुग्राम में भी दिखा चुकी हूँ।
6: अरे पूजा, अब दिल्ली या गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपनी भिवाड़ी में है डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, जहाँ पर स्किन, हेयर एंड नेल्स की सभी बीमारियों का पूर्ण इलाज डॉक्टर सुचेता MD डर्मेटोलॉजी द्वारा किया जाता है, जो भिवाड़ी में अपनी सेवाएं दे रही है। इनके यहाँ लेजर हेयर रिमूवल, माइक्रो नीडलिंग, PRP, RF, अन्य सभी स्किन समस्याओं का समाधान विदेशी मशीनों व नई तकनीकों द्वारा किया जाता है। कॉल करें 6367551007। विजिट डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, A56 फर्स्ट फ्लोर, भगत सिंह कॉलोनी, बिहाइंड सुखम टावर, भिवाड़ी।
8: आपके सारे जरूरतों का बीमा एक ही जगह, विधि एंटरप्राइजेज भिवाड़ी। स्वास्थ्य बीमा, वाहन बीमा, जीवन बीमा, फायर बीमा, सब मिलेगा यहाँ। और हाँ, बीमा कराने पर खास ऑफर भी मिलेंगे। संपर्क करें चंद्रभान, विधि एंटरप्राइजेस, रिको चौक, भिवाड़ी, 9887066308।
9: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
10: ना किसी से कोई मतलब, ना किसी से कुछ लेना, ए अम्मा ने न मिलियन पर ज्यादा भी उछलेना, ना किसी से कोई मतलब, ना

കൂട്ടം മെസ്സുവാകെ. ഒരു കൂട്ടം മെസ്സുവാകെ.

0: अपनो देश आपनो रंग सब मिले आपनो बाजार के संग। जी हाँ, आपनो बाजार आपका कंप्लीट फैमिली स्टोर जहाँ उत्तम क्वालिटी और वाजिब दामों के साथ आपको मिलता है किराना, ग्रोसरी आइटम, कॉस्मेटिक, हाउसकीपिंग, हाउसहोल्ड आइटम, गिफ्ट आइटम, क्रॉकरी, टॉयज एंड गेम्स। इन सभी आइटम के MRP दामों पर खास छूट। इतना ही नहीं, फ्री होम डिलीवरी की सुविधा भी है। इनके स्टोर अलवर बाईपास, थड़ा रोड, भिवाड़ी, कृष्ण मॉल, टपुकड़ा आशियाना विलेज सेंटर। संपर्क करें 9680870184 या फिर 7822091287।
1: अरे, प्लांट का तो सारा काम हो गया, अब LED लाइट कहाँ से खरीदें?
2: सर, क्या आपको नहीं पता है नेप LED लाइटिंग कंपनी इंडस्ट्रियल लाइटिंग जैसे फ्लड लाइट, हाईवे लाइट, स्ट्रीट लाइट आदि के साथ साथ सभी प्रकार की LED लाइट बनाती है, वो भी 2 साल की वारंटी के साथ। और इतना ही नहीं, वो इंडस्ट्रियल लाइटिंग कंसल्टेंट सर्विस भी फ्री देते हैं।
1: अरे वाह, इनसे संपर्क कैसे करें?
2: सर, इनका सेल्स ऑफिस एड्रेस JFF 22 कैपिटल हाई स्ट्रीट, फूलबाग चौक, भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए नेप LED लाइटिंग कंपनी से संपर्क करें 7988627064।
3: आपके हर खास समारोह को शानदार और यादगार बनाने के लिए आइए भाटोटिया टेंट हाउस एंड इवेंट ऑर्गेनाइजर।
4: सभी प्रकार के टेंट आइटम, शानदार डेकोरेशन और इंडोर आउटडोर कैटरिंग की बेहतरीन सुविधा, शादी, सगाई, जन्मदिन या किसी भी समारोह के लिए एक ही जगह पर पूरी व्यवस्था।
3: संपर्क करें हंसराज भाटोटिया, मोबाइल नंबर 9416347214।
4: और आपके खास समारोह के लिए शानदार राज विलास मैरिज एवं बैंक्वेट हॉल, शिवनगर पार्ट 2, पांचाल कॉलोनी, सीथल रोड, धारूहेड़ा, जिला रेवाड़ी, हरियाणा।
3: भाटोटिया टेंट हाउस और राज विलास मैरिज बैंक्वेट हॉल, आपके समारोह की पूरी तैयारी एक ही जगह। जब बात आपकी मुस्कान की हो तो समझौता क्यों, अब स्पेशलिस्ट डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं। आइए डेंटल एक्सपर्ट्स भिवाड़ी, भिवाड़ी का इकलौता डेंटल क्लिनिक जहां पूरी टीम MDS स्पेशलिस्ट्स की है और जिन्हें 15 साल से अधिक का अनुभव है। डॉक्टर विनोद यादव MDS ऑर्थोडोंटिस्ट, भिवाड़ी के एकमात्र ब्रेसेस स्पेशलिस्ट एंड इनविसलाइन प्रोवाइडर। इसके अलावा डेंटल इम्प्लांट्स और जटिल दांतों की समस्याओं का आधुनिक उपचार प्रदान करते हैं। साथ ही डॉक्टर ऋतु यादव MDS एंडोडोंटिस्ट, रूट कैनाल, स्माइल डिजाइनिंग और फुल माउथ रिहैबिलिटेशन की विशेषज्ञ। डेंटल एक्सपर्ट्स, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट आशियाना आंगन, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 8824232823। डेंटल एक्सपर्ट्स, आपकी मुस्कान हमारी विशेषज्ञता।
4: भिवाड़ी वासियों, अब हर जरूरत की सर्विस सिर्फ एक ऐप पर। मैसन केयर लेकर आया है आपके लिए भरोसेमंद होम और प्रोफेशनल सर्विसेज।
3: बाथरूम डीप क्लीनिंग, किचन डीप क्लीनिंग, पूरे घर की सफाई, ऑफिस क्लीनिंग, जिम क्लीनिंग, कार क्लीनिंग, पानी की टंकी की सफाई, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ड्राइवर सर्विस, कैब बुकिंग और बहुत सारी अन्य सेवाएं, अब सब कुछ एक ही ऐप पर।
4: अभी मेस एन केयर ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे अपनी पसंद की सर्विस बुक करें।
3: मेस एन केयर, आपका घर हमारी जिम्मेदारी। बुकिंग के लिए अभी कॉल या व्हाट्सएप करें 8824106060।
5: फ्यूचर लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहें। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
6: गणेश स्टेशनर्स, बेटर देन द बेस्ट,
5: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा A to Z सामान। इसी के साथ यहां प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
6: गणेश स्टेशनर्स, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड नियर हरी राम हॉस्पिटल, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।
7: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: औद्योगिक क्षेत्र सारे खुद करौली बंदापुर खुशखेड़ा व चौपान की में 16 औद्योगिक व 2 वेयर हाउस भूखंडों को ई नीलामी के माध्यम से बेचैन किया जा रहा है। इन भूखंडों के लिए अमानत राशि दिनांक 9/10/2026 समय 6 बजे तक जमा कराकर बिड लगा सकते हैं। बिड लगाने की अंतिम तिथि 14/10/2026 समय 5 बजे तक है। इसके साथ ही औद्योगिक क्षेत्र सलारपुर व पथरेड़ी में 43 भूखंडों को प्रत्यक्ष आवंटन योजना के माध्यम से बेचैन किया जा रहा है। इन भूखंडों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 12/10/2026 समय 6 बजे तक है। अंतिम जानकारी के लिए रिको की वेबसाइट www.riico.co.in यानी www.rico.co.in पर एवं रिको इकाई कार्यालय भिवाड़ी द्वितीय रिको रेस्ट हाउस रोड भिवाड़ी में संपर्क कर सकते हैं।
1: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।

0: मैं जयपुर जा रहा हूँ।
1: अच्छा, तो आते हुए जयपुर के मशहूर दूध लड्डू और प्याज कचौरी लेते आना।
0: अरे, दूध लड्डू और प्याज कचौरी के लिए जयपुर जाने का इंतजार क्यों करना, क्योंकि अब आपके शहर भिवाड़ी में अलवर बाईपास पर खुल चुका है कान्हा स्वीट्स।
1: जी हाँ, कान्हा स्वीट्स पर मिलते हैं स्वादिष्ट दूध लड्डू, प्याज कचौरी, समोसे किसी कलाकंद, रसमलाई, कुल्हड़ रबड़ी और सभी प्रकार की मिठाइयाँ।
0: बिल्कुल, हर मिठाई में स्वाद ऐसा कि एक बार खाएं तो दिल कहे एक और।
1: तो फिर आज मिठास हो जाए कान्हा स्वीट्स के साथ।
0: हाँ, परिवार हो या मेहमान, त्योहार हो या कोई खास खुशी, हर मौके की मिठास कान्हा स्वीट्स के साथ। पता नोट कर लीजिए,
1: शॉप नंबर AG F04, कैपिटल आर्केडिया, अलवर बाईपास इन फ्रंट ऑफ वेदांता फार्म, भिवाड़ी, राजस्थान।
2: मोहाली और गुड़गांव का डेंटल अनुभव अब भिवाड़ी में। आइए वी केयर डेंटल क्लिनिक इम्प्लांट सेंटर, जहां RCT, कैपिंग और डेंटल इम्प्लांट के एक्सपर्ट ट्रीटमेंट के साथ आपको मिलता है डॉक्टर रुकु सिंगला के 16 वर्षों के अनुभव और विशेषज्ञता का भरोसा। आर्मी और कॉर्पोरेट कर्मचारियों के लिए स्पेशल डिस्काउंट। पता, अपोजिट मैकडोनल्ड्स, JMK पेट क्लिनिक के पास, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉल करें 7814399374। वी केयर डेंटल, आपकी मुस्कान हमारा भरोसा।
1: क्या आपकी आँखों की रोशनी से जुड़ी कोई परेशानी है? क्या आप चश्मे से छुटकारा पाना चाहते हैं?
0: तो आइए आधुनिक सुविधाओं से युक्त मिश्री देवी आई हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी आई सेंटर।
1: पिछले 15 वर्षों से नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में भरोसेमंद सेवाएं, अब बहर रोड, नियम राणा और टपुकड़ा भिवाड़ी में।
0: यहाँ उपलब्ध है मोतियाबिंद, फेको, मल्टीफोकल एवं प्रीमियम लेंस, लेसिक लेजर, कॉर्निया, ग्लूकोमा और रेटिना उपचार एवं सर्जरी की आधुनिक सुविधाएं।
1: और अब दोनों आँखों का लेसिक लेजर उपचार आधुनिक तकनीक के साथ आपकी पहुँच में और उचित दरों पर।
0: बेहतर नेत्र उपचार, उचित खर्च और भरोसेमंद देखभाल के साथ चश्मे से आजादी की ओर बढ़ाइए अपना कदम। मिश्री देवी आई हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी आई सेंटर। संपर्क नंबर
1: 9783220043 या 01493294200। अब आपके शहर भिवाड़ी में साइकियाट्री एवं ऑर्थोपेडिक्स की नियमित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है ओजस हॉस्पिटल में।
0: मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितिका अग्रवाल द्वारा डिप्रेशन, नींद की समस्या, बेचैनी, घबराहट, मानसिक तनाव, स्किजोफ्रेनिया और OCD जैसी समस्याओं का उचित उपचार किया जाता है एवं काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध है।
1: वहीं हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेंद्र अग्रवाल द्वारा चोट, ट्रॉमा, फ्रैक्चर, घुटने एवं कमर का दर्द, लिगामेंट की चोट, गठिया और आर्थराइटिस जैसी हड्डी एवं जोड़ संबंधी समस्याओं का उपचार किया जाता है।
0: साथ ही सर्जरी, फिजियोथेरेपी और पेन मैनेजमेंट की सुविधा भी उपलब्ध है।
1: तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या को नजरअंदाज न करें, पहुंचिए ओजस हॉस्पिटल।
0: पता, नगीना गार्डन के पास, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी।
1: फोन करें 9521333591। ओजस हॉस्पिटल, बेहतर स्वास्थ्य की ओर एक कदम। अब आपके शहर धारूहेड़ा में ही मिल रही है आधुनिक और बेहतरीन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सुविधाएं। लोटस हॉस्पिटल, बेस्ट टैक्स सिटी, BPL फ्लैट के सामने धारूहेड़ा में, डॉक्टर अन्विका बंसल, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, 15 वर्ष से अधिक अनुभव के साथ, जो पहले से ही भिवाड़ी में अपनी सेवाएं दे रही थी, अब अपने नए लोटस हॉस्पिटल में OPD और इमरजेंसी सर्विस के लिए उपलब्ध हैं। इसके साथ ही यहां उपलब्ध है अनुभवी हड्डी रोग विशेषज्ञ। यहां घुटना बदलना, कुल्हा बदलना और रीढ़ से जुड़ी सभी बीमारी का इलाज होता है, और एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट और लैप्रोस्कोपिक जनरल सर्जन, जहां लेजर टेक्निक से बवासीर, भगंदर का इलाज लोटस हॉस्पिटल में मिलता है, तथा 24 घंटे आपातकालीन सुविधा, एडवांस्ड एक्सरे, लैबोरेटरी, फार्मेसी, अल्ट्रासाउंड सर्विस, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, AC प्राइवेट रूम की सुविधाएं उपलब्ध हैं। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आज ही विजिट करें लोटस हॉस्पिटल, बेस्ट सिटी, BPL फ्लैट के सामने, धारूहेड़ा। संपर्क करें 01274415033।
3: भिवाड़ी का पहला ISO और NABH सर्टिफाइड श्री कृष्णा हॉस्पिटल, जिसमें मल्टी स्पेशलिस्ट OPD, 10 बेड का ICU, सबसे बड़ा मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 50 बेड का इंडोर, 24 आवर्स एम्बुलेंस, फार्मेसी और इमरजेंसी सेवाएं, तथा लैब, डिजिटल एक्सरे जैसी सुविधाओं से लैस श्री कृष्ण कृष्णा हॉस्पिटल अधिकांश मल्टीनेशनल कंपनियों के मेडिकल कंसल्टेंसी एवं कैशलेस उपचार का एकमात्र सेंटर। श्री कृष्णा हॉस्पिटल B14849 भगत सिंह कॉलोनी भिवाड़ी 8529113916 7340013916। इस हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट और फिजिशियन की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
4: विजय हॉस्पिटल डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
5: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
4: कान नाक गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
6: आपके हर खास समारोह को शानदार और यादगार बनाने के लिए आइए भाटोटिया टेंट हाउस एंड इवेंट ऑर्गेनाइजर।
7: सभी प्रकार के टेंट आइटम, शानदार डेकोरेशन और इंडोर आउटडोर कैटरिंग की बेहतरीन सुविधा, शादी, सगाई, जन्मदिन या किसी भी समारोह के लिए एक ही जगह पर पूरी व्यवस्था।
6: संपर्क करें हंस राज भाटोटिया, मोबाइल नंबर 9416347214।
7: और आपके खास समारोह के लिए शानदार राजविलास मैरिज एवं बैंक्वेट हॉल, शिवनगर पार्ट 2, पांचाल कॉलोनी, सीथल रोड, धारूहेड़ा, जिला रेवाड़ी, हरियाणा।
6: बाटोटिया टेंट हाउस और राजविलास मैरिज बैंक्वेट हॉल, आपके समारोह की पूरी तैयारी एक ही जगह। भिवाड़ी का भरोसा वर्षों से आपकी सेवा में। सिटी नर्सिंग होम सदर मार्केट भिवाड़ी, औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी का पहला नर्सिंग होम NABH द्वारा प्रमाणित।
7: यहां उपलब्ध हैं 2 आधुनिक ICU, अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, दूरबीन सर्जरी की सुविधा तथा अधिकांश मेडिक्लेम कंपनियों की कैशलेस सुविधा। डायबिटीज के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर कौशल, मनोरोग परामर्श हेतु डॉक्टर कनिष्का तथा मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर रूप सिंह की सेवाएं उपलब्ध। अनुभवी डॉक्टर, आधुनिक सुविधाएं और मरीजों की समर्पित देखभाल।
6: सिटी नर्सिंग होम सदर मार्केट भिवाड़ी, स्वास्थ्य का भरोसा आपके अपने शहर में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सिटी नर्सिंग होम भिवाड़ी।
8: अरे कहाँ जा रही हो?
9: मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए अंशुल ज्वेलर्स।
8: अच्छा, पर अंशुल ज्वेलर्स से क्यों?
9: अंशुल ज्वेलर्स के पास है सोने, चांदी और हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन, वो भी BIS के 6 अंकों वाले हॉलमार्क HUID के साथ। और तो और, इनकी ज्वेलरी को हम भारत सरकार द्वारा चलाए गए BIS केयर ऐप के वेरीफाई HUID फीचर से आभूषणों की शुद्धता का प्रमाण देख सकते हैं।
8: जी हाँ, खरे आभूषणों की प्रामाणिकता जिसके साथ बढ़ेगी आपकी सुंदरता। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर। हमारा पता शॉप नंबर 7, गणपति मॉल, समतल मोड़, भिवाड़ी, राजस्थान, या मेन बाजार नजदीक हनुमान मंदिर, टावड़ू, हरियाणा। संपर्क करें 9992533611 या फिर 9354898521 पर। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर।
10: कभी भी इमरजेंसी हो या सिर्फ एक छोटी सी चेकअप की जरूरत हो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेड़ा और भिवाड़ी में आपका अपना हॉस्पिटल है। 24 घंटे इमरजेंसी, AC प्राइवेट रूम्स, वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर, डिजिटल एक्सरे, क्लिनिकल लैब, TMT, ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी, फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी, स्किन प्रिक एंड ब्लड एलर्जी टेस्ट, एलर्जी का जड़ से इलाज। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं मेडिसिन, सर्जरी, ENT, हेड एंड नेक सर्जरी, ऑब्स एंड गाइनी, ऑर्थोपेडिक्स, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कैशलेस फैसिलिटी, सभी TPA के साथ। तो अब टेंशन मत लो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेड़ा, प्लॉट नंबर 5, सेक्टर 6 और भिवाड़ी B83, भगत सिंह कॉलोनी। बस एक कॉल या एक विजिट, नो है 8607274999।
11: भारत अल्ट्रासाउंड एवं डायग्नोस्टिक सेंटर पर अत्याधुनिक MRI, 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 5D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर डिजिटल एक्सरे डीआर टीएमटी ईईजी व फुल्ली कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब प्रतिदिन उपलब्ध है।
12: भारत डायग्नोस्टिक्स द्वारा गत 20 वर्षों से एमडी रेडियोलॉजिस्ट पीजीआई चंडीगढ़ में प्रशिक्षित अनुभवी डॉक्टर्स द्वारा सभी जांचें की जा रही हैं।
11: भारत डायग्नोस्टिक्स पर 5D अल्ट्रासाउंड मशीन द्वारा लेवल 1 एंड 2 फीटल अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इको कार्डियोग्राफी, लिवर फाइब्रोस्कैन व 3D सीटी स्कैन मशीन पर एंजियोग्राफी, यूरोग्राफी व एंटेरोग्राफी की जांच भी की जाती है। 1/57/58 राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, सेंट्रल मार्केट के पास, भिवाड़ी। कॉल 9351004500।
13: दूसरी ब्रांच A50 भगत सिंह कॉलोनी भिवाड़ी, कॉल 8058304500।
14: श्रीराम इंडस्ट्रीज आर्मर जैन, भारत में मेक इन इंडिया पहल के तहत विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाले उत्पादों के निर्माण में एक भरोसेमंद नाम। यहाँ बनते हैं फायर रेटेड और नॉन फायर रेटेड डोर्स, मोटराइज्ड और मैनुअल गेट्स, जनरल पर्पस डोर्स, एक्सेस डोर्स, डॉक लेवलर, फायर हॉज कैबिनेट्स और आपकी जरूरत के मुताबिक कस्टमाइज्ड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस। BIS, CBRI और NABL सर्टिफाइड वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स उचित कीमत पर। आर्मर जैन आपको देता है वादा गुणवत्ता, सुरक्षा और विश्वास का। संपर्क करें 7014735108। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.armorzain.co .in। आर्मर जैन, जब बात हो गुणवत्ता और भरोसे की।
15: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 44, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: मैं जयपुर जा रहा हूँ।
1: अच्छा, तो आते हुए जयपुर के मशहूर दूध लड्डू और प्याज कचौरी लेते आना।
0: अरे, दूध लड्डू और प्याज कचौरी के लिए जयपुर जाने का इंतजार क्यों करना, क्योंकि अब आपके शहर भिवाड़ी में अलवर बाईपास पर खुल चुका है कान्हा स्वीट्स।
1: जी हाँ, कान्हा स्वीट्स पर मिलते हैं स्वादिष्ट दूध लड्डू, प्याज कचौरी, समोसे, किसी कलाकंद, रसमलाई, कुल्हड़, रबड़ी और सभी प्रकार की मिठाइयाँ।
0: बिल्कुल, हर मिठाई में स्वाद ऐसा कि एक बार खाएं तो दिल कहे एक और।
1: तो फिर आज मिठास हो जाए कान्हा स्वीट्स के साथ।
0: हाँ, परिवार हो या मेहमान, त्योहार हो या कोई खास खुशी, हर मौके की मिठास कान्हा स्वीट्स के साथ। पता नोट कर लीजिए,
1: शॉप नंबर AG F04, कैपिटल आर्केडिया, अलवर बाईपास इन फ्रंट ऑफ वेदांता फार्म, भिवाड़ी, राजस्थान।
2: मोहाली और गुड़गांव का डेंटल अनुभव अब भिवाड़ी में। आइए वी केयर डेंटल क्लिनिक इम्प्लांट सेंटर, जहां RCT, कैपिंग और डेंटल इम्प्लांट के एक्सपर्ट ट्रीटमेंट के साथ आपको मिलता है डॉक्टर रुकु सिंगला के 16 वर्षों के अनुभव और विशेषज्ञता का भरोसा। आर्मी और कॉर्पोरेट कर्मचारियों के लिए स्पेशल डिस्काउंट। पता, अपोजिट मैकडोनल्ड्स, JMK पेट क्लिनिक के पास, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉल करें 7814399374। वी केयर डेंटल, आपकी मुस्कान हमारा भरोसा।
1: क्या आपकी आँखों की रोशनी से जुड़ी कोई परेशानी है? क्या आप चश्मे से छुटकारा पाना चाहते हैं?
0: तो आइए आधुनिक सुविधाओं से युक्त मिश्री देवी आई हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी आई सेंटर।
1: पिछले 15 वर्षों से नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में भरोसेमंद सेवाएं, अब बहर रोड, नियम राणा और टपुकड़ा भिवाड़ी में।
0: यहाँ उपलब्ध है मोतियाबिंद, फेको, मल्टीफोकल एवं प्रीमियम लेंस, लेसिक लेजर, कॉर्निया, ग्लूकोमा और रेटिना उपचार एवं सर्जरी की आधुनिक सुविधाएं।
1: और अब दोनों आँखों का लेसिक लेजर उपचार आधुनिक तकनीक के साथ आपकी पहुंच में और उचित दरों पर।
0: बेहतर नेत्र उपचार, उचित खर्च और भरोसेमंद देखभाल के साथ चश्मे से आजादी की ओर बढ़ाइए अपना कदम। मिश्री देवी आई हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी आई सेंटर। संपर्क नंबर
1: 9783220043 या 01493294200। अब आपके शहर भिवाड़ी में साइकियाट्री एवं ऑर्थोपेडिक्स की नियमित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है ओजस हॉस्पिटल में।
0: मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितिका अग्रवाल द्वारा डिप्रेशन, नींद की समस्या, बेचैनी, घबराहट, मानसिक तनाव, स्किजोफ्रेनिया और OCD जैसी समस्याओं का उचित उपचार किया जाता है एवं काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध है।
1: वहीं हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेंद्र अग्रवाल द्वारा चोट, ट्रॉमा, फ्रैक्चर, घुटने एवं कमर का दर्द, लिगामेंट की चोट, गठिया और आर्थराइटिस जैसी हड्डी एवं जोड़ संबंधी समस्याओं का उपचार किया जाता है।
0: साथ ही सर्जरी, फिजियोथेरेपी और पेन मैनेजमेंट की सुविधा भी उपलब्ध है।
1: तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या को नजरअंदाज न करें, पहुंचिए ओजस हॉस्पिटल।
0: पता, नगीना गार्डन के पास, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी।
1: फोन करें 9521333591। ओजस हॉस्पिटल, बेहतर स्वास्थ्य की ओर एक कदम। अब आपके शहर धारूहेड़ा में ही मिल रही है आधुनिक और बेहतरीन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सुविधाएं। लोटस हॉस्पिटल, बेस्ट टैक सिटी, BPL फ्लैट के सामने धारूहेड़ा में डॉक्टर अन्विका बंसल, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, 15 वर्ष से अधिक अनुभव के साथ, जो पहले से ही भिवाड़ी में अपनी सेवाएं दे रही थी, अब अपने नए लोटस हॉस्पिटल में OPD और इमरजेंसी सर्विस के लिए उपलब्ध हैं। इसके साथ ही यहां उपलब्ध है अनुभवी हड्डी रोग विशेषज्ञ। यहां घुटना बदलना, कुल्हा बदलना और रीढ़ से जुड़ी सभी बीमारी का इलाज होता है, और एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट और लैप्रोस्कोपिक जनरल सर्जन, जहां लेजर टेक्निक से बवासीर, भगंदर का इलाज लोटस हॉस्पिटल में मिलता है, तथा 24 घंटे आपातकालीन सुविधा, एडवांस्ड एक्सरे, लैबोरेटरी, फार्मेसी, अल्ट्रासाउंड सर्विस, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, AC प्राइवेट रूम की सुविधाएं उपलब्ध हैं। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आज ही विजिट करें लोटस हॉस्पिटल, बेस्ट टैक सिटी, BPL फ्लैट के सामने धारूहेड़ा। संपर्क करें 01274415033।
3: भिवाड़ी का पहला ISO और NABH सर्टिफाइड श्री कृष्णा हॉस्पिटल, जिसमें मल्टी स्पेशलिस्ट OPD, 10 बेड का ICU, सबसे बड़ा मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 50 बेड का इंडोर, 24 आवर्स एम्बुलेंस, फार्मेसी और इमरजेंसी सेवाएं, तथा लैब, डिजिटल एक्सरे जैसी सुविधाओं से लैस श्री कृष्णा हॉस्पिटल अधिकांश मल्टीनेशनल कंपनी कंपनियों के मेडिकल कंसल्टेंसी एवं कैशलेस उपचार का एकमात्र सेंटर श्री कृष्णा हॉस्पिटल B14849 भगत सिंह कॉलोनी भिवाड़ी 8529113916 7340013916। इस हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट गायनेकोलॉजिस्ट ENT स्पेशलिस्ट और फिजिशियन की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
4: विजय हॉस्पिटल डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
5: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
4: कान नाक गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
6: आपके हर खास समारोह को शानदार और यादगार बनाने के लिए आइए भाटोटिया टेंट हाउस एंड इवेंट ऑर्गेनाइजर।
7: सभी प्रकार के टेंट आइटम, शानदार डेकोरेशन और इंडोर आउटडोर कैटरिंग की बेहतरीन सुविधा, शादी सगाई जन्मदिन या किसी भी समारोह के लिए एक ही जगह पर पूरी व्यवस्था।
6: संपर्क करें हंसराज भाटोटिया, मोबाइल नंबर 9416347214।
7: और आपके खास समारोह के लिए शानदार राजविलास मैरिज एवं बैंक्वेट हॉल, शिवनगर पार्ट 2, पांचाल कॉलोनी, सीथल रोड, धारूहेड़ा, जिला रेवाड़ी, हरियाणा।
6: भाटोटिया टेंट हाउस और राजविलास मैरिज बैंक्वेट हॉल, आपके समारोह की पूरी तैयारी एक ही जगह।
8: क्या कर रही है?
9: ऑनलाइन बुकिंग देख रही हूँ, जयपुर जाना है।
8: फिर से? अभी तो गई थी।
9: हाँ, फिर से जाना है।
8: तू अपनी गाड़ी क्यों नहीं ले लेती?
9: गाड़ी नॉट इन बजट।
8: अरे गांधी मोटर्स है ना?
9: गांधी मोटर्स?
8: हाँ गांधी मोटर्स। गांधी मोटर्स कार सेल और परचेज के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर हर तरह की गाड़ियाँ बहुत अच्छी कीमत पे मिलती है।
9: तो कब चले?
8: अरे इसमें सोचना कैसा, अभी चलना। गाड़ियों के सेल और परचेज के लिए आज ही संपर्क करें।
10: हमारा पता है शॉप नंबर S16 एवलॉन रॉयल प्लाजा अलवर बाईपास रोड भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9785980000 या फिर 8740000144 पर।
11: भिवाड़ी में 27 वर्षों से सेवारत, भरोसेमंद 24 घंटे इलाज हेतु गोपीनाथ अस्पताल, ISO तथा NABH मान्यता एवं राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मल्टी स्पेशलिटी सेंट्रल AC OPD, 50 बेड की सुविधा से युक्त गोपीनाथ हॉस्पिटल, अत्याधुनिक 3 ऑपरेशन थिएटर, 7 बेड ICU, 2 जीवन रक्षक एम्बुलेंस, डिजिटल एक्सरे, ऑर्थोपेडिक सर्जन, फिजिशियन तथा लेडी डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा से युक्त गोपीनाथ अस्पताल। यहाँ नेफ्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, डायबिटोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट की नियमित OPD भी उपलब्ध है। लगभग सभी TPA कैशलेस सुविधा के साथ तथा भिवाड़ी की व आसपास की औद्योगिक इकाइयों के बीमा कंपनियां भी पैनल पर हैं। पता 226 इंडस्ट्रियल एरिया, सदर बाजार के पीछे, गोपीनाथ रोड, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 01493619563 एंड 9784333863।
12: क्या आप बिजली के बिल से परेशान हैं? क्या आप जानते हैं सोलर एनर्जी से आप बिजली के बिल से आजादी पा सकते हैं? जी हाँ, अपने घर, ऑफिस और फैक्ट्री की छत पर सोलर पैनल लगाएं और भारी बिजली के बिल से मुक्ति पाएं। सोलर एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको 30% तक रिटर्न देता है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9610255584। ग्रीन रूट्स रिन्यूएबल एनर्जी।
6: आपकी आंखें हैं अनमोल, आपकी आंखों को चाहिए बेहतर देखभाल, तो आइए गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स भिवाड़ी।
13: यहाँ मिलते हैं सभी ब्रांडेड कंपनियों के स्टाइलिश फ्रेम और हाई क्वालिटी लेंस। Ray-Ban, Vogue, टॉमी हिलफिगर, ओकेली, प्रदा, जीस, एसिलोर क्रिजाल, विजन आर एक्स और भी कई नेशनल व इंटरनेशनल ब्रांड्स।
6: साथ ही कॉन्टैक्ट लेंस, लो विजन क्लिनिक, मायोपिया क्लिनिक, विजन थेरेपी और आधुनिक मशीनों द्वारा कंप्यूटरीकृत आई एग्जामिनेशन, प्रशिक्षित ऑप्टोमेट्रिस्ट की पूरी टीम।
13: भिवाड़ी में सन 2006 से भरोसे का नाम गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स।
6: गणपति मॉल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास, समतल चौक भिवाड़ी और अशियाना आंगन के सामने, BDI सोसाइटी के पास, अलवर बाईपास रोड भिवाड़ी।
7: अपॉइंटमेंट या जानकारी के लिए अभी कॉल करें 9636061776 या 9928929309।
14: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है, कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है, और इन्हीं श्रृंगार को सवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, एक से एक उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A, आशियाना आंगन प्लाजा नियर मैकडॉनल्ड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉन्टेक्ट करें 01-4934-9322 या फिर 9034-9697-31 पर। ऐसे डिजाइन्स जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्स ही आए।
15: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: विजय हॉस्पिटल डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
1: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
0: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
2: जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी आँखों का NABH मान्यता प्राप्त सुपर स्पेशलिटी आँखों का हॉस्पिटल आपके शहर भिवाड़ी में। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी आपको प्रदान करता है विश्व स्तरीय आँखों की देखभाल।
3: हमारे सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल में आपको मिलेगी अनुभवी डॉक्टरों आई सर्जनों की विशेषज्ञ टीम, पूर्णतः मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर MICS टॉपिकल फैको तकनीक से कैटरेक्ट मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेजर से ऑपरेशन बिना इंजेक्शन और टांके,
2: रेटिना आंख का पर्दा, ग्लूकोमा, काला मोतियाबिंद का उन्नत इलाज, बच्चों की आंखों का इलाज, हमारे पास सभी इंश्योरेंस और TPA पैनल उपलब्ध हैं। निशुल्क कैशलेस इलाज का लाभ उठाएं।
3: आज ही हमें सेवा का मौका दें। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भगत सिंह कॉलोनी अलवर बाईपास हरीश बेकरी के पास भिवाड़ी।
2: संपर्क करें 7424830174। आज ही अपनी आँखों का इलाज कराएं और पाएं एक उज्जला भविष्य। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी।
4: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं कैशलेस सर्विस के लिए, कहां मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
5: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहां मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंट मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार एसी वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
4: एकता मोटर्स अलवर बाईपास रोड नियर बाय थड़ा मोड़ भिवाड़ी। फॉर इन्फॉर्मेशन कॉल 9799278900।
6: न्यू गर्ल्स सुपर स्टोर, जहाँ मिलते हैं ग्रोसरीज, ड्राई फ्रूट्स, कॉस्मेटिक्स आइटम और सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स। बजट की दुकान, MRP की छुट्टी, आपका फायदा हमारा वादा। अब वक्त है MRP को कहें बाय बाय। कॉन्टेक्ट करें 7413099952 पर अलवर बाईपास रोड नियर मार्बल मार्केट भिवाड़ी।
7: राहुल, इंडस्ट्री प्लान तो बढ़िया है पर इस बार अपनी फैक्ट्री के इलेक्ट्रिकल्स पर एक्स्ट्रा फोकस रखना।
8: डोंट वरी सर, इंडस्ट्री का सारा इलेक्ट्रिकल्स खंडेलवाल एजेंसी से आएगा। ये NCR का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस है, जहां हमें पैनल, स्विच गियर, मोटर ड्राइव,

0: मैं जयपुर जा रहा हूँ।
1: अच्छा, तो आते हुए जयपुर के मशहूर दूध लड्डू और प्याज कचौरी लेते आना।
0: अरे, दूध लड्डू और प्याज कचौरी के लिए जयपुर जाने का इंतजार क्यों करना? क्योंकि अब आपके शहर भिवाड़ी में अलवर बाईपास पर खुल चुका है कान्हा स्वीट्स।
1: जी हाँ, कान्हा स्वीट्स पर मिलते हैं स्वादिष्ट दूध लड्डू, प्याज कचौरी, समोसे किसी कलाकंद, रस मलाई, कुल्हड़ रबड़ी और सभी प्रकार की मिठाइयाँ।
0: बिल्कुल, हर मिठाई में स्वाद ऐसा कि एक बार खाएं तो दिल कहे एक और।
1: तो फिर आज मिठास हो जाए कान्हा स्वीट्स के साथ।
0: हाँ, परिवार हो या मेहमान, त्योहार हो या कोई खास खुशी, हर मौके की मिठास कान्हा स्वीट्स के साथ। पता नोट कर लीजिए,
1: शॉप नंबर A G F04, कैपिटल आर्केडिया, अलवर बाईपास इन फ्रंट ऑफ वेदांता फार्म, भिवाड़ी, राजस्थान।
2: मोहाली और गुड़गांव का डेंटल अनुभव अब भिवाड़ी में। आइए वी केयर डेंटल क्लिनिक इम्प्लांट सेंटर, जहां RCT, कैपिंग और डेंटल इम्प्लांट के एक्सपर्ट ट्रीटमेंट के साथ आपको मिलता है डॉक्टर रुकु सिंगला के 16 वर्षों के अनुभव और विशेषज्ञता का भरोसा। आर्मी और कॉर्पोरेट कर्मचारियों के लिए स्पेशल डिस्काउंट। पता, अपोजिट मैकडोनल्ड्स, JMK पेट क्लिनिक के पास, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉल करें 7814399374। वी केयर डेंटल, आपकी मुस्कान हमारा भरोसा।
1: क्या आपकी आँखों की रोशनी से जुड़ी कोई परेशानी है? क्या आप चश्मे से छुटकारा पाना चाहते हैं?
0: तो आइए आधुनिक सुविधाओं से युक्त मिश्री देवी आई हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी आई सेंटर।
1: पिछले 15 वर्षों से नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में भरोसेमंद सेवाएं, अब बहर रोड, नियम राणा और टपुकड़ा भिवाड़ी में।
0: यहाँ उपलब्ध है मोतियाबिंद, फेको, मल्टी

0: मल्टीफोकल एवं प्रीमियम लेंस, लेसिक लेजर, कॉर्निया, ग्लूकोमा और रेटिना उपचार एवं सर्जरी की आधुनिक सुविधाएं।
1: और अब दोनों आँखों का लेसिक लेजर उपचार आधुनिक तकनीक के साथ आपकी पहुँच में और उचित दरों पर।
0: बेहतर नेत्र उपचार, उचित खर्च और भरोसेमंद देखभाल के साथ चश्मे से आजादी की ओर बढ़ाइए अपना कदम। मिश्री देवी आई हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी आई सेंटर। संपर्क नंबर
1: 9783220043 या 01493294200। अब आपके शहर भिवाड़ी में साइकियाट्री एवं ऑर्थोपेडिक्स की नियमित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है ओजस हॉस्पिटल में।
0: मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितिका अग्रवाल द्वारा डिप्रेशन, नींद की समस्या, बेचैनी, घबराहट, मानसिक तनाव, स्किजोफ्रेनिया और ओसीडी जैसी समस्याओं का उचित उपचार किया जाता है एवं काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध है।
1: वहीं हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेंद्र अग्रवाल द्वारा चोट, ट्रॉमा, फ्रैक्चर, घुटने एवं कमर का दर्द, लिगामेंट की चोट, गठिया और आर्थराइटिस जैसी हड्डी एवं जोड़ संबंधी समस्याओं का उपचार किया जाता है।
0: साथ ही सर्जरी, फिजियोथेरेपी और पेन मैनेजमेंट की सुविधा भी उपलब्ध है।
1: तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या को नजरअंदाज न करें, पहुंचिए ओजस हॉस्पिटल,
0: पता नगीना गार्डन के पास, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी।
1: फोन करें 9521333591। ओजस हॉस्पिटल, बेहतर स्वास्थ्य की ओर एक कदम। अब आपके शहर धारूहेड़ा में ही मिल रही है आधुनिक और बेहतरीन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सुविधाएं। लोटस हॉस्पिटल, बेस्ट टैग सिटी बीपीएल फ्लैट के सामने धारूहेड़ा में डॉक्टर अन्विका बंसल, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, 15 वर्ष से अधिक अनुभव के साथ, जो पहले से ही भिवाड़ी में अपनी सेवाएं दे रही थी, अब अपने नए लोटस हॉस्पिटल में ओपीडी और इमरजेंसी सर्विस के लिए उपलब्ध हैं। इसके साथ ही यहां उपलब्ध है अनुभवी हड्डी रोग विशेषज्ञ। यहां घुटना बदलना, कुल्हा बदलना और रीढ़ से जुड़ी सभी बीमारी का इलाज होता है और एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट और लैप्रोस्कोपिक जनरल सर्जन, जहां लेजर टेक्निक से बवासीर, भगंदर का इलाज लोटस हॉस्पिटल में मिलता है, तथा 24 घंटे आपातकालीन सुविधा, एडवांस्ड एक्सरे, लैबोरेटरी, फार्मेसी, अल्ट्रासाउंड सर्विस, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, एसी प्राइवेट रूम की सुविधाएं उपलब्ध हैं। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आज ही विजिट करें लोटस हॉस्पिटल, बेस्ट टैग सिटी बीपीएल फ्लैट के सामने धारूहेड़ा। संपर्क करें 01274415033।
2: भिवाड़ी का पहला ISO और NABH सर्टिफाइड श्री कृष्णा हॉस्पिटल, जिसमें मल्टी स्पेशलिस्ट ओपीडी, 10 बेड का ICU, सबसे बड़ा मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 50 बेड का इंडोर, 24 आवर्स एम्बुलेंस, फार्मेसी और इमरजेंसी सेवाएं, तथा लैब, डिजिटल एक्सरे जैसी सुविधाओं से लैस श्री कृष्णा हॉस्पिटल अधिकांश मल्टीनेशनल कंपनियों के मेडिकल कंसल्टेंसी एवं कैशलेस उपचार का एकमात्र सेंटर। श्री कृष्णा हॉस्पिटल, B14849, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी, 8529113916734001391। इस हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट और फिजिशियन की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
3: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
4: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
3: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
1: आपके हर खास समारोह को शानदार और यादगार बनाने के लिए आइए भाटोटिया टेंट हाउस एंड इवेंट ऑर्गेनाइजर।
0: सभी प्रकार के टेंट आइटम, शानदार डेकोरेशन और इंडोर आउटडोर कैटरिंग की बेहतरीन सुविधा, शादी, सगाई, जन्मदिन या किसी भी समारोह के लिए एक ही जगह पर पूरी व्यवस्था।
1: संपर्क करें हंसराज भाटोटिया, मोबाइल नंबर 9416347214।
0: और आपके खास समारोह के लिए शानदार राजविलास मैरिज एवं बैंक्वेट हॉल, शिवनगर पार्ट 2, पांचाल कॉलोनी, सीथल रोड, धारूहेड़ा, जिला रेवाड़ी, हरियाणा।
1: बाटोटिया टेंट हाउस और राजविलास मैरिज बैंक्वेट हॉल, आपके समारोह की पूरी तैयारी एक ही जगह।
5: अरे यार, आज शाम पार्टी करें?
6: नहीं यार, आज डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाना था।
5: गुरुग्राम? इतनी दूर?
6: हाँ यार, वहीं तो बेस्ट हाइजीन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और पेनलेस ट्रीटमेंट मिलता है।
5: ये बात पहले सही थी, पर अब नहीं।
6: मतलब?
5: गुरुग्राम के ही एक्सपीरियंस्ड डेंटल एक्सपर्ट डॉक्टर जितिन टक्कर पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ मिलता है प्रीमियम सेटअप, एडवांस टेक्नोलॉजी, कंप्लीट हाइजीन और 100% पेनलेस डेंटल ट्रीटमेंट। और सबसे अच्छी बात, चार्जेस दिल्ली और गुरुग्राम से काफी कम।
6: तो फिर दूर जाने का टेंशन खत्म।
5: बिल्कुल, अब एक्सपीरियंस, भरोसा और क्वालिटी, सब कुछ घर के पास, भिवाड़ी में। आइए 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, ए ब्लॉक, A140, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। आज ही संपर्क करें डॉक्टर जितिन टक्कर, 9871122135। 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, बेहतर चॉइसेस, बेहतर मुस्कान। अजी, सुनते हो, मेरा फोन टूट गया है।
6: अरे भाग्यवान, सुनो, घबराओ नहीं, खंडेलवाल मोबाइल भिवाड़ी लाया है 0% डाउन पेमेंट पर। मोबाइल फोन 9784960000। और सुनो, ओप्पो ने लॉन्च किया है अभी रेनो 15C कम दामों में, बजाज फाइनेंस के साथ 0% ब्याज, 10% कैश बैक के साथ, प्लस ट्रॉली बैग, 0 डाउन पेमेंट। और बैटरी से हो परेशान तो रियलमी ने लॉन्च किया है अपना एक नया मॉडल 10,000 mAh बैटरी के साथ। अभी जाइए खंडेलवाल मोबाइल पर ढेर सारे गिफ्ट के साथ, नीलम चौक। चिंता क्यों करते हो, बजाज फाइनेंस है ना अपने साथ। 9784960000 और 9828288666।
7: राहुल यार, मैंने नोएडा से जॉब स्विच कर दिया है, अब सोच रही हूँ भिवाड़ी में रेंटल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा।
8: चिंता की कोई बात नहीं, मेगा एयर कंडीशनर्स एंड इलेक्ट्रिक सर्विस है ना, ये पूरे दिल्ली NCR में अपनी रेंटल सर्विस दे रहे हैं। और इनके यहाँ टावर AC, विंडो AC, स्प्लिट AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड LED TV, सभी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
7: लेकिन इनकी सर्विस भिवाड़ी में तो बहुत महंगी होगी ना।
8: बिल्कुल भी नहीं, आपको ये सर्विस सेम रेट पर मिलने वाली है। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9899247102 पर, या फिर विजिट करें www.maces.in पर।
9: ये क्या, अभी भी डीजल कार चला रहे हो? अब समय है स्मार्ट फ्यूल पर स्विच करने का, वो भी ज्यादा बचत के साथ। पेश है विक्टोरिस SCNG। ये स्मार्ट है क्योंकि ये देता है 27.02 किलोमीटर पर KG का शानदार माइलेज, और इसका अंडरबॉडी CNG टैंक बूट स्पेस पर कोई समझौता नहीं करता। ज्यादा बचत भी, क्योंकि अपनी पुरानी डीजल कार के एक्सचेंज पर पाएं 50,000 रुपए तक का फायदा। तो देर किस बात की, आज ही बुक करें, अपनी नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम पर जाएं। नियम व शर्तें लागू।
10: विजिट फॉर्च्यून कार्स भिवाड़ी।
11: मॉडर्न अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर भिवाड़ी पर अनुभवी रेडियोलॉजिस्ट व पैथोलॉजिस्ट द्वारा अत्याधुनिक मशीनों से 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 4D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इको कार्डियोग्राफी, डिजिटल एक्सरे, IVP, बैरियम, HSG, डिजिटल OPG, DMT, ECG, EEG, PFT, मैमोग्राफी व फुली एडवांस कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब की सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध है।
12: नियर सरकारी हॉस्पिटल 135 भिवाड़ी, दूसरी ब्रांच, मॉडर्न डायग्नोस्टिक एवं इमेजिंग सेंटर, नियर नगर पालिका ऑफिस, अपोजिट अंबेडकर पार्क, धारूहेड़ा। कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800-123-4494 या 9983-04010 पर।
13: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: मैं जयपुर जा रहा हूँ।
1: अच्छा, तो आते हुए जयपुर के मशहूर दूध लड्डू और प्याज कचौरी लेते आना।
0: अरे, दूध लड्डू और प्याज कचौरी के लिए जयपुर जाने का इंतजार क्यों करना, क्योंकि अब आपके शहर भिवाड़ी में अलवर बाईपास पर खुल चुका है कान्हा स्वीट्स।
1: जी हाँ, कान्हा स्वीट्स पर मिलते हैं स्वादिष्ट दूध लड्डू, प्याज कचौरी, समोसे किसी कलाकंद, रसमलाई, कुल्हड़ रबड़ी और सभी प्रकार की मिठाइयाँ।
0: बिल्कुल, हर मिठाई में स्वाद ऐसा कि एक बार खाएं तो दिल कहे एक और।
1: तो फिर आज मिठास हो जाए कान्हा स्वीट्स के साथ।
0: हाँ, परिवार हो या मेहमान, त्योहार हो या कोई खास खुशी, हर मौके की मिठास कान्हा स्वीट्स के साथ। पता नोट कर लीजिए,
1: शॉप नंबर A GF04, कैपिटल आर्केडिया, अलवर बाईपास इन फ्रंट ऑफ वेदांता फार्म, भिवाड़ी, राजस्थान।
2: मोहाली और गुड़गांव का डेंटल अनुभव अब भिवाड़ी में। आइए वी केयर डेंटल क्लिनिक इम्प्लांट सेंटर, जहां RCT, कैपिंग और डेंटल इम्प्लांट के एक्सपर्ट ट्रीटमेंट के साथ आपको मिलता है डॉक्टर रुकु सिंगला के 16 वर्षों के अनुभव और विशेषज्ञता का भरोसा। आर्मी और कॉर्पोरेट कर्मचारियों के लिए स्पेशल डिस्काउंट। पता, अपोजिट मैकडोनल्ड्स, JMK पेट क्लिनिक के पास, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉल करें 7814399374। वी केयर डेंटल, आपकी मुस्कान हमारा भरोसा।
1: क्या आपकी आँखों की रोशनी से जुड़ी कोई परेशानी है? क्या आप चश्मे से छुटकारा पाना चाहते हैं?
0: तो आइए आधुनिक सुविधाओं से युक्त मिश्री देवी आई हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी आई सेंटर।
1: पिछले 15 वर्षों से नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में भरोसेमंद सेवाएं, अब बहर रोड, नियम राणा और टपुकड़ा भिवाड़ी में।
0: यहाँ उपलब्ध हैं मोतियाबिंद, फेको, मल्टीफोकल एवं प्रीमियम लेंस, लेसिक लेजर, कॉर्निया, ग्लूकोमा और रेटिना उपचार एवं सर्जरी की आधुनिक सुविधाएं।
1: और अब दोनों आँखों का लेसिक लेजर उपचार आधुनिक तकनीक के साथ आपकी पहुँच में और उचित दरों पर।
0: बेहतर नेत्र उपचार, उचित खर्च और भरोसेमंद देखभाल के साथ चश्मे से आजादी की ओर बढ़ाइए अपना कदम। मिश्री देवी आई हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी आई सेंटर। संपर्क नंबर
1: 9783220043 या 01493294200। अब आपके शहर भिवाड़ी में साइकियाट्री एवं ऑर्थोपेडिक्स की नियमित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है ओजस हॉस्पिटल में।
0: मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितिका अग्रवाल द्वारा डिप्रेशन, नींद की समस्या, बेचैनी, घबराहट, मानसिक तनाव, स्किजोफ्रेनिया और OCD जैसी समस्याओं का उचित उपचार किया जाता है एवं काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध है।
1: वहीं हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेंद्र अग्रवाल द्वारा चोट, ट्रॉमा, फ्रैक्चर, घुटने एवं कमर का दर्द, लिगामेंट की चोट, गठिया और आर्थराइटिस जैसी हड्डी एवं जोड़ संबंधी समस्याओं का उपचार किया जाता है।
0: साथ ही सर्जरी, फिजियोथेरेपी और पेन मैनेजमेंट की सुविधा भी उपलब्ध है।
1: तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या को नजरअंदाज न करें, पहुंचिए ओजस हॉस्पिटल।
0: पता, नगीना गार्डन के पास, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी।
1: फोन करें 9521333591। ओजस हॉस्पिटल, बेहतर स्वास्थ्य की ओर एक कदम। अब आपके शहर धारूहेड़ा में ही मिल रही है आधुनिक और बेहतरीन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सुविधाएं। लोटस हॉस्पिटल, बेस्ट टैक्स सिटी, BPL फ्लैट के सामने धारूहेड़ा में डॉक्टर अन्विका बंसल, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, 15 वर्ष से अधिक अनुभव के साथ, जो पहले से ही भिवाड़ी में अपनी सेवाएं दे रही थी, अब अपने नए लोटस हॉस्पिटल में OPD और इमरजेंसी सर्विस के लिए उपलब्ध हैं। इसके साथ ही यहां उपलब्ध है अनुभवी हड्डी रोग विशेषज्ञ। यहां घुटना बदलना, कुल्हा बदलना और रीढ़ से जुड़ी सभी बीमारी का इलाज होता है, और एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट और लैप्रोस्कोपिक जनरल सर्जन, जहां लेजर टेक्निक से बवासीर, भगंदर का इलाज लोटस हॉस्पिटल में मिलता है, तथा 24 घंटे आपातकालीन सुविधा, एडवांस्ड एक्सरे, लैबोरेटरी, फार्मेसी, अल्ट्रासाउंड सर्विस, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, AC प्राइवेट रूम की सुविधाएं उपलब्ध हैं। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आज ही विजिट करें लोटस हॉस्पिटल, बेस्ट टैक्स सिटी, BPL फ्लैट के सामने धारूहेड़ा। संपर्क करें 01274415033।
3: भिवाड़ी का पहला ISO और NABH सर्टिफाइड श्री कृष्णा हॉस्पिटल, जिसमें मल्टी स्पेशलिस्ट OPD, 10 बेड का ICU, सबसे बड़ा मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 50 बेड का इंडोर, 24 आवर्स एम्बुलेंस, फार्मेसी और इमरजेंसी सेवाएं तथा लैब, डिजिटल एक्सरे जैसी सुविधाओं से लैस श्री कृष्णा हॉस्पिटल अधिकांश मल्टीनेशनल कंपनियों के मेडिकल कंसल्टेंसी एवं कैशलेस उपचार का एकमात्र सेंटर। श्री कृष्णा हॉस्पिटल, B14849 भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी, 8529113916, 7340013916। इस हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट और फिजिशियन की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
4: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
5: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे, किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
4: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
6: आपके हर खास समारोह को शानदार और यादगार बनाने के लिए आइए भाटोटिया टेंट हाउस एंड इवेंट ऑर्गेनाइजर।
7: सभी प्रकार के टेंट आइटम, शानदार डेकोरेशन और इंडोर आउटडोर कैटरिंग की बेहतरीन सुविधा, शादी, सगाई, जन्मदिन या किसी भी समारोह के लिए एक ही जगह पर पूरी व्यवस्था।
6: संपर्क करें हंसराज भाटोटिया, मोबाइल नंबर 9416347214।
7: और आपके खास समारोह के लिए शानदार राजविलास मैरिज एवं बैंक्वेट हॉल, शिवनगर पार्ट 2, पांचाल कॉलोनी, सीथल रोड, धारूहेड़ा, जिला रेवाड़ी, हरियाणा।
6: बाटोटिया टेंट हाउस और राजविलास मैरिज बैंक्वेट हॉल, आपके समारोह की पूरी तैयारी एक ही जगह।
2: अब भिवाड़ी के सबसे बड़े NABH सर्टिफाइड SS हॉस्पिटल में स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे पाएं। यहां पाएं स्किन स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, नेफ्रोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी, ब्लड बैंक, एल और डायलिसिस, सभी बड़े TPA, कैशलेस RGHS, ECHS, ESIC, चिरंजीवी योजना की कैशलेस सुविधा, यहां 24 घंटे की इमरजेंसी सेवा और एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें OCF2 ऑपोजिट मॉडर्न पब्लिक स्कूल, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी, कॉन्टैक्ट 7230011191 और 9785013999।
8: टाटा की गाड़ी तो ले ली है, अब भिवाड़ी में सर्विस सेंटर ढूंढते रहो।
9: अरे ढूंढना क्यों है, टाटा ऑथराइज्ड AK ऑटोमोबाइल है ना, जो संजय मोटर्स की ही यूनिट है। 2017 से भिवाड़ी का भरोसा है, टाटा के सर्टिफाइड मैकेनिक्स हैं और वहाँ सर्विसिंग बहुत ही शॉर्ट टाइम में हो जाती है।
8: अच्छा, और उसमें क्या खर्चे ही खर्चे?
9: अरे नहीं नहीं, AK ऑटोमोबाइल्स पर कार सर्विसिंग, बॉडी शॉप और व्हील अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग के अलावा कैशलेस इंश्योरेंस और रिन्यूअल, AMC, ऑन रोड मेंटेनेंस और एक्सीडेंट वारंटी जैसी सारी फैसिलिटीज हैं, जो खर्चे बहुत ही कम कर देती हैं। मेन रोड पर फूलबाग थाने के पास ही है ये।
8: अरे वाह, तो वेट क्यों करना, 9462369786 पे कॉल करके अभी AK ऑटोमोबाइल पे सर्विस बुक करो जल्दी।
10: सोनम, ये लो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट।
11: अरे इसमें क्या है?
10: वही जो तुम्हें बहुत टाइम से चाहिए था।
11: ये ब्रेसलेट तो मुझे बहुत टाइम से चाहिए था।
10: क्या आप इसे दिल्ली से लाए हो?
11: लेकिन आप दिल्ली कब गए?
10: अरे वो है ना, भिवाड़ी में अपने शांति ज्वेलर्स, इनके पास है सोने चांदी हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन और यहाँ मिलती है हॉलमार्क ज्वेलरी।
11: इनका एड्रेस क्या है?
10: इनका एड्रेस है शॉप नंबर 5, गणपति मॉल, भिवाड़ी। और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9812210987 पर।
12: एक बेहतर कल के लिए, बेहतर मजबूती के लिए, बेहतर बचत के लिए यूज करें SBF रैपिड 550D TMT।
13: मजबूत निर्माण सदा के लिए।
14: मुझे अपने बच्चों के लिए चाहिए एक ऐसा स्कूल जो ICSE से एफिलेटेड हो।
15: भिवाड़ी में है एक मात्र ऐसा स्कूल SPS ग्लोबल स्कूल, जिसके बच्चों ने ICSE 10th की बोर्ड परीक्षाओं में 100% रिजल्ट के साथ साथ राज्य स्तर पर कराटे, स्केटिंग आदि प्रतियोगिताओं में भी अपने स्कूल का नाम रोशन किया है। यहाँ शिक्षा से बच्चों का बौद्धिक विकास और खेल कूद से शारीरिक विकास, डिसिप्लिन और समय समय पर सामाजिक व सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं होती रहती हैं, जो बच्चों के सर्वांगीण विकास में मदद करता है। यहाँ है बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, खेल का मैदान, ऐसी क्लासरूम, डिजिटल क्लास क्लासरूम, आधुनिक सुविधाओं से लैस लैब, बेस्ट टीचर की फैसिलिटी।
14: SPS ग्लोबल स्कूल नियर कैपिटल मॉल भिवाड़ी। आज ही विजिट करें या कॉल करें 9950888330।
16: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: अब भिलवाड़ी के शिवोहम हॉस्पिटल में पाएं एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं। यहां 25 बेड से लेस इंडोर, 6 बेड से लेस आईसीयू, दो बड़े ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजी लैब तथा अत्याधुनिक एक्सरे मशीनों के द्वारा एक्सरे सुविधा, तकनीकी मशीनों द्वारा जांच, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, एम्बुलेंस, सभी कैशलेस टीपीए सुविधाओं के साथ 14 साल से कम आयु की बच्चियों के लिए निशुल्क परामर्श, गायनेकोलॉजी, इनफर्टिलिटी, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नम्रता मेहता चतुर्वेदी व हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हेमंत चतुर्वेदी जैसे अनुभवी डॉक्टर से परामर्श सुविधा, जो कि पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में निरंतर अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। शिवोहम हॉस्पिटल, B4 भगत सिंह कॉलोनी, पुराने RTO ऑफिस के पास, भिवाड़ी। संपर्क 9799996778।
1: भिवाड़ी का पहला ISO और NABH सर्टिफाइड श्री कृष्णा हॉस्पिटल, जिसमें मल्टी स्पेशलिस्ट OPD, 10 बेड का ICU, सबसे बड़ा मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 50 बेड का इंडोर, 24 आवर्स एम्बुलेंस, फार्मेसी और इमरजेंसी सेवाएं तथा लैब, डिजिटल एक्सरे जैसी सुविधाओं से लैस श्री कृष्णा हॉस्पिटल अधिकांश मल्टीनेशनल कंपनियों के मेडिकल कंसल्टेंसी एवं कैशलेस उपचार का एकमात्र सेंटर। श्री कृष्णा हॉस्पिटल, B14849 भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी, 8529113916 7340013916। इस हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट और फिजिशियन की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं।
2: क्या आपकी त्वचा, बाल या नाखून की समस्या बार बार परेशान कर रही है?
3: अब सही इलाज के लिए मिलिए डॉक्टर गौरव, एम्स से प्रशिक्षित त्वचा रोग विशेषज्ञ, SS हॉस्पिटल, भिवाड़ी में।
2: मुंहासे, पिगमेंटेशन, एलर्जी, हेयर फॉल से लेकर लेजर, केमिकल पील और बोटॉक्स जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध।
3: ECHS RGHS तथा NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल में सभी प्रमुख TPA मान्य।
2: SS हॉस्पिटल, भिवाड़ी, भरोसेमंद विशेषज्ञ से देखभाल। समय रोजाना शाम 4:30 to 6:30 तक, गुरुवार अवकाश।
4: पूजा, तुम्हारे फेस पर कितने पिंपल्स और धब्बे हो रहे हैं?
5: हाँ यार, और बाल भी हर दिन झड़ रहे हैं। कई बार दिल्ली गुरुग्राम में भी दिखा चुकी हूँ।
4: अरे पूजा, अब दिल्ली या गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपनी भिवाड़ी में है डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, जहाँ पर स्किन, हेयर एंड नेल्स की सभी बीमारियों का पूर्ण इलाज डॉक्टर सुचेता MD डर्मेटोलॉजी द्वारा किया जाता है, जो भिवाड़ी में अपनी सेवाएं दे रही है। इनके यहाँ लेजर हेयर रिमूवल, माइक्रो नीडलिंग, PRP, RF, अन्य सभी स्किन समस्याओं का समाधान विदेशी मशीनों व नई तकनीकों द्वारा किया जाता है। कॉल करें 6367551007। विजिट डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, A56 फर्स्ट फ्लोर, भगत सिंह कॉलोनी, बिहाइंड सुखम टावर, भिवाड़ी।
6: आपके सारे जरूरतों का बीमा एक ही जगह, विधि एंटरप्राइजेज भिवाड़ी। स्वास्थ्य बीमा, वाहन बीमा, जीवन बीमा, फायर बीमा, सब मिलेगा यहाँ। और हाँ, बीमा कराने पर खास ऑफर भी मिलेंगे। संपर्क करें चंद्रभान, विधि एंटरप्राइजेज, रिको चौक, भिवाड़ी, 9887066308।
7: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: मैं जयपुर जा रहा हूँ।
1: अच्छा, तो आते हुए जयपुर के मशहूर दूध लड्डू और प्याज कचौरी लेते आना।
0: अरे, दूध लड्डू और प्याज कचौरी के लिए जयपुर जाने का इंतजार क्यों करना, क्योंकि अब आपके शहर भिवाड़ी में अलवर बाईपास पर खुल चुका है कान्हा स्वीट्स।
1: जी हाँ, कान्हा स्वीट्स पर मिलते हैं स्वादिष्ट दूध लड्डू, प्याज कचौरी, समोसे, किसी कलाकंद, रसमलाई, कुल्हड़, रबड़ी और सभी प्रकार की मिठाइयाँ।
0: बिल्कुल, हर मिठाई में स्वाद ऐसा कि एक बार खाएं तो दिल कहे एक और।
1: तो फिर आज मिठास हो जाए कान्हा स्वीट्स के साथ।
0: हाँ, परिवार हो या मेहमान, त्योहार हो या कोई खास खुशी, हर मौके की मिठास कान्हा स्वीट्स के साथ। पता नोट कर लीजिए,
1: शॉप नंबर AG F04, कैपिटल आर्केडिया, अलवर बाईपास इन फ्रंट ऑफ वेदांता फार्म, भिवाड़ी, राजस्थान।
2: मोहाली और गुड़गांव का डेंटल अनुभव अब भिवाड़ी में। आइए वी केयर डेंटल क्लिनिक इम्प्लांट सेंटर, जहां RCT, कैपिंग और डेंटल इम्प्लांट के एक्सपर्ट ट्रीटमेंट के साथ आपको मिलता है डॉक्टर रुकु सिंगला के 16 वर्षों के अनुभव और विशेषज्ञता का भरोसा। आर्मी और कॉर्पोरेट कर्मचारियों के लिए स्पेशल डिस्काउंट। पता, अपोजिट मैकडोनल्ड्स, JMK पेट क्लिनिक के पास, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉल करें 7814399374। वी केयर डेंटल, आपकी मुस्कान हमारा भरोसा।
1: क्या आपकी आँखों की रोशनी से जुड़ी कोई परेशानी है? क्या आप चश्मे से छुटकारा पाना चाहते हैं?
0: तो आइए, आधुनिक सुविधाओं से युक्त मिश्री देवी आई हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी आई सेंटर।
1: पिछले 15 वर्षों से नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में भरोसेमंद सेवाएं, अब बाहर रोड, नियम राणा और टपुकड़ा भिवाड़ी में।
0: यहाँ उपलब्ध है मोतियाबिंद, फेको, मल्टीफोकल एवं प्रीमियम लेंस, लेसिक लेजर, कॉर्निया, ग्लूकोमा और रेटिना उपचार एवं सर्जरी की आधुनिक सुविधाएं।
1: और अब दोनों आँखों का लेसिक लेजर उपचार आधुनिक तकनीक के साथ आपकी पहुंच में और उचित दरों पर।
0: बेहतर नेत्र उपचार, उचित खर्च और भरोसेमंद देखभाल के साथ चश्मे से आजादी की ओर बढ़ाइए अपना कदम। मिश्री देवी आई हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी आई सेंटर। संपर्क नंबर
1: 9783220043 या 01493294200। अब आपके शहर भिवाड़ी में साइकियाट्री एवं ऑर्थोपेडिक्स की नियमित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है ओजस हॉस्पिटल में।
0: मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितिका अग्रवाल द्वारा डिप्रेशन, नींद की समस्या, बेचैनी, घबराहट, मानसिक तनाव, स्किजोफ्रेनिया और OCD जैसी समस्याओं का उचित उपचार किया जाता है एवं काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध है।
1: वहीं हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेंद्र अग्रवाल द्वारा चोट, ट्रॉमा, फ्रैक्चर, घुटने एवं कमर का दर्द, लिगामेंट की चोट, गठिया और आर्थराइटिस जैसी हड्डी एवं जोड़ संबंधी समस्याओं का उपचार किया जाता है।
0: साथ ही सर्जरी, फिजियोथेरेपी और पेन मैनेजमेंट की सुविधा भी उपलब्ध है।
1: तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या को नजरअंदाज न करें, पहुंचिए ओजस हॉस्पिटल।
0: पता, नगीना गार्डन के पास, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी।
1: फोन करें 9521333591। ओजस हॉस्पिटल, बेहतर स्वास्थ्य की ओर एक कदम। अब आपके शहर धारूहेड़ा में ही मिल रही है आधुनिक और बेहतरीन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सुविधाएं। लोटस हॉस्पिटल, बेस्ट टैक सिटी, BPL फ्लैट के सामने धारूहेड़ा में, डॉक्टर अन्विका बंसल, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, 15 वर्ष से अधिक अनुभव के साथ, जो पहले से ही भिवाड़ी में अपनी सेवाएं दे रही थी, अब अपने नए लोटस हॉस्पिटल में OPD और इमरजेंसी सर्विस के लिए उपलब्ध हैं। इसके साथ ही यहाँ उपलब्ध है अनुभवी हड्डी रोग विशेषज्ञ। यहाँ घुटना बदलना, कुल्हा बदलना और रीढ़ से जुड़ी सभी बीमारी का इलाज होता है, और एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट और लैप्रोस्कोपिक जनरल सर्जन, जहाँ लेजर टेक्निक से बवासीर, भगंदर का इलाज लोटस हॉस्पिटल में मिलता है, तथा 24 घंटे आपातकालीन सुविधा, एडवांस्ड एक्सरे, लैबोरेटरी, फार्मेसी, अल्ट्रासाउंड सर्विस, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, AC प्राइवेट रूम की सुविधाएं उपलब्ध हैं। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आज ही विजिट करें लोटस हॉस्पिटल, बेस्ट टैक सिटी, BPL फ्लैट के सामने, धारूहेड़ा। संपर्क करें 01274415033।
3: भिवाड़ी का पहला ISO और NABH सर्टिफाइड श्री कृष्णा हॉस्पिटल, जिसमें मल्टी स्पेशलिस्ट OPD, 10 बेड का ICU, सबसे बड़ा मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 50 बेड का इंडोर, 24 आवर्स एम्बुलेंस, फार्मेसी और इमरजेंसी सेवाएं तथा लैब, डिजिटल एक्सरे जैसी सुविधाओं से लैस श्री कृष्णा हॉस्पिटल अधिकांश मल्टीनेशनल कंपनियों के मेडिकल कंसल्टेंसी एवं कैशलेस उपचार का एकमात्र सेंटर। श्री कृष्णा हॉस्पिटल, B14849 भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी, 8529113916, 7340013916। इस हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट और फिजिशियन की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
4: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
5: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
4: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
6: आपके हर खास समारोह को शानदार और यादगार बनाने के लिए आइए भाटोटिया टेंट हाउस एंड इवेंट ऑर्गेनाइजर।
7: सभी प्रकार के टेंट आइटम, शानदार डेकोरेशन और इंडोर आउटडोर कैटरिंग की बेहतरीन सुविधा, शादी, सगाई, जन्मदिन या किसी भी समारोह के लिए एक ही जगह पर पूरी व्यवस्था।
6: संपर्क करें हंसराज भाटोटिया, मोबाइल नंबर 9416347214।
7: और आपके खास समारोह के लिए शानदार राजविलास मैरिज एवं बैंक्वेट हॉल, शिवनगर पार्ट 2, पांचाल कॉलोनी, सीथल रोड, धारूहेड़ा, जिला रेवाड़ी, हरियाणा।
6: बाटोटिया टेंट हाउस और राजविलास मैरिज बैंक्वेट हॉल, आपके समारोह की पूरी तैयारी एक ही जगह।
8: आपनो देश आपनो रंग, सब मिले आपनो बाजार के संग। जी हाँ, आपनो बाजार आपका कंप्लीट फैमिली स्टोर, जहाँ उत्तम क्वालिटी और वाजिब दामों के साथ आपको मिलता है किराना, ग्रोसरी आइटम, कॉस्मेटिक, हाउसकीपिंग, हाउसहोल्ड आइटम, गिफ्ट आइटम, क्रॉकरी, टॉयज एंड गेम्स। इन सभी आइटम के MRP दामों पर खास छूट। इतना ही नहीं, फ्री होम डिलीवरी की सुविधा भी है। इनके स्टोर अलवर बाईपास, थड़ा रोड, भिवाड़ी, कृष्ण मॉल, टपुकड़ा आशियाना विलेज सेंटर। संपर्क करें 9680870184 या फिर 7822091287।
9: अरे, प्लांट का तो सारा काम हो गया, अब LED लाइट कहाँ से खरीदें?
10: सर, क्या आपको नहीं पता है नैप LED लाइटिंग कंपनी इंडस्ट्रियल लाइटिंग जैसे फ्लड लाइट, हाईवे लाइट, स्ट्रीट लाइट आदि के साथ साथ सभी प्रकार की LED लाइट बनाती है, वो भी 2 साल की वारंटी के साथ। और इतना ही नहीं, वो इंडस्ट्रियल लाइटिंग कंसल्टेंट सर्विस भी फ्री देते हैं।
9: अरे वाह, इनसे संपर्क कैसे करें?
10: सर, इनका सेल्स ऑफिस एड्रेस JFF 22, कैपिटल हाई स्ट्रीट, फूलबाग चौक, भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए नैप LED लाइटिंग कंपनी से संपर्क करें 7988627064।
6: आपके हर खास समारोह को शानदार और यादगार बनाने के लिए आइए भाटोटिया टेंट हाउस एंड इवेंट ऑर्गेनाइजर।
7: सभी प्रकार के टेंट आइटम, शानदार डेकोरेशन और इंडोर आउटडोर कैटरिंग की बेहतरीन सुविधा, शादी, सगाई, जन्मदिन या किसी भी समारोह के लिए एक ही जगह पर पूरी व्यवस्था।
6: संपर्क करें हंसराज भाटोटिया, मोबाइल नंबर 9416347214।
7: और आपके खास समारोह के लिए शानदार राजविलास मैरिज एवं बैंक्वेट हॉल, शिवनगर पार्ट 2, पांचाल कॉलोनी, सीथल रोड, धारूहेड़ा, जिला रेवाड़ी, हरियाणा।
6: बाटोटिया टेंट हाउस और राजविलास मैरिज बैंक्वेट हॉल, आपके समारोह की पूरी तैयारी एक ही जगह। जब बात आपकी मुस्कान की हो तो समझौता क्यों, अब स्पेशलिस्ट डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं। आइए डेंटल एक्सपर्ट्स भिवाड़ी, भिवाड़ी का इकलौता डेंटल क्लिनिक, जहां पूरी टीम MDS स्पेशलिस्ट्स की है और जिन्हें 15 साल से अधिक का अनुभव है। डॉक्टर विनोद यादव, MDS ऑर्थोडोंटिस्ट, भिवाड़ी के एकमात्र ब्रेसेस स्पेशलिस्ट एंड इनविसलाइन प्रोवाइडर। इसके अलावा डेंटल इम्प्लांट्स और जटिल दांतों की समस्याओं का आधुनिक उपचार प्रदान करते हैं। साथ ही डॉक्टर ऋतु यादव, MDS एंडोडोंटिस्ट, रूट कैनाल, स्माइल डिजाइनिंग और फुल माउथ रिहैबिलिटेशन की विशेषज्ञ। डेंटल एक्सपर्ट्स, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट आशियाना आंगन, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 8824232823। डेंटल एक्सपर्ट्स, आपकी मुस्कान हमारी विशेषज्ञता।
7: भिवाड़ी वासियों, अब हर जरूरत की सर्विस सिर्फ एक ऐप पर। मैसन केयर लेकर आया है आपके लिए भरोसेमंद होम और प्रोफेशनल सर्विसेज।
6: बाथरूम डीप क्लीनिंग, किचन डीप क्लीनिंग, पूरे घर की सफाई, ऑफिस क्लीनिंग, जिम क्लीनिंग, कार क्लीनिंग, पानी की टंकी की सफाई, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ड्राइवर सर्विस, कैब बुकिंग और बहुत सारी अन्य सेवाएं। अब सब कुछ एक ही ऐप पर।
7: अभी मेस एंड केयर ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे अपनी पसंद की सर्विस बुक करें।
6: मेस एंड केयर, आपका घर हमारी जिम्मेदारी। बुकिंग के लिए अभी कॉल या व्हाट्सएप करें 8824106060।
11: फ्यूचर लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहे। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
12: गणेश स्टेशनर्स, बेटर देन द बेस्ट,
11: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा A to Z सामान। इसी के साथ यहाँ प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
12: गणेश स्टेशनर्स, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड, नियर हरी राम हॉस्पिटल, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।
13: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: औद्योगिक क्षेत्र सारे खुर्द करौली बंदापुर खुशखेड़ा व चौपानकी में 16 औद्योगिक व 2 वेयर हाउस भूखंडों को ई नीलामी के माध्यम से बेचैन किया जा रहा है। इन भूखंडों के लिए अमानत राशि दिनांक 9/10/2026 समय 6 बजे तक जमा कराकर बिड लगा सकते हैं। बिड लगाने की अंतिम तिथि 14/10/2026 समय 5 बजे तक है। इसके साथ ही औद्योगिक क्षेत्र सलारपुर व पथरेड़ी में 43 भूखंडों को प्रत्यक्ष आवंटन योजना के माध्यम से बेचैन किया जा रहा है। इन भूखंडों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 12/10/2026 समय 6 बजे तक है। अंतिम जानकारी के लिए रिको की वेबसाइट www.riico.co.in यानी www.rico.co.in पर एवं रिको इकाई कार्यालय भिवाड़ी द्वितीय रिको रेस्ट हाउस रोड भिवाड़ी में संपर्क कर सकते हैं।
1: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।

0: मैं जयपुर जा रहा हूँ।
1: अच्छा, तो आते हुए जयपुर के मशहूर दूध लड्डू और प्याज कचौरी लेते आना।
0: अरे, दूध लड्डू और प्याज कचौरी के लिए जयपुर जाने का इंतजार क्यों करना, क्योंकि अब आपके शहर भिवाड़ी में अलवर बाईपास पर खुल चुका है कान्हा स्वीट्स।
1: जी हाँ, कान्हा स्वीट्स पर मिलते हैं स्वादिष्ट दूध लड्डू, प्याज कचौरी, समोसे किसी कलाकंद, रसमलाई, कुल्हड़ रबड़ी और सभी प्रकार की मिठाइयाँ।
0: बिल्कुल, हर मिठाई में स्वाद ऐसा कि एक बार खाएं तो दिल कहे एक और।
1: तो फिर आज मिठास हो जाए कान्हा स्वीट्स के साथ।
0: हाँ, परिवार हो या मेहमान, त्योहार हो या कोई खास खुशी, हर मौके की मिठास कान्हा स्वीट्स के साथ। पता नोट कर लीजिए,
1: शॉप नंबर AG F04, कैपिटल आर्केडिया, अलवर बाईपास इन फ्रंट ऑफ वेदांता फार्म, भिवाड़ी, राजस्थान।
2: मोहाली और गुड़गांव का डेंटल अनुभव अब भिवाड़ी में। आइए वी केयर डेंटल क्लिनिक इम्प्लांट सेंटर, जहां RCT, कैपिंग और डेंटल इम्प्लांट के एक्सपर्ट ट्रीटमेंट के साथ आपको मिलता है डॉक्टर रुकु सिंगला के 16 वर्षों के अनुभव और विशेषज्ञता का भरोसा। आर्मी और कॉर्पोरेट कर्मचारियों के लिए स्पेशल डिस्काउंट। पता, अपोजिट मैकडोनल्ड्स, JMK पेट क्लिनिक के पास, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉल करें 7814399374। वी केयर डेंटल, आपकी मुस्कान हमारा भरोसा।
1: क्या आपकी आँखों की रोशनी से जुड़ी कोई परेशानी है? क्या आप चश्मे से छुटकारा पाना चाहते हैं?
0: तो आइए, आधुनिक सुविधाओं से युक्त मिश्री देवी आई हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी आई सेंटर।
1: पिछले 15 वर्षों से नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में भरोसेमंद सेवाएं, अब बहर रोड, नियम राणा और टपुकड़ा भिवाड़ी में।
0: यहाँ उपलब्ध है मोतियाबिंद, फेको, मल्टीफोकल एवं प्रीमियम लेंस, लेसिक लेजर, कॉर्निया, ग्लूकोमा और रेटिना उपचार एवं सर्जरी की आधुनिक सुविधाएं।
1: और अब दोनों आँखों का लेसिक लेजर उपचार आधुनिक तकनीक के साथ आपकी पहुंच में और उचित दरों पर।
0: बेहतर नेत्र उपचार, उचित खर्च और भरोसेमंद देखभाल के साथ चश्मे से आजादी की ओर बढ़ाइए अपना कदम। मिश्री देवी आई हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी आई सेंटर। संपर्क नंबर
1: 9783220043 या 01493294200। अब आपके शहर भिवाड़ी में साइकियाट्री एवं ऑर्थोपेडिक्स की नियमित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है ओजस हॉस्पिटल में।
0: मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितिका अग्रवाल द्वारा डिप्रेशन, नींद की समस्या, बेचैनी, घबराहट, मानसिक तनाव, स्किजोफ्रेनिया और OCD जैसी समस्याओं का उचित उपचार किया जाता है एवं काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध है।
1: वहीं हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेंद्र अग्रवाल द्वारा चोट, ट्रॉमा, फ्रैक्चर, घुटने एवं कमर का दर्द, लिगामेंट की चोट, गठिया और आर्थराइटिस जैसी हड्डी एवं जोड़ संबंधी समस्याओं का उपचार किया जाता है।
0: साथ ही सर्जरी, फिजियोथेरेपी और पेन मैनेजमेंट की सुविधा भी उपलब्ध है।
1: तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या को नजरअंदाज न करें, पहुंचिए ओजस हॉस्पिटल।
0: पता, नगीना गार्डन के पास, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी।
1: फोन करें

0: 9852133591 ओजस हॉस्पिटल, बेहतर स्वास्थ्य की ओर एक कदम। अब आपके शहर धारूहेड़ा में ही मिल रही है आधुनिक और बेहतरीन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सुविधाएं। लोटस हॉस्पिटल, बेस्ट टैक्स सिटी, BPL फ्लैट के सामने धारूहेड़ा में डॉक्टर अन्विका बंसल, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, 15 वर्ष से अधिक अनुभव के साथ, जो पहले से ही भिवाड़ी में अपनी सेवाएं दे रही थी, अब अपने नए लोटस हॉस्पिटल में OPD और इमरजेंसी सर्विस के लिए उपलब्ध है। इसके साथ ही यहाँ उपलब्ध है अनुभवी हड्डी रोग विशेषज्ञ। यहाँ घुटना बदलना, कुल्हा बदलना और रीढ़ से जुड़ी सभी बीमारी का इलाज होता है, और एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट और लैप्रोस्कोपिक जनरल सर्जन, जहाँ लेजर टेक्निक से बवासीर, भगंदर का इलाज लोटस हॉस्पिटल में मिलता है, तथा 24 घंटे आपातकालीन सुविधा, एडवांस्ड एक्सरे, लैबोरेटरी, फार्मेसी, अल्ट्रासाउंड सर्विस, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, AC प्राइवेट रूम की सुविधाएं उपलब्ध हैं। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आज ही विजिट करें लोटस हॉस्पिटल, बेस्ट टैक्स सिटी, BPL फ्लैट के सामने धारूहेड़ा। संपर्क करें 01274415033।
1: भिवाड़ी का पहला ISO और NABH सर्टिफाइड श्री कृष्णा हॉस्पिटल, जिसमें मल्टी स्पेशलिस्ट OPD, 10 बेड का ICU, सबसे बड़ा मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 50 बेड का इंडोर, 24 आवर्स एम्बुलेंस, फार्मेसी और इमरजेंसी सेवाएं, तथा लैब, डिजिटल एक्सरे जैसी सुविधाओं से लैस श्री कृष्णा हॉस्पिटल अधिकांश मल्टीनेशनल कंपनियों के मेडिकल कंसल्टेंसी एवं कैशलेस उपचार का एकमात्र सेंटर। श्री कृष्णा हॉस्पिटल, B14849 भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी, 8529113916734001391। इस हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट और फिजिशियन की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
2: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव, कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल, B160 भगत सिंह कॉलोनी, सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
3: डॉक्टर अंकित जैन, हड्डी रोग विशेषज्ञ, अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे, किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
2: कान नाक गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
0: आपके हर खास समारोह को शानदार और यादगार बनाने के लिए आइए भाटोटिया टेंट हाउस एंड इवेंट ऑर्गेनाइजर।
4: सभी प्रकार के टेंट आइटम, शानदार डेकोरेशन और इंडोर आउटडोर कैटरिंग की बेहतरीन सुविधा, शादी, सगाई, जन्मदिन या किसी भी समारोह के लिए एक ही जगह पर पूरी व्यवस्था।
0: संपर्क करें हंसराज भाटोटिया, मोबाइल नंबर 9416347214।
4: और आपके खास समारोह के लिए शानदार राजविलास मैरिज एवं बैंक्वेट हॉल, शिवनगर पार्ट 2, पांचाल कॉलोनी, सीथल रोड, धारूहेड़ा, जिला रेवाड़ी, हरियाणा।
0: बाटोटिया टेंट हाउस और राजविलास मैरिज बैंक्वेट हॉल, आपके समारोह की पूरी तैयारी एक ही जगह। भिवाड़ी का भरोसा, वर्षों से आपकी सेवा में। सिटी नर्सिंग होम, सदर मार्केट, भिवाड़ी, औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी का पहला नर्सिंग होम, NABH द्वारा प्रमाणित।
4: यहाँ उपलब्ध हैं 2 आधुनिक ICU, अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, दूरबीन सर्जरी की सुविधा, तथा अधिकांश मेडिक्लेम कंपनियों की कैशलेस सुविधा। डायबिटीज के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर कौशल, मनोरोग परामर्श हेतु डॉक्टर कनिष्का, तथा मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर रूप सिंह की सेवाएं उपलब्ध। अनुभवी डॉक्टर, आधुनिक सुविधाएं और मरीजों की समर्पित देखभाल।
0: सिटी नर्सिंग होम, सदर मार्केट, भिवाड़ी, स्वास्थ्य का भरोसा आपके अपने शहर में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सिटी नर्सिंग होम, भिवाड़ी।
5: अरे कहाँ जा रही हो?
6: मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए अंशुल ज्वेलर्स।
5: अच्छा, पर अंशुल ज्वेलर्स ही क्यों?
6: अंशुल ज्वेलर्स के पास है सोने, चांदी और हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन, वो भी BIS के 6 अंकों वाले हॉलमार्क HUID के साथ। और तो और, इनकी ज्वेलरी को हम भारत सरकार द्वारा चलाए गए BIS केयर ऐप के वेरीफाई HUID फीचर से आभूषणों की शुद्धता का प्रमाण देख सकते हैं।
5: जी हाँ, खरे आभूषणों की प्रामाणिकता, जिसके साथ बढ़ेगी आपकी सुंदरता। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर। हमारा पता, शॉप नंबर 7, गणपति मॉल, समतल मोड़, भिवाड़ी, राजस्थान, या मेन बाजार नजदीक हनुमान मंदिर, टावड़ू, हरियाणा। संपर्क करें 9952336111। या फिर 9354898521 पर। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉरएवर।
7: कभी भी इमरजेंसी हो या सिर्फ एक छोटी सी चेकअप की जरूरत हो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा और भिवाड़ी में आपका अपना हॉस्पिटल है। 24 घंटे इमरजेंसी, एसी प्राइवेट रूम्स, वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर, डिजिटल एक्सरे, क्लिनिकल लैब, टीएमटी, ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी, फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी, स्किन प्रिक एंड ब्लड एलर्जी टेस्ट, एलर्जी का जड़ से इलाज। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं मेडिसिन, सर्जरी, ENT, हेड एंड नेक सर्जरी, ऑब्स एंड गायनी, ऑर्थोपेडिक्स, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कैशलेस फैसिलिटी, सभी TPA के साथ। तो अब टेंशन मत लो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा, प्लॉट नंबर 5, सेक्टर 6 और भिवाड़ी, B83, भगत सिंह कॉलोनी। बस एक कॉल या एक विजिट, नो है 8607274999।
8: भारत अल्ट्रासाउंड एवं डायग्नोस्टिक सेंटर पर अत्याधुनिक MRI, 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 5D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, डिजिटल एक्सरे, DR, TMT, EEG व फुल्ली कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब प्रतिदिन उपलब्ध है।
9: भारत डायग्नोस्टिक्स द्वारा गत 20 वर्षों से MD रेडियोलॉजिस्ट, PGI चंडीगढ़ में प्रशिक्षित अनुभवी डॉक्टर्स द्वारा सभी जांचें की जा रही हैं।
8: भारत डायग्नोस्टिक्स पर 5D अल्ट्रासाउंड मशीन द्वारा लेवल 1 एंड 2 फीटल अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इकोकार्डियोग्राफी, लिवर फाइब्रोस्कैन व 3D CT स्कैन मशीन पर एंजियोग्राफी, यूरोग्राफी व एंटेरोग्राफी की जांच भी की जाती है। 1/57-58 राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, सेंट्रल मार्केट के पास, भिवाड़ी। कॉल 9351004500।
3: दूसरी ब्रांच A50 भगत सिंह कॉलोनी भिवाड़ी, कॉल 8058304500।
10: श्रीराम इंडस्ट्रीज आर्मर जैन, भारत में मेक इन इंडिया पहल के तहत विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाले उत्पादों के निर्माण में एक भरोसेमंद नाम। यहाँ बनते हैं फायर रेटेड और नॉन फायर रेटेड डोर्स, मोटराइज्ड और मैनुअल गेट्स, जनरल पर्पस डोर्स, एक्सेस डोर्स, डॉक लेवलर, फायर हॉज कैबिनेट्स और आपकी जरूरत के मुताबिक कस्टमाइज्ड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस, BIS, CBRI और NABL सर्टिफाइड वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स उचित कीमत पर। आर्मर जैन आपको देता है वादा गुणवत्ता, सुरक्षा और विश्वास का। संपर्क करें 7014735108। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.armorzain.co .in। आर्मर जैन, जब बात हो गुणवत्ता और भरोसे की।
11: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
12: और कोई उम्मीद मत रखना बद्री।
13: उम्मीद पे तो ऐसी ही कहना।

0: मैं जयपुर जा रहा हूँ।
1: अच्छा, तो आते हुए जयपुर के मशहूर दूध लड्डू और प्याज कचौरी लेते आना।
0: अरे, दूध लड्डू और प्याज कचौरी के लिए जयपुर जाने का इंतजार क्यों करना, क्योंकि अब आपके शहर भिवाड़ी में अलवर बाईपास पर खुल चुका है कान्हा स्वीट्स।
1: जी हाँ, कान्हा स्वीट्स पर मिलते हैं स्वादिष्ट दूध लड्डू, प्याज कचौरी, समोसे, किसी कलाकंद, रसमलाई, कुल्हड़, रबड़ी और सभी प्रकार की मिठाइयाँ।
0: बिल्कुल, हर मिठाई में स्वाद ऐसा कि एक बार खाएं तो दिल कहे एक और।
1: तो फिर आज मिठास हो जाए कान्हा स्वीट्स के साथ।
0: हाँ, परिवार हो या मेहमान, त्योहार हो या कोई खास खुशी, हर मौके की मिठास कान्हा स्वीट्स के साथ। पता नोट कर लीजिए,
1: शॉप नंबर AG F04, कैपिटल आर्केडिया, अलवर बाईपास इन फ्रंट ऑफ वेदांता फार्म, भिवाड़ी, राजस्थान।
2: मोहाली और गुड़गांव का डेंटल अनुभव अब भिवाड़ी में। आइए वी केयर डेंटल क्लिनिक इम्प्लांट सेंटर, जहां RCT, कैपिंग और डेंटल इम्प्लांट के एक्सपर्ट ट्रीटमेंट के साथ आपको मिलता है डॉक्टर रुकु सिंगला के 16 वर्षों के अनुभव और विशेषज्ञता का भरोसा। आर्मी और कॉर्पोरेट कर्मचारियों के लिए स्पेशल डिस्काउंट। पता, अपोजिट मैकडोनल्ड्स, JMK पेट क्लिनिक के पास, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉल करें 7814399374। वी केयर डेंटल, आपकी मुस्कान हमारा भरोसा।
1: क्या आपकी आँखों की रोशनी से जुड़ी कोई परेशानी है? क्या आप चश्मे से छुटकारा पाना चाहते हैं?
0: तो आइए आधुनिक सुविधाओं से युक्त मिश्री देवी आई हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी आई सेंटर।
1: पिछले 15 वर्षों से नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में भरोसेमंद सेवाएं, अब बहर रोड, नियम राणा और टपुकड़ा भिवाड़ी में।
0: यहाँ उपलब्ध है मोतियाबिंद, फेको, मल्टीफोकल एवं प्रीमियम लेंस, लेसिक लेजर, कॉर्निया, ग्लूकोमा और रेटिना उपचार एवं सर्जरी की आधुनिक सुविधाएं।
1: और अब दोनों आँखों का लेसिक लेजर उपचार आधुनिक तकनीक के साथ आपकी पहुंच में और उचित दरों पर।
0: बेहतर नेत्र उपचार, उचित खर्च और भरोसेमंद देखभाल के साथ चश्मे से आजादी की ओर बढ़ाइए अपना कदम। मिश्री देवी आई हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी आई सेंटर। संपर्क नंबर
1: 9783220043 या 01493294200। अब आपके शहर भिवाड़ी में साइकियाट्री एवं ऑर्थोपेडिक्स की नियमित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है ओजस हॉस्पिटल में।
0: मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितिका अग्रवाल द्वारा डिप्रेशन, नींद की समस्या, बेचैनी, घबराहट, मानसिक तनाव, स्किजोफ्रेनिया और OCD जैसी समस्याओं का उचित उपचार किया जाता है एवं काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध है।
1: वहीं हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेंद्र अग्रवाल द्वारा चोट, ट्रॉमा, फ्रैक्चर, घुटने एवं कमर का दर्द, लिगामेंट की चोट, गठिया और आर्थराइटिस जैसी हड्डी एवं जोड़ संबंधी समस्याओं का उपचार किया जाता है।
0: साथ ही सर्जरी, फिजियोथेरेपी और पेन मैनेजमेंट की सुविधा भी उपलब्ध है।
1: तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या को नजरअंदाज न करें, पहुंचिए ओजस हॉस्पिटल।
0: पता, नगीना गार्डन के पास, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी।
1: फोन करें 9521333591। ओजस हॉस्पिटल, बेहतर स्वास्थ्य की ओर एक कदम। अब आपके शहर धारूहेड़ा में ही मिल रही है आधुनिक और बेहतरीन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सुविधाएं। लोटस हॉस्पिटल, बेस्ट टैग सिटी, BPL फ्लैट के सामने धारूहेड़ा में, डॉक्टर अन्विका बंसल, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, 15 वर्ष से अधिक अनुभव के साथ, जो पहले से ही भिवाड़ी में अपनी सेवाएं दे रही थी, अब अपने नए लोटस हॉस्पिटल में OPD और इमरजेंसी सर्विस के लिए उपलब्ध हैं। इसके साथ ही यहां उपलब्ध है अनुभवी हड्डी रोग विशेषज्ञ। यहां घुटना बदलना, कुल्हा बदलना और रीढ़ से जुड़ी सभी बीमारी का इलाज होता है, और एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट और लैप्रोस्कोपिक जनरल सर्जन, जहां लेजर टेक्निक से बवासीर, भगंदर का इलाज लोटस हॉस्पिटल में मिलता है, तथा 24 घंटे आपातकालीन सुविधा, एडवांस्ड एक्सरे, लैबोरेटरी, फार्मेसी, अल्ट्रासाउंड सर्विस, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, AC प्राइवेट रूम की सुविधाएं उपलब्ध हैं। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आज ही विजिट करें लोटस हॉस्पिटल, बेस्ट टैग सिटी, BPL फ्लैट के सामने, धारूहेड़ा। संपर्क करें 01274415033।
3: भिवाड़ी का पहला ISO और NABH सर्टिफाइड श्री कृष्णा हॉस्पिटल, जिसमें मल्टी स्पेशलिस्ट OPD, 10 बेड का ICU, सबसे बड़ा मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 50 बेड का इंडोर, 24 आवर्स एम्बुलेंस, फार्मेसी और इमरजेंसी सेवाएं, तथा लैब, डिजिटल एक्सरे जैसी सुविधाओं से लैस श्री कृष्णा हॉस्पिटल अधिकांश मल्टीनेशनल कंपनियों के मेडिकल कंसल्टेंसी एवं कैशलेस उपचार का एकमात्र सेंटर श्री कृष्णा हॉस्पिटल B148-49 भगत सिंह कॉलोनी भिवाड़ी 8529113916 7340013916। इस हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट गायनेकोलॉजिस्ट ENT स्पेशलिस्ट और फिजिशियन की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
4: विजय हॉस्पिटल डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
5: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
4: कान नाक गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
6: आपके हर खास समारोह को शानदार और यादगार बनाने के लिए आइए भाटोटिया टेंट हाउस एंड इवेंट ऑर्गेनाइजर।
7: सभी प्रकार के टेंट आइटम, शानदार डेकोरेशन और इंडोर आउटडोर कैटरिंग की बेहतरीन सुविधा, शादी सगाई जन्मदिन या किसी भी समारोह के लिए एक ही जगह पर पूरी व्यवस्था।
6: संपर्क करें हंस राज भाटोटिया, मोबाइल नंबर 9416347214।
7: और आपके खास समारोह के लिए शानदार राजविलास मैरिज एवं बैंक्वेट हॉल, शिवनगर पार्ट 2, पांचाल कॉलोनी, सीथल रोड, धारूहेड़ा, जिला रेवाड़ी, हरियाणा।
6: बाटोटिया टेंट हाउस और राजविलास मैरिज बैंक्वेट हॉल, आपके समारोह की पूरी तैयारी एक ही जगह।
8: क्या कर रही है?
9: ऑनलाइन बुकिंग देख रही हूँ, जयपुर जाना है।
8: फिर से? अभी तो गई थी।
9: हाँ, फिर से जाना है।
8: तू अपनी गाड़ी क्यों नहीं ले लेती?
9: गाड़ी नॉट इन बजट।
8: अरे गांधी मोटर्स है ना?
9: गांधी मोटर्स?
8: हाँ गांधी मोटर्स। गांधी मोटर्स कार सेल और परचेज के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर हर तरह की गाड़ियाँ बहुत अच्छी कीमत पे मिलती हैं।
9: तो कब चले?
8: अरे इसमें सोचना कैसा, अभी चलना। गाड़ियों के सेल और परचेज के लिए आज ही संपर्क करें।
10: हमारा पता है शॉप नंबर S16 एवलॉन रॉयल प्लाजा, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9785980000 या फिर 8740000144 पर।
11: भिवाड़ी में 27 वर्षों से सेवारत, भरोसेमंद 24 घंटे इलाज हेतु गोपीनाथ अस्पताल, ISO तथा NABH मान्यता एवं राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मल्टी स्पेशलिटी सेंट्रल AC OPD, 50 बेड की सुविधा से युक्त गोपीनाथ हॉस्पिटल, अत्याधुनिक 3 ऑपरेशन थिएटर, 7 बेड ICU, 2 जीवन रक्षक एम्बुलेंस, डिजिटल एक्सरे, ऑर्थोपेडिक सर्जन, फिजिशियन तथा लेडी डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा से युक्त गोपीनाथ अस्पताल। यहाँ नेफ्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, डायबिटोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट की नियमित OPD भी उपलब्ध है। लगभग सभी TPA कैशलेस सुविधा के साथ तथा भिवाड़ी की व आसपास की औद्योगिक इकाइयों के बीमा कंपनियां भी पैनल पर हैं। पता 226 इंडस्ट्रियल एरिया, सदर बाजार के पीछे, गोपीनाथ रोड, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 01493619563 एंड 9784333863।
12: क्या आप बिजली के बिल से परेशान हैं? क्या आप जानते हैं सोलर एनर्जी से आप बिजली के बिल से आजादी पा सकते हैं? जी हाँ, अपने घर, ऑफिस और फैक्ट्री की छत पर सोलर पैनल लगाएं और भारी बिजली के बिल से मुक्ति पाएं। सोलर एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको 30% तक रिटर्न देता है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9610255584। ग्रीन रूट्स रिन्यूएबल एनर्जी।
6: आपकी आंखें हैं अनमोल, आपकी आंखों को चाहिए बेहतर देखभाल, तो आइए गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स भिवाड़ी।
13: यहाँ मिलते हैं सभी ब्रांडेड कंपनियों के स्टाइलिश फ्रेम और हाई क्वालिटी लेंस। Ray-Ban, Vogue, टॉमी हिल्फिगर, ओकेली, प्रदा, जीस, एसिलोर क्रिजाल, विजन आर एक्स और भी कई नेशनल व इंटरनेशनल ब्रांड्स।
6: साथ ही कॉन्टैक्ट लेंस, लो विजन क्लिनिक, मायोपिया क्लिनिक, विजन थेरेपी और आधुनिक मशीनों द्वारा कंप्यूटरीकृत आई एग्जामिनेशन, प्रशिक्षित ऑप्टोमेट्रिस्ट की पूरी टीम।
13: भिवाड़ी में सन 2006 से भरोसे का नाम गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स।
6: गणपति मॉल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास, समतल चौक, भिवाड़ी, और अशियाना आंगन के सामने, BDI सोसाइटी के पास, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी।
7: अपॉइंटमेंट या जानकारी के लिए अभी कॉल करें 9636061776 या 9928929309।
14: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है। कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है, और इन्हीं श्रृंगार को सवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, एक से एक उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A, आशियाना आंगन प्लाजा, नियर मैकडॉनल्ड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉन्टेक्ट करें 01-4934-9322 या फिर 9034-9697-31 पर। ऐसे डिजाइन्स जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्स ही आए।
15: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
16: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
5: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
16: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
17: जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी, आँखों का NABH मान्यता प्राप्त सुपर स्पेशलिटी आँखों का हॉस्पिटल आपके शहर भिवाड़ी में। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी आपको प्रदान करता है विश्व स्तरीय आँखों की देखभाल।
18: हमारे सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल में आपको मिलेगी अनुभवी डॉक्टरों, आई सर्जनों की विशेषज्ञ टीम, पूर्णतः मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर MICS टॉपिकल फैको तकनीक से कैटरेक्ट, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेजर से ऑपरेशन बिना इंजेक्शन और टांके,
17: रेटिना आंख का पर्दा, ग्लूकोमा, काला मोतियाबिंद का उन्नत इलाज, बच्चों की आंखों का इलाज, हमारे पास सभी इंश्योरेंस और TPA पैनल उपलब्ध हैं। निःशुल्क कैशलेस इलाज का लाभ उठाएं।
18: आज ही हमें सेवा का मौका दें। जगदम्बा आई हॉस्पिटल, भगत सिंह कॉलोनी, अलवर बाईपास, हरीश बेकरी के पास, भिवाड़ी।
17: संपर्क करें 7424830174। आज ही अपनी आंखों का इलाज कराएं और पाएं एक उज्जला भविष्य। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी।
19: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं कैशलेस सर्विस के लिए, कहां मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
20: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहां मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंड मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार एसी वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
21: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड नियर बाय, थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इन्फॉर्मेशन कॉल 9799278900।
22: न्यू गर्ल सुपर स्टोर, जहाँ मिलते हैं ग्रोसरीज, ड्राई फ्रूट्स, कॉस्मेटिक्स आइटम और सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स। बजट की दुकान, MRP की छुट्टी, आपका फायदा हमारा वादा। अब वक्त है MRP को कहें बाय बाय। कॉन्टेक्ट करें 7413099952 पर, अलवर बाईपास रोड नियर मार्बल मार्केट, भिवाड़ी।
23: राहुल, इंडस्ट्री प्लान तो बढ़िया है पर इस बार अपनी फैक्ट्री के इलेक्ट्रिकल्स पर एक्स्ट्रा फोकस रखना।
24: डोंट वरी सर, इंडस्ट्री का सारा इलेक्ट्रिकल्स खंडेलवाल एजेंसी से आएगा। ये NCR का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस है, जहां हमें पैनल, स्विच गियर, मोटर ड्राइव, इंडस्ट्रियल लाइटनिंग और वायर एंड केबल में 30 से ज्यादा मल्टीनेशनल ब्रांड ऑप्शंस मिल जाएंगे।
25: खंडेलवाल एजेंसीज, NCR का लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस इन भिवाड़ी।
15: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।

0: अरे यार, आज शाम पार्टी करें?
1: नहीं यार, आज डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाना था।
0: गुरुग्राम? इतनी दूर?
1: हाँ यार, वहीं तो बेस्ट हाइजीन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और पेनलेस ट्रीटमेंट मिलता है।
0: ये बात पहले सही थी, पर अब नहीं।
1: मतलब?
0: गुरुग्राम के ही एक्सपीरियंस्ड डेंटल एक्सपर्ट डॉक्टर जितिन टक्कर पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ मिलता है प्रीमियम सेटअप, एडवांस टेक्नोलॉजी, कंप्लीट हाइजीन और 100% पेनलेस डेंटल ट्रीटमेंट। और सबसे अच्छी बात, चार्जेस दिल्ली और गुरुग्राम से काफी कम।
1: तो फिर दूर जाने का टेंशन खत्म।
0: बिल्कुल, अब एक्सपीरियंस, भरोसा और क्वालिटी सब कुछ घर के पास भिवाड़ी में। आइए 32 Bites डेंटल क्लिनिक, ए ब्लॉक, A140, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। आज ही संपर्क करें डॉक्टर जितिन टक्कर 9871122135। 32 Bites डेंटल क्लिनिक, बेहतर चॉइसेस, बेहतर मुस्कान। अजी, सुनते हो, मेरा फोन टूट गया है।
1: अरे भाग्यवान, सुनो, घबराओ नहीं, खंडेलवाल मोबाइल भिवाड़ी लाया है 0% डाउन पेमेंट पर। मोबाइल फोन 9784960000। और सुनो, ओप्पो ने लॉन्च किया है अभी रेनो 15C कम दामों में, बजाज फाइनेंस के साथ 0% ब्याज, 10% कैश बैक के साथ, प्लस ट्रॉली बैग, 0% डाउन पेमेंट। और बैटरी से हो परेशान तो रियलमी ने लॉन्च किया है अपना एक नया मॉडल 10,000 mAh बैटरी के साथ। अभी जाइए खंडेलवाल मोबाइल पर ढेर सारे गिफ्ट के साथ, नीलम चौक। चिंता क्यों करते हो, बजाज फाइनेंस है ना अपने साथ। 9784960000 और 9828288666।
2: राहुल यार, मैंने नोएडा से जॉब स्विच कर दिया है, अब सोच रही हूँ भिवाड़ी में रेंटल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा।
3: चिंता की कोई बात नहीं, मेगा एयर कंडीशनर्स एंड इलेक्ट्रिक सर्विस है ना, ये पूरे दिल्ली NCR में अपनी रेंटल सर्विस दे रहे हैं। और इनके यहाँ टावर AC, विंडो AC, स्प्लिट AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड LED TV, सभी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
2: लेकिन इनकी सर्विस भिवाड़ी में तो बहुत महंगी होगी ना।
3: बिल्कुल भी नहीं, आपको ये सर्विस सेम रेट पर मिलने वाली है। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9899247102 पर, या फिर विजिट करें www.maces.in पर।
4: ये क्या, अभी भी डीजल कार चला रहे हो? अब समय है स्मार्ट फ्यूल पर स्विच करने का, वो भी ज्यादा बचत के साथ। पेश है विक्टोरिस SCNG। ये स्मार्ट है क्योंकि ये देता है 27.02 किलोमीटर पर KG का शानदार माइलेज, और इसका अंडरबॉडी CNG टैंक बूट स्पेस पर कोई समझौता नहीं करता। ज्यादा बचत भी, क्योंकि अपनी पुरानी डीजल कार के एक्सचेंज पर पाएं 50,000 रुपए तक का फायदा। तो देर किस बात की, आज ही बुक करें, अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम पर जाएं। नियम व शर्तें लागू।
5: विजिट फॉर्च्यून कार्स भिवाड़ी।
6: मॉडर्न अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर भिवाड़ी पर अनुभवी रेडियोलॉजिस्ट व पैथोलॉजिस्ट द्वारा अत्याधुनिक मशीनों से 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 4D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इको कार्डियोग्राफी, डिजिटल एक्सरे, IVP, बैरियम, HSG, डिजिटल OPG, DMT, ECG, EEG, PFT, मैमोग्राफी व फुली एडवांस कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब की सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध है।
7: नियर सरकारी हॉस्पिटल 135 भिवाड़ी, दूसरी ब्रांच मॉडर्न डायग्नोस्टिक एवं इमेजिंग सेंटर, नियर नगर पालिका ऑफिस, अपोजिट अंबेडकर पार्क, धारूहेड़ा। कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800-123-4494 या 9983040100 पर।
8: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 44, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: मैं जयपुर जा रहा हूँ।
1: अच्छा, तो आते हुए जयपुर के मशहूर दूध लड्डू और प्याज कचौरी लेते आना।
0: अरे, दूध लड्डू और प्याज कचौरी के लिए जयपुर जाने का इंतजार क्यों करना? क्योंकि अब आपके शहर भिवाड़ी में अलवर बाईपास पर खुल चुका है कान्हा स्वीट्स।
1: जी हाँ, कान्हा स्वीट्स पर मिलते हैं स्वादिष्ट दूध लड्डू, प्याज कचौरी, समोसे किसी कलाकंद, रस मलाई, कुल्हड़ रबड़ी और सभी प्रकार की मिठाइयाँ।
0: बिल्कुल, हर मिठाई में स्वाद ऐसा कि एक बार खाएं तो दिल कहे एक और।
1: तो फिर आज मिठास हो जाए कान्हा स्वीट्स के साथ।
0: हाँ, परिवार हो या मेहमान, त्योहार हो या कोई खास खुशी, हर मौके की मिठास कान्हा स्वीट्स के साथ। पता नोट कर लीजिए,
1: शॉप नंबर ए GF04, कैपिटल आर्केडिया, अलवर बाईपास इन फ्रंट ऑफ वेदांता फार्म, भिवाड़ी, राजस्थान।
2: मोहाली और गुड़गांव का डेंटल अनुभव अब भिवाड़ी में। आइए वी केयर डेंटल क्लिनिक इम्प्लांट सेंटर, जहां RCT, कैपिंग और डेंटल इम्प्लांट के एक्सपर्ट ट्रीटमेंट के साथ आपको मिलता है डॉक्टर रुकु सिंगला के 16 वर्षों के अनुभव और विशेषज्ञता का भरोसा। आर्मी और कॉर्पोरेट कर्मचारियों के लिए स्पेशल डिस्काउंट। पता, अपोजिट मैकडोनल्ड्स, JMK पेट क्लिनिक के पास, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉल करें 7814399374। वी केयर डेंटल, आपकी मुस्कान हमारा भरोसा।
1: क्या आपकी आँखों की रोशनी से जुड़ी कोई परेशानी है? क्या आप चश्मे से छुटकारा पाना चाहते हैं?
0: तो आइए आधुनिक सुविधाओं से युक्त मिश्री देवी आई हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी आई सेंटर।
1: पिछले 15 वर्षों से नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में भरोसेमंद सेवाएं, अब बाहर रोड, नियम राणा और टपुकड़ा भिवाड़ी में।
0: यहाँ उपलब्ध हैं मोतियाबिंद, फेको, मल्टीफोकल एवं प्रीमियम लेंस, लेसिक लेजर, कॉर्निया, ग्लूकोमा और रेटिना उपचार एवं सर्जरी की आधुनिक सुविधाएं।
1: और अब दोनों आँखों का लेसिक लेजर उपचार आधुनिक तकनीक के साथ आपकी पहुंच में और उचित दरों पर।
0: बेहतर नेत्र उपचार, उचित खर्च और भरोसेमंद देखभाल के साथ चश्मे से आजादी की ओर बढ़ाइए अपना कदम। मिश्री देवी आई हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी आई सेंटर। संपर्क नंबर
1: 9783220043 या 01493294200। अब आपके शहर भिवाड़ी में साइकियाट्री एवं ऑर्थोपेडिक्स की नियमित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है ओजस हॉस्पिटल में।
0: मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितिका अग्रवाल द्वारा डिप्रेशन, नींद की समस्या, बेचैनी, घबराहट, मानसिक तनाव, स्किजोफ्रेनिया और OCD जैसी समस्याओं का उचित उपचार किया जाता है एवं काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध है।
1: वहीं हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेंद्र अग्रवाल द्वारा चोट, ट्रॉमा, फ्रैक्चर, घुटने एवं कमर का दर्द, लिगामेंट की चोट, गठिया और आर्थराइटिस जैसी हड्डी एवं जोड़ संबंधी समस्याओं का उपचार किया जाता है।
0: साथ ही सर्जरी, फिजियोथेरेपी और पेन मैनेजमेंट की सुविधा भी उपलब्ध है।
1: तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या को नजरअंदाज न करें, पहुंचिए ओजस हॉस्पिटल।
0: पता, नगीना गार्डन के पास, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी।
1: फोन करें 9521333591। ओजस हॉस्पिटल, बेहतर स्वास्थ्य की ओर एक कदम। अब आपके शहर धारूहेड़ा में ही मिल रही है आधुनिक और बेहतरीन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सुविधाएं। लोटस हॉस्पिटल, बेस्ट टैक्स सिटी, BPL फ्लैट के सामने धारूहेड़ा में, डॉक्टर अन्विका बंसल, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, 15 वर्ष से अधिक अनुभव के साथ, जो पहले से ही भिवाड़ी में अपनी सेवाएं दे रही थी, अब अपने नए लोटस हॉस्पिटल में OPD और इमरजेंसी सर्विस के लिए उपलब्ध हैं। इसके साथ ही यहाँ उपलब्ध है अनुभवी हड्डी रोग विशेषज्ञ। यहाँ घुटना बदलना, कुल्हा बदलना और रीढ़ से जुड़ी सभी बीमारी का इलाज होता है, और एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट और लैप्रोस्कोपिक जनरल सर्जन, जहाँ लेजर टेक्निक से बवासीर, भगंदर का इलाज लोटस हॉस्पिटल में मिलता है, तथा 24 घंटे आपातकालीन सुविधा, एडवांस्ड एक्सरे, लैबोरेटरी, फार्मेसी, अल्ट्रासाउंड सर्विस, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, AC प्राइवेट रूम की सुविधाएं उपलब्ध हैं। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आज ही विजिट करें लोटस हॉस्पिटल, बेस्ट टैक्स सिटी, BPL फ्लैट के सामने, धारूहेड़ा। संपर्क करें 01274415033।
3: भिवाड़ी का पहला ISO और NABH सर्टिफाइड श्री कृष्णा हॉस्पिटल, जिसमें मल्टी स्पेशलिस्ट OPD, 10 बेड का ICU, सबसे बड़ा मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 50 बेड का इंडोर, 24 आवर्स एम्बुलेंस, फार्मेसी और इमरजेंसी सेवाएं तथा लैब, डिजिटल एक्सरे जैसी सुविधाओं से लैस श्री कृष्णा हॉस्पिटल अधिकांश मल्टीनेशनल कंपनियों के मेडिकल कंसल्टेंसी एवं कैशलेस उपचार का एकमात्र सेंटर। श्री कृष्णा हॉस्पिटल, B14849 भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी, 8529113916, 7340013916। इस हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट और फिजिशियन की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
4: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
5: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे, किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
4: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
6: आपके हर खास समारोह को शानदार और यादगार बनाने के लिए आइए भाटोटिया टेंट हाउस एंड इवेंट ऑर्गेनाइजर।
7: सभी प्रकार के टेंट आइटम, शानदार डेकोरेशन और इंडोर आउटडोर कैटरिंग की बेहतरीन सुविधा, शादी, सगाई, जन्मदिन या किसी भी समारोह के लिए एक ही जगह पर पूरी व्यवस्था।
6: संपर्क करें हंसराज भाटोटिया, मोबाइल नंबर 9416347214।
7: और आपके खास समारोह के लिए शानदार राजविलास मैरिज एवं बैंक्वेट हॉल, शिवनगर पार्ट 2, पांचाल कॉलोनी, सीथल रोड, धारूहेड़ा, जिला रेवाड़ी, हरियाणा।
6: बाटोटिया टेंट हाउस और राजविलास मैरिज बैंक्वेट हॉल, आपके समारोह की पूरी तैयारी एक ही जगह।
2: अब भिवाड़ी के सबसे बड़े NABH सर्टिफाइड SS हॉस्पिटल में स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे पाएं। यहां पाएं स्किन स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, नेफ्रोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी, ब्लड बैंक, एल और डायलिसिस, सभी बड़े TPA, कैशलेस RGHS, ECHS, ESIC, चिरंजीवी योजना की कैशलेस सुविधा, यहां 24 घंटे की इमरजेंसी सेवा और एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें OCF2 ऑपोजिट मॉडर्न पब्लिक स्कूल, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी, कॉन्टैक्ट 7230011191 और 9785013999।
8: टाटा की गाड़ी तो ले ली है, अब भिवाड़ी में सर्विस सेंटर ढूंढते रहो।
9: अरे ढूंढना क्यों है, टाटा ऑथराइज्ड AK ऑटोमोबाइल है ना, जो संजय मोटर्स की ही यूनिट है। 2017 से भिवाड़ी का भरोसा है, टाटा के सर्टिफाइड मैकेनिक्स हैं और वहाँ सर्विसिंग बहुत ही शॉर्ट टाइम में हो जाती है।
8: अच्छा, और उसमें क्या खर्चे ही खर्चे?
9: अरे नहीं नहीं, AK ऑटोमोबाइल्स पर कार सर्विसिंग, बॉडी शॉप और व्हील अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग के अलावा कैशलेस इंश्योरेंस और रिन्यूअल, AMC, ऑन रोड मेंटेनेंस और एक्सीडेंट वारंटी जैसी सारी फैसिलिटीज हैं, जो खर्चे बहुत ही कम कर देती हैं। मेन रोड पर फूलबाग थाने के पास ही है ये।
8: अरे वाह, तो वेट क्यों करना, 9462369786 पे कॉल करके अभी AK ऑटोमोबाइल पे सर्विस बुक करो जल्दी।
10: सोनम, ये लो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट।
11: अरे इसमें क्या है?
10: वही जो तुम्हें बहुत टाइम से चाहिए था।
11: ये ब्रेसलेट तो मुझे बहुत टाइम से चाहिए था।
10: क्या आप इसे दिल्ली से लाए हो?
11: लेकिन आप दिल्ली कब गए?
10: अरे वो है ना, भिवाड़ी में अपने शांति ज्वेलर्स, इनके पास है सोने चांदी हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन और यहां मिलती है हॉलमार्क ज्वेलरी।
11: इनका एड्रेस क्या है?
10: इनका एड्रेस है शॉप नंबर 5, गणपति मॉल, भिवाड़ी। और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9812210987 पर।
12: एक बेहतर कल के लिए, बेहतर मजबूती के लिए, बेहतर बचत के लिए यूज करें SBF रैपिड 550D TMT।
13: मजबूत निर्माण सदा के लिए।
14: मुझे अपने बच्चों के लिए चाहिए एक ऐसा स्कूल जो ICSE से एफिलिएटेड हो।
15: भिवाड़ी में है एक मात्र ऐसा स्कूल SPS ग्लोबल स्कूल, जिसके बच्चों ने ICSE 10th की बोर्ड परीक्षाओं में 100% रिजल्ट के साथ साथ राज्य स्तर पर कराटे, स्केटिंग आदि प्रतियोगिताओं में भी अपने स्कूल का नाम रोशन किया है। यहाँ शिक्षा से बच्चों का बौद्धिक विकास और खेल कूद से शारीरिक विकास, डिसिप्लिन और समय समय पर सामाजिक व सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं होती रहती हैं, जो बच्चों के सर्वांगीण विकास में मदद करता है। यहाँ है बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, खेल का मैदान, SE क्लासरूम, डिजिटल क्लास क्लासरूम, आधुनिक सुविधाओं से लैस लैब, बेस्ट टीचर की फैसिलिटी।
14: SPS ग्लोबल स्कूल नियर कैपिटल मॉल भिवाड़ी। आज ही विजिट करें या कॉल करें 9950888330।
16: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: अब भिलवाड़ी के शिवोहम हॉस्पिटल में पाएं एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं। यहां 25 बेड से लेस इंडोर, 6 बेड से लेस आईसीयू, दो बड़े ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजी लैब तथा अत्याधुनिक एक्सरे मशीनों के द्वारा एक्सरे सुविधा, तकनीकी मशीनों द्वारा जांच, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, एम्बुलेंस, सभी कैशलेस टीपीए सुविधाओं के साथ 14 साल से कम आयु की बच्चियों के लिए निशुल्क परामर्श, गायनेकोलॉजी, इनफर्टिलिटी, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नम्रता मेहता चतुर्वेदी व हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हेमंत चतुर्वेदी जैसे अनुभवी डॉक्टर से परामर्श सुविधा, जो कि पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में निरंतर अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। शिवोहम हॉस्पिटल, B4 भगत सिंह कॉलोनी, पुराने RTO ऑफिस के पास, भिवाड़ी। संपर्क 9799996778।
1: भिवाड़ी का पहला ISO और NABH सर्टिफाइड श्री कृष्णा हॉस्पिटल, जिसमें मल्टी स्पेशलिस्ट OPD, 10 बेड का ICU, सबसे बड़ा मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 50 बेड का इंडोर, 24 आवर्स एम्बुलेंस, फार्मेसी और इमरजेंसी सेवाएं तथा लैब, डिजिटल एक्सरे जैसी सुविधाओं से लैस श्री कृष्णा हॉस्पिटल अधिकांश मल्टीनेशनल कंपनियों के मेडिकल कंसल्टेंसी एवं कैशलेस उपचार का एकमात्र सेंटर। श्री कृष्णा हॉस्पिटल, B14849 भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी, 8529113916, 7340013916। इस हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट और फिजिशियन की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं।
2: क्या आपकी त्वचा, बाल या

0: रेवाड़ी में है डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, जहां पर स्किन, हेयर एंड नेल्स की सभी बीमारियों का पूर्ण इलाज डॉक्टर सुचेता एमडी डर्मेटोलॉजी द्वारा किया जाता है, जो रेवाड़ी में अपनी सेवाएं दे रही है। इनके यहां लेजर हेयर रिमूवल, माइक्रो नीडलिंग, पीआरपी, आरएफ, अन्य सभी स्किन समस्याओं का समाधान विदेशी मशीनों व नई तकनीकों द्वारा किया जाता है। कॉल करें 6367551007। विजिट डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, A56 फर्स्ट फ्लोर, भगत सिंह कॉलोनी, बिहाइंड सुखम टावर, भिवाड़ी।
1: आपके सारे जरूरतों का बीमा एक ही जगह, विधि एंटरप्राइजेज भिवाड़ी। स्वास्थ्य बीमा, वाहन बीमा, जीवन बीमा, फायर बीमा, सब मिलेगा यहाँ। और हाँ, बीमा कराने पर खास ऑफर भी मिलेंगे। संपर्क करें चंद्रभान, विधि एंटरप्राइजेज, रिको चौक, भिवाड़ी, 9887066308।
2: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: मैं जयपुर जा रहा हूँ।
1: अच्छा, तो आते हुए जयपुर के मशहूर दूध लड्डू और प्याज कचौरी लेते आना।
0: अरे, दूध लड्डू और प्याज कचौरी के लिए जयपुर जाने का इंतजार क्यों करना, क्योंकि अब आपके शहर भिवाड़ी में अलवर बाईपास पर खुल चुका है कान्हा स्वीट्स।
1: जी हाँ, कान्हा।

0: स्वीट्स पर मिलते हैं। स्वादिष्ट दूध लड्डू, प्याज कचौरी, समोसे किसी कलाकंद, रसमलाई, कुल्हड़ रबड़ी और सभी प्रकार की मिठाइयाँ।
1: बिल्कुल, हर मिठाई में स्वाद ऐसा कि एक बार खाएं तो दिल कहे एक और।
0: तो फिर आज मिठास हो जाए कान्हा स्वीट्स के साथ।
1: हाँ, परिवार हो या मेहमान, त्योहार हो या कोई खास खुशी, हर मौके की मिठास कान्हा स्वीट्स के साथ। पता नोट कर लीजिए,
0: शॉप नंबर ए GF04, कैपिटल आर्केडिया, अलवर बाईपास इन फ्रंट ऑफ वेदांता फार्म, भिवाड़ी, राजस्थान।
2: मोहाली और गुड़गांव का डेंटल अनुभव अब भिवाड़ी में। आइए वी केयर डेंटल क्लिनिक इम्प्लांट सेंटर, जहां RCT, कैपिंग और डेंटल इम्प्लांट के एक्सपर्ट ट्रीटमेंट के साथ आपको मिलता है डॉक्टर रुकु सिंगला के 16 वर्षों के अनुभव और विशेषज्ञता का भरोसा। आर्मी और कॉर्पोरेट कर्मचारियों के लिए स्पेशल डिस्काउंट। पता, अपोजिट मैकडोनल्ड्स, JMK पेट क्लिनिक के पास, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉल करें 7814399374। वी केयर डेंटल, आपकी मुस्कान हमारा भरोसा।
0: क्या आपकी आँखों की रोशनी से जुड़ी कोई परेशानी है? क्या आप चश्मे से छुटकारा पाना चाहते हैं?
1: तो आइए आधुनिक सुविधाओं से युक्त मिश्री देवी आई हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी आई सेंटर।
0: पिछले 15 वर्षों से नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में भरोसेमंद सेवाएं, अब बाहर रोड, नियम राणा और टपुकड़ा भिवाड़ी में।
1: यहाँ उपलब्ध है मोतियाबिंद, फेको, मल्टीफोकल एवं प्रीमियम लेंस, लेसिक लेजर, कॉर्निया, ग्लूकोमा और रेटिना उपचार एवं सर्जरी की आधुनिक सुविधाएं।
0: और अब दोनों आँखों का लेसिक लेजर उपचार आधुनिक तकनीक के साथ आपकी पहुँच में और उचित दरों पर।
1: बेहतर नेत्र उपचार, उचित खर्च और भरोसेमंद देखभाल के साथ चश्मे से आजादी की ओर बढ़ाइए अपना कदम। मिश्री देवी आई हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी आई सेंटर। संपर्क नंबर
0: 9783220043 या 01493294200। अब आपके शहर भिवाड़ी में साइकियाट्री एवं ऑर्थोपेडिक्स की नियमित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है ओजस हॉस्पिटल में।
1: मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितिका अग्रवाल द्वारा डिप्रेशन, नींद की समस्या, बेचैनी, घबराहट, मानसिक तनाव, स्किजोफ्रेनिया और OCD जैसी समस्याओं का उचित उपचार किया जाता है एवं काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध है।
0: वहीं हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेंद्र अग्रवाल द्वारा चोट, ट्रॉमा, फ्रैक्चर, घुटने एवं कमर का दर्द, लिगामेंट की चोट, गठिया और आर्थराइटिस जैसी हड्डी एवं जोड़ संबंधी समस्याओं का उपचार किया जाता है।
1: साथ ही सर्जरी, फिजियोथेरेपी और पेन मैनेजमेंट की सुविधा भी उपलब्ध है।
0: तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या को नजरअंदाज न करें, पहुंचिए ओजस हॉस्पिटल।
1: पता, नगीना गार्डन के पास, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी।
0: फोन करें 9521333591। ओजस हॉस्पिटल, बेहतर स्वास्थ्य की ओर एक कदम। अब आपके शहर धारूहेड़ा में ही मिल रही है आधुनिक और बेहतरीन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सुविधाएं। लोटस हॉस्पिटल, बेस्ट टैक्स सिटी, BPL फ्लैट के सामने धारूहेड़ा में, डॉक्टर अन्विका बंसल, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, 15 वर्ष से अधिक अनुभव के साथ, जो पहले से ही भिवाड़ी में अपनी सेवाएं दे रही थी, अब अपने नए लोटस हॉस्पिटल में OPD और इमरजेंसी सर्विस के लिए उपलब्ध हैं। इसके साथ ही यहां उपलब्ध है अनुभवी हड्डी रोग विशेषज्ञ। यहां घुटना बदलना, कुल्हा बदलना और रीढ़ से जुड़ी सभी बीमारी का इलाज होता है, और एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट और लैप्रोस्कोपिक जनरल सर्जन, जहां लेजर टेक्निक से बवासीर, भगंदर का इलाज लोटस हॉस्पिटल में मिलता है, तथा 24 घंटे आपातकालीन सुविधा, एडवांस्ड एक्सरे, लैबोरेटरी, फार्मेसी, अल्ट्रासाउंड सर्विस, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, AC प्राइवेट रूम की सुविधाएं उपलब्ध हैं। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आज ही विजिट करें लोटस हॉस्पिटल, बेस्ट टैक्स सिटी, BPL फ्लैट के सामने, धारूहेड़ा। संपर्क करें 01274415033।
3: भिवाड़ी का पहला ISO और NABH सर्टिफाइड श्री कृष्णा हॉस्पिटल, जिसमें मल्टी स्पेशलिस्ट OPD, 10 बेड का ICU, सबसे बड़ा मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 50 बेड का इंडोर, 24 आवर्स एम्बुलेंस, फार्मेसी और इमरजेंसी सेवाएं, तथा लैब, डिजिटल एक्सरे जैसी सुविधाओं से लैस श्री कृष्णा हॉस्पिटल अधिकांश मल्टीनेशनल कंपनियों के मेडिकल कंसल्टेंसी एवं कैशलेस उपचार का एकमात्र सेंटर। श्री कृष्णा हॉस्पिटल, B148-49, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी, 8529113916। 7340013916। इस हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट और फिजिशियन की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
4: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
5: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
4: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
6: आपके हर खास समारोह को शानदार और यादगार बनाने के लिए आइए भाटोटिया टेंट हाउस एंड इवेंट ऑर्गेनाइजर।
1: सभी प्रकार के टेंट आइटम, शानदार डेकोरेशन और इंडोर आउटडोर कैटरिंग की बेहतरीन सुविधा, शादी, सगाई, जन्मदिन या किसी भी समारोह के लिए एक ही जगह पर पूरी व्यवस्था।
6: संपर्क करें हंसराज भाटोटिया, मोबाइल नंबर 9416347214।
1: और आपके खास समारोह के लिए शानदार राजविलास मैरिज एवं बैंक्वेट हॉल, शिवनगर पार्ट 2, पांचाल कॉलोनी, सीथल रोड, धारूहेड़ा, जिला रेवाड़ी, हरियाणा।
6: बाटोटिया टेंट हाउस और राजविलास मैरिज बैंक्वेट हॉल, आपके समारोह की पूरी तैयारी एक ही जगह।
7: आपनो देश आपनो रंग, सब मिले आपनो बाजार के संग। जी हाँ, आपनो बाजार आपका कंप्लीट फैमिली स्टोर, जहाँ उत्तम क्वालिटी और वाजिब दामों के साथ आपको मिलता है किराना, ग्रोसरी आइटम, कॉस्मेटिक, हाउसकीपिंग, हाउसहोल्ड आइटम, गिफ्ट आइटम, क्रॉकरी, टॉयज एंड गेम्स। इन सभी आइटम के MRP दामों पर खास छूट। इतना ही नहीं, फ्री होम डिलीवरी की सुविधा भी है। इनके स्टोर अलवर बाईपास, थड़ा रोड, भिवाड़ी, कृष्ण मॉल, टपुकड़ा आशियाना विलेज सेंटर। संपर्क करें 9680870184 या फिर 7822091287।
8: अरे, प्लांट का तो सारा काम हो गया, अब LED लाइट कहाँ से खरीदें?
9: सर, क्या आपको नहीं पता है नैप LED लाइटिंग कंपनी इंडस्ट्रियल लाइटिंग जैसे फ्लड लाइट, हाईवे लाइट, स्ट्रीट लाइट आदि के साथ साथ सभी प्रकार की LED लाइट बनाती है, वो भी 2 साल की वारंटी के साथ। और इतना ही नहीं, वो इंडस्ट्रियल लाइटिंग कंसल्टेंट सर्विस भी फ्री देते हैं।
8: अरे वाह, इनसे संपर्क कैसे करें?
9: सर, इनका सेल्स ऑफिस एड्रेस JFF 22, कैपिटल हाई स्ट्रीट, फूलबाग चौक, भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए नैप LED लाइटिंग कंपनी से संपर्क करें 7988627064।
6: आपके हर खास समारोह को शानदार और यादगार बनाने के लिए आइए भाटोटिया टेंट हाउस एंड इवेंट ऑर्गेनाइजर।
1: सभी प्रकार के टेंट आइटम, शानदार डेकोरेशन और इंडोर आउटडोर कैटरिंग की बेहतरीन सुविधा, शादी, सगाई, जन्मदिन या किसी भी समारोह के लिए एक ही जगह पर पूरी व्यवस्था।
6: संपर्क करें हंसराज भाटोटिया, मोबाइल नंबर 9416347214।
1: और आपके खास समारोह के लिए शानदार राजविलास मैरिज एवं बैंक्वेट हॉल, शिवनगर पार्ट 2, पांचाल कॉलोनी, सीथल रोड, धारूहेड़ा, जिला रेवाड़ी, हरियाणा।
6: बाटोटिया टेंट हाउस और राजविलास मैरिज बैंक्वेट हॉल, आपके समारोह की पूरी तैयारी एक ही जगह। जब बात आपकी मुस्कान की हो तो समझौता क्यों, अब स्पेशलिस्ट डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं। आइए डेंटल एक्सपर्ट्स भिवाड़ी, भिवाड़ी का इकलौता डेंटल क्लिनिक, जहां पूरी टीम MDS स्पेशलिस्ट्स की है और जिन्हें 15 साल से अधिक का अनुभव है। डॉक्टर विनोद यादव MDS ऑर्थोडोंटिस्ट, भिवाड़ी के एकमात्र ब्रेसेस स्पेशलिस्ट एंड इनविसलाइन प्रोवाइडर। इसके अलावा डेंटल इम्प्लांट्स और जटिल दांतों की समस्याओं का आधुनिक उपचार प्रदान करते हैं। साथ ही डॉक्टर ऋतु यादव MDS एंडोडोंटिस्ट, रूट कैनाल, स्माइल डिजाइनिंग और फुल माउथ रिहेबिलिटेशन की विशेषज्ञ। डेंटल एक्सपर्ट्स, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट आशियाना आंगन, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 8824232823। डेंटल एक्सपर्ट्स, आपकी मुस्कान हमारी विशेषज्ञता।
1: भिवाड़ी वासियों, अब हर जरूरत की सर्विस सिर्फ एक ऐप पर, मैसन केयर लेकर आया है आपके लिए भरोसेमंद होम और प्रोफेशनल सर्विसेज।
6: बाथरूम डीप क्लीनिंग, किचन डीप क्लीनिंग, पूरे घर की सफाई, ऑफिस क्लीनिंग, जिम क्लीनिंग, कार क्लीनिंग, पानी की टंकी की सफाई, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ड्राइवर सर्विस, कैब बुकिंग और बहुत सारी अन्य सेवाएं। अब सब कुछ एक ही ऐप पर।
1: अभी मेस एन केयर ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे अपनी पसंद की सर्विस बुक करें।
6: मेस एन केयर, आपका घर हमारी जिम्मेदारी। बुकिंग के लिए अभी कॉल या व्हाट्सएप करें 8824106060।
10: फ्यूचर लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहें। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
11: गणेश स्टेशनर्स, बेटर देन द बेस्ट,
10: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा A to Z सामान। इसी के साथ यहां प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
11: गणेश स्टेशनर्स, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड, नियर हरि राम हॉस्पिटल, भिवारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।
12: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: मैं जयपुर जा रहा हूँ।
1: अच्छा, तो आते हुए जयपुर के मशहूर दूध लड्डू और प्याज कचौरी लेते आना।
0: अरे, दूध लड्डू और प्याज कचौरी के लिए जयपुर जाने का इंतजार क्यों करना, क्योंकि अब आपके शहर भिवाड़ी में अलवर बाईपास पर खुल चुका है कान्हा स्वीट्स।
1: जी हाँ, कान्हा स्वीट्स पर मिलते हैं स्वादिष्ट दूध लड्डू, प्याज कचौरी, समोसे, किसी कलाकंद, रसमलाई, कुल्हड़, रबड़ी और सभी प्रकार की मिठाइयाँ।
0: बिल्कुल, हर मिठाई में स्वाद ऐसा कि एक बार खाएं तो दिल कहे एक और।
1: तो फिर आज मिठास हो जाए कान्हा स्वीट्स के साथ।
0: हाँ, परिवार हो या मेहमान, त्योहार हो या कोई खास खुशी, हर मौके की मिठास कान्हा स्वीट्स के साथ। पता नोट कर लीजिए,
1: शॉप नंबर AG F04, कैपिटल आर्केडिया, अलवर बाईपास इन फ्रंट ऑफ वेदांता फार्म, भिवाड़ी, राजस्थान।
2: मोहाली और गुड़गांव का डेंटल अनुभव अब भिवाड़ी में। आइए वी केयर डेंटल क्लिनिक इम्प्लांट सेंटर, जहां RCT, कैपिंग और डेंटल इम्प्लांट के एक्सपर्ट ट्रीटमेंट के साथ आपको मिलता है डॉक्टर रुकु सिंगला के 16 वर्षों के अनुभव और विशेषज्ञता का भरोसा। आर्मी और कॉर्पोरेट कर्मचारियों के लिए स्पेशल डिस्काउंट। पता, अपोजिट मैकडोनल्ड्स, JMK पेट क्लिनिक के पास, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉल करें 7814399374। वी केयर डेंटल, आपकी मुस्कान हमारा भरोसा।
1: क्या आपकी आँखों की रोशनी से जुड़ी कोई परेशानी है? क्या आप चश्मे से छुटकारा पाना चाहते हैं?
0: तो आइए आधुनिक सुविधाओं से युक्त मिश्री देवी आई हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी आई सेंटर।
1: पिछले 15 वर्षों से नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में भरोसेमंद सेवाएं, अब बाहर रोड, नियम राणा और टपूकड़ा भिवाड़ी में।
0: यहाँ उपलब्ध है मोतियाबिंद, फेको, मल्टीफोकल एवं प्रीमियम लेंस, लेसिक लेजर, कॉर्निया, ग्लूकोमा और रेटिना उपचार एवं सर्जरी की आधुनिक सुविधाएं।
1: और अब दोनों आँखों का लेसिक लेजर उपचार आधुनिक तकनीक के साथ आपकी पहुँच में और उचित दरों पर।
0: बेहतर नेत्र उपचार, उचित खर्च और भरोसेमंद देखभाल के साथ चश्मे से आजादी की ओर बढ़ाइए अपना कदम। मिश्री देवी आई हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी आई सेंटर। संपर्क नंबर
1: 9783220043 या 01493294200। अब आपके शहर भिवाड़ी में साइकियाट्री एवं ऑर्थोपेडिक्स की नियमित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है ओजस हॉस्पिटल में।
0: मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितिका अग्रवाल द्वारा डिप्रेशन, नींद की समस्या, बेचैनी, घबराहट, मानसिक तनाव, स्किजोफ्रेनिया और OCD जैसी समस्याओं का उचित उपचार किया जाता है एवं काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध है।
1: वहीं हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेंद्र अग्रवाल द्वारा चोट, ट्रॉमा, फ्रैक्चर, घुटने एवं कमर का दर्द, लिगामेंट की चोट, गठिया और आर्थराइटिस जैसी हड्डी एवं जोड़ संबंधी समस्याओं का उपचार किया जाता है।
0: साथ ही सर्जरी, फिजियोथेरेपी और पेन मैनेजमेंट की सुविधा भी उपलब्ध है।
1: तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या को नजरअंदाज न करें, पहुंचिए ओजस हॉस्पिटल।
0: पता, नगीना गार्डन के पास, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी।
1: फोन करें 9521333591। ओजस हॉस्पिटल, बेहतर स्वास्थ्य की ओर एक कदम। अब आपके शहर धारूहेड़ा में ही मिल रही है आधुनिक और बेहतरीन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सुविधाएं। लोटस हॉस्पिटल, बेस्ट टैक्स सिटी, BPL फ्लैट के सामने धारूहेड़ा में, डॉक्टर अन्विका बंसल, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, 15 वर्ष से अधिक अनुभव के साथ, जो पहले से ही भिवाड़ी में अपनी सेवाएं दे रही थी, अब अपने नए लोटस हॉस्पिटल में OPD और इमरजेंसी सर्विस के लिए उपलब्ध हैं। इसके साथ ही यहाँ उपलब्ध है अनुभवी हड्डी रोग विशेषज्ञ। यहाँ घुटना बदलना, कुल्हा बदलना और रीढ़ से जुड़ी सभी बीमारी का इलाज होता है, और एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट और लैप्रोस्कोपिक जनरल सर्जन, जहाँ लेजर टेक्निक से बवासीर, भगंदर का इलाज लोटस हॉस्पिटल में मिलता है, तथा 24 घंटे आपातकालीन सुविधा, एडवांस्ड एक्सरे, लैबोरेटरी, फार्मेसी, अल्ट्रासाउंड सर्विस, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, AC प्राइवेट रूम की सुविधाएं उपलब्ध हैं। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आज ही विजिट करें लोटस हॉस्पिटल, बेस्ट टैक्स सिटी, BPL फ्लैट के सामने, धारूहेड़ा। संपर्क करें 01274415033।
3: भिवाड़ी का पहला ISO और NABH सर्टिफाइड श्री कृष्णा हॉस्पिटल, जिसमें मल्टी स्पेशलिस्ट OPD, 10 बेड का ICU, सबसे बड़ा मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 50 बेड का इंडोर, 24 आवर्स एम्बुलेंस, फार्मेसी और इमरजेंसी सेवाएं तथा लैब, डिजिटल एक्सरे जैसी सुविधाओं से लैस श्री कृष्णा हॉस्पिटल अधिकांश मल्टीनेशनल कंपनियों के मेडिकल कंसल्टेंसी एवं कैशलेस उपचार का एकमात्र सेंटर। श्री कृष्णा हॉस्पिटल, B14849 भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी, 8529113916, 7340013916। इस हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट और फिजिशियन की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
4: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
5: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
4: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
6: आपके हर खास समारोह को शानदार और यादगार बनाने के लिए आइए भाटोटिया टेंट हाउस एंड इवेंट ऑर्गेनाइजर।
7: सभी प्रकार के टेंट आइटम, शानदार डेकोरेशन और इंडोर आउटडोर कैटरिंग की बेहतरीन सुविधा, शादी, सगाई, जन्मदिन या किसी भी समारोह के लिए एक ही जगह पर पूरी व्यवस्था।
6: संपर्क करें हंसराज भाटोटिया, मोबाइल नंबर 9416347214।
7: और आपके खास समारोह के लिए शानदार राजविलास मैरिज एवं बैंक्वेट हॉल, शिवनगर पार्ट 2, पांचाल कॉलोनी, सीथल रोड, धारूहेड़ा, जिला रेवाड़ी, हरियाणा।
6: बाटोटिया टेंट हाउस और राजविलास मैरिज बैंक्वेट हॉल, आपके समारोह की पूरी तैयारी एक ही जगह।
8: औद्योगिक क्षेत्र सारे खुद, करौली, बंदापुर, खुशखेड़ा व चौपानकी में 16 औद्योगिक व 2 वेयर हाउस भूखंडों को ई नीलामी के माध्यम से बेचान किया जा रहा है। इन भूखंडों के लिए अमानत राशि दिनांक 9/10/2026 समय 6 बजे तक जमा कराकर बिड लगा सकते हैं। बिड लगाने की अंतिम तिथि 14/10/2026 समय 5 बजे तक है। इसके साथ ही औद्योगिक क्षेत्र सलारपुर व पथरेड़ी में 43 भूखंडों को प्रत्यक्ष आवंटन योजना के माध्यम से बेचान किया जा रहा है। इन भूखंडों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 12/10/2026 समय 6 बजे तक है। अंतिम जानकारी के लिए रिको की वेबसाइट www.riico.co.in यानी www.rico.co.in पर एवं रिको इकाई कार्यालय भिवाड़ी, द्वितीय रिको रेस्ट हाउस रोड, भिवाड़ी में संपर्क कर सकते हैं।
9: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: भिवाड़ी का भरोसा वर्षों से आपकी सेवा में। सिटी नर्सिंग होम सदर मार्केट भिवाड़ी, औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी का पहला नर्सिंग होम NABH द्वारा प्रमाणित।
1: यहाँ उपलब्ध है 2 आधुनिक ICU, अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, दूरबीन सर्जरी की सुविधा तथा अधिकांश मेडिक्लेम कंपनियों की कैशलेस सुविधा, डायबिटीज के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर कौशल, मनोरोग परामर्श हेतु डॉक्टर कनिष्का तथा मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर रूप सिंह की सेवाएं उपलब्ध। अनुभवी डॉक्टर, आधुनिक सुविधाएं और मरीजों की समर्पित देखभाल।
0: सिटी नर्सिंग होम सदर मार्केट भिवाड़ी, स्वास्थ्य का भरोसा आपके अपने शहर में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सिटी नर्सिंग होम भिवाड़ी।
2: अरे कहाँ जा रही हो?
3: मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए अंशुल ज्वेलर्स।
2: अच्छा, पर अंशुल ज्वेलर्स से क्यों?
3: अंशुल ज्वेलर्स के पास है सोने, चांदी और हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन, वो भी DIS के 6 अंकों वाले हॉलमार्क HUID के साथ। और तो और, इनकी ज्वेलरी को हम भारत सरकार द्वारा चलाए गए BIS केयर ऐप के वेरीफाई HUID फीचर से आभूषणों की शुद्धता का प्रमाण देख सकते हैं।
2: जी हाँ, खरे आभूषणों की प्रामाणिकता जिसके साथ बढ़ेगी आपकी सुंदरता। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर। हमारा पता शॉप नंबर 7 गणपति मॉल समतल मोड़ भिवाड़ी राजस्थान, या मेन बाजार नजदीक हनुमान मंदिर टावड़ो हरियाणा। संपर्क करें 9992533611 या फिर 9354898521 पर। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर।
4: कभी भी इमरजेंसी हो या सिर्फ एक छोटी सी चेकअप की जरूरत हो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा और भिवाड़ी में आपका अपना हॉस्पिटल है। 24 घंटे इमरजेंसी, AC प्राइवेट रूम्स, वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर, डिजिटल एक्सरे, क्लिनिकल लैब, TMT, ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी, फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी, स्किन प्रिक एंड ब्लड एलर्जी टेस्ट, एलर्जी का जड़ से इलाज। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, मेडिसिन, सर्जरी, ENT, हेड एंड नेक सर्जरी, ऑब्स एंड गाइनी, ऑर्थोपेडिक्स, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कैशलेस फैसिलिटी, सभी TPA के साथ। तो अब टेंशन मत लो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा, प्लॉट नंबर 5, सेक्टर 6 और भिवाड़ी, B83, भगत सिंह कॉलोनी। बस एक कॉल या एक विजिट, नो है 8607274999।
5: भारत अल्ट्रासाउंड एवं डायग्नोस्टिक सेंटर पर अत्याधुनिक MRI, 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 5D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, डिजिटल एक्सरे, DR, TMT, EEG व फुल्ली कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब प्रतिदिन उपलब्ध है।
6: भारत डायग्नोस्टिक्स द्वारा गत 20 वर्षों से MT रेडियोलॉजिस्ट PGI चंडीगढ़ में प्रशिक्षित अनुभवी डॉक्टर्स द्वारा सभी जांचें की जा रही हैं।
5: भारत डायग्नोस्टिक्स पर 5D अल्ट्रासाउंड मशीन द्वारा लेवल 1 एंड 2 फीटल अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इको कार्डियोग्राफी, लिवर फाइब्रो स्कैन व 3D CT स्कैन मशीन पर एंजियोग्राफी, यूरोग्राफी व एंटेरोग्राफी की जांच भी की जाती है। 1/57-58 राजस्थान हाउसिंग बोर्ड सेंट्रल मार्केट के पास भिवाड़ी। कॉल 9351004500।
7: दूसरी ब्रांच A50 भगत सिंह कॉलोनी भिवाड़ी। कॉल 8058304500।
8: श्रीराम इंडस्ट्रीज आर्मर जैन, भारत में मेक इन इंडिया पहल के तहत विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाले उत्पादों के निर्माण में एक भरोसेमंद नाम। यहाँ बनते हैं फायर रेटेड और नॉन फायर रेटेड डोर्स, मोटराइज्ड और मैनुअल गेट्स, जनरल पर्पस डोर्स, एक्सेस डोर्स, डॉक लेवलर, फायर हॉज कैबिनेट्स और आपकी जरूरत के मुताबिक कस्टमाइज्ड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस, BIS, CBRI और NABL सर्टिफाइड वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स उचित कीमत पर। आर्मर जैन आपको देता है वादा गुणवत्ता, सुरक्षा और विश्वास का। संपर्क करें 7014735108। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.armorzain.co.in। आर्मर जैन, जब बात हो गुणवत्ता और भरोसे की।
9: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: अरे मैडम आइए आइए, कैसी हैं आप? ये रहा आपकी शादी का कार्ड। अरे वाह,
1: थैंक यू।
2: या इट्स नाइस।
3: भैया खुद डिजाइन करके गए थे?
2: ये रहा डिजाइन।

0: मैं जयपुर जा रहा हूँ।
1: अच्छा, तो आते हुए जयपुर के मशहूर दूध लड्डू और प्याज कचौरी लेते आना।
0: अरे, दूध लड्डू और प्याज कचौरी के लिए जयपुर जाने का इंतजार क्यों करना, क्योंकि अब आपके शहर भिवाड़ी में अलवर बाईपास पर खुल चुका है कान्हा स्वीट्स।
1: जी हाँ, कान्हा स्वीट्स पर मिलते हैं स्वादिष्ट दूध लड्डू, प्याज कचौरी, समोसे किसी कलाकंद, रसमलाई, कुल्हड़ रबड़ी और सभी प्रकार की मिठाइयाँ।
0: बिल्कुल, हर मिठाई में स्वाद ऐसा कि एक बार खाएं तो दिल कहे एक और।
1: तो फिर आज मिठास हो जाए कान्हा स्वीट्स के साथ।
0: हाँ, परिवार हो या मेहमान, त्योहार हो या कोई खास खुशी, हर मौके की मिठास कान्हा स्वीट्स के साथ। पता नोट कर लीजिए,
1: शॉप नंबर A GF04, कैपिटल आर्केडिया, अलवर बाईपास इन फ्रंट ऑफ वेदांता फार्म, भिवाड़ी, राजस्थान।
2: मोहाली और गुड़गांव का डेंटल अनुभव अब भिवाड़ी में। आइए वी केयर डेंटल क्लिनिक इम्प्लांट सेंटर, जहां RCT, कैपिंग और डेंटल इम्प्लांट के एक्सपर्ट ट्रीटमेंट के साथ आपको मिलता है डॉक्टर रुकु सिंगला के 16 वर्षों के अनुभव और विशेषज्ञता का भरोसा। आर्मी और कॉर्पोरेट कर्मचारियों के लिए स्पेशल डिस्काउंट। पता, अपोजिट मैकडोनल्ड्स, JMK पेट क्लिनिक के पास, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉल करें 7814399374। वी केयर डेंटल, आपकी मुस्कान हमारा भरोसा।
1: क्या आपकी आँखों की रोशनी से जुड़ी कोई परेशानी है? क्या आप चश्मे से छुटकारा पाना चाहते हैं?
0: तो आइए, आधुनिक सुविधाओं से युक्त मिश्री देवी आई हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी आई सेंटर।
1: पिछले 15 वर्षों से नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में भरोसेमंद सेवाएं, अब बहर रोड, नियम राणा और टपूकड़ा भिवाड़ी में।
0: यहाँ उपलब्ध है मोतियाबिंद, फेको, मल्टीफोकल एवं प्रीमियम लेंस, लेसिक लेजर, कॉर्निया, ग्लूकोमा और रेटिना उपचार एवं सर्जरी की आधुनिक सुविधाएं।
1: और अब दोनों आँखों का लेसिक लेजर उपचार आधुनिक तकनीक के साथ आपकी पहुंच में और उचित दरों पर।
0: बेहतर नेत्र उपचार, उचित खर्च और भरोसेमंद देखभाल के साथ चश्मे से आजादी की ओर बढ़ाइए अपना कदम। मिश्री देवी आई हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी आई सेंटर। संपर्क नंबर
1: 9783220043 या 01493294200। अब आपके शहर भिवाड़ी में साइकियाट्री एवं ऑर्थोपेडिक्स की नियमित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है ओजस हॉस्पिटल में।
0: मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितिका अग्रवाल द्वारा डिप्रेशन, नींद की समस्या, बेचैनी, घबराहट, मानसिक तनाव, स्किजोफ्रेनिया और OCD जैसी समस्याओं का उचित उपचार किया जाता है एवं काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध है।
1: वहीं हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेंद्र अग्रवाल द्वारा चोट, ट्रॉमा, फ्रैक्चर, घुटने एवं कमर का दर्द, लिगामेंट की चोट, गठिया और आर्थराइटिस जैसी हड्डी एवं जोड़ संबंधी समस्याओं का उपचार किया जाता है।
0: साथ ही सर्जरी, फिजियोथेरेपी और पेन मैनेजमेंट की सुविधा भी उपलब्ध है।
1: तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या को नजरअंदाज न करें, पहुंचिए ओजस हॉस्पिटल।
0: पता, नगीना गार्डन के पास, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी।
1: फोन करें 9521333591। ओजस हॉस्पिटल, बेहतर स्वास्थ्य की ओर एक कदम। अब आपके शहर धारूहेड़ा में ही मिल रही है आधुनिक और बेहतरीन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सुविधाएं। लोटस हॉस्पिटल, बेस्ट टैग सिटी, BPL फ्लैट के सामने धारूहेड़ा में, डॉक्टर अन्विका बंसल, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, 15 वर्ष से अधिक अनुभव के साथ, जो पहले से ही भिवाड़ी में अपनी सेवाएं दे रही थी, अब अपने नए लोटस हॉस्पिटल में OPD और इमरजेंसी सर्विस के लिए उपलब्ध हैं। इसके साथ ही यहां उपलब्ध है अनुभवी हड्डी रोग विशेषज्ञ। यहां घुटना बदलना, कुल्हा बदलना और रीढ़ से जुड़ी सभी बीमारी का इलाज होता है, और एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट और लैप्रोस्कोपिक जनरल सर्जन, जहां लेजर टेक्निक से बवासीर, भगंदर का इलाज लोटस हॉस्पिटल में मिलता है, तथा 24 घंटे आपातकालीन सुविधा, एडवांस्ड एक्सरे, लैबोरेटरी, फार्मेसी, अल्ट्रासाउंड सर्विस, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, AC प्राइवेट रूम की सुविधाएं उपलब्ध हैं। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आज ही विजिट करें लोटस हॉस्पिटल, बेस्ट टैग सिटी, BPL फ्लैट के सामने, धारूहेड़ा। संपर्क करें 01274415033।
3: भिवाड़ी का पहला ISO और NABH सर्टिफाइड श्री कृष्णा हॉस्पिटल, जिसमें मल्टी स्पेशलिस्ट OPD, 10 बेड का ICU, सबसे बड़ा मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 50 बेड का इंडोर, 24 आवर्स एम्बुलेंस, फार्मेसी और इमरजेंसी सेवाएं तथा लैब, डिजिटल एक्सरे जैसी सुविधाओं से लैस श्री कृष्णा हॉस्पिटल अधिकांश मल्टीनेशनल कंपनियों के मेडिकल कंसल्टेंसी एवं कैशलेस उपचार का एकमात्र सेंटर। श्री कृष्णा हॉस्पिटल, B14849 भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी, 8529113916, 7340013916। इस हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट और फिजिशियन की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
4: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
5: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
4: कान नाक गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
6: आपके हर खास समारोह को शानदार और यादगार बनाने के लिए आइए भाटोटिया टेंट हाउस एंड इवेंट ऑर्गेनाइजर।
7: सभी प्रकार के टेंट आइटम, शानदार डेकोरेशन और इंडोर आउटडोर कैटरिंग की बेहतरीन सुविधा, शादी, सगाई, जन्मदिन या किसी भी समारोह के लिए एक ही जगह पर पूरी व्यवस्था।
6: संपर्क करें हंसराज भाटोटिया, मोबाइल नंबर 9416347214।
7: और आपके खास समारोह के लिए शानदार राज विलास मैरिज एवं बैंक्वेट हॉल, शिवनगर पार्ट 2, पांचाल कॉलोनी, सीथल रोड, धारूहेड़ा, जिला रेवाड़ी, हरियाणा।
6: बाटोटिया टेंट हाउस और राज विलास मैरिज बैंक्वेट हॉल, आपके समारोह की पूरी तैयारी एक ही जगह।
8: क्या कर रही है?
9: ऑनलाइन बुकिंग देख रही हूँ, जयपुर जाना है।
8: फिर से? अभी तो गई थी।
9: हाँ, फिर से जाना है।
8: तू अपनी गाड़ी क्यों नहीं ले लेती?
9: गाड़ी नॉट इन बजट।
8: अरे गांधी मोटर्स है ना?
9: गांधी मोटर्स?
8: हाँ गांधी मोटर्स। गांधी मोटर्स कार सेल और परचेज के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर हर तरह की गाड़ियाँ बहुत अच्छी कीमत पे मिलती हैं।
9: तो कब चलें?
8: अरे इसमें सोचना कैसा, अभी चलना। गाड़ियों के सेल और परचेज के लिए आज ही संपर्क करें।
10: हमारा पता है शॉप नंबर S16 एवलॉन रॉयल प्लाजा, अल्बर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9785980000 या फिर 8740000144 पर।
11: भिवाड़ी में 27 वर्षों से सेवारत, भरोसेमंद 24 घंटे इलाज हेतु गोपीनाथ अस्पताल, ISO तथा NABH मान्यता एवं राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मल्टी स्पेशलिटी सेंट्रल AC OPD, 50 बेड की सुविधा से युक्त गोपीनाथ हॉस्पिटल, अत्याधुनिक 3 ऑपरेशन थिएटर, 7 बेड ICU, 2 जीवन रक्षक एम्बुलेंस, डिजिटल एक्सरे, ऑर्थोपेडिक सर्जन, फिजिशियन तथा लेडी डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा से युक्त गोपीनाथ अस्पताल। यहाँ नेफ्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, डायबिटोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट की नियमित OPD भी उपलब्ध है। लगभग सभी TPA कैशलेस सुविधा के साथ तथा भिवाड़ी की व आसपास की औद्योगिक इकाइयों के बीमा कंपनियां भी पैनल पर हैं। पता 226 इंडस्ट्रियल एरिया, सदर बाजार के पीछे, गोपीनाथ रोड, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 01493619563 एंड 9784333863।
12: क्या आप बिजली के बिल से परेशान हैं? क्या आप जानते हैं सोलर एनर्जी से आप बिजली के बिल से आजादी पा सकते हैं? जी हाँ, अपने घर, ऑफिस और फैक्ट्री की छत पर सोलर पैनल लगाएं और भारी बिजली के बिल से मुक्ति पाएं। सोलर एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको 30% तक रिटर्न देता है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9610255584। ग्रीन रूट्स रिन्यूएबल एनर्जी।
6: आपकी आंखें हैं अनमोल, आपकी आंखों को चाहिए बेहतर देखभाल, तो आइए गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स भिवाड़ी।
13: यहाँ मिलते हैं सभी ब्रांडेड कंपनियों के स्टाइलिश फ्रेम और हाई क्वालिटी लेंस। Ray-Ban, Vogue, टॉमी हिलफिगर, ओकेली, प्रदा, जीज, एसिलोर क्रिजाल, विजन आर एक्स और भी कई नेशनल व इंटरनेशनल ब्रांड्स।
6: साथ ही कॉन्टैक्ट लेंस, लो विजन क्लिनिक, मायोपिया क्लिनिक, विजन थेरेपी और आधुनिक मशीनों द्वारा कंप्यूटरीकृत आई एग्जामिनेशन, प्रशिक्षित ऑप्टोमेट्रिस्ट की पूरी टीम।
13: भिवाड़ी में सन 2006 से भरोसे का नाम गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स,
6: गणपति मॉल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास, समतल चौक भिवाड़ी और अशियाना आंगन के सामने BDI सोसाइटी के पास, अलवर बाईपास रोड भिवाड़ी।
7: अपॉइंटमेंट या जानकारी के लिए अभी कॉल करें 9636061776 या 9928929309।
14: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है, कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है, और इन्हीं श्रृंगार को सवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, एक से एक उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A, आशियाना आंगन प्लाजा, नियर मैकडॉनल्ड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट करें 01-4934-9322 या फिर 9034-9697-31 पर। ऐसे डिजाइंस जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्स ही आए।
15: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: विजय हॉस्पिटल डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
1: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
0: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
2: जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी आँखों का NABH मान्यता प्राप्त सुपर स्पेशलिटी आँखों का हॉस्पिटल आपके शहर भिवाड़ी में। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी आपको प्रदान करता है विश्व स्तरीय आँखों की देखभाल।
3: हमारे सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल में आपको मिलेगी अनुभवी डॉक्टरों सर्जनों की विशेषज्ञ टीम, पूर्णतः मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर MICS टॉपिकल फैको तकनीक से कैटरेक्ट मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेजर से ऑपरेशन बिना इंजेक्शन और टांके,
2: रेटिना आंख का पर्दा, ग्लूकोमा, काला मोतियाबिंद का उन्नत इलाज, बच्चों की आंखों का इलाज, हमारे पास सभी इंश्योरेंस और TPA पैनल उपलब्ध हैं। निःशुल्क कैशलेस इलाज का लाभ उठाएं।
3: आज ही हमें सेवा का मौका दें। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भगत सिंह कॉलोनी अलवर बाईपास हरीश बेकरी के पास भिवाड़ी।
2: संपर्क करें 7424830174। आज ही अपनी आँखों का इलाज कराएं और पाएं एक उज्जला भविष्य। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी।
4: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं कैशलेस सर्विस के लिए, कहाँ मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
5: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहाँ मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप, ट्रेंड मैकेनिक

0: मार्केट भिवाड़ी।
1: राहुल, इंडस्ट्री प्लान तो बढ़िया है, पर इस बार अपनी फैक्ट्री के इलेक्ट्रिकल्स पर एक्स्ट्रा फोकस रखना।
2: डोंट वरी सर, इंडस्ट्री का सारा इलेक्ट्रिकल्स खंडेलवाल एजेंसी से आएगा। ये NCR का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस है, जहां हमें पैनल, स्विच गियर, मोटर ड्राइव, इंडस्ट्रियल लाइटनिंग और वायर एंड केबल में 30 से ज्यादा मल्टीनेशनल ब्रांड ऑप्शंस मिल जाएंगे।
3: खंडेलवाल एजेंसीज, NCR का लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस इन भिवाड़ी।
4: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: मैं जयपुर जा रहा हूँ।
1: अच्छा, तो आते हुए जयपुर के मशहूर दूध लड्डू और प्याज कचौरी लेते आना।
0: अरे, दूध लड्डू और प्याज कचौरी के लिए जयपुर जाने का इंतजार क्यों करना, क्योंकि अब आपके शहर भिवाड़ी में अलवर बाईपास पर खुल चुका है कान्हा स्वीट्स।
1: जी हाँ, कान्हा स्वीट्स पर मिलते हैं स्वादिष्ट दूध लड्डू, प्याज कचौरी, समोसे किसी कलाकंद, रसमलाई, कुल्हड़ रबड़ी और सभी प्रकार की मिठाइयाँ।
0: बिल्कुल, हर मिठाई में स्वाद ऐसा कि एक बार खाएं तो दिल कहे एक और।
1: तो फिर आज मिठास हो जाए कान्हा स्वीट्स के साथ।
0: हाँ, परिवार हो या मेहमान, त्योहार हो या कोई खास खुशी, हर मौके की मिठास कान्हा स्वीट्स के साथ। पता नोट कर लीजिए,
1: शॉप नंबर AG F04, कैपिटल आर्केडिया, अलवर बाईपास इन फ्रंट ऑफ वेदांता फार्म, भिवाड़ी, राजस्थान।
2: मोहाली और गुड़गांव का डेंटल अनुभव अब भिवाड़ी में। आइए वी केयर डेंटल क्लिनिक इम्प्लांट सेंटर, जहां RCT, कैपिंग और डेंटल इम्प्लांट के एक्सपर्ट ट्रीटमेंट के साथ आपको मिलता है डॉक्टर रुकु सिंगला के 16 वर्षों के अनुभव और विशेषज्ञता का भरोसा। आर्मी और कॉर्पोरेट कर्मचारियों के लिए स्पेशल डिस्काउंट। पता, अपोजिट मैकडोनल्ड्स, JMK पेट क्लिनिक के पास, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉल करें 7814399374। वी केयर डेंटल, आपकी मुस्कान हमारा भरोसा।
1: क्या आपकी आँखों की रोशनी से जुड़ी कोई परेशानी है? क्या आप चश्मे से छुटकारा पाना चाहते हैं?
0: तो आइए आधुनिक सुविधाओं से युक्त मिश्री देवी आई हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी आई सेंटर।

0: पिछले 15 वर्षों से नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में भरोसेमंद सेवाएं, अब बहर रोड, नियम राणा और टपुकड़ा भिवाड़ी में।
1: यहां उपलब्ध हैं मोतियाबिंद, फेको, मल्टीफोकल एवं प्रीमियम लेंस, लेसिक लेजर, कॉर्निया, ग्लूकोमा और रेटिना उपचार एवं सर्जरी की आधुनिक सुविधाएं।
0: और अब दोनों आँखों का लेसिक लेजर उपचार आधुनिक तकनीक के साथ आपकी पहुंच में और उचित दरों पर।
1: बेहतर नेत्र उपचार, उचित खर्च और भरोसेमंद देखभाल के साथ चश्मे से आजादी की ओर बढ़ाइए अपना कदम। मिश्री देवी आई हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी आई सेंटर। संपर्क नंबर
0: 9783220043 या 01493294200। अब आपके शहर भिवाड़ी में साइकियाट्री एवं ऑर्थोपेडिक्स की नियमित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है ओजस हॉस्पिटल में।
1: मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितिका अग्रवाल द्वारा डिप्रेशन, नींद की समस्या, बेचैनी, घबराहट, मानसिक तनाव, स्किजोफ्रेनिया और ओसीडी जैसी समस्याओं का उचित उपचार किया जाता है एवं काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध है।
0: वहीं हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेंद्र अग्रवाल द्वारा चोट, ट्रॉमा, फ्रैक्चर, घुटने एवं कमर का दर्द, लिगामेंट की चोट, गठिया और आर्थराइटिस जैसी हड्डी एवं जोड़ संबंधी समस्याओं का उपचार किया जाता है।
1: साथ ही सर्जरी, फिजियोथेरेपी और पेन मैनेजमेंट की सुविधा भी उपलब्ध है।
0: तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या को नजरअंदाज न करें, पहुंचिए ओजस हॉस्पिटल।
1: पता नगीना गार्डन के पास, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी।
0: फोन करें 9521333591। ओजस हॉस्पिटल, बेहतर स्वास्थ्य की ओर एक कदम। अब आपके शहर धारूहेड़ा में ही मिल रही है आधुनिक और बेहतरीन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सुविधाएं। लोटस हॉस्पिटल, बेस्ट टैक सिटी बीपीएल फ्लैट के सामने धारूहेड़ा में डॉक्टर अन्विका बंसल, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, 15 वर्ष से अधिक अनुभव के साथ जो पहले से ही भिवाड़ी में अपनी सेवाएं दे रही थी, अब अपने नए लोटस हॉस्पिटल में ओपीडी और इमरजेंसी सर्विस के लिए उपलब्ध हैं। इसके साथ ही यहां उपलब्ध है अनुभवी हड्डी रोग विशेषज्ञ। यहां घुटना बदलना, कुल्हा बदलना और रीढ़ से जुड़ी सभी बीमारी का इलाज होता है और एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट और लैप्रोस्कोपिक जनरल सर्जन, जहां लेजर टेक्निक से बवासीर, भगंदर का इलाज लोटस हॉस्पिटल में मिलता है, तथा 24 घंटे आपातकालीन सुविधा, एडवांस्ड एक्सरे, लैबोरेटरी, फार्मेसी, अल्ट्रासाउंड सर्विस, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, एसी प्राइवेट रूम की सुविधाएं उपलब्ध हैं। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आज ही विजिट करें लोटस हॉस्पिटल, बेस्ट टैक सिटी बीपीएल फ्लैट के सामने धारूहेड़ा। संपर्क करें 01274415033।
2: भिवाड़ी का पहला ISO और NABH सर्टिफाइड श्री कृष्णा हॉस्पिटल, जिसमें मल्टी स्पेशलिस्ट ओपीडी, 10 बेड का ICU, सबसे बड़ा मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 50 बेड का इंडोर, 24 आवर्स एम्बुलेंस, फार्मेसी और इमरजेंसी सेवाएं तथा लैब, डिजिटल एक्सरे जैसी सुविधाओं से लैस श्री कृष्णा हॉस्पिटल अधिकांश मल्टीनेशनल कंपनियों के मेडिकल कंसल्टेंसी एवं कैशलेस उपचार का एकमात्र सेंटर। श्री कृष्णा हॉस्पिटल, B14849, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी, 8529113916734001391। इस हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट और फिजिशियन की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
3: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव, कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी, सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
4: डॉक्टर अंकित जैन, हड्डी रोग विशेषज्ञ, अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
3: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
0: आपके हर खास समारोह को शानदार और यादगार बनाने के लिए आइए भाटोटिया टेंट हाउस एंड इवेंट ऑर्गेनाइजर।
1: सभी प्रकार के टेंट आइटम, शानदार डेकोरेशन और इंडोर आउटडोर कैटरिंग की बेहतरीन सुविधा, शादी, सगाई, जन्मदिन या किसी भी समारोह के लिए एक ही जगह पर पूरी व्यवस्था।
0: संपर्क करें हंसराज भाटोटिया, मोबाइल नंबर 9416347214।
1: और आपके खास समारोह के लिए शानदार राजविलास मैरिज एवं बैंक्वेट हॉल, शिवनगर पार्ट 2, पांचाल कॉलोनी, सीथल रोड, धारूहेड़ा, जिला रेवाड़ी, हरियाणा।
0: बाटोटिया टेंट हाउस और राजविलास मैरिज बैंक्वेट हॉल, आपके समारोह की पूरी तैयारी एक ही जगह। अरे यार, आज शाम पार्टी करें?
5: नहीं यार, आज डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाना था।
0: गुरुग्राम? इतनी दूर?
5: हाँ यार, वहीं तो बेस्ट हाइजीन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और पेनलेस ट्रीटमेंट मिलता है।
0: ये बात पहले सही थी, पर अब नहीं।
5: मतलब?
0: गुरुग्राम के ही एक्सपीरियंस्ड डेंटल एक्सपर्ट डॉक्टर जितिन टक्कर पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ मिलता है प्रीमियम सेटअप, एडवांस टेक्नोलॉजी, कंप्लीट हाइजीन और 100% पेनलेस डेंटल ट्रीटमेंट। और सबसे अच्छी बात, चार्जेस दिल्ली और गुरुग्राम से काफी कम।
5: तो फिर दूर जाने का टेंशन खत्म।
0: बिल्कुल, अब एक्सपीरियंस, भरोसा और क्वालिटी, सब कुछ घर के पास भिवाड़ी में। आइए 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, ए ब्लॉक, A140, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। आज ही संपर्क करें डॉक्टर जितिन टक्कर 9871122135। 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, बेहतर चॉइसेस, बेहतर मुस्कान। अजी, सुनते हो, मेरा फोन टूट गया है।
5: अरे भाग्यवान, सुनो, घबराओ नहीं, खंडेलवाल मोबाइल भिवाड़ी लाया है 0% डाउन पेमेंट पर। मोबाइल फोन 9784960000। और सुनो, ओप्पो ने लॉन्च किया है अभी रेनो 15C कम दामों में, बजाज फाइनेंस के साथ 0% ब्याज, 10% कैश बैक के साथ, प्लस ट्रॉली बैग, 0 डाउन पेमेंट। और बैटरी से हो परेशान तो रियलमी ने लॉन्च किया है अपना एक नया मॉडल 10,000 mAh बैटरी के साथ। अभी जाइए खंडेलवाल मोबाइल पर ढेर सारे गिफ्ट के साथ, नीलम चौक। चिंता क्यों करते हो, बजाज फाइनेंस है ना अपने साथ। 9784960000 और 9828288666।
6: राहुल यार, मैंने नोएडा से जॉब स्विच कर दिया है, अब सोच रही हूँ भिवारी में रेंटल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा।
7: चिंता की कोई बात नहीं, मेगा एयर कंडीशनर्स एंड इलेक्ट्रिक सर्विस है ना, ये पूरे दिल्ली NCR में अपनी रेंटल सर्विस दे रहे हैं। और इनके यहाँ टावर AC, विंडो AC, स्प्लिट AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड LED TV सभी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
6: लेकिन इनकी सर्विस भिवारी में तो बहुत महंगी होगी ना।
7: बिल्कुल भी नहीं, आपको ये सर्विस सेम रेट पर मिलने वाली है। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9899247102 पर, या फिर विजिट करें www.maces.in पर।
8: ये क्या, अभी भी डीजल कार चला रहे हो? अब समय है स्मार्ट फ्यूल पर स्विच करने का, वो भी ज्यादा बचत के साथ। पेश है विक्टोरिस SCNG। ये स्मार्ट है क्योंकि ये देता है 27.02 किलोमीटर पर KG का शानदार माइलेज, और इसका अंडरबॉडी CNG टैंक बूट स्पेस पर कोई समझौता नहीं करता। ज्यादा बचत भी, क्योंकि अपनी पुरानी डीजल कार के एक्सचेंज पर पाएं 50,000 रुपए तक का फायदा। तो देर किस बात की, आज ही बुक करें, अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम पर जाएं। नियम व शर्तें लागू।
9: विजय फॉर्च्यून कार्स भिवाड़ी,
10: मॉडर्न अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर भिवाड़ी पर अनुभवी रेडियोलॉजिस्ट व पैथोलॉजिस्ट द्वारा अत्याधुनिक मशीनों से 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 4D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इको कार्डियोग्राफी, डिजिटल एक्सरे, IVP, बैरियम, HSG, डिजिटल OPG, DMT, ECG, EEG, BFT, मैमोग्राफी व फुली एडवांस कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब की सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध हैं।
11: नियर सरकारी हॉस्पिटल 135 भिवाड़ी, दूसरी ब्रांच, मॉडर्न डायग्नोस्टिक एवं इमेजिंग सेंटर, नियर नगर पालिका ऑफिस, अपोजिट अंबेडकर पार्क, धारूहेड़ा। कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800-123-4494 या 9983040100 पर।
12: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: अब भिवाड़ी के सबसे बड़े NABH सर्टिफाइड SS हॉस्पिटल में स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे पाएं। यहां पाएं स्किन स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, नेफ्रोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी, ब्लड बैंक L और डायलिसिस, सभी बड़े TPA, कैशलेस RGHS, ECHS, ESIC, चिरंजीवी योजना की कैशलेस सुविधा, यहां 24 घंटे की इमरजेंसी सेवा और एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें OCF2 ऑपोजिट मॉडर्न पब्लिक स्कूल, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट 7230011191 और 9785013999।
1: टाटा की गाड़ी तो ले ली है, अब भिवाड़ी में सर्विस सेंटर ढूंढते रहो।
2: अरे ढूंढना क्यों है, टाटा ऑथराइज्ड AK ऑटोमोबाइल है ना, जो संजय मोटर्स की ही यूनिट है। 2017 से भिवाड़ी का भरोसा है, टाटा के सर्टिफाइड मैकेनिक्स हैं और वहाँ सर्विसिंग बहुत ही शॉर्ट टाइम में हो जाती है।
1: अच्छा, और उसमें क्या खर्चे ही खर्चे?
2: अरे नहीं नहीं, AK ऑटोमोबाइल्स पर कार सर्विसिंग, बॉडी शॉप और व्हील अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग के अलावा कैशलेस इंश्योरेंस और रिन्यूअल, AMC, ऑन रोड मेंटेनेंस और एक्सीडेंट वारंटी जैसी सारी फैसिलिटीज हैं, जो खर्चे बहुत ही कम कर देती हैं। मेन रोड पर फूलबाग थाने के पास ही है ये।
1: अरे वाह, तो वेट क्यों करना, 9462369786 पे कॉल करके अभी AK ऑटोमोबाइल पे सर्विस बुक करो जल्दी।
3: सोनम ये लो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट।
4: अरे इसमें क्या है?
3: वही जो तुम्हें बहुत टाइम से चाहिए था।
4: ये ब्रेसलेट तो मुझे बहुत टाइम से चाहिए था।
3: क्या आप इसे दिल्ली से लाए हो?
4: लेकिन आप दिल्ली कब गए?
3: अरे वो है ना भिवाड़ी में अपने शांति ज्वेलर्स, इनके पास है सोने चांदी हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन और यहाँ मिलती है हॉलमार्क ज्वेलरी।
4: इनका एड्रेस क्या है?
3: इनका एड्रेस है शॉप नंबर 5 गणपति मॉल भिवाड़ी। और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9812210987 पर।
5: एक बेहतर कल के लिए, बेहतर मजबूती के लिए, बेहतर बचत के लिए यूज करें SBF रैपिड 550D TMT। मजबूत निर्माण सदा के लिए।
6: मुझे अपने बच्चों के लिए चाहिए एक ऐसा स्कूल जो ICSE से अफिलेटेड हो।
7: भिवाड़ी में है एक मात्र ऐसा स्कूल SPS ग्लोबल स्कूल, जिसके बच्चों ने ICSE 10th की बोर्ड परीक्षाओं में 100% रिजल्ट के साथ साथ राज्य स्तर पर कराटे, स्केटिंग आदि प्रतियोगिताओं में भी अपने स्कूल का नाम रोशन किया है। यहाँ शिक्षा से बच्चों का बौद्धिक विकास और खेल कूद से शारीरिक विकास, डिसिप्लिन और समय समय पर सामाजिक व सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं होती रहती हैं, जो बच्चों के सर्वांगीण विकास में मदद करता है। यहाँ है बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, खेल का मैदान, ऐसी क्लासरूम, डिजिटल क्लासरूम, आधुनिक सुविधाओं से लैस लैब, बेस्ट टीचर की फैसिलिटी।
6: SPS ग्लोबल स्कूल नियर कैपिटल मॉल भिवाड़ी। आज ही विजिट करें या कॉल करें 9950888330।
8: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: मैं जयपुर जा रहा हूँ।
1: अच्छा, तो आते हुए जयपुर के मशहूर दूध लड्डू और प्याज कचौरी लेते आना।
0: अरे, दूध लड्डू और प्याज कचौरी के लिए जयपुर जाने का इंतजार क्यों करना, क्योंकि अब आपके शहर भिवाड़ी में अलवर बाईपास पर खुल चुका है कान्हा स्वीट्स।
1: जी हाँ, कान्हा स्वीट्स पर मिलते हैं स्वादिष्ट दूध लड्डू, प्याज कचौरी, समोसे, किसी कलाकंद, रसमलाई, कुल्हड़, रबड़ी और सभी प्रकार की मिठाइयाँ।
0: बिल्कुल, हर मिठाई में स्वाद ऐसा कि एक बार खाएं तो दिल कहे एक और।
1: तो फिर आज मिठास हो जाए कान्हा स्वीट्स के साथ।
0: हाँ, परिवार हो या मेहमान, त्योहार हो या कोई खास खुशी, हर मौके की मिठास कान्हा स्वीट्स के साथ। पता नोट कर लीजिए,
1: शॉप नंबर AG F04, कैपिटल आर्केडिया, अलवर बाईपास इन फ्रंट ऑफ वेदांता फार्म, भिवाड़ी, राजस्थान।
2: मोहाली और गुड़गांव का डेंटल अनुभव अब भिवाड़ी में। आइए वी केयर डेंटल क्लिनिक इम्प्लांट सेंटर, जहां RCT, कैपिंग और डेंटल इम्प्लांट के एक्सपर्ट ट्रीटमेंट के साथ आपको मिलता है डॉक्टर रुकु सिंगला के 16 वर्षों के अनुभव और विशेषज्ञता का भरोसा। आर्मी और कॉर्पोरेट कर्मचारियों के लिए स्पेशल डिस्काउंट। पता, अपोजिट मैकडोनल्ड्स, JMK पेट क्लिनिक के पास, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉल करें 7814399374। वी केयर डेंटल, आपकी मुस्कान हमारा भरोसा।
1: क्या आपकी आँखों की रोशनी से जुड़ी कोई परेशानी है? क्या आप चश्मे से छुटकारा पाना चाहते हैं?
0: तो आइए आधुनिक सुविधाओं से युक्त मिश्री देवी आई हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी आई सेंटर।
1: पिछले 15 वर्षों से नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में भरोसेमंद सेवाएं, अब बहर रोड, नियम राणा और टपुकड़ा भिवाड़ी में।
0: यहाँ उपलब्ध है मोतियाबिंद, फेको, मल्टीफोकल एवं प्रीमियम लेंस, लेसिक लेजर, कॉर्निया, ग्लूकोमा और रेटिना उपचार एवं सर्जरी की आधुनिक सुविधाएं।
1: और अब दोनों आँखों का लेसिक लेजर उपचार आधुनिक तकनीक के साथ आपकी पहुंच में और उचित दरों पर।
0: बेहतर नेत्र उपचार, उचित खर्च और भरोसेमंद देखभाल के साथ चश्मे से आजादी की ओर बढ़ाइए अपना कदम। मिश्री देवी आई हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी आई सेंटर। संपर्क नंबर
1: 9783220043 या 01493294200। अब आपके शहर भिवाड़ी में साइकियाट्री एवं ऑर्थोपेडिक्स की नियमित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है ओजस हॉस्पिटल में।
0: मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितिका अग्रवाल द्वारा डिप्रेशन, नींद की समस्या, बेचैनी, घबराहट, मानसिक तनाव, स्किजोफ्रेनिया और OCD जैसी समस्याओं का उचित उपचार किया जाता है एवं काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध है।
1: वहीं हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेंद्र अग्रवाल द्वारा चोट, ट्रॉमा, फ्रैक्चर, घुटने एवं कमर का दर्द, लिगामेंट की चोट, गठिया और आर्थराइटिस जैसी हड्डी एवं जोड़ संबंधी समस्याओं का उपचार किया जाता है।
0: साथ ही सर्जरी, फिजियोथेरेपी और पेन मैनेजमेंट की सुविधा भी उपलब्ध है।
1: तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या को नजरअंदाज न करें, पहुंचिए ओजस हॉस्पिटल।
0: पता, नगीना गार्डन के पास, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी।
1: फोन करें 9521333591। ओजस हॉस्पिटल, बेहतर स्वास्थ्य की ओर एक कदम। अब आपके शहर धारूहेड़ा में ही मिल रही है आधुनिक और बेहतरीन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सुविधाएं। लोटस हॉस्पिटल, बेस्ट टैग सिटी, BPL फ्लैट के सामने धारूहेड़ा में डॉक्टर अन्विका बंसल, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, 15 वर्ष से अधिक अनुभव के साथ, जो पहले से ही भिवाड़ी में अपनी सेवाएं दे रही थी, अब अपने नए लोटस हॉस्पिटल में OPD और इमरजेंसी सर्विस के लिए उपलब्ध हैं। इसके साथ ही यहां उपलब्ध है अनुभवी हड्डी रोग विशेषज्ञ। यहां घुटना बदलना, कुल्हा बदलना और रीढ़ से जुड़ी सभी बीमारी का इलाज होता है, और एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट और लैप्रोस्कोपिक जनरल सर्जन, जहां लेजर टेक्निक से बवासीर, भगंदर का इलाज लोटस हॉस्पिटल में मिलता है, तथा 24 घंटे आपातकालीन सुविधा, एडवांस्ड एक्सरे, लैबोरेटरी, फार्मेसी, अल्ट्रासाउंड सर्विस, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, AC प्राइवेट रूम की सुविधाएं उपलब्ध हैं। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आज ही विजिट करें लोटस हॉस्पिटल, बेस्ट टैग सिटी, BPL फ्लैट के सामने धारूहेड़ा। संपर्क करें 01274415033।
3: भिवाड़ी का पहला ISO और NABH सर्टिफाइड श्री कृष्णा हॉस्पिटल, जिसमें मल्टी स्पेशलिस्ट OPD, 10 बेड का ICU, सबसे बड़ा मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 50 बेड का इंडोर, 24 आवर्स एम्बुलेंस, फार्मेसी और इमरजेंसी सेवाएं तथा लैब, डिजिटल एक्सरे जैसी सुविधाओं से लैस श्री कृष्णा हॉस्पिटल अधिकांश मल्टीनेशनल कंपनियों के मेडिकल कंसल्टेंसी एवं कैशलेस उपचार का एकमात्र सेंटर। श्री कृष्णा हॉस्पिटल, B14849 भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी, 8529113916, 7340013916। इस हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट और फिजिशियन की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
4: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
5: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
4: कान नाक गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
6: आपके हर खास समारोह को शानदार और यादगार बनाने के लिए आइए भाटोटिया टेंट हाउस एंड इवेंट ऑर्गेनाइजर।
7: सभी प्रकार के टेंट आइटम, शानदार डेकोरेशन और इंडोर आउटडोर कैटरिंग की बेहतरीन सुविधा, शादी, सगाई, जन्मदिन या किसी भी समारोह के लिए एक ही जगह पर पूरी व्यवस्था।
6: संपर्क करें हंस राज भाटोटिया, मोबाइल नंबर 9416347214।
7: और आपके खास समारोह के लिए शानदार राज विलास मैरिज एवं बैंक्वेट हॉल, शिवनगर पार्ट 2, पांचाल कॉलोनी, सीथल रोड, धारूहेड़ा, जिला रेवाड़ी, हरियाणा।
6: बाटोटिया टेंट हाउस और राज विलास मैरिज बैंक्वेट हॉल, आपके समारोह की पूरी तैयारी एक ही जगह।
8: अब भिलवाड़ी के शिवोहम हॉस्पिटल में पाएं एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं। यहां 25 बेड से लेस इंडोर, 6 बेड से लेस ICU, 2 बड़े ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजी लैब तथा अत्याधुनिक एक्सरे मशीनों के द्वारा एक्सरे सुविधा, तकनीकी मशीनों द्वारा जांच, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, एम्बुलेंस, सभी कैशलेस TPA सुविधाओं के साथ 14 साल से कम आयु की बच्चियों के लिए निशुल्क परामर्श, गायनेकोलॉजी, इनफर्टिलिटी, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नम्रता मेहता चतुर्वेदी व हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हेमंत चतुर्वेदी जैसे अनुभवी डॉक्टर से परामर्श सुविधा, जो कि पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में निरंतर अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। शिवोहम हॉस्पिटल, B4 भगत सिंह कॉलोनी, पुराने RTO ऑफिस के पास, भिवाड़ी। संपर्क 9799996778।
3: भिवाड़ी का पहला ISO और NABH सर्टिफाइड श्री कृष्णा हॉस्पिटल, जिसमें मल्टी स्पेशलिस्ट OPD, 10 बेड का ICU, सबसे बड़ा मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 50 बेड का इंडोर, 24 आवर्स एम्बुलेंस, फार्मेसी और इमरजेंसी सेवाएं तथा लैब, डिजिटल एक्सरे जैसी सुविधाओं से लैस श्री कृष्णा हॉस्पिटल अधिकांश मल्टीनेशनल कंपनियों के मेडिकल कंसल्टेंसी एवं कैशलेस उपचार का एकमात्र सेंटर। श्री कृष्णा हॉस्पिटल, B14849 भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी, 8529113916, 7340013916। इस हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट और फिजिशियन की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
6: क्या आपकी त्वचा, बाल या नाखून की समस्या बार बार परेशान कर रही है?
9: अब सही इलाज के लिए मिलिए डॉक्टर गौरव, एम्स से प्रशिक्षित त्वचा रोग विशेषज्ञ, SS हॉस्पिटल, भिवाड़ी में।
6: मुंहासे, पिगमेंटेशन, एलर्जी, हेयर फॉल से लेकर लेजर, केमिकल पील और बोटॉक्स जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध।
9: ECHS, RGHS तथा NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल में सभी प्रमुख TPA मान्य।
6: SS हॉस्पिटल, भिवाड़ी, भरोसेमंद विशेषज्ञ से देखभाल। समय रोजाना शाम 4:30 to 6:30 तक, गुरुवार अवकाश।
10: पूजा, तुम्हारे फेस पर कितने पिंपल्स और धब्बे हो रहे हैं?
11: हाँ यार, और बाल भी हर दिन झड़ रहे हैं। कई बार दिल्ली गुरुग्राम में भी दिखा चुकी हूँ।
10: अरे पूजा, अब दिल्ली या गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपनी भिवाड़ी में है डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, जहाँ पर स्किन, हेयर एंड नेल्स की सभी बीमारियों का पूर्ण इलाज डॉक्टर सुचेता MD डर्मेटोलॉजी द्वारा किया जाता है, जो भिवाड़ी में अपनी सेवाएं दे रही है। इनके यहाँ लेजर हेयर रिमूवल, माइक्रो नीडलिंग, PRP, RF, अन्य सभी स्किन समस्याओं का समाधान विदेशी मशीनों व नई तकनीकों द्वारा किया जाता है। कॉल करें 6367551007। विजिट डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, A56 फर्स्ट फ्लोर, भगत सिंह कॉलोनी, बिहाइंड सुखम टावर, भिवाड़ी।
12: आपके सारे जरूरतों का बीमा एक ही जगह विधि एंटरप्राइजेस भिवाड़ी। स्वास्थ्य बीमा, वाहन बीमा, जीवन बीमा, फायर बीमा सब मिलेगा यहाँ। और हाँ, बीमा कराने पर खास ऑफर भी मिलेंगे। संपर्क करें चंद्रभान विधि एंटरप्राइजेस, रिको चौक भिवाड़ी, 9887066308।
13: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: अपनो देश आपनो रंग सब मिले आपनो बाजार के संग। जी हाँ, आपनो बाजार आपका कंप्लीट फैमिली स्टोर, जहाँ उत्तम क्वालिटी और वाजिब दामों के साथ आपको मिलता है किराना, ग्रोसरी आइटम, कॉस्मेटिक, हाउसकीपिंग, हाउसहोल्ड आइटम, गिफ्ट आइटम, क्रॉकरी, टॉयज एंड गेम्स। इन सभी आइटम के MRP दामों पर खास छूट। इतना ही नहीं, फ्री होम डिलीवरी की सुविधा भी है। इनके स्टोर अलवर बाईपास, थड़ा रोड, भिवाड़ी, कृष्ण मॉल, टपुकड़ा आशियाना विलेज सेंटर। संपर्क करें 9680870184 या फिर 7822091287।
1: अरे, प्लांट का तो सारा काम हो गया, अब LED लाइट कहाँ से खरीदें?
2: सर, क्या आपको नहीं पता है, नेप LED लाइटिंग कंपनी इंडस्ट्रियल लाइटिंग जैसे फ्लड लाइट, हाईवे लाइट, स्ट्रीट लाइट आदि के साथ साथ सभी प्रकार की LED लाइट बनाती है, वो भी 2 साल की वारंटी के साथ। और इतना ही नहीं, वो इंडस्ट्रियल लाइटिंग कंसल्टेंट सर्विस भी फ्री देते हैं।
1: अरे वाह, इनसे संपर्क कैसे करें?
2: सर, इनका सेल्स ऑफिस एड्रेस JFF 22, कैपिटल हाई स्ट्रीट, फूलबाग चौक, भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए नेप LED लाइटिंग कंपनी से संपर्क करें 7988627064।
3: आपके हर खास समारोह को शानदार और यादगार बनाने के लिए आइए भाटोटिया टेंट हाउस एंड इवेंट ऑर्गेनाइजर।
4: सभी प्रकार के टेंट आइटम, शानदार डेकोरेशन और इंडोर आउटडोर कैटरिंग की बेहतरीन सुविधा, शादी, सगाई, जन्मदिन या किसी भी समारोह के लिए एक ही जगह पर पूरी व्यवस्था।
3: संपर्क करें हंसराज भाटोटिया, मोबाइल नंबर 9416347214।
4: और आपके खास समारोह के लिए शानदार राजविलास मैरिज एवं बैंक्वेट हॉल, शिवनगर पार्ट 2, पांचाल कॉलोनी, सीथल रोड, धारूहेड़ा, जिला रेवाड़ी, हरियाणा।
3: भाटोटिया टेंट हाउस और राजविलास मैरिज बैंक्वेट हॉल, आपके समारोह की पूरी तैयारी एक ही जगह। जब बात आपकी मुस्कान की हो तो समझौता क्यों, अब स्पेशलिस्ट डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं। आइए डेंटल एक्सपर्ट्स भिवाड़ी, भिवाड़ी का इकलौता डेंटल क्लिनिक, जहां पूरी टीम MDS स्पेशलिस्ट्स की है और जिन्हें 15 साल से अधिक का अनुभव है। डॉक्टर विनोद यादव, MDS ऑर्थोडोंटिस्ट, भिवाड़ी के एकमात्र ब्रेसेस स्पेशलिस्ट एंड इनविसलाइन प्रोवाइडर। इसके अलावा डेंटल इम्प्लांट्स और जटिल दांतों की समस्याओं का आधुनिक उपचार प्रदान करते हैं। साथ ही डॉक्टर ऋतु यादव, MDS एंडोडोंटिस्ट, रूट कैनाल, स्माइल डिजाइनिंग और फुल माउथ रिहैबिलिटेशन की विशेषज्ञ। डेंटल एक्सपर्ट्स, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट आशियाना आंगन, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 8824232823। डेंटल एक्सपर्ट्स, आपकी मुस्कान हमारी विशेषज्ञता।
4: भिवाड़ी वासियों, अब हर जरूरत की सर्विस सिर्फ एक ऐप पर। मैसन केयर लेकर आया है आपके लिए भरोसेमंद होम और प्रोफेशनल सर्विसेज।
3: बाथरूम डीप क्लीनिंग, किचन डीप क्लीनिंग, पूरे घर की सफाई, ऑफिस क्लीनिंग, जिम क्लीनिंग, कार क्लीनिंग, पानी की टंकी की सफाई, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ड्राइवर सर्विस, कैब बुकिंग और बहुत सारी अन्य सेवाएं, अब सब कुछ एक ही ऐप पर।
4: अभी मैस एंड केयर ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे अपनी पसंद की सर्विस बुक करें।